नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात कृष्ण जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी का नाम सुनते ही मन में छवि उभरती है छोटे से बाल गोपाल की। भले ही श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी के घर में जन्म लिया, नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में पले बढ़े, लेकिन अपने इस अवतार में उन्होंने बाल सुलभ लीलाओं का आनंद सारे संसार को दिया। वो भगवान हैं, नारायण के अवतार हैं, लेकिन श्री कृष्ण को पूजने वाले हर व्यक्ति के लिए वो वही नन्हे से बाल गोपाल हैं। गोकुल की गलियों में मस्ती करते माखन चुराते गोकुल की गलियों में माखन चुराते बाल कृष्ण की कहानियां आज भी बेहद श्रद्धा से सुनी और सुनाई जाती हैं। दही हांडी का पर्व माखन चोर कन्हैया की उन्हीं कहानियों से जुड़ा है। देश में इस पर्व को लेकर युवाओं के बीच में जबरदस्त उत्साह रहता है। खास तौर पर महाराष्ट्र में इस पर्व को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी दही हांडी प्रतियोगिताओं की तैयारियां काफी लंबे वक्त से पहले शुरू हो गई थी, तो चलिए आपको दिखाते हैं जन्माष्टमी से पहले मुंबई में दही हांडी को लेकर कैसा उत्साह बना है।

5000 साल पहले द्वापर युग में गोकुल के घर गलियों से शुरू हुआ ये सिलसिला आज भी जारी है। माखन की मटकी फूट रही है, कान्हा माखन चुरा रहे हैं, बाल सखा के साथ मनमोहन मन भर कर माखन खा रहे हैं। सनातन धर्म की कहानियों में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण को माखन, दही और दूध बेहद पसंद था। उन्हें माखन इतना पसंद था कि अपने सखाओं के साथ मिलकर पूरे गांव का माखन चोरी करके खाते थे। कान्हा की भक्ति में लीन संसार आज भी इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाता और त्योहार की तरह मनाता आ रहा है। द्वापर काल में ब्रज की महिलाओं ने कान्हा की शरारतों से तंग आकर मथे हुए माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाना शुरू किया था ताकि श्री कृष्ण का हाथ वहां तक पहुंचे ना। लेकिन नटखट कान्हा की समझदारी के आगे उनकी सारी योजनाएं बेकार हो जाती थी। माखन चुराने के लिए श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाते और ऊंचाई पर लटकाई मटकी से दही और माखन चुरा लेते थे। इसी पौराणिक कहानी से प्रेरित होकर दही हांडी का चलन शुरू हुआ।

0: बरसों से जन्माष्टमी के त्योहार पर देश के कई इलाकों में दही हांडी के आयोजन होते हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में होने वाले इन आयोजनों की ख्याति सारी दुनिया में फैली। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के कई दिनों पहले से इस आयोजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इन्हीं तैयारियों की ऊर्जा से भरी ये तस्वीरें मुंबई से आई हैं, जहां गोविंदा जोर शोर से मटकी फोड़ने की तैयारी में जुटे हैं।
1: 5 सितंबर को दही हंडी होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही किस तरीके की तस्वीरें इस समय मुंबई में देखी जा रही है, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, वो सारे पतंग इस समय यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हुए जो अभी कुछ देर पहले ही प्रैक्टिस कर रहे थे, और किस तरह की व्यवस्था है थोड़ा ये भी देखे। ये देखिए, ट्रॉली के साथ में बाकायदा दही हंडी कुछ देर पहले यहाँ पर लगाई गई थी। बहुत सारी प्रैक्टिस हुई, आसपास की कई टीमें यहाँ पहुंची और सभी ने यहाँ पर पिरामिड बना करके दही हंडी तक पहुंचने की कोशिश करी है। एक बहुत ही भव्य मंच यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ तमाम मुझे लगता है आम खास लोग पहुंचे होंगे। और अब देखिए, ये छोटा सा बच्चा बहुत ही ज्यादा, और इनके साथ भी बहुत सारे लोग। आप लोग वाकई में बड़े साहसी हैं, लेकिन उससे पहले बोल बजरंग
2: बली की जय।
1: अरे बोल बजरंग
2: बली की जय।
1: चलिए थोड़ी बातों का सिलसिला शुरू करते, कैसी चल रही है तैयारी?
3: बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारी चालू है।
1: क्या आपको बताया कि दही हंडी सिर्फ मेल यानी कि पुरुषों का ही एक बहुत बड़ा खेल नहीं है, बल्कि महिलाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। देखिए, मंच सजा हुआ है जहां पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इनकी भी कोई टीम होगी और सबको उन्होंने चीयर्स करने के लिए यहां पर पहुंचे होंगे। आपको बताएं, दही हंडी महाराष्ट्र में यानी कि पिरामिड बनता है, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके 8 थर 9 थर लगा करके ऊंचे जहां पर एक मटकी लटकाई जाती है जिसमें दही होती है उसे लटकाया जाता है। बाकायदा उसे सर से कोई फोड़ता है तो कोई नारियल से फोड़ता है, और कृष्ण जन्माष्टमी जो है मुंबई महाराष्ट्र अलग रूप में बनाया जाता है। लेकिन वाकई बहुत ही एक तरह से खतरनाक खेल भी है, लेकिन बहुत साहसी खेल भी है।
0: वैसे तो जन्माष्टमी पर देश के कई इलाकों में दही हांडी उत्सव की रौनक दिखाई देती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्योहार का रंग कुछ और ही नजर आता है।

इस उत्सव के दौरान लड़कों का ग्रुप मैदान, सड़क या कंपाउंड में इकट्ठा होता है, जहां लगभग 20 से 30 फीट की ऊंचाई पर मिट्टी की मटकी को दही, घी, बादाम और सूखे मेवे से भरकर लटकाया जाता है। ऊंचाई पर लटकी दही हांडी को तोड़ने के लिए 9 लेयर का पिरामिड बनाया जाता है। जो लड़का पिरामिड के सबसे ऊपर खड़ा होता है उसे गोविंदा कहा जाता है। ग्रुप के दूसरे लड़कों को हांडी या मंडल कहकर पुकारा जाता है। हांडी को तोड़ने के लिए 3 मौके मिलते हैं। दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को इनाम दिया जाता है। पूरे दही हांडी उत्सव के दौरान लोग लोकगीतों और भजनों पर नाचते गाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन जोर शोर से होने लगा था, लेकिन राज्य में इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा साल 2022 में दिया गया। महाराष्ट्र में इस उत्सव की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया और इससे जुड़े कई नियम भी बना दिए। इन तमाम नियमों का ध्यान रखते हुए आज भी जन्माष्टमी से पहले शहर भर में गोविंदा दही हांडी की प्रैक्टिस में जुट जाते हैं। अब के साल दही हांडी उत्सव में महिला गोविंदाओं का भी धमाल है। मुंबई में टी शर्ट और शॉर्ट्स के बजाय लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहने ये महिला गोविंदा इंसानी पिरामिड बनाने का अभ्यास कर रही है। जन्माष्टमी से पहले दही हांडी के लिए नारी शक्ति पूरी तरह तैयार दिख रही है।

0: कर करके ऊपर जाके, जो शंकर भगवान ऊपर जाके मतलब थर रचने वाले हैं, एंड उससे पहले हम लोग डांस भी इनको करवाते जा, ताकि जो समाज के लिए जो पारंपरिक पद्धति का जो दहेंडी होना चाहिए वैसा हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। ज़्यादा थर न लगाते हुए 20 फुट का जो रूल है वैसे करके एक हमारा संदेश है कि सेफ्टी लेके ये सब करना ज़रूरी है।
1: पर्व के जश्न में सराबोर ये लड़कियां निर्भया महिला गोविंदा पथक की सदस्य हैं, जो इस बार लक्ष्मी रूप लेकर सुरक्षा साधनों के साथ ऊंचाई पर बांधी गई हांडी फोड़ने के लिए पिरामिड बनाने की कड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं।

0: लोग को प्रैक्टिस करके एक महीना हो गया। हम लोग की पूरी गर्ल्स टीम है और हम लोग ने लक्ष्मी का लुक किया है। हम लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है, पूरा सेफ्टी रखा जाता है। हम लोग चार थर लगाते हैं। हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, मुझे 5-6 साल हुआ ये दहीहंडी में।
1: पिछले 2 महीनों से यहाँ मौजूद छोटी बड़ी लगभग 60 प्रतिभागी पूरे सुरक्षा साधनों के साथ बैलेंस और आपसी तालमेल पर फोकस कर प्रैक्टिस कर रही है।

0: जो सेफ्टी है वो एकदम प्रॉपरली वो हैंडल करते हैं जैसी भी है चीज़ें. और फिर जैसे हमें ये बेल्ट दिया, ये टॉवल दिया है हमको अच्छे से बांध के, सो दैट हमको वहाँ पे पकड़ने के लिए प्रोटेक्ट कर सके हम एक दूसरे को. उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा है कैसे करना है, कहाँ पे पैर रखना है, कैसे बेल्ट पकड़ना है, ये सब वो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सर हम लोग को गाइड करते हैं.
1: जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गली गली दही हांडी के रंग बिखरे हैं. उत्सव की उमंग और रौनक से सारी मुंबई सराबोर है. गली मोहल्लों चौक चौराहों पर गोविंदाओं की टोलियां निकल पड़ी हैं दही हांडी फोड़ने के लिए. कभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए दही हांडी का उत्सव मनाना शुरू किया गया था, मगर वक्त के साथ इस पर्व की आस्था और परंपरा का कलेवर बदला. उत्सव में जोश और रोमांच का रंग और गहरा हुआ, जिनके रंगों में आज केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश रंगा नजर आता है. मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.

4 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व है और इससे पहले अब शहर शहर बेसब्री से कान्हा के आने का इंतजार हो रहा है। इसी कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ा है कन्हैया के ब्रज में, जहां मथुरा से लेकर वृंदावन और गोकुल से लेकर बरसाना तक जन्माष्टमी के रंग बिखरे हुए हैं। जन्माष्टमी से पहले आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंच गए। सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे हैं। अब की बार जन्माष्टमी के मौके पर वो कान्हा की नगरी में मौजूद रहेंगे। जन्माष्टमी से पहले सीएम मथुरा पहुंचे तो उनकी मुलाकात मुन्हे बाल गोपाल से हो गई। एक कार्यक्रम में सीएम योगी को श्री कृष्ण की पोशाक में सजा ये प्यारा सा बच्चा दिखा तो इसे गोद में लेने के लिए वो खुद को रोक नहीं पाए। बाल कृष्ण भी सीएम की गोद में खेलकर खुश नजर आया। वैसे आपको बता दें, इस समय पूरे मथुरा में माहौल कृष्णमय हो चुका है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। आज जन्मभूमि मंदिर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो चलिए आपको दिखाते हैं कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी से पहले कैसा है माहौल।

अनंत काल चक्र से घूमती आई धरती 5000 साल पहले द्वापर युग के इस एक लम्हे पर आकर थम गई थी, जब ब्रज मंडल के मथुरा में मौजूद एक कारागार में सनातन धर्म के सौभाग्य का चंद्र उदय हुआ था। कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच भाद्रपद अष्टमी की रात मथुरा की एक काल कोठरी में प्रकाश बनकर प्रकट हुए थे नारायण। माँ देवकी की कोख से अजन्मे का जन्म हुआ। काली अंधेरी रात में नए जीवन और उल्लास के उजाले से ब्रज की धरा गमक उठी। यूं तो श्री कृष्ण के जन्म की इस कथा का विस्तृत वर्णन भागवत पुराण में पढ़ा और सुना जा सकता है, लेकिन कृष्णावतार के प्राकट्य और उसके उल्लास को अपनी आँखों से देखना हो, महसूस करना हो, तो आप मथुरा वृंदावन चले जाइए।

0: द्वापर युग की वही दिव्यता, वही भव्यता और वही भक्ति एक बार फिर कान्हा की जन्मस्थली मथुरा में जीवंत हो उठी। जन्माष्टमी से एक दिन पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान के मुख्य प्रवेश द्वार से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नाचते गाते सैकड़ों कलाकार और हजारों भक्त इस यात्रा का हिस्सा बने। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा और लीला भूमि वृंदावन सज धज कर तैयारी। जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ कान्हा की जन्मोत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव कितना भव्य और अलौकिक होने वाला है। इस खास मौके पर सबकी नजर खास तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर रहेगी।
1: आज से 5253 वर्ष पूर्व जब इस पवित्र श्री कृष्ण जन्म होकर भगवान का प्रकट हुआ था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। एक अद्भुत प्रकाश देवताओं के माध्यम से किया गया। उसी भावना को हृदयंगम रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र और दिव्य मंदिर परिसर में की वास्तु से बिना छेड़छाड़ किए हुए दिव्य प्रकाश के संयोजन की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ लगे हुए प्रकाश की व्यवस्था ऐसा आवाज करा रही है जैसे कोटिश दीप श्री कृष्ण जन्मभूमि को पर शोभायमान हो रहे हैं।
0: अनुमान है कि जन्मोत्सव के इस मौके पर करीब 50 से 75 लाख श्रद्धालु ब्रज पहुंचने वाले हैं। उत्सव बड़ा है इसलिए तैयारी भी बड़ी है। होली गेट से लेकर द्वारकाधीश मंदिर तक और भरतपुर गेट से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बताया ये जा रहा है कि शहर में 16 ऐसे मंच तैयार किए गए हैं जहां भगवान की लीलाओं का मंचन किया जाएगा।

0: जन्मोत्सव भगवान का है तो जाहिर है उपहार भी बेहद खास होंगे। यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ के धाम से ठाकुर जी के लिए खास सौगात भेजी गई है। इनमें चांदी की चम्मच, पायजेब, मुरली और कंगन शामिल है और भोग के लिए मेवा और मिष्ठान भी पहुंचा है। तो वहीं पहली बार श्री राम जन्मभूमि मंदिर से पूजित पुष्प, वस्त्र, मेवा, मिष्ठान, श्रृंगार सामग्री, मोर पंख और बांसुरी समेत अन्य मंगल सामग्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अयोध्या से मथुरा भेजी गई है। यानी काशी, उज्जैन, अयोध्या हो या फिर मथुरा, मंदिर हो या घर द्वार, यशोदा नंदन के स्वागत की तैयारियां चारों ओर पूरी हैं। बस इंतजार है तो कान्हा के आने का। और इसी इंतजार के बीच गुड न्यूज टुडे भी निकल पड़ा है श्री कृष्ण के नगर की ओर, जहां शहर के प्रवेश द्वार से ही कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक नजर आने लगी है।
1: जन्माष्टमी का समय आ गया है, पूरा ब्रजमंडल अपने भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। और ऐसे में अगर आप मथुरा तक आते हैं तो हम मथुरा से अभी 3 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन यहीं से ये भक्ति पथ है, जहां भक्ति पथ पर 84 से ज्यादा खंबे हैं। इन खंबों पर भगवान की लीला और भगवान की सुंदर छवियां उत्कीर्ण हैं और ये गायें यहां स्वागत करती हैं। हर एक खंबे पर गाय है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, गवाम मध्ये वसाम्यहम, यानी गायों के बीच में ही मेरा वास है, जहां गाय है वहां मैं हूं। और इन्हीं गवों के स्तंभ के साथ, भक्ति स्तंभ के साथ यहां फूलों की सजावट है। आप मथुरा शहर में जाएं, वृंदावन जाएं, जगह जगह मंच बने हैं, रंगमंचों पर कहीं रासलीला चल रही है, कहीं भजन कीर्तन है, कहीं भंडारों के पंडाल लगे हैं और लोग उत्सव मनाते हुए सड़कों पर झांझ, करताल और मृदंग की ध्वनि के साथ लगातार हरे कृष्ण करते डोल रहे हैं, यानी ब्रज में डोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद हर तरह का हो सकता है, एक तो मुख से पाने वाला प्रसाद, एक आत्मा तक जाने वाला प्रसाद। और यहाँ ये पूरा ये भक्ति पथ है जो कृष्ण जन्म स्थान तक जाता है और मथुरा में, वृंदावन में या 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में हर जगह आनंद की लहर है। ऐसा लगता है, ऐसा उत्साह और उमंग है कि हर एक घर में जैसे लाला का जन्म होने वाला है। स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, भजन कीर्तन भोग राग की तैयारियां चल रही हैं और उपवास की भी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आपको कुछ पाना है, उसके लिए आपको उसके नजदीक बैठना होगा, उपवास करना होगा और उसी उपवास की तैयारियों के साथ एक उत्सव का वातावरण लगातार चल रहा है। ब्रजमंडल में आप दाखिल होंगे, उससे पहले आपको वहां के आनंद की खुशबू, आपको वहां के आनंद के झोंके, झकोरे आपको लिए चलते हैं अंदर, जहां ये जय घोष चल रहा है कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, बूढ़न को हाथी घोड़ा, जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। आइए चलिए हमारे साथ और हम चलते हैं अब मथुरा और ब्रजमंडल के दिव्य यात्रा पर, वो भी जन्माष्टमी के पावन पर्व का उत्सव और आनंद मनाने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए। मेरे साथ चलिए कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ संजय शर्मा, मथुरा।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव भले ही कल मध्यरात्रि में मनाया जाएगा, लेकिन जन्माष्टमी के सिलसिले में धार्मिक उत्सवों का सिलसिला देश भर में पहले से शुरू हो चुका है। कृष्ण धाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद इस्कॉन मंदिर की हैं। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि इस मंदिर के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। हर साल यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन होता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां यहाँ कई हफ्तों पहले ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया। मंदिर को सजाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फूल मंगवाए गए। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग की गई। शाम होते ही मंदिर खूबसूरत लाइटिंग से जगमगा उठता है। वैसे दिल्ली ही क्या, ये नजारा देश भर में शहर शहर दिखाई देता है। जन्माष्टमी से पहले झांसी, भोपाल, पटना समेत कई शहरों में रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें श्रद्धालुओं को कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: जन्माष्टमी की पावन घड़ी आ रही है तो पूरा देश कृष्ण भक्ति के रंगों में रंग गया है। इसी कड़ी में झांसी में इस्कॉन की ओर से प्रेरणा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कहीं भक्ति रैप और रॉक बैंड ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो कहीं कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। भगवद गीता की शिक्षाओं से जीवन को सही दिशा देने का संदेश भी दिया गया। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित 3 दिन के मेगा फेस्टिवल में शहर ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूरा वातावरण वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया, जैसे मथुरा वृंदावन में दिखता है।
1: तो इस्कॉन वालों ने इतना अच्छा यहाँ पर वृंदावन जैसा माहौल दिया है, मुझे आके यहाँ इतना अच्छा फील हो रहा है। मैंने कान्हा जी की एक तस्वीर ली है, कान्हा जी का पगड़ी लिया है और ये माला भी लिया है उनका। ये देखिए कितना सुंदर सा पीले कलर का मैंने उनका पोशाक लिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं वृंदावन नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन इस्कॉन का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ झांसी में ही पूरा पूरा वृंदावन का माहौल दे दिया है। हरे कृष्णा।
0: वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में भी जन्माष्टमी के सिलसिले में 7 दिवसीय रासलीला समारोह चल रहा है। इस दौरान लोगों को श्री कृष्ण लीला की मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस अवसर पर पूजा अर्चना की और कृष्ण लीला का मंचन देखा। उन्होंने लोगों को मोहमाया से दूर होने के श्री कृष्ण के संदेश को अपनाने का भी संदेश दिया।
2: भगवान ने जहां एक बार अपने हाथ से कोई भी चीज को छोड़ा, दोबारा उससे कभी मोह नहीं रखा। भगवान ने अपने कदम बढ़ाए जब गोकुल वृंदावन से, तो दोबारा हम कभी किसी साहित्य में उनको माखन खाते नहीं देखते। भगवान के हाथ से बांसुरी जो गोकुल वृंदावन में राधा को हाथ में सुपुर्द की, दोबारा उनके हाथ में कभी बांसुरी नहीं देखी गई। ऐसे कई सारी बातें जीवन के अंदर हम सब भी ऐसी कई चीजों से प्रेरणा पा सकते हैं।
0: वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी जन्माष्टमी से पहले भव्य कृष्णोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान मंच पर कलाकारों ने कृष्ण लीला से जुड़े प्रसंगों को जीवंत कर दिया। मर्दन सहित कई लीलाओं को देख भक्त भाव विभोर हो गए। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो तैयार हो जाइए क्योंकि कल दिन भर जीएनटी पर ऐसे ही तमाम तस्वीरें जन्माष्टमी से जुड़े हुए रंग हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा, क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान, जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

अंजना नंदन श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। लंका में अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका में माता सीता जी अशोक के पेड़ के नीचे शोक में बैठी। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे शोक में बैठी। अब शोक को मिटाएं कैसे, ये बड़ी चिंता। धन्य है हनुमान जी महाराज श्री वीर बजरंग बली, मानो क्या अद्भुत संकेत दिया। अशोक वृक्ष से माता सीता कह रही, हे अशोक तू अपने नाम का कम से कम लिहाज तो रख, हमारे शोक को मिटा। नाम अशोक है, मैं शोक में हूं, कम से कम अपने नाम की इज्जत तो रख। तो हनुमान जी को लगा शोक मिटाने वाला नाम तो एक ही है, वो राम नाम है, और हम राम कहेंगे तो ये पूछेंगी कौन है। तो हनुमान जी ने एक जुगति अपनाई। जुगति क्या अपनाई, जो मुद्रिका लाए थे वो हनुमान जी ने गिराई।

उस मुद्रिका में है राम। और जैसे ही इतना कहा माता सीता जी ने, तुरंत हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई, मुद्रिका में लिखा राम। और जैसे ही सीता माता की नजर मुद्रिका पर अंगूठी पर पड़ी तो अंगूठी को देखते ही मुंह से निकला राम राम राम राम। ऊपर बैठे हनुमान जी बोले बन गया काम। अब बन गया काम, राम राम कहा अब काम बन गया। और हनुमान जी मेरे पागलो एक बात तुम याद रखना, आराम कौन कौन पाना चाहता, हाथ उठाओ, आराम कौन कौन पाना चाहता है किसी भी चीज में, रोग में, बाधा में, जिंदगी में, पीड़ा में, समस्याओं में, आराम कौन कौन पाना चाहता, हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे उन्हें आराम लगा है क्या भाई, पेट ही खराब हो तो उठाओ। चलो आराम चाहिए, एक हमारे पास मंत्र है, कहो तो दें, दें। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, पूछो क्या, आ राम की शरण में राम राम कर। आ राम की शरण में राम राम कर, इससे मिलेगा आराम। तो जैसे ही माता सीता जी ने कहा राम राम राम, हनुमान जी बोले बन गया काम। लेकिन माता जानकी जी ने मुद्रिका तो पहचान ली, चकित चिताओ चिताओ मुद्री पहचानी, पर ये मुद्री आई कहां से? किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप सामने चले जाओ, हनुमान जी बोले हम जा नहीं सकते सामने, क्यों? राम जी ने रोका है, रोका। हां माता जानकी जी का जब ब्याह हुआ और अयोध्या आई तो अयोध्या में महलों के खंभों में बंदरों की आकृति बनी थी, वो दिखने में सजीवित लगते थे, उनको देखकर माताजी डर गईं पहले ही दिन। तो माता कौशल्या ने अंक में भर के कहा बेटी क्या हुआ? माता सीता बोली ये बंदर हैं, हमें इनको देखकर डर लग रहा। माता जानकी जी बोली, माता कौशल्या बोली ये बंदर तो हैं पर असली नहीं है, नकली है। तो जब वन को जाने लगे तो माँ कौशल्या ने राम जी को यही समझाया, बेटा जो आकृति देख करके डर जाती है उसको वन में मत ले जाओ, वहां तो जिंदा बंदर मिलेंगे, क्या हाल होगा। तो हनुमान जी को वही बात समझाई राम जी ने, सुनो जाना तो पर डायरेक्ट मत जाना, जब वो छवि देखकर डर जाती तो तुम्हें तो देखकर और डर जाएंगी, वानरा राम धीसम, आप तो वानरों के राजा हो तो सामने डर जाएंगी, इसलिए सामने मत जाना, डायरेक्ट मत जाना। इसलिए हनुमान जी ने ऊपर से ही एक उपाय किया, वो उपाय क्या था सुनो।

हनुमान जी लंका में पेड़ के ऊपर ही बैठकर कथा सुनाने लगे। क्या करने लगे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, कथा सुना रहे। तो किसी ने पूछा कि आप पेड़ पे क्यों बैठे? बोले कथावाचक ऊपर ही बैठता है, श्रोता नीचे बैठे, इसलिए हम ऊपर बैठे। अच्छा, बहुत अच्छी बात, पर एक बात और बता। हाँ, बोले आप कथावाचक हो? बोले बिल्कुल है। हनुमान जी बोले कथावाचक ऐसे वैसे नहीं, खानदानी। बोले खानदानी? हाँ, खानदानी कथावाचक क्या होता है? बोले हम पहले से ही कथा करते आ रहे। हनुमान जी से किसी ने कहा, तो किसी ने कहा कि कब से कर रहे? हनुमान जी बोले हमारा एक और रूप है। बोले कौन सा? बोले रुद्र रूप। शंकर अवतार में तो जब राम जी जन्म लेते तब हम कथा ही सुनाते, उस रूप में भी हम कथा सुनाते, इस रूप में भी हम कथा सुनाते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पायसु समय सिवासन भाखा। तो बोले उस रूप में भी हम कथा करते, इस रूप में भी कथावाचक है, तो हम खानदानी कथावाचक, क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर सुमन। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग। तो हम तो खानदानी कथावाचक हैं। तो किसी ने कहा कि लंका में और कथा? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, लंका में यदि कथा कर ही रहे तो पेड़ में छिपे क्यों? छुपे क्यों? हनुमान जी बोले लंका में छुपे ही रह के कथा कर ले, वही बहुत है। आओ, आओ, आओ, लंका में छुप के ही कथा हो जाए वही बहुत है, वरना रावण निपटा देगा। कथा बचाई में मिलती है दक्षिणा, मिलेगी मौत। इसलिए छुपके ही जान, इसलिए हनुमान जी छुप करके बैठे हुए कथा सुना रहे। रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जहां कथा सुनाना प्रारंभ की, माता जानकी जी का दुख भाग गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जहां दुख भागा, माता जानकी जी ने ऊपर देखा, कथा सुंदर है पर कथावाचक नहीं दिख रहा। कथा तो सुंदर है भाई, कोई बोल रहा हो पर दिख ना रहा हो, मन में आने ही लगता भाई कहाँ हो, कौन हो, दिखो तो। हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी ऊपर छुपे बैठे कथा सुना रहे। माता जानकी जी बीच में ही बोली, भाई कथा तो बड़ी सुंदर है, कथावाचक कौन है, दर्शन दो। हनुमान जी बोले माता कथा ही सुन लो, कथावाचक देखने लायक नहीं। तो माता जानकी जी बोली क्यों? हनुमान जी बोले माँ केवल कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। वानराराम धीसम, कहने वाला बंदर। माता जानकी जी ने कहा फिर भी सन्मुख आओ। जैसे ही इतना कहा तो तब हनुमंत निकट चली गया। जैसे ही निकट गए तो हनुमान जी बंदर, और जानकी माता ने जैसे ही देखा तो माता जानकी जी ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने माता जानकी जी को देखा। फिर बैठी मन विस्मय भयाऊ, मन में विस्मय हो गया। क्या विस्मय? कहीं रावण की कोई चाल तो नहीं, कोई रावण की करतूत तो नहीं है, चाल तो नहीं, चाल। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। देखो दूत कैसा होना चाहिए मेरे पागलो, याद रखना, दूत और पूत, पूत मतलब बेटा, याद रखना। दूत वही श्रेष्ठ है जो स्वामी के नाम को बढ़ाए, और पूत वही श्रेष्ठ है जो पिता के नाम को आगे बढ़ाए। और जितने यहां पर पुत्र बैठे हैं, युवान बच्चे बैठे हैं, युवान बहनें बैठी हैं, हम सभी युवान बच्चों से, युवान बेटियों से और बहनों से और भाइयों से प्रार्थना करेंगे। मेरे पागलों, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाने जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। इसलिए तुम ऐसा नाम कमाना, ऐसी उपलब्धि पाना, ऐसा यश कमाना कि तुम्हारी माँ या तुम्हारा पिता किसी गली से निकले तो तुम्हें देखकर, उनको देखकर के लोग कहें ये फलाने के पिताजी चले जा रहे हैं, माता जी चले जा रहे हैं। ऐसे पूत होना चाहिए। धन्य है हनुमान जी, क्या परिचय देते हैं। हनुमान जी से माता जानकी जी ने पूछा कौन हो?

माँ हम राम जी के दूत हैं। अच्छा, राम जी के दूत हो, एक बात बताओ। हाँ, नर बानर हूं संग कहूं कैसे? ये तुम बानर, राम जी नर, दोस्ती कैसे हो? कारण बताओ। हनुमान जी ने पूरा कारण बताया, लेकिन हनुमान जी ने बताया कैसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसका अर्थ का बड़ा महत्वपूर्ण होता बोलने का, कि कैसे बोलना चाहिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समझो, किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तो यदि कोई पड़ोसी कह दे कि भाई, कोई पूछे कि क्यों अमुक अमुक व्यक्ति का लड़का कैसा है, हमें बेटी का विवाह करना है, यदि वो कह दे खाते पीते घर के हैं, तो समझ जाना अमीर हैं। पर कोई कह दे पीता खाता है देखो, एक शब्द ऊपर नीचे किया, मामला बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया है? तो प्रेजेंटेशन, बोलने से प्रेजेंटेशन का बड़ा फर्क पड़ता है, कि कैसे बोल रहा, कैसे प्रस्तुतिकरण है, इसका बड़ा प्रभाव। यही कथा हम गा रहे, यही कथा कोई और भी गावे, तो सबकी अपनी प्रेजेंटेशन का महत्व होता है भाई, अपने अपने भाव का अर्थ होता है। तो ऐसे ही शब्दों का हनुमान जी ने प्रेजेंटेशन कैसी की, जरा सुनो। हनुमान जी ने नर बानरों का संग कैसे हुआ ये बताया, कैसे बताया, कपी

0: वचन बोले तो प्रेम पूर्वक। और प्रेम, अच्छा प्रेम की पहचान क्या है? जब प्रेम होता ना तब बातें नहीं, जवान नहीं बोलती, आंखें बोलती हैं। और जिससे प्रेम होता है उससे आंखें बोलती हैं। और मेरे पागलो, हनुमान जी जब बोलने लगे तो आंखों से आंसू बहने लगे, नेत्रधार बहने, नेत्रों से आंसू। अच्छा हंसा तो जा सकता पर जबरदस्ती रोया नहीं जा सकता। दो कारण से ही रो सकते, या तो प्रेम में ज्यादा खुशी में या ज्यादा दुखी में। कई लोग ऐसे उन्हें रोना आता ही नहीं, पर जो परमात्मा से प्रेम करते उन्हें रोना पड़ता है। जिन्हें परमात्मा से प्रेम का अर्थ है रोना, भक्ति का अर्थ है रोना, इसका पता तो आंखों से ही लगता। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, आंखों के आंसू को देखकर माता जानकी जी पहचान गई, ये साधारण नहीं है, ये जो कह रहे सच कह रहे। इसलिए माता जानकी जी ने कहा, माता जानकी जी के उपजा मन विश्वास, विश्वास भरोसा जाग गया। अंत में माता जानकी जी ने मान लिया, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास, ये राम जी का दास है। जैसे ही इतना कहा तो माता जानकी जी ने हनुमान जी से पूछा, एक बात बताओ, जितना हम प्रभु को याद करते हैं प्रभु तो नहीं करते हो, वो तो व्यस्त रहते, उनको हमारी याद आई? बताओ, हमें इतने दिन हो गया आज तक खबर नहीं ली। इतना प्रेम करते थे राम जी हमसे कि जब एक कौवा का रूप धारण करके जयंत आया तो उसके पीछे तीर लगा दिया, और हम इतने दिन से यहां हैं, रावण के पीछे कुछ नहीं लगाया। लगता है भगवान हमें भूल गए, भगवान ने हमें विसार दिया। अच्छा और कोई होता तो यही कहता कि आप ठीक कह रही, हम समझाएंगे, हम उन्हें समझाएंगे, ठीक से समझाएंगे, आप चिंता ना करो। लेकिन धन्य है हनुमान जी, दूत ऐसा होना चाहिए। हनुमान जी बोले, मां जितना आप प्रभु को याद करती हो प्रभु भी आपको उससे ज्यादा याद करते हैं। माता जानकी जी ने कहा, पर जयंत आया था तो तब तो तीर पीछे लगा दिया था, अब तो रावण हमें ले गया, आज तक पीछे नहीं लगाया। हनुमान जी खड़े होकर के बोले, मां हम भी तो राम जी के ही तीर बनकर आए, तीर बन करके ही आए हैं, रावण के पीछे भी तीर लगा दिया। माता जानकी जी बोली, कौन सा तीर? हनुमान जी बोले, आपके पुत्र रूपी दास रूपी तीर को राम जी ने लगा दिया। और बात भी सही है, जिमी अमोग रघुपति कर बाना यही भांत चलो हनुमाना, जैसे राम जी का बाण ऐसे हनुमान जी चले, तो बात बिल्कुल सही कही। हनुमान जी के पास भक्ति है, क्या है बोलो, अरे जोर से तो बोलो, भक्ति है। भगत जी एक बात बहुत सिद्धांतिक रूप से है, आप भगवान के पास जाएंगे तो भगवान आपको दो चीजें सामने रख देंगे, एक माया एक भक्ति। जब भी आप भगवान के पास जाएंगे भगवान दो चीजें सामने रखेंगे, एक माया एक भक्ति। भगवान आपसे कहेगा आप चुनो, ज्यादातर लोग माया को चुनते हैं, बुरा न मानना, यहां छत्तीसगढ़ में जितने यहां कोरबा में कथा में बैठे, ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। भगवान को नहीं चाहते, ना ना ना, भगवान से चाहते। ये भक्ति नहीं है, जो भी तुम नारियल में अर्जी लगाओ, इतना लड़का की शादी हो जाए, मोड़ी ठीक हो जाए, टुरी टुरामन की बुद्धि ठीक हो जाए, और जो है मकान बन जाए, दुकान हो जाए, ये भगवान को ऊपर कहो कि आज तो हम भक्ति करे आए, ठटरी के मरे हलवा भक्ति करे आए, ये भक्ति नहीं है। दो प्रकार से होता है, या तो तुम भगवान को चाहो या भगवान से चाहो। भगवान से चाहोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, और भगवान को चाहोगे तो तुम दुनिया को नचाओगे। तो भगवान के पास जाओगे तो दो वस्तुएं मिलेंगी, एक माया एक भक्ति। भगवान कहेंगे मांगो, तो आप क्या लोगे है? बोलो बोलो क्या लोगे, माया के भक्ति दमा दो, तुम बताओ। ज्यादा गहरी कथा नहीं हमें सुनानी चाहिए, पता लगे इनकी जिंदगी आज ही शुरू हुई, आज ही बैराग्य जग जाए। फिर भी दमा दो, कोई बात नहीं। सुनो सुनो, क्या मांगोगे भगवान से? माया के भक्ति? अरे बोला, हाँ भक्ति। भक्ति कौन कौन मांगना चाहता? हाथ उठा। वाह, सब सबरी मीरा भाई, सब छत्तीसगढ़ में आ गए। अच्छी बात, चलो बहुत अच्छी बात। ये तो प्रसन्नता की बात है कि आप लोग समझ पा रहे। हाँ, तो भगवान से मांगोगे माया या भक्ति? तो भगवान से पूछा जाए कि माया में क्या फायदा और भक्ति में क्या फायदा, तो भगवान एक उत्तर देंगे। पूछो क्या? भगवान कहेंगे, सुनो बेटे, यदि तुम्हें खुद नाचना है तो माया ले लो, यदि तुम्हें हमें नचाना है तो भक्ति ले लो।
1: भगत, क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा? क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा विधान? जन्माष्टमी पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। वृंदावन में बांके बिहारी से लेकर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर तक में उमड़े श्रद्धालु मंगला आरती में हुए शामिल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों की भव्य और दिव्य सजावट, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर। आज आधी रात 12 बजे होगा कान्हा का महाअभिषेक। झांसी में गहराए कृष्ण भक्ति के रंग, यूथ फेस्टिवल में भगवान विष्णु के 12 स्वरूपों का भव्य मंचन, कथक में दिखी कृष्ण लीला, भजन रैप ने बांधा समय। श्री हरिकोटा से इसरो की EOS-5 मिशन की सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष से नॉटी बॉय दुश्मनों की करेगा निगरानी, आपदा प्रबंधन में भी मिलेगी मदद। महिला एशिया कप में भारत की धमाकेदार जीत, हांगकांग को 137 रनों से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची, मंदाना ने खेली 124 रनों की जबरदस्त पारी। फिल्मी फ्राइडे में आज मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, देवेंद्र, जितेंद्र कुमार और रवि किशन मुख्य भूमिका में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: आज देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। जन्माष्टमी पर दुल्हन की तरह सजी कान्हा की नगरी मथुरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया, जन्मभूमि परिसर में खास सजावट और झांकियां तैयार। कान्हा की जन्मोत्सव को लेकर ब्रज में उत्साह चरम पर पहुंचा, मथुरा वृंदावन में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। कान्हा के लिए तैयार हुई रेशमी पोशाक और खास जेवर, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए पूरा ब्रज हुआ कृष्णमय। आज आधी रात 12 बजे होगा कान्हा का महाअभिषेक, जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण की विशेष आरती हुई। मथुरा में जन्माष्टमी पर प्रेम मंदिर का अद्भुत रूप सामने आया, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा प्रेम मंदिर। भव्य सजावट ने मंदिर की खूबसूरती में लगाई चार चांद, श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर प्रेम मंदिर में दिखेंगी भव्य श्री कृष्ण की झांकियां। रात में लेजर लाइट शो से बढ़ेगी मंदिर की रौनक, जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद। रात 8 बजे से विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, संकीर्तन और लाइव दर्शन से भक्तिमय होगा माहौल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में कहा, भक्ति स्तंभ कान्हा का किया उद्घाटन, ब्रज को देंगे 977 करोड़ की सौगात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुबह 4 बजे से खुला इस्कॉन मंदिर, ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में मंगला आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हरे रामा हरे कृष्णा के महामंत्र का जाप गूंज उठा इस्कॉन टेंपल, ढोल मंजीरों की गूंज से गूंजा माहौल, भक्ति में झूमे श्रद्धालु। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की भव्य तैयारी, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा पूरा मंदिर परिसर। दिल्ली के द्वारका में स्थित इस्कॉन टेंपल में मंगला आरती, भगवान श्री कृष्ण की आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर दिन भर विशेष कीर्तन, भव्य श्रृंगार से सजे भगवान। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में स्थित नए इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की भव्य तैयारी। गोकुलधाम थीम पर इस्कॉन टेम्पल की भव्य सजावट की गई। फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया मंदिर। 5600 से ज्यादा तरह के व्यंजनों का लगेगा महाभोग। जन्माष्टमी पर तैयार हुआ 1108 किलो का विशाल केक। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। दिव्य ज्योति जागरण संस्थान की ओर से आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु।

0: वेद पाठ से शुरू हुई आध्यात्मिक प्रस्तुतियों की श्रृंखला, भजन क्लबिंग ने गीतों और भजनों की शानदार प्रस्तुति से बांधा समां। महोत्सव की खास थीम कृष्ण जन्म ले यदि आज। महोत्सव में लाखों लोग लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े, द्वारका में गूंजेगा कृष्ण भक्ति का रंग।
1: ये सबको आता है ना भजन।
0: जन्माष्टमी के मौके पर बद्रीनाथ मंदिर में पहली बार की गई रंग बिरंगी लाइटिंग, रोशनी से नहाया मंदिर, रात में बेहद खूबसूरत और अद्भुत नजर आया। पहाड़ों पर बादलों के बीच चमकता बद्रीनाथ धाम लगा बेहद आकर्षक, ऐसा लगा जैसे आसमान के सारे सितारे मंदिर पर उतर आए। कान्हा के जन्मदिन के लिए बद्रीनाथ मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, छत से लेकर पूरे परिसर में चमकती लाइटें धाम की सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। मंदिर का ये नया और अनोखा रूप देखने के लिए भक्तों की जुटी भारी भीड़, हर कोई इस भव्य और अलौकिक नजारे को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। सजावट का सारा काम हो चुका है पूरा, अब श्रद्धालुओं को बस कल रात भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का इंतजार है। द्वारका में भगवान कृष्ण की 5253वीं जन्मोत्सव की भव्य तैयारी पूरी हुई, तो वहीं मंदिर में दर्शन और पूजन के समय खास बदलाव देखने को मिला। जन्माष्टमी पर सुबह 6 बजे भगवान द्वारकाधीश की शुभ आरती, इसके बाद अलग अलग समय पर श्रद्धालुओं को होंगे भगवान के दर्शन। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक जगत मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा, शाम 5 बजे फिर दर्शन शुरू होंगे और रात 9 बजे तक जारी रहेंगे। रात 12 बजे भगवान द्वारकाधीश का भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा, मध्य रात्रि से सुबह 2:30 बजे तक श्रद्धालु विशेष दर्शन कर सकेंगे। जन्माष्टमी पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कड़ी रहेगी, पुलिस और मंदिर प्रशासन ने पार्किंग और भीड़ नियंत्रण की खास व्यवस्था की है। जयपुर में जन्माष्टमी की भव्य तैयारी की गई, गोविंद देव जी मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की उम्मीद। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, इस दौरान 31 तोपों की सलामी और विशेष आतिशबाजी भी
2: नजर आने वाले
0: हैं। श्रद्धालुओं की एंट्री सिर्फ जलेब चौक के बांदरवल गेट से होगी, दर्शन के बाद बाहर निकलने के लिए अलग रास्ता तय किया गया है। जन्माष्टमी पर मंदिर और आसपास 12 सेक्टर्स में सुरक्षा रहेगी, एआई कैमरा, सीसीटीवी और फेस रिकॉग्निशन से भीड़ पर नजर रखी जाएगी,
2: वो पूरी हो सके जगह जगह।
0: ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो की सलाह, क्यूआर कोड से पार्किंग, ट्रैफिक और वैकल्पिक रास्तों की मिलेगी जानकारी। स्टोरीज ऑफ इंडियन सिटीज यात्रा की खास पहचान होगी एक अनोखी आर्ट कार, राजस्थानी कठपुतली, तो वहीं बादला कला और लकड़ी के खिलौनों से सजी ये कार चलती फिरती आर्ट गैलरी। राजस्थान अब सिर्फ किलों और महलों से नहीं बल्कि अपने लोगों और लोक कलाओं से पहचाना जाएगा, स्टोरीज ऑफ इंडियन सिटीज का पहला चैप्टर राजस्थान से शुरू होगा। चार से 23 सितंबर तक राजस्थान में करीब 3,500 किलोमीटर की यात्रा होगी, टीम कलाकारों, शिल्पकारों और स्थानीय लोगों की अनकही कहानियां जुटाएगी। अभियान में राजस्थान के खान पान और पुरानी वास्तुकला की कहानियां भी दर्ज होंगी, तो वहीं बावड़ियों, कुंडों और टांकों जैसे पारंपरिक जल स्रोतों पर भी खास फोकस रहने वाला है। इस पहल का मकसद राजस्थान की जीवित संस्कृति को दुनिया के सामने लाना है, कहानी सिर्फ विरासत की नहीं बल्कि उन लोगों की होगी जो इसे आज भी जिंदा रखे हुए हैं। अंतरिक्ष में भारत की एक और लंबी छलांग, इसरो का GSLV-F17 मिशन सफल लॉन्च, तो वहीं श्रीहरिकोटा से EOS-5 ने भरी उड़ान। EOS-5 भारत का खास जियो इमेजिंग सैटेलाइट, अंतरिक्ष से होगी भारत की हाईटेक निगरानी। हर 30 मिनट में व्यापक क्षेत्र की मिलेगी कवरेज, हर 5 मिनट में खास इलाके को मिलेगी तस्वीर, आपदा प्रबंधन को मिलेगी नई ताकत। सुरक्षा निगरानी में भी बड़ा फायदा, EOS 5 से पृथ्वी की लगातार निगरानी, भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। EOS 5 की लॉन्चिंग बनी आकर्षण का केंद्र, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे छात्र, तिरंगा लहराकर छात्रों ने बढ़ाया हौसला। क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए आई गुड न्यूज, महिला एशिया कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, भारत ने हांगकांग चाइना को 137 रनों से हराया। शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बना भारत। स्मृति मंधाना ने खेली रिकॉर्ड तोड़ 124 रनों की पारी, मंधाना ने महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनाया बड़ा रिकॉर्ड। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी टीम इंडिया ने बरपाया कहर, दीप्ति शर्मा ने झटके 3 विकेट, हांगकांग चाइना की पूरी टीम महज 56 रनों पर सिमटी। भारत ने एशिया कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की, अब पाकिस्तान के खिलाफ होगी भारत की अगली भिड़ंत। संबलपुर से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर में गोवर्धन पीठ पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान ने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद का आशीर्वाद लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने शंकराचार्य से लिया आध्यात्मिक मार्गदर्शन, धर्म और जन कल्याण को लेकर हुई चर्चा, सनातन परंपराओं के सम्मान का संदेश दिया। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने गोलाघाट के निघ्रीटिंग शिव दौल मंदिर में लगाई हाजिरी, विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर को बड़ा पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी, निघ्रीटिंग शिव दौल के लिए बनेगा खास टूरिज्म प्रोजेक्ट। कोलकाता में बांग्ला सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार की जन्मस्थली पर फिल्म फेस्टिवल, तो वहीं सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन। नेपाल में आपदा राहत में भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, भारतीय वायुसेना को 2 और C-130 विमान नेपाल पहुंचे।

नेपाल में बाढ़ पीड़ितों की याद में कैंडल लाइट विजिल। काठमांडू के बौद्धनाथ स्तूप पर जुटे लोग कैंडल जलाकर बाढ़ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। बौद्धनाथ स्तूप पर दिखा भावुक माहौल। नेपाल बाढ़ त्रासदी मृतकों के लिए प्रार्थना की गई। बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए प्रति संवेदना व्यक्त की गई। नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के लिए दुआओं का दौर जारी। नुवाकोट में लापता लोगों की तस्वीरें मठ में रखकर की गई प्रार्थना। रिश्तेदारों की आंखों से छलके आंसू। बौद्ध भिक्षुओं ने पवित्र आत्मा की शांति के लिए पूजा की। हिंदू रीति रिवाज से किए गए कर्मकांड। मच अवेटेड फिल्म मिर्जापुर द मूवी आज बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार और रवि किशन मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं।

0: फिल्म द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट का पहला रोमांटिक गाना रिलीज हुआ. सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया के बीच दिखी जबरदस्त लव के.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
3: गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट

0: आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं

0: हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की, इसके महिमा की और इसके पूजा विधान की। अब जान लेते हैं दिनांक 4 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी का महत्व क्या है और जन्माष्टमी का अर्थ क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, यानी जन्म हुआ था अष्टमी को, इसीलिए इसको जन्माष्टमी या श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं।

0: भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न, वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जब जन्माष्टमी मनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है ऐसे लोग जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की विशेष पूजा कर सकते हैं और भगवान कृष्ण की विशेष पूजा से जीवन में लाभ पा सकते हैं। जन्माष्टमी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, जन्माष्टमी पर वैसे तो भगवान कृष्ण की उपासना मध्य रात्रि में की जाती है, लेकिन उसमें नक्षत्र का, लग्न का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा कब होगी? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न और वृषभ राशि में हुआ था, इसीलिए जन्म का उत्सव वृषभ लग्न में मनाया जाता है। जन्मोत्सव का आरंभ वृषभ लग्न में किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 4 सितंबर को मध्य रात्रि में 12:13 तक रहेगी। इसी मध्य रात्रि के समय में वृषभ लग्न में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वृषभ लग्न 4 तारीख को लगभग 12:05 पर समाप्त हो जाएगा, यानी वृषभ लग्न के समाप्त होने के पहले 12:05 के पहले ही जन्मोत्सव की शुरुआत कर लेनी चाहिए। यानी वृष लग्न में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की अगर आप शुरुआत कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जन्माष्टमी पर पूजा विधान क्या होगा इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो जन्माष्टमी मनाने का समय आपने जान लिया, अब किस प्रकार से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा वो भी आपको बताते हैं। प्रातः काल स्नान करके 12 के पहले व्रत का या पूजा का संकल्प लीजिएगा कि मैं आज व्रत रखूंगा या रखूंगी और आज मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करूंगी या करूंगा। दिन भर जल और फल ग्रहण करके व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, और अगर दवाई आदि खाते हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, तो जो आहार ग्रहण करें वो सात्विक आहार होना चाहिए। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की मेटल की प्रतिमा को किसी पात्र में रखें, उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा से और अंत में घी से स्नान करवाइएगा। इसको पंचामृत स्नान कहा जाता है। इसके बाद जल से स्नान करवाइएगा। ध्यान रखिएगा कि जो चीजें आप अर्पित करेंगे, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, जल, ये शंख में डाल करके भगवान कृष्ण को अर्पित की जाएंगी। उसके बाद उनका शरीर पोंछिएगा और उन्हें पीले वस्त्र पहनाइएगा, पीतांबर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण को झूले में बैठा करके झूला झुलाइएगा। भगवान कृष्ण को झूला झुलाना एक बड़ी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसका पालन करना चाहिए, और झूला झुलाकर प्रेम से अपनी कामना भगवान कृष्ण से कहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, इस सरल तरीके से भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो आपको भगवान कृष्ण की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त होगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को एक बांसुरी अर्पित करिएगा। बांसुरी अर्पित करके अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन की तमाम समस्याएं बड़ी आसानी से दूर होती जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 4 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। चार सितंबर शुक्रवार प्रातः काल भगवान कृष्ण को चंदन का तिलक लगाइएगा, फिर वही तिलक अपने आप को अपने कंठ या माथे पर लगा लीजिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं, तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबर। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। वृंदावन में बांके बिहारी से लेकर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर तक में उमड़े श्रद्धालु मंगला आरती में हुए शामिल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों की भव्य और दिव्य सजावट रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर। आज आधी रात 12 बजे होगा कान्हा का महाअभिषेक। झांसी में गहराई कृष्ण भक्ति के रंग। यूथ फेस्टिवल में भगवान विष्णु के 12 स्वरूपों का भव्य मंचन। कथक में दिखी कृष्ण लीला। भजन रैप ने बांधा समा। श्रीहरिकोटा से इसरो के EOS-5 मिशन की सफल लॉन्चिंग। अंतरिक्ष से नोटी बॉय दुश्मनों की करेगा निगरानी। आपदा प्रबंधन में भी मिलेगी मदद। महिला एशिया कप में भारत की धमाकेदार जीत। हांगकांग को 137 रनों से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। मंदारा ने खेली 124 रनों की जबरदस्त पारी। फिल्मी फ्राइडे में आज मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार। पंकज त्रिपाठी अली फजल देवेंदु जितेंद्र कुमार और रवि किशन मुख्य भूमिका में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
6: नमस्कार।
5: श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार या उत्सव नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के जन्म को किस तरीके से आप मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसकी क्या महिमा है, उसके बारे में विस्तार से पंडित जी से जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।

0: तपस्या से परेशान हैं तो जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को बांसुरी और पीला वस्त्र अर्पित कर दीजिएगा। अपने घर में या मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण को बांसुरी और पीला वस्त्र अर्पित करके प्रार्थना करें, संतान संबंधी समस्याएं हल होंगी।
1: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 4 सितंबर 2026 यानी दिन शुक्रवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 4 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 11:04 तक चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: तो चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जन्माष्टमी का महत्व क्या है, क्योंकि सबके हृदय में प्रेम भरने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हुआ था, लेकिन असल मायने जन्माष्टमी के क्या
0: जी। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है और इसका अर्थ क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होने की वजह से इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। जन्म की अष्टमी भगवान कृष्ण की है, इसीलिए इसको जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न, वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण की कृपा से हर बाधा दूर हो जाती है। अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं तो आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, वो लोग अगर जन्माष्टमी पर विशेष पूजा करें तो उनको लाभ हो सकता है, चंद्रमा से संबंधित समस्याएं दूर हो सकती हैं।
1: तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष राशि और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मेष राशि, करियर में आपके उन्नति की संभावनाएं बन रही हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम की शुरुआत हो सकती है, अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा कब होगी? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आइए पंडित जी से इसके बारे में जान लेते हैं।
0: देखिए, जन्माष्टमी का जब पर्व मनाते हैं तो लग्न का समय का बड़ा ध्यान दिया जाता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा कब होगी? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वृषभ लग्न में और वृषभ राशि में, इसीलिए वृष लग्न का जब समय होता है उसी समय में उत्सव की शुरुआत की जाती है। इस बार अष्टमी तिथि 4 सितंबर को मध्य रात्रि 12:13 तक रहेगी। इसी मध्य रात्रि के समय में वृषभ लग्न में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वृषभ लग्न रात में लगभग 10:20 पर शुरू होगा और मध्य रात्रि में 12:05 पर समाप्त हो जाएगा। तो आपको जो जन्मोत्सव मनाने की शुरुआत करनी है वो 12:05 के पहले शुरू कर लीजिएगा। जन्मोत्सव की शुरुआत वृषभ लग्न में ही कर लेना बेहतर होगा।
1: तो चलिए, बातचीत का ये जो सिलसिला है यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें। पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपका सवाल लेने का। तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न अनुराग अवस्थी जी ने हमें लिखा है और अनुराग जी हमें गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मार्च 1982। जन्म का समय सुबह के 7:10। जन्म स्थान है कानपुर। अनुराग जी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है, आगे मुझे नौकरी कब तक मिलेगी, क्या मुझे किसी व्यापार की तरफ जाना चाहिए। अनुराग जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी की तरफ ही रहना चाहिए और नौकरी आपको अभी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। सितंबर अक्टूबर के महीने में हो सकता है आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो। व्यापार के लिए अभी विचार करना उचित नहीं है, अभी नौकरी में ही बने रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए उत्तम होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और अक्सर आपके जहन में ये सवाल आता है कि सवाल पूछना है, कैसे पूछे, तो आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ई मेल आई डी फ्लैश हो रही है। करना बस आपको इतना है कि इस ई मेल आई डी पर अपने सवाल लिख करके हमें भेज देने हैं, पंडित जी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए पंडित जी, अगला सवाल किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
0: अगला प्रश्न ऋचा ने हमें लिखा है और ऋचा हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1992। जन्म का समय रात में 9:15। जन्म स्थान है आगरा। ऋचा कह रही हैं कि मेरा अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह होने की क्या संभावना है और वैवाहिक जीवन मेरा कैसा रहेगा। ऋचा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी का समय चल रहा है, आपका विवाह किसी भी समय तय हो सकता है। ज्यादा संभावना बनती है कि साल 2027 के मध्य में आपका विवाह होना चाहिए और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए पंडित जी से आज जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जन्माष्टमी का पर्व आखिरकार किस तरीके से मनाएं।
0: अब आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी पर किस प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, किस प्रकार जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। प्रातः काल स्नान करके जन्माष्टमी के व्रत का या पूजा का संकल्प लीजिएगा। दिन भर जल और फल ग्रहण करिएगा, सात्विक रहिएगा। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की मेटल की प्रतिमा को किसी पात्र में, किसी बड़े बर्तन में रखें। उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद, फिर शर्करा और अंत में घी से स्नान कराइएगा। इसको पंचामृत स्नान कहा जाता है और इसके बाद जल से स्नान कराइएगा। ध्यान रखिएगा, जो भगवान कृष्ण को आप अर्पित करेंगे वो शंख में रख करके चीजें भगवान कृष्ण को अर्पित की जाएंगी। जल से नहलाने के बाद उनका शरीर पोंछिए, उनको पीले वस्त्र यानी पीतांबर पहनाइए, फूल और प्रसाद अर्पित करिएगा और इसके बाद भगवान को झूले में बैठा करके झूला झुलाइएगा। झूला झुलाना एक विशेष प्रक्रिया है, इसलिए झूला झुलाकर प्रेम से अपनी कामना कहिएगा, अपनी मनोकामना भगवान कृष्ण से कहिएगा। इस सरल तरीके से आप जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं।
1: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखें, सेहत बिगड़ सकती है। ऑफिस में शांति बनाए रखें, खान पान में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: जन्माष्टमी के मौके पर किन मंत्रों और स्तुतियों से भगवान कृष्ण की उपासना कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, इस खास दिन आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: अब आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी पर जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो जाएगा तो आप कौन से मंत्र पढ़ेंगे, कौन सी स्तुतियों से भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। भगवान कृष्ण का नाम ही एक महामंत्र है, कर्षयते इति कृष्णः। जो दुनिया को, सृष्टि को आकर्षित करे वो कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण का नाम ही एक महामंत्र है, आप उनके नाम का जप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी आप जन्माष्टमी पर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए और आनंद के लिए मधुराष्टक का पाठ जन्माष्टमी पर करना चाहिए और श्री कृष्ण को गुरु के रूप में प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद् गीता का पाठ करें। गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करिएगा और अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण की विशेष कृपा पाने के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का एक बड़ा ताकतवर मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जप भी करना बड़ा अनुकूल है और नहीं तो कृष्ण नाम की या हरे कृष्ण महामंत्र की माला आप जप सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। संपत्ति का लाभ हो सकता है। रिश्तों के मामलों में सावधानी रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम के बोझ से परेशानी होगी। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। सफेद मिठाई का दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, किसी यात्रा पर जाने के योग हैं। करियर में धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए, जन्माष्टमी का मौका है, बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज का तीसरा सवाल लेने का। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किस व्यूअर का ले रहे हैं उसके बारे में जानकारी लें।
0: जी, अगला प्रश्न सीता देवी ने हमें लिखा है और सीता देवी हमें मेल लिखती हैं बिहार से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 26 फरवरी 1984। जन्म का समय रात में 11:10। जन्म स्थान है पटना, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे की पहले एक शादी हुई थी, वो शादी टूट चुकी है, डिवोर्स हो गया है, तो क्या आगे मेरे बेटे की दूसरी शादी होगी और उसका जीवन आगे कैसा रहेगा। सीता जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से साल 2027 के आरंभ में इनके दूसरे विवाह का योग बन रहा है। इस समय इनकी दूसरी शादी होगी और इनका विवाह इस बार इनकी अपनी इच्छा से होगा और दूसरा विवाह कुल मिला जुला के सफल रहेगा। एक अपने बेटे को आप माणिक्य पहना दीजिएगा, लगभग 6-8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करवाइए और अपने बेटे को कहिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए, इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं याद दिला देती हूँ कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना बस इतना है कि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, अपनी बर्थ डिटेल्स और साथ ही में अपना प्रश्न इस ईमेल आईडी पर आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। पंडित जी आपके सवालों का जवाब हमेशा की तरह जरूर देंगे। तो चलिए, आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
0: जी, अगला प्रश्न हीरा लाल जी ने हमें लिखा है और हीरा लाल जी हमें कानपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1961। जन्म का समय 9:00। जन्म स्थान है कानपुर। हीरा लाल जी कह रहे हैं कि मेरे व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, थोड़े बहुत कर्जे भी मेरे ऊपर चढ़ गए हैं, तो मेरे व्यापार की स्थिति कब तक बेहतर होगी और कब तक मुझे कर्ज से मुक्ति मिलेगी। हीरा लाल जी, आपके व्यापार की स्थिति अप्रैल 2027 के बाद बेहतर होती दिखाई दे रही है। अप्रैल 2027 के बाद स्थितियां बेहतर होंगी और आने वाले समय में साल 2027 और 28 में आप काफी हद तक अपने कर्जे चुका लेंगे। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो पंडित जी, एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती थी। जन्माष्टमी का मौका है, भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह भी है, लेकिन हमारे मन में तमाम तरीके की इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, तो जन्माष्टमी के दिन आखिरकार किस तरीके से पूजा उपासना कर सकते हैं भगवान कृष्ण की वो मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, और साथ ही में कौन सी मनोकामनाएं होती हैं जो विशेष तौर पर इस खास मौके पे पूरी होती हैं?
0: जी, शंकराचार्य जी ने कहा, एते चांस कला पुंसह श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दुनिया में जितने भी अवतार हैं वो अंशावतार हैं, कलावतार हैं, लेकिन परिपूर्ण भगवान अगर कोई है तो वो भगवान कृष्ण हैं। वैसे तो जन्माष्टमी पर आप उनकी स्तुति करके कोई भी वरदान पा सकते हैं, लेकिन एक बात आपको जाननी चाहिए कि अगर आपको संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है या संतान होने में असुविधा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको संतान गोपाल मंत्र का जप जन्माष्टमी की रात में करना चाहिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, और ये मंत्र पढ़कर संतान प्राप्ति की कामना करें, प्रार्थना करें, तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनका जन्मदिन 4 सितंबर को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। तो आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है इसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 4 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। इस साल अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रां राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे साल जप करिएगा, ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान आखिर क्या है।
0: देखिए, भगवान को जो फूल माला आप अर्पित करते हैं वो विशेष ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। इनको सूख जाने के बाद बिल्कुल भी इधर उधर या कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। इनको या तो जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। पूजा के फूल और पूजा की माला को इधर उधर फेंकना उचित नहीं होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जान लेते हैं 4 सितंबर 2026 यानी कि दिन शुक्रवार का शुभ पहर यानी कि अच्छा पहर काम करने के लिए कौन सा है।
0: दिनांक 4 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में श्री कृष्ण के मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से जीवन में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 4 सितंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु, कौन सी मेटल बेहतर होती है। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। जीवन में सफलता पाने के लिए, संघर्ष घटाने के लिए आपको चांदी धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन का उतार चढ़ाव और बेवजह का संघर्ष बंद हो जाएगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है पंडित जी से जानने का कि आखिरकार आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, अगर आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या करके जाएं कि आपकी यात्रा सुरक्षित हो। घर से निकलते समय भगवान के चरणों में कुछ धन रख दीजिएगा और भगवान से अनुमति लेकर उनको बोल करके तब यात्रा के लिए निकलिएगा। और यात्रा से वापस आ करके जो भगवान को थोड़े से पैसे अर्पित किए थे, ये किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी यात्रा लाभकारी होगी, यात्रा में किसी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी।
1: पंडित जी, हमेशा की तरह हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: क्या है भगवान कृष्ण का पूजा विधान? भगवान कृष्ण की पूजा से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है जन्माष्टमी की महिमा और पूजा के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर।

0: गणपति बाप्पा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं और गणेशोत्सव की रौनक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में बिखरी हुई है। बैलेंसिंग के राजा नाम से मशहूर मुंबई में परेल के महाराजा की गणपति की ऊंचाई 21 फीट है और इस बार एक नहीं बल्कि दो बैलेंसिंग मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। पहली खुद गणपति बाप्पा और दूसरी नारद मुनि की है। बाप्पा के आगमन पर उनके दर्शन के लिए लाखों की तादाद में भक्त सड़कों पर उमड़ पड़े और नाचते झूमते गाते बजाते हुए श्रद्धालु अपने महाराजा को पंडाल लेकर पहुंचे।
1: परेल के महाराजा के गणेश जी और सीधे पहले आपको उनका दर्शन करवाते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी खासियत बताएंगे। देखिए फिर से एक बार एक बहुत बड़ा चमत्कार मुंबई में देखने को मिला है। हाल ही में गणेश जी को उनके दरबार में ला करके विराजमान किया गया है। पिछले साल की आपको बात करें तो गणपति जी सिर्फ एक लेवल पर बैलेंस में थे, लेकिन इस बार देखिए दो दो बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले गणपति महाराज की खूबसूरती की आपको बात बताएं तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ये मंडल मनाने वाला है, यानी कि परेल के महाराजा मनाने वाले हैं। गणपति को देखिए किस तरीके से बहुत बढ़िया वीणा उन्होंने पकड़ रखा है, फूल हैं, और ख़ास बात ये है कि बाकायदा जिन पर वो सवार होकर चल रहे हैं ये नारद मुनि है, और नारद मुनि के क्या करतूत हैं, नारद मुनि किस तरीके से ईश्वरों के बीच में अपने आप को रखते थे, वो सारी कहानियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको बताएं कि नीचे से ऊपर तक 22 फीट की ऊंचाई तकरीबन जानकारी के अनुसार हमें मिल पाई है। और फिर से एक बार जैसे ही गणपति अपने दरबार के लिए निकली, उनका आगमन हुआ, फिर से वीडियो के जरिए सोशल मीडिया के जरिए एक बहुत बड़े लेवल पर वायरल होनी चीजें शुरू हो गई।
0: मुंबईकरों की तरफ से परेल के महाराजा को बैलेंसिंग का राजा का खिताब दिया गया है और वाकई में मूर्तिकार की कारीगरी भी देखने लायक है। यही वजह है कि हर किसी का ध्यान यहाँ के महाराज पर है।
2: पिछले साल जो महाराजा था 2023 और 2024 और 2025 तो महाराजा युद्ध के लिए निकला था, जो अपने दानव है उनका वध करने के लिए। तो जो वध करने के बाद जो सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेशन करने के लिए देवताओं के वो सेलिब्रेशन देवताओं में चालू है। वो सेलिब्रेशन के लिए नारद जी है वो खुद अपने कंधे पे बप्पा को बप्पा की सवारी लेके वो देव देवताओं में वो सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं। ये कंसेप्ट है ये साल अब हमने दिखाया है जो कि डबल बैलेंसिंग में है।
0: मुंबई की तरह ही नागपुर से गणपति पंडाल की एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडाल की तैयारियां अंतिम चरण में है। कारीगर पंडाल तैयार करने में रात दिन जुटे हुए हैं और तरह तरह की प्रतिकृतियां तैयार कर रहे हैं। सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडाल में बद्री विशाल से लेकर महाकाल तक की प्रतिकृतियां बनाई जा रही हैं।
3: महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नागपुर में इस समय हम हैं। गणपति बाप्पा के उत्सव की जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। सार्वजनिक पंडाल और घरों में 14 सितंबर को गणपति बाप्पा विराजमान होंगे। उससे पहले यहाँ पर तैयारियां जो है वो हम देख सकते हैं। नागपुर में सार्वजनिक जो पंडाल है जहाँ पे गणपति बाप्पा विराजमान होंगे वहाँ अलग अलग प्रतिकृतियां बनाने का काम इस समय चल रहा है, अंतिम चरण में काम है। इस समय हम एक नागपुर के सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडाल पर है जहां बद्रीनाथ धाम मंदिर की जो प्रतिकृति है जो बनाई जाने वाली है उसकी तैयारियां हम यहां देख सकते हैं। इस पंडाल में अंतिम चरण में तैयारियां जो है वो पहुंच चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नागपुर में सार्वजनिक पंडालों की बात करें तो अलग अलग पंडालों में अलग अलग मंदिरों की प्रतिकृति जो है वो तैयार की जा रही है। शहर में कहीं उज्जैन के महाकाल हो या फिर बद्रीधाम मंदिर हो या फिर तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, अलग अलग मंदिरों का जो प्रतिकृति है वो गणपति पंडाल जो है सार्वजनिक पंडाल बड़े पंडाल है वहां पर बनाई जाती है। इस समय हम देख सकते हैं यहाँ तैयारियां चल रही है। 14 सितंबर को गणपति बाप्पा घर और सार्वजनिक पंडालों में विराजमान होंगे।
0: पुणे में भी गणपति उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और दुकानों पर बेहद सुंदर मूर्तियां उपलब्ध है। छोटी बड़ी हर तरह की मूर्तियां रखी गई हैं। पुणे में इस साल कच्चे माल और मजदूरी की लागत बढ़ने के कारण गणेश मूर्तियां लगभग 20 से 30% तक महंगी हो गई हैं। लिहाजा पिछले

0: साल के मुकाबले मूर्तियां थोड़ी महंगी हैं।
1: अगले हफ्ते गणपति बाप्पा का आगमन होने वाला है। इसी गणपति बाप्पा को विघ्नहर्ता कहा जा रहा है, लेकिन इस साल इसी विघ्नहर्ता को लाने के लिए गणेश भक्तों को काफी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि इस साल गणेश मूर्ति में की जो दर है, जो प्राइस है, वो बढ़ गया है और 10-15% प्राइस बढ़ने की वजह से इसी गणपति बाप्पा को लाने के लिए गणेश भक्तों को कम से कम 200-300 रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी गणपति बाप्पा के भक्तों में काफी ज्यादा जोश है और इसी वजह से यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। तो गणपति की मूर्ति जो है पिछले साल कितने में मिलती थी और इस साल कितने में मिल
2: जो
1: रही है?
2: गए साल में 1000 के मूर्ति रहते, अभी इस साल में कम से कम 1200-1300 रुपए के आगे देना पड़ता है।
1: अच्छा, कितने फीट से लेके कितने फीट तक गणपति बप्पा हैं?
2: अपने इधर 12 इंच से 12 फीट तक मूर्ति में रहती है और ज्यादा से ज्यादा 20 फीट तक मूर्ति घर के लिए ज्यादा चलती है।
1: यहाँ पे चॉइस करने के लिए आए गणपति बाप्पा की मूर्ति, तो क्या लगता है यहाँ पर आने के बाद?
3: एक्चुअली मैंने बहुत जगह पे मूर्तियाँ देखी, बट कहीं पे भी ऐसे अट्रैक्टिव नहीं लगी या फिर पसंद नहीं आ रही थी कुछ भी। तो यहाँ पे आई तो मुझे फर्स्ट ही मूर्ति तुरंत बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए अभी हम देख रहे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि सभी मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर लगाई है, अभी कौन सी चॉइस करे वही बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन हुआ है।
0: सूरत में 17 फीट ऊंचे बाप्पा की आभा बता रही है कि गणेशोत्सव यहां भव्य ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा।
4: गणेश उत्सव को शुरू होने में अभी कई दिन बाकी हैं, लेकिन गणेश पंडालों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कहते हैं कि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा गणेश की स्थापना गुजरात के सूरत शहर में होती है। सूरत शहर में करीबन 1 लाख से अधिक छोटी बड़ी मूर्तियों का स्थापना किया जाता है और गणेश उत्सव के दौरान जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो गणेश मूर्तियों के जो भगवान के दर्शन करने आते हैं। और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीर है, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही हैं।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा दरअसल टिश्यू से बनाई गई है, जिसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है। शहर के सिटी लाइट इलाके में सरकार गणेश उत्सव नाम के ग्रुप ने इस अनोखी गणेश प्रतिमा को अंजाम दिया है।
5: हमारे मूर्ति की सबसे ज्यादा बड़ी व्यवस्था ये है कि विशेषता ये है कि इको फ्रेंडली मूर्ति है। जो जहाँ विसर्जन हम करते हैं वो एक ही जगह पे 4-5 घंटे में खुद ही मेल्ट होके विसर्जन हो जाती है। उसका एक ही रीजन है कि ये 350 किलो टिश्यू पेपर है, कार्डबोर्ड है और इको फ्रेंडली जो भी चीजें हैं वो हम इसमें यूज करते हैं, जिससे वो जल्दी से जल्दी विसर्जन हो जाए और समुन्द्र, तालाब या अन्य कोई भी जगह का नुकसान नहीं हो प्रकृति का।
0: जब विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा तैयार हुई तो सरकार गणेशोत्सव ने ढोल नगाड़ों और बाप्पा के जयकारों के बीच उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बाप्पा की स्वागत यात्रा में हिस्सा लेकर उनका आशीर्वाद लिया, जिनमें सरकार गणेशोत्सव के परिचित रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
6: पिछली बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए। बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: बाप्पा के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 14 सितंबर को पंडालों, मंदिरों और घरों में गजानन अलग अलग स्वरूपों में विराजमान होंगे, लिहाजा उनके आगमन की तैयारियों को लेकर अभी से रौनक दिखाई देने लगी है। बाधाओं और संकटों का नाश करने वाली विघ्नहर्ता गजानन के स्वागत के लिए हर ओर उत्सव का माहौल है। पुणे से कृष्ण पांचाल, नागपुर से योगेश पांडे और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ सूरत से संजय सिंह राठौर, गुड न्यूज टुडे।
7: लचकीला।

मैं हरि से मिलू कैसे जाए, मैं हरि से मिलू कैसे जाए, मैं हरि से मिलू कैसे जाए, मैं हरि से मिलू कैसे जाए, मैं हरि से मिलू कैसे जाए। गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरि से मिलू कैसे जाए। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरी बोल।

क्या है भगवान कृष्ण का पूजा विधान? भगवान कृष्ण की पूजा से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है जन्माष्टमी की महिमा और पूजा के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। वृंदावन में बांके बिहारी से लेकर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर तक में उमड़े श्रद्धालु मंगला आरती में हुए शामिल। डलौजी में धुंध के बीच जन्माष्टमी की धूम, कृष्ण भक्ति में डूबा शहर, कलाकारों ने पेश की झांकी। दही हांडी की रस्म के दौरान लोगों में दिखा उत्साह। झांसी में गहराए कृष्ण भक्ति के रंग, यूथ फेस्टिवल में भगवान विष्णु के 12 स्वरूपों का भव्य मंचन। कथक में दिखी कृष्ण लीला, भजन रैप में बांधा समा। श्रीहरिकोटा से इसरो के EOS-05 मिशन की सफल लॉन्चिंग। अंतरिक्ष से नॉटी बॉय, दुश्मनों की करेगा निगरानी, आपदा प्रबंधन में भी मिलेगी मदद। बढ़ते जलस्तर के बीच धनबाद में खोले गए मैथन डैम के 4 गेट। सतारा में कोयना डैम 100 फीसदी भरा, 6 गेट खोल दिए गए, 4,332 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। महिला एशिया कप में भारत की धमाकेदार जीत, हांगकांग को 137 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। मंदाना ने खेली 124 रनों की जबरदस्त पारी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
3: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जन्माष्टमी के इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी। तो जन्माष्टमी के इस पर्व पर हमारे साथ स्टूडियो में अरविंद जी भी मौजूद है। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए। वहीं हमारे साथ संजय जी भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी फिलहाल नजर डाल लेते हैं उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं जन्माष्टमी के साथ। कृष्ण भक्तों को आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आखिरकार आ ही गया। आज पूरा देश भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ है। हर ओर कान्हा के भजन सुनाई दे रहे हैं। अब इंतजार आधी रात को होने वाले कान्हा के जन्म के दर्शन का है।
4: तो वहीं जन्माष्टमी पर दुर्लभ संयोग भी देखने को मिल रहे हैं। इस बार जन्माष्टमी पर जयंती योग, स्वार्थ सिद्धि योग, हर्षण योग, हंस योग, मालवे योग और साधी बुद्धयाति राजयोग और नवपंचम महायोग भी बन रहा है।
3: आज भगवान कृष्ण का 5,253वां जन्मोत्सव देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के तमाम छोटे बड़े और प्राचीन मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर विशेष तैयारी की गई है। खासकर ब्रज भूमि में जहां जन्माष्टमी से जुड़े अनुष्ठान और पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए मथुरा और वृंदावन पहुंच रहे हैं। मथुरा में जहां आज सुबह श्रृंगार आरती हुई और भारी संख्या में श्रद्धालु कान्हा की श्रृंगार आरती में शामिल हुए।
4: यानी मथुरा से लेकर दिल्ली तक और काशी से लेकर मुंबई तक हर तरफ आस्था और भक्ति की बिहार बह रही है। कहीं पर भक्त नाचते गाते कान्हा की भक्ति में लीन है, तो कहीं पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम तस्वीरें आगे दिखाई।
3: उधर मुंबई में मशहूर दही हांडी उत्सव की तैयारियां भी अब अपने आखिरी चरण में हैं। कान्हा के जन्मोत्सव के ठीक एक दिन बाद दही हांडी उत्सव मनाने की परंपरा करीब एक सदी पुरानी है। इस उत्सव के दौरान 20 फीट की ऊंचाई तक रस्सी के सहारे लटकने वाली दही हांडी तक पहुंचने के लिए मानव पिरामिड बनाने की प्रथा है। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9:09 गुड न्यूज का।
4: आज देश भर के बड़े ही तमाम मंदिरों में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी पर कान्हा की नगरी मथुरा दुल्हन की तरह सज चुकी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा गई है। खास सजावट के साथ सुंदर झांकियां तैयार की गई हैं और आज आधी रात 12 बजे कान्हा का महाभिषेक होगा। जन्म के बाद भगवान कृष्ण की विशेष आरती होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दिल्ली का इस्कॉन मंदिर सुबह 4 बजे ही खुल गया। मंदिर में मंगल आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हरे राम हरे कृष्णा के महामंत्र के जाप से पूरा वातावरण गूंज उठा। ढोल मंजीरों की थाप और भजन के बीच श्रद्धालु भक्ति में झूमते हुए नजर आए। इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर दिन भर विशेष कीर्तन का आयोजन। वहीं जन्माष्टमी के मौके पर बद्रीनाथ मंदिर में पहली बार रंग बिरंगी लाइटिंग की गई है। रोशनी से नहाया मंदिर रात में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। छत से लेकर पूरे परिसर में चमकती लाइट की वजह से सुंदरता और में चार चांद लग गए हैं। सजावट का सारा काम पूरा हो चुका है। श्रद्धालुओं को बस आज रात भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का इंतजार है।
3: राजस्थान अब सिर्फ किलों और महलों से नहीं बल्कि अपने लोगों और लोक कलाओं की पहचान से जाना जाएगा। स्टोरीज ऑफ इंडियन सिटीज का पहला चैप्टर राजस्थान से शुरू होगा। यात्रा की खास पहचान होगी एक अनोखी आर्ट का राजस्थानी कठपुतली बदला कला और लकड़ी के खिलौनों से सजी एक कार चलती फिरती आर्ट गैलरी है। 23 सितंबर तक राजस्थान में करीब 3,500 किलोमीटर की यात्रा होगी। अभियान में राजस्थान के खान पान और पुरानी वास्तुकला की कहानियां भी दर्ज होंगी।
4: श्री हरिकोटा से इसरो के EOS-05 मिशन की सफल लॉन्चिंग हो गई है। सैटेलाइट से आपदा प्रबंधन मौसम की निगरानी और रणनीतिक सुरक्षा बेहतर होगी। ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से इमेजिंग कर भारत का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये उपग्रह हर 30 मिनट में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर लेगा और किसी खास क्षेत्र की निगरानी मात्र 5 मिनट के अंतराल में दोबारा पूरा करेगा।
3: पिता और बेटे के रिश्ते बरसों की नाराजगी और उसके पीछे छिपे प्यार की कहानी लेकर आ रही है फिल्म ओम का हरी। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। हरी व्यास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रघुवीर यादव पिता और अंशुमन झा बेटे के किरदार में नजर आएंगे।
4: क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए गुड न्यूज आई है। महिला एशिया कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत हुई है। भारत ने हांगकांग चीन को 137 रन से हरा दिया। शानदार जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है। स्मृति मंधाना ने रिकॉर्ड तोड़ 124 रन की पारी खेली।
3: नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर VVS लक्ष्मण इस महीने जापान में आईजी नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम के कोच होंगे। वहीं सुनील जोशी ऋषिकेश कानितकर और शुभदीप घोष टीम के कोचिंग स्टाफ के तौर पर लक्ष्मण के साथ रहेंगे।
4: चीन के जुहाई में एक रोबोट डॉग ने अपनी ताकत और तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया। एशिया पैसिफिक मीडिया फोरम से पहले पहुंचे मीडिया मेहमानों ने 220 किलोवोल्ट केन्युइन सबस्टेशन का दौरा किया। यहां पर उन्होंने फेयुन नाम के इंटेलिजेंट रोबोटिक डॉग के साथ रस्साकशी की। ये रोबोट 2.55 टन वजन वाली गाड़ी खींचने में सक्षम है। AI ड्रोन और रोबोट डॉग से लेस सिस्टम बिजली उपकरणों की जांच और खतरों का पता लगाने में मदद करता है। इससे जोखिम भरे काम मशीनों के जरिए किए जा रहे हैं।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शुभ समाचार में। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, अरविंद शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ हमारे साथ पंडित संजय शर्मा भी जुड़े हुए हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जिस दिन का कृष्ण भक्तों को बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आखिरकार आ ही गया।
1: तो आज पूरा देश भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मथुरा से लेकर दिल्ली तक और काशी से लेकर मुंबई तक हर तरफ आस्था और भक्ति के इस रंग बिखरे नजर आ रहे हैं। कहीं पर भक्त नाचते गाते कान्हा की भक्ति में लीन है, तो कहीं पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का दौर चल रहा है।
0: आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खुशी में मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, 7 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, 4 बजे से मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। श्रद्धालु अपने लड्डू गोपाल को नए वस्त्र और आभूषण पहनाकर उनका श्रृंगार कर रहे हैं। आज आधी रात को कान्हा का जन्म होगा और उनके दर्शन के लिए भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: मंदिरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भव्य सजावट पहले से ही की गई है। कहीं लाइटों से सजावट मंदिरों की गई है, तो कहीं फूलों से मंदिरों को सजाया गया है। और सिर्फ मथुरा ही नहीं, काशी, बद्रीनाथ, वहां पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। और मथुरा में काफी दिनों से सजावट की गई है और तैयारी पहले से की जा रही थी। आज कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए।
0: तो देखिए, श्री कृष्ण का आगमन होने वाला है एक बार फिर से। अब उनका जन्मोत्सव मनाया जाने वाला है। रात को 12 बजे उनका जन्म होगा। उनके स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं और कुछ इस तरह से उनके आगमन को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से हर मंदिर में भव्य रूप से सजावट की गई है। पूरा देश भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मथुरा हो या फिर दिल्ली, काशी हो या फिर मुंबई, हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। फूलों से, लाइटिंग से सारे मंदिरों को सराबोर किया गया है। प्रस्तुतियां यहां पर पेश की गई हैं और इसके अलावा जन्माष्टमी के रंग देखने को मिलने वाले हैं। झांकियां भी प्रस्तुत की जाने वाली हैं। कहीं भक्त नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं, कान्हा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, तो कहीं मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खुशी में मंदिरों को भव्य तरीके से किस तरह सजाया गया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जीएनटी के माध्यम से।
1: चलिए अब आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं मथुरा में, जहां आज सुबह श्रृंगार आरती हुई और भारी संख्या में कान्हा के लिए श्रद्धालु श्रृंगार आरती में शामिल। तो तस्वीरें मथुरा के जन्मभूमि की आप देख रहे हैं। मथुरा से दिल्ली तक हर तरफ रौनक है, लेकिन मथुरा में नजारा कुछ अलग ही है। सुबह सवेरे यहाँ पर श्री कृष्ण की श्रृंगार आरती की गई है। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर देश भर में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। कहीं पर झांकियां निकाली जा रही हैं, तो कहीं पर भजन किए जा रहे हैं। और ऐसे में सुबह सवेरे ये आप जन्मभूमि की तस्वीर देख रहे हैं। जन्मभूमि में श्री कृष्ण की श्रृंगार आरती की गई है और उसकी ये सीधी तस्वीरें। और आज कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तमाम तैयारी वहां पर की गई है। अलग प्रकार का भोग इस बार लगाया गया है और साथ ही 1008 लड्डू भी बनाए गए हैं।
0: तो मथुरा की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर किस तरह से पूजा अर्चना की गई है और यहां पर किस तरह आरती की गई है। ये बेहद दुर्लभ तस्वीरें हैं जो हम आपको जीएनटी के माध्यम से जिनके दर्शन करवा रहे हैं, श्री कृष्ण की झलक आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, आपको बता दें मौका कान्हा के जन्मोत्सव का है। हर तरफ भक्त कान्हा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। मथुरा की तस्वीर में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। और जब काशी से डमरू टीम ने मथुरा के मंदिर में रंग जमाया, तो भक्तों का उत्साह देखने लायक था। हर कोई कान्हा के रंग में रंगा हुआ नजर आया, भक्ति में लीन नजर आया, झूमते हुए अपनी आस्था जाहिर करते हुए नजर आया।
1: देश भर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, हर कोई कान्हा के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, कान्हा के जन्मोत्सव का ये नजारा। हर तरफ भक्त कान्हा की भक्ति में लीन है, एक अलग ही नजारा मथुरा में देखने को मिलता है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, भक्त कितने खुशी से श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। और काशी से पहुंची डमरू टीम ने मथुरा के मंदिर में रंग जमाया हुआ है।

0: और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अरविंद जी स्टूडियो में मौजूद हैं और पंडित संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरविंद जी, आपके पास आते हुए देखिए, जिस पल का सबको इंतजार था, इतने दिनों से मथुरा में जिस चीज की तैयारी चल रही थी वो आज आ गया है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो अरविंद जी, इस बार क्या योग बन रहे हैं, पहले से अब में इस बार इतनी खास क्यों है जन्माष्टमी?
1: जी, सबसे पहले भगवान की स्तुति करते हैं और GNT के माध्यम से पूरे देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सशंख चक्रम शकरेत कुंडलम शपित वस्त्रम सरशीरुहे क्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम।

0: श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे कि इस साल आपने पूछा क्या खास है, तो इस साल खास यह है कि रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि आज के दिन है। हालांकि जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र नहीं है, उससे थोड़ी पहले ही समापन हो रहा है, लेकिन विशेष बात यह है कि रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का संयोग और वृष राशि में चंद्रमा और सिंह राशि में सूर्य, ऐसा संयोग द्वापर में हुआ था, इसलिए आज की विशेष खास जन्माष्टमी है। और जन्माष्टमी पे किसी भी व्यक्ति को पूरे प्रयत्न के साथ भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव मनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में जो है, श्रीमद् भागवत गीता में जो नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में दसम स्कंद के पंचम अध्याय में नंदोत्सव के 18 श्लोक हैं। जैसे नंदोत्सव के 18 श्लोक हैं, उसी प्रकार पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, उसी तरह 18 पुराण हैं, और ये जो 18 का संयोग है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं। तो कहने का तात्पर्य, आज यदि कोई व्यक्ति पाठ करे तो जो नंदोत्सव के 18 श्लोक हैं उनका विशेष है। और मुझसे यदि विशेष जो कहें कि क्या सर्वोपरि है, जो मुझे विशेष प्रिय है, आज के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ, गीता, गर्भ गीता, गजेंद्र मोक्ष, यदि आप इनमें से किसी का करते हैं, और मैं विशेष जोर दूंगा कि आप विष्णु सहस्रनाम और गीता का पाठ करें, निश्चित रूप से आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी भी व्यक्ति के अंतिम चरण की जब पोजीशन आती है, जब उसकी अंतिम यात्रा का समय आता है, तो यही कामना करता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम सुचा। तुम सभी धर्मों को, सभी चीज़ों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, निश्चित रूप से मैं तुम्हें जो मोक्ष को प्रदान करूँगा। भगवान श्री कृष्ण का आज का जो व्यक्ति व्रत रहता है, जैसे आपको एक करोर एकादशी के व्रत से जो फल की प्राप्ति होती है, वह मात्र आज आप जन्माष्टमी का व्रत रहें तो फल की प्राप्ति होगी। आज के दिन किसी भी स्थिति में व्यक्ति को अन्न का त्याग करना चाहिए। जैसे एकादशी में अन्न का त्याग करते हैं, उसी प्रकार जन्माष्टमी में अन्न का त्याग करें। अन्न की जगह फलाहार ले लें। जलाहार नहीं रह पा रहे हैं, निराहार नहीं रह पा रहे हैं, तो फलाहार में रहें, लेकिन व्रत अवश्य रहें।
1: जी, तो व्रत बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी बातें आप बता रहे हैं अरविंद जी। इसी बीच संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पंडित जी ने जिस तरह से बताया, आज बेहद शुभ संयोग बन रहा है। आज के दिन पूजा का विधान क्या है, इसके बारे में बताइए। संजय जी, ठीक है, अरविंद जी से ये सवाल लेना चाहूंगी मैं। अरविंद जी, जो पूजा का विधान है, विधि क्या है, इसके बारे में बताइए।
0: बड़ा उत्तम प्रश्न किया। हर व्यक्ति आज जानना चाह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का पूजन कैसे करें। देखिए, जो भी आपके पास सामग्री हो, उस सामग्री में सर्वोपरि सामग्री है आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, ये सर्वोपरि है। सामग्री यदि कम है तो चलेगा। आज के दिन आप भगवान श्री कृष्ण यानी संतान गोपाल, लड्डू गोपाल, कान्हा की आप तस्वीर लाएं। यदि घर में पहले से तस्वीर है तो उसी तस्वीर का आपने पूजन करना है। और पूजन का मेन समय कौन सा है, पूजन का जो मेन समय आपका आएगा लगभग जो है 11:56 से लेके और 12:43 के बीच का टाइम है, यही आपका निशीत काल का समय है। लगभग 45 मिनट का समय, इस टाइम पे निश्चित रूप से आपको पूजन करें। कैसे करना है, आप रोली मोली, अगरबत्ती, धूप, दीप, कपूर, तांबूल आदि चीजें जो भी आप घर में अपने प्रसाद बनाते हैं, उन सबको इकट्ठा कर लें। लेकिन सर्वोपरि प्रसाद आपका होना चाहिए मक्खन। मक्खन जो है उनको बहुत अत्यधिक परम प्रिय है, तो आपका मक्खन मिश्री का जो है भोग निश्चित रूप से होना चाहिए। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र नूतन होना चाहिए, नूतन उनके वस्त्र होना चाहिए, नई मुरली होनी चाहिए, नए मोरपंख होना चाहिए, सब कुछ नया होना चाहिए। और झूला आपके पास होना चाहिए, और उस झूले में यशोदा अवश्य लिखें, यशोदा का झूला, क्योंकि उनकी जो प्रथम लालन और पालन हुआ है माँ यशोदा से हुआ है। तो आप भगवान श्री कृष्ण का विधिवत जो है पहले ध्यान करेंगे, इसके बाद उनका स्नान कराएंगे, फिर दूध से, दही से, घी से, शहद से और लास्ट में पंचामृत से, और उसी पंचामृत से जो आपका दक्षिणावर्ती शंख होता है उस शंख में पंचामृत से या आप दूध से या आप गंगा जल से जो आपके पास उपलब्ध हो सर्वोत्तम होगा, गोदुग्ध से या पंचामृत से आप कराएं। आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप जो है भगवान श्री कृष्ण का ओम क्लीम कृष्णाय नमः या आप जो है भगवान श्री कृष्ण का कोई भी मंत्र पढ़ लें, वह मंत्र आप बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद स्नान कराएं, उनको जो आप नवनूतन वस्त्र लाए हैं वो वस्त्र पहनाएं, वस्त्र पहनाने के बाद उनको चंदन आदि जो है लगाएं, वस्त्र पहनाने से पहले स्नान करा के यज्ञोपवीत जरूर उनको पहना दें, चंदन आदि लगाने के बाद जो है वस्त्र पहना दिए फिर चंदन आदि लगाने के बाद उनको आप जो है भोग लगाएं, भोग में यही माखन मिश्री आदि जो है लगाएं, फिर आप उनका धूप दीप नैवेद्य करें और लास्ट में आप आरती करें।
1: ठीक है अरविंद जी, जैसे कि आपने भोग का जिक्र किया, हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को माखन सबसे ज्यादा प्रिय है। संजय जी, माखन के अलावा, मक्खन के अलावा हम और क्या प्रभु कृष्ण को चढ़ा सकते हैं, क्या क्या भोग में बना सकते हैं?
2: जी, सबसे पहले आप सबको और चैनल जो भी रहे हैं कृष्ण जन्मदिन का नेत्रपाशी हो रहा है आप सब के लिए और भी विश्व के भाई के ऊपर कितनी सारे भगवान कृष्ण ने नेत्रपाशी कहा।
1: संजय जी आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अरविंद जी आपसे ही पूछना चाहेंगे कि माखन के अलावा हम और क्या चीज प्रभु को चढ़ा सकते हैं?
0: माखन के अलावा आप उनको कोई भी मिष्ठान चढ़ा सकते हैं, माखन मैंने विशेष बताया है। कोई भी बनी हुई आपके घर में यदि कोई आपने अपने हाथों से कोई प्रसाद बनाया है उससे उत्तम तो मैं नहीं मानता कि दुकान का कोई भी प्रसाद हो सकता है। आप दुकान से मीठा लाके चढ़ा सकते हैं, आप फल चढ़ा सकते हैं, नाना प्रकार के मोदक आदि हैं जो आपका उसमें दिल करे वो चढ़ा सकते हैं। कोई भी प्रसाद ऐसा मना नहीं है कि आप नहीं चढ़ा सकते हैं। पंजीरी आदि आप बनाएं उसको आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूँगा, व्रत से आपके चित्त की शुद्धि होती, जो आपको व्रत के लिए विशेष जोर दिया गया है उसकी शुद्धि किसकी होती है? मन की, शरीर की और चित्त की। जब मन शरीर चित्त आपका जो है पूरी तरह से शुद्ध होता है तभी आप भगवान का नाम भजते हैं। और एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, व्रत से भी ऊंची चीज है भगवान के नाम का जपना, और भगवान का नाम जपें, भजन करें, और 11:56 से और 12:43 के बीच का समय है इस समय से पहले आपको सोना नहीं है, इस समय से पहले बिल्कुल भी नहीं सोना है। और व्रत का पारण आप यदि रात में यदि करते आए हैं तो एक अलग बात है कर लें, नहीं तो व्रत का पालन आप व्रत का पारण जो करें वो आप जो है सुबह करें, नहा धुल करके बाकायदे सूर्य नारायण को अर्घ दे करके फिर आप व्रत का जो है पारण करें। और इसमें जो मंत्र का आप जाप करें, जैसे कृष्णाया वासुदेवाया हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये सर्वोपरि मंत्र होगा। उसके बाद यदि आपको कोई विशेष अच्छी पोजीशन से कर सकते हैं तो मैं सर्वोत्तम मानता हूँ विष्णु सहस्रनाम का पाठ, जिसमें कहा ही गया है यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे, अर्थात कि जो आपके करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करके आपको मोक्ष प्रदान करता है वह भगवान का नाम स्मरण है।
1: तो देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से कान्हा के लिए एक अनोखी और खास भेंट आई है। इस खास भेंट में मेवा मिष्ठान से लेकर कान्हा के लिए विशेष पोशाक और तरह तरह के भोग शामिल किए गए हैं। जन्माष्टमी के पावन मौके पर काशी से लाई गई इस भेंट को विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया गया है। और देखिए आस्था और भक्ति से सजी इस भेंट के जरिए काशीवासियों ने कान्हा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। और वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से कान्हा के लिए एक अनोखी खास भेंट लाई गई है। और इस खास भेंट में मेवा मिष्ठान से लेकर कान्हा के लिए विशेष पोशाक और तरह तरह के भोग शामिल है। जन्माष्टमी के पावन मौके पर काशी से लाई गई इस भेंट को विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भी किया गया। आस्था और भक्ति से सजी इस भेंट के जरिए काशीवासियों ने कान्हा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है।
3: तो देखिए ये भव्य दिव्य तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। काशी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काशी की गलियां इस वक्त सराबोर हैं लोगों की आस्था उनकी भक्ति से।

देखिए मथुरा में हर कोई आस्था के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। भक्त कान्हा की भक्ति में लीन है। नाचते गाते हुए जन्मोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ भक्ति में इस तरह से लीन है यहाँ पर भक्त। श्रद्धालुओं की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये तस्वीर। और जो भी यहाँ पर मौजूद होता है वो इस पल का साक्षी बनने के लिए ज़रूर यहाँ पर पहुँचता है।

0: रे ले काना बंसीवा रे की जय। आज हमारे कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, बहुत पूरे ब्रज मंडल में खुशियां ही खुशियां छा रही हैं। अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा है, और भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और हमको तो उसने पागल कर रखा है।
1: मनमोहन अखियां तेरी नौका के आकार, मनमोहन अखियां तेरी नौका के आकार, जो जन इसमें फंस गए तो यह गयो बेड़ा पार।
2: राधे श्याम चकाचक काम ले ले हमारे कन्हैया राधा जी को नाम, राधा राधा रटते ही सब व्याधा कट जाए, कोट जन्म की आपदा कन्हैया कैसे जाए। राधा राधा राधा राधा राधा।
3: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की देशभर की तस्वीरें आगे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
5: क्या है भगवान कृष्ण का पूजा विधान? भगवान कृष्ण की पूजा से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है जन्माष्टमी की महिमा और पूजा के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। जश्न में डूबे कृष्ण भक्त, आज आधी रात 12 बजे होगा कान्हा का महाअभिषेक। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आज मथुरा से विशेष कार्यक्रम, रात 9 बजे से होगा भव्य ड्रोन शो, 500 ड्रोन से दिखाई जाएंगी श्री कृष्ण की लीलाएं। डलहौजी में धुंध के बीच जन्माष्टमी की धूम, कृष्ण भक्ति में डूबा पूरा शहर, कलाकारों ने पेश की झांकी, दही हांडी की रस्म के दौरान लोगों में दिखा खासा उत्साह। झांसी में गहराए कृष्ण भक्ति के रंग, यूथ फेस्टिवल में भगवान विष्णु के 12 स्वरूपों का भव्य मंचन, कथक में दिखी कृष्ण लीला, भजन रैप ने बांधा समा। श्रीहरिकोटा से इसरो के EOS 5 मिशन की सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष से नॉटी बॉय दुश्मनों की करेगा निगरानी, आपदा प्रबंधन में भी मिलेगी मदद। बढ़ते जलस्तर के बीच धनबाद में खोले गए मैथन डैम के 4 गेट, सतारा में कोयना डैम 100% भरा, 6 गेट खोल दिए गए, 4,232 क्यूसिक पानी छोड़ा गया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: ब्रेक के बाद शुभ समाचार में आपका बहुत स्वागत है। आज पूरा देश भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ है। मथुरा से लेकर दिल्ली तक, हर ओर काशी से लेकर मुंबई तक, हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं।
1: कहीं कहीं पर भक्त नाचते गाते कान्हा की भक्ति में लीन हैं, तो कहीं मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खुशी में मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है।
0: श्रद्धालु अपने लड्डू गोपाल को नए वस्त्र और आभूषण पहनाकर उनका श्रृंगार कर रहे हैं। आज आधी रात को कान्हा का जन्म होगा और उनके दर्शन के लिए भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। कहीं पर रैप का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो कहीं पर विशेष प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। कहीं पर कृष्ण लीलाएं दिखाई जा रही हैं, तो कहीं पर भक्त आस्था में सराबोर झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें देश भर से आपके सामने हम रख रहे हैं। किस तरह से देश भर के तमाम मंदिर आज यहाँ भक्ति के रंग में रंगे हुए, जन्माष्टमी के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लग रहा है आज तमाम मंदिरों में।
1: कान्हा के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है और इंतजार है आज रात का, जब श्री कृष्ण के जन्म को लेकर हर श्रद्धालु मंदिरों में होगा और कान्हा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही होगी। तो तमाम तस्वीरें मंदिरों की भव्य सजावट से जुड़ी और श्रद्धालुओं की झूमती नाचते गाते हुई तस्वीरें अलग अलग मंदिरों से सामने आ रही हैं। इस्कॉन मंदिरों में भी आज कई तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं और श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, इसलिए आज मंदिरों में भीड़ कई ज्यादा है। और कहा जा रहा है कि 75,000 से ज्यादा श्रद्धालु आज मथुरा नगरी में ब्रजभूमि में पहुंचने वाले हैं। तो आस्था और भक्ति के ये रंग देश भर में देखने के लिए मिल रहे हैं। मुंबई में आज सुबह इस्कॉन मंदिर में मंगला आरती हुई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।

0: देखिए, मुंबई के इस्कॉन मंदिर की तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, अब आपको मथुरा लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं?
1: ये तो बताना मुश्किल है कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, लेकिन हमारे कैमरामैन कुंज बिहारी दिखाएंगे कि ये जो कृष्ण जन्मभूमि जाने का रास्ता है, ये रात से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार लोग, ऐसे तीन दरवाजे हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, और दर्शनों का आनंद यहाँ लगातार चल रहा है। आप मथुरा के किसी भी शहर में किसी भी गली और सड़क पर जाएं, वहां पर देश भर के कलाकार आए हैं, अलग अलग संस्कृति के संगीत का।

0: यहाँ पर वो इनके संगीत का आनंद उठा रहे हैं, लोग इन यादों को अपने अपने मोबाइल में समेट कर लेके जाना चाहते हैं ताकि इस जन्माष्टमी की यादों को आगे भी उसका आनंद उठाया जा सके, उस संगीत का आनंद उठाया जा सके। तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त है, क्योंकि एक तो ऐसे ही श्रीकृष्ण जन्मस्थान की सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त होती है, दूसरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं, आज इस मथुरा में हैं और कल ही वो मथुरा में आ गए थे, आज वो थोड़ी देर बाद जन्मस्थान पर कन्हैया जी के दर्शन करेंगे और गो पूजन करेंगे, हो सकता है कि गोदान का संकल्प भी करें यहाँ पर, और उसके साथ ही ये पूरी व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद ये जो भीड़ बिल्कुल बेतरतीब है वो तरतीब में आ जाती है और वहां जाकर रेलिंग शुरू हो जाती है और उस रेलिंग में एक एक करके लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं पूरी चेक जांच करने के बाद।
1: चलिए ठीक है संजय जी, आपके पास संजय जी एक बार जो भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे भी एक बार बात कीजिएगा, कितने उत्साहित वो नजर आ रहे हैं और कितना लंबा इंतजार यहाँ पर प्रभु के दर्शन के लिए करना पड़
2: रहा है। दर्शन करके आ चुके, इंदौर से आए थे,
0: सिर्फ यही दर्शन के लिए आए हैं जन्माष्टमी पर कान्हा के दर्शन
2: में घूमेंगे, हम बरसाना घूम चुके हैं, गोवर्धन का परिक्रमा दे चुके हैं,
3: वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ही रहता है और जो मुख्य पर्व है वो मथुरा में ही है। आज यहाँ बहुत ही अच्छे से और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जो दर्शन हो रहे हैं उससे आज मतलब मन प्रसन्न हो गया। बोल बाके बिहारी लाल,
0: हर चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। आप कहाँ से आई हो माता जी?
4: हम लोग मधेपुरा जिला उदयकिशनगंज प्रखंड से आए, मधेपुरा जिला उदयकिशनगंज प्रखंड से, बिहार से।
0: तो सिर्फ जन्माष्टमी पे कान्हा के दर्शन करने के लिए आए?
5: हाँ, दर्शन करने के लिए ही हम लोग आए हैं। जी जी,
0: आपने तो एकदम गोपी का रूप बनाया बेटा।
4: जी हाँ,
0: जब व्यक्ति आनंद में होता है तो उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके हाव भाव बता देते हैं कि अंदर क्या चल रहा है।
1: श्री कृष्ण जन्मभूमि में संजय जी आप मौजूद हैं, वहां पर रात को 12 बजे जन्म होने वाला है आज श्री कृष्ण का, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्या कुछ प्रक्रिया होने वाली है उनके स्वागत के लिए?
0: प्रक्रिया ऐसा है कि लगभग 40 क्विंटल से ज्यादा भोग प्रसाद बना है आज के लिए, इसके अलावा जो बांटने के लिए प्रसाद है वो तो लगभग 100 क्विंटल प्रसाद यहाँ पर बना हुआ है, जो हर भक्त को प्रसाद, हर भक्त जो भी आएगा वो प्रसाद लेकर जाएगा। इसके साथ ही जैसे ही रात 12 बजेंगे नगाड़े, शंख और करताल की ध्वनि से पूरा परिसर गूंज उठेगा। भगवान को आज विशेष पोशाक धारण कराई गई है और विशेष भोग उनके लिए अर्पित किया जाता है। जैसे ही 10:30 बजेंगे, 10:30 बजे के बाद गर्भ पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन और ये सारे पूजन की श्रृंखला शुरू होगी और जैसे ही 12 बजेंगे एक रजत कमल है उससे भगवान का प्राकट्य होगा और लाला कन्हैया के प्राकट्य के बाद पंचामृत से उनका अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद पहले तो जन्म आरती होगी ठीक 12 बजे, उसके बाद अभिषेक के बाद उनका नव श्रृंगार किया जाएगा और श्रृंगार आरती के बाद लोग दर्शन करेंगे और उसके बाद मंगला से नंदोत्सव शुरू हो जाता है। ये ब्रज के मंदिरों की परंपरा है।
1: मंदिरों की परंपरा तो बताइए आपने संजय जी, थोड़ी व्यवस्था के बारे में भी बताइएगा क्योंकि काफी ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए, भीड़ कई गुना है, तो ऐसे में मंदिर के अंदर कैसी व्यवस्था की गई है लाइन की कि हर श्रद्धालु आए और जल्दी से जल्दी वहां से दर्शन कर निकल जाए ताकि क्योंकि और श्रद्धालुओं को मौका मिले क्योंकि काफी भीड़ है।
0: जन्मस्थान मंदिर बहुत परिसर बहुत बड़ा है, लिहाजा भीड़ अगर बहुत नियमित और नियंत्रित ढंग से जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ज्यादा प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती है क्योंकि ऐसे ऐसे 4 दरवाजे हैं जहां से लोग जा रहे हैं और दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त है, जो आज तक देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो लेकर नहीं जा सकते हैं, मोबाइल लेकर नहीं जा सकते हैं, और जो कार की चाबियां होती हैं बोलने वाली वो नहीं लेके जा सकते, स्मार्ट वॉच लेकर नहीं जा सकते, तो इन सारी चीजों पर आम श्रद्धालुओं के लिए पाबंदी है। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से वो सारी चीजें उचित नहीं है और बाकी दर्शन करने जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जामा तलाशी देते हैं और जामा तलाशी देने के बाद फिर उनको अंदर मंदिर में प्रवेश।
1: जी संजय शर्मा जी ने बहुत सुंदर तस्वीरें हमें दिखाई और जिस तरह से श्रद्धालुओं का यहाँ पर जोश देखने को मिला है वो बताता है।

उनके स्वागत के लिए सबसे बढ़िया यह होगा कि जिस वक्त वह जो है क्षण आए 11:57 से वह क्षण शुरू होता है और मुश्किल से 2-3 मिनट का टाइम होगा, उस बीच आप बाकायदे संखत ध्वनि करें और जोर से आप जो है उनके नाम का संकीर्तन और भजन करें। वैसे तो मैंने बताया है कि जो उनके प्रकट उत्सव के जो श्लोक हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 स्कंध के 5 अध्याय में, उन श्लोकों का पाठ करना चाहिए। नहीं संस्कृत में आते हैं तो हिंदी में करना चाहिए। और मान लीजिए ये सब आपको कुछ नहीं आता है तो आप बाकायदे संखत ध्वनि करें और भगवान श्री कृष्ण का जो है बाकायदे कोई भी मंत्र का जो है आप नाम जाप करें या आप कीर्तन करें, उससे भी आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और जब भगवान का उत्सव जन्म हो जाए तो बाकायदे उनका श्रृंगार करें, श्रृंगार से पहले उनका स्नान आदि करें पंचामृत आदि से, श्रृंगार आदि करने के बाद उनके लास्ट में जो है उनके श्रृंगार का वर्णन करें। क्या? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष

0: चूड़ामणि। तो कहने का तात्पर्य कि आप इस तरह से उनके जो है श्रृंगार का वर्णन करें, और उसमें विशेष जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, मान लीजिए कुछ आपको नहीं आता है तो आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, विष्णु सहस्रनाम लगा लीजिए, आप जो है गीता लगा लीजिए, इन चीज़ों का यदि आप पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में हर तरह की वह उपलब्धि प्राप्त होगी जिस कामना से आप भगवान श्री कृष्ण का जिसको कहें कि स्वागत कर रहे हैं, उनका नाम जपन कर रहे हैं। और जिन महिलाओं को मान लीजिए संतान नहीं हो रहा है, यदि वो महिला आज के दिन बड़े अनन्य भाव से पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ संतान गोपाल मंत्र का जाप करे और भगवान संतान गोपाल लड्डू गोपाल का पूजन करे, निश्चित रूप से उसके जीवन में संतति की प्राप्ति होगी और सत प्रसत प्राप्ति होगी, क्योंकि संतान के दाता जो हैं वह भगवान श्री कृष्ण हैं। और संतान गोपाल मंत्र है, ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का जाप करें। और जिनकी शादी नहीं हो रही है वो भी इस टाइम पे संतान गोपाल मंत्र का जो है, जो लड़कियों की कन्याओं की शादी नहीं हो रही वो संतान गोपाल के मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से उनका दाम्पत्य जीवन शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। तो हर प्रकार से आपको भगवान श्री कृष्ण के लिए आज के दिन जो है जाप करें, पाठ करें, भजन करें, नहीं कुछ भी आपके पास है तो आप अपनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ जो है भगवान का नाम तो ले ही सकते हैं, इतना तो आप करें ही करें। उसके साथ साथ आप यदि और कुछ विशेष कर सकते हैं तो आपको जैसे मैंने मंत्र बताया था कि आपका जो विशिष्ट मंत्र रहेगा जिसको कहते हैं कृष्णाया वासुदेवाया हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाया गोविंदाय नमो नमः, यह भी नहीं बनता है तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, और यह भी आपसे नहीं बनता है तो आप भगवान का भजन कीजिए। कहने का तात्पर्य किसी भी रूप में किसी भी परिस्थिति में यदि आज आपने भगवान का नाम लिया, व्रत रखा, किसी भी तरह से आपने उनके प्रति यदि ज्यादा नहीं कह रहा 10 मिनट का भी टाइम आपने दे दिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है, धर्म के ही दम पे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, धर्म के ही बलबूते पे विष्णु पालन करते हैं और धर्म के ही बलबूते पे शिव संहार करते हैं। तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी में यदि कोई है तो है धर्म, और धर्मो रक्षति रक्षिता, जो व्यक्ति धर्म करता है उसकी रक्षा अपने आप में धर्म स्वयं करता है और उसको विशिष्ट रूप से जो है तो कीर्तिवान बनाता है।
1: अरविंद जी, आज के दिन जाप और व्रत का तो हमने महत्व समझा, अगर हम दान करने की बात करें संजय जी, तो आज के दिन क्या दान करना चाहिए और आज के दिन दान करने का महत्व कितना है?
2: जी, कहते हैं कि संसार रूपी सागर में जिसका भी जन्म होता है, और भगवान कृष्ण जो है मानव रूप में भगवान ने जन्म लिया है, और मानव रूप में जन्म लेते ही कहते हैं कि सभी बंधनों से मुक्त कर देते हैं भगवान। और गीता का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युच्वा, तो कहे पहला जो शब्द है वो धर्म ही है जीवन के अंदर, और धर्म के बिना कुछ भी जो है आगे नहीं बढ़ता। और आखिरी शब्द जो गीता का है मम है, जो 700 श्लोक भगवान ने बताए हैं। और दान का गीता में कहा गया है कि पह

0: कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अश्वकर्मणि। हर व्यक्ति को अपना कर्म सबसे पहले करना चाहिए। और कहा जाता है कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं, आत्म साक्षात करते हैं, तो वो एक प्रकार का दान है। और दान क्या है कि किसी को ज्ञान देना, जो है सबसे बड़ा दान है, अन्य का दान करना, और ऐसे समय में भक्ति का दान करना, मेडिटेशन सिखाना, साधना सिखाना, और सबसे बड़ा धर्म क्या है, समत्व रहना। कहते समत्व योग क्या है कि आपको हमेशा कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें आप जो है समान चित्त से रहें, कभी भी अपने मन को विचलित ना होने दें, और अपने स्वयं के धर्म का जो भी आपका कार्य है उस धर्म का पालन करें। अगर हो सके तो डेली नियम से मेडिटेशन करें और ध्यान करें, योग करें, साधना करें। और कहते हैं कि वैराग्य की प्राप्ति जब होती है, जब भक्ति का अनंत रूप जो है प्रारंभ हो जाता है, और ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, उनकी शरण में रहें, उनका ध्यान करते जाएं और आत्म साक्षात करें। अगर हो सके तो त्राटक करें, काम और क्रोध को जो है आज के दिन त्याग दें, और ईश्वर शरणम गच्छामि, भगवान के शरण में सदा रहें। और कहा जाता है कृष्ण सदा महायते, अर्थात भगवान कृष्ण जो है हमेशा जो है हमारी सहायता करते हैं। और दान की आपने बात कही, तो सबसे बड़ा कलयुग के अंदर जो दान है वो अन्न का दान है, उसको करें। और दान कहते कि सुपात्र को करें, कुपात्र को बिल्कुल भी ना करें। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जो है बाल में जब पैदा हुए, कहते हैं भगवान कृष्ण जो है विष्णु के आठवें अवतार हैं, और जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ, और नक्षत्र में होने के कारण जो है जब आए तो बाल रूप में ही उन्होंने जो है बहुत सारी क्रियाएं कर दी, जिस प्रकार से आपने देखा था कि अधर्म का धर्म सबसे पहले नाश किया, क्योंकि कंस का वध किया क्योंकि अधर्म का नाश करने के लिए। दूसरा बाल रूप जब था उनका, उसने पूतना का वध किया भगवान कृष्ण ने, माखन चोरी की, और कहा जाता है उखल बंधन, आपने देखा होगा कि उनकी माँ ने उनको जो है ओखली से बांध दिया, और कालिया नाग का जो है वध किया। तो भगवान कृष्ण की बड़ी सारी लीलाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन को सुख,
1: और श्री कृष्ण की लीलाओं की जितनी बात की जाए उतना कम है, समय उसके लिए कम पड़ जाएगा। बहुत जरूरी बातें आपने संजय जी बताई, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अरविंद जी और संजय जी हमारे साथ जीएनटी के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो श्री कृष्ण की आज दिन भर पूजा अर्चना की जा रही है, उनके स्वागत की तैयारियां जारी है, लगातार जीएनटी पर महाकवरेज इससे जुड़ी हुई जारी है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जश्न में डूबे कृष्ण भक्त, आज आधी रात 12 बजे होगा कान्हा का महाअभिषेक। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आज मथुरा में विशेष कार्यक्रम, रात 9 बजे से होगा भव्य ड्रोन शो, 500 ड्रोन से दिखाई जाएंगे श्री कृष्ण की लीलाएं। डलहौजी में धुंध के बीच जन्माष्टमी की धूम, कृष्ण भक्ति में डूबा शहर, कलाकारों ने पेश की झांकी, दही हांडी की रस्म के दौरान लोगों में दिखा उत्साह। झांसी में गहराई कृष्ण भक्ति के रंग, यूथ फेस्टिवल में भगवान विष्णु के 12 स्वरूपों का भव्य मंचन, कथक में दिखी कृष्ण लीला, भजन रैप ने बांधा समा। बाढ़ प्रभावित नेपाल में अभी भी जिंदगी की तलाश जारी, त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से 2 और मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। बढ़ते जलस्तर के बीच धनबाद में खोले गए मैथन डैम के 4 गेट, सतारा में कोयना डैम 100% भरा, 6 गेट खोल दिए गए, 4232 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की, इसके महिमा की और इसके पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 11:04 तक चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी का महत्व क्या है और जन्माष्टमी का अर्थ क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, यानी जन्म हुआ था अष्टमी को, इसीलिए इसको जन्माष्टमी या श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न, वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जब जन्माष्टमी मनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है ऐसे लोग
जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की विशेष पूजा कर सकते हैं और भगवान कृष्ण की विशेष पूजा से जीवन में लाभ पा सकते हैं। जन्माष्टमी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम की शुरुआत हो सकती है, अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिए, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, जन्माष्टमी पर वैसे तो भगवान कृष्ण की उपासना मध्य रात्रि में की जाती है, लेकिन उसमें नक्षत्र का, लग्न का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा कब होगी? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न और वृषभ राशि में हुआ था, इसीलिए जन्म का उत्सव वृषभ लग्न में मनाया जाता है। जन्मोत्सव का आरंभ वृषभ लग्न में किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 4 सितंबर को मध्य रात्रि में 12:13 तक रहेगी। इसी मध्य रात्रि के समय में वृषभ लग्न में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वृषभ लग्न 4 तारीख को लगभग 12:05 पर समाप्त हो जाएगा, यानी वृषभ लग्न के समाप्त होने के पहले 12:05 के पहले ही जन्मोत्सव की शुरुआत कर लेनी चाहिए, यानी वृष लग्न में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की अगर आप शुरुआत कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
जन्माष्टमी पर पूजा विधान क्या होगा इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, खान पान में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो जन्माष्टमी मनाने का समय आपने जान लिया, अब किस प्रकार से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा वो भी आपको बताते हैं। प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले व्रत का या पूजा का संकल्प लीजिएगा कि मैं आज व्रत रखूंगा या रखूंगी और आज मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करूंगी या करूंगा। दिन भर जल और फल ग्रहण करके व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए और अगर दवाई आदि खाते हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है तो जो आहार ग्रहण करें वो सात्विक आहार होना चाहिए। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की मेटल की प्रतिमा को किसी पात्र में रखें, उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा से और अंत में घी से स्नान करवाइएगा। इसको पंचामृत स्नान कहा जाता है। इसके बाद जल से स्नान करवाइएगा। ध्यान रखिएगा कि जो चीजें आप अर्पित करेंगे, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, जल, ये शंख में डाल करके भगवान कृष्ण को अर्पित की जाएंगी। उसके बाद उनका शरीर पोंछिएगा और उन्हें पीले वस्त्र पहनाइएगा, पीतांबर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण को झूले में बैठा करके झूला झुलाइएगा।
भगवान कृष्ण को झूला झुलाना एक बड़ी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसका पालन करना चाहिए, और झूला झुलाकर प्रेम से अपनी कामना भगवान कृष्ण से कहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, इस सरल तरीके से भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो आपको भगवान कृष्ण की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, किसी अतिथि का आगमन होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, रिश्तों के मामलों में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम के बोझ से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, किसी यात्रा पर जाने के योग हैं, करियर में धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को एक बांसुरी अर्पित करिएगा। बांसुरी अर्पित करके अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन की तमाम समस्याएं बड़ी आसानी से दूर होती जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 4 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। चार सितंबर शुक्रवार प्रातः काल भगवान कृष्ण को चंदन का तिलक लगाइएगा, फिर वही तिलक अपने आप को अपने कंठ या माथे पर लगा लीजिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

नंदन श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। लंका में अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका में माता सीता जी अशोक के पेड़ के नीचे शोक में बैठी। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे शोक में बैठी। अब शोक को मिटाएं कैसे, ये बड़ी चिंता। धन्य है हनुमान जी महाराज श्री वीर बजरंग बली, मानो क्या अद्भुत संकेत दिया। अशोक वृक्ष से माता सीता कह रही, हे अशोक, तू अपने नाम का कम से कम लिहाज तो रख, हमारे शोक को मिटा। नाम अशोक है, मैं शोक में हूं, कम से कम अपने नाम की इज्जत तो रख। तो हनुमान जी को लगा शोक मिटाने वाला नाम तो एक ही है, वो राम नाम है, और हम राम कहेंगे तो ये पूछेंगी कौन है। तो हनुमान जी ने एक जुगति अपनाई। जुगति क्या अपनाई, जो मुद्रिका लाए थे वो हनुमान जी ने गिराई।

उस मुद्रिका में है राम। और जैसे ही इतना कहा माता सीता जी ने, तुरंत हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई, मुद्रिका में लिखा राम। और जैसे ही सीता माता की नजर मुद्रिका पर अंगूठी पर पड़ी तो अंगूठी को देखते ही मुंह से निकला राम राम राम राम। ऊपर बैठे हनुमान जी बोले बन गया काम। अब बन गया काम, राम राम कहा अब काम बन गया। और हनुमान जी मेरे पागलो एक बात तुम याद रखना, आराम कौन कौन पाना चाहता हाथ उठाओ, आराम कौन कौन पाना चाहता है किसी भी चीज में, रोग में, बाधा में, जिंदगी में, पीड़ा में, समस्याओं में, आराम कौन कौन पाना चाहता हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे उन्हें आराम लगा है क्या भाई, पेट ही खराब हो तो उठाओ। चलो आराम चाहिए, एक हमारे पास मंत्र है, कहो तो दें, दें। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, पूछो क्या, आ राम की शरण में राम राम कर। आओ आ राम की शरण में राम राम कर, इससे मिलेगा आराम। तो जैसे ही माता सीता जी ने कहा राम राम राम, हनुमान जी बोले बन गया काम। लेकिन माता जानकी जी ने मुद्रिका तो पहचान ली, चकित चिदाओ चिताओ मुद्री पहचानी, पर ये मुद्री आई कहां से? किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप सामने चले जाओ। हनुमान जी बोले हम जा नहीं सकते सामने, क्यों? राम जी ने रोका है। रोका? हाँ। माता जानकी जी का जब ब्याह हुआ और अयोध्या आई तो अयोध्या में महलों के खंभों में बंदरों की आकृति बनी थी, वो दिखने में सजीवित लगते थे, उनको देखकर माताजी डर गईं पहले ही दिन। तो माता कौशल्या ने अंक में भर के कहा बेटी क्या हुआ? माता सीता बोली ये बंदर हैं, हमें इनको देखकर डर लग रहा। माता जानकी जी बोली, माता कौशल्या बोली ये बंदर तो हैं पर असली नहीं है, नकली है। तो जब वन को जाने लगे तो माँ कौशल्या ने राम जी को यही समझाया बेटा जो आकृति देख करके डर जाती है उसको वन में मत ले जाओ, वहां तो जिंदा बंदर मिलेंगे, क्या हाल होगा। तो हनुमान जी को वही बात समझाई राम जी ने, सुनो जाना तो पर डायरेक्ट मत जाना, जब वो छवि देखकर डर जाती तो तुम्हें तो देखकर और डर जाएंगी, वानरा राम धीसम, आप तो वानरों के राजा हो तो सामने डर जाएंगी, इसलिए सामने मत जाना डायरेक्ट मत जाना। इसलिए हनुमान जी ने ऊपर से ही एक उपाय किया, वो उपाय क्या था सुनो।

लंका में पेड़ के ऊपर ही बैठकर कथा सुनाने लगे। क्या करने लगे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, कथा सुना रहे। तो किसी ने पूछा कि आप पेड़ पे क्यों बैठे? बोले कथावाचक ऊपर ही बैठता है, श्रोता नीचे बैठे, इसलिए हम ऊपर बैठे। अच्छा, बहुत अच्छी बात, पर एक बात और बता। हाँ, बोले आप कथावाचक हो? बोले बिल्कुल है। हनुमान जी बोले कथावाचक ऐसे वैसे नहीं, खानदानी। बोले खानदानी? हाँ, खानदानी कथावाचक क्या होता है? बोले हम पहले से ही कथा करते आ रहे। हनुमान जी से किसी ने कहा, तो किसी ने कहा कि कब से कर रहे? हनुमान जी बोले हमारा एक और रूप है। बोले कौन सा? बोले रुद्र रूप। शंकर अवतार में तो जब राम जी जन्म लेते तब हम कथा ही सुनाते, उस रूप में भी हम कथा सुनाते, इस रूप में भी हम कथा सुनाते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पायसु समय शिवासन भाखा। तो बोले उस रूप में भी हम कथा करते, इस रूप में भी कथावाचक है, तो हम खानदानी कथावाचक, क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर सुमन। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग, तो हम तो खानदानी कथावाचक हैं। तो किसी ने कहा कि लंका में और कथा? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, लंका में यदि कथा कर ही रहे तो पेड़ में छिपे क्यों? छुपे क्यों? हनुमान जी बोले लंका में छुपे ही रह के कथा कर ले, वही बहुत है। आओ, आओ, आओ, लंका में छुप के ही कथा हो जाए वही बहुत है, वरना रावण निपटा देगा। कथा बचाई में मिलती है दक्षिणा, मिलेगी मौत। इसलिए छुपके ही जान, इसलिए हनुमान जी छुप करके बैठे हुए कथा सुना रहे। रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जहां कथा सुनाना प्रारंभ की, माता जानकी जी का दुख भाग गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जहां दुख भागा, माता जानकी जी ने ऊपर देखा, कथा सुंदर है पर कथावाचक नहीं दिख रहा। कथा तो सुंदर है भाई, कोई बोल रहा हो पर दिख ना रहा हो, मन में आने ही लगता भाई कहाँ हो, कौन हो, दिखो तो। हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी ऊपर छुपे बैठे कथा सुना रहे। माता जानकी जी बीच में ही बोली, भाई कथा तो बड़ी सुंदर है, कथावाचक कौन है, दर्शन दो। हनुमान जी बोले माता कथा ही सुन लो, कथावाचक देखने लायक नहीं। तो माता जानकी जी बोली क्यों? हनुमान जी बोले माँ केवल कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। वानराराम भीषम, कहने वाला बंदर। माता जानकी जी ने कहा फिर भी सन्मुख आओ। जैसे ही इतना कहा तो तब हनुमंत निकट चली गया। जैसे ही निकट गए तो हनुमान जी बंदर, और जानकी माता ने जैसे ही देखा तो माता जानकी जी ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने माता जानकी जी को देखा। फिर बैठी मन विस्मय भयाऊ, मन में विस्मय हो गया। क्या विस्मय? कहीं रावण की कोई चाल तो नहीं, कोई रावण की करतूत तो नहीं है, चाल तो नहीं, चाल। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। देखो दूत कैसा होना चाहिए मेरे पागलो, याद रखना, दूत और पूत, पूत मतलब बेटा, याद रखना। दूत वही श्रेष्ठ है जो स्वामी के नाम को बढ़ाए, और पूत वही श्रेष्ठ है जो पिता के नाम को आगे बढ़ाए। और जितने यहां पर पुत्र बैठे हैं, युवान बच्चे बैठे हैं, युवान बहनें बैठी हैं, हम सभी युवान बच्चों से, युवान बेटियों से और बहनों से और भाइयों से प्रार्थना करेंगे, मेरे पागलो बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाने जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। इसलिए तुम ऐसा नाम कमाना, ऐसी उपलब्धि पाना, ऐसा यश कमाना कि तुम्हारी माँ या तुम्हारा पिता किसी गली से निकले तो तुम्हें देखकर, उनको देखकर के लोग कहें ये फलाने के पिताजी चले जा रहे हैं, माता जी चले जा रहे हैं। ऐसे पूत होना चाहिए। धन्य है हनुमान जी, क्या परिचय देते हैं। हनुमान जी से माता जानकी जी ने पूछा कौन

माँ हम राम जी के दूत हैं। अच्छा, राम जी के दूत हो, एक बात बताओ। हाँ, नर बानर हूं संग कहूं कैसे? ये तुम बानर, राम जी नर, दोस्ती कैसे हो? कारण बताओ। हनुमान जी ने पूरा कारण बताया, लेकिन हनुमान जी ने बताया कैसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसका अर्थ का बड़ा महत्वपूर्ण होता बोलने का, कि कैसे बोलना चाहिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समझो, किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तो यदि कोई पड़ोसी कह दे कि भाई, कोई पूछे कि क्यों अमुक अमुक व्यक्ति का लड़का कैसा है, हमें बेटी का विवाह करना है, यदि वो कह दे खाते पीते घर के हैं तो समझ जाना अमीर हैं, पर कोई कह दे पीता खाता है देखो एक शब्द ऊपर नीचे किया, मामला बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया है? तो प्रेजेंटेशन बोलने से प्रेजेंटेशन का बड़ा फर्क पड़ता है, कि कैसे बोल रहा, कैसे प्रस्तुतिकरण है, इसका बड़ा प्रभाव। यही कथा हम गा रहे, यही कथा कोई और भी गावे, तो सबकी अपनी प्रेजेंटेशन का महत्व होता है भाई, अपने अपने भाव का अर्थ होता है। तो ऐसे ही शब्दों का हनुमान जी ने प्रेजेंटेशन कैसी की, जरा सुनो। हनुमान जी ने नर बानरों का संग कैसे हुआ ये बताया, कैसे बताया, कपी

वचन बोले तो प्रेम पूर्वक। और प्रेम, अच्छा प्रेम की पहचान क्या है? जब प्रेम होता ना तब बातें नहीं, जवान नहीं बोलती, आंखें बोलती हैं। और जिससे प्रेम होता है उससे आंखें बोलती हैं। और मेरे पागलों, हनुमान जी जब बोलने लगे तो आंखों से आंसू बहने लगे, नेत्रधार बहने, नेत्रों से आंसू। अच्छा हंसा तो जा सकता पर जबरदस्ती रोया नहीं जा सकता। दो कारण से ही रो सकते, या तो प्रेम में ज्यादा खुशी में या ज्यादा दुखी में। कई लोग ऐसे उन्हें रोना आता ही नहीं, पर जो परमात्मा से प्रेम करते उन्हें रोना पड़ता है। जिन्हें परमात्मा से प्रेम का अर्थ है रोना, भक्ति का अर्थ है रोना, इसका पता तो आंखों से ही लगता। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, आंखों के आंसू को देखकर माता जानकी जी पहचान गई, ये साधारण नहीं है, ये जो कह रहे सच कह रहे। इसलिए माता जानकी जी ने कहा, माता जानकी जी के उपजा मन विश्वास, विश्वास भरोसा जाग गया। अंत में माता जानकी जी ने मान लिया, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास, ये राम जी का दास है। जैसे ही इतना कहा तो माता जानकी जी ने हनुमान जी से पूछा, एक बात बताओ, जितना हम प्रभु को याद करते हैं प्रभु तो नहीं करते हो, वो तो व्यस्त रहते, उनको हमारी याद आई? बताओ, हमें इतने दिन हो गया आज तक खबर नहीं ली। इतना प्रेम करते थे राम जी हमसे कि जब एक कौवा का रूप धारण करके जयंत आया तो उसके पीछे तीर लगा दिया, और हम इतने दिन से यहां रावण के पीछे कुछ नहीं लगाया। लगता है भगवान हमें भूल गए, भगवान ने हमें विसार दिया। अच्छा और कोई होता तो यही कहता कि आप ठीक कह रही, हम समझाएंगे, हम उन्हें समझाएंगे, ठीक से समझाएंगे, आप चिंता ना करो। लेकिन धन्य है हनुमान जी, दूत ऐसा होना चाहिए। हनुमान जी बोले, माँ जितना आप प्रभु को याद करती हो प्रभु भी आपको उससे ज्यादा याद करते हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को

0: आपको क्या स्थिति है अभी?
1: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
3: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
2: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
5: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
6: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
7: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
2: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
8: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
2: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
9: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा।

0: आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
2: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
3: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
4: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
6: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
7: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
8: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी की चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
5: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 ने घर मंगा सकते।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: मथुरा में जन्माष्टमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की विशेष पूजा अर्चना और गो पूजन, देश को दी पर्व की बधाई, कहा श्री कृष्ण का जीवन हमारे लिए प्रेरणा। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी, जश्न में डूबे कृष्ण भक्त, आधी रात को आज 12 बजे होगा कान्हा का महाभिषेक। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आज मथुरा में विशेष कार्यक्रम, रात 9 बजे से होगा भव्य ड्रोन शो, 500 ड्रोन से दिखाई जाएंगी श्री कृष्ण की लीलाएं। झांसी में गहरा कृष्ण भक्ति का रंग, यूथ फेस्टिवल में भगवान विष्णु के 12 स्वरूपों का भव्य मंचन, कथक में दिखी कृष्ण लीला, भजन रैप ने बांधा समय। बाढ़ प्रभावित नेपाल में अभी भी जिंदगी की तलाश जारी, त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से 2 और मजदूरों का किया गया रेस्क्यू। बढ़ते जलस्तर के बीच धनबाद में खोले गए मैथन डैम के 4 गेट, सतारा में कोयना डैम 100% भरा, 6 गेट खोल दिए गए, 4232 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: आज देशभर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, जन्माष्टमी पर दुल्हन की तरह सजी कान्हा की नगरी मथुरा। जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किए गए दर्शन पूजन। मथुरा आगमन पर सीएम योगी का ढोल मंजीरों और डमरू वादन के बीच हुआ भव्य स्वागत, कान्हा के जय घोष से भक्तिमय हुआ माहौल। सीएम के मथुरा दौरे पर सुरक्षा सख्त, कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर ब्रज में चरम पर उत्साह। कान्हा के लिए तैयार हुई रेशमी पोशाक और खास जेवर, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के लिए पूरा ब्रज हुआ कृष्णमय। भव्य सजावट ने मंदिर की खूबसूरती में लगाए चार चांद, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर प्रेम मंदिर में दिखेंगी भव्य कृष्ण झांकियां। रात में लेजर लाइट शो से बढ़ेगी मंदिर की रौनक, जन्माष्टमी पर श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद। रात 8 बजे से विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, संकीर्तन और लाइव दर्शन से भक्तिमय होगा माहौल। आज आधी रात 12 बजे होगा कान्हा का महाअभिषेक, जन्म के बाद भगवान कृष्ण की विशेष आरती होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी ने वृंदावन में कान्हा भक्ति स्तंभ का किया उद्घाटन, ब्रज को देंगे 977 करोड़ की सौगात। धूम के बीच पहाड़ों की रानी पर्यटन नगरी डलहौजी में जन्माष्टमी की धूम, कृष्ण भक्ति में डूबा शहर। भव्य शोभा यात्रा का किया गया आयोजन, बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान श्री कृष्ण पर जीवन लीला पर आधारित भव्य एवं मनमोहक नृत्य। शोभा यात्रा के दौरान मटकी फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा। दक्षिण भारत में भी नजर आई कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक, केरल के अलापुजा में प्रसिद्ध श्री कृष्ण स्वामी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार। जन्माष्टमी के दिन मंदिर में विशेष पूजा, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित, केरल के सबसे पवित्र वैष्णव मंदिरों में एक कृष्ण स्वामी मंदिर एक है। नेपाल में आपदा के बीच भी पूरी आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, काठमांडू के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नोएडा इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी पर दिखा भव्य नजारा, प्रभु के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की भीड़, भगवान के लिए खास भोग का इंतजाम। मुंबई के मंदिरों में भी कान्हा के भक्तों की भीड़, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर दर्शन और आशीर्वाद के साथ उमड़े श्रद्धालु। अहमदाबाद में भी बेहद भव्यता और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का पर्व, विशेष फूलों की सजावट और भगवान का मनमोहक श्रृंगार बने आकर्षण का केंद्र। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जयपुर के ऐतिहासिक गोविंद देव जी मंदिर में भारी भीड़, विशेष आभूषण और राजस्थानी गोटापत्ती लगे नए रेशमी पीले वस्त्रों से सजे भगवान के दर्शन को उमड़े भक्त। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 स्थित नए इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की भव्य तैयारी, गोकुल धाम थीम पर इस्कॉन टेम्पल की भव्य सजावट। रंगी रोशनी से जगमगा गया मंदिर, 5600 से ज्यादा तरह के व्यंजनों का लगेगा महाभोग, जन्माष्टमी पर तैयार हुआ 1108 किलो का विशाल पुल केक। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान की ओर से आयोजन, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। वेदपाठ से शुरू हुई आध्यात्मिक प्रस्तुतियों की श्रृंखला, भजन क्लबिंग ने गीतों और भजनों की शानदार प्रस्तुति से बांधा समा, कृष्ण भजनों पर झूम श्रद्धा। महोत्सव की खास थीम कृष्ण जन्म ले यदि आज, महोत्सव से लाखों लोग लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े, द्वारका में गूंजेगा कृष्ण भक्ति का रंग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुबह 4 बजे ही खुला इस्कॉन मंदिर, ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में मंगला आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल। हरे रामा हरे कृष्णा के महामंत्र का जाप गूंज उठा इस्कॉन टेम्पल, ढोल मंजीरों की गूंज से गूंजा माहौल, भक्ति में झूमे श्रद्धालु। पोरबंदर में श्री कृष्ण सखा सुदामा कल्चर लोक मेला का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया उद्घाटन। मेले में देखिए लोक संस्कृति और परंपरा की झलक, कलाकारों ने पेश की कई सुंदर प्रस्तुति। उधमपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, भारी सुरक्षा के बीच उमड़ी भक्तों की भीड़। झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान में स्कॉन के यूथ फेस्टिवल, भगवान विष्णु के 12 स्वरूपों का किया गया भव्य मंचन। कलाकारों ने कथक नृत्य के जरिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को किया जीवन, दर्शक मंत्रमुग्ध हुए। यूथ फेस्टिवल में भक्ति के संदेश को अलग अंदाज में पेश करते हुए भजन रैप की शानदार प्रस्तुति, युवाओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र। युवाओं को भारतीय संस्कृति और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जोड़ना रहा यूथ फेस्टिवल का उद्देश्य, अध्यात्म के साथ जुड़े युवा। फेस्टिवल में लगा वृंदावन बाजार में लगाए गए 18 से अधिक स्टॉल, जहां महाप्रसाद, सात्विक व्यंजन और वृंदावन के उत्पाद उपलब्ध। नेसाड़ा में एक परिवार ने दूसरी बेटी के जन्म पर खास जश्न मनाकर पेश किया अनोखी मिसाल, समाज को बेटे बेटियों में फर्क ना करने का दिया गया संदेश। भव्य जुलूस और म्यूजिकल नाइट का किया गया आयोजन, पूरे परिवार में बेटी के जन्म की खुशी का जश्न। परिवार ने लिया संकल्प, बेटी को भी उच्च शिक्षा देकर बनाएंगे उज्जवल भविष्य, बेटियों को बोझ समझने वालों के लिए प्रेरणा बना परिवार। जामनगर में ऐतिहासिक भूचर मोरी में 35वें शहीद श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, शहीदों को नमन कर दी श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में आकर्षण नृत्य प्रस्तुतियों के साथ घोड़ों के साथ रोमांचक पारंपरिक खेल और प्रदर्शन भी किए गए, जिसने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। संबलपुर से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर में गोवर्धन पीठ पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान ने जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद का किया आशीर्वाद। धर्मेंद्र प्रधान ने शंकराचार्य से लिया आध्यात्मिक मार्गदर्शन, धर्म और जन कल्याण को लेकर हुई चर्चा, सनातन परंपराओं के सम्मान का दिया संदेश। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने गोलाघाट के निग्रिटिंग शिव दौल मंदिर में लगाई हाजिरी, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। मंदिर परिसर को बड़ा पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी, निग्रिटिंग शिव दौल के लिए बनेगा खास टूरिज्म प्रोजेक्ट। कोलकाता में बांग्ला सिनेमा के महानायक उत्तर कुमार की जन्मशती पर फिल्म फेस्टिवल, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फिल्म फेस्टिवल का किया उद्घाटन। अंतरिक्ष में भारत की एक और लंबी छलांग, इसरो का जीएसएलवी F-17 मिशन सफल लॉन्च, श्रीहरिकोटा से ईओएस 05 ने भरी उड़ान। ईओएस 05 भारत का खास जियो इमेजिंग सैटेलाइट, अंतरिक्ष से होगी भारत की हाईटेक निगरानी। 38 मिनट में व्यापक क्षेत्र की मिलेगी महा कवरेज, हर 5 मिनट में खास इलाके को मिलेगी तस्वीर, आपदा प्रबंधन को मिलेगी नई ताकत।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
9: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता, आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: मथुरा से केरलम तक छाए कृष्ण भक्ति के रंग, अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर कान्हा की भव्य आरती, केरलम के अलपुजा में सुबह 3 बजे से दर्शन को उमड़े भक्त। बाढ़ प्रभावित नेपाल में दिखी कृष्ण जन्माष्टमी की छटा, कृष्ण मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है कान्हा का जन्मोत्सव। मथुरा में जन्माष्टमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की विशेष पूजा अर्चना और गौ पूजन, देश को दी पर्व की बधाई, कहा श्री कृष्ण का जीवन हमारे लिए प्रेरणा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आज मथुरा में विशेष कार्यक्रम, रात 9 बजे से होगा भव्य ड्रोन शो, 500 ड्रोन से दिखाई जाएंगी श्री कृष्ण की लीलाएं। बाढ़ प्रभावित नेपाल में अभी भी जिंदगी की तलाश जारी, त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से 2 और मजदूरों को किया गया रेस्क्यू।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज स्पेशल में बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की, कि वो श्री कृष्ण एक ऐसा नाम जिसमें आस्था भी है, अध्यात्म भी है और एक ऐसा विराट व्यक्तित्व भी जिसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जिन जिन धरतियों पर अपनी लीलाएं की, उन स्थानों की स्मृतियां आज भी किसी न किसी रूप में जीवित है। मथुरा की गलियां हो, वृंदावन की कुंज गलियां हो, गोवर्धन पर्वत हो, द्वारका की धरती हो या फिर कुरुक्षेत्र का मैदान, इन जगहों से जुड़ी ऐसी अनगिनत मान्यताएं हैं जिन्हें आज भी कृष्ण की लीलाओं की जीवंत निशानी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक गोवर्धन है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जब ब्रज में इंद्र के प्रकोप से भारी बारिश हुई, तब श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। आज भी श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और ब्रज से हजारों किलोमीटर दूर गुजरात के कृष्ण कथा का एक और सबसे रहस्यमय अध्याय भी जुड़ा है। दरअसल धार्मिक ग्रंथों में वर्णित द्वारका को भगवान कृष्ण की नगरी माना जाता है। मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी बसाई, जिसके साक्ष्य आज भी वहां देखने के लिए मिलते हैं।
1: भगवान कृष्ण हिंदुस्तान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना के प्राण वायु देवकी नंदन भगवान कृष्ण। सनातन के कालजयी ग्रंथों में, पुराणों में जिनकी अलौकिक लीलाओं का मनोहारी वर्णन मिलता है, इन पौराणिक ग्रंथों की ऐतिहासिकता को, प्रामाणिकता को कभी मिथक मानकर खारिज कर दिया गया, लेकिन पुरातात्विक अन्वेषणों और वैज्ञानिक साक्ष्यों की रोशनी में इन ग्रंथों की ऐतिहासिकता पुनः प्रतिष्ठित हुई है। इतना ही नहीं, पौराणिक घटनाओं से जुड़े प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखकर प्रतिष्ठित वैश्विक इतिहासकारों की आंखें चौंधिया रही हैं। आज हम आपको भगवान कृष्ण से जुड़े उन साक्ष्यों को दिखाएंगे जिनका जिक्र पुराणों में मौजूद है। गुजरात के सौराष्ट्र में समंदर के तट पर स्थित द्वारका को भगवान कृष्ण द्वारा बसाया गया नगर माना जाता है। द्वारका का जिक्र करीब 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास रचित परमहंस ग्रंथ भागवत पुराण में कई बार आता है। भागवत पुराण के दशम स्कंध के 50वें अध्याय के 49वें श्लोक में द्वारका के निर्माण का संदर्भ मिलता है। इति समन्ते भगवान दुर्गम द्वादश योजनम अन्तः समुद्रे नगरम कृत्सान अद्भुतम अचिकरत। भागवत पुराण के इस श्लोक में बताया गया है कि इस प्रकार विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर 12 योजन में एक अत्यंत विशाल और अपराजेय नगर बनवाया, जो अद्भुत, आश्चर्यजनक और सभी तरह के ऐश्वर्यों से युक्त था। द्वारका नगर का संदर्भ भागवत पुराण के अलावा महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। महाभारत के मौसल पर्व के एक श्लोक में इस नगर के समंदर में समा जाने का जिक्र मिलता है। मौसल पर्व के 7वें अध्याय का 40वां श्लोक है। सतदा प्लवयते सर्वम रत्न पूर्णम पूरीम तदा यद यद देशम व्यतिक्रांतो अर्जुनस्य निवेशने तत् तद देशम समुद्रस्य प्लावयामास सर्वतः। महाभारत के मौसल पर्व की श्लोक का अर्थ है कि तब उस समय रत्नों से भरी नगरी द्वारका को समुद्र ने सब ओर से अपनी आगोश में ले लिया। अर्जुन जैसे जैसे नगर में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे पीछे छूट गई नगरी को समुद्र अपनी लहरों में डुबोता चला गया। साफ है कि द्वारका नगर के निर्माण से लेकर समंदर की लहरों में समा जाने तक का वर्णन सनातन के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है।
2: भगवान 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में रहे, उसके उपरांत मथुरा और अवंतिकापुरी में अध्ययन करने के उपरांत आप द्वारकापुरी में पहुंचे। द्वारका जो कि गुजरात में समुद्र में स्थित थी, भेत द्वारका और द्वारका, यहाँ भगवान ने अनेकानेक लीलाएं की हैं और 100 वर्ष तक भगवान द्वारका में विराजमान रहे।
1: समंदर के बीच में बसी द्वारका नगरी के पौराणिक तथ्यों को 80 के दशक के पूर्वार्ध तक मुख्य धारा के स्थापित इतिहासकार मिथक मानकर खारिज कर देते थे। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक और जाने माने पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव ने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की ओर से पानी के नीचे बसी द्वारका नगरी की खोज का अभियान शुरू किया तो पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई। समंदर की अतल गहराइयों में शोधकर्ताओं को कई मीटर लंबी और सुव्यवस्थित प्राचीन पत्थर की दीवारें मिली। भव्य इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के खंभे और ब्लॉक मिले। जहाजों को बांधने में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के लंगर मिले। पत्थरों के ये लंगर त्रिकोणीय हैं और उनमें गोलाकार छेद पाए गए।
2: जब द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं, सप्तपुरियों में से एक पुरी भी है यह, तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि साक्षात द्वारकाधीश यहाँ विराज रहे हैं। भेंट द्वारका में जब देखते हैं तो वहाँ पर कई साक्ष्य ऐसे मिलते हैं कि जो 5000 साल पूर्व से आज तक विरासत के रूप में वहाँ पर विद्यमान है। तो वो साक्ष्य, समस्त जो साक्ष्य हैं, वो अपने आप में स्वयं भगवत रूपी हैं।
1: भगवान कृष्ण की पावन महिमा का वर्णन सनातन के अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक भगवान कृष्ण की बाल लीला से लेकर रासलीला, गोचारण, गोवर्धन धारण, कालियानाग मर्दन, कंसवध और महाभारत युद्ध तक को लेकर अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। कमाल ये है कि इन सभी ग्रंथों की भाषा और शैली बेशक अलग हों, लेकिन घटनाओं और लीलाओं का भाव कमोबेश एक जैसा ही है। हैरानी तो यह है कि हजारों साल पहले लिखे ग्रंथों में वर्णित घटनाओं के मौजूदा साक्ष्य आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। भगवान कृष्ण की पवित्र जन्मस्थली मथुरा से करीब 26 किलोमीटर दूर स्थित गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण की अलौकिक लीला का लौकिक प्रमाण है। विशुद्ध रूप से मैदानी इलाके में स्थित गोवर्धन पर्वत इस बात की मुनादी करता है कि हमारे पौराणिक आख्यानों को बेशक मिथक मान लिया गया, लेकिन उन आख्यानों में गूढ़ जीवन दर्शन और आध्यात्मिक संदेशों के साथ ही प्रामाणिक इतिहास के अकाट्य साक्ष्य भी मौजूद हैं। श्रद्धावान सनातनी गोवर्धन पर्वत को साक्षात कृष्ण का स्वरूप मानकर पूजते हैं और 21 किलोमीटर में फैले इस पौराणिक पर्वत की परिक्रमा करते हैं।
2: भगवान ने जब इस धराधाम को छोड़ा, भगवान के समय से आज तक दो प्रत्यक्ष ऐसे गवाह हैं कि जिन्होंने भगवान की लीलाओं में सहभागिता की है। प्रथम श्री गिरिराज जी, द्वितीय श्री यमुना जी। तो जब हम सप्तकोशीय परिक्रमा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन शिला के रूप में मुकुट मुखारविंद मानसी गंगा पर होते हैं। वहां स्वयं गोपाल हैं और उंगली का संकेत करके कह रहे हैं कि गिरिराज जी की पूजा कीजिए। उसके आगे आप चलिए परिक्रमा में तो कहीं सुरभि गऊ के चरणों के निशान है, कहीं भगवान के हस्त कमल के निशान हैं, कहीं भगवान के मुख की आकृति के दर्शन हैं।
1: भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला का जिक्र श्रीमद् भागवत महापुराण, गर्ग संहिता, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में कथा आती है कि ब्रजवासी हर साल वर्षा का देवता माने जाने वाले इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा यज्ञ आदि करते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा करने की सलाह दी। भगवान कृष्ण की मोहिनी लीला से भाव विभोर रहने वाले ब्रजवासियों ने उनकी सलाह मानते हुए उसी समय से इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। इससे इंद्र के अहंकार को ठेस लगी और इंद्र ने ब्रजवासियों को सबक सिखाने के लिए ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू करा दी। मूसलाधार बारिश से ब्रज में जल प्रलय की स्थिति बन गई। तब सभी ब्रजवासियों ने त्राहिमाम करके भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें इंद्र के कोप से बचाएं। तब भगवान कृष्ण ने अपनी बाईं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को एक छतरी की तरह उठा लिया। सात दिन और सात रात तक सभी ब्रजवासी और गोवंश गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। आखिरकार इंद्र का अहंकार टूटा और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी।
2: समूचे गोवर्धन में ऐसा लगता है कि साक्षात गिरिराज जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के ही चारों तरफ दर्शन हो रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष स्वरूप में वहां अनुभूति भक्तों को निशानी के रूप में आज भी होती है।
1: भगवान कृष्ण की परम पावन लीला भूमि वृंदावन में स्थित निधिवन भगवान कृष्ण की पौराणिक लीला का अप्रतिम वर्तमान साक्ष्य है। निधिवन की रासलीला का जिक्र श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर स्वामी हरिदास, गौड़ीय और अन्य ब्रज साहित्य में मिलता है। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्तों का मानना है कि उनके आराध्य आज भी अर्धरात्रि के बाद अपनी प्रियसी राधिका जी के साथ निधिवन में रास रचाते हैं। इतना ही नहीं, रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में वो शयन भी करते हैं।
2: हमारे यहाँ वृंदावन स्थित निधिवन की ऐसी मान्यता है कि संयुक्त रूप में भगवान श्री कृष्ण और उनकी परमाल्लादनी शक्ति श्री जी श्री राधा रानी संयुक्त रूप में रात्रि में वहाँ विराजमान रहते हुए और अपनी लीलाओं को करते हैं। तो भगवान की उन दिव्य लीलाओं को हर किसी को देखने का अधिकार नहीं है, प्रभु जानत जय देह जनाई। इसलिए ऐसी परंपरा चली आ रही है कि सायंकाल होते ही आरती होते ही वहाँ सब बंद कर दिया जाता है।
1: इसी विश्वास की वजह से रंग महल में आज भी माखन मिश्री का भोग हर दिन रखा जाता है। यहाँ तक कि पुजारी इस महल में दो दातून भी रख देते हैं। पुजारियों का दावा है कि सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी गई दातून गीली मिलती है। यहाँ तक कि कुछ सामान जो रात में व्यवस्थित रखे गए होते हैं वो सुबह बिखरे हुए मिलते हैं। निधिवन के प्रति श्रद्धा और विश्वास का आलम यह है कि रात्रि 8 बजे के बाद श्रद्धालुओं के साथ पुजारी भी यहां से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है।
2: आचार्य जनों का कहना है, संत महात्माओं का कहना है कि फिर वहां जो बंदर आदि जो जीव डोलते हैं वो भी वहां नहीं रहते और सब वहां से शांति में अलग निकल आते हैं और ठाकुर जी श्री जी के साथ में वहाँ उनकी एक दिव्य लीला होती है, जो उचित भी है कि भगवान की जो गुप्त लीलाएं हैं उनके दर्शन हर कोई नहीं कर सकता, तो यह नियम बिल्कुल सही भी है।
1: भगवान कृष्ण सनातनी श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास के आधार अवलंब हैं, पर युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया गया उनका उपदेश भगवत गीता के रूप में पूरी दुनिया के लिए जीवन दर्शन का अतुल्य ग्रंथ बन चुका है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वह स्थान आज भी मौजूद है जहां भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिसर नामक स्थान पर आज भी एक वट वृक्ष खड़ा है। सनातनी श्रद्धालुओं का मानना है कि ये वही अक्षय वट वृक्ष है जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिसर आज एक पवित्र धाम के रूप में विकसित हो चुका है जहां दूर दूर से लोग आते हैं और यहां के पारलौकिक सुरम्य वातावरण में भगवान कृष्ण

0: अनुभूति होती है कि भगवान ने अपनी वाणी की जो दिव्यता है, वाणी रूप में एक जो आध्यात्मिक शक्ति का वहां अनुभव होता है, ऐसे पवित्र क्षेत्र में जहाँ भगवान ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है, ज्योतसार नाम के तीर्थ में वृक्ष आज भी वहां विद्यमान है, और कई ऐसी निशानियां हैं जो प्रतीत तो होती हैं कि भगवान ने यहीं पर गीता का उपदेश किया है।
1: हमारे प्राचीन ग्रंथकारों का मानना है कि भगवान कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष 8 महीने और 7 दिन तक रहे। मान्यता है कि उनके इस धाराधाम को छोड़ते ही द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग की शुरुआत हुई। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण ने जहां देह त्याग किया वह स्थान आज गुजरात के गिर जिले के वेरावल में स्थित है, जिसे देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने द्वारका में जो नगरी बसाई थी वहां बाद में यदुवंशियों के बीच आपसी गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसे पूरा कुल नष्ट हो गया। कुल के विनाश से आहत होकर भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला को संवरण करने का निर्णय लिया। कथा आती है कि श्री कृष्ण एक जंगल में पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाकर विश्राम करने लगे। तभी शिकार की तलाश में आए एक बहेलिये ने भगवान के दैदीप्यमान चरण को हिरण की आंख समझ लिया और उस पर तीर मार दिया। बहेलिये का तीर भगवान कृष्ण के तलवे में लगा, जिसके बाद उन्होंने अपना देहोत्सर्ग कर दिया।
0: वृक्ष के नीचे भगवान चतुर्भुज रूप में सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और चरण ऐसे लग रहे हैं कि जैसे सूर्य की आभा को बिखेर रहे हों। वहीं पर बहेलिया ने बाण मारा है, भगवान के बाण लगा हुआ है, आज भी ये स्वरूप के रूप में वहां भगवान विराज रहे हैं। और कई निशानियां, सबसे पहले तो वहां ये अनुभूति होती है कि परम शांत क्षेत्र है, परम गंभीर क्षेत्र है, वहां के वातावरण में शांति और गंभीरता महसूस होती है। बड़ा पावन वो तीर्थ है, बड़ा पावन क्षेत्र है। आज भी भगवान के जब दर्शन वहां भक्त करते हैं तो नेत्रों में अश्रु आने लगते हैं कि यहीं से भगवान हमारे ठाकुर जी स्वधाम गमन किया है भगवान ने, और भगवान ने सशरीर अपने गोलोक धाम में वहीं से प्रवेश किया है।
1: कहते हैं कि वेरावल में पीपल का वो वृक्ष आज भी मौजूद है जिसके नीचे भगवान कृष्ण योग मुद्रा में समाधिस्थ हुए थे। भगवान के पावन चरणों के प्रतीक के रूप में चरण पादुका भी मौजूद है, जिसका दर्शन कर भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य

0: कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जैसलमेर की बात करते हैं, जहां पर जन्माष्टमी की धूम है। यहां सोनार किले में प्राचीन जैसल कुआं है। श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारिका जाते समय अर्जुन को प्यास लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से खोदा था और वो आज भी वहां मौजूद है। ऐसे कई प्रमाण यहां पर मौजूद है जिससे पूरे शहर का माहौल जन्माष्टमी के पर्व पर कृष्णमय हो जाता है।
1: आनंद से जो वैष्णव जो है वो रस में डूबे हुए हैं। बधाइयां गाई जा रही है जन्मोत्सव की और कई प्रकार की कीर्तन और कई प्रकार की जो है आनंद बरस रहा है। आज झूला जो है तो झूला ठाकुर जी झूले में बिराजे हैं, तो वह मेवे का झूला है और उसके अंदर ठाकुर जी बिराजे हैं और सब यहाँ पे जो है जो बैठे हैं वैष्णव वो खूब आनंद ले रहे हैं, खूब रस में डूबे हुए हैं। छंद गाए जा रहे हैं, कीर्तन गाए जा रहे हैं। हरराय महाप्रभु जी की यहाँ पर बैठक भी है और कई प्रकार के यहाँ पे जन्माष्टमी के पर्व की तैयारियां चल रही है। कई प्रकार के जो है उत्सव गायक किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कई प्रकार के कीर्तन जो है, कई प्रकार के जो है छंद गाए जा रहे हैं, बधाइयां कई प्रकार की गाई जा रही है। अद्भुत समय है, अद्भुत छटा है। पूरे शहर के वैष्णव जो है यहाँ पे उमड़े हुए हैं, सैलानी भी जो यहाँ पे बड़ी तादाद में आते हैं। देश विदेश में जो है यह गिरधारी जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अद्भुत समा, अद्भुत अद्भुत जो है तैयारियां जन्माष्टमी की। जिसको जयंती कहते हैं वो भी आज इसमें मतलब इस पुष्टि मार्ग के मार्ग भी चल रहा है
2: जी। ये कीर्तन जो है ये हमें हमारे घर में जैसे हमने देखा पुष्टि मार्ग की सेवाएं देखी, वो देखी तो उससे हमसे हमें प्रेरणा मिली। खूब दादियां हैं उनको देख के हमने ये प्रेरणा ली है जिससे हमको ये कीर्तन ठाकुर जी की और इन इन लोगों की प्रेरणा से हम लोग ये कीर्तन करते हैं और आगे करते रहेंगे।
1: वाह, आप देखते हैं युवा वर्ग जो युवा पीढ़ी है वो भी आज पुष्टि मार्ग के मार्ग पे चल रहा है। कितने बढ़िया कीर्तन जो है ठाकुर जी के गाए हैं।
3: पुष्टि मार्ग में जन्माष्टमी के जो बधाइयां हैं एक महीने पहले शुरू हो जाती है। एक महीने पहले से जो है बधाइयां को कीर्तन जो है इस झूले के साथ में गाए जाते हैं। और ये जो मंदिर है गिरधारी जी का मंदिर है, हरिराज जी के पिताजी कल्याणनाथ जी के ये सेवी स्वरूप है। उस समय महाराज लाल ने उन्हें यहाँ पर पधराए थे और तब से यहाँ अभी जो जन्माष्टमी होगी रात में जो है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बहुत ही कीर्तन होंगे। उसके बाद में उसमें पंचामृत की स्नान होगी और उसके बाद में पूरा जो है महाराज स्वयं जो है इस दिन आरती करने आते हैं यहाँ के।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: धूमधाम से मनाया जा रहा कृष्ण जन्मोत्सव। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्ति में झूमते दिखे भक्त। जयपुर के गोविंद जी मंदिर में जश्न की खास तैयारी। पंजाब में बनाए जा रहे कान्हा की थीम वाले केक। मथुरा से केरलम तक छाए कृष्ण भक्ति के रंग। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर कान्हा की भव्य आरती। केरलम के अलापुझा में सुबह 3 बजे से दर्शन को उमड़े भक्त। बाढ़ प्रभावित नेपाल में दिखी कृष्ण जन्माष्टमी की छटा। काठमांडू के कृष्ण मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा कान्हा का जन्मोत्सव। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आज मथुरा में विशेष कार्यक्रम। रात 9 बजे से होगा भव्य ड्रोन शो। 500 ड्रोन से दिखाई जाएंगे श्री कृष्ण की लीलाएं। बाढ़ प्रभावित नेपाल में अभी भी जिंदगी की तलाश जारी। त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से 2 और मजदूरों का किया गया सफलतापूर्वक रेस्क्यू।

0: नमस्कार, लंच टाइम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदीप।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। और जीएनटी के हमारे तमाम दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई।
0: बिल्कुल, हम सबकी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरे और सरगम की तरफ से आप सबको कृष्णा के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए जीएनटी स्पेशल शो की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आज का दिन बहुत पावन है। हर जगह जय नंदलाला जय गोपाला की गूंज है, क्योंकि आज कान्हा आ रहे हैं। मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, देश के कोने कोने में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों की रौनक देखने को मिल रही है। गोवर्धन गिरधारी देवकी नंदन मदन मुरारी के प्राकट्य का मुख्य उत्सव तो आज मध्य रात्रि में होगा, उसकी तस्वीरें हम आपको जयंती पर जरूर दिखाएंगे। जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग का मुहूर्त बनेगा, क्योंकि द्वापर युग में इसी तिथि और मुहूर्त में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे।
0: बिल्कुल देखिए, लेकिन इससे पहले आज सुबह से ही मथुरा वृंदावन की रौनक हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मथुरा वृंदावन समेत देश भर के मंदिरों में माहौल कृष्णमय हो गया है। खासतौर से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में इसकी रौनक अलग ही दिखाई दे रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं। उनकी भक्ति और उनका उत्साह देखते ही बनता है।
1: बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज सुबह 10 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर पूजा अर्चना की। इससे पहले वहां आज तड़के मंगला आरती भी की गई और अब मध्य रात्रि में होने वाले प्राकट्य उत्सव का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा है। हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे और मथुरा में आज और क्या क्या होने वाला है, क्योंकि आज खास दिन है। और इससे पहले आपको दिखा देते हैं देश के कुछ और शहरों में जन्माष्टमी के उत्सव की कैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं।
0: और देखिए, आज पूरा देश भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रंग में पूरी तरह से रंग गया है। मथुरा से लेकर दिल्ली तक और काशी से लेकर मुंबई तक हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग बिखरे हैं। कहीं भक्त नाचते गाते कान्हा की भक्ति में लीन है, तो कहीं मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खुशी में मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु अपने लड्डू गोपाल को नए वस्त्र और आभूषण पहनाकर उनका श्रृंगार भी कर रहे हैं।
1: आज आधी रात को कान्हा का जन्म होगा और उनके दर्शन के लिए भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो दृश्य सामने आएंगे शगुफ्ता, वो वाकई में सबको भक्ति से भरपूर कर देंगे। हम आपको इस उत्सव के हर खास पल की तस्वीरें जीएनटी पर दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिरकार जन्माष्टमी का महत्व क्या है।
0: चलिए तस्वीरें अलग अलग जगह की आपको लगातार दिखा रहे हैं। देश भर में देखिए जन्माष्टमी के इस पर्व की रौनक, उल्लास और रंग साफ नजर आ रहे हैं।
1: बिल्कुल, तस्वीरें आप देख सकते हैं, कृष्णमय हो गए हैं तमाम मंदिर। जो साजो सज्जा है वो देखते ही बन रही है। कहीं फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया है, कहीं लाइटों से जगमगा रहे हैं मंदिर। लेकिन जो असली रौनक है वो आज मध्य रात्रि में देखने को मिलेगी, क्योंकि मध्य रात्रि को ही भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक किया जाता है और खासतौर पर उनका जो जन्मदिन है उसे मनाया जाता है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तब तक हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भक्त हैं वो सराबोर नजर आ रहे हैं, कृष्णमय हो गए हैं, क्योंकि दिन कुछ ऐसा है, पर्व कुछ ऐसा है, आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव।
0: देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखाते हैं, नाचते गाते झूमते हुए इन श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखिए। अपने आप में ये दृश्य बहुत खास है, क्योंकि आज नंद के लाला का प्रकट्य उत्सव है और मध्य रात्रि को जब वो आएंगे तो दृश्य और भी कृष्णमय हो जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मुंबई जयपुर दिल्ली की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें देख लीजिए, ईस्ट ऑफ कैलाश की तस्वीरें देख लीजिए, या फिर मथुरा का जिक्र, क्योंकि आज के दिन करना तो सरगम बनता है, क्योंकि मथुरा में जैसी रौनक आपको नजर आएगी वैसी शायद ही देश के किसी और कोने में आपको नजर आएगी। तो कृष्णमय हो चला है पूरा माहौल और कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन सबको पूरा यकीन है कि आज कृष्ण भगवान का प्रकट्य उत्सव होगा, भगवान आएंगे और इन सबके कष्टों को हर लेंगे।

0: चलिए यही रौनक और रंग दिखाने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। मुंबई आपको लेकर चलेंगे धर्मेंद्र के पास, वहां पर मौजूद हैं संजय शर्मा जी, हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं, और श्रुति खरबंदा ज्योतिषी आचार्य हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रुति जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले मथुरा के रंग दिखाते हैं आपको। मथुरा में इस वक्त संजय जी मौजूद हैं। संजय सर, क्या देख पा रहे हैं आप अपनी नजरों से और लेंस के माध्यम से हम तक क्या दृश्य आप पहुंचाएंगे?
1: मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि लगातार भक्तों का तांता यहाँ पर अपने ठाकुर जी के दर्शन के लिए आ रहा है। जन्माष्टमी का पवित्र अवसर है और जन्माष्टमी ये ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ पर योगेश्वर, राजेश्वर और जगदीश्वर, कृष्ण ने जन्म लिया और उनके साथ ही योग माया ने जन्म लिया। आज का उत्सव सिर्फ कृष्ण जन्मोत्सव नहीं, योग माया का भी जन्मोत्सव है और हम उसी जगह खड़े हैं जहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर योग माया ने कंस को यह कहा था कि तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है, वो तो कहीं ब्रज में पहुंच चुका है, इसलिए अब तुम मेरे से कुछ नहीं कर सकता। और वही योग माया के जन्म का उत्सव है। ये ऐसी जगह है जो शक्ति पीठ भी है और भक्ति पीठ भी है। शक्ति के साथ भक्ति का यहाँ पर योग है। ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ राशेश्वर, योगेश्वर, जगदीश्वर, कृष्ण का भी जन्म है और शक्ति की जो कृपामयी, करुणामयी, दयामयी माता है उस महामाई का भी जन्मस्थल ये जगह है, इसलिए यहाँ का महत्व तो ज्यादा है। और ये जो भक्तों का तांता है, सुरक्षा व्यवस्था लगभग 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, कुछ वैसी ही सुरक्षा व्यवस्था है जो कंस के समय थी, लेकिन उस समय कान्हा के जन्म को रोकने के लिए थी, अब आतंक को रोकने के लिए। उस समय आतंक की सुरक्षा व्यवस्था थी, अब ये आतंक के विरुद्ध सुरक्षा व्यवस्था है। तो सभी लोग जो लोग आए हैं उनमें से उनको मोबाइल अपने, अगर आपके पास आदेश पत्र नहीं है, परवाना नहीं है, तो आप मोबाइल नहीं लेके आ सकते, आप स्मार्ट वॉच नहीं पहन के आ सकते, पर्स और तमाम चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चाबी, वो सारी चीजों पर पाबंदी है। लोगों का तांता मैं सुबह 4 बजे से देख रहा हूं कि भक्तों का तांता ऐसे ही लगा हुआ है। 4 दरवाजों से लोग आते हैं और 2 दरवाजों से लोग वापस जाते हैं, तो यानी कुल मिलाकर सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आए थे और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर गो पूजन किया, गोदान संकल्प किया और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो यहाँ के रंग को काफी द्विगुणित, कई गुणित करती हैं। और आप ब्रज की सड़कों पर निकलिए, गलियों में जाइए, चौराहों पर जाइए, सजे धजे चौराहे हैं, जगह जगह मंच बने हैं, वहां पर भक्तों के लिए भंडारा बट रहा है। तो भाव, भक्ति और भंडारा, इन तीनों का संगम मथुरा में देखने को मिल रहा है।
0: बिल्कुल संजय सर, आपके पास आएंगे और कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव हो, उनका जन्म दिवस हो और आप मथुरा वृंदावन नहीं गए तो वो मजा नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं, तमाम जगह से हमारे रिपोर्टर्स जो है लगातार जुड़े हुए हैं और रौनक जो है हर जगह देखने को मिल रही है। धर्मेंद्र दुबे के पास चलते हैं, उसके बाद जो हमारे तमाम गेस्ट हैं उनके पास भी आएंगे। धर्मेंद्र, मुंबई में क्या नजारा है? देखिए आज तो कृष्णमय हो गया है, चाहे मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, अब बाकी बिहारी यानी मथुरा वृंदावन की तो चलिए बात ही कुछ और है, लेकिन दही हांडी की जो तैयारियां हैं वो मुंबई में बहुत लंबे समय से चल रही थी, अभी क्या दृश्य सामने आ रहा है वो दिखाएं।
2: देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के जुहू इस्कॉन मंदिर में और सबसे पहले यहां के राधा मैया का और श्री कृष्ण जी का दर्शन करिए। बहुत ही ज्यादा सुप्रख्यात ये टेंपल है और तमाम लोग जो हैं मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से यहां पर आते हैं, आम तो आम खास भी आते हैं। जैसा कि आज जो खबर है हमारे पास कि शाम को 5 बजे से ही यहाँ पर तमाम बॉलीवुड के स्टार्स भी राधे मैया और श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले हैं। वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा है और देखें किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एकमात्र राधा जी और श्री कृष्ण जी की इस जोड़ी का दर्शन करने के लिए। वाकई में आज श्री कृष्ण जी के जन्मदिन का मौका है और हर किसी को बेसब्री से इंतजार है 12 बजने का। थोड़ा सा देखें कि कतार तो यहाँ पर लगी है लेकिन सुबह से ही बकायदा भजन कीर्तन में भी जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं वो कुछ इस तरीके से माहौल बनाए बैठे हुए हैं। जो आंकड़ा है हमारे पास, तकरीबन आज के दिन यहाँ पर 8 से 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो आने वाले हैं और वाकई में जैसे ही आज 12 बजे का श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाएगा उसके बाद कल मुंबई और महाराष्ट्र के लिए बहुत ही स्पेशल दिन होगा जिसे दही हंडी के रूप में माना जाता है। एक तरह से महाराष्ट्र सरकार ने इसे साहसिक खेल भी बताया है। तैयारियां मुंबई के हर गली नुक्कड़ सड़कों पर देखने को मिल रही है। बड़े बड़े मंच सजाने शुरू हो चुके हैं और कल सुबह से ही 9 बजे दही हंडी जो तोड़ने की प्रथा है वो शुरू हो जाएगी। मुंबई के तमाम टोलियां जो गोविंदा पथक है जिन्होंने महीने पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी थी वो सारे मुंबई में लगे हुए हर दही हंडी की तरफ पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं दही हंडी तोड़ करके कृष्ण जन्माष्टमी अपने रंग से मनाएंगे। लेकिन थोड़ी सी तस्वीरें और दिखाएं कि जहां हम इस समय मौजूद हैं जूहू का इस्कॉन मंदिर कितने सुंदर और भव्य तरीके से सजाया गया है। ये एक बहुत बड़ा झूमर है जो इस्कॉन मंदिर की शोभा हमेशा ही बढ़ाता है। इसके अलावा आप देखें महाआरती के लिए प्रांगण को किस तरीके से फूलों से लाइटिंग से जो है बड़े ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। जो जानकारी है उसके हिसाब से ये जो आप अभी पंडाल देख रहे हैं मंडप की तरह अभी भी यहाँ पर काम देखिए शुरू ही है। फूलों से हारों से सजाने का काम महाआरती यहाँ पर होने वाली है। इस्कॉन मंदिर जो पूरे देश और विदेशों में भी फेमस है वहाँ के जितने भी दिग्गज महंत हैं प्रभु हैं वो सब यहाँ मौजूद होने वाले हैं और उसके बाद एक महाआरती यहाँ पर होने वाली है। बहुत ही सुंदर प्रांगण है जो इस्कॉन का और जहाँ भी आपकी नजरें जाए हर तरह से फूलों से बहुत ही अच्छे ढंग से इस परिसर को सजाया गया है। खास बात यह है कि श्री कृष्ण जी को जो भी पक्षी पसंद है फूलों से उस पक्षी का अवतार उनकी तस्वीरें उनके चलचित्र यहाँ मौजूद हर खंबे पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ इस मंदिर में और भी बहुत सारे ऐसे चलचित्र और ऐसे दृश्य लगाए गए हैं जो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की लीला दिखाते हैं। लोग बकायदा कतार में खड़े होते हैं श्री कृष्ण और श्री राधे जी का दर्शन करने के बाद सीधे कतार से होते हुए महाभंडारा की तरफ चले जाते हैं। दो समय का महाभंडारा यहाँ पर होता है
0: और बड़ा ही सुव्यवस्थित तरीके से ये पूरा प्रोग्राम जो है आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिएगा। धर्मेंद्र लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच ज्योतिषाचार्य विनोद भारद्वाज जी भी स्टूडियो में आ गए हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। आपसे भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। श्रुति जी आपके पास आते हुए श्रुति जी ये बताइए कि देखिए जन्मोत्सव की हम लगातार बात कर रहे हैं, कृष्ण जन्मोत्सव होने वाला है, रात को कान्हा आ रहे हैं, पधार रहे हैं, एक उम्मीद है सबके जहन में कि कान्हा आएंगे और हमारे कष्टों का हरण करेंगे, कृष्ण भगवान आएंगे, हमारे आराध्य आएंगे और सभी श्रद्धालु जो वहां पर मौजूद हैं टकटकी लगाए उनके इंतजार जो है वो फाइनली खत्म हो जाएगा। ये जन्मोत्सव हम सबको क्या संदेश देता है और आने वाली पीढ़ियां इसके साथ कैसे कनेक्ट हो सकती हैं?
3: आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया और इनफैक्ट आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। पहले तो जीएनटी के माध्यम से सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही उम्मीद करते हैं कि श्री कृष्ण आएंगे, श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार जो है जन्म लेंगे क्योंकि यशोदा के गर्भ से उनका जन्म हुआ और हम सबके कष्ट हर लेंगे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में भी देखिए ना, एक तो 8 नंबर यहाँ पे मैं हमेशा पैटर्न रीड करने की कोशिश करती हूँ जितनी भी मेरी छोटी समझ है और ईश्वर की कृपा से ही हमको वो ज्ञान मिलता है तो वही आज बतलाती हूँ कि देखिये 8 नंबर अष्टमी तिथि को उनका जो है जन्म हुआ और अष्टमी 8वां अवतार थे वो श्री हरि विष्णु का और यहाँ पे हम भादो मास में जो है ये कृष्ण जन्माष्टमी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। दो चीजें, एक ज्योतिष कारण और एक ये जो मिथोलॉजिकल जो स्टोरीज हैं, जो कथाएं हैं, लोक कथाओं में जो हम सुनते हैं उस बारे में उनका जीवन भी आप देखें तो 8 नंबर हम शनि से जोड़कर जब देखते हैं तो कितना संघर्षपूर्ण था, कितने लेकिन उन्होंने असुरों का, राक्षसों का अपने जीवन काल में वध किया, कंस का वध किया, उसके बाद उन्होंने द्वारिका नगरी बसाई, उसके बाद उन्होंने जो है कालयवन राक्षस का उसका भी जो राजा थे हालांकि उनकी संधि एलाय जिसे कह सकते हैं जरासंध से थी और वो श्री कृष्ण को ही मारना चाहते थे कंस के वध के बाद, तो कितनी उन्होंने नकारात्मकता जो है दुनिया से कम करी। इंद्र का जो अहंकार था उसको भी तोड़ा, कहते हैं कि इंद्र को अहंकार हो गया था और वो बारिशों से जो है लोगों को परेशान करके जो है उत्पात मचाने लगे थे, ये जो हो रहा था उसका उन्हें शुद्ध नहीं था तो उन्होंने अपने चमत्कारों से कहें, अपनी लीलाओं से कहें, इंद्र का भी जो है पर्वत, इसलिए कहते हैं ना कि उन्होंने पर्वत अपनी छोटी उंगली पे उठा के जब दिखाया तो इंद्र को भी आभास हुआ कि ये तो साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो विष्णु का अवतार है। तो हम जब ये देखते हैं और काल की गणना करने की अपनी छोटी सी समझ से कोशिश करते हैं। हम यही प्रार्थना हर साल हम करते हैं और यही खुशी मनाते हैं कि प्रभु आएंगे और हमारे सारे कष्ट हर लेंगे, सारी समस्याएं या जितनी हो सकती हैं, जितनी मुमकिन है उनकी दुनिया में, हमारी दुनिया में, वो सब यहाँ से जो है हट जाएंगी। और अगर इस समय जो है हम ग्रहों का भी देख लें तो देखें, चंद्रमा तो उचके हैं ही, रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में, यहाँ पे शुक्र भी आज स्वयं के अपनी ही राशि में, स्वराशि में है, सूर्य भी स्वराशि में है, गुरु भी उचके होके बैठे हैं। तो आज का दिन किसी न किसी तरह ना बहुत देखो तरीकों से शुभ भी है कि देखिए कृष्ण आने वाले हैं। और अभी आप एक खबर पढ़ रही थी कि नेपाल से देखिए चमत्कारी रूप से कैसे दो जो मजदूर हैं उनकी रक्षा सुरक्षा वो वहां से निकल आए, जबकि इतनी सारी तबाही भी मची। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गुड न्यूज भी इतनी सारी समस्याओं के बीच में निकलती है। और हम श्री कृष्ण की पूजा करके, श्री हरि विष्णु की पूजा करके हम उनसे यही मांगते हैं कि सुख समृद्धि और स्वास्थ्य जो है हम सबको प्रदान करें और सारे कष्ट हमारे।
0: श्रुति जी, देखिए श्रुति जी आपके पास दोबारा आएंगे। और जैसे शगुफ्ता ने यहाँ पर सवाल किया था, बड़ा ही प्यारा सवाल था शगुफ्ता, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है तो तमाम दुखों से इंसान घिरा रहता है, तमाम दुखों को हर लेंगे भगवान। विनोद जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपकी तुलना में मेरा जो ज्ञान है वो सीमित है, लेकिन जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामहे, यानी अधर्म पर धर्म की जीत हो उसके लिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, अभी हम उनका जन्मोत्सव बना रहे हैं, कलयुग है, घोर कलयुग है कहेंगे, लेकिन किस तरह से आप इसे देखते हैं, क्या संदेश हम अपनी युवा पीढ़ी को दे रहे हैं इस युग में उनके जन्म के माध्यम से?
4: जरूर देखिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब इस पृथ्वी पे अनाचार अत्याचार पापाचार बढ़ेगा, जब जब रिश्ते नाते धूल दूषित किए जाएंगे, जब संबंध में एक तरह से कड़वाहट भर जाएगी, तब मैं पुनः इस पृथ्वी पे आ करके धर्म की स्थापना करूंगा, साधुओं का जो साधु लोग हैं उनका संरक्षण तो करूंगा, लेकिन जो असुर हैं उनका समूल नाश करूंगा। यही भगवान श्री कृष्ण की उत्पत्ति का उत्सव था। देखिए ना, एक पुत्र ने राज्य के मोह में अपने पिता को जेल में डाल दिया, एक भाई ने अपनी बहन को कैद करा दिया, किस लिए, किसका पुत्र, आठवां पुत्र आएगा तो मेरी मृत्यु होगी। उस पागल को, उस अधर्मी को यह नहीं पता था कि मृत्यु तो सबकी होनी है। तो देखिए, यही स्थितियां जब होती है ना, तब प्रभु को विशेष रूप से अवतरित होना पड़ता है। यह कृष्ण जन्म अष्टमी निश्चित रूप से जो बार बार परंपराओं में हम मनाते हैं ना, तो यह सूचित करती है हर व्यक्ति को कि भैया अत्याचार का भी अंत है। किसी के जीवन को जीवन समझ के उसका परवरिश करो। अगर आप परवरिश नहीं कर सकते तो उसे ताप भी मत दो। अपने मन क्रम वाणी से ऐसे शब्दों को ना निकालो कि फिर कृष्ण को आकर के संतुलन को ठीक करना पड़े। देखिए, एक सीधा सा संदेश है ये, क्योंकि हम बार बार मनाते हैं अष्टमी और बार बार भगवान कृष्ण का जन्म होता है, उनके चरित्र जितनी लीलाएं अभी आपके सामने श्रुति जी ने एकदम बहुत अच्छे ढंग से सारी लीलाओं का वर्णन किया था, वो सारी लीलाएं मनुष्य को ज्ञान देने के लिए है। अगर आप भी जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से संकल्प करिए कि इस प्रभु की भूमि में जितने भी जीव जंतु मानव मनुष्य वृक्ष पहाड़, सुंदर सी नदियां और सुंदर प्रकृति, इसे हम भगवान श्री कृष्ण की संरचना समझते हैं और इनका हम निश्चित रूप से रक्षण करेंगे।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर शब्दों में आपने आज के दिन का बखान किया है। देखिए, किसी भी त्यौहार या फेस्टिवल की जब हम जीएनटी पर भी बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि किसी भी तरह के त्यौहार को आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और सकारात्मक होकर उसके बारे में सोचिए तो उस चीज को आप ग्रहण भी आसानी से कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे ही नेगेटिविटी, सोचेंगे ही नकारात्मक, तो वैसे ही ऊर्जा आपको घेरेगी भी। लेकिन फेस्टिवल्स यानी जीएनटी, उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, तो यही रंग दिखाने का जिम्मा हम सब ने लिया है। अब आपको मथुरा की रौनक दिखा देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में आज जन्माष्टमी के उत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कई लोग तो भक्ति में भाव विभोर दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या कुछ कहना है सुनाते हैं आपको।
5: ले काना वंशीवारे की जय। आज हमारे कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, बहुत पूरे ब्रज मंडल में खुशियां ही खुशियां जा रही है। अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा है, और भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और हमको तो उसने पागल कर रखा है, हम तो उसके बिल्कुल पागल है। हमें कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। उसकी तो बहुत कुछ बताता है, लेकिन हम इसलिए नहीं बता रहे कि बोलते कि बताना नहीं चाहिए। उसकी कृपा बंद हो गई तो हम कैसे जी पाएंगे। अनुभव बता रहे अपना असली, इसमें झूठ वूठ कुछ नहीं है। बहुत कृपा करता है। काना से दिन क्यों लगाया है ये मैं जा

आसे दिले क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े से

0: करने।
1: चलिए ऐसी तस्वीरें लगातार आपको जीएनटी पर दिखाते रहेंगे। एक बार फिर से मथुरा चलते हैं, संजय जी वहां पर मौजूद हैं। संजय जी, जब आपके मुख से ज्ञान की अविरल धारा बहती है ना, तो हम तो चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि जो बातें आप हमें सिखा जाते हैं इस एज में, वो अगर हम अपने जीवन में उनको अपना लें, उनका पालन कर लें, तो हम भी बहुत दूर तक जा सकते हैं। अब ये बात की आज के दिन को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या संदेश हमें देता है ये जन्मोत्सव? सरगम भी जोड़ना चाहते हैं।
2: और संजय सर, मैं तो आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती थी, क्योंकि 3-4 साल पहले मैं आज ही के दिन वहां पर मौजूद थी और मैं तो भूल ही नहीं सकती उस अनुभूति को। आपको कितना आनंद आ रहा है, आप वहां पर मौजूद हैं, जन्माष्टमी का दिन है और आप खुद मथुरा में हैं, भक्तिमय हो रहा होगा पूरा माहौल, लेकिन आपको महसूस कैसा हो रहा है ये जरूर बताएं।
1: संजय जी की स्माइल सब बता रही है।
2: सब बता रही
3: ये आपने ऐसा सवाल पूछा है कि ज्यों गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुंह स्वाद। आप आनंद की इबारत सामने वाले के चेहरे पर, आंखों में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आनंद की तो यही परिभाषा है, आनंद को ये बताया नहीं जा सकता कि उसे कैसा लग रहा है। आज मैं यहाँ जो भी देख रहा हूँ, पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ, और मुझे हर बार ये आनंद कई गुना बढ़ के यानी ब्याज के साथ मिलता हुआ दिखता है, पुराने मूलधन के साथ, ब्याज के साथ। अब आज ये ठाकुर जी के विश्राम के लिए पर्दा लग चुका है, एक बहुत महीन जालीदार पर्दा है। ये वैसा ही पर्दा है, मर्यादा का पर्दा है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच होता है। जब ये पर्दा हट जाता है, तभी कान्हा का प्राकट्य होता है, तभी जन्माष्टमी का उत्सव सार्थक होता है। और मैं देख रहा था कि आप लोगों ने पूछा कि युवा पीढ़ी जैन जी को क्या शिक्षा मिलती है कृष्ण से। कृष्ण अपने आप में पूरे में शिक्षा के विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, क्योंकि कृष्ण के किसी भी अंग को, किसी भी पक्ष को, किसी भी आयाम को लें, वो अपने आप में शिक्षा है। बस निर्भर इस पर करता है कि हम उसको किस नजर से देखते हैं, किस निगाह से देखते हैं और उससे कितनी शिक्षा ले सकते हैं। कृष्ण अपने आप में योगेश्वर भी हैं, रासेश्वर भी हैं, जगदीश्वर भी हैं, और एक आम जिसको छछिया भर छाछ पे ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, तो वो गोपियां उनको कहती है कान्हा ये छाछ तुम्हें मिलेगी, नाच के दिखाओ, और कान्हा ब्रज की गलियों में नाचते हैं। तो ये जो प्रेम की पराकाष्ठा है, ये कृष्ण के जीवन में है। कृष्ण सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, सबसे बड़े युद्ध से अलग रह के युद्ध के सबसे बड़े महानायक श्री कृष्ण हैं। तो कृष्ण का व्यक्तित्व अपने आप में, बस नई पीढ़ी को उन नए आयामों को खोजने की जरूरत है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: जैसे ही वो खोजेंगे वो आयाम उन्हें मिलेंगे। अगर खोजने की ललक हो तो ईश्वर भी मिल जाता है,
2: खोजो तो ईश्वर भी बन जाता है। बहुत खूबसूरती से आपने हमें यहाँ पर बताया है कि श्री कृष्ण आखिर क्या है, क्योंकि श्री कृष्ण एक शब्द नहीं है, श्री कृष्ण तो एक आभास है, वो तो एक अनुभूति है। तो जीएनटी पर तमाम रंग जन्माष्टमी के हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ संजय शर्मा जी बने हुए हैं, हमारे साथ धर्मेंद्र दुबे जुड़े हुए हैं, श्रुति खरबंदा जी जुड़ी हुई हैं, विनोद जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, कहीं मजा आएगा।

बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: धूमधाम से मनाया जा रहा कृष्ण जन्मोत्सव मुंबई के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्ति में झूमते दिखे भक्त। जयपुर के गोविंद जी मंदिर में जश्न की खास तैयारी, पंजाब में बनाए जा रहे कान्हा की थीम वाले केक। कालकाजी मंदिर में जन्माष्टमी और काली जयंती की धूम, लड्डू गोपाल का लगाया गया झूला। द्वारका के इस्कॉन मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष ने की लड्डू गोपाल की पूजा। मथुरा से केरलम तक छाए कृष्ण भक्ति के रंग, अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में कान्हा की भव्य आरती। केरलम के अलपुझा में सुबह 10:03 बजे से दर्शन को मड़े भक्त। बाढ़ प्रभावित नेपाल में भी दिखी कृष्ण जन्माष्टमी की छटा, काठमांडू के कृष्ण मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा कान्हा का जन्मोत्सव। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आज मथुरा में विशेष कार्यक्रम, रात 9 बजे से होगा भव्य ड्रोन शो, 500 ड्रोन से दिखाई जाएंगी श्री कृष्ण की लीलाएं। बाढ़ प्रभावित नेपाल में अभी भी जिंदगी की तलाश जारी, त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के टनल से 2 और मजदूरों का किया गया रेस्क्यू।

0: तो नंदलाला पधार रहे हैं और जीएनटी पर ये खास पेशकश लगातार जारी है। जन्माष्टमी के ये तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी रौनक है वो भी लगातार बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम प्रश्नों की तरफ आगे बढ़े, अपने मेहमानों की तरफ आगे बढ़े, हमारी ग्राफिक्स टीम और हमारी ऊपर टीम ने जितनी मेहनत की है ये सब बनाने में और इसको तैयार करने में, उनके लिए एक बार क्लैप करना और ताली बजाना बनता है, क्योंकि आपने बहुत ही सुंदर तैयार किया है। विनोद जी भी तारीफ कर रहे थे उसको देखकर ग्राफिक को। चलिए धर्मेंद्र का रुख करना चाहूंगी, मुंबई में धर्मेंद्र मौजूद हैं। धर्मेंद्र, शाम तक, क्योंकि शाम की रौनक ना, शाम के रंग तो अलग ही होंगे, क्या कुछ कार्यक्रम विशेष तौर पर शाम को होने वाले हैं उसके बारे में भी बताइए।
1: देखिए, आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये कि अमूनन देश में और विदेशों में जहां जहां भी इस्कॉन मंदिर है, हमेशा ही रोज 12:30 बजे के आसपास बंद कर दी जा, माफ करिएगा, 12 बजे के आसपास बंद कर दी जाती है, उसके बाद 12:30 बजे उनका द्वार खुलता है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज 2400 घंटे जो है श्री कृष्ण जी और राधे मैया का ये जो दरबार है ये खुला रहेगा। बकायदा आरती का जो समय है चल पड़ा है और देखिए आरती भी हो रही है, लोग दर्शन भी कर रहे हैं और बकायदा बाहर जाकर के प्रसादी भी लेंगे। 10 बजे तक इस मंदिर, चूंकि श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी है, उनका जन्म होने वाला है, ऐसे में जो है मंदिर आज नहीं बंद किया जाएगा। ये देखिए आरती है और कहीं ना कहीं आरती लेने के लिए सभी यहाँ पर मेरी तरह बहुत ज्यादा प्रबल हैं और देखिए कितना सब खुश भी हैं इन सारी चीजों को देखते हुए। थोड़ा सा प्रांगण देखें, जहां भी आप देखें कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, श्री कृष्ण जी के जन्म को एक अलग ही तरह से मना रहे हैं। और जो यहाँ पर प्रभु होते हैं, जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है दान, माफ करिए, जो जीवन है उन्होंने श्री कृष्ण जी को दे रखा है, वो कुछ इस तरीके की झलकियाँ होती है। बकायदा भजन चल रहा है, जितने भी सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो लगातार बदले जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, हर किसी की बारी आ रही है और एक के बाद एक लोग अपने संगीत से, अपने भजन से श्री कृष्ण और राधे जी को मनाने में, उनकी मिन्नतें करने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं माहौल बना रहे हैं। थोड़ा सा देखें किस तरीके का इस समय यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। जैसा कि मैंने बताया, रोजाना करीब 10-12 हजार के आसपास श्रद्धालु जो हैं वो स्कॉन के इस मंदिर में आते हैं। लेकिन चूंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, ऐसे में जो आंकड़ा हमारे पास है उसके हिसाब से 10 लाख से ज्यादा जो भक्तगण हैं वो मंदिर प्रांगण में यहाँ पर आने वाले हैं। वाकई में बहुत ही सुंदर दृश्य इस समय देखने को मिल रहा है, हर कोई लीन है श्री कृष्ण और राधे जी के भक्ति में। वहीं दूसरी तरफ जो गोविंदा पथक है वो प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं, हालांकि आज के दिन वो आराम करेंगे क्योंकि लगातार 1-2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में 1-2 दिन जब शेष बचे होते हैं तो वो खुद आराम करते हैं और फिर कल सुबह से ही दही हंडी फोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जाहिर है एक साहसी खेल कहा गया है। थोड़ा सा तस्वीरें देखें किस तरीके से नतमस्तक होकर के श्री कृष्ण और राधे जी के दरबार में जो भक्तगण हैं वो पहुंचते हैं। फिलहाल यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा सुखदाय है, बड़े ही अस्थायी रूप से लोग जो है यहाँ पर दर्शन तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके प्रांगण में बैठकर उन्हें याद भी कर रहे हैं। जी
2: धर्मेंद्र, बहुत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, कृष्णमय हो चुका है माहौल। तो देखिए, चाहे मुंबई की बात कर लीजिए, मथुरा की बात कर लीजिए, जीएनटी के माध्यम से हमने आपको भगवान के दिव्य दर्शन करा दिए हैं। और देखिए, हमारे साथ यहाँ पे तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं। श्रुति जी के पास भी हम जाएंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से आज घर पर जो लोग हैं भगवान की पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शाम को अमूमन मनाया जाता है उनका जन्मदिवस, मध्य रात्रि में रौनक देखने को मिलती है। लेकिन विनोद जी से एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। विनोद जी, अभी मैं आपसे डिस्कस भी कर रही थी कि मैं खुद भगवान कृष्ण, खुद को भक्त तो नहीं बोलूंगी, दास बोलूंगी, नौकर मानूंगी मैं उनको अपना, मैं दास हूं मैं उनकी। भगवान श्री कृष्ण की अगर हम बात करें, मेरे दिल में बहुत ज्यादा खास जगह है और सबसे खास बात यह है कि हर कालखंड में उनको पूजा जाता है। यानी अगर बालावस्था की बात की जाए, माखन चोर, उनके जो नटखट अदाएं हैं, माँ उनके पीछे भाग रही है, कुछ चोरी कर रहे हैं, और उसके बाद युवावस्था में जिस तरीके से दोस्ती का संदेश उन्होंने दिया, सुदामा के साथ अपनी दोस्ती का संदेश दिया, उसके बाद सारथी बने अर्जुन के गीता का उपदेश दिया, कैसे देखते हैं आप इसे?
3: जी, निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसका प्रारंभ मैं यहां से करता हूं। यदि प्रेम मनुष्य के अंदर ना होता ना, तो मनुष्य पाषाण जैसा कठोर हो जाता, और प्रेम की साक्षात मूर्ति भगवान कृष्ण है। देखिए कृष्ण का जन्म हुआ तो तमाम लीलाएं भगवान श्री कृष्ण करते रहे। देखिए भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उन्होंने चोरी की, किसके लिए? माखन के लिए। ये हमें निश्चित रूप से दर्शाता है कि कोई भी बच्चा है उसे भोजन पोषण चाहे जिस घर में मिले मिलना चाहिए, नहीं तो गांव पे, देश पे, क्षेत्र पे जब आपदा आएगी ना तो कोई बच्चा उस आपदा को दूर नहीं कर सकता। अगर भगवान श्री कृष्ण चोरी करके, चोरी जैसी लीला को कर करके ये ना दिखाते तो बड़े से बड़े असुर को कैसे मार सकते थे। और यहीं पे साम दाम, एक तरह से छल भेद सारा उपयोग करके भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया है कि भैया यदि धर्म की स्थापना के लिए ये सब कार्य करने पड़े तब भी उचित है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने पूछा है कि इनका, इनकी हर लीलाओं की पूजा की जाती है। देखिए चोरी छल करना और एक तरह से महाभारत में सारथी बने, लेकिन पूरा युद्ध इनके आसपास ही घूमता रहा, खुद नहीं लड़े लेकिन सबका आरोप था कि भगवान श्री कृष्ण जहां है विजय वही होगी। इसीलिए इनको पूजा जाता है कि आठों सिद्धियां इनके पास हैं और इन सिद्धियों का एक संदेश, सीधा संदेश है कि यदि धर्म की स्थापना के लिए ऐसे कार्य करने पड़े, किसी की रक्षा के लिए, किसी के अधिकार के लिए, किसी की खुशहाली, किसी देश की खुशहाली के लिए, किसी समाज के खुशहाली के लिए अगर ये अनैतिक कार्य भी करने पड़े तो आपको करना पड़ेगा ही। ये सारे इनके सिद्धांत हमें सीख देते हैं। इसी तरह से इनकी हर लीलाओं का जो हम पूजन करते हैं, जो देख करके मस्त हो करके सुनते हैं, निश्चित रूप से ये लीलाएं जो है हर युग में पूजनीय हैं। और पूजनीय ही नहीं, संदेश देने वाली हैं। जी
0: जी, चलिए संजय जी के पास एक बार चलते हैं, मथुरा की रौनक फिर से आपको दिखाते हैं। संजय जी, रात की रौनक के बारे में भी एक तो आपसे मैं जानना चाहूं। संजय जी आवाज आ रही है आपको मेरी?
4: जी बिल्कुल आ रही
0: जी। संजय जी सवाल आपसे, चलिए सीधा सवाल पूछ लेती हूँ। सवाल यही है कि मुझे ऐसे लगता है कि कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में अगर मुझे समझना पड़े ना, अगर मैं डीप में जाऊं तो मुझे दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी, क्योंकि इस जन्म में तो मैं समझ नहीं पाऊंगी। और जो संदेश छुपे हुए हैं उनकी लीलाओं में, उसको अगर मैं समझ के अपने जीवन में उतार पाऊं तो मेरा 1% भी बहुत सफल हो जाएगा। क्या कहेंगे?
4: कृष्ण का पूरा जीवन ही संदेशों से भरा हुआ है, इसलिए उनकी हर एक लीला अलग अलग तरह के संदेश देती है और उसको देखने की जरूरत है, उसके पीछे का दर्शन समझने की जरूरत है कि अगर उन्होंने चीर हरण की लीला की है तो उसका भी, यानी गोपियों को जो स्नान करते समय, यमुना में स्नान करते समय उन्होंने उनके कपड़े चुराए और उनको फिर बाद में बताया कि यमुना के जल में नग्न होकर स्नान नहीं किया जाता, कपड़े पहन के स्नान कीजिए, मर्यादाओं का पालन कीजिए। इसके साथ ही माखन चोरी की लीला की, उसमें भी उनका संदेश छुपा है। गोचारण की लीला की, उसमें भी उनका संदेश छुपा है। प्रकृति के साथ प्रेम, प्रकृति के साथ प्यार, और गाय सारे जितने भी प्राणवान जीव हैं उनमें गाय मनुष्य के सबसे निकट है। कुत्ता सबसे वफादार है लेकिन गाय, उसके अंदर जो वात्सल्य के गुण हैं वो स्वाभाविक गुण हैं। आप अगर छोटे बच्चा अगर गाय के पास जाए तो गाय कभी उसको नहीं कुचलती, अगर कोई दूसरा प्राणी उसको बच्चे को नुकसान करने आ रहा हो तो गाय उसको बचाती है। गाय के दूध में और गोवंश में ये शक्ति ऐसी है कि भैंस के बच्चे को अगर आप दूर छोड़ दें तो हो सकता है कि वो अपने घर नहीं पहुंच पाए, लेकिन गाय के बछड़े को और गाय को ये अंदर से प्रकृति ने उनके अंदर जो एबिलिटी दी है उसमें ये कि वो सैकड़ों मील दूर से भी वो अपनी जगह पहुंच जाती है, उसको घेर कर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गाय का बछड़ा अपनी माँ को हजारों गायों के बीच में पहचान सकता है, लेकिन भैंस का कटरा अपनी माँ को हजारों भैंसों के बीच से नहीं पहचान सकता। तो ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं, और गाय के दूध में जो शक्ति है, अब तो आधुनिक विज्ञान ने भी इसको साबित किया है कि उसके अंदर जो कुछ नस्ल की गाय हैं, उनके दूध में स्वर्ण की मात्रा होती है, उनके दूध में और उनके मूत्र में ऐसी विलक्षण चीजें हैं, अमृत तत्व है, कि कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। ये मैं नहीं, बहुत सारे लोगों की क्लिनिकल रिपोर्ट ये बात कहती है।
2: बिल्कुल संजय,
4: लेकिन आवश्यकता है कि उस सारे शोध को फिर से परिशोधित करने की।
2: मुझे लगता है कि अगर इस टॉपिक पे संजय सर अगर हम बात करें तो ये शो क्या 2-4 घंटे तो बीत जाएंगे, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे, श्रुति जी आपके पास भी आएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली में द्वारका के इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, उनका क्या कहना है उत्सव के बारे में, आइए आपको पहले वो सुना देते हैं।
5: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने भगवान जी का श्रृंगार देखा, वो बहुत अच्छे से उनको डेकोरेट कर रखा है और पूरे मंदिर में फूल सज रखे हैं। आज बहुत ज़्यादा भव्य उत्सव है इस्कॉन के लिए और भगवान जी का जन्म हुआ था ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा होने वाला है आज।
6: बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत हमारा हो रहा है आज के दो, हम मंगल आरती आते हैं लेकिन जन्माष्टमी के आज का दर्शन करके तो इतना आनंद आया,
7: बहुत अच्छा लगा हमें,
8: बहुत आनंद आया,
7: बहुत अच्छा लगा, ठाकुर जी के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। बनाएंगे आज अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे और पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे फिर हम गाएंगे,
9: बता नहीं सकते इसका कोई अनुभव कोई फील नहीं है, कैसा था कि बस देखते रहो और बस हरे कृष्णाष्टमी गाते रहो और जो आंखों सांसों बहते हैं उनकी तो कोई नहीं, बहुत ही अद्भुत, मतलब बता नहीं सकते, बहुत ज्यादा एक वो जो वाइब होती है ना, वो ऐसा लगता है बस थम जाओ यहीं, अनुभव अलग था वो, जो सुबह की वाइब थी, सारे इकट्ठे जो बोलते हैं और सामने खाना होता है, लगता है बस ये पल यहीं रुक जाए।
10: कान्हा जी को नहलाएंगे, उससे उनके वस्त्र बनाएंगे सुंदर सुंदर, ये खिलौने रखेंगे, 56 भोग लगाएंगे, सब कुछ अच्छे से 12 बजे तक राधे कृष्णा हरे कृष्णा का जाप करेंगे।

0: देखिए आजकल के जीवन में भी हम कहते हैं ना कि आजकल की लाइफ में हम लोगों में पेशेंस की बहुत कमी है, तो मुझे लगता है कि श्री कृष्ण के जीवन को देखते हुए ना धैर्य हमें सीखना चाहिए। हर सिचुएशन में एक्ट कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है, ये भी वो सिखाते हैं। धर्म अधर्म की पालना कैसे करनी है, ये भी वो बखूबी सिखाते हैं। क्या कहेंगे
1: जी शगुप्ता जी, आप कहे तो बात बिल्कुल सही रही है। देखें, श्री कृष्ण ने गाइड तो सभी को किया, उन्होंने गाइड तो धृतराष्ट्र को भी किया, उन्होंने कर्ण को भी किया, दुर्योधन को भी बताया, सब समझाया। सही इंसान को गाइडेंस दी जब अर्जुन, जिन्होंने उनकी बात मानी और क्या कहते उनका साथ फिर उनको मिला। कहने का मतलब है कि अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिला, तो देखें इतने सीमित संसाधनों में भी उनकी जीत हुई। लेकिन अब आप ये कहें, देखिए आज की प्रैक्टिकल लाइफ में आप किसी गलत इंसान को जब समझाने जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा उससे बहस भी नहीं करी जाती है, क्योंकि आपको पता है सामने वाला मानने वाला नहीं है। और यहाँ कृष्ण की जब आप कथाएं लीलाएं सुनते हैं, तो वही चीज उभर उभर के बार बार आती है कि देखिये इन्होंने कैसे माइल्डली इनको गाइड किया, कितने लोगों का अहंकार तोड़ा। अब मैं इसको ज्योतिष से भी कनेक्ट करूंगी, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, मजा आता है उसको समझने में। लेकिन उन्होंने कितने लोगों का अहंकार तोड़ा, और कोई इसमें बचा नहीं था। पौंड्रक का अहंकार तोड़ा, जो खुद को वसुदेव मानने लगे थे कि भाई मोर पंख लगाकर और बांसुरी बजाकर उन्होंने श्री कृष्ण को बोला कि नहीं, मैं हूं असली में वासुदेव। तो कृष्ण जी ने उनका अहंकार तोड़ा। उन्होंने सत्यभामा को भी जब गर्व हो गया कि नहीं, मैं ही श्री कृष्ण से जो है बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, तो वो जो तुला प्रसंग हुआ, कितने भी गहने रख दिए श्री कृष्ण के दूसरे वाले पलड़े में, वो नीचे नहीं गया। लेकिन वहीं पे रोहिणी ने जब एक तुलसी दल रखा, तो वो पलड़ा नीचे आ गया। तो प्रेम का वहां पे जो है हमको जानने को मिलता है। तो आप अगर यही देख लेना कि कहाँ कहाँ किस किस का घमंड देखें, थोड़ा तो यहाँ से हम ज्योतिष से जोड़ लेते हैं कि देखिए आठवीं संतान थे वो, क्या कहते हैं, मैं नाम मेरे मुंह से निकल गया, देवकी की, देवकी के आठवीं संतान थे। तो आठवीं संतान है, आठवें अवतार है, अष्टमी तिथि है, यहाँ पे तुला प्रसंग हो रहा है, जहाँ पे हम कहते हैं शनि उच्च के हो जाते हैं और आठ नंबर को हम शनि से जुड़ के देखते हैं। जैसे ही जन्म हुआ तो अपने माँ बाप छूटे और दूसरे माँ बाप का पैर वहां पे रेडी था उनका पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए। वो एक बहुत अमीर और प्रतिष्ठित जो है परिवार था वहां पे। तो कैसे
0: जी
1: प्रकृति जो है उनको सपोर्ट भी करती गई साथ साथ, और कितनी नकारात्मकता दूर करती गई, जो कि शनि हमेशा जो है
0: जी
1: वो
0: बिल्कुल
1: धाक करते चले रहते हैं, आपको आभास करवाते हुए ये सारी चीजें। तो ये सब जो है लोगों को बहुत होप देती हैं, बहुत उम्मीद देती
0: उम्मीद
1: हैं,
0: देती
1: ईश्वर
0: हैं
1: में
0: बिल्कुल, और
1: आस्था
0: संदेश यही
1: विश्वास
0: छिपा
1: बांटती
0: है
1: हैं
0: जो
1: कि
0: उनकी लीलाओं के बारे में हम लगातार जिक्र कर रहे हैं।
2: बिल्कुल शगुप्ता। श्रुति जी आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे जन्माष्टमी के तमाम रंग, मुंबई से क्या तस्वीरें आ रही है हमारे रिपोर्टर धर्मेंद्र दुबे हमें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन आ जाऊंगा।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: चलिए, तमाम देश की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, रंग भी आपके सामने रख रहे हैं। सीधा आपको एक बार फिर से मुंबई लिए चलते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। धर्मेंद्र, ये बताइए कि यहाँ पर आई एम श्योर कि व्रती भी पहुंचे होंगे, तो उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम आप देख पा रहे हैं? धर्मेंद्र
1: देखिए, आपको बताते हैं यहाँ पर कि जी क्या आप सवाल दोहराएंगी प्लीज?
0: जी, मेरा ये कहना है कि श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ इंतजाम है यहाँ पर?
1: देखिए, सबसे खास बात तो ये है कि हमेशा ही रोजाना ही दो समय का जो भंडारा है प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के लिए रखा जाता है, लेकिन आज उनकी थाली में कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट व्यंजन बढ़ा दिए जाएंगे क्योंकि आज श्री कृष्ण जी का जन्म जो होने वाला है। अलग ही तरह की तैयारी मुंबई के इस्कॉन मंदिर में देखी जा रही है। इस तरह से मुंबई में तकरीबन 5-6 इस्कॉन मंदिर है और जहां पर इसी तरह के रंग हर तस्वीर में देखने को मिलने वाले हैं। आज श्रद्धालुओं के लिए जो दूसरी सबसे बड़ी खास चीज यहां पर करी गई है कि रोजाना ही 1 बजे के बाद 4 बजे तक मंदिर का जो द्वार है उसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज बेधड़क अपने समय पर अपने घर से निकलकर रात तक यहां पर लोग आकर के बकायदा राधा रानी और श्री कृष्ण जी का जो आशीर्वाद है वो ले सकते हैं। और आप थोड़ा सा देखें कितनी बढ़िया तरीके से आज श्री कृष्ण जी को सजाया गया है। खास बात यह है कि राधा जी के साथ श्री कृष्ण जी का वास तो इस जगह पर है ही, लेकिन इसके आसपास और भी ईश्वर को बसाया गया है, विराजमान किया गया है, जैसे कि दाएं
0: बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र, भगवान के दर्शन GNT के माध्यम से लगातार हो रहे हैं हमारे दर्शकों को। तस्वीरें दिव्य है, मध्य रात्रि में जो रौनक है वो तो देखने को मिलेगी ही। लेकिन विनोद जी हमारे पास, विनोद जी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि समय हमारे पास है नहीं, आपका जवाब अधूरा रह गया था शायद, आप कह रहे थे आप कुछ कहना चाह रहे थे।
2: जी जी, कहें। देखिए, आपने जो भी प्रश्न किया था, देखिए इस संसार में ना जो भगवान नारायण के बहुत सारे अवतार हुए, बहुत सारे प्रतिनिधित्व अवतार हुए, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है ये थोड़ा सा अलग था, क्योंकि जो भी जितने भी अवतार हुए उसमें सबसे पहले दुख उसके बाद सुख, लेकिन भगवान कृष्ण के जितने भी ये जो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ इसमें रहस्य, एक एक जगह पे रहस्य, होना कहाँ था, जन्म लेना कहाँ था, पहुंच कहाँ गए। तो निश्चित रूप से हमें, आप या कोई भी जब इन रहस्यों को देखता है पढ़ता है ना, तो जानने की बहुत ज्यादा
0: लालसा बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसलिए वक्त बहुत कम है, माफ कीजिएगा, हम कैमरा के बाद ये बात को कंप्लीट करेंगे, आपसे सुनेंगे। चलिए विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और श्रुति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए कि आज के दिन की खासियत इतनी ज्यादा क्यों है। चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।
3: बिल्कुल, इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन GNT पर ये जो तमाम रंग है वो लगातार जारी है।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्ति में झूमते हुए दिखे भक्त। जयपुर के गोविंद जी मंदिर में जश्न की खास तैयारी। पंजाब में बनाए जा रहे हैं कान्हा की थीम वाले केक।

कालका जी मंदिर में जन्माष्टमी और काली जयंती की धूम देखने को मिली। लड्डू गोपाल का लगाया गया झूला। द्वारका के इस्कॉन मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष ने की लड्डू गोपाल की पूजा।

0: मथुरा से केरलम तक छाए कृष्ण भक्ति के रंग, अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में कान्हा की भव्य आरती की गई। केरलम के अल्पुजा में सुबह 3 बजे से दर्शन के लिए उमड़े भक्त। बाढ़ प्रभावित नेपाल में भी दिखी कृष्ण जन्माष्टमी की छटा। काठमांडू के कृष्णा मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है कान्हा का जन्मोत्सव। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आज मथुरा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। रात 9 बजे से होगा भव्य ड्रोन शो। 500 ड्रोन से दिखाई जाएंगी श्री कृष्ण की लीलाएं। बाढ़ प्रभावित नेपाल में अभी भी जिंदगी की तलाश जारी। त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से 2 और मजदूरों का किया गया रेस्क्यू।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
0: आज देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। जन्माष्टमी पर दुल्हन की तरह सजी कान्हा की नगरी मथुरा। जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किए गए दर्शन पूजन। मथुरा आगमन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ढोल मंजीरों और डबरू वादन के बीच हुआ भव्य स्वागत। कान्हा के जयघोष से भक्तिमय हुआ माहौल। सीएम के मथुरा दौरे पर सुरक्षा सख्त की गई। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर ब्रज में चरम पर है उत्साह। कान्हा के लिए तैयार हुई रेशमी पोशाक और खास जेवर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए पूरा ब्रज हुआ कृष्णमय। जन्माष्टमी पर मथुरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। रात में लेजर लाइट शो से बढ़ेगी मंदिर की रौनक। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। कान्हा की भक्ति में झूमते हुए नजर आए भक्त। मथुरा में रात 9 बजे से होगा भव्य ड्रोन शो। 500 ड्रोन से दिखाई जाएंगी श्री कृष्ण की लीलाएं। आज आधी रात 12 बजे होगा कान्हा का महाअभिषेक। जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण की विशेष आरती होगी। मथुरा की गलियों में दिख रहा अद्भुत नजारा। नाचते गाते हुए कान्हा के जन्म का इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु। देवघर में जन्माष्टमी पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन और जलार्पण करने के लिए लगी लंबी कतार। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में देखते ही बनता है आस्था में डूबे हुए श्रद्धालुओं का उत्साह। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के किए खास इंतजाम। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। तड़के से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजा दुर्गियाना मंदिर। दूर दराज से दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु गूंजे जय श्री कृष्ण के जयकारे। आधी रात 12 बजे होगा श्री कृष्ण जन्म का विशेष आयोजन। पंचामृत से कराया जाएगा भगवान का अभिषेक। नेपाल में आपदा के बीच भी पूरी आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। काठमांडू के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी पर दिखा भव्य नजारा। प्रभु के दर्शनों के लिए सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ी। भगवान के लिए खास भोग का इंतजाम किया गया। मुंबई के मंदिरों में भी कान्हा के भक्तों की भीड़ देखने को मिली। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर दर्शन और आशीर्वाद के साथ उमड़े श्रद्धालु। अहमदाबाद में भी बेहद भव्यता और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का पर्व। विशेष फूलों की सजावट और भगवान का मनमोहक श्रृंगार बने मुख्य आकर्षण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जयपुर के ऐतिहासिक गोविंद देव जी मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी। विशेष आभूषण और राजस्थानी गोटा पत्ती लगे नए रेशमी पीले वस्त्रों से सजे भगवान के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। अमरावती के अंबा देवी मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक देखने को मिली। मान्यता है कि यहीं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था रुक्मिणी का हर। जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण कृष्णमय हुआ। अमरावती का यह धार्मिक क्षेत्र मथुरा वृंदावन द्वारका जितना ही है इसका महत्व। पोरबंदर में श्री कृष्ण सखा सुदामा कल्चर लोक मेला का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया उद्घाटन। मेले में दिखी लोक संस्कृति और परंपरा की झलक। कलाकारों ने पेश की कई सुंदर प्रस्तुतियां। उधमपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भारी सुरक्षा के बीच उमड़ी भक्तों की भीड़। कालका जी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मंदिर में जन्माष्टमी और काली जयंती की धूम देखने को मिली। मोरपंख से किया गया है माता कालका का श्रृंगार। मंदिर परिसर में लड्डू गोपाल का झूला भी विराजमान। दिल्ली के द्वारका में जन्माष्टमी की भव्य तैयारी की गई। 5600 से ज्यादा तरह के व्यंजनों का लगेगा महाभोग। जन्माष्टमी पर तैयार हुआ 1108 किलो का विशाल केक। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। वेद पाठ से शुरू हुई आध्यात्मिक प्रस्तुतियों की श्रृंखला। भजन क्लबिंग ने बांधा समा। महोत्सव की खास थीम कृष्ण जन्म लें यदि आज। महोत्सव से लाखों लोग लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े। द्वारका में गूंजेगा कृष्ण भक्ति का रंग। धुंध के बीच पहाड़ों की रानी पर्यटन नगरी डलहौजी में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। कृष्ण भक्ति में डूबा पूरा शहर। भव्य शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पर आधारित भव्य और मनमोहक नृत्य। शोभा यात्रा के दौरान मटकी फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। दक्षिण भारत में भी नजर आई कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक। केरला के अलपुझा में प्रसिद्ध श्री कृष्ण स्वामी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार। जन्माष्टमी के दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। केरला के सबसे पवित्र वैष्णव मंदिरों में से एक है श्री कृष्ण स्वामी मंदिर। झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान में इस्कॉन के यूथ फेस्टिवल का आयोजन। भगवान विष्णु के 12 स्वरूपों का किया गया भव्य मंचन। कलाकारों ने कथक नृत्य के जरिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जीवंत किया। दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। यूथ फेस्टिवल में भक्ति के संदेश को अलग अंदाज में पेश करते हुए भजन रैप की शानदार प्रस्तुति। युवाओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र। युवाओं को भारतीय संस्कृति और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जोड़ना रहा यूथ फेस्टिवल का उद्देश्य। अध्यात्म के साथ जुड़े युवा। फेस्टिवल में लगा वृंदावन बाजार में लगाए गए 18 से ज्यादा स्टॉल जहां महाप्रसाद सात्विक व्यंजन और वृंदावन के उत्पाद उपलब्ध। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे इस्कॉन मंदिर तो वहीं पूजा अर्चना की। बांसुरी स्वराज भी मौजूद रही। जन्माष्टमी के अवसर पर भटिंडा के बाजारों में रौनक देखने को मिली। तैयार किए गए हैं भगवान श्री कृष्ण की थीम पर आधारित खास और आकर्षक केक। इस विशेष कलेक्शन में हर आकार और फ्लेवर के केक मौजूद हैं। खरीदारों की भीड़। जामनगर में जन्माष्टमी पर दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर। मुस्लिम कलाकार ने कैनवस पर उकेरी कान्हा की सुंदर तस्वीर। करीब 8 से 10 दिनों की मेहनत के बाद तैयार की गई है ये विशेष कलाकृति। पेंटिंग के जरिए भक्ति, कला और सांप्रदायिक एकता का अनूठा संदेश दिया गया। मेहसाणा में एक परिवार ने दूसरी बेटी के जन्म पर खास जश्न मनाकर पेश की अनोखी मिसाल। समाज को बेटे बेटियों में फर्क न करने का संदेश दिया। भव्य जुलूस और म्यूजिकल नाइट का किया गया आयोजन। पूरे परिवार में बेटी के जन्म से खुशी का माहौल। परिवार ने लिया संकल्प, बेटी को भी उच्च शिक्षा देकर बनाएंगे उज्जवल भविष्य। बेटियों को बोझ समझने वालों के लिए प्रेरणा बना परिवार। जामनगर के ऐतिहासिक भूचर मोरी में 35वें शहीद श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों के साथ घोड़ों के साथ रोमांचक पारंपरिक खेल और प्रदर्शन भी किए गए, जिसने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: राजस्थान के जैसलमेर में भी जन्माष्टमी की धूम है। यहाँ सोनार किले में प्राचीन जैसल कुआं है। श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारका जाते समय अर्जुन को प्यास लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से खोदा था, वो आज भी मौजूद है। ऐसे कई प्रमाण यहाँ मौजूद हैं जिससे पूरे शहर का माहौल जन्माष्टमी के पर्व पर कृष्णमय हो जाता है। मंदिर में कृष्ण जन्म की बधाइयां गाई जा रही हैं। ठाकुर जी को मेवों से बने हुए खूबसूरत हिंडोले में झुलाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है।
1: आनंद से जो वैष्णव जो है वो रस में डूबे हुए हैं। बधाइयां गाई जा रही है जन्मोत्सव की, और कई प्रकार की कीर्तन और कई प्रकार की जो है आनंद बरस रहा है। आज झूला जो है तो झूला ठाकुर जी झूले में बिराजे हैं, तो वह मेवे का झूला है और उसके अंदर ठाकुर जी बिराजे हैं, और सब यहाँ पे जो है जो बैठे हैं वैष्णव वो खूब आनंद ले रहे हैं, खूब रस में डूबे हुए हैं। छंद गाए जा रहे हैं, कीर्तन गाए जा रहे हैं। हरराय महाप्रभु जी की यहाँ पर बैठक भी है और कई प्रकार के यहाँ पे जन्माष्टमी के पर्व की तैयारियां चल रही है। कई प्रकार के जो है उत्सव गाए किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कई प्रकार के कीर्तन जो है, कई प्रकार के जो है छंद गाए जा रहे हैं, बधाइयां कई प्रकार की गाई जा रही है। अद्भुत समय है, अद्भुत छटा है। पूरे शहर के वैष्णव जो है यहाँ पे उमड़े हुए हैं। सैलानी भी जो यहाँ पे बड़ी तादाद में आते हैं, देश विदेश में जो है यह गिरधारी जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अद्भुत समा, अद्भुत अद्भुत जो है तैयारियां जन्माष्टमी की।
2: जी, ये कीर्तन जो है ये हमें हमारे घर में जैसे हमने देखा पुष्टि महाराज की सेवाएं देखी, वो देखी तो उससे हमसे हमें प्रेरणा मिली। खूब दादियां हैं, उनको देख के हमने ये प्रेरणा ली है, जिससे हमको ये कीर्तन ठाकुर जी की और इन लोगों की प्रेरणा से हम लोग ये कीर्तन करते हैं और आगे करते रहेंगे।
1: वाह, आप देखते हैं युवा वर्ग जो युवा पीढ़ी है वो भी आज पुष्टि मार्ग के मार्ग पे चल रहा है। कितने बढ़िया कीर्तन जो है ठाकुर जी के गाए हैं।
3: पुष्टि मार्ग में जन्माष्टमी के जो बधाइयां हैं एक महीने पहले शुरू हो जाती है। एक महीने पहले से जो है बधाइयां का कीर्तन जो है इस झूले के साथ में गाए जाते हैं। और ये जो मंदिर है गिरधारी जी का मंदिर है, हरिराज जी के पिताजी कल्याण राज जी के सेवी स्वरूप है। उस समय महाराज लाल ने उन्हें यहाँ पर पधराए थे, और तब से यहाँ अभी जो जन्माष्टमी होगी रात में जो है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बहुत ही कीर्तन होंगे। उसके बाद में उसमें पंचामृत की स्नान होगी, और उसके बाद में पूरा जो है महाराज स्वयं जो है इस दिन आरती करने आते हैं यहाँ के
4: सब लोग। इतने दिन से महीने दिन से इसकी तैयारियां चल रही है, महीने दिन से बधाइयां गाई जा रही है झूले के साथ साथ, और सब लोगों में बहुत उत्साह भरा हुआ है। कृष्ण जन्म का हम बहुत अच्छे आनंद लेंगे, दूसरे दिन नंद उत्सव मनाएंगे, उसमें पूरा ब्रज के जैसा पूरा मथुरा वृंदावन सब जना यहाँ आ जाएंगे।
1: ठाकुर जी के इस रस में, ठाकुर जी के श्रृंगार में, ठाकुर जी के कीर्तनों में। क्या नाम आपका?
5: मेरा नाम यशवर्धन सिंह राठौर।
1: यशवर्धन सिंह राठौर सचमुच यश फैला रहे हैं, ठाकुर जी के दरबार में खूब आनंद ले रहे हैं। किस तरह की जन्माष्टमी में बधाइयां गाई जा रही है?
5: यहाँ जन्माष्टमी का बहुत उल्लास है लोगों के मन में। जैसे कि बताया गया एक महीने पहले से तैयारियां प्रारंभ हो जाती है और सब लोग धूमधाम से उत्सव मनाते हैं और आनंद करते हैं।
6: हमारे जैसलमेर में ब्रज भूमि में जैसे ठाकुर जी स्वयं विराज रहे हैं, और यहाँ हर्षोल्लास से महीने भर से जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही है, और हम रोज उसका आनंद लेने आते हैं। सावन के महीने में झूले चल रहे थे लेकिन उसमें भी बधाइयां गाई जा रही थी, और अभी भी ये हालत है कि हमें यहाँ से निकलने का भी मन नहीं होता है कि यहाँ का आनंद लिए जाए। और यहाँ पे जन्माष्टमी मनाई जाती है, दूसरे दिन नंद उत्सव का प्रोग्राम होता है, तभी लोग यहाँ जैसलमेर के यहाँ आते हैं वैष्णव, और अपना संपूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। यहाँ हमें इतना अपना अटूट विश्वास है, क्योंकि हमें वास्तव में इस मंदिर में आने के बाद में एक एहसास होता है कि हमारे जमीन पे एक भगवान है। हमें इसमें दर्शन करने पर एक अटूट मतलब प्रेम की अनुभूति होती है।
0: और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जीएनटी पर जन्माष्टमी की महाकवरेज जारी है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान के पाली में कृष्ण मंदिरों में आकर्षक सजावट, बच्चे बने लड्डू गोपाल और निकाली शोभा यात्रा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी मंदिरों की भव्य सजावट। धूमधाम से मनाया जा रहा है कृष्ण जन्मोत्सव। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्ति में झूमते दिखे भक्त। जयपुर के गोविंद जी मंदिर में जश्न की खासा तैयारी। कालका जी मंदिर में जन्माष्टमी और काली जयंती की धूम। लड्डू गोपाल का लगाया गया झूला। द्वारका के इस्कॉन मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष ने ली लड्डू गोपाल की पूजा की। बाढ़ प्रभावित नेपाल में भी दिखी कृष्ण जन्माष्टमी की छटा। काठमांडू के कृष्ण मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है कान्हा का जन्मोत्सव।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।

0: सास बहू और बेटियां के जन्माष्टमी स्पेशल में आपका स्वागत है और आप सभी कान्हा जी के भक्तों को मेरा यानी रिंकी भाभी का नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आपका फेवरेट शो और सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर।
1: त्योहार के रंग में सजे सास बहू और बेटियां में आज देखिए राधिया और प्रथम, राधा और कृष्ण बनकर दिखाएंगे प्रेम।

0: जगधात्री करेगी घर वालों के सामने रुद्र के जिंदा होने का खुलासा।
1: मैं सच कह रही हूँ मायाताई, ये रुद्र नहीं है। तो कौन है ये? कौन है? क्यों कर रही तू ये सब कुछ? पहले तूने हम सबको इतनी तकलीफ दी और तुम्हारे मोशन का मजाक बना रही है।
0: आरंभी के लिए धड़कने लगेगा ध्रुव का दिल।

और साथ ही टीवी एक्ट्रेस उर्वशी उपाध्याय मनाएंगी सास बहू और बेटियां संग जन्माष्टमी का त्योहार, वो भी झूम गाकर सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: सीरियल आरंभी में बाप्पा के आगमन को लेकर घर में दो टीमें बन गई हैं। एक तरफ जहां ध्रुव और आरंभी पूरे तामझाम से बाप्पा का स्वागत करना चाहते हैं, तो वहीं विश्वास और उसकी मां इसके खिलाफ हैं। ऐसे में क्या आरंभी की मुराद पूरी होगी और क्या वो अपने बाप्पा का इस साल भी स्वागत कर पाएगी? चलिए देखते हैं।
1: तुझसे मिलकर दिल का ये हाल हुआ।
2: आरंभी और ध्रुव की बढ़ती नजदीकियाँ।

0: बाबा का तैयारी गणपति बाबा के आगमन की।
1: तेरे आने से ये दिल महकता है, जैसे बाग में बहार आए हो।
2: अगर गणपति सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो।
0: फूटा विश्वास का गुस्सा, टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में ध्रुव ने ये फरमान जारी कर दिया है कि इस बार गणपति बप्पा टंडन हाउस में आएंगे और इसी की तैयारियों में जुट गई है आरंभी। देखिए कैसे वो लिस्ट बना रही है और उसे निहार रहा है ध्रुव।

0: इन दोनों की नोक झोंक शुरू हो गई है, लेकिन असल में ध्रुव का प्लान तो कुछ और ही है। उसे तो बस गेस्ट की लिस्ट देखनी है। गणपति के इस त्योहार से ध्रुव और डिंपल का कोई अतीत का सच जुड़ा हुआ है, इसी वजह से ध्रुव गणपति बापा का आगमन करवा रहा है। इस त्योहार में होने वाला है बड़ा खुलासा और ध्रुव इसकी प्लानिंग कर रहा है, जिस वजह से उसे ये लिस्ट देखनी ही है। लेकिन आरंभ भी उसे मौका ही नहीं देती।
1: टाइम पास ही करते रहेंगे या काम भी बताएंगे?
2: काम जो तुम कर रही हो, आई थॉट मैं आके तुम्हें बता देता हूँ कि मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ। बट इफ यू नीड एनी हेल्प देन आई कैन हेल्प। सीरियसली दिखाऊं?
1: नहीं, इट्स ओके। नहीं, आपकी हेल्प की जरूरत है। और वैसे भी आप मेहमान हैं, आप बस बैठिए और एंजॉय कीजिए। बहुत मजा आएगा। काम की कोई टेंशन नहीं
2: है
1: मुझे, काम
2: की पूछ रहे। क्यों नहीं, स्ट्रक्चर स्वयं बैठकर उनके लिस्ट बना रही है, तैयारी कर रही है, प्लानिंग कर रही है। देखा
1: मुझे
2: ऐसा सौभाग्य सब कुछ ना प्राप्त होता है, बहुत लकी है।
0: ये नोक झोंक चल ही रही होती है कि वहाँ पहुँच जाता है विश्वास, जो गुस्से में लिस्ट फेंक देता है और कहता है कि पापा इस बार भी नहीं आएंगे। लेकिन ध्रुव को पता है कि इस बार गणपति फेस्टिवल मनाया जाएगा।
2: अगर गणपति सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, फिर घर में गणपति मनाएंगे। परेशान करके
0: वही दूसरी तरफ डिंपल भी अपने पति से यही कह रही है कि अतीत में जो हुआ था वो उसे दोहराना नहीं है और गणपति फेस्टिवल नहीं मनाना है। लेकिन ऐसे में सुनील का साफ इनकार कर देते हैं और कह देते हैं कि इस बार पापा जरूर आएंगे, जिस वजह से देखिए कैसे डिंपल बुरी तरह से घबरा गई है।
3: बस जो हुआ है इसकी वजह से कह रही हूं कि गणपति
4: मजबूरी है, नाम बचाने के लिए ये करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जाओ, जाओ गणपति के आने की तैयारियां करो।
0: यानी कि इस गणेश चतुर्थी आने वाला है डॉक्टर आरंभी में बड़ा ट्विस्ट। खैर, वहीं दूसरी तरफ आ गई है ध्रुव की दादी भी, जिससे मिलने आरंभी और बाकी सब पहुंच गए हैं। तो अब देखना होगा कि त्योहार में कौन से अतीत का खुलासा होता है और सीरियल में कौन कौन से नए ट्विस्ट आते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: सीरियल जगधात्री में मनाई जा रही है रुद्र की शोक सभा, जहाँ जगधात्री ने खुलासा किया कि रुद्र जिंदा है। जगधात्री की इस बात से शोक सभा में हंगामा मच गया है। अब सब जगधात्री से पूछ रहे हैं कि रुद्र जिंदा है तो कहाँ है। चलिए देखते हैं कि जगधात्री ने क्या दिया इसका जवाब।
0: रुद्र की मौत से घर में छाया मातम।
6: मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ कि ये रुद्र नहीं है।
0: जगधात्री ने किया खुलासा
6: कि आज के दिन मुझे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम दूर रहो, यहाँ मत आओ। क्यों आई हो तुम? प्लीज जगधात्री, प्लीज जाओ।
0: क्या वाकई जिंदा है रुद्र? जी टीवी के सीरियल जगधात्री में आज घर में मातम हो रहा है। भैया रुद्र इस दुनिया में नहीं रहा है। ऐसे में हो रही है शोक सभा, जहां सभी मौजूद हैं। लेकिन ऐसे में जगधात्री आती है और सभी को ये बताती है कि ये रुद्र की बॉडी नहीं है, असल में रुद्र तो जिंदा है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। माया जगधात्री पर चिल्लाने लगती है लेकिन जगधात्री को पूरा यकीन है कि ये रुद्र है ही नहीं।
6: मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ कि ये रुद्र नहीं है। मैंने कहा था तुमसे कि आज के दिन मुझे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, इसीलिए मैंने कहा था कि तुम दूर रहो, यहाँ मत आओ। क्यों आई हो तुम? प्लीज जगधात्री, प्लीज जाओ। कहाँ है मेरा बेटा रुद्र? हाँ, कहाँ है वो?
2: ऐसी बात
6: नहीं, माहौल ऐसी खड़ी आपने कर। मैं सच कह रही हूँ माया दाई, ये रुद्र नहीं है। तो कौन है ये? कौन है? क्यों कर रही तू ये सब कुछ? पहले तूने हम सबको इतनी तकलीफ दी और तुम्हारे इमोशंस का मजाक बना रही है। अरे एक नंबर की झूठी है ये। सही कह रही है माया जी, सिर्फ तमाशा करने आई है ये यहाँ पर। तमाशा नहीं, सच कह रही हूँ मैं। और मुझे पता था कि मेरे मुंह से निकला हुआ सच भी आपको झूठ लगेगा, इसीलिए अपने साथ गवाह लेकर आई हूँ। काकी प्लीज अंदर आइए।
0: लेकिन रुद्र की माँ को भी यही लग रहा था कि ये उसका बेटा रुद्र नहीं है। ऐसे में वो जगधात्री की बात से सहमत हो जाती है और माया को भी कहती है कि जगधात्री सही कह रही है कि ये रुद्र है ही नहीं। ऐसे में अब रुद्र की माँ को उम्मीद है कि जगधात्री उसके बेटे को ढूंढ कर रहेगी, क्योंकि जगधात्री के पास प्रूफ्स हैं। लेकिन ये सही वक्त नहीं है, ऐसा माया को लगता है। खैर, ये बहस तो जारी रही।
7: किसकी डेड बॉडी लाकर हमारे घर में पटकती और रुद्र कहकर उसका अंतिम संस्कार करना चाहता है? ये मेरा रुद्र नहीं है माया, ये रुद्र नहीं है। शौक में नहीं हूँ, होश में हूँ, सबसे ज्यादा होश में हूँ यहाँ। और अभी तक तो सिर्फ मुझे ही डाउट था रुद्र की मौत पे, लेकिन अब तो जगधात्री को भी है ना। वो व्हाटएवर रीजन, उसे भी लगता है ये रुद्र नहीं है। रुद्र जिंदा तो ये नहीं है। रुद्र
6: कौन है?
7: मुझे नहीं पता माया ये कौन है, लेकिन ये मेरा बेटा नहीं है। कहाँ से तुम्हें ये हमारा रुद्र लग रहा है? कहाँ से?
6: कहाँ से तुम्हें हमारा रुद्र लग रहा है? ये रुद्र नहीं है,
7: ये रुद्र नहीं है। और कोई कुछ कहे, कोई कुछ माने, मैं मान ही नहीं सकती, ये मेरा बेटा है। देखो माया, ना ये मेरा रुद्र है और किसी स्ट्रेंजर के अंतिम संस्कार में आने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज मुझे इन सबसे दूर रखो तुम।
6: काकी एकदम ठीक कह रही, ये रुद्र नहीं है, कोई स्ट्रेंजर है जिसे हम रुद्र कहकर बुला रहे हैं। और ये बात मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि आज के दिन मुझे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, इसीलिए मैंने कहा था कि तुम दूर रहो, यहाँ मत आओ। क्यों आई हो तुम? प्लीज प्लीज प्लीज।
8: मुझे लगता है इससे भारी दुख ना कोई हो ही नहीं सकता, एक पेरेंट्स के सामने उसे बच्चे का जाना। आई थिंक उसी सदमे में आरती है इस वक्त, क्योंकि भले सब कह रहे हैं कि रुद्र है, उसका अंतिम संस्कार करना है, लेकिन एज अ मदर उसको नहीं लग रहा कि मेरा बेटा है। डिनाइल में है, और आई थिंक इस सच को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी मदर के लिए, और भगवान ना करे किसी को भी एक्चुअली में ये दिन देखना पड़े। हम तो चलो शो में कर रहे हैं, बट इट्स रियली डीप पेन, क्योंकि कोई तो मेरी बात से अग्री कर रहा है, वो इंसान कर रहा है जिसको मैंने कभी कंसिडर ही नहीं किया अपनी लाइफ में, जो मुझे लगता था कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आई है। अगर वो भी इस चीज़ को अग्री कर रही है कि रुद्र जिंदा है, और अगर वो ऐसा कोई रास्ते तक हमको लेके जाएगी, देन आई विल बी लाइक, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसे टाइम पे जगधात्री ने ये इतनी बड़ी बात कही है। एंड आई एम श्योर वो रुद्र को ढूंढ लाएगी, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है हमारे लिए।
6: तुमने मारा है हमारे रुद्र।
0: भाई जो चीज जगधात्री कह रही है उसे अब वो प्रूफ करना होगा और जिंदा रुद्र को सबके सामने लाना होगा। अब ये जगधात्री कैसे करेगी ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: अंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में होने वाली है निहाल और रुचिता की शादी, क्योंकि जानवी हुई लापता, तो क्या अब रुचिता बनेगी दुल्हन?
0: रुचिता हुई परेशान। निहाल और जानवी की शादी पर लगा ब्रेक। रुचिता बनेगी निहाल की दुल्हन। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में जल्द जुड़ने वाला है रुचिता और निहाल का रिश्ता। होने वाली है इनकी शादी। असल में शादी तो निहाल और जानवी की होने वाली थी, लेकिन जानवी घर से लापता है, जिसको लेकर रुचिता बेहद परेशान है। और देखिए कैसे वो घर के हर कमरे में जा जाकर देख रही है और अपनी बहन जानवी को ढूंढ रही है, लेकिन उसे अपनी बहन नजर नहीं आ रही। ऐसे में उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है।
9: रुचिता परेशान है बिकॉज मेरी जानवी दी जो है वो खो गई है एंड वो कहीं मिल नहीं रही है। सो उन्हें ढूंढने के चक्कर में मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं नहीं मिल रही। एंड उनकी शादी है लाइक फ्यू मिनट्स लाइक में, एंड वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। सो उस प्रेशर में, उस टेंशन में मैं आई हूँ एंड उनको ढूंढ रही हूँ हर जगह।
0: इसी बीच शादी के मंडप में भी पूरा परिवार पहुंच गया है। और तो और दूल्हे राजा निहाल भी शेरवानी पहन पहुंच गए हैं शादी के मंडप में जानवी संग ब्याह रचाने के लिए, और कर रहे हैं इंतजार जानवी का, लेकिन जानवी आई नहीं। ऐसे में निहाल की माँ परेशान होती है और रुचिता की मामी से जाकर बात करती है और कहती है कि वो जाकर जल्द से जल्द जानवी को लेकर आए। बस फिर क्या, रुचिता की मामी निकल पड़ती है जानवी को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है रुचिता पर, जो इधर उधर देख रही है और परेशान हो रही है।
9: मुझे मेरी मामी आती है पूछने कि तुझे जानवी मिली क्या, कहाँ पर है। फिर हाँ, सिर्फ वही एंड मेरी जो बड़ी नानी है वो भी आती है पूछने कि जानवी कहाँ है। पर मैं सबको बोलती हूँ कि मुझे नहीं कहीं दिखाई दे रही। सो उस वजह से हम सब टेंशन में आ जाते हैं। हमें लगता है कि वो कहीं भाग कर चली गई है, कि उनके साथ क्या हो गया। हम सब बहुत वरीड है उनके लिए।
0: फिलहाल तो ये झटका सिर्फ मामी और रुचिता को लगा है कि जानवी गायब है। ऐसे में रुचिता की मामी दौड़कर जाकर पूनम को बताती है। इतना ही नहीं, शादी के मंडप में सभी के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि अब तक जानवी आई नहीं है। और तो और जो लोग मेहमान बनकर आए हैं वो भी चार बातें करने लगे हैं, जिसको लेकर निहाल की दादी परेशान है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनके घर की बेइज्जती हो। खैर, यहां सभी परेशान हैं तो वहां निहाल की दादी और माँ को पता चल गया है कि जानवी भाग गई है। ऐसे में निहाल की माँ के पास कोई और चारा बचता नहीं है। और देखिए कैसे वो रुचिता, जो कि अपनी बहन को ढूंढ रही है, उसका हाथ पकड़कर लेकर चली जाती है कमरे में और उसके आगे हाथ जोड़ती है और उससे विनती करती है कि वो जानवी की जगह पर दुल्हन बन जाए और उसके बेटे निहाल संग शादी रचा ले। इतना ही नहीं, उन्होंने तो शर्त भी रख दी।
10: इस वक्त हम दोनों एक नाव में सवार हैं। दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दो परिवारों की सत्ता उतर चुकी है। हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तुम मेरे बेटे से शादी करके तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं रोहन को बिना बता सकती केस बन गया तो अपने आप को निर्दोष साबित करते करते सारे पीछे शायद रुहान की पूरी जिंदगी निकल जाए।
9: सो मेरे भैया रुहान भैया वो बेचारे जेल में है, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। सो मुझे वही बता रही थी निहाल की मॉम की अगर तुमने ये चीज़ की तो फिर तुम्हारे भाई को हम जेल से निकलवा सकते हैं। सो ये सब मुझे बताती है। सो अंडर दैट प्रेशर हु नोज मैं आगे वो चीज़ करती हूँ या नहीं, उसके लिए आपको सीरियल देखनी पड़ेगी। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज मुझे सबसे पहले मेरे भैया को बचाना है, सेकेंडली मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, बट मैं अंडर प्रेशर हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारे सिचुएशंस हैंडल करने हैं एंड मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं क्या करना है मुझे, क्योंकि मेरी मेरी जो जानवी दी है वो गायब हो गई है, मेरे मेरे भैया वो जेल में है, सो एंड शादी अभी है चल रही है, उसके इसमें बहुत प्रेशर में हूँ अभी एज माई कैरेक्टर।
11: भाई रुचिता तो कैसे भी करके अपने भाई को जेल से बाहर निकलवाना चाहती है और ऐसे में रुहान को बाहर निकलवाने के लिए रुचिता ये शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन इसी के चलते भाई बहन के बीच के रिश्ते में दरार आएगी जो कहानी में लाएगा नया ट्विस्ट। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में वृंदा को हो गई है गलत फहमी, उसे लगता है कि संजोग ही संजय है, अब देखना होगा कि संजोग क्या संजोग लाता है।
11: वृंदा की गलत फहमी। संजोग बन गया संजय। कंफ्यूजन का ट्विस्ट।

0: जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में हो गई है संजोग की एंट्री और उसे देखकर संजय की माँ सरिता बेहद ही खुश नजर आ रही हैं और उस पर अपने बच्चे संजय की तरह ही प्यार जता रही हैं। इतना ही नहीं, आते के साथ ही संजोग ने संजय को वीडियो कॉल पर बता दिया है कि वो आ गया है। इतना ही नहीं, संजय के बाद उसने स्वाति तक को कॉल लगा दिया और देखिए जैसे ही स्वाति वीडियो कॉल पर आई तो दोनों के बीच बहसबाजी होने लगी और ऐसे में सरिता दोनों की लड़ाई पर ब्रेक लगाने लगी और दूर खड़ी खिड़की पर वृंदा ये सब देखकर गलतफहमी की शिकार हो रही है क्योंकि उसे संजोग ही संजय लग रहा है।
1: स्वाति कब आ रही है?
2: मैं तो उससे बात नहीं कर रही।

0: बच्चों की तरह लड़
1: रहे हो। अभी मेरा ट्रैक स्टार्ट हुआ है एज अ संजो, आई थिंक आज दूसरा तीसरा दिन है। सो जो अभी ट्रैक चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, सो शो को देखते रहिए। अभी आप शूट देख ही रहे थे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होने वाली हैं, बट देख के मज़ा आएगा आपको, ज़रूर देखिए। इतना बता सकता हूँ कि मैं घर पे आया हूँ संजय के, और मेरा इनके साथ जो रिलेशन है वो एज वो मेरे मुझे बेटा ही मानते हैं। तो अभी राइट नाउ संजू घर पे नहीं है, वो आई थिंक कहीं बाहर मुंबई गए, सीन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं उनकी मदर को अपनी मदर ही मानता हूँ, वैसे टेक केयर कर रहा हूँ। सो सबके साथ इवन जो मेरा रिलेशन है एज संजोग, वो बेटा समझते हैं मुझे, बहुत ही अटैचमेंट है सबके साथ, तो वैसा माहौल बना हुआ है।
2: अजी इसी लाड़ प्यार वाले माहौल ने मामला बिगाड़ दिया है, क्योंकि वृंदा को लग रहा है कि यही संजय है। ऐसे में वृंदा खुश होकर रसोई में संजय के लिए अच्छे से अच्छा खाना बना रही है, और तो और संजोग भी पहुँच गया है पूरे परिवार के साथ खाना खाने के लिए। ऐसे में पूरे परिवार वाले संजोग को देखकर बेहद खुश है, हालांकि कोई भी संजोग का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में संजोग ने खुश होते हुए जैसे ही खाना खाया तो उसे खाने के स्वाद में मजा आ गया और वो करने लगा तारीफ।
1: दादू मजा आ गया, खाना बना, बहुत दिनों बाद पेट भर के खा रहा हूँ आज।
3: अरे बुआ को थैंक यू बोल, इसके हाथ में जादू है।
1: बिल्कुल
4: थैंक यू माँ, पर आज खाना मैंने नहीं बनाया।
1: जीतू जीतू इधर आओ, कम फास्ट, हाथ दो हाथ दो।
5: हाय दिस इज जीतू, ऐसे बोलते ना, दिस इज सर।
1: क्या खाना बनाया यार, मजा आ गया, आउटस्टैंडिंग।
5: अरे मैंने नहीं बनाया, अम्मू ने बनाया।
1: अम्मू कौन?
6: अरे वही जिसने तुम्हें साड़ी वाला समझ लिया था।
1: नहीं वैसा तो कुछ नहीं है, बट राइट नाउ मेरी वो फीलिंग है कि एक तो मैं आई एम कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज, है ना, दार्जिलिंग से सीधा आ रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि घर का खाना भाई कितना टाइम हो गया, मज़ा ही आ गया। किसने बनाया? तो बोलते इसने बनाया, तो मैं बोलता हूँ वाह भाई बहुत ही अच्छा खाना है, तो वैसे तारीफ कर रहा हूँ। कन्फ्यूजन है ना जो, वो प्लीज़ आप सीन देखिएगा, जो अभी एपिसोड्स आएंगे दो तीन, बड़े फनी टाइप है, हमारी नोक झोंक भी हुई है स्टार्टिंग में, वो देख के आपको क्लियर होगा, तो मैं रिवील नहीं करूंगा, मजा खत्म हो जाएगा।
2: भाई वृंदा के हाथों के स्वाद ने तो संजोग का दिल जीत लिया है, और ऐसे में वृंदा भी बहुत खुश है ये सुनकर कि संजय ने उसके खाने की तारीफ की है। इतना ही नहीं, जैसे ही संजोग वहाँ से उठता है वृंदा को थैंक यू कहने के लिए, वृंदा घबरा कर जाकर छिप जाती है ताकि संजोग और उसका आमना सामना ना हो सके। खैर वृंदा को क्या पता कि ये संजोग है। वहीं दूसरी ओर संजोग पहुंच जाता है फिर से सरिता माँ के कमरे में, क्योंकि उनकी दवाई का समय हो गया है, और ऐसे में संजय की गैर मौजूदगी में संजोग ही उनका बेटा बना हुआ है। तभी तो देखिए कैसे वो उन्हें अपने हाथों से दवाइयाँ दे रहा है, और सरिता वो तो वाकई उस पर अपने बेटे की तरह ही लाड़ जता रही है। ऐसे में वृंदा ने भी दरवाजे में उन्हें देख लिया इस तरह लाड़ प्यार जताते हुए, और तो और वीडियो कॉल लगा दिया स्वाति को ये बताते हुए कि उसे संजय बहुत अच्छे लगे। इतना ही नहीं, वृंदा तो बहुत खुश है कि उसकी दोस्त स्वाति एक अच्छी लड़की के साथ शादी कर रही है। अब उसे क्या पता कि जो वो सोच रही है वो गलत सोच रही है, और ये सारा मामला जीतू देख रहा है और उसे सच पता है। देखना होगा कि ये कन्फ्यूजन और कितने दिनों तक टिका रहेगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: नजर डालते हैं सीरियल्स की खबरों पर और देखते हैं कि किस सीरियल में क्या हो रहा है, और आपको लेकर चलते हैं सास बहू और बेटियां की एयरलाइंस पर।
2: जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में बन गया है सेलिब्रेशन का माहौल, और बने भी क्यों ना, क्योंकि सीरियल में नलिनी का किरदार निभाने वाली रशिका माथुर का जन्मदिन जो है

केक काट कर सभी का मुंह मीठा किया और सबकी बधाइयां ली। इतना ही नहीं, सास बहू और बेटियां संग उन्होंने अपनी खुशी जाहिर भी की है और तो और ये भी बताया कि उनके क्या प्लान्स हैं।

ऐसे में आज सेट पर मौजूद सभी कलाकार बेहद खुश हैं, क्योंकि सभी नलिनी से बेहद प्यार करते हैं। और तो और, सास बहू और बेटियां के कैमरे के सामने नलिनी यानी कि रशिका ने अपना जन्मदिन भी मनाया।

0: मैं एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ और मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे थैंक्स करूँ. आई एम ब्लेस्ड विद सच गुड पीपल अराउंड मी. मेरे दोस्त, फैंस, फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीबडी, एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑल द लव एंड सपोर्ट. थैंक यू यार. एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी विशेस तो नहीं है, बस यही है कि जैसे भगवान ने आज तक इतना प्यार दिया है, हमेशा अपने अपनी प्रेयर्स में हमेशा मुझे, मेरी प्रेयर्स को हमेशा सुना है, तो बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें हमेशा. इसी तरह मैं अपने फ्रेंड्स और अपने फैंस को यही कहूंगी कि प्लीज शावर सपोर्ट एंड लव जैसे कि आप करते आए हैं अब तक. सो बर्थडेज ऑन सेट्स आर वेरी स्पेशल और मैं हर साल यही प्रे करती हूँ कि मेरा बर्थडे वाले दिन मैं शूट करूँ और भगवान जी हमेशा से मेरी ये विश सुनते आए हैं और मैं आज भी यही दुआ करती हूँ, यही विश करती हूँ कि ऐसे ही हर साल मेरा बर्थडे मेरे सेट पे मनता रहे और इसी तरह मैं सबका प्यार लेती रहूँ.
1: सोनी सबके सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल में भी सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ है क्योंकि सीरियल में पुष्पा का किरदार निभाने वाली करुणा पांडे का जन्मदिन जो है. ऐसे में सेट पर आ गए हैं सीरियल के प्रोड्यूसर एमजी मजीठिया.

करुणा पांडे को जन्मदिन की देने ढेर सारी बधाइयां, साथ ही लेकर आए हैं केक भी। ऐसे में करुणा ने पूरी टीम के साथ अपना जन्मदिन मनाया और सभी को अपने हाथों से केक खिलाया और किया सभी का धन्यवाद भी।

सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल की सास कुसुम का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस उर्वशी उपाध्याय कान्हा जी में काफी आस्था रखती हैं। ऐसे में अपने प्रभु के जन्मदिन पर उर्वशी पूरी भक्ति भाव से घर पर ही जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रही हैं। चलिए देखते

0: हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी का त्योहार आ चुका है और हर तरफ जन्माष्टमी की धूम मची है और हमारी सीरियल्स की दुनिया में भी कलाकारों के घर पर जन्माष्टमी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज सास बहू बेटियां पहुंच गया है अभिनेत्री उर्वशी उपाध्याय के घर पर। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी की कुसुम है कृष्ण भक्त और हर साल जन्माष्टमी पूरे दिल से मनाती है, पूरे रीति रिवाज से मनाती है। भाई वो कान्हा का व्रत रखती है और कान्हा का ऐसे स्वागत करती है जैसे कोई नन्हा मुन्ना हो। तो आज हम देखेंगे कि उर्वशी उपाध्याय जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल को कैसे सजा रही हैं, कैसे पंचामृत से नहला रही हैं, किस तरह का प्रसाद बनाया है, कैसा है उनका श्रृंगार, कैसी है उनकी पोशाक, कैसा है उनका मोर पंख, कैसा है उनका मुकुट, और सबसे खास वो बना रही हैं अपने कान्हा के लिए अपने हाथों से मक्खन। और देखिए उन्होंने थाली किस तरह सजाई है और साथ साथ पकवान भी बनाए हैं जो कान्हा जी के फेवरेट है, फिर चाहे वो पंजीरी हो या फिर हो तरह तरह के फल। उर्वशी ने आज खास श्रृंगार किया है और अपने कान्हा के लिए वो यशोदा बनकर नाच भी रही हैं। तो चलिए सास बहू और बेटियां संग मनाते हैं जन्माष्टमी का त्योहार उर्वशी उपाध्याय के घर पर जाकर।
1: नमस्ते, जय श्री कृष्ण, मैं हूँ उर्वशी उपाध्याय। जन्माष्टमी का मौका है और आज सास बहू और बेटियों के साथ मैं मनाने जा रही हूँ मेरी जन्माष्टमी। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कि मैंने क्या क्या तैयारियां की है, विशेष सब कुछ सामग्री इकट्ठी की है और मैं सेलिब्रेट करूंगी आपके साथ मेरे फेवरेट कान्हा जी का ये उत्सव। तो ये है उनकी पोशाक, प्यारा सा मुकुट, फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स, और ये उनके सुंदर से कपड़े, और हाँ ये रही इनकी बांसुरियाँ, ढेर सारी बांसुरियाँ, उनके पंखे, हालांकि ये भी है उनका कान्हा जी का पंखा जिनसे हम उनको हवा लगाएंगे, और ये रहे उनके आभूषण,

0: तो अब समय है कान्हा जी को जगाने का। हमने इतनी सारी तैयारियां की है, अब उनको प्यार से नहलाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, आभूषण, उनकी मुरली और मोर पंख, सब कुछ जो हमने उनके लिए बनाया है, सजाया है, उसकी शुरुआत करते हैं।
1: जन्माष्टमी के लिए उर्वशी ने आज खास तैयारी की है। सबसे पहले देखते हैं कि वो किस तरह से अपने नन्हे लड्डू गोपाल को सजाने वाली हैं। भाई इसके लिए उनके पास आज ढेर सारी चीजें हैं।

0: तो आइए मैं आपसे मेरे लड्डू गोपाल जी को मिलाती हूँ। ये है मेरे प्यारे से कान्हा जी। अब उनको जगाने का समय हो गया है, लालन पालन से उनको उठाने का समय हो गया है। और आज मैंने लड्डू गोपाल जी की जो पोशाकें हैं वो बहुत ही खास तरीके से बनवाई है हर चीज़ को। तो सबसे पहले उनका ये पंखा, जिनसे उनको ठंडी ठंडी हवा लगे, हल्की हल्की हवा की थपकी से वो उठे और हम सबको आशीर्वाद दे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। फिर है उनके ये छोटे छोटे पोशाक हैं, और ये जो लड्डू गोपाल जी का सबसे बड़ा प्यारा पोशाक, ये हम आज उनको पहनाएंगे। उनको पंचामृत से नहला के, इत्र से अच्छे से उनका मसाज करके फिर ये प्यारा सा पोशाक उनको पहनाएंगे। और उनका ये रहा आभूषण। तो यहाँ पे आभूषण भी बहुत खास है, पूरा मैचिंग बनाया है। तो इन आभूषणों से और फिर ये मुकुट से और ये सारी चीज़ें, और ये उनका प्यारा सा खेस है जो उनको गले में हम पहनाएंगे। ये उनकी बांसुरियाँ, बांसुरी के बगैर तो मतलब उनकी मीठी मधुर बांसुरी से ही पूरा जग मोहित हो जाता है। तो ये बांसुरी और ये उनका प्यारा सा पिकॉक, जो मोर पंख हमेशा भगवान अपने सर पे सजाते हैं। और ये है उनका मक्खन का, मक्खन तो उनको बहुत ही पसंद है, तो यहाँ पे हम उनके लिए मक्खन रखेंगे। और वैजयंती माला, वैजयंती माला के बगैर तो इनका श्रृंगार अधूरा ही है, तो ये भी हैं। तो चलिए, ये तो हो गए उनके श्रृंगार के सारे सामान। देखो हमारा मेकअप कितना तामा जामा होता है, लेकिन हमारे प्यारे कान्हा जी का मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये मोर पंख बांसुरी और ये उनके आभूषण, बस इसी में हो गया। और अपने हाथ से मैं चंदन को अच्छे से घस के उनको टीका लगाऊंगी, तो वो भी सब कुछ यहाँ पे है। शंखनाद करेंगे क्योंकि उनको शंखनाद बहुत प्रिय है, तो शंखनाद करेंगे। एंड ये यहाँ से हम चंदन उनको अच्छे से लगाएंगे किसके, अपने हाथों से। और बाकी सारा प्रसाद और सारी चीज़ें तो है ही, खुशबू वाले रियल फ्लावर से उनके पूरे झूले को सजाएंगे। तो चलिए अब सबसे पहले उनका, उनको हम स्नान कराते हैं पंचामृत से, और स्नान कराने के बाद अच्छे से उनको पोछते हैं और उनका फिर प्यारा सा श्रृंगार करते हैं। चलिए,
1: जन्माष्टमी का त्यौहार दरअसल भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन होता है, तो बिल्कुल किसी नन्हे मुन्ने को जैसे सजाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आज उर्वशी उपाध्याय उनका श्रृंगार कर रही हैं। सबसे पहले उन्होंने आसन बनाया, उसके बाद लड्डू गोपाल को पूरे प्यार से हाथ में लेकर उन्होंने उनका स्नान करवाया, वो भी पंचामृत से।

हमेशा गाया करते थे जब महिला निका होता है ना तब जमुना जल माँ के सर खोए स्नान कराऊ श्यामला। तो जब भी अभी खैर मेरी नानी तो नहीं है लेकिन मुझे इनकी कृष्ण भक्ति और कृष्ण की कहानियाँ वो सब बहुत याद आती है कि कैसे वो प्यार से कान्हा जी को नहलाया करती थी, कैसे उनका श्रृंगार करती थी, कैसे उनकी मतलब लालन पालन, अगर गर्मी हो तो उनको पंखा लगाओ, ठंडी हो तो उनको गर्म कपड़े ओढ़ाओ, गर्मी में हल्के कपड़े पहनाओ। तो ये हो गया हमारा पंचम से स्नान पूरा, अब हमको

नहा धोकर नन्हे बाल गोपाल अब तैयार है अपने श्रृंगार के लिए। भाई उनके श्रृंगार के लिए आज देखिए उर्वशी ने उनके लिए कितनी सुंदर सुंदर पोशाकें ली हैं। इन पोशाकों के साथ कान्हा कितने सुंदर लग रहे हैं।

0: उसके बाद उनका टीका लगाया गया और इस क्यूट से अंदाज में उर्वशी ने अपने लड्डू गोपाल को रेडी किया। और अब वो तैयार है अपने खास उत्सव के लिए जिसे पूरा देश जन्माष्टमी के रूप में मनाता है।
1: तो हमारे कान्हा जी का स्नान हो गया, उनकी उनको अच्छे से पोशाक पहना दी, उनके श्रृंगार भी हो गया, गले में बैजंती माला भी पहनाई है और टीका भी लगा दिया है। तो अब हम उनका झूला सजाते हैं जहाँ पे कान्हा जी झूलेंगे। और जैसे बच्चे को झूला कितना पसंद होता है, झूला तो हम सबको भी पसंद होता है, झूलना किसे पसंद नहीं होता। तो आज हम कान्हा जी को सिर्फ झूलाएंगे नहीं लेकिन ऐसा माँ की तरह ममता से लालन पालन भी करेंगे। ये बाल स्वरूप जिसका दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया राह देखती है, दरअसल ये तो पूरी दुनिया के पालनहार है, लेकिन आज हम उनको पालने में बिठाएंगे और उनको झूला झुलाएंगे। तो चलिए उनका झूला सजाते हैं।
0: नन्हे बाल गोपाल सज धज कर तैयार हो गए हैं, लेकिन किसी छोटे बच्चे की तरह उन्हें झूला झुलाना भी जरूरी है। भाई इसके लिए उर्वशी ने खास झूला तैयार किया है और देखिए झूले को भी सजाया जा रहा है। भाई उन्होंने बैजंती माला पहनी है, उसी तरह के फूल भी उनके झूले पर सजाए गए, झूला रेडी है और साथ साथ उनके भोज का भी तैयारी की गई। जी हाँ, फिर चाहे फूल हो या फिर हो मिठाई, खासकर पंजीरी जो इस दिन खाई जाती है।

0: तो हमारे कान्हा जी का श्रृंगार हो गया है। अच्छे से हमने उनका झूला सजाया है फूलों से, और ये सारे पंचमेवा पंजरी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है जन्माष्टमी में, हम भी पंजरी खा के ही अपना व्रत खोलते हैं, और ये उनके फल हैं। अरे ये क्या, ये तो हमारे कान्हा जी का मक्खन का पूरा मटका है, लेकिन ये खाली है। कोई बात नहीं, आज मैं मेरे कान्हा जी के लिए मक्खन अपने हाथों से बनाऊंगी, और क्योंकि कान्हा जी को मक्खन बहुत पसंद है, तो मक्खन और मिश्री के भोग के बगैर तो जन्माष्टमी हो ही नहीं सकती है ना। तो चलिए हम सबसे पहले मक्खन बनाते हैं ताजा ताजा।
1: कान्हा है माखन के शौकीन, तभी तो उन्हें माखन चोर कहा जाता है। तो चलते हैं उर्वशी की रसोई में, क्योंकि आज वो अपने हाथों से मक्खन निकालने वाली है, और वही मक्खन वो अपने कान्हा को प्रसाद के रूप में देंगी।
0: ताजा ताजा मक्खन बनके तैयार है कान्हा जी के लिए। ये हुई ना बात, और इसको हम भरेंगे इस मटके में। कान्हा जी मक्खन चुरा चुरा कर खाया करते थे, और उनके मक्खन चुराने के किस्से, वो मटकी फोड़ना, वो तो मतलब हमेशा जब भी हम याद करो, मुझे याद है कि भरतनाट्यम में भी हम कृष्ण जी के अवतारों के बारे में जब भी परफॉर्म करते थे तो ये मक्खन चुरा के खाने वाला एपिसोड हम सबका फेवरेट होता था। तो आज हम उनका मटका पूरा भर देंगे, जरा भी खाली नहीं रहेगा।
1: भाई उर्वशी ने झूला सजा लिया, उनका मक्खन भी रेडी है, अब वक्त है पूजा का। तो उर्वशी ने रेडी की अपनी पूजा की थाली, और सजे हुए कान्हा को उसमें सजाया, और उसके बाद शुरू हुई कान्हा की पूजा। तो इस पारंपरिक अंदाज में अपने परिवार की परंपरा को हर साल निभाती है उर्वशी उपाध्याय।

0: अब वक्त है जन्माष्टमी की पूजा यानी आरती का। उर्वशी वो आरती सुना रही हैं, वो जो बचपन से अपने परिवार से वो सुनती आई हैं। भले ही ये गुजराती में है पर इसके भाव आप समझ सकते हैं।
1: जय काना काना प्रभु जय काना काना मीठी मुरली वाला मीठी मुरली वाला गोपीना प्यारा जय काना काना माखन चोरी मोहन चित चोरी लीधा प्रभु चित चोरी लीधा जय काना काना प्रभु जय काना काना कनने माखन भावेरे वालने मिश्री भावेरे।
0: जन्माष्टमी का मौका है तो आरती और पूजा के बाद उर्वशी ने थोड़ा डांस भी किया और साथ साथ अपने काना को अपने प्यारे से लड्डू गोपाल का आशीर्वाद लिया और उनके लिए ढेर सारे गीत गाए।

0: घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दियो और दियो घोड़ा दियो पालकी, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
1: तो ये थी उर्वशी उपाध्याय, जिन्होंने आज जन्माष्टमी के मौके पर खास श्रृंगार भी किया है। लहरिया साड़ी पहनी है जो गोकुल में पहनी जाती है।

0: पर यही तो जन्माष्टमी का भाव है जो भक्तों को उनके साथ जोड़ता है। और यही भाव आज उर्वशी उपाध्याय के घर पर हमें देखने को मिला।
1: उर्वशी उपाध्याय और सास बहू और बेटिया की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हैप्पी जन्माष्टमी। हमने तो हमारी जन्माष्टमी इस तरह से सेलिब्रेट की है, कान्हा जी का प्यारा मक्खन मिश्री, उनके पंचमेवा और पंजीरी और ये सारे स्वीट्स, फल, उनकी बांसुरी, मोर पंख और फ्लावर से, इस तरह से शंखनाद से हमने सेलिब्रेट किया, सजाया। देखो आप सब अपने हिसाब से कर सकते हैं, भगवान सिर्फ आपके मन की श्रद्धा देखते हैं। भगवान के दरबार में कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं है, बस भक्ति होनी चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। तो उर्वशी उपाध्याय और सास बहू और बेटियां के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा कान्हा जी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हैप्पी जन्माष्टमी।
0: तो ये थी उर्वशी उपाध्याय जिन्होंने जन्माष्टमी का ये त्योहार मनाया सास बहू और बेटियां के साथ। तो आप सबको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने जीवन में श्री कृष्ण को हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वही संसार का नियम है और संसार भी वही चलाते हैं। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: जन्माष्टमी के खास मौके पर हम लाए हैं आपके लिए मनोरंजन जगत की मजेदार खबरें। तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और दिखाते हैं आपको आज की रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज।
3: मुसाफिर कैफे फिल्म वेदिका पिंटो अब नजर आने वाली है लक्ष्य लालवानी के साथ आने वाली साइकोलॉजिकल लव स्टोरी में, जिसे प्रोड्यूस करेंगे करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शंस।

0: बनेगा करोड़पति के मंच पर आ गई है हैवान की टीम यानी कि सैफ अली खान और अक्षय कुमार। देख लीजिए इन तीनों की ये मस्ती भरी जुगलबंदी।
1: जो होता है एक एक्टिंग स्कूल बन सकता है उनके लिए।
2: हम लोग एक्टिंग स्कूल बना सकते हैं या हमारे सामने है ये पूरा यूनिवर्सिटी।
1: हम इधर तारीफ सुनने नहीं आए हैं
2: सर, हमें तो पीछे बोला गया था।
1: क्या बोला?
3: खूब तारीफ करना अमित जी।
0: कुणाल खेमू, प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव, वंशिका धीर, निखिल मधोक बीती शाम नजर आए वाइब के ट्रेलर लॉन्च पर

0: ऐसे में देख लीजिए फिल्म का ये ट्रेलर।
1: ये रहा ऑफर लेटर, मंडे को जॉइनिंग है।
2: 7 करोड़।
3: एमबीए कहाँ से किया?
1: किसने?
3: यू जस्ट सेड मैं एमबीए हूँ।
1: वो तो शॉर्ट फॉर्म है, मतलब मैं बिल्कुल अकेला हूँ।
4: इंटेल इज स्ट्रॉन्ग मैम, इट्स अबू अल सईद। एच यूज एनी डिपार्टमेंट बट रिजल्ट्स एट एनी कॉस्ट।
0: पूजा पांडे जिसे आप लेकर हम दीवाना दिल में देख चुके हैं, अब वो नजर आने वाली है स्टार प्लस के शो ये फितूर 13 में। भाई उनका ये रोल एक स्पेशल और कैमियो रोल होगा। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने ले ली है बॉलीवुड में एंट्री और अब वो नजर आने वाली है श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म एठा में।

बहू और बेटियां पहुंच गया है इंडियाज बेस्ट डांसर के सेट पर, जहां हमारे कैमरे में कैद हुए शो के जजेस और होस्ट यानी कि करिश्मा कपूर, जावेद जेफरी, गीता कपूर, टेरेंस लुइस और यहां खास मेहमान बनकर इंडियन गेम शो को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं हिना खान, अनीता हसनदानी और मनीषा रानी।

0: भोजपुरी बवाल में अब खास मेहमान बनकर पहुंचे हैं एल्विस यादव, जो लगाएंगे दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ के साथ ट्विस्ट का तड़का।
1: अरे भाई तो उधर क्यों बैठे, आइए इधर आइए।
2: अरे भाई आप यादव, आप पहले नहीं बताया आपने मेरे को।
1: गजब हाल है यार। लो भाई आप पियो।
2: अरे नहीं नहीं, अरे आप पियो,
1: आप पियो।
2: नहीं नहीं नहीं, आप पियो, मैं अपने हाथों से पिलाता हूँ।
1: भाई आप यादव जी हो तो फिर बताना चाहिए ना आप, क्या बात है।
2: कोई बात नहीं, आप हमारे बड़े भाई हो, आप यादव जी लो ना, आप पियो।
1: भाई आप पियो।
2: अरे आपकी चाय आप पियो।
1: मैं कह रहा हूँ ना आप छोटे भाई हो, आप पियो।
2: एक काम करते हैं, मैं इसमें दो जीभ मार लेता हूँ फिर आप पी लो।
1: हाँ हाँ चलेगा भाई,
2: अब आपकी बात, आप पी लो इसको चाय।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ईशान खट्टर ने अनाउंस कर दिया है रॉयल्स का सीजन 2, वो भी बेहद ही मस्ती भरे अंदाज में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब फिर एक बार बिगड़ने वाली है पोपटलाल की हालत, क्योंकि बढ़ रही हैं उनके लिए नई मुश्किलें।
3: सर ये देखिए,
0: खबरों की माने तो विजय देवरकोंडा अब नजर आएंगे भगवान श्री कृष्ण के अवतार में उनकी आने वाली फिल्म लालो में। वही आपको बता दे कि ये फिल्म गुजराती ब्लॉकबस्टर फिल्म लालो का रीमेक है जो अब तेलुगु में आएगा। वरुण धवन ने शुरू कर दी है खेती बाड़ी, देख लीजिए ये नज़ारे।

0: के सीरियल मन अति सुंदर में आज राधे और प्रथम बन गए हैं राधा कृष्ण। आइए देखते हैं इनकी प्रेम लीला को।
1: मधुबन में जो कन्हैया किसी को
2: राधा बनी राधा रानी,
1: कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे।
2: प्रथम बने कृष्ण कन्हैया,
1: तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले।
2: शुरू हुई प्रथम और राधा की रास लीला।

0: चले।
1: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में हर साल की तरह इस साल भी प्रथम और राधिया जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं और तो और हर साल दोनों ही राधा और कृष्ण का अवतार लेते हैं, तो इस साल भी उन्होंने लिया है राधा और कृष्ण का रूप और देखिए कैसे राधा राधा रानी बन प्रथम के इर्द गिर्द नाच रही है और प्रथम कृष्ण कन्हैया बनकर अपनी राधा पर प्यार जता रहे हैं।

0: दरअसल बहुत ही प्रिटी लुक है, हम इतनी बार राधा रानी बन चुके हैं, लेकिन जितनी बार हम करते हैं उतनी बार ये एक स्पेशल लुक निकल के आता है। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, कॉस्ट्यूम है, मेकअप, क्रिएटिव स्टाइलिस्ट, सब ने बहुत टाइम लगाया है इस लुक में, बट बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आया है। और हम जितना आजकल सीन शूट कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है, इतने टेंशन वाले सीन्स हैं, पर उसके बीच में एक बहुत ही प्यारा सा ड्रीम सीक्वेंस है जिसमें राधा कृष्ण इमेजिन करके डांस कर रहे हैं। तो आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। मैं जितनी बार भी राधा बनती हूँ उतनी बार ही बहुत स्पेशल होता है। हम हमेशा राज करते हैं शो में, वो बहुत प्यार से करते हैं, बहुत प्यारा डांस हमने शूट किया है। सो आई जस्ट होप कि आप इन्जॉय करेंगे।
1: भाई ऐसे तो दादी ने राध्या को अल्टीमेटम दिया है कि वो प्रथम के नजदीक नहीं जाएगी, लेकिन त्योहार के बहाने ही सही, राध्या अपने प्रथम के पास है और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम लीला में डूबे हुए हैं।

0: लास्टली हमने किया था, जो किया था वो पूरा पेस्टल लुक किया था, अभी बहुत ही कलरफुल लुक किया है, दोनों ही बहुत ब्राइट कलर्स में है, तो आई थिंक ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड विद द सेटअप दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल डांस हुआ है। गाना तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आई थिंक जब ज़्यादा पॉप ऑफ कलर्स आते हैं तो इंसान सुंदर लगने लग जाता है, जितने कलर हो सकते हैं उतने हमने स्पर्श में कलर डाल दिया है और जो भी है, बट बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं कर्ली हेयर एंड एवरीथिंग के साथ, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं।
1: राधे बहुत ही सुंदर लग रही है आज, क्या बोलते हैं, मैं सुबह आते ही कॉम्प्लीमेंट किया इसके, जो ये मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, कल ही मैंने कॉम्प्लीमेंट किया था सच कि ये बहुत ही सुंदर लग रहा है हेडबैंड जो है, एंड राधे क्यूट तो है ही और उसको ऐसे कपड़े पहना दिए हैं जिसमें वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही है, एंड आई थिंक राधा के अवतार में और भी ज़्यादा क्यूट लग रही है आज।
2: भाई बिल्कुल सही कहा, राध्या आज इतनी खूबसूरत लग रही है कि प्रथम की नजरें उससे हट ही नहीं रही और राध्या भी अपने प्रथम को रिझाने में कामयाब हो गई है,

खैर दोनों रासलीला में डूबे हुए तो है ही, लेकिन जैसे ही प्रथम और राधिया को मौका मिला तो इन्होंने ऑफ कैमरा अपनी कई सारी फोटोज खिंचवाई हैं ताकि इन लम्हों को यादगार बनाया जा सके। तो

0: मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: एरियल ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा में। चल रही है आराध्या और विवान की सगाई रस्म। ये सगाई की रस्म उस वक्त और भी ज्यादा खास हो जाती है जब रक्षित अपराजिता को प्रपोज कर देता है, यानी रक्षित और अपराजिता के प्यार की गाड़ी चल पड़ती है। चलिए देखते हैं रक्षित अपराजिता की ये लव स्टोरी।

स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में जल्द ही अपराजिता और रक्षित एक दूसरे का हाथ थामेंगे और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करेंगे। यही है सीरियल में आने वाला ट्विस्ट।

लेकिन फिलहाल तो जुड़ गया है अपराजिता की बहन आराध्या और रक्षित के भाई विवान का रिश्ता। ऐसे में आज घर में हो रही है सगाई, जहां आराध्या और विवान एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे हैं, नया रिश्ता जोड़ रहे हैं। और तो और सबसे ज्यादा खुश नजर आ रही है रक्षित की माँ, क्योंकि इस सगाई की रस्म के बाद उन्होंने अपनी होने वाली बहू को चुनरी भी उड़ाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो आराध्या को सुहागन का सामान भी दिया है, जिसे देख अपराजिता भी बहुत खुश हो रही है, क्योंकि दोनों परिवार के बीच सब ठीक जो हो रहा है। अब जब ऑल इज वेल है तो डांस करना तो बनता है। ऐसे में देखिए कैसे पूरा परिवार पहुंच गया। नए नवेले दूल्हा दुल्हन के साथ अपने डांस का तड़का लगाने के लिए।

भाई सभी तो जमकर नाच ही रहे थे कि तभी रक्षित और अपराजिता दोनों खो गए सपनों की दुनिया में, भूल गए कि इनके आजू बाजू में घर के सभी लोग हैं, और देखिए कैसे दोनों एक दूसरे से अपना प्यार जताने लगे।

भाई दोनों ने सभी के सामने थोड़ी दूरियां बना ली और होने वाले दूल्हा दुल्हन यानी कि आराध्या और विवान डांस करने के बाद पहुंच गए बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए। इसी बीच अपराजिता भी अपने आप को रोक नहीं पाई और देखिए कैसे सीधा पहुंच गई रक्षित की माँ के पास और उनके पैर छूकर लेने लगी आशीर्वाद। ये देख रक्षित की माँ हैरान है। खैर रक्षित ने बात संभाल ली और खुद भी आशीर्वाद लिया।

0: अब देखना होगा कि क्या रक्षित की माँ को ये पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं।
1: किसी ने तो गायब कर दिए होंगे।
2: अगर आपको हम लोगों पर शक है तो आप हमारी तलाशी ले सकती हैं।
1: ये हुई ना समझदारी वाली बात, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, मिल गई चोरनी। अपराजिता,
3: अपराजिता को एक अंगन मैंने दिए थे, हमसे आप ही कहती थी ना कि एक अंगन भारद्वाज परिवार की बहू के लिए।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट,
4: जी टीवी के सीरियल वसुधा में पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। ऐसे में पूरी फैमिली सज धज के जुट गई है कान्हा जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने में। चलिए हम भी हो जाते हैं उनके इस त्योहार में शामिल।

जन्माष्टमी के त्योहार पर घर लौटी वसुधा। घर में आई ढेर सारी खुशियाँ। जी टीवी के सीरियल वसुधा में आज वसुधा के ससुराल में मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। ऐसे में पूरा घर कान्हा के आने की खुशी में सज गया है और तो और सारिका अपना वीडियो व्लॉग बना रही है और पूरे घर का माहौल अपने दर्शकों को दिखा रही है। खैर चंद्रिका तो बहुत खुश है क्योंकि उनका बेटा देव सही सलामत मुंडवा से घर आ गया है। ऐसे में उनकी खुशी दुगनी है। खैर कान्हा के जन्म होने का समय हो चला है। ऐसे में चंद्रिका गोद में उठाकर कान्हा को ले आई है। पूरे परिवार के साथ भजन आरती भी चल रही है।

चंद्रिका ने तो पूरे परिवार के साथ मिलकर जन्माष्टमी के त्योहार को खास मनाया है। अपने हाथों से लड्डू गोपाल को नहलाया, उनका अभिषेक किया, उन्हें अपने हाथों से वस्त्र पहनाए और देखे कैसे लड्डू गोपाल को पालकी में बिठाकर चंद्रिका और प्रभात दोनों ही उन्हें झूला झूला रहे हैं। और तो और एक एक कर परिवार के सभी लोग कान्हा को खुश कर रहे हैं।

0: इसी बीच बारी आती है देव की और जैसे ही देव सामने आते हैं साथ आ जाती है वसुधा भी। खैर वसुधा तो उनके ख्यालों में है और हर तीज त्योहार पर उनके साथ ही होती है। जन्माष्टमी का त्योहार तो मन गया है लेकिन चंद्रिका इस बात से अनजान है कि वसुधा मुंडवा में है। और तो और आज उन्हें ये जोरदार झटका भी लगा है क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला कि वसुधा मुंडवा में है वैसे ही उन्होंने देव पर बरसना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वसुधा के साथ कुछ हो ना जाए।
1: तुम बच्चों का दिमाग खराब हो गया है। वो लोग हमें अपना दुश्मन मानते हैं। अगर उन्हें एक बार भनक भी लग गई कि वसुधा दरअसल वसुधा सिंह चौहान है तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। देव तुम इतना बचपना कैसे कर सकते हो? देव ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ। वसुधा की जान को खतरा है देव।
0: अब आखिर माजरा क्या है ये तो सिर्फ चंद्रिका को ही पता है। इतना ही नहीं अब तो चंद्रिका ने फैसला भी ले लिया है कि वो खुद मुंडवा जाएंगी और वसुधा को सही सलामत वापस घर पर लाएंगी। देखना होगा कि मुंडवा में जाने के बाद चंद्रिका की जिंदगी में और क्या ट्विस्ट आएंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: आपको दिखाते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो हम खास आपके लिए लेकर आए हैं।
0: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग खबर जुड़ी हुई है जूनियर एनटीआर की आने वाली फिल्म ड्रैगन से। खबरों की माने तो ड्रैगन फिल्म में नजर आ सकते हैं शाहिद कपूर और आलिया भट्ट भी एक नए किरदार में। हालांकि इस खबर की कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है।

अजय नादियाडवाला जल्द ही 3 फिल्में लेकर आएंगे, जिनमें से एक फिल्म का नामकरण हो चुका है और वो फिल्म कोई और नहीं बल्कि हे बेबी 2 है, जिसकी शूटिंग जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में होगी। इसी के साथ 2 और फिल्में हैं जिनका नामकरण अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन खबरों की माने तो इन 2 फिल्म की शूटिंग भी ऑस्ट्रेलिया में ही होगी।

0: सलमान खान की फिल्म मॉन्स्टर का पोस्टर रिलीज हो गया है, डाल लीजिए इस पर एक नजर। इसी के साथ आ गई है रिलीजिंग डेट भी। खबरों की माने तो 2027 की ईद में सलमान खान की फिल्म रिलीज होगी। टीवी के रियलिटी शो द इंडियन गेम शो का प्रोमो देख लीजिए, जहां पर सभी लोग मिलकर मना रहे हैं जन्माष्टमी का त्योहार।
1: उससे फ्लर्टिंग मत करना, उसका सेम लाइन सुनिए। मैं बाहर सुन रही थी।
2: वाओ, टची टची।
3: चमोला जी को कोई नहीं मारेगा।

सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर में खास मेहमान बनकर आई हैं जीनत अमान। देख लीजिए प्रोमो, जहां पर सभी कंटेस्टेंट जीनत अमान के आने पर बेहद खुश नजर आ रहे हैं।

0: साधना संगीत।
1: जी टीवी पर आने वाले सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पा का प्रोमो देख लीजिए, जहां पर अनाउंसमेंट हो गई है वहां के जजेस की, जिनमें नाम शामिल है शंकर महादेवन, कुमार सानू, नीति मोहन और जावेद अली का। इसी के साथ बता दें कि इस शो को होस्ट करते हुए नजर आएंगे श्रेयस तलपड़े।
2: के जादू को इतनी शिद्दत दी जाए,
3: वो सिर्फ एक मंच नहीं, वो है हिंदुस्तान का संगीत स्थान।
4: मेरे को ना थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो गया, सबकी फोटोग्राफ्स वायरल हो रही है, मेरे खतरे का क्या? अब देखो मेरा खतरा वायरल होगा।
1: देख लीजिए कलर्स के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का ये प्रोमो, जहां पर रोहित शेट्टी बेहद खुश हैं और दे रहे हैं एक से बढ़कर एक स्टंट्स सभी कंटेस्टेंट्स को, और हर्ष कर रहे हैं सभी को रोस्ट।
5: ये पूरा सो गया
4: चाय लेके जादू। और अब भाई वापस आया तो फराना सबसे ज्यादा दुखी हो गई।
6: सही जा रहा, बिल्कुल सही जा
4: रहा। मैं बता रहा हूँ फराना, मत तुझे क्या लग रहा था गौरव भाई वापस नहीं आएंगे? इंडियन टीवी का सबसे बड़ा दमाद है, ये 10 बार मर के वापस आ जाते हैं। ये तो फिर भी एलिमिनेशन है। लेकिन अब गौरव भाई हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी फराना अब पराई हो गई है।
7: कैसे?
4: बल्कि मैं तो कहता हूँ पराई नहीं, वो अब करण की वाही हो गई है। हमें मजबूरी में इस शो में पेन ऑक्शन में पेन सहनी होती है। आप जानबूझ के जिंदगी भर लेना चाहते हो? हमने अली को फोन किया, ये तुम्हारी बंदी है, वो कह रही कि मैं शो छोड़ के जा रही हूँ। कह रहा घर में नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं बाहर आके बात करता हूँ। जब तक वो बाहर आई अंदर आ चुकी।
8: उसी टाइम को खत्म कर देते थे उसी टाइम।
9: क्रिस्टल, प्लीज टेल अस, क्या आप ट्रेटर हैं या फिर इनोसेंट?
1: Amazon Prime के रियलिटी शो द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2 की विनर है क्रिस्टल डिसूजा और रिधा थराना। देख लीजिए ये नज़ारे उनकी खुशी का।
10: एंड पहले दिन से मैं एक ट्रेटर हूँ।
9: रिधा और क्रिस्टल, आपने ये गेम जीत लिया है। As traitors, very, very well done. Game में कमाया हुआ पूरा प्राइस पॉट, which is 66 lakhs of rupees, होता है आप दोनों का।

0: I cannot believe. And with my girl Rida, I didn't get rid of her. I kept her. I could have, I didn't.
1: I can't believe कि ये हुआ है. I think मुझे मेरे में ना कुछ ऐसे problem हो गया. I can't believe जब मैं traitor पे करती हूँ. I can't believe जब मैं murder करती हूँ. I can't believe जब मैं जीत जाती हूँ. Like there's some believing issue that I have जो मेरे को fix करनी है. But I'm a winner.
2: And that's how we do Dhoka. Another season of this bloody game comes to a
3: तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली नई फिल्म द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट का नया गाना समझो ना रिलीज हो गया है. गाने के लॉन्च के मौके पर दोनों वहां मौजूद रहे. साथ ही मौजूद रहे जुबिन नौटियाल भी, जिन्होंने इस गाने में अपनी आवाज दी है.

0: Excuse me, we have a reservation.
1: Yes, ma'am. Please come.
0: All right. Hey! Hey, guys! Never thought I'd see you guys here. Interesting.
2: Well, never say never. Waiter, can you please join the tables?
3: Dangal TV पर जल्द आने वाला है नया सीरियल दिल पड़ोसी. डाल लीजिए इस सीरियल के प्रोमो पर एक नजर.
4: ओ, हम वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बोर हो गए थे और भूख भी लग रही थी तो
5: हम भी लेट तक काम कर रहे थे तो दिया जी ने बोला कि पर दिल से थैंक यू.
4: आपकी तो मीटिंग थी ना, कोई क्लाइंट मीटिंग कह रहे थे आप आज.
2: हाँ, उसी काम के लिए तो इतना लंबा टाइम लग गया ना हमें.
0: रिलैक्स गाइस, इट्स जस्ट डिनर. सेव दीस एक्सप्लेनेशंस फॉर होम.
5: ट्रू दैट.
6: ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरी होती है सीरियल्स की दुनिया. और जन्माष्टमी के मौके पर किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट, देखना होगा काफी मजेदार. चलते हैं सीरियल्स की दुनिया में.

कलर्स के सीरियल मन्नत में मन्नत, विक्रांत और पूरा परिवार मिलकर मना रहा है दही हांडी। और देखिए कैसे मन्नत और विक्रांत रंग गए हैं डांस के रंग में और पूरे परिवार संग लगा रहे हैं डांस का तड़का।

भाई दोनों धैर्य से बचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन धैर्य उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों पर टिकी हुई है। और तो और धैर्य भी अपने चेहरे पर रंग लगाकर इनके साथ डांस में शामिल हो जाता है।

सास बहू और बेटियां के जन्माष्टमी स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और दिखाएंगे आपको आपके फेवरेट सीरियल्स, ओटीटी और सितारों से जुड़ी हर मनोरंजक न्यूज़। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: जामनगर में कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आए लोग, जन्माष्टमी पर निकाली लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा, 20 से अधिक स्थानों पर मटकी फोड़ कार्यक्रमों ने बढ़ाया उत्साह। कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान के पाली में कृष्ण मंदिरों में आकर्षक सजावट, बच्चे बने लड्डू गोपाल, निकाली गई शोभा यात्रा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी मंदिरों की भव्य सजावट। धूमधाम से मनाया जा रहा कृष्ण जन्मोत्सव, मुंबई के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्ति में झूमते दिखे भक्त, जयपुर के गोविंदा जी मंदिर में जश्न की खास तैयारी, पंजाब में बनाए जा रहे कान्हा की थीम वाले केक। बाढ़ प्रभावित नेपाल में भी दिखी कृष्ण जन्माष्टमी की छटा, काठमांडू के कृष्णा मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा कान्हा जी का जन्मोत्सव। अकोला में 20,000 स्कूली छात्रों ने बनाई इको फ्रेंडली गणपति, त्योहार की खुशी के साथ दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। न्यूयॉर्क में मेयर ममदानी ने 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए जनरेटिव AI टूल के प्रयोग पर लगाया बैन, मेयर बोले बच्चों में स्किल डेवलपमेंट जरूरी है।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो देखिए, आज पूरा देश भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ है। तस्वीरें जो हैं वो देश के कोने कोने से सामने आ रही हैं। और देखिए, देश के कोने कोने में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों की रौनक जो है वो भी देखने को मिल रही है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खुशी में मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु अपने लड्डू गोपाल को नए वस्त्र और आभूषण पहनाकर उनका श्रृंगार कर रहे हैं। आज आधी रात को कान्हा का जन्म होगा और उनके दर्शन के लिए भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आप जीएनटी के माध्यम से देख सकते हैं। और साथ ही में मथुरा में आज और क्या क्या होने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे। हमारी संवाददाता श्वेता झा के पास हम वहां पर चलते हैं, जो कि कृष्ण की जन्मभूमि से मौजूद है हमारे साथ। श्वेता, पहले तो मेरी तरफ से आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको देखकर लग रहा है कि मथुरा पहुंचते ही आप कृष्ण के रंग में रंग चुके हैं।
1: राधे राधे। सबसे पहले सरगम, और मथुरा पहुंचते ही मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं तो ये बोलूंगी कृष्ण के रंग में मैं बहुत पहले से रंग चुकी हूं, क्योंकि आपको पता हो कि मेरे घर पे भी ठाकुर जी हैं। और यहाँ जन्म स्थली में पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है जो अनुभूति होती है वो अलग ही होती है, और उसका आभास आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मथुरा जो है सज धज गई है, और ये जो जन्मस्थली जन्मभूमि है जहां पर आज श्री कृष्ण के प्राकट्य का महाउत्सव मनाया जाएगा, वो पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। पूरी तरह से फूलों से और लाइटों से इस पूरे मंदिर परिसर को जो है वो सजा दिया गया है। भक्त सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं, कई महाभिषेक यहाँ पर होने हैं। पूरा आपको आज का कार्यक्रम हम बताएंगे, क्योंकि लगभग पूरे ब्रज भूमि में बताया जा रहा है कि 40 से 50 लाख श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। इसलिए सुरक्षा के भी आप देखिए मंदिर परिसर के अंदर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है, हमारे कैमरामैन संजय लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, हर ओर से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जो है वो तांता लगा हुआ है, लेकिन हाँ, चरणबद्ध तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अंदर अनुशासन बना रहे इसकी भी पूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है उसे यहाँ पर परिसर में दिक्कत ना हो। आज का कार्यक्रम जाहिर सी बात है दिव्य और भव्य होने वाला है, क्योंकि 5253वां जन्मोत्सव श्री कृष्ण का मनाया जाने वाला है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में भी कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, हालांकि पूरे ब्रज मंडल में हो रहे हैं। इस वक्त दो बहनें हमारे साथ हैं, गुंजन और
2: गुनगुन।
1: ये दोनों बहनें हैं, भोपाल से आई हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मंदिर परिसर में ही बहुत अच्छा इनका कार्यक्रम हुआ था, इसलिए हमने इनसे आग्रह किया है कि गुड न्यूज टुडे के जो दर्शक हैं, खास करके उनके लिए आपकी तरफ से विशेष हम कुछ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सुनना चाहेंगे। तो गुंजन, सबसे पहले अभी मैं देख रही थी यहाँ पर दोनों हाथ उठाकर श्री कृष्ण का लोग नाम ले रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, वो कौन सा भजन है जो सबसे पहले आपके जहन में आता है और आप गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को सुनाना चाहेंगे?
2: हम एक ही भजन सुनाना चाहेंगे, और इसके इस भजन के थ्रू हम खुद भी अपने मन की बात रखना चाहेंगे।

मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और यहाँ पर पहुँचा हुआ हर जो भक्त है, हर श्रद्धालु है, वो यही विश्वास करता है कि करते सब कन्हैया है और नाम उनका हो रहा है। इसी के साथ आप लोगों ने कहा कि कुछ भजन जामिंग आप लोगों ने तैयार की है जो अपने दर्शकों को हम सुनाना चाहते हैं।

Pobre de mim.

कृष्णा श्वेता, पर मन नहीं कर रहा कि ये जो सिलसिला है वो थमे, लेकिन वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और मैं तो ये सोच रही थी अभी ये दृश्य है तो मध्य रात्रि में जब जन्माष्टमी का अहम त्योहार मनाया जाएगा तब कौन सा दृश्य सामने आएगा। बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए हमारी संवाददाता श्वेता जहां मथुरा पहुंच चुकी हैं, वहां से पल पल की लाइव अपडेट्स वो आप तक पहुंचाती रहेंगी। और जीएनटी पर हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन नजर होंगे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिर पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: जामनगर में कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आए लोग, जन्माष्टमी पर निकाली लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा, 20 से अधिक स्थानों पर मटकी फोड़ कार्यक्रमों ने बढ़ाया उत्साह। कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान के पाली में कृष्ण मंदिरों में आकर्षक सजावट, बच्चे बने लड्डू गोपाल, निकाली गई शोभा यात्रा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी मंदिरों की भव्य सजावट। धूमधाम से मनाया जा रहा है कृष्ण जन्मोत्सव, मुंबई के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्ति में झूमते दिखे भक्त, जयपुर के गोविंद जी मंदिर में जश्न की खास तैयारी, पंजाब में बनाए जा रहे कान्हा की थीम वाले केक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। बस कुछ ही घंटों के बाद आने वाली है वो शुभ घड़ी जब नारायण रूप श्री कृष्ण का अवतरण इस धरती पर हुआ था, जिसे हम सभी जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। आज तो कान्हा की जन्मस्थली और देश दुनिया में श्री कृष्ण के दर पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। कहते हैं कि जो भी विधि विधान से जन्माष्टमी के पर्व पर व्रत रखता है, कान्हा की उपासना करता है, कलयुग में उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। कान्हा का जन्मोत्सव उनके भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। हम आपको बताएंगे कि कैसे मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार और आप कैसे पा सकते हैं बंसीधर की असीम कृपा।

0: भादो मास अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, यही तो वो तिथि होती है जिसका इंतजार साल भर भक्तों को रहता है, जिसका गवाह बनता है समूचा ब्रह्मांड। जब द्वापर के सबसे बड़े कर्मयोगी का मनाया जाता है जन्मोत्सव, बाल गोपाल, नंदलाल, बशीधर पधार रहे हैं। हर कोई कान्हा के भजन में मगन है, खासकर कान्हा की नगरी में छाई है धूम। कृष्ण भक्ति में झूम रहे हैं भक्त पूरे जोश और उमंग के साथ। मनाया जा रहा है कान्हा का जन्मोत्सव। कान्हा के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस विशेष अवसर पर सभी मंदिरों को खूब सजाया गया है। कान्हा के जन्म स्थान को भव्यता के साथ सजाया गया है। नंदलाल के स्वागत के लिए देश भर में उत्साह के साथ उनके आगमन की प्रतीक्षा हो रही है। चलिए अब आपको बताते हैं जन्माष्टमी की महिमा। जन्माष्टमी का महत्व और अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होने के कारण इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म वृष लग्न, वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो वो आज विशेष पूजा से लाभ पा सकते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्री हरि के समस्त अवतारों में श्री कृष्ण को ही पूर्ण अवतार माना गया है। सुनिए क्या कहते हैं इस पर ज्योतिष के जानकार।
1: क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम योगेश्वर भी है, 16108 रानियों के साथ रहते ये के बाद भी भगवान को योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है। पूर्णावतार जो होता है सभी चीजों से निष्क्रिय, इंद्रिय निग्रह से लेकर के संसार की जितनी भौतिकता की वस्तु हो, जिसके अंदर समाहित हो, जिसके अंदर स्त्री हो, जिसके अंदर ऐश्वर्य हो, जिसके अंदर छह विकार न हो, वही 16 कराओं से पूर्ण व्यक्ति या ईश्वर हो सकता है।
0: ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। हमने आपको कल भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त बताया था, जन्माष्टमी की तैयारियों से भी आपको अवगत करवाया था। तो चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृष लग्न और वृष राशि में हुआ था। भादो कृष्ण अष्टमी के साथ रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि का काल देखा जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 3 सितंबर को रात 1:33 से आरंभ हो चुकी है। इसका समापन आज रात 11:13 पर होगा। 3 सितंबर की रात 12:45 से रोहिणी नक्षत्र का आरंभ हो चुका है। रोहिणी नक्षत्र आज रात 11:12 तक रहने वाला है। आज रात रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों है, इसलिए आज ही अष्टमी मनाई जा रही है। श्री कृष्ण की पूजा का समय मध्य रात्रि 11:57 से 12:43 तक होगा। इस अवधि में श्री कृष्ण का जन्म होगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है कान्हा के जन्म का। रात को 12 बजते ही कृष्ण कृष्ण का जयकारा शुरू हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से धरती गुंजायमान होने लगती है। शंख की अति पावन ध्वनि हृदय की गहराइयों को छू लेती है। घंटे बजेंगे, कीर्तन होगा, भगवान की आरती होगी और विश्व के कल्याण की कामना होगी। जैसे ही कान्हा के नन्हे कदम धरती पर पड़ेंगे, पवित्र हो जाएगी धरती की गोद। द्वारकाधीश तो करुणा निधान है ही, तभी तो कंस की दासी को भी तार देते हैं और भक्तिभाव से आने वाले साधक के मुक्ति के द्वार खोल देते हैं।
1: क्योंकि भगवान जब कुब्जा को रास्ते में पकड़ते हैं और उसका चंदन ग्रहण करते हैं तो कुब्जा को सुंदर युवती बना देते हैं जो कंस की दासी है। तो भगवान करुणा बता रहे हैं, अपने ग्वाल बालों पर कृपा करना, अपने मित्र सुदामा पर कृपा करना, भगवान की करुणा का जो सागर है अथाह है। जो उनके सन्मुख होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघ नाशहि तबहि, भगवान उनके करोड़ों जन्म का अघ नाश कर देते हैं।
0: माधव मुक्ति का पथ भी दिखाते हैं, आंखों पर पड़ा माया का पर्दा भी हटाते हैं। तभी तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को चेतना केशव ही प्रदान करते हैं और अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित करते हैं।
1: देखिए जो कृष्ण की उपासना है, कृष्ण की उपासना पापों से मुक्ति दिलाती है। तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो चीजें हैं उससे जीवन में हमको एक लड़ने की शक्ति मिलती है। आप देख लीजिए, जब उन्होंने अर्जुन के मोह का परित्याग किया, अर्जुन ने जब कहा कि जो सामने खड़े हैं वो अपने हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने समग्र उत्तर दिया, अगर वो अपने हैं तो फिर सामने क्यों खड़े हैं। तो भगवान इस तरह से अपने वाक चातुर्य से, अपनी अपने मार्ग से हर लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस रात को जिसने योगेश्वर कृष्ण का ध्यान करते हुए उनका नाम जप लिया, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही माधव के महामंत्रों का जाप करने से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन मंत्रों का जाप करने से आप पर बरसेगी श्री कृष्ण की कृपा। श्री कृष्ण की उपासना के महामंत्र। जन्माष्टमी पर किन मंत्रों और स्तुतियों से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें? भगवान कृष्ण का नाम ही एक महामन्नत है, इसका भी जप किया जाता है। इसके अलावा हरे कृष्ण महामन्नत का भी जप कर सकते हैं। जीवन में प्रेम और आनंद के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। श्री कृष्ण को गुरु रूप में प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ भी किया जा सकता है।
1: हमारे यहाँ अगर आप वैदिक मंत्रों को जानते हैं तो आप पुरुष सूक्त जो हमारे यहाँ बताया गया है शुक्ल यजुर्वेद में, ओम सहस्त्र श्री रिखा पुरुख सहस्त्राक्ष सहस्त्र पात सभूमि गुम सर्व तस्मृतवात यतिष्ठ दशांगुलम, यह 16 मंत्र हैं। वो नहीं जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, या कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इन मंत्रों का जप करके भी आप जन्माष्टमी जैसे परम पर्व का लाभ उठा सकते हैं।
0: तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आगे आपको बताने वाले हैं जन्माष्टमी से जुड़े वो महा उपाय जो आपके जीवन की तमाम बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना स्वीकार हो।
2: ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा उपासना से जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी से जुड़े अगर विशेष प्रयोग आप कर लें तो जीवन की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो सकती हैं। मुरली वाले लीलाधर का जन्मदिन इस सृष्टि के लिए वरदान था। इस पावन मौके पर अगर श्री कृष्ण को पूरी आस्था के साथ याद किया जाए, विधिवत उनकी पूजन किया जाए, तो आपके हर कष्ट हर लेंगे।
0: परम फलकारी है जन्माष्टमी का महाप्रयोग। जब पधारेंगे योग योगेश्वर श्री कृष्ण मुरारी, दर्शन से दूर हो जाएंगी जीवन की हर दुश्वारी। वो आ रहे हैं आपके द्वार, भक्तों पर लुटाएंगे अपना दुलार। जिस पर कृपा कर देंगे भगवान, उसे मिलेगा उत्तम संतान का वरदान। जन्माष्टमी की अति पावन शुभ घड़ी आई, महा उपाय से अविवाहित भक्तों के जीवन में गूंज उठेगी शहनाई, जब इस धरा पर श्री कृष्ण लेंगे अवतार। तब शिक्षा नौकरी व्यापार पकड़ेगा रफ्तार, क्योंकि भक्तों की हर मुराद पूरी करने के लिए नन्हे नन्हे पांव से आ रहे हैं नंद किलार। माना जाता है कि जन्माष्टमी की तिथि के महा उपाय अमोघ हैं। कहते हैं कि जन्माष्टमी की तिथि पर मोरपंख का दान करने से आपके जीवन से राहु केतु की बाधा का अंत हो जाता है।
1: भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में मोरपंख का दान करना, क्योंकि मोरपंख का दान करने से राहु केतु शनि और बुध चार ग्रहों की शांति होती है। बांसुड़ी ठाकुर जी को जब अर्पण करते हैं, अब ठाकुर अगर अपने भाव से उस बांसुड़ी को अपने अधरों पर लगाता है, आपके घर में माधुर्य आता है। दही मिश्री का भोग लगाना, मक्खन मिश्री का भोग लगाना, यह जो भोग है यह पार, क्योंकि दही को मथने से मक्खन निकलता है। तो भगवान कहते हैं मैं अभी तुमको मथ रहा हूँ और मैंने तुम्हारे जब मक्खन को चख लिया तो मैं तुम्हारे जीवन को मक्खन जैसा सरल कर दूंगा, मिश्री जैसा मीठा कर दूंगा और जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करें।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कामना चाहे कैसी भी हो, अगर आप भी श्री कृष्ण से चाहते हैं खास वरदान, तो आप भी कीजिए जन्माष्टमी पर ये खास प्रयोग, जिससे दूर हो सकती है आपकी संतान की बाधा। श्री कृष्ण देंगे संतान का वरदान। भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते, दे मे तन्मय कृष्ण त्वामहे शरणं गता। आज हम अपनी इस खास पेशकश में कान्हा के जन्मोत्सव से जुड़े अमोघ महा उपायों के बारे में बात कर रहे हैं। कान्हा के जन्मोत्सव में दही हांडी या फिर कहें कि मटकी फोड़ने की भी परंपरा है, लेकिन सवाल यह है कि दही हांडी इतनी ऊंचाई पर बांधने की परंपरा क्या है, चलिए ये भी आपको बताते हैं।
1: ये दही हांडी जो शब्द है, ये जब भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करने जाते थे तो गोपियां उनके डर से ऊपर हांडी को टांग देती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के कंधे पर चढ़ के एक मनुष्य का पिरामिड बना करके दही मक्खन चूरा खा जाते हैं। तो हांडी क्या है? ये मनुष्य के भीतर छिपे प्रेम और अंतरात्मा का प्रतीक है। ऊंचाई पर हांडी लक्ष्य और कठिनाई है। गोप बालों की टोली क्या है? सामूहिक प्रयास है। एक दूसरे कंधे पर सहारा लेने का तात्पर्य है सहयोग और विश्वास। हांडी का ज्ञान क्या है? कि अहंकार से मुक्ति दिलाना। और माखन दही का प्रमाण है सब उसके भगवान सबको वितरण करते थे, तो प्रेम और श्रद्धा का वितरण भगवान करते हैं। तो दही हांडी का जो उत्सव है यह भगवान की लीलाओं में सर्वोत्तम उत्सव है।
0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कान्हा को लगाए जाने वाले भोग माखन में सफलता का सूत्र छिपा है। जिस तरह से माखन को मथकर परिश्रम करके निकाला जाता है, ठीक उसी तरह से तब कर ही इंसान कुंदन बनता है। और माना जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा को लगाया गया भोग अमृत समान होता है और जिसे ग्रहण करके उत्तम सेहत का वरदान हासिल किया जा सकता है। गौर से देखिए खास महोपाय जो आपके शारीरिक और मानसिक विकार को दूर कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए उपाय, भगवान कृष्ण का पंचामृत और जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को लाल वस्त्र अर्पित करें, उन्हें 27 बार झूला झुलाएं, चढ़ाया गया पंचामृत प्रसाद की तरह ग्रहण करें। आस्था कहती है कि कलयुग में लीलाधर की लीला का कोई सानी नहीं। मनमोहन तो सबको मोह लेते हैं, वो तो मोहनी मूरत है, प्रेम की अद्भुत सूरत है, प्रेम रस का माधव भंडार है। माना जाता है कि जन्माष्टमी के इस खास उपायों से आपके घर से विवाह संबंधी संकट हमेशा के लिए दूर हो सकता है। अगर आप भी चाहते हैं विवाह का वरदान, तो गौर से देखिए महा उपाय। श्री कृष्ण देंगे विवाह का वरदान। भगवान कृष्ण को सुगंधित जल अर्पित करें, इसके बाद उनको पीले रंग के फूल चढ़ाएं, गोकुल नाथाय नमः का जप करें। ज्योतिष कहते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण की महाकृपा दिलाने के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि इस दिन बाल गोपाल की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं विद्या और शिक्षा प्राप्ति का वरदान, तो देखिए ये दिव्य प्रयोग। विद्या और शिक्षा प्राप्ति के लिए उपाय, भगवान श्री कृष्ण को केसर के जल से स्नान करवाएं, उनको पीली वस्तु का भोग लगाएं, फिर निम्न मंत्र का जाप करें। ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञत्वं प्रसीदमे, राम रमण विदेश विद्यमाशु प्राश्चमे। तो देखा आपने ज्योतिष में बताए जन्माष्टमी के अद्भुत प्रयोग कितने कारगर है। माना जाता है कि जन्माष्टमी पर भक्तों के सारे संकट खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको वो महाप्रयोग भी बताते हैं जिसे करने से आपकी आर्थिक समस्या भी दूर हो सकती है। आर्थिक समस्या को दूर करने के महा उपाय, भगवान कृष्ण का सुगंधित जल से अभिषेक करें, उन्हें गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करें, इसके बाद उन्हें 9 बार झूला झुलाए, चढ़ाया गया सुगंधित जल एकत्रित करके पूरे घर में छिड़क दें। जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश सफलता के उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जिसकी उसे दरकार होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का वो ज्योतिषीय महोपाय जिसे कर लेने से आपका रोजगार और कारोबार उड़ान भर सकता है। रोजगार और नौकरी में सफलता के उपाय, भगवान कृष्ण को सफेद चंदन और जल अर्पित करें, उन्हें गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं, चमकदार सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं, उन्हें 18 बार झूला झुलाएं, चढ़ाई गई माला अपने पास सहेज कर रखें, सफेद चंदन का तिलक लगाते रहें, तो आप भी जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की उपासना में लीन हो जाएं। माधव की समर्पण और भक्ति भाव के साथ उपासना करें, वो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।
2: श्री हरि यानी भगवान विष्णु के अवतारों में सबसे सुखदायी और कल्याणकारी है भगवान श्री कृष्ण का अवतार। कहते हैं कि जिसने कान्हा को मान लिया, कान्हा की कृपा पाली, उसे फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो इस जन्माष्टमी पर कृष्ण पूजा में किन बातों का ध्यान रखें, ये भी जान लीजिए।

0: श्री कृष्ण जिन्होंने कर्म को प्रधान बताया, जिन्होंने हमें जीवन का मर्म समझाया, गीता के ज्ञान से जीवन का अंधेरा मिटाया, अपनी लीलाओं से संसार को मार्ग दिखाया। साधक की भवसागर में फंसी नैया को पार लगाया। माधव ने हम सभी का मार्गदर्शन किया। उन्हीं द्वारकाधीश का जन्माष्टमी के दिन सच्चे मन से मात्र स्मरण करने भर से साधक के मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो चलिए जन्माष्टमी के दिन की पूजा का विधान भी जान लेते हैं।
1: भक्ति भाव से प्रसन्न होकर प्रातः काल संकल्प लेकर के व्रत करें कि आज मैं दिन भर किसी की निंदा नहीं करूंगा, सत्य बोलूंगा, सत्य का आचरण करूंगा और निराहार रहे और दिन भर भगवान का जप करता रहे। और अर्धरात्रि में जब भगवान के प्राकट्य का जो उत्सव होता है तो उस समय विविध मंत्रों से, गीता के पाठ से और नारायण के जप से भगवान श्री विष्णु को, माधव को प्रसन्न करके हम जीवन में अपने उनकी कृपा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।
0: किस प्रकार मनाएं जन्माष्टमी का पर्व? प्रातःकाल स्नान करके आज के दिन व्रत या पूजा का संकल्प लें। दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करें, सात्विक रहें। मध्यरात्रि को भगवान श्री कृष्ण की धातु

0: कि अर्पित की जाने वाली चीजें शंख में डालकर ही अर्पित की जानी चाहिए। तत्पश्चात पीताम्बर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद भगवान को झूले में बिठाकर झूला झुलाएं। झूला झुलाकर प्रेम से अपनी कामना कहें।
1: जो ठाकुर जी का मूल स्वरूप है, बंसी विभूषित करा नवनी रदाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। पीताम्बर है या नीलाम्बर भगवान का, दो वर्ण भगवान विष्णु को प्रिय है, या तो नीला वस्त्र हो या तो पीत वस्त्र हो। ऐसे वस्त्र, ऐसे मुकुट, ऐसे भगवान की छवि आप बनावे, ये प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है और इसे हमेशा मनाते रहना चाहिए।
0: आप जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की विधिवत उपासना करके हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति और उनकी पूजा उपासना में कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कृष्ण पूजा में रखें खास ख्याल। भगवान श्री कृष्ण की पूजा मधुर भाव से करें। मंत्र जाप के लिए तुलसी या फिर चंदन की माला का प्रयोग करें। मंत्र जाप के तुरंत बाद जल का स्पर्श न करें। मंत्र जप के साथ सात्विकता बनाए रखें। तो अब देर न कीजिए, सारी तैयारियां पूरी कर लीजिए, क्योंकि आज जैसे ही शाम धरती पर आएंगे आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। विधि विधान से कर लीजिए कान्हा की उपासना और पा लीजिए मनचाहा वरदान, क्योंकि एक बार सुदर्शन धारी की कृपा बरस गई तो समझिए कि आपकी सारी मुराद पूरी हो गई।
2: और इसी के साथ प्रार्थना और स्वीकार के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
4: आप भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? क्या आप भगवान कृष्ण की भक्ति को मित्रता में बदलना चाहते हैं? कैसे बने भगवान कृष्ण आपके मित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: रहा है। बात मथुरा के करें तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के सिलसिले में लोगों में कितना उत्साह है दिखा रही है हमारी संवाददाता श्वेता झा।
1: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और इस वक्त मैं ब्रजभूमि मथुरा

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: आज पूरा देश भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ है। देश के कोने कोने में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों की रौनक देखने को मिल रही है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का जो दौर है वो लगातार

0: से जितने भी श्रद्धालु हैं, वो इस वक्त मगन है श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर। भव्य और दिव्य यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। कृष्ण जन्म स्थली की तस्वीरें सीधे आपको हम दिखा रहे हैं। भव्य मंच सजा हुआ है और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप देखिए कृष्ण की भक्ति में सारे लोग, ये देखिए किस तरह के कृष्ण की भक्ति में लीन है और हर कोई हाथ उठाकर श्री कृष्ण की जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से आया है और हर कोई यही चाहता है कि कृष्ण के आगमन, उनके प्राकट्य दिवस को लेकर जो खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है उसका वो भागीदार बने और शरीक हो। भव्य और दिव्य कार्यक्रम इसी तरह से जन्मस्थली के अंदर यहाँ पर हो रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें पूरे ब्रजभूमि में लगभग इसी तरह का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: जामनगर में कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं लोग। जन्माष्टमी पर निकली लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा, दही हांडी से समारोह में भरे उत्साह के रंग। राजस्थान के पाली में जन्माष्टमी पर कृष्ण मंदिरों में आकर्षक सजावट, कान्हा के वेश में नजर आए नन्हे मुन्ने बच्चे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी मंदिरों की भव्य सजावट। देश से नहीं दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है कृष्ण जन्मोत्सव। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्ति के रंग, जयपुर के गोविंद जी मंदिर में जश्न की तैयारी खास, पंजाब में कान्हा की थीम वाले आकर्षक केक। बाढ़ प्रभावित नेपाल में भी दिखी कृष्ण जन्माष्टमी की छटा। काठमांडू के कृष्ण मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है कान्हा का जन्मोत्सव। अकोला में 20,000 स्कूली छात्रों ने बनाया इको फ्रेंडली गणपति, त्योहार की खुशी के साथ दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। न्यूयॉर्क में मेयर ममदानी ने 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए जनरेटिव AI टूल के प्रयोग पर लगाया बैन। मेयर बोले बच्चों में स्किल डेवलपमेंट जरूरी है।

0: कान्हा का जन्मोत्सव और गुड न्यूज टुडे पर 8 घंटे की महाकवरेज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और इस महाकवरेज में आपका स्वागत है। कृष्ण भक्तों के लिए आज का दिन बहुत अहम है, बेसब्री से इंतजार हो रहा है उस पल का जब श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। तो आज पूरा दिन अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इंतजार रात 12 बजे का रहेगा, उस समय की तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि पूरे देश में किस तरीके से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव को लेकर किस तरीके से पूरा देश भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। हर ओर बस कान्हा के भजन ही सुनाई दे रहे हैं। अब बस इंतजार आधी रात का है जब कान्हा का जन्म होगा, दर्शन देंगे कान्हा सबको। और वहीं जन्माष्टमी पर दुर्लभ सहयोग भी देखने को मिल रहे हैं, तो कान्हा का कैसे स्वागत करें, क्या लगाए भोग दिल्ली से मथुरा और मुंबई तक, कैसी है रौनक जन्माष्टमी पर, क्या कहती है आपकी राशियां, इन सभी पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य। तो आज बड़ा ही पावन दिन है, आज जगह जगह जय नंदलाल जय गोपाल की गूंज है, क्योंकि आज कान्हा आ रहे हैं। मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। गोवर्धन गिरधारी देवकी नंदन मदन मुरारी के प्राकट्य का मुख्य उत्सव आज रात मध्य रात्रि को होगा। अब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग का मुहूर्त बनने वाला है, क्योंकि द्वापर युग में इसी तिथि पर मुहूर्त में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। लेकिन इससे पहले आज सुबह से ही मथुरा वृंदावन सहित देश के तमाम मंदिरों में माहौल कृष्णमय हो चुका है।
1: मौजूद हूँ कृष्ण जन्म स्थली में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जो है वो जारी है और भव्य तौर पर पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। इसकी रोशनी, इसकी चमक शाम को आपको देखते ही बनेगी। लगातार कई कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, चूँकि इस बार 5253वां भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए इस बार दिव्यता और भव्यता देखने लायक है। यहाँ के जो सचिव है कपिल शर्मा जी, वो इस वक्त हमारे साथ है। कपिल जी, इस बार का जन्मस्थान और खास होने वाला है, 5253वां जन्मोत्सव होने वाला है, विशेषता क्या है?
2: भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य महोत्सव में श्री ठाकुर जी पंचरत्नी पोशाक को धारण करके भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले थे, उनमें से 5 रत्न कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, पांचजन्य शंख, एरावत हाथी और अमृत कलश, ये 5 मंगल रत्न भगवान की पोशाक पर उकेरे गए हैं। जो भागवत भवन का भारी हिस्सा है उसके पुष्प बंगले की जो डिजाइन है, थीम है, वो समुद्र मंथन की है, देवासुर संग्राम की है।
1: साथी जो इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि आज का पूरा कार्यक्रम किस तरह से होने वाला है, किस समय अभिषेक होंगे, किस समय प्राकट्य का समय दिया गया है, क्या कुछ तैयार?
2: देव देवादि देव महादेव भी जिस महोत्सव में सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होने की कामना करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म महाभिषेक का कार्यक्रम मध्य रात्रि के लगभग 11 बजे प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम भगवान को 1008 कमल पुष्पों से सहस्त्रार्जन होगा, तदुपरांत रात्रि ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट होगा। प्राकट के साथ ही संपूर्ण मंदिर परिसर ढोल नगाड़े मजीरे डमरू मृदंग आदि की मंगल ध्वनि से गुंजायमान उठेगा और शुरू हो जाएगी भगवान की प्राकट आरती। प्राकट आरती के उपरांत तो स्वर्ण मंडित रजत काम धेनु स्वरूपा गाय के पयोदर दूध की धाराओं से भगवान का अभिषेक होगा। तदुपरांत भगवान रजत कमल पुष्प में विराजमान होंगे और उनका सुगंधित द्रव्य औषधियों और पंचामृत से बहुत ही दिव्य और भव्य जन्माभिषेक होगा। और आज का जो उत्सव है, इस उत्सव में की जो पूर्णता है वो भगवान के श्रृंगार और श्रृंगार के बाद श्रृंगार आरती। तो ये जो लगभग 1 घंटे का जो स्वर्णिम आध्यात्मिक काल है वो निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ों सनातन धर्मावलंबी और कृष्ण भक्तों के लिए प्रतीक्षा और आस्था का क्षण है।
1: इस बार हमने सुना है कि रात के 1:30 बजे तक लगभग जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ आ पाएंगे।
2: देखिए, रात्रि 1:30 बजे तक मंदिर परिसर में श्रद्धालु का प्रवेश रहेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जो श्रद्धालु मंदिर परिसर में प्रवेश कर गए उनको दर्शन मिले। उसके अतिरिक्त भी आधा घंटा हम अपने कर्मचारी और सुरक्षा बलों के लिए अलग से मंदिर को खोलेंगे, जिससे वह भी भगवान के जन्म के दर्शन से वंचित ना रहे।
0: तो बस कुछ ही घंटों का और इंतजार है और नंदलाल आ रहे हैं। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। अष्टमी तिथि आज 2:35 से शुरू हुई है और इस तिथि का समापन शनिवार 12:13 तक रहने वाला है। अष्टमी तिथि और रात में रोहिणी नक्षत्र का मिलन आज के इस पर्व को और खास बना दे रहा है। जन्माष्टमी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, कई संयोग बन रहे हैं। अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग है। आज अष्टमी पर वृषभ राशि में चंद्रमा भी है और द्वापर में इसी ग्रह स्थिति में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए बार बार हम कह भी रहे हैं कि ये जन्माष्टमी द्वापर वाली है। ये श्री कृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव है। ब्रजभूमि में जन्माष्टमी की रौनक साफ देखी जा सकती है। पूरी मथुरा एक तरीके से दुल्हन की तरह सज चुकी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विशेष सजावट की गई है। मंदिरों में सुबह से मंगला आरती हो रही है। सुबह 4 बजे इस्कॉन मंदिर खुल गए थे और मथुरा से लेकर दिल्ली और मुंबई तक जन्माष्टमी की रौनक साफ देखी जा सकती है। मुंबई में भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए।
3: ये जन्मभूमि की ओर जाने वाला भक्ति पथ है और भक्ति पथ पर अलग अलग तरह के रंग दिखाई पड़ते हैं। पूरे भारत के रंग हैं, भारत भूमि के रंग हैं, भाव भूमि के रंग हैं और उत्सव भूमि के रंग हैं। ऐसे में हम यहाँ खड़े हैं जहाँ नाथपंथी कलाकार यहाँ मौजूद हैं, जो बहुत तरह तरह के वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ ये लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। जो भक्त यहाँ आए हैं उन भक्तों के मनोरंजन के लिए अलग अलग जगह, जैसा कि हमने आपको बताया कि वृंदावन मथुरा में देश की संस्कृति के अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। जो हजारों लाखों साल पुरानी हमारी संस्कृति है उसके अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रूप हैं और श्रद्धालु इनका आनंद ले रहे हैं। यहाँ बीन और अलगोजा की धुन पर लोगों को झुमा रहे हैं ये लोग और इसके साथ ही ये खोल भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आप लोग कहाँ से आए हो महाराज?
4: फरीदाबाद से।
3: ये तो खोल बज रहे,
4: ये बीन बाजा है, बीन बाजा तुम्बा,
3: बीन बाजा तुम्बा है। और इस तुम्बे के साथ साथ ये भले नाग को मोहित करने के लिए ये बीन होती है, लेकिन यहाँ सारे भक्त इस पर ऐसे मोहित और लुप्त हुए जा रहे हैं। बताना मुश्किल है कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, लेकिन हमारे कैमरामैन कुंज बिहारी दिखाएंगे कि ये जो कृष्ण जन्मभूमि जाने का रास्ता है, ये रात से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार लोग ऐसे 3 दरवाजे हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं और दर्शनों का आनंद यहाँ लगातार चल रहा है। आप मथुरा के किसी भी शहर में किसी भी गली और सड़क पर जाएं, वहां पर देश भर के कलाकार आए हैं, अलग अलग संस्कृति के, संगीत का, नृत्य का, भोजन का।

0: सारे भक्त इतने मुग्ध हैं, लुप्त हैं, और यहाँ पर वो इनके संगीत का आनंद उठा रहे हैं। लोग इन यादों को अपने अपने मोबाइल में समेट कर लेके जाना चाहते हैं, ताकि इस जन्माष्टमी की यादों को आगे भी उसका आनंद उठाया जा सके, उस संगीत का आनंद उठाया जा सके।
1: चलिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वान्यारा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नंदिता पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले चलिए सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं मथुरा, जहां पर श्वेता झा मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, सबसे पहले दो तस्वीरें दिखाइए, कितनी रौनक इस वक्त वहां पर है और कैसा पूरा माहौल है।
2: सबसे पहले मथुरा में हूँ तो राधे राधे, यहाँ पर जितने भी लोग आपको मिलेंगे तो यहाँ पर नमस्कार इसी तरीके से किया जाता है, ये आप जानती हैं। तो यहाँ पर राधे के नाम की गूंज हर जगह है, पूरी ब्रज भूमि अगर हम कहें इस वक्त तो दुल्हन की तरह सजी हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ इंतजार जो होते हैं वो हमेशा के रहते हैं। द्वापर युग में भी एक इंतजार हुआ था कान्हा के जन्म का मथुरा में, आज वही इंतजार एक बार फिर से है कान्हा के जन्मोत्सव का। हालांकि समय बदल गया है, उस समय जो इंतजार हो रहा था वो कारागार में था, और आज ये भव्य और दिव्य मंदिर सजकर यहाँ पर तैयार है उस कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए, प्राकट्य उत्सव को मनाने के लिए, जिसके लिए लाखों लाख श्रद्धालु पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह की ये साज सज्जा पूरी की गई है, अलग अलग भव्य लाइटें लगाई गई हैं, झालरें लगाई गई हैं, और श्री कृष्ण के आगमन की यहाँ तैयारी हो रही है। आज हजारों साल बाद मथुरा फिर उसी इंतजार में है, फर्क बस इतना है यहाँ पर जो मैंने आपको कहा कि आज ये भव्य जन्मभूमि मंदिर तैयार है। तब कुछ लोग दिव्य क्षण के साक्षी थे, लेकिन आज लाखों श्रद्धालुओं की आंखें उसी क्षण को देखने के लिए टिकी हुई हैं। आज जन्मभूमि में विशेष आयोजन है, मंदिर की सजावट, पूजन, अभिषेक की तैयारियां हैं, और जैसे जैसे रात करीब आएगी कृष्ण जन्म का जो लास है वो अपने चरम पर होगा। मंदिर प्रांगण की अगर मैं बात करूं तो देखिए पहले से और ज्यादा जन्मभूमि जो है वो खूबसूरत हो गई है, सज गई है, धज गई है। एक तरफ आपको मंदिर की सजावट मैंने दिखाई, दूसरी तरफ देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर बकायदा बहुत बड़ा मंच सजाया गया है, जहाँ पर भजन कीर्तन लगातार किए जा रहे हैं, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं और भजनों का आनंद ले रहे हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त मंदिर प्रांगण में ही एक और खास मंदिर है जो मैं दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, आपको हम दर्शन कराते हैं केशव देव मंदिर के। यहाँ पर मोर दोनों तरफ आप देख सकते हैं, मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसे किस तरह से फूलों से सुसज्जित किया गया है, और दोनों तरफ मोर लगाए गए हैं। केशव देव जी श्री कृष्ण ही थे, लेकिन कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो पौत्र थे वज्रनाभ, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दरअसल उन्होंने जब अपनी दादी यानी कि रुक्मिणी से पूछा,
1: बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जो आप दिखा रही हैं,
2: जैसे जैसे बताया,
1: लौटूंगी आपके पास। एक बार संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय जी, कार्यक्रम इसके बाद के क्या क्या रहने वाले हैं ये भी बताते चलिए।

चलिए संजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास, शायद कुछ ऑडियो दिक्कत है। श्वेता झा लगातार हमारे साथ इस वक्त बनी हुई हैं। ये श्वेता, जो तस्वीरें आप दिखा रही थी वो केशव द्वार के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त हैं। साथ ही साथ शाम के कार्यक्रम क्या रहने वाले, क्योंकि यहां पर भी अलग अलग टोलियां पहुंचती हैं जो कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी यहां पर करती हैं। उन टोलियों के परफॉर्मेंसेस कब शुरू होंगे,

0: चलिए नंदिता जी, अब शुरुआत आपसे करते हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। नंदिता जी, कहा यह जा रहा है कि ये जो जन्मोत्सव है, कृष्ण जन्मोत्सव, इस साल का खास तौर पर अगर हम ग्रह दशा की बात करें, शुभ योगों की बात करें, तो एक तरीके से द्वापर वाली जन्माष्टमी इसको कहा जा रहा है।
1: बात आपने कही, पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। लेकिन आज के दिन केवल कृष्ण जन्माष्टमी नहीं बल्कि माँ काली का प्राकट्य उत्सव भी होता है, और कृष्ण और काली एक ही प्रतिरूप हैं, दोनों एक ही माने जाते हैं। और काफी सारे एंशियंट जो वैदिक टेक्स्ट है उसमें भगवान कृष्ण को काली के रूप में और माता काली के कई नाम कृष्ण रूप में भी वर्णित हैं। तो आज का दिन बहुत पावरफुल है और आज के दिन भैरवाष्टमी भी है, तो आप ये सोचिए जबरदस्त पोटेंट कॉम्बिनेशन आज के दिन बना हुआ है। पहले तो ये बात, दूसरी बात ये है कि जो ग्रह नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है, रात्रि काल में अगर रोहिणी नक्षत्र हो बहुत शुभ होता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च के होते हैं और कृष्ण जो है वो 16 कलाओं युक्त है, यानी कि चंद्रमा की पूर्ण कलाएं जो है वो सारी उनके ऊपर सरोवर रहती है, और उस समय उनका जन्म हुआ था। और वो जन्म के बाद जो उन्होंने एक पूरा प्रोसेस कि किस तरह से व्यक्ति को रहना चाहिए, जब धर्म की रक्षा करनी है या जब अपने सौहार्द के साथ बात करके करनी है, हर तरह की चीजें उन्होंने सिखाई, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी सिखाया कि सहन शक्ति क्या है। तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जन्म एग्जैक्टली 12 बजे जो हुआ था उस समय रोहिणी नक्षत्र, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन आज के दिन ऑलमोस्ट क्लोज टू 12 o'clock तक का है, 11:04 तक का रोहिणी नक्षत्र, फिर वृक्षराज शुरू होगा, लेकिन एक रोहिणी का आभास रहता है। अर्धरात्रि जैसी शुरू हो जाती है तो उसके बाद तो पश्चात तो वैसे भी उस नक्षत्र का प्रभाव रहता है। तो बहुत बहुत सुंदर दिन है आज। अगर आप कुंडली में भी देखें, बहुत सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन इतने बढ़िया है, शुक्र अपनी राशि में है, मालवीय योग बना रहे हैं, गुरु उच्च के हैं, हंस नामक राजपुरुष योग बना रहे हैं, वहीं पे सूर्य अपनी राशि में, इट्स लाइक राहु अपनी राशि में, तो इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन और भगवान कृष्ण का जन्म, ये तो इतना पावरफुल समय है। समय के समय आप कोई भी मैनिफेस्ट करना, सिंपल सा ओम क्लीम कृष्णाय नमः का अगर जाप कर लें तो आप तो वैसे ही आप देखें कि आपके जीवन में बिल्कुल जो भी समस्याएं सब तर जाएंगी। कृष्ण भगवान को थोड़ा सा तुलसी दल और पंचामृत,
0: चलिए इस पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे प्रभु को क्या क्या चीजें अर्पित की जा सकती हैं। खास मेहमान हमारे साथ है, लेकिन एक बार क्योंकि रौनक देखिए मंदिरों में अलग है, और सीधा आपको मथुरा लिए चलते हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो जहां आप खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी यहाँ पर होता है, बड़ी संख्या में भक्त तो पहुंच ही रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम अब के बाद से पूरी शाम में रहने वाले हैं?
2: पहले तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से मैं आपको बताऊँ कि ये जो लीला मंच है जहाँ पर मैं अभी जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, यहाँ सूर्यास्त के बाद से कृष्ण जन्म की लीला होगी, और उधर अंदर भक्ति भाव के साथ पूरे मृदंग और झांझ की पार्टी होगी, यानी वो मंडली पूरे टाइम वहाँ पर मृदंग की कला का प्रदर्शन करेगी। और अपने यहाँ के मथुरा के रिपोर्टर हमारे साथ हैं मदन गोपाल शर्मा। मदन, आज 10:30 से जो पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा वो 12:30 तक चलेगा, क्योंकि 12:00 लाला का जन्म होगा।
3: देखिए, सबसे पहले भगवान का सहस्त्रार्चन होगा कमल पुष्पों से, उसके बाद जो रजत कामधेनु गाय है वो लाई जाएगी, उसके बाद भगवान का अभिषेक होगा जिसमें दही दूध शक्कर घी गंगा जल ये सारी चीजें होंगी, उसके बाद भगवान की आरती होगी ठाकुर जी के जन्म उत्सव के बाद। तो जो उत्सव है ना वो बड़े भव्यता और दिव्यता है पूरे ब्रज में, किसी भी गली चौक चौराहे कहीं भी चले जाएं तो भगवान का जो जन्म उत्सव है वो कृष्णमय हुआ पड़ा है पूरा ब्रज।
2: यहाँ का देखा है कि बहुत बाजार में बंधनवार के लिए आम और अशोक के पत्ते मिल रहे हैं, दुर्वा मिल रही है, फूल मिल रहे हैं, लोग अपने घरों में ले जा रहे हैं और बंधनवार सजा रहे हैं।
3: देखिए सर, जैसा भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है ना, तो जैसे बच्चे का जन्म उत्सव होता है घर घर, उस तरह का ये उत्सव यहाँ मनाया जाता है, और हर घर में ठाकुर जी का एक छोटा सा पालना लगेगा, एक छोटा सा झूला बनेगा, एक छोटे से हिलोड़े सजाए जाएंगे, हमारे यहाँ हिलोड़े बोलते हैं उनको ठाकुर जी के लिए, तो वो सब सज के जब तैयार हो जाएगा रात 12:00 भगवान का जब अभिषेक होगा, उसके बाद ठाकुर जी को झूला झुलाया जाएगा। तो जो उत्सव है ना ब्रज में, खाना एक के घर में जन्म नहीं ले रहा, श्री कृष्ण जन्म स्थान पे हम मौजूद है, यहाँ ठाकुर जी का जन्म नहीं होगा, कान्हा भगवान का एक ऐसा नाम है कि हर घर में कृष्ण मिलेगा यहाँ, तो हर घर में कृष्ण का जन्म होगा यहाँ।
2: और हमने ये भी देखा कि जब लोगों से पूछा कि इतने भंडारे बट रहे हैं तो क्या आप फलाहार का भी भंडारा है क्या? उन्होंने कहा यहाँ कोई फलाहार नहीं करता, यहाँ मिठाई का महत्व है।
3: देखिए ब्रज है, ब्रज में भगवान का जो ठाकुर जी से बात चल रहे ना, वो प्रेम का है।
0: बिल्कुल संजय जी,
3: भगवान ने हमेशा ब्रजवासी को अपना सखा माना और भगवान ने कहा है कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। तो भगवान ने जो ब्रजवासी लोग हैं उनको अपना प्राण माना है, आधार माना। इनको कभी ना विसारियो तो नंद बाबा की आन, तो इनको कभी विसार नहीं सकता। जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी होगा तो ब्रजवासियों को कभी विसार नहीं सकता।
2: मैं इसमें एक लाइन खाली एक मिनट लूंगा, उसमें ये है कि जब कान्हा द्वारकाधीश हो गए और ब्रजवासी गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो ब्रजवासियों ने कहा कि बर्फी की नींव धर पेड़ा की भींत कर, रबड़ी के गारेन सो सबरो चिनाए दे, एहो ब्रिजराज तेरी साहिबी अपार रहे, ऐसो किलो बनवाए के और ब्रजवासिन में लुटाए दे।
0: क्या
2: कि ऐसा जिसे बर्फी की नींव धरो, पेड़ा की दीवार बनाओ, रबड़ी के गारे से पूरा चिनवा दो, रबड़ी से ऐसा किला बनवाओ ब्रजराज, तुम्हारी साहिबी अपार रहे, ऐसा किला बनवा के और हम ब्रजवासियों में लुटा दो, हम उसका आनंद लें।
0: बहुत खूब बहुत खूब। चलिए संजय जी लौटूंगी, एक बार जरा जयपुर का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां भी मंदिरों में रौनक नजर आ रही है। रिदम मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है, रिदम वहां की तस्वीरें रौनक दिखाइए, कहां मौजूद हैं आप?
4: बिल्कुल नवजोत, रौनक मैं बिल्कुल दिखाती हूँ क्योंकि जयपुर के श्री गोविंद देव जी मंदिर में मैं अभी मौजूद हूँ, जहाँ सुबह 4 बजे से ही लाखों की मात्रा में भक्त श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है उसमें इंद्रदेव की भी पूरी भागीदारी आज है, उनकी जो फुहार है वो लगातार बरस रही है, जिससे इस समय पर थोड़ी सी भीड़ कम हो गई है, पर फिर भी जितने भी अभी भक्त हैं उनको ये बारिश भी नहीं रोक पाई है। पीछे की ओर मैं एक बार दिखाऊंगी कि किस तरीके से लगातार भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, लाइंस क्योंकि डाइवर्जन हर जगह की है। आज का ये दिन इतना शुभ माना जाता है, इतना अच्छा माना जाता है कि लाखों की मात्रा में जो भक्त आते हैं उनको मैनेज करने के लिए पूरी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है, जिसके लिए लाइंस लगाई गई है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग है। तो रोज में ये भक्त आ रहे हैं, अलग अलग 3 रोज डिवाइड की गई है, जिसमें जो VIP पास वाले हैं उनकी रो अलग है, जो जूते चप्पल उतार के भक्त आ रहे हैं उनके लिए लाइन अलग है, और जो जूते चप्पल पहने आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, रिदम आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए, साथ ही साथ ही जयपुर की तस्वीरें, इसके अलावा मथुरा में किस तरीके की रौनक है वो भी श्वेता झा और संजय शर्मा दोनों हमारे साथ मौजूद है दिखाई रहे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, राज मिश्रा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्यों इसको द्वापर वाली जन्माष्टमी इस बार कहा जा रहा है? नंदिता जी ने ये तो बता दिया, लेकिन एक संजय जी अभी जब चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि देखिए मथुरा नगरी में हर जगह पर भंडारे लगते हैं, पूरा पूरा मथुरा एक तरीके से देखें तो गली गली हर जगह पर सजावट खूब होती है, लेकिन जब फलाहार की बात आई, क्योंकि आज के दिन लोग उपवास भी रखते हैं, तो कहा कि फलाहार नहीं, यहाँ तो मिठाइयां बटनी चाहिए। तो क्या विधान है जब हम व्रत की बात करते हैं, कृष्ण जन्मोत्सव के व्रत की बात करते हैं, आज के दिन तमाम लोग, आप लोग भी उपवास किए होंगे, तो क्या नियम क्या विधान उसके हैं?
5: देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा नवजोत जी, उपवास को लेकर के हमने कई बार आपके साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे तो ये डिस्कस हो रहा था, उपवास का शब्दार्थ एक्चुअल में क्या है? उपवास का मतलब है ऊपर और वास का मतलब है निवास करना। जब भगवान की आराधना में, भगवान के स्मरण में मैं खुद को भूल जाऊं, मेरा खुद पर ही याद ना रहे कि मैं आखिर कौन हूं, कहां हूं, क्या कर रहा हूं, उसको कहते हैं उपवास करना। उपवास का शब्दार्थ है कि भगवान के स्मरण में जब खाने पीने तक का याद ना रहे, जब अपने शरीर का याद ना रहे। राजा परीक्षित जब श्रीमद् भागवत सुन रहे थे, 4th दिन पूरा हुआ तो सुखदेव जी ने कहा कि 4 दिन से आपने कुछ ग्रहण ही नहीं किया, इवन आपने जल तक नहीं पिया। परीक्षित, जल तो ग्रहण कर लो, भोजन कर लो, फिर आगे चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु जब रसगुल्ले प्राप्त हो रहे हो तो आखिर चीनी खाना कौन चाहेगा, चाशनी खाना कौन चाहेगा, आपके जो उपदेश रूपी जो रसगुल्ला, मुझे जो अमृत प्राप्त हो रहा है उससे मेरा हृदय ऑलरेडी तृप्त हो गया है, मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है। तो एक शब्द नवजोत जी आपने सुना था ना कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मल मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे बिन धोए वास न जाए। तो मीन जल में रह करके भी बिना धोए उसका जो वो है वास है वो नहीं निकल पाता है। इसी प्रकार से अगर भगवान की नगरी में रह करके और उनके स्मरण में समय व्यतीत हो रहा है तो कुछ भी खाते पीते जैसे भी समय व्यतीत कीजिए, भगवान की आराधना में व्यतीत होगा, वो वास्तविकता में व्रत होगा। लेकिन मैं कहता हूं आज वो लोग सौभाग्यशाली हैं, वो लोग वाक्य भगवान की उन पर कृपा है जो इस टाइम पर जीएनटी अपने घर में लगा करके बैठे हुए हैं, या हम लोग जो इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य, मतलब मैं सब, मतलब मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही थी कि हम वृंदावन के दर्शन अपने घर में बैठे हुए कर रहे हैं, कृष्ण के उस सुंदर नगरी का, उस रज का दर्शन अपने घर में बैठे हुए कर रहे हैं। इसके लिए मैं जितना धन्यवाद करूं साहब जी
0: के साथ साथ राजीव बताती चलूं कि केवल क्योंकि हमारे तमाम संवत आज हमारे साथ मौजूद हैं, जयपुर के मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं, और इसके अलावा मथुरा जन्मभूमि की तस्वीरें तो लगातार आपको दिखा ही रहे हैं, रौनक दिखी रही है, क्योंकि बार बार जब जिक्र होता है तो बताते चले कि सही फेस्टिवल का मजा अगर आपको लेना है तो केवल गुड न्यूज टुडे आपको देखना चाहिए, उत्सव की तमाम रौनक आपको यहीं पर मिलेगी। अब अनय जी, मैं आपके पास आती हूँ। उपवास का जिक्र कर लिया, महत्व इस बार कैसा है, ग्रह दशा कैसी है, लेकिन अब यहाँ पर प्रसाद की बात आती है। जब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि 56 भोग उनको लगाया जाता है, अर्पित किया जाता है, लेकिन आम लोग जो लोग घर पे उपवास करते हैं या फिर जो लोग अपने घर पे श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, उनके लिए कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं?
6: जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और आपकी लाइफ की जो भी मनोकामनाएं हैं सब पूर्ण हों। तो आज का जो प्रश्न है कि नॉर्मली जो होता है हम 56 भोग कहते हैं, बट जो आप अपने घर में श्रद्धा से कर सकते हैं, तो सबसे पहले उस भोग में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है माँ तुलसा का भोग। तुलसी माँ का जो है, तुलसी का एक पत्ता जो है, वो श्री कृष्ण को जो आप पंचामृत बनाएंगे दूध दही घी शक्कर गंगा जल से, उसमें जो है आपको तुलसी का भोग जरूर डालना है। दूसरी बात, आज के दिन जो है आप धनिये की पंजीरी बना सकते हैं, तो आप नॉर्मल घर में थोड़ा सा धनिया लेके उसको रोस्ट करके जो है उसमें आप बूरा और ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप मिला सकते हैं। तीसरा भोग जो उनका होता है वो होता है मखाने की खीर, तो मखाने की खीर भी जो है आप घर में बनाइए। जो भी चीज हम अपने इमोशन से और अपनी एनर्जी से बनाते हैं उसमें जो है बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ एक डिवाइन और डिविनिटी की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। चौथी चीज जो है आप उनको फलाहार का भोग लगा सकते हैं। पांचवी चीज जो है वो आप उनको लौकी की बर्फी जो है वो आप बना सकते हैं, जिसे घिया की बर्फी कहते हैं, उसको नॉर्मल आप ग्रेट करके उसको जो है आप दूध में जो है रोस्ट करके आप लौकी की बर्फी जो है वो भी आप बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको बूरा जो है वो भी आपको डालना है, तो वो भी कहते हैं कि कान्हा जी को बहुत ज्यादा पसंद है। इस तरह और भी आप कोई भी मिठाई और जो है पीले रंग की आप कोई मिठाई जो है वो भी आप अपने घर में जो है बना सकते हैं, क्योंकि कान्हा जी का कनेक्शन येलो कलर से बहुत ज्यादा है, और आज के दिन अगर आप खुद भी अगर येलो कलर पहनते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। और बहुत सारी चीजें हैं आज के दिन, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है आप अपने लाइफ में कर सकते हैं आज के दिन, चाहे आपने व्रत रखा है चाहे आपने व्रत नहीं रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश आप नहीं रख पाए, क्योंकि ईश्वर जो है वो हमेशा हमारी आस्था को देखता है, तो आज के दिन आप आंखें बंद करके थोड़ी देर मेडिटेशन आप जरूर करें और अपनी आंखों के सामने आप पीले रंग को विजुअलाइज करें और कान्हा से अपनी लाइफ में गाइडेंस मांगे। जो भी लाइफ की जिस भी सिचुएशन और पोजीशन में आप फंसे हुए हैं वहां पर आप आंखें बंद करके ओम क्लिंग कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें और अपने लिए मैसेज मांगे कि कान्हा आपको क्या कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कान्हा जी ने हमें सिखाई हैं, लेकिन इसमें जो आज के दिन स्पेशल है, आप उनका श्रृंगार का पूरा अरेंज करें, आप उनको फ्रूट्स जो है फलाहारी वो कर सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र कर सकते हैं। बांसुरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें, कान्हा जी को बांसुरी बहुत पसंद है। उनके मुकुट को जो है आप कुछ भी ऐसे गोल्डन कलर का मुकुट जो है वो आप ला सकते हैं, येलो कलर का आप उनका पोशाक जो है वो आप बना सकते हैं, उनके श्रृंगार का अरेंजमेंट करें, उनका झूला जो है वो भी आप सजा सकते हैं, झूले को बहुत अच्छे से जो है आप डेकोरेट कर सकते हैं। पंचामृत जो है आप एक नॉर्मल कोई भी सिल्वर की कटोरी या नॉर्मल कटोरी है उसमें पंचामृत और तुलसा का भोग जो है, ये सारी चीजें जो है आज के दिन आप खास कर सकते हैं। मोरपंख बांसुरी ये भी आप कर सकते हैं।
0: चलिए, क्या कुछ करना है और प्रसाद में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है ये भी जान लिया, लेकिन सवाल, क्योंकि आज हम कृष्ण के प्राकट्योत्सव की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि हम श्री कृष्ण से क्या सीख सकते हैं। वैसे तो कहें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हम सीख सकते हैं श्री कृष्ण से, उन्हीं पर आगे चर्चा करेंगे एक एक करके। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए। फिलहाल यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ। बड़ी और महा कवरेज सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर लगातार आप देख रहे हैं अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि में किस तरीके से रंग बिखरे हुए हैं, कितनी संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग अंदाज में आज प्रभु को याद किया जा रहा है। बस अब इंतजार उस पल का, उस घड़ी का है जब श्री कृष्ण प्रकट होंगे और सबको दर्शन देंगे। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए अब नंदा जी, मैं आपके पास आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले वही सवाल जो किया था, आज हम नंदलाल का बर्थडे मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं सबका, जेंजी का, यहाँ जेंजी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जब मैं ऑफिस आ रही थी मैं भी देख रही थी कि अलग अलग मंदिरों में ना गुब्बारों से सजावट की गई, जैसे हम अपने घर में बच्चों के बर्थडे पे सजावट करते हैं। और बहुत सी जगह तो ऐसी है जहां पर आज के दिन केक कटिंग भी होती है, तमाम इस्कॉन मंदिरों में केक भी काटा जाता है। लेकिन इन सबके बीच ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में श्री कृष्ण कितनी बड़ी प्रेरणा है।
1: ये बहुत ही सुंदर प्रश्न, आपने जेंजी की बात करी तो मुझे हंसी भी आती थी जब आप बोल रही थी, क्योंकि मेरी बेटी उसी कैटेगरी में आती है जेंजी की और उसने अभी जैसे मैं शो में बैठ रही थी उसका मैसेज आया कि मम्मा आज हम क्या ऐसा कर सकते हैं, तो मैंने कहा बस तुम लोग ये करो कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, इसका मतलब होता है कि वो सबके गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वो जो भी तुम करोगे सरेंडर करो। सो उसके सारे फ्रेंड्स मुझे भी मैसेज डाल रहे हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। सो दैट्स द काइंड ऑफ वाइब जो आज कल जेन जी में बहुत ज्यादा, मतलब मैंने तो देखा स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका विशेष कर बहुत लगाव है, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उससे फिर आपकी इंटरनल जो चेंजेस होते हैं वो बहुत सारे आते हैं। तो एक तो ये जेन जी की बात है, वो उनका अपना ही तरीका
0: होता है, अलग हो सकता है, लेकिन चलिए इतना है कि भक्ति में लीन है जेन जी आज।
1: बिल्कुल, भावनाएं रहती हैं उनकी। और इसी के साथ साथ जो बात हम कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण से हम क्या सीख सकते हैं, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले तो कर्मठता, उन्होंने पूरे जीवन भर, आप देखिए कारागार में उनकी पैदाइश हुई, उसके बाद से लेकर के संघर्ष में रहा पूरा जीवन, लेकिन फिर भी उनका कभी भी कोई भी चेहरा आप अगर देखें या उनकी बातें देखेंगे तो कभी भी मुस्कुराहट के बिना नहीं रहेगी। और वो चीज जो होती है वो सर्वोत्तम रहती है कि आप मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अगर मुस्कुरा के और संयम के साथ चीजों को हैंडल करें तो आप उससे बाहर निकल के आ सकते हैं और विजय होके आ सकते हैं। और दूसरा है धर्म प्रधान होना, कर्म प्रधान होना, और हर किसी को एक समान ट्रीट करना, चाहे मित्र हो, सुदामा हो, मित्रता की भी वो बिल्कुल उच्चतम कोटि में उन्होंने उसका उदाहरण दिया, या फिर आप ये बोले कि बड़े से बड़ा राजा हो तो हर जगह उन्होंने मित्रता निभाई, कूटनीति, उनसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कोई भी नहीं हो सकता। उनको पता था कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे करना है, किस तरह से चीजों को करना है, किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट करके धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाना है। तो ये पूरी महाभारत आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण की कृपा से ही सत्य की विजय हुई और उन्हीं की कूटनीति थी कि पांडव इस युद्ध में आगे बढ़ करके विजय हो पाए। तो बहुत सारे उनकी क्वालिटीज हैं, अगर जब वो लड्डू गोपाल होते हैं मुंह खोल करके माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखा देते हैं, तो वहां पे वो ये भी बता रहे हैं कि हम हर किसी के अंदर ईश्वर वास करता है और थोड़ा सा हम उसको एक्टिवेट कर लें तो हम उस तरह की एनर्जीज को अपने चारों तरफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जो होती हैं साधारण तौर पे तरीकों से भी आप उस चीज को करते हैं। निश्चल प्रेम की कहानी भगवान कृष्ण है, तो बहुत बहुत सुंदर समय है और जेंजी इसमें इन्वॉल्व है तो बहुत ही सुंदर।
0: बिल्कुल, आप जेंजी को टिप्स दे ही रही हैं। राज मिश्रा जी, अभी जिस मुस्कुराहट की बात कर रही थी नंदिता जी, पॉजिटिविटी अगर आपको कहीं देखनी है तो श्री कृष्ण का चेहरा देख लीजिए, अपने आप आपके जीवन में, आपके ऑरा में पॉजिटिविटी आ जाएगी। हम तो वैसे गुड न्यूज टुडे पर बैठे हैं तो आज पॉजिटिव बातें करेंगे ही। विपरीत परिस्थितियों में कैसे संयम बना के रखना है, कैसे चेहरे पर आपके मुस्कुराहट आनी चाहिए, वो श्री कृष्ण से हम सीख सकते हैं।
2: आप अगर उससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता है, जिस युद्ध महाभारत के युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं और महाभारत के युद्ध के मैदान में जहां एक तरफ इतनी शक्तिशाली कौरवों की सेना खड़ी हुई है, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी हो और उस सेना के मध्य में बैठ करके जहां पर अर्जुन डिप्रेशन की परिस्थिति में है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है कि मैं अब युद्ध करूंगा, वहां पर भगवान कृष्ण के द्वारा एक डिप्रेशन में गए हुए व्यक्ति को तैयार युद्ध के लिए तैयार कर देना और करके जो उसका धर्म है उसको पालन करने के लिए तैयार कर देना, भगवान कृष्ण से बेहतर मुझे लगता है और कोई नहीं कर सकता है। तो आप जब जैन जी की चर्चा होती तो मुझे लगता है जैन जी को सीखना चाहिए वास्तविकता में भगवान कृष्ण से। आज जैन जी में मित्रता को लेकर के होती है, सुबह अच्छा डिस्कशन हो रहा है, शाम को ब्लॉक कर दिया है ना, सुबह डिस्कशन ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ी देर पहले मीठी मीठी बातें हो रही थी, उसके बाद थोड़ी देर बाद जी चलो ब्लॉक कर दिया, कोई रिलेशन नहीं, सब कुछ नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण से अगर सीखिए उन ग्वालों के साथ, वो आपके लेवल के हैं या नहीं है, लेकिन अगर मित्रता के स्तर पर देखा जाए तो उनसे बेहतर और कोई मित्र नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण से बेहतर जीवन संगी की अगर कोई बात की जाए तो शायद कोई, अगर भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के रिलेशन को लेकर के देखा जाए, या कई बार जीवन साथी आपको उपयुक्त प्राप्त नहीं होता है जैसा आप चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन उसके साथ भी आपका रिलेशन कैसा रहना चाहिए वो भगवान कृष्ण सीखना चाहिए। आप देख लीजिए जो जामवती हैं, किसकी पुत्री हैं, भालू की पुत्री हैं, जामवंत जी की पुत्री हैं, लेकिन रुक्मणी की जी के साथ और उनके साथ प्रेम में कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वल प्रेम है दोनों के बीच में। तो भगवान कृष्ण के बारे में जितना भी कुछ सीखा जाए वो कम है, लेकिन जब आज मैं आपके जयंती पर देख रहा हूँ, भगवान कृष्ण के दर्शन को कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है पता नहीं अब हम लोग रात के कार्यक्रम में कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे, क्या परिस्थिति होगी, आज हम जन्म के समय चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक दो लाइन बधाई हम लोग गा लें और फिर आपके कार्यक्रम में चर्चा करते
0: बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार एक रिएक्शन जरा वान्या जी का ले लूं, उसके बाद फिर आपसे एक भजन सुनते हैं। वान्या जी, सबसे बड़ी सीख जो आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए भी, अभी यहाँ पे पेशेंस की बात हो रही थी कि इंसान कितना इंपेशेंट हो जाता है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपस में संवाद ही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है लोगों में, ये सारी चीजें इनको मिलाते हुए क्या सीख हम श्री कृष्ण से ले सकते हैं?
3: थैंक यू नवजोत जी, आपने जो भी फैक्टर्स बोले हैं वो एक्चुअली आज का बहुत ही ज्यादा, मतलब आई वुड से ट्रू फेस ऑफ कलयुग है, जो इस तरह की सिचुएशंस जो है वो बहुत ज्यादा आ रही हैं लोगों में, जो पेशेंस लेवल है अभी वो बहुत ज्यादा जो है डाउनग्रेड हो चुका है। तो श्री कृष्ण के जीवन से हमें ये सीखना चाहिए कि लाइफ की हर सिचुएशन में जो है हमें हम्बल रहना है, हमने अपनी कामनेस जो है वो हमेशा मेंटेन करके रखनी है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए हमें अपनी आवाज भी उठानी है। श्री कृष्ण से हमने ये भी सीखा कि अपनी लाइफ में अपने इनर चाइल्ड को कभी भी किल नहीं करना चाहिए, जैसे वो माखन चोरी के लिए जो है अपने दोस्तों के साथ, वो एक ह्यूमन पिरामिड होता है, उसको उस पर चढ़कर जो है वो मटकी जब फोड़ते थे, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे इनर चाइल्ड को मेंटेन रखती हैं। तो लाइफ में जितनी भी टफ सिचुएशंस हो, अगर आप उसमें स्टिल हैं, अगर आप उसमें स्टेबल हैं, कैसे उन्होंने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया और कैसे महाभारत में वो अर्जुन के सारथी बने, तो जो आपकी लॉयल्टी है आपके लोगों के लिए, जिन लोगों के साथ भी आप जीवन में कनेक्टेड है उनके साथ आप लॉयल रहिए, उनके थिक्स एंड थिन्स में हमेशा उनके साथ रहिए, कैसे धर्म का उन्होंने हमेशा साथ दिया और हमेशा उन्होंने एक चीज कही जो मैं जीएनटी के माध्यम से आप सभी जेंजीज को भी कहना चाहती हूँ कि लाइफ में बहुत ज्यादा आप शॉर्टकट्स जो है आप अपनाइए, लेकिन बहुत ज्यादा मत अपनाइए, आप बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच जब ले लेते हैं कि मैं ये करूंगा तो मेरे साथ ये होना चाहिए, आप करते जाइए, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू इन लाइफ। तो बहुत ज्यादा कर्म के साथ फल की इच्छा मत करो, आप अपने कर्म करो, यूनिवर्स जो है वो सब कुछ देखता है, आपकी लॉयल्टी का यूनिवर्स आपको खुद देगा। श्री कृष्ण ने हमें ये भी सिखाया कि कैसे मतलब अपनी दोस्ती कैसे निभानी चाहिए, टीम वर्क सिखाया, दही हांडी में बहुत अच्छा टीम वर्क कोऑर्डिनेशन है कि अकेला एक सिंगल बंदा होता है लेकिन एक और एक 11 होते हैं, तो टीम वर्क का लाइफ में स्पेशली कॉर्पोरेट्स में बहुत बड़ा रोल होता है, इफ योर टीम इज गुड तो आपका एंड रिजल्ट आउटपुट जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा था, कैसे सबके साथ आप एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस जो है, एक सिंक जो है, सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी का टैलेंट जो है वो अलग अलग होता है, तो ये सारी चीजें हम सीख सकते हैं।
0: चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जरा राज जी से एक भजन सुन लेते हैं। जी राज जी,
2: तो आज क्योंकि बहुत सुंदर है और मुझे लगता है कि हम सबको बधाई गाना चाहिए, भगवान का आज प्राकट्योत्सव है और जीएनटी पर हम लोग जुड़े हुए हैं और बांती बिहारी जी का शायद हम सुंदर दर्शन भी अलग अलग मंदिरों का वृंदावन से कर रहे हैं, तो सभी लोग भाव के साथ जस्ट दो लाइन, उसके बाद जो नवजोत जी की चर्चा है उसको प्रारंभ करेंगे। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई, सौ सौ बार बधाई लोगो सौ सौ बार बधाई बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली चमत्कार सा हुआ है लोगो हो गई बात निराली रात रात में नंद बाबा की रात रात में नंद राय की दाढ़ी हो गई काली नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई सौ सौ बार बधाई लोगों सौ सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई। तो मुझे लगता है नवजोत जी भगवान के जन्मोत्सव को हम जितना मनाएंगे जितना आनंद से हम उनके स्मरण का प्रयास करेंगे उतना ही हमारा हृदय निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। मुझे लगता है जब मैं उस जेंजी की चर्चा करता हूँ जो आज डिप्रेशन में एंजाइटी में जा रहा है जो मुझे लगता है कई बार उन माता पिता की बातों को नहीं सुनना चाहता जो उनकी पीड़ा है जो उसको सही मार्गदर्शन कई बार देना चाहते हैं मुझे लगता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार कृष्ण जी के उस जीवन को श्रवण करने का प्रयास करें समझने का प्रयास करें शायद जीवन समझ में आ जाए
0: समझने की बहुत जरूरत है। नंदिता जी कभी वाना जी ने कहा कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर ये हम श्री कृष्ण से सीखते थे लेकिन देखिए कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लोग कर्म ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनको फल पीछे नजर आ रहा होता है ये भाव कलयुग में जाहिर सी बात है आ नहीं सकता लेकिन फिर भी किस तरीके से खुद को पॉजिटिव बनाएं किस तरीके से हम कृष्ण की शिक्षाओं पर आगे बढ़ें।
1: बहुत सुंदर प्रश्न है नवजोत जी और लेकिन इसी के साथ ना उस चीज को एक्सटेंड अगर मैं करूँ देखिए भगवान कृष्ण जो है ना वो केवल एक ही पॉइंट पे नहीं फिक्स होते वो बहुत सारे मल्टीफेरियस टैलेंट से भरे हुए हैं और उस चीज को प्रोजेक्ट करते हैं कि किस समय किस नीति को अपनाना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था आखिर में और दोनों ही बहुत पावरफुल धनुर्धर थे तो जितनी बार अर्जुन मारते थे तो कृष्ण भगवान कुछ भी नहीं कहते थे तीर मारते थे और कर्ण का जो रथ होता था काफी पीछे चला जाता था लेकिन हर बार जब भी कर्ण मारता था अर्जुन का रथ ज्यादा हिलता भी नहीं था और कृष्ण बोलते थे वाह वाह क्या मारा है क्या मारा है। इससे अर्जुन परेशान हो गए। अंत में उन्होंने पूछा जब सारा हो गया और कर्ण का की मृत्यु हो गई उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत नाराज हूँ आपने तो आप मेरे सारथी आप मुझे साथ दे रहे थे लेकिन आप तारीफ तो सामने वाले की कर रहे थे। इट्स लाइक इन कॉर्पोरेट लाइफ टीम वर्क इधर है लेकिन आप तारीफ उधर कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं देखे टीम वर्क के साथ प्रैक्टिकलिटी भी बहुत जरूरत है और आप ये सोचो आप किस ईगो में अपना ट्रिप मार रहे थे आपकी ईगो में आपके धनुधर की कला नहीं थी आपकी ध्वज में हनुमान जी विराजमान थे इसलिए आपका रथ नहीं हिल रहा था। आप ये सोचो अभी जैसे ही हनुमान जी हम ये उतर रहे हैं हनुमान जी जाएंगे और अर्जुन का रथ खचाखच होकर के बिल्कुल लड़खड़ा करके गिर पड़ा एंड देन ही वाज अमेज्ड ही सेड कि अच्छा इनकी वजह से हो रहा था मैं तो सोच रहा था मैं धनुर्धर बहुत अच्छा हूँ तो हमारे टारगेट्स बहुत अच्छे हैं हमारी अचीवमेंट्स बहुत अच्छी हमने कर्म तो बहुत करा लेकिन अगेन प्रैक्टिकल होना लॉजिकल होना लाइफ में बहुत जरूरी है और दूसरा कि ओपोनेंट की भी क्षमता जो होती है उसको कमतर नहीं आके उसको भी आंक करके जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तब आपकी विजय होती है। वहीं पे वो सखा के रूप में स्वरूप में मित्रता को बहुत ज्यादा लॉयल्टी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और उसी में आप देखिए कि द्रौपदी के जब चीरहरण हो रहा था और भगवान कृष्ण ने आकर के उनको बचाया और जब वो ऐसा हुआ तो बाद में किसी ने पूछा कि ऐसा कैसे मतलब कि क्यों तो उन्होंने कहा कि तुमने तो मुझे पुकारा नहीं जिसने मुझे पुकारा मैं उसके पास चला गया उसकी मदद करने के लिए। तो ये कनेक्शन होता है इनर सोल का डिवाइन सोल के साथ एक इनर कनेक्टिविटी जत पिंडे तत ब्रह्मांड यानी कि जहाँ आपका पिंड है वहां समस्त ब्रह्मांड समस्त ईश्वरीय ऊर्जा समाई है लेकिन अगर हम उसको एक्टिवेट ही नहीं करेंगे अगर हम उससे कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे और अपनी ईगो ट्रिप में रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं सफल कर पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: भगवान कृष्ण बहुत सारी चीजें सिखाते हैं वो बोलते हैं लॉयल्टी किया है, आप अपना फोकस करिए, कर्म करिए, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल होकर के, लॉजिकल होकर कर्म करेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे।
0: तो केवल आज श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना ही नहीं है बल्कि उन्हें समझना भी है, प्रभु को समझना, उनकी शिक्षाओं को भी समझना और उसे अपने अंदर धारण करने की भी आज की तारीख में जरूरत है। बड़ी और महाकवरेज लगातार जारी, लेकिन अभी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगह मौजूद हैं। गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है हमारी ये बड़ी कवरेज, आप देखते रहे गुड न्यूज टुडे।
4: क्या आप भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? क्या आप भगवान कृष्ण की भक्ति को मित्रता में बदलना चाहते हैं? कैसे बने भगवान कृष्ण आपके मित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। पूरा ब्रज क्षेत्र आज कान्हा के जन्मोत्सव के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ है। अब लोगों को बस बेसब्री से इंतजार उस पल का है जब नंदलाल का आगमन होगा। उस पावन पल में अब बस कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं और इस बीच भगवान के भक्त अलग अलग अंदाज में भक्ति में लीन हैं। मथुरा में जन्मभूमि में ऐसे ही कुछ रंग दिखा रही हमारे संवाददाता श्वेता झा।
7: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री कृष्ण जन्म स्थली में और यहाँ पर भव्य और दिव्य समारोह चल रहा है। आज की बात अगर करें तो क्या ही है, पूरे मथुरा में कहते हैं कि द्वापर युग में जिस तरह से इंतजार था मथुरा को, आज कान्हा के आने का वही इंतजार एक बार फिर से ब्रज को है अपने कान्हा के आने का। तो रात 12 बजे क्या कुछ होगा, किस तरह से तैयारियां होंगी, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन यहां पर सुबह से ही कई संगीतमय कार्यक्रम हो रहे हैं, कान्हा को स्मरण किया जा रहा है और उनकी भक्ति में लोग झूम रहे हैं। इस वक्त दो बहनें हमारे साथ हैं जो भोपाल से आई हुई हैं और उनसे हम सुनेंगे भजन कई, लेकिन पहले श्री कृष्ण का नाम ले लिया जाए।
8: नंद के लाला की नटवर लाल।

अंडा सजाया है, मिश्री मामी का एक केक मंगाया है, जिसको चखेगा शाम तू तू तू तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: तस्वीरें देख सकते हैं पूरे मंदिर प्रांगण में, कुछ इसी तरह से देखिए जो श्रद्धालु हैं श्री राधे का नाम ले रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर एक बार फिर से कहेंगे जय श्री राधे, राधे राधे,
1: राधे राधे,
0: राधे राधे। तो इसी तरह की झूम जो है वहाँ पर देखने को मिल रही है, हर एक तस्वीर कृष्ण जन्मभूमि से इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: आप भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? क्या आप भगवान कृष्ण की भक्ति को मित्रता में बदलना चाहते हैं? कैसे बने भगवान कृष्ण आपके मित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: देश ही नहीं दुनिया भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, मथुरा वृंदावन में लगा भक्तों का तांता, रंग बिरंगी लाइट्स के साथ मंदिरों में मनमोहक फूलों के साथ सजावट। जामनगर में कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आ रहे लोग, जन्माष्टमी पर निकली लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा, दही हांडी से समारोह में भरे उत्साह। राजस्थान की पाली में जन्माष्टमी पर कृष्ण मंदिरों में आकर्षक सजावट, कान्हा के वेश में नजर आए नन्हे मुन्हे बच्चे, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी मंदिरों की भव्य सजावट की गई। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में बिखरे कृष्ण भक्ति के रंग, जयपुर के गोविंद जी मंदिर में जन्मोत्सव की खास तैयारी, पंजाब में कान्हा की थीम वाले आकर्षक केक तैयार। बाढ़ प्रभावित नेपाल में दिखी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छटा, काठमांडू के मंदिर में भव्य सजावट, धूमधाम से मनाया जा रहा उत्सव। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली NCR में झमाझम बारिश, आसमान में छाए घने बादल, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र समेत देशभर में दही हांडी की रौनक, मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां तैयार, कल दिखेंगे उत्सव के रंग।

0: तो तैयार हो जाइए कृष्ण जन्मोत्सव के इन तमाम रंगों में रंगने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। ये खास पेशकश लगातार जारी रहेगी, आपको एक एक तस्वीर लगातार जीएनटी के माध्यम से दिखाते रहेंगे।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। और मुझे लगता है कि शगुफ्ता, हम सुबह से ही तस्वीरें तो अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, किस तरीके से जन्माष्टमी की जो छटा है वो देखने को मिल रही है। लेकिन उसके साथ ही देखिए, आज भक्ति गीत भी होंगे, आज मन में जो है श्री कृष्ण का नाम भी होगा, क्यों शगुफ्ता?
0: बिल्कुल, देखिए खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं, इनका एक बार परिचय करवाना तो बनता है। हमारे साथ पुष्कर सिन्हा जी जुड़ गए हैं। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुमित है हमारे साथ, हमारे साथ हैं शंभू भी।
1: बिल्कुल, परमिता जी हमारे साथ हैं। और परमिता जी, लास्ट टाइम भी आपसे मुलाकात हुई थी
2: जी जी,
1: तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है प्राकट्य उत्सव है प्रभु श्री कृष्ण का, और ऐसे में अगर भक्ति गीत ना हो तो क्या मजा आएगा।
2: जी
0: बिल्कुल। चलिए, दो और खास मेहमान हमारे साथ, नंदिता जी बाहर से जुड़ रही हैं और वाने आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का भी जीएनटी पर बहुत बहुत स्वागत है। और श्वेता झा मथुरा के रंग दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। चलिए, ये सारी तस्वीरें सारे रंग लगातार जीएनटी पर आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन पहले ये दिखाना बनता है नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।
1: ये
0: तस्वीरें और ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज हर तरफ देखिए भगवान श्री कृष्ण के जयकारे आपको सुनाई देंगे। इसी तरह से मथुरा वृंदावन में जय नंदलाला जय गोपाला की धुन लगातार सुनाई दे रही है।
1: बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरे देश में मुरली मनोहर के जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। देवकी नंदन के आगमन में अब बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा हुआ है। भक्तों को बेसब्री से इंतजार है कान्हा के प्राकट्य उत्सव का। श्री कृष्ण जन्मभूमि में आज सुबह से ही भगवान की विशेष आरती चल रही है। मुख्य उत्सव तो आज मध्य रात्रि में होने वाला है, और जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग का मुहूर्त बनेगा, क्योंकि द्वापर युग में इसी तिथि और मुहूर्त में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, उनका जन्म हुआ था। लेकिन इससे पहले आज सुबह से ही मथुरा वृंदावन सहित देश भर के मंदिरों में माहौल कृष्णमय हो गया है।
0: बिल्कुल, देखिए कृष्णमय हो चला है, और यही भक्ति बयार बहती हुई तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है मथुरा की रौनक दिखाने के लिए। श्वेता झा वहां पर पहुंच गई है, सीधा श्वेता का ही रुख करना चाहेंगे। श्वेता, इस वक्त क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है अभी के?
3: राधे, सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज यहाँ की रौनक तो देखते ही बन रही है, और सबसे बड़ी बात कि आज का जो दिन है वो महसूस करने का ज्यादा दिन है। शब्दों में हम क्या ही बयां करें। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जन्मभूमि में, आप ठीक मंदिर परिसर में मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो छटा है वो निराली है। आपको हम बता दें, आइए देखिए कि कुछ यहाँ पर मेहमान एक तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं, और ये छोटे से कान्हा को अपने साथ लेकर के आई हुई है। यहाँ पर कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं?
4: हम लोग लखनऊ से आ रहे हैं।
3: लखनऊ से आई हैं, कुछ खास कार्यक्रम यहाँ पर?
4: आज हम लोग यहाँ पे जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हुए हैं। हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है यहाँ पर, कथक का कार्यक्रम है।
3: तो आपका जो पूरा ग्रुप है, देखिए पूरा ग्रुप यहाँ पर आ गया है। लगभग कितने लोग हैं पूरे ग्रुप में?
4: 15 लोग हैं हम।
3: 15 लोग हैं, तो यहाँ आप कृष्ण बने हैं। आप आइए, इस तरफ आ जाइए, आप इस तरफ आ जाइए। तो देखिए यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है। कान्हा यहाँ, चूंकि आज बाल रूप में उनकी यहाँ पर पूजा होती है, तो कान्हा ये खुद यहाँ पर लेकर के आई हैं मध्य रात्रि में। हालांकि मंदिर में जो है भव्य महाभिषेक के बीच उनकी पूजा अर्चना होगी, लेकिन उससे पहले तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो आप लोगों की तरफ से जो प्रस्तुति होगी वो क्या?
4: हम लोग कृष्णावतारम कर रहे हैं, तो उनके जन्म से लेकर के पूरा महारास हम लोग करेंगे कथक और फोक शैली में। और मैं सभी मथुरावासियों को, नगरवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देती हूँ, और विशेष रूप से अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन लोगों के कारण हम लोगों को इतना सुंदर अवसर मिल रहा है कि प्रतिवर्ष हम लोग मथुरा जनपद में आकर के।
3: आप यहीं के रहने वाले?
4: नहीं, मैं हम लोग लखनऊ से ही आ रहे हैं।
3: तो ये जो पूरा ग्रुप आज परफॉर्म करने वाला है वो महाराज परफॉर्म करेंगे?
4: महाराज करेंगे, हम लोग सांस्कृतिक विभाग की ओर से आए।
3: सांस्कृतिक विभाग की ओर से? तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं, और यहाँ पर 5253वां जन्मोत्सव श्री कृष्ण का मनाया जाने वाला है। इसलिए यहाँ की भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही है। एक बार आपको हम मंदिर परिसर दिखा देते हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर लाइट से जगमगा जा रहा है। ये पूरा मंदिर परिसर पुष्प से पूरा आह्लादित है और साथ ही साथ यहाँ पर लाइट्स लगा दी गई है, कई झालरें लगा दी गई है। जय श्री कृष्ण आप देख सकते हैं, द्वार पर ही यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोगों की तरफ से क्या हम लोग देख पाएंगे?
4: बिल्कुल देखेंगे, और हम लोग यहाँ से आज हम लोग कान्हा को लेके जाएंगे और अपने जनपद में हम लोग पूरी छठी सेलिब्रेट करेंगे।
3: अच्छा, वहाँ छठी मनाई?
4: हाँ, हम लोग पूरे 6 दिन का कार्यक्रम करेंगे, सभी जितने भी हमारे एकेडमी के सारे स्टूडेंट मिल करके हम लोग छठी तक पूरा सेलिब्रेट करेंगे।
3: तो हमारे दर्शक जो अभी आपको देख पा रहे हैं, आपका कार्यक्रम कब देख पाएंगे? हाँ, या यहाँ पर हम कुछ देख सकते हैं?
4: अभी तो हम लोगों की तुरंत प्रस्तुति है,
3: अभी
4: बस 5 मिनट में हम जा रहे हैं।
3: चलिए, तो इन लोगों की प्रस्तुति है वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें इसी तरह से यहाँ पर कई लोग दूर दूर से आ रहे हैं और यहाँ का जो माहौल है, आप एक तरह से हम कहें कि जो पूरा समा है वो देखने ही लायक है अपने आप में। जो मैंने आपको कहा कि द्वापर,
1: बिल्कुल श्वेता, और वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि मथुरा में क्या रौनक है। और शगुफ्ता, सुबह से ही हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि जैसे जैसे अब रात होने वाली है तो दिव्य दर्शन होने वाले हैं श्री कृष्ण के, और साथ ही में दिव्य छटा जो है उनकी देखने को मिलने वाली है। रिदम जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, दिखाएंगे किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं जहां पर वो मौजूद हैं। लेकिन यहां पर हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ पुष्कर सिन्हा जी हैं। पुष्कर सिन्हा जी, आपके पास मैं यहां पर आऊंगी। देखिए, यूं तो कई भक्ति गीत हैं भगवान श्री कृष्ण के, मेरे भी पर्सनल फेवरेट हैं, बट ऐसा कौन सा भजन है जो आपके दिल के करीब है? सबसे पहले आज के कार्यक्रम की शुरुआत आपके भजन के साथ हो जाए।

0: बढ़िया पुष्कर जी, मन नहीं कर रहा आपको रोकने का। देखिए मजबूरी है कि बहुत सारे साथी भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाना एक एक करके बनता है। चलिए सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं, वहां पर रिदम जैन हमारी सहयोगी लगातार मौजूद हैं। रिदम, इस वक्त कैसी रौनक है, कहां पर मौजूद है, जरा दिखाइए हमें भी।
1: तो सबसे पहले तो जयकारा लगा देते हैं श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में मौजूद हूँ और सबसे पहले आपको दर्शन ही कराना चाहूंगी। कितने खूबसूरत गोविंद देव जी लगते हैं, आपको ही नहीं, गुड न्यूज टुडे के जितने भी दर्शक हैं वो भी जयपुर के गोविंद देव जी के दर्शन हमारे माध्यम से कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार श्री गोविंद देव जी का किया गया है, चारों तरफ केले के जो पत्ते हैं वो उनके लिए सजाए गए हैं और रौनक भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जयपुर में बारिश भी चल रही है। तो दिन में रौनक थोड़ी सी कम हुई थी, पर फिर भी बारिश भी किसी भक्त को, किसी श्रद्धालु को रोक नहीं पाई है। लगातार भक्तों का तांता सुबह 4 बजे से मंगला आरती के समय से लगा हुआ है, लाखों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आ चुके हैं। 3 रोज में इस मंदिर में अभी सभी भक्तों को डिवाइड कर दिया गया है, चाहे वो VIP पास वाले लोग हों, चाहे वो जो जूते चप्पल पहन के आ रहे हों, चाहे वो जो बिना जूते चप्पल उतारे आ रहे हैं, तो उन सभी के लिए अलग अलग रोज बनाई है, क्योंकि किसी भी भक्त को आज भगवान कृष्ण मना नहीं कर रहे हैं, हर किसी को आज अपने दर्शन दे रहे हैं। इंतजाम पूरे किए गए हैं जिसमें करीब 1000 पुलिस कर्मी भी इस मंदिर में और मंदिर प्रांगण के बाहर भी तैनात किए गए हैं, जिसे किसी को कोई तकलीफ ना हो। चारों तरफ से बैरिकेटिंग करके डाइवर्जन्स कर दिए हैं, जिससे हर भक्त आराम से आ पाए। पैदल यात्रा यहाँ पे भगवान कृष्ण की के दर्शन के लिए आज सभी भक्तों को करनी पड़े, करीब 4 से 5 किलोमीटर का पैदल सफर जो है वो तय करने के बाद ही श्री कृष्ण आज सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो वो श्रद्धा, वो आस्था सभी भक्तों के चेहरों पे नजर आ रही है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ किस तरीके से इधर जितने भी भक्त आ रहे हैं वो भगवान कृष्ण की नज़र उतार रहे हैं कि उनको आज किसी की नज़र ना लगे, तो वो यहाँ आ रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। ज़्यादा देर हालांकि किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भक्तों की जो मात्रा है वो आज के दिन बहुत ही ज्यादा है, तो सभी को अच्छे से दर्शन हो जाए, इसीलिए यहाँ पे करीब 3000
0: व्यवस्थित तरीके से चले, इसी तरह के इंतजाम हर जगह पर हम देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
2: बिल्कुल शगुफ्ता, और देखिए तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता भी देश के कोने कोने से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मनीष चौरसिया के पास चलते हैं, इस्कॉन मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से। मनीष, अगर बात इस्कॉन टेम्पल की करें और जन्मोत्सव की बात करें, कृष्ण जन्मोत्सव, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, दिल्ली से जुड़े हुए हैं मनीष चौरसिया हमारे साथ। मनीष, अगर इस्कॉन टेम्पल की अगर हम बात करें, कृष्ण जन्मोत्सव का दिन हो और इस्कॉन टेम्पल में आप मौजूद हो, तो वहां की जो दिव्यता है उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल होता है शब्दों में। क्या दृश्य आप वहां पर देख पा रहे हैं?
0: पीछे दिखाई दे रहा है वैसे सर का,
2: लोग तो झूम रहे हैं शगुफ्ता।
3: जो पीछे दिखाई दे रहा है वही असली तस्वीर है, और इस्कॉन नोएडा में मैं हूँ, और तस्वीर हर बार हर साल ऐसी होती है, तमाम भक्तों को आप यहाँ पर नाचते गाते झूमते देखेंगे। लेकिन ये भक्तों की तस्वीर आपने देख ली, कृष्ण के सखा की तस्वीर देख ली, लेकिन एक बार मैं आपको इस्कॉन नोएडा में दर्शन भी करा दूँ। कितने शानदार, कितने दिव्य, कितने भव्य आज राधा कृष्ण लग रहे हैं, ऐसे उन्हें आज सजाया गया है, संवारा गया है, जैसे आज सिर्फ ये उनका दिन नहीं है बल्कि ये पूरी पृथ्वी को संबोधित कर रहे हैं कि देखो मैं आ गया, तैयार होकर बन ठन कर आ गया। जितने भी आप वस्त्र यहाँ पर देख रहे हैं कृष्ण और राधा के, ये सब वृंदावन के विशेष कारीगरों ने महीनों की मेहनत उनकी लगी हुई है, महीनों तक बैठकर उस पर काम किया है, और उसके बाद उसकी सुंदरता आज यहाँ पर देखते बन रही है। जो फूल आप देख रहे हैं ये फूल वृंदावन से, मथुरा से, ब्रज क्षेत्र से मंगवाए गए हैं खास आज के दिन के लिए। भोग की मैं बात करूँ तो लगभग 500 व्यंजन का भोग आज इन्हें लगाया जाएगा, और उन व्यंजनों में आप कुछ भी गिन लें, चाहे वो दिल्ली का, यूपी का कोई लोकल खाना हो, डोसा हो, छोले भटूरे हो, या फिर कोई वेस्टर्न डिश हो, चाहे इटालियन हो, पिज्ज़ा हो, पास्ता हो, हर चीज़ का भोग उन्हें आज यहाँ पर लगाया जाएगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा इंतज़ाम भी दिखा दूँ, क्योंकि अभी बस जो श्रद्धालु हैं उनका आना बड़ी संख्या में शुरू हो चुका है। अंदर आपको जरूर सब कुछ मैनेज दिखाई पड़ रहा होगा। इस बार जो लाइन है, जो कतारें हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु एक बार में मंदिर के अंदर प्रवेश कर सके, आसानी से दर्शन कर सके। इंतजाम बहुत अच्छे इस बार किए गए हैं। हालांकि इस बार थोड़ी सी कमी आपको मंदिर में उन चीज़ों की लगे कि जहाँ पर जो दर्शक होते थे, श्रद्धालु होते थे, वो आकर कुछ देर बैठते थे, रुकते थे, अपनी श्रद्धा का समय देते थे और फिर अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते थे। इस बार उनके यहाँ पर रुकने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। पिछले साल लगभग 5 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे। अनुमान इस बार का है 7 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे। तस्वीरें लगातार आप देखेंगे किस तरह से जो लोग हैं वो आ रहे हैं और दर्शन करते हुए जा रहे हैं। कुछ लोग रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, एक मिनट रुककर निहारना चाहते हैं, लेकिन इस बार उन्हें उसकी इजाज़त नहीं है क्योंकि बाहर एक लंबी कतार है। क्या नाम है आपका? कैसे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका?
4: हरे कृष्णा, मेरा नाम नमिता है।
3: आज आप अपने नाम से जानी जा रही हैं या किसी की सखा के नाम से?
4: प्रभु जी, सीधा वैकुंठ धाम पहुंचने का मन है। गोविंद श्लोक।
3: कितना इंतजार आप लोग करते हैं जन्माष्टमी का? क्या कुछ आज किया सुबह से अभी?
4: ऐसा लग रहा है साक्षात द्वारका यहीं आ गई है। हम कलयुग में नहीं है। इस मंदिर की एम्बियंस, कीर्तन, डेकोरेशन, सब कुछ इतना।
0: बिल्कुल, चलिए मनीष, लौटती हूँ आपके पास। सुंदर तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन एक काम जो मनीष ने बड़ा गलत किया है वो ये है कि टेम्प्ट कर दिया है हम दोनों को कि वहाँ पर जो प्रसाद है ना वो मिल रहा है, छोले भटूरे, जलेबी। अब लेते आना मनीष, एक मैसेज दे देती हूँ। चलिए स्टूडियो का भी रुक कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा खास मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं। पौर्मिता जी, अब आपके पास आते हुए, कृष्ण के भाव को आप किस तरह से प्रकट करना चाहेंगी?
5: मैं अभी तो जन्म नहीं हुआ तो अभी हम लोग उनके जो रूप है वो याद करेंगे, जो कृष्ण के कैसे रूप है। अधरम मधुरम,
0: बिल्कुल, चलिए
5: नयनम मधुरम।

0: खूबसूरत ये भजन था कि मैं खुद गुनगुनाने लगी थी. मन तो कर रहा है सुनते जाओ भक्तिमय हो गए स्टूडियो.
1: आंखें बंद करके जो आप गुनगुना रही थी ना, मन नहीं कर रहा था आपको कहने का कि रुक जाओ जरा आंखें खोलो क्योंकि उधर भी जाना है. अच्छा, बट बहुत सुंदर आपने माहौल बना दिया.
0: आपके पास आएंगे और भी भजन हमारे दर्शकों को सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि नंदिता जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है. नंदिता जी, आपसे मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि आज जो है भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव है, क्या उद्देश्य है असल मायने में? हम बहुत खुश हैं, उत्साह है, खुशी के साथ उनके जन्म दिवस को हम मना रहे हैं, लेकिन क्या आज के दिन का असल मीनिंग जो है, असल मायने ये है कि उनकी जो शिक्षा जो उन्होंने दी है उसे हम अपने जीवन में उतारें और उस पर अमल करें?
2: ये बहुत सुंदर प्रश्न है. और देखिए, भगवान कृष्ण तो यही बताते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं. सबसे पहले लॉयल्टी सिखाते हैं. मित्रता अगर किसी ने सीखनी है तो भगवान कृष्ण से सीखे, चाहे वो द्रौपदी के साथ के सखा हो या फिर सुधामा के सखा हो या फिर पांडवों के ही मित्र क्यों ना हो या गाइड क्यों ना हो. तो वो लॉयल्टी जो है वो और कोई नहीं सिखा सकता कि आप किस तरह से मित्रता निभाए, भले ही आपके समाज में कोई भी स्तर क्यों ना हो. तो एक तो यह है. दूसरा, कर्म प्रधान भगवान कृष्ण हमेशा होने को सिखाते हैं कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, फोकस के साथ कर्म करिए, लेकिन वहीं पे लॉजिकल होकर के कर्म करिए, प्रैक्टिकल होकर के कर्म करेंगे तो अच्छा रहेगा. तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो संघर्ष में भी अपनी मनमोहक मुस्कान दिखाते हैं. यानी जब से जन्म हुआ तो उनका कारागृह में जन्म हुआ, उसके बाद वो आगे बढ़ते गए और पूरे उनके जो जीवनी है अगर आप देखें तो संघर्ष में ही रही, लेकिन एक चिकन आपको भगवान कृष्ण के ऊपर कभी भी नहीं दिखाई दी होगी. उस संघर्ष में भी वो कुछ ना कुछ ऐसा निकाल के लेकर आते थे कि अपने जितने भी उनके साथी होते थे, सहयोगी होते थे, उनके लिए मोटिवेशन बन जाते थे कि हाँ ठीक है, अगर हम मोटिवेशन के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे. और आज की इतनी स्ट्रेसफुल कॉर्पोरेट लाइफ में या मेंटल एंजाइटी जितनी ज्यादा है, उसके लिए स्पेशली भगवान कृष्ण का ये यहाँ पे एक मैसेज आता है कि आप उस चीज को आप पॉजिटिव होकर के अगर हैंडल करेंगे तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी बन के नहीं रह पाएगी. और फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि अपनी ईगो को ताक में रखें, ग्राउंडेड होके किसी भी चीज को काम करेंगे तो बहुत शुभ फल आपके जीवन में आएंगे.
0: Exactly.
2: और जीवन भर कृष्ण भगवान सिखाते हैं जैसे कि हर चीज को अपने साथ लपेट के, अपने साथ चीजों को लेकर के आगे बढ़ना.
1: सीख जो है हम कृष्ण भगवान से ले सकते हैं. बिल्कुल नंदिता जी, लौटती हूँ आपके पास. वान्या जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं. वान्या जी, हम पहले भी जब बातें करते हैं ना तो आप हमेशा हर उत्सव और हर फेस्टिवल के दौरान एक चीज जरूर कहती हैं, मैनिफेस्टेशन. आज का दिन भी क्या हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अच्छी बातों के बारे में? हमारे लिए जो भी हम सोचते हैं उसको अगर मैनिफेस्ट किया जाए, कृष्ण भगवान से सीख ली जाए तो फिर कितना अच्छा होगा? वान्या जी, चलिए श्वेता के पास चलेंगे. चलिए श्वेता के पास बाद में चलेंगे, लेकिन वान्या जी, आपको मेरी आवाज आ रही है या मैं अपना प्रश्न दोहराऊं? चलिए मथुरा का रुख करना चाहेंगे, एक बार फिर से श्वेता के पास चलते हैं. श्वेता, देखिए कहते हैं कि जीवन में एक बार तो आपको मथुरा जरूर आना चाहिए कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर. चलिए, हम स्टूडियो में ही बैठ गए हैं, हमने सोचा कि हम यहीं से दर्शन करेंगे. आप वहां पर पहुंच गई हैं रंग दिखाने के लिए. आई एम श्योर कि जैसे जैसे शाम होती जा रही है ना, रंग और गाढ़ा होता जा रहा है. अभी क्या कुछ वहां पर है तस्वीरें?
3: देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिस पर आप देख सकते हैं कि बकायदा कई यहाँ पर नृत्यांगनाएं यहाँ पर आई हुई हैं, कई कलाकार यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बकायदा जो कृष्ण की रास लीला है, जो उनका रास है, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है. जिसमें कि अगर आप रास लीला की बात करें तो उसमें जितनी भी गोपियां हैं उनके साथ आप कृष्ण को देखेंगे और हर गोपी को

0: किसी के साथ थे, कृष्ण सिर्फ किसी एक के साथ नहीं थे। एक अगर बालक है तो बालक के रूप में उनके साथ भी वो थे। अगर यशोदा है, एक माँ है, तो मातृत्व के तौर पर आप कह लें तो उनके पुत्र के रूप में वो वहाँ पर थे। अगर कोई नौजवान है तो एक प्रेरणादायक स्रोत के रूप में थे और एक प्रेमी के रूप में भी राधा के लिए जिस तरह से वो थे। यानी कि हर एक शख्स के साथ कृष्ण को जो है वो देखा गया है और कृष्ण हर काल में, हर खंड में और आज भी आपको कहें तो उतने ही प्रासंगिक है जैसे कि कह रहे थे। से बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की, उनके लिए आज मथुरा सजीव है। उस कृष्ण की जिनके जन्म का उत्सव तो आधी रात को होगा, लेकिन जिसकी कहानी माँ की गोद से शुरू होती है, जिसके एक विराट रूप को वेदों और उपनिषदों में खोजा गया, वही परम सत्ता यशोदा मैया की गोद में एक नन्हा सा बालक बनकर खेलती है, जिसके नाम से बड़े बड़े असुर कांपते हैं, वही कान्हा मैया की डांट से भी डरते हैं, जो गोवर्धन पर्वत उठा सकता है, वही बालक अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता है। और शायद कृष्ण की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो भगवान होकर भी हमसे दूर नहीं रहते, वो हमारे बीच है, हमारी भावनाओं में है, हमारे रिश्तों में है। और ब्रज की धरती पर तो आज भी हर
1: बिल्कुल श्वेता बने रही है हमारे साथ। तो मथुरा वृंदावन में किस तरीके से जो रौनक है वो देखने को मिल रही है, आपको दिखाते रहेंगे। और श्री कृष्ण हमें कई चीजें सिखाते हैं और सबसे जरूरी चीज जो वो सिखाते हैं वो है कंप्लीट सरेंडर। तो उनके चरणों में अपनी समस्याएं रख दो, ये वो सिखाते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हमारी माँ कवरेज लगातार जारी है, फौरन हाजिर होंगे।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: देश ही नहीं दुनिया भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। मथुरा वृंदावन में लगा भक्तों का तांता, रंग बिरंगी लाइट्स के साथ मंदिरों में मनमोहक फूलों से सजावट।

रामनगर में कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आ रहे लोग, जन्माष्टमी पर निकली लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा, दही हांडी से समारोह में भरे उत्साह के रंग। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, आसमान में घने बादलों से बीच में आईएमडी का रेड अलर्ट, खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें भी प्रभावित। दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र सहित देश भर में दही हांडी की दिख रही रौनक, मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां तैयार, कल दिखेंगे उत्सव के रंग।

0: तो जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। ये पेशकश लगातार जारी है जीएनटी पर, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, रंग लगातार गाढ़ा होता जा रहा है हर जगह का, खासकर मथुरा का। पूरा ब्रज क्षेत्र आज कान्हा के जन्मोत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। अब लोगों को बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब नंदलाल का आगमन होगा।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, उस पावन पल में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और इस बीच भगवान के भक्त अलग अलग अंदाज में भक्ति में लीन है। मथुरा की अगर हम बात करें तो मथुरा में जन्माष्टमी के ऐसे ही कुछ रंग दिखा रही है हमारी संवाददाता श्वेता झा।

0: लगता ने।
1: भाई सिर्फ उस तरफ रौनक नहीं है, रौनक सारी की सारी हमने यहाँ पे इंतजाम कर दिया है स्टूडियो में, पूरा यहाँ पर गेस्ट आपके लिए मौजूद हैं। परमिता जी नेक्स्ट क्या?
2: नेक्स्ट मेरे मन में कृष्ण सुनाए सुनाए।

बहुत सुंदर परमिता, जो मुझे लग रहा है शगुफ्ता कि जो लोग मथुरा वृंदावन आज के दिन नहीं जा पाए उन्हें इस बात का मलाल नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं वो कोई भी कमी होने नहीं दे रहे हैं। पुष्कर जी के पास अब जाना पड़ेगा क्योंकि परमिता जी ने बहुत ही सुंदर भजन सुनाया है, तो इसको टक्कर देते हुए एक और भजन।

बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर पुष्कर जी। अब आप दर्शक एक काम कीजिए, ऐसे रिमोट को उठा के साइड पे रख दीजिए, क्योंकि हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बीच में आपको स्विच नहीं करना है, क्योंकि हम जल्द वापस आ रहे हैं और ये रंग लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: क्या आप भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? क्या आप भगवान कृष्ण की भक्ति को मित्रता में बदलना चाहते हैं? कैसे बने भगवान कृष्ण आपके मित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी का मौका है, ऐसे में हमारी जो मेगा कवरेज है वो लगातार जारी है। हमारे तमाम संवाददाता देश के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता झा के पास यहाँ पर चलेंगे। श्वेता, मथुरा की अगर हम बात करें, जैसे अभी शगुफ्ता ने कहा था, कहते हैं ना कि जीवन में एक बार वहां आना तो बनता है, और अगर मौका आज का हो यानी कृष्ण जन्माष्टमी का हो तो बात ही क्या है। अब धीरे धीरे रात भी हो रही है तो वहां पर माहौल भी बन रहा होगा। मैंने देखा है कि रात के वक्त तो वहां पर दिव्य छटा देखने को मिलती है। क्या कुछ कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारी?
7: सबसे पहले सरगम मैं आपको ये बता दूं कि जीवन में एक बार नहीं, अगर आप कृष्ण की भक्ति में लीन हैं तो आपको बार बार मथुरा आना पड़ेगा। हम बार बार मथुरा आते हैं और आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर एक बार फिर से हम मथुरा में हैं। जन्मभूमि की सबसे पहले ये तस्वीर, पावन तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देखिए, अब शाम होने वाली है, झालरें, तमाम लाइटें जो हैं वो यहाँ पर जल चुकी हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर रास लीलाएं, तमाम वो तस्वीरें यहाँ झलकाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। हजारों हजार, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है, जो यहाँ के सचिव हैं मंदिर के, उनका कहना है कि लगभग पूरे ब्रज मंडल की अगर आप बात करें तो इस वक्त 40 से 50 लाख श्रद्धालु कृष्ण भक्त इस वक्त ब्रज मंडल में मौजूद हैं। और यहाँ पर सिर्फ मैं मौजूद नहीं हूँ बल्कि हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी भी मौजूद हैं, हमारे साथ मदन गोपाल शर्मा जी भी मौजूद हैं, तो हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है आज कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करने के लिए और हर एक तस्वीर आपको दिखाने के लिए। जहां तक आपने कार्यक्रम की बात पूछी तो मदन जी आप ये बता दीजिए कि विशेष करके जो कार्यक्रम आज होने वाले हैं शाम में, किस तरह से कार्यक्रम होगा? और विशेष करके मैंने सुना कि अयोध्या से और काशी से भगवान जी के लिए कुछ तोहफे भी आए हैं, क्या है?
8: हाँ, देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव है ना, वो बड़ा अद्भुत और अनोखा है। और ब्रज में अगर कान्हा के जन्म उत्सव की बात की जाए तो उसकी कोई शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो भगवान का जन्म उत्सव है, उसके लिए भगवान श्री राम की नगरी से पोशाक आई है, ठाकुर जी के लिए प्रसाद आया है, इत्र आया है। वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी से, काशी से प्रसाद आया है, इत्र आया है और ठाकुर जी के लिए पोशाक आई है। तो कल शाम में वो यहाँ पहुंची थी, जो आज मंदिर में पहुंच गई है। और अब जब रात्रि में भगवान का अभिषेक होगा तो उसी इत्र से भगवान का अभिषेक होगा। और जन्म उत्सव के बाद ठाकुर जी के लिए खास लड्डू आए मेवा के, जिनका भोग लगाया जाएगा जब जन्म उत्सव हो जाएगा। और वो भगवान राम के यहाँ से आए हैं, भगवान राम की नगरी से भगवान श्री कृष्ण की नगरी में प्रसाद आना अपने आप में अद्भुत और अनोखा है।
7: वो अनुभव अद्भुत होगा, उसकी तस्वीर भी हम बताएंगे और दिखाएंगे आपको, क्योंकि संजय जी यहाँ पर हैं और अक्सर ऐसा होता रहा है। संजय जी, पहली बार ऐसा है कि हम आमने सामने खड़े हैं और कृष्ण जन्मोत्सव पर हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो अक्सर एक स्टूडियो में एक ग्राउंड पर रहता है। तो संजय जी, चूंकि हम जानते हैं, हम एक ही क्षेत्र से आते हैं, तो हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ सोहर गाया जाता है।
9: जी हाँ, बिल्कुल।
7: यहाँ पर आज कृष्ण जन्मोत्सव है, हम दोनों मिथिलावासी हैं, तो हम कुछ सुन लें।
9: हालांकि जो सोहर का समय है वो जन्म के बाद होता है, तो अभी हम, लेकिन हम अति उत्साह में हैं तो हम सोहर गा सकते हैं। तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी का एक मशहूर सोहर गाया हुआ है, वो हम अपने दर्शकों के लिए गाते हैं ताकि जब वो जन्मोत्सव मनाए तो इस सोहर का आनंद ले सके। वो उन्होंने जो गाया है वो ये कि

पर मुझे एक विराम लेना पड़ेगा, बिल्कुल ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। श्वेता इसी बीच ना एक व्हाट्सएप किया है, चेक कर लो जरा कि नीला रंग प्लान करके पहन के आए हैं क्या सारे। चलिए यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ये हमारी खास कवरेज महाकवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिए जीएनटी। वापस लौटते हैं तुरंत।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: आज रात नंदलाल यशोदा के लाडले नटखट नंद किशोर का प्रकटय होगा, तब तक हर भक्त अपनी कान्हा के आने की खुशी में लगातार झूमता जा रहा है।
1: बिल्कुल, आस्था भक्ति का अद्भुत उत्सव मना रहा है। आइए ऐसे में जानते हैं जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और श्री कृष्ण के पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है और क्या विधि विधान है।
2: आ गई है वो शुभ घड़ी जिसका हर कृष्ण भक्त को बेसब्री से इंतजार था। आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के पावन अवसर पर मुरलीधर का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन भक्त बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार करते हैं और आधी रात को भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। इस बार जन्माष्टमी पर कई ऐसे संयोग पड़ रहे हैं जो इस पर्व को बेहद खास बना दे रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जन्माष्टमी पर जयंती योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, हर्षण योग, हंस योग, मालव्य योग, बुधादित्य राजयोग और नवपंचम राजयोग बन रहा है। ज्योतिष के जानकार ग्रह नक्षत्रों की चाल को बेहद शुभ और कल्याणकारी मान रहे हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि इतने सारे शुभ संयोग के बीच पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। सुबह 9:10 पर अमृत मुहूर्त शुरू हो चुका है जो सुबह 10:45 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 तक पूजन का अभिजीत मुहूर्त है। रात्रि काल में पूजा का मुहूर्त निशिता काल में रहेगा। निशिता काल रात 11:57 से लेकर रात 12:43 तक रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 तारीख की मध्य रात्रि यानी बीती रात 2:25 पर शुरू हुई जो 5 तारीख को यानी आज रात 12:13 तक रहेगी।

0: जन्माष्टमी की रात निशिता काल में लड्डू गोपाल जी के अभिषेक का भी विशेष महत्व है। अब नंद के लाल का अभिषेक, पूजन और वंदन की विधि भी जान लीजिए। स्वच्छ जल के साथ दूध, दही, शहद और गंगा जल मिलाकर पंचामृत तैयार करें। अभिषेक के बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, चंदन का तिलक लगाएं और फूल अर्पित करें। मंदिर में धूप दीप जलाकर श्री कृष्ण की आरती करें, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी के प्रसाद में माखन मिश्री, पंचामृत, खीर, दही, खीरा, केला और पंजीरी प्रमुख हैं। पूजा और भोग में तुलसी दल अर्पित करने की भी परंपरा है।
1: आप उस समय भगवान के झूलनोत्सव की व्यवस्था करें, भगवान के श्रृंगार की व्यवस्था करें, अपने पूजा स्थान को स्वच्छ करवाएं, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो जो वस्तुएं हैं उन सब का संग्रह करें और संग्रह करके यह जो भगवान के जन्म का जो उत्सव मनाते हैं उस उत्सव मनावें। लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति, यह भाव हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए कि ईश्वर सब कुछ आपका है, हम आपको ही अर्पित कर रहे हैं।
0: शहर शहर, गली गली नटखट नंद किशोर के जन्मोत्सव की रौनक बिखरी हुई है। कृष्ण भक्त खुशी से झूम रहे हैं। अब तो बस उस घड़ी का ही इंतजार है जब ब्रजधाम से लेकर पूरे देश में एक ही गूंज होगी, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: क्या आप भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? क्या आप भगवान कृष्ण की भक्ति को मित्रता में बदलना चाहते हैं? कैसे बने भगवान कृष्ण आपके मित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
5: देश नहीं दुनिया भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। मथुरा वृंदावन में लगा भक्तों का तांता, रंग बिरंगी लाइट्स के साथ मंदिरों में मनमोहक फूलों के साथ सजावट। जामनगर में कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आ रहे लोग, जन्माष्टमी पर निकली लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा, दही हांडी से समारोह में भरे उत्साह के रंग। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली NCR में झमाझम बारिश, आसमान में घने बादलों के बीच में IMD का रेड अलर्ट। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश भर में दही हांडी की रौनक। मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां तैयार, कल दिखेंगे उत्सव के रंग।

0: नमस्कार जी एन डी संघ, ये खास पेशकश लगातार जारी है और कृष्ण जन्मोत्सव का हर किसी को इंतजार है। जैसे ही कृष्ण भगवान का जन्म होगा वो रंगत भी आपको दिखाएंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कैसी रौनक है देश भर के हिस्सों में वो आपके लिए लेकर आए हैं हम समेट कर। नंद के आनंद भाइयों जय, यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। चलिए साथ में बोलिए, आज हर तरफ देखिए भगवान श्री कृष्ण के जयकारे हैं। मथुरा वृंदावन की रौनक जरा देख लीजिए एक बार, जय नंदलाला जय गोपाला की धुन आपको सुनाई दे रही है। पूरे देश में मुरली मनोहर के जन्मोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। देवकी नंदन के आगमन में अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। भक्तों को बेसब्री के साथ इंतजार है उसी क्षण का जब कान्हा के प्रकट उत्सव होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में आज सुबह से ही भगवान की विशेष आरती चल रही है। मुख्य उत्सव तो आज मध्य रात्रि में होगा, लेकिन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग का मुहूर्त बनेगा, क्योंकि द्वापर युग में इसी तिथि और मुहूर्त में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। लेकिन इससे पहले आज सुबह से ही मथुरा वृंदावन समेत देशभर के मंदिरों में माहौल कृष्णमय हो चला है। तो चलिए हमारी सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं, क्योंकि हर सहयोगी हमारा आप तक रंग पहुंचाने का काम कर रहा है। मनीषा, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, जरा दिखाइए पीछे की तस्वीरें और रौनक कैसी है।
1: नवजोत, मेरी मौजूदगी इस वक्त ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में, और सबसे पहले तो मैं आपको कान्हा जी के ही दर्शन करवाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी भक्तों की आप भीड़ देख रहे हैं वो अपने आराध्य के दर्शन के लिए ही पहुंची है। तो घर बैठे दर्शकों को भी सबसे पहले मैं उनके आराध्य से मिलवाना चाहूंगी कि कितनी खूबसूरती के साथ जो है इस पूरे परिसर का ऑल्टर का जो है श्रृंगार किया गया है। आप देख सकते हैं कि सजावट कितनी अच्छी से की गई है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय है मोर नवजोत, और उसी थीम को लेकर जो है इन्होंने पूरी थीम रखी, उसी चीज से आप देखेंगे हर एक कोने में आपको जो है उसी तरीके से का रंग जो है वो दिखने वाला है, और मोर के पंख जो है उससे खास तौर पर जो है सजावट की गई है ऑल्टर की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर परिसर को जो है बेहद ही खूबसूरती के साथ जो है वो सजाया गया है। आज सिर्फ जन्मोत्सव का ही दिन नहीं है, बल्कि अपने आराध्य को याद करने का दिन है, उनके दिए गए संस्कारों को याद करने का दिन है जो उन्होंने हमें सीख दी है, और उसी सीख को याद करते हुए आप हर एक वक्त जो है लंबी लंबी कतारों में जो है इस वक्त मंदिर के अंदर नजर आ रहा है। मंदिर के बाहर भी अच्छी खासी रौनक जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन मंदिर के अंदर जब आप दाखिल करोगे तो वाक्य में हर एक भक्त आपको भक्ति में रमा हुआ नजर आएगा। तस्वीरें देख सकते हो कि एक तरफ आपको मंडली भी दिख जाएगी जो लगातार इसी तरीके से भजन कीर्तन करते हुए आपको नजर आएगी। लोग एक एक करकर जो है मंदिर में आ रहे हैं, और व्यवस्था कुछ इस कदर की गई है कि किसी को भी परेशानी यहाँ पर नहीं हो रही है। और अब बात है हमारे कान्हा जी की, तो हर एक बाल आपको यहाँ पर जो है कान्हा स्वरूप में जो है वो नजर आने वाला है। तो मैं इन्हीं कान्हा से शुरुआत करती हूँ। आप देख सकते हैं कि बच्चे आपको यहाँ पर जो है आज खास तौर पर लड्डू गोपाल के चेहरा जो है उनमें दिखने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि हर कोई माता पिता अपने अपने बच्चों को जो है इसी तरीके से सजाकर आए। तो इन्हीं से बात करते हैं। हरे कृष्णा
2: हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे राधे।
1: आज कैसा लग रहा है ये बताइए, मंदिर
2: लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए कैसा लग रहा है?
1: कैसा लग रहा है मंदिर में व्यवस्था किस प्रकार लग रही है?
3: बहुत अच्छी, बहुत सब कुछ ऑर्गेनाइज है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है।
1: अपने आराध्य के दर्शन करके कैसा लगा?
3: मतलब एक दिल को अलग लेवल का पीस मिला है वो।
1: तो कि चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आ जाएगी और सबके हाथों में आपको फोन नजर आ जाएगा, क्योंकि वो इस पल को जो है अपने साथ जो है कैद कर यहाँ से लेकर जाना
0: करना चाहते हैं। तमाम तस्वीरें बहुत सुंदर तस्वीरें मनीषा आप दिखा रही हैं। चलिए लौटती हूँ आपके पास, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिएगा, लेकिन स्टूडियो की तस्वीरें भी तो दिखाना बनता है। देख रहे हैं ना आप कैसी रौनक हमने जीएनटी पर आपके लिए लेकर आए हैं। पौरमिता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पौरमिता जी ने अगला गाना तैयार कर लिया है, हम भी तैयार हैं सुनने के लिए, आप भी तैयार हो जाइए। पौरमिता जी आप क्या सुनाएंगी?
4: मैं लता जी का एक गाना है
0: जी,
4: जा तो उसे नहीं बोलू कन्हैया। उनके जन्मदिन पे गुरु जी ने हमको दूरदर्शन पे गवाया था।
0: ठीक है,
4: लता जी के जन्मदिन
0: एक बार हो जाए।
4: धाम तत्त धाम तत्त धाम तत्त

0: ताली बजा दूं एक बार आपके लिए, बहुत अच्छा गा रही हैं। आपने जो माहौल बनाया है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें स्टूडियो में। चलिए और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सीधा आपको जयपुर लिए चलते हूं। ऐसा योगी रिदम जैन हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रिदम इस वक्त कौन से हिस्से में मौजूद है? और देखिए जैसे जैसे शाम आगे बढ़ती जा रही है ना, आई एम श्योर की और भी रंगत खिलती जा रही होगी मंदिरों की और जहां पर आप मौजूद हैं। दिखाइए क्या दिखाएंगे इस वक्त हमें।
1: बिल्कुल, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में मैं मौजूद हूँ और जैसा कि आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है कि रंगत बढ़ती जा रही है, भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है और समय बहुत कम बचा है कृष्ण जन्मोत्सव में, जब महाअभिषेक होगा और श्री कृष्ण का जन्म होगा। हर एक भक्त अभी समय पे 12 बजने का इंतजार कर रहा है। यहाँ पे बहुत ही भव्य महाअभिषेक होने वाला है, जिसमें करीब 425 किलो दूध, 365 किलो दही और 11 किलो घी, 85 किलो बूरा और 11 किलो शहद, ये कुछ सामग्री है जिससे बहुत ही भव्य रूप में महाअभिषेक श्री कृष्ण का किया जाएगा। बाल स्वरूप में वो नजर आएंगे, बहुत ही भव्य श्रृंगार भी होने जा रहा है और 12 बजे 31 तोपों की जो आतिशबाजी है वो यहाँ पे की जाएगी। भक्तों की भीड़ में दिखाती हूँ, सुबह से इसी तरीके से भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। 13 घंटे के दर्शन श्री गोविंद देव जी इस बार जयपुर में अपने मंदिर में सभी भक्तों को दे रहे हैं। सुबह 4 बजे मंगला के समय से ही ये भक्त जो है यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लग रही है, जगह जगह पर स्वयंसेवी भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, स्काउट्स भी हैं, अलग अलग जगह पे रोज में डिवाइड कर दिया गया है जिससे सभी भक्त दर्शन आराम से कर पाए। और जगह जगह पे खास बात ये भी है कि QR कोड इस बार लगाए गए हैं जिससे किसी भी भक्त को किसी भी चीज की जानकारी लेनी हो तो आराम से वो QR कोड स्कैन करके वो जानकारी ले पाए, उनको किसी से ज्यादा पूछना ना पड़े या मदद के लिए किसी को ढूंढना ना पड़े। वैसे जगह जगह जल सेवा केंद्र भी बनाए गए हैं, सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं जिससे सभी भक्त जो हैं, जो भी पैदल यात्रा कर रहे हैं उनको किसी भी बात की परेशानी ना हो, तो व्यवस्थाएं पूरी की गई है। लाखों की मात्रा में भक्त यहाँ पे नजर आ रहे हैं, नन्हे नन्हे कन्हैया भी नजर आ रहे हैं, तो जो बच्चियां हैं उनको उनकी माता पिता जो है वो राधा बना के ला रहे हैं।
0: बड़ा ही सुव्यवस्थित तरीके से तमाम चीजों का इंतजाम यहाँ पर किया गया है क्योंकि मौका ही देखिए ऐसा है। लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। संजीव जी प्रश्न आपसे यही है, देखिए जन्मोत्सव के इस त्योहार को हम सभी मना रहे हैं, हर भक्त उत्साहित है कि हमारे आराध्य आज आएंगे और हमारे संकटों को हर लेंगे, आज के दिन को कैसे देखते हैं, आज के दिन का महत्व क्या है, कैसे समझाएंगे आप?
2: देखिए आज का बड़ा महत्व है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात पूछ रही है आप और ये देश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे देश की भारत की धरती पर राम और कृष्ण जैसे देवों का अवतार हुआ है। तो काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणा, क्योंकि 4 रात्रि ऐसी हैं जो सिद्ध हैं जिनमें रात्रि में सोना नहीं चाहिए, जागरण करें और भगवान कृष्ण के नाम का, कृष्ण का चिंतन करें और उनको जो है स्नान आदि कराएं, पूजन करें, तुलसी दलों से उनका समर्चन करें, कमल दलों से उनका समर्चन करें। और आज तो हमारे ब्रज में चक्र धूम मची रही है और चक्र हमारे ब्रज के लोग गाय रहे हैं ठाकुर जी को, और मैया यशोदा ने जो है जैसे ही लाला को जन्म भयो सोई मैया यशोदा ने बढ़िया सो पालना डार दी, जो आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही हो, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, कौन पुण्य कर आई यशोदा।

0: उदास, दिव्य दिव्य आज बधाई गाए जा रहे हैं। बड़ा दिव्य आनंद हर्षोल्लास के साथ समस्त ब्रजवासी पीरे पीरे कपड़ान को पहन के और महाराज हमारे नंद बाबा के द्वार पर जा रहे हैं, सबको बधाई दे रहे हैं। बड़ा दिव्य आनंद बरस रहा है। आज जो है पूरा देश जो है कृष्ण में रंगा हुआ है। कृष्ण वर्ण तुषाकरण सांगो पांगस त्रिपार्षदम, आज कृष्ण के प्रेम में, आज कृष्ण की महिमा में समस्त जीव समस्त भक्तजन ओतप्रोत ओतप्रोतम पटवद्यत्र विश्वम। भगवान की बड़ी महिमा बड़ी कृपा लीला आज बिखरी हुई है पूरे देश में और जीएसटी के माध्यम से हम सभी देशवासी आज इस नजारे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद हो रहा है। आज जीएनटी न्यूज के द्वारा बड़ी बड़ी अच्छी खबरें जा रही है साफ देश में। तो आज हमको लगता है कि भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं, ठाकुर जी को दिव्य दिव्य जो है छोटा दूध की खीर बना के पिवाएं, क्योंकि व्रत तो हमारा और आपका है, ठाकुर जी का नहीं है। तो क्योंकि ठाकुर जी को दूध भात बहुत प्रिय है, माखन मिश्री बहुत प्रिय है जी।
1: बिल्कुल संजीव जी, बहुत अच्छी बात कही। देखिए मैं वही दर्शकों को भी यही गुजारिश कर रही थी कि देखिए अगर आप वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं ना मथुरा में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इंतजाम कर दिया है। तमाम तस्वीरें समेट कर हम जीएनटी पर आपके लिए लेकर आ गए हैं। डीपी शास्त्री जी स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं। शास्त्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शास्त्री जी जय श्री कृष्ण। सवाल आपसे यही है कि कृष्ण भगवान के बहुत सारे रूप और स्वरूप हम देख रहे हैं, उनकी लीलाओं के बारे में जब भी जिक्र करते हैं मुझे लगता है कि दूसरा जन्म शायद लेना पड़ जाएगा उनको, अगर समझना चाहेंगे उनकी लीलाओं से क्या सीख आज हम ले सकते हैं।
2: देखिए यत्र योगेश्वरा कृष्ण तत्र पार्थो धनोधरा, भगवान कृष्ण योगी राज है, उनके महिमा और उनके व्याख्यान दुनिया में वेदों में पुराणों में शास्त्रों में इतना किया गया है कि ऋषि मुनि नहीं समझ पाते हैं, हम आप कैसे इस चीज को समझ पाएंगे। इस तरह द्वापर में भगवान का जन्म हुआ, बरसात इत्यादि आज भी देखिए कितना बढ़िया बरसात हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च के और उसके साथ में अष्टमी तिथि शुक्रवार के भोग करते हुए हम सब लोग आनंदित हो रहे हैं। मथुरा से लेकर के चाहे सनातन के मानने वाले विश्व के पटल पे जितने लोग हैं संगीत से भक्ति से भजन से कीर्तन से जप से तप से मन से हर तरह से भक्ति करने के लिए तैयार है, ये बच्चों का जीवन जो है और बच्चों का एक इतना बड़ा पर्व है जन्माष्टमी। आपको बता दें कि जनमानस में नई चीज की एक हर जन्माष्टमी में हमको प्राप्ति होती रहती है। इसीलिए होती है कि जब भगवान जन्म लेते हैं तो माता पिता को बंधन से मुक्त कर देते हैं कंस के कारागार से, और भगवान जैसे चार पग चलते हैं तो भक्ति रूपी जो जमुना है भगवान को चरण धोने के लिए ललायित हो जाती है और भगवान को चरण धोती है। एक छोटे से बच्चे के जीवन का कृष्ण का देखिए स्वरूप और भक्ति कितना आपके दुनिया में दिख रहा है। जमुना की भक्ति हमको दिखाती है कि परम पिता परमात्मा को जब आपको मौका लगे जब आपके पास समय हो उनको गुनगुनाइए गाइए जप कीजिए तप कीजिए और उत्सव मनाइए। उत्सव मनाना चाहिए, बाबा नंद के घर जब उत्सव मना है कृष्ण के जाने के बाद, आज भी 5248 वर्ष हो गया समथिंग, आज भी जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, आज भी कृष्ण का प्रकट उत्सव हम मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? ये सनातन का श्रृंगार है
1: जी। बिल्कुल, चलिए शास्त्री जी लौटती हूँ आपके पास, अपनी बात को बाद में पूर्ण कीजिएगा। श्वेता के पास एक बार चलते हैं मथुरा में। श्वेता वहां पर लगातार रंग आपको दिखा रही हैं, रौनक आपको दिखा ही रही हैं। श्वेता जितना मैं आपको जानती हूँ ना पर्सनली, मुझे पता है कि कृष्ण भगवान की आप कितनी बड़ी भक्त हैं। एक सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी कि आपकी अनुभूति क्या है मथुरा में पहुंचकर, आप क्या फील कर पा रही हैं इस वक्त?
3: शगुफ्ता, जैसा कि आपने कहा कि ये सच है कि कृष्ण की मैं बड़ी भक्त हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको तस्वीरें जरा मैं दिखा दूँ। एक छोटा सा बालक जो कि कृष्ण के रूप में यहाँ पर है वो यहाँ पर मौजूद है। बच्चे आपके नाम क्या है?
4: करवित कुंतल।
3: आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो आप?
4: अजान में।
3: अच्छा, आप ये हाथ में क्या है आप जरा दिखा दीजिए, लोग आपको देख रहे हैं। ये मोर पंख है आपकी बांसुरी में, आपको बांसुरी बजाने आती है? बजा के सुनाओ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, दरअसल मैं यही आपको बताना चाह रही थी शगुफ्ता कि इतिहास को ना दरअसल कई बार पढ़ा नहीं जाता है, इतिहास को समझना होता है ना तो आपको आपको उस जगह पर मौजूद होना होता है, उस जगह आना होता है जहां पर इतिहास लिखा गया हो। श्री कृष्ण को अगर आपको समझना है तो आपको मथुरा आना होगा और महसूस करना होगा ब्रजवासियों के दिल में कृष्ण किस तरह से हर पल धड़कते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि में इस बार मैं यहाँ मौजूद हूँ और अपनी भावनाएं भी आपको मैं व्यक्त करती हूँ, बताती हूँ कि हालांकि श्री कृष्ण को पूछती मैं बरसों से आई हूँ, लेकिन आज ये पहली बार मुझे मौका मिला है कि उनके जन्मोत्सव के समय में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, साथ ही साथ गुड न्यूज टुडे के माध्यम से तमाम हजारों लाखों दर्शकों को मैं यहाँ की तस्वीरें दिखा पा रही हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि गुड न्यूज के जितने भी दर्शक हैं जो यहाँ नहीं आ पाए हैं वो सिर्फ गुड न्यूज टुडे खोल करके बैठ करके देखते रहे, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। और ये देखिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, एक तरफ बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगा दी गई है, संजय को अपने कैमरामैन को बोलूंगी दिखाने। ये जो एलईडी स्क्रीन है यहाँ पर आप जो गर्भगृह है मुख्य द्वार जहाँ पर है आप देख सकते हैं श्री कृष्ण और राधा रानी विराजमान है, वो अंदर की तस्वीरें लगातार यहाँ पर आ रही है। ये इसलिए भी लगाया गया है जब धीरे धीरे और भीड़ बढ़ेगी, कई लोग मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगे लेकिन अंदर मंदिर में जो पूरा कार्यक्रम होगा जन्मोत्सव का वो बाहर इस प्रांगण में खड़े होकर के देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई रंगारंग कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं और रात को 9 से 10 बजे के आसपास आपको बता दें कि यहाँ पर आसमान में यानी कि ब्रजमंडल में यहाँ आसमान में लगभग 500 ड्रोन यहाँ पर उड़ेंगे और कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, अलग अलग कृष्ण की लीलाएं हैं, वो हम ब्रजमंडल के इस आसमान में देख पाएंगे जो कि एक अद्भुत नजारा होगा। फिलहाल पूरा मंदिर परिसर जो है वो लाइट से झालरों से सज चुका है। दूसरी तरफ जितने भी भक्त आ रहे हैं उनके लिए आपको बता दें यहाँ कई सारी दुकानें लगाई गई हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए कई सारी दुकानें यहाँ पर लगाई गई हैं और यहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी दुकानें हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया आप जरा बाहर आएंगे, ये लगभग जो दुकानें मैं देख पा रही हूँ कितनी पुरानी दुकानें?
5: समथिंग 50 इयर्स,
3: लगभग 50 साल हो गए हैं, 50 साल से।
5: हाँ जी, जब से मंदिर का निर्माण हुआ साथ में ही हुआ था,
3: जब मंदिर का निर्माण हुआ था तब से ये दुकानें ये बता रहे हैं यहाँ पर है। अब ये अलग बात है कि थोड़ा संजय पीछे जाए तो दिखा पाएंगे कि रंग रोगन थोड़ा सा हो गया है और दुकानें बड़ी अच्छी यहाँ पर लग रही हैं, सजी हुई है यहाँ। लेकिन भैया जो मैं देख पा रही हूँ ज्यादातर कृष्ण जी से जुड़ी चीजें यहाँ पर है, पोशाक है और क्या क्या रखा है?
5: बाकी आप देख सकते हैं मोस्टली जो मिलेगा आपको सारी चीजें पूजा या पूजा पाठ से रिलेटेड ही मिलेंगी।
3: कृष्ण जी की मूर्ति हम देख पा रहे हैं, वो मूर्ति जरा आप दिखाएं। तो बाल रूप में कृष्ण, ज्यादातर लोग जो यहाँ आते हैं वो चाहते हैं कि मथुरा से श्री कृष्ण अपने घर में लेकर के जाए, बाल रूप।
5: जी बाल रूप ही यहाँ का यहाँ जन्म स्थान है तो मोस्टली लोग बाल रूप ही लेके जाते हैं,
3: बाल रूप ही लेकर। तो अभी तक जितने यहाँ पर लोग आए हैं वो पोशाक, कई लोग आते हैं वो पोशाक।
5: हाँ जी पोशाक है उनका, श्रृंगार का काफी सारा सामान उनके श्रृंगार का होता है वो लोग लेके जाते हैं। बाकी आप ड्रेस मटेरियल्स भी देख रहे हैं तो इसमें भी सब राधे राधे और उससे जुड़ा हुआ ही होता है।
3: बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चूंकि ब्रज मंडल में, ब्रज भूमि में कहते हैं कि कण कण में श्री कृष्ण का वास है और यहाँ पर जो कोई भी आता है कृष्ण भक्त आता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ही आई हूँ, मेरे घर में ठाकुर जी हैं, तो मन में लालसा होती है कि ब्रज भूमि में जो चीज बनी हुई है मैं यहाँ से अपने
1: लेकर
3: जाऊँ, तो ये भावना होती है।
1: बिल्कुल श्वेता,
3: और इसी
1: आप जो तस्वीरें इस वक्त दिखा रही है ना पीछे जो भी दुकानें आपने दिखाई है, मेरे जहन में वही बात आ रही थी कि आई एम श्योर कि श्वेता ना टेम्प्ट हो गई होगी क्योंकि श्वेता के घर पे भी ठाकुर जी मौजूद है। श्वेता लौटती हूँ, अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। पौरोमिता जी स्टूडियो में लगातार मौजूद है, पौरोमिता जी ना जैसे ही किसी और के पास मैं जाती हूँ पौरोमिता जी की रिक्वेस्ट आ जाती है कि ये गाना अभी सुनाएंगे दर्शकों को, तो मैं कहती हूँ हाँ अभी सुनाएंगे। चलिए पौरोमिता जी की जो इन्होंने अभी दरख्वास्त की थी कि ये गाना सुनाएंगे आपके सामने पौरोमिता जी अभी रखेंगे। पौरोमिता जी गाना क्या है वो बता दीजिए एक बार थोड़ा सा।
6: आज मधुर बांसुरी बाजे, मतलब ठीक है राधा जी बोल रहे
1: आज कृष्ण को,
6: कृष्ण के लिए विरह में मधुर बांसुरी, मतलब मधुर बांसुरी बज रहा है,
1: एक बार सुना दीजिए।

0: बात है पवन मित्र जी, अब मैं आपको बता दूं, मैं जाने नहीं दूंगी आपको, ठीक है? आपने बहुत अच्छा माहौल बना दिया स्टूडियो में, अब बने रहिए, लिस्ट अपनी तैयार कर लीजिए। शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं। शास्त्री जी, कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, उनकी लीलाओं के बारे में जब भी हम जिक्र करते हैं और अगर मैं आज की पीढ़ी को उसके साथ कनेक्ट कर दूं, तो आज की पीढ़ी को क्या सीख लेनी चाहिए कृष्ण भगवान से?
1: देखिए, भगवान कृष्ण दो चीज तो जरूर लीजिए, एक भक्ति स्वरूपा है, तो अपने जीवन में भक्ति को जरूर आप रखे किसी ना किसी माध्यम से। और जब जब जरूरत भगवान कृष्ण को पड़ा है संसार में, नीति के लिए, धर्म के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यहाँ तक कि महाभारत ऐसे काल में युद्ध में आगे बढ़ने के लिए भगवान कृष्ण भी अपने नीति को दर्शाए हैं, तो ये आपको जरूर लेना चाहिए। बल्कि युद्ध कोई विकल्प जीवन में नहीं है, शांति सबसे बड़ा विकल्प है। आज पूरे विश्व के पटल पे शांति की जरूरत है। हे जन्माष्टमी, आज का महापर्व, भगवान कृष्ण ऐसे आशीर्वाद दे आगे आने वाली पीढ़ी को। वर्तमान में जो राजतंत्र के नेता लोग हैं, पूरे विश्व के जो समुदाय है, वो सनातन के मानते हैं ठीक है, नहीं मानते वो भी ठीक है, वो भगवान कृष्ण से आज कुछ लें कि भगवान कृष्ण कैसे कंस के जीवन से, बाणासुर के जीवन से, मथुरा से, गोवर्धन से, द्वारका तक भी भगवान यात्रा करके सब कुछ दर्शाए हैं कि जब आपकी जो स्थिति बने उसी के अनुकूल अपने आप को जीना है और उसी के साथ अपने आप को रहना है। तो आने वाली पीढ़ी आज जन्माष्टमी से माता पिता गुरुजनों को खूब बात को माने, सेवा करें, उनके सानिध्य में रहें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अपने संस्कृति संस्कार को पालन करें। धन कमाना लक्ष्य है, ठीक है, आप खूब धन कमाइए, मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूँ, भगवान कृष्ण भी दे, बल्कि धन के साथ धर्म और धर्म के साथ भक्ति जिसके घर में, परिवार में, राष्ट्र में रहेगा, वही जन्माष्टमी का पूर्ण रूप से भक्ति का रस को पान कर पाएगा। हम सब लोग देख रहे हैं जगह जगह से भगवान का श्रृंगार आ रहा है। श्रृंगार क्या है जी? श्रृंगार आभूषण ही नहीं है, श्रृंगार मन का भी श्रृंगार है, आपके चरित्र का श्रृंगार है। हमारी युवा पीढ़ी कृष्ण से चरित्र को अध्ययन करे, आपके चरित्र जितना सुंदर होगा उतनी विचार में आपके कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए एक बड़प्पन भी मिलेगा, एक रास्ता भी मिलेगा। एक जनमानस में आप रहते हुए इस प्रकृति के, भारत के भूमि पे या भूस के भूमि पे कुछ ऐसा कर देंगे कि आने वाली पीढ़ी कृष्ण की तरह आपको याद करती रहेगी।
0: बिल्कुल,
1: ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ।
0: बहुत बढ़िया शास्त्री जी, आपने बताया कि किस तरह से कृष्ण भगवान के जीवन से हम सीख ले सकते हैं। संजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, कर्म के साथ साथ धर्म और धर्म में अंतर करना भी भगवान श्री कृष्ण से हम सीख सकते हैं, कहाँ तक सत्य है ये?
2: देखिए, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फर हेतुर्भूर्मस्ते संगोस्तु कर्मणि। भगवान कहते हैं कर्म करिए, कर्म से बड़ा क्या है? आप कर्म नहीं करोगे तो उसका फल कैसे मिलेगा आपको? अरे भाई, आपने गोधूम माने गेहूं बोया, चना बोया, बाजरा बोया, जो भी कुछ है, आप बोएंगे नहीं तो आपको फल कहाँ से मिलेगा, वो अन्न कहाँ से मिलेगा? तो कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। फल कौन देता? बोले योगक्षेमम वहम में हम। भगवान कहते हैं मैं आपके कर्म का योग क्षेम करता हूँ, आपको पुण्य प्रदान करता हूँ, आपको फलस्वरूप आपको मैं मिलता हूँ। तो कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। और कर्म करो, अगर कर्म भी आपका धर्म में नहीं है, कर्म अगर आप करते हैं और अगर धर्म में नहीं है, वो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर विनाश हो जाएगा, फिर आप आगे फलित नहीं हो सकते हैं, आपका जीवन बहुत आगे नहीं जा सकता, आपका जीवन में उन्नति नहीं हो सकती है। तो ये भगवान के उपदेश के द्वारा हम लोगों को सबको ज्ञान प्राप्त होता है। और भगवान कृष्ण ने जो किया है उसको करना नहीं चाहिए, भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसको करना चाहिए, और राम ने जो कहा है उसको नहीं करना है, राम ने जो किया है उसको करना है। तो ये दोनों बातें बड़ी उत्तम बातें हैं। तो भगवान कृष्ण ने जो कहा उसको करना चाहिए, भगवान कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना, मारे जाओगे। भगवान कृष्ण ने तो विषधर नाग के ऊपर भी अपना तांडव गति मुंडन पर नृत्य तो बनमाली और इस तरह से नृत्य किया है, तो इस आप तो नहीं कर सकते हो। तो भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसको करिए, किया है उसको मत करिए, मारे जाओगे। और भगवान कृष्ण हमारे देखो, यत्र योगे स्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूतर ध्रवानी त्रिमत्र यत्र योगेश्वरा, जहां पर योगेश्वर राजराजेश्वर कृष्ण है, विजय कहाँ है? बोले वही विजय, क्योंकि धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, कृष्णो विग्रहवान धर्म, कृष्ण साक्षात धर्म है और कर्म की मूर्ति है। तो भगवान ही सबको कर्म सिखाते, भगवान ही सबको धर्म का उपदेश करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, तो भगवान धर्म क्षेत्र में जाकर के और देखो धर्म का और काल का कर्म का निर्णय कराया महाभारत के युद्ध के माध्यम से। जिन्होंने गलत कार्य किए, गलत कर्म किए, उनको महाभारत युद्ध के माध्यम से उनको दंडित कराया। चाहे भगवान का कितना भी क्यों नहीं प्रेमी हो, लेकिन यदि उसने अधर्म का जो है साथ दिया तो उसका भी वध हुआ, उसकी भी पराजय हुई। और जिसने धर्म का आश्रय लिया, कृष्ण रूपी धर्म का आश्रय लिया, उनकी कम संख्या होने पर भी उनकी विजय हुई, उनको विजयश्री प्राप्त हुई। जी, तो भगवान कृष्ण को कभी भूले नहीं। और आज हमारे नटवर नागर नंद किशोर कन्हैया का जन्मोत्सव है, तो बड़ा धूमधाम से गाय बजाए के चक्र में पीरे पीरे कपड़ान को पहन कर और महाराज पीरो पीरो चंदन बढ़िया सो लगाए के हमारे ब्रजवासी आए। और काजर की डिब्बी तो हम ब्रजवासी लोग जेब में ही रखे, तो बढ़िया जो है ब्रज ठाकुर जी की याद में चक्र नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और खूब बढ़िया जो है मैया यशोदा जी ने चक्र झूला डाल दियो, तो महाराज झूला में भगवान आज झूल रहे, मेरे प्यारे श्याम सुंदर, मेरे प्यारे घनश्याम झूला में झूल रहे। महाराज यशोदा जयो ललना में बेदन में सुने आई, इस तरह का हम लोग सब गाते हैं ब्रजवासी लोग। तो झूला झूला में ब्रजनार रे झूले बांके बिहारी, तो साक्षात बांके बिहारी नंदन नंदन श्याम सुंदर झूला झूलते हैं। छोटे से बाल कृष्ण प्रभु को झूला झूला में,
0: कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से संजीव जी, पूरा देश इस वक्त रंगा हुआ अच्छी तरह से नजर आ रहा है। वो रंगत भी हम लगातार जीएनटी पर दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ये खास कवरेज, ये खास पेशकश लगातार जारी है, खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: देश नहीं दुनिया भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। मथुरा वृंदावन में लगा भक्तों का तांता, रंग बिरंगी लाइट्स के साथ मंदिरों में मनमोहक फूलों के साथ सजावट। जामनगर में कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आ रहे सभी लोग, जन्माष्टमी पर निकली लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा दही हांडी से समारोह में भरे उत्साह के रंग। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली NCR में झमाझम बारिश, आसमान में घने बादलों के बीच में IMD का रेड अलर्ट जारी। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें भी प्रभावित हुई।

0: गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। हमारी एक खास कवरेज जीएनटी पर लगातार जारी है। तमाम रंग जन्माष्टमी से जुड़े हुए लगातार आपके सामने रख रहे हैं खास मेहमान हमारे सहयोगी, देशभर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच पौरमिता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और माहौल को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। अभी क्या सुनाएंगी? जैसे आपने कहा था,
1: गोविंद दामोदर माधव।
0: ठीक है,
1: ठीक है।

0: बहुत ही मधुर सी आवाज है, मन करता है कि सुनते जाओ, बीच में और कुछ ना करो, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि हमारी कर्म भूमि है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, लेकिन हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए, उनके पास भी जाना एक बार बनता है। मनीषा आपके पास आ रही हूँ, मनीषा नहीं है हमारे साथ, रिदम जैन हमारे साथ बनी हुई है, रिदम के पास भी एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जरा जयपुर की तस्वीरें वो लगातार दिखा रही हैं, रिदम के पास भी जाएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। इसी बीच संजीव जी के पास एक बार फिर से आते हुए मनीषा फिर से जुड़ गई हैं। चलिए, मनीषा हमारे साथ नहीं है लेकिन संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, संजीव जी सवाल यही है कि जब भी श्री कृष्ण के जीवन की हम सीख लेने की बात करते हैं या उनके जीवन को हम देखते हैं, अब ये बताइए कि बाल स्वरूप से कौन सी शिक्षा ली जा सकती है? उनको हम बाल स्वरूप में देखें, उनको हम सखा के रूप में देखें, उनको हम कर्म भूमि देखें, कौन से स्वरूप में हम उनको देखें?
1: देखिए, भगवान का सरस स्वरूप जैसा दिव्य सुकोमल भगवान का बदनारविंद है और श्री विग्रह है, ऐसे श्री विग्रह संपन्न साक्षात श्री ठाकुर जी बालकृष्ण प्रभु की जो दिव्य दिव्य लीलाएं हैं, उन लीलाओं का अवलोकन करें, कैसी कैसी प्रभु ने दिव्य दिव्य लीलाएं की है, माखन चोरी लीलाएं की है, बहुत ही दिव्य दिव्य लीलाएं की है भगवान ने। और जो लीला को अधिकारी नहीं है उसको भी लीला का रसास्वादन मेरे ठाकुर जी ने कराया है, और जो गोपियां भगवान के लिए बिलकती थीं, उन समस्त गोपियों के मन के मनोरथ को पूर्ण किया है, क्योंकि ये गोपियां कोई साधारण नहीं थी, ये तो दंडकारण्य बन की ऋषि रूपा गोपियां हैं, जिनको मेरे बालकृष्ण प्रभु ने अपनी दिव्य लीलाओं को दर्शन दृष्टिगोचर करा करके और उन सभी को आनंदित प्रमुदित किया, अपने हाथ से उनको माखन खिलाया, उनके हाथ से खुद मेरे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ने छाछ मट्ठा पिया है, तक्रम सक्रस्य दुर्लभम, जो छाछ इंद्र को भी दुर्लभ है, वो छाछ भगवान ने नृत्य कर करके उन गोपियों से उन ग्वालिनियों से पिया है। तो भगवान के स्वरूप से, भगवान के श्री विग्रह से सरसता सरलता का हम लोग को पाठ ज्ञान मिलता है, और ठाकुर जी का नित्य चिंतन करें, और बिना भगवान के चिंतन के कुछ नहीं है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिउपासते, भगवान कहते हैं अनन्याश्रित भाव से जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझे प्रेम से भजता है, मैं उसके समस्त जो है कर्म दंडों को भुलाकर उसको योग क्षेम करता हूँ, उस पर कृपा करता हूँ, उसको कभी भी भूखा नहीं सुलाता हूँ महाराज जो है। इस तरह से मेरे ठाकुर जी का दिव्य ये वो है। और आज मेरे बाके बिहारी जी को जहाँ देखो वही आज बड़ी सुंदर, बड़े दिव्य दिव्य पूरे सुंदर सुंदर मंदिर सजे हुए हैं, और वहाँ दिव्य जो है प्रसाद की व्यवस्था है। और पहले तो ठाकुर जी का जन्मोत्सव होगा, उसमें दूध दही घी शहद शक्कर और पंचामृत से भगवान को स्नान कराया जाएगा। जो लोग पंचामृत से स्नान कराते हैं, पंचा

0: ताम, इन मंत्रों से भगवान को जो पंचामृत स्नान कराता है और इसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा के गंगा जल आदि यमुना जल से स्नान कराते हैं, भगवान को अंग प्रोक्षण करें और उसके बाद भगवान को इत्र फुलेल लगाएं, तो इत्र फुलेल लगाने से हमारे जीवन में रोग और शोक नहीं आते हैं। इसलिए भगवान को दिव्य दिव्य जो है श्रृंगार करें, चंदन लगाएं, अबीर गुलाल लगाएं, महाराज जो है बहुत बहुत दिव्य सुंदर औषधि भी चढ़ाएं भगवान पर, जैसे तुलसी दल है, बेलपत्र है, ये सब समी पत्र है, ये भगवान को चढ़ाएं, भगवान निश्चित आपके जो भी कष्ट उन कष्टों को दूर करते हैं। सब दुख दूर हुआ जब तेरा ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, और सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, तो ठाकुर जी के स्मरण मात्र से और जो है आपके समस्त कष्ट, आपके समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों, भगवान के जो चरण है वो कमल है। श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति, जो भगवान के चरणों का पाद पद्मों का ध्यान करता है उसके जीवन के समस्त पाप धुल जाते हैं।
1: और सच्चे मन से संजीव जी, अगर आप याद करते हैं अपने भगवान को तो वैसे ही वो आपकी सुन लेते हैं। लौटती हूँ संजीव जी आपके पास। इसी बीच मनीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं और देखिए श्री कृष्ण भगवान एक और सीख देते हैं कि किसी को नाराज मत कीजिए, नाराजगी किसी की भी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए मैं अपने रिपोर्टर्स को भी नाराज नहीं करना चाहती, मनीषा के पास जाना चाहती हूँ। मनीषा, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, रंगत और भी खिलती जाएगी, मंदिरों की रंगत और भी खिलेगी। इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद हैं, जरा परिसर की तस्वीरें भी हमें दिखा दीजिए, संभव है तो थोड़े श्रद्धालुओं से बातचीत भी कर लीजिए।
2: बिल्कुल शगुफ्ता, और आज का दिन बेहद खास है, तो मैं किसी से भी नाराज नहीं होंगी आज के दिन, सबको सब चीजें माफ है। तो सबसे पहले परिसर की तस्वीरें दिखा देती हूँ एक बार ही कि किस तरीके से आपको यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो नजर आ जाएगी, कि किस तरीके से हर कोई जो है अपने आराध्य को बस एक नजर देखना चाहता है। और आप देख सकते हैं कि चाहे बच्चे हो या बड़े हो, हर कोई जो है चेहरे पे एक आस्था के साथ यहाँ पर पहुंचा है। और खासतौर पर जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो आज राधा रानी बनकर आया है, कोई गोपी बनकर आया है, कोई जो है कान्हा बनकर आया है, वो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा आकर्षक जो है वो बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें किस तरीके से आपको यहाँ पर नजर आ रही है लोगों की, और वाकई में ये एक आस्था है अपने प्रभु के प्रति जो लोगों की यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अच्छा, पीछे की तरफ मैं तस्वीरें दिखाऊंगी कि वहाँ पर जो भजन मंडली है, आप उनको देखो, वो लगातार पिछले कई घंटों से इसी तरीके से जो है वो भजन गा रहे, लेकिन आस्था सर्वोपरि है। और आप देख सकते हैं कि थकावट इनके चेहरे पर आपको नजर नहीं आएगी, हर तरफ जो है इसी तरीके से आपको भजन कीर्तन की आवाज जो है वो सुनाई देगी, और ये भजन मंडली जो है लगातार भगवान श्री कृष्ण के भजनों को जो है गुनगुना रही है, और श्रद्धालु के साथ सुर से सुर मिलाते हुए जो है आपको नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें कितनी खूबसूरत निकल कर आने वाली है, और खास तौर पर जो लड़कियां हैं आज, जितनी भी महिलाएं हैं, वो खास तौर पर इस तरीके से सच के यहाँ पर आई हुई। तो एक राधा रानी जो मेरे को मिली है, मैं सीधा इनके पास जाती हूँ और इन्हीं से बात करती हूँ। हरे कृष्ण, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, किसने आपको तैयार किया है, क्या आप भी बहुत खूब,
3: थैंक यू, आप भी,
2: कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर?
3: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
2: चेहरे पे मुस्कुराहट बता रही है कि किस तरीके से लोग जो है वो वाकई में खुश हो रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं आपको हर एक लड़की जो है गोपी की तरह ही सजी हुई जो है आज नजर आने वाली है, क्योंकि आज वाकई में इनका दिन है, और चारों तरफ यही भक्ति जो है आपको शगुफ्ता नजर आने वाली है। काना बहुत छोटे छोटे दिखे थे, अभी वो चले गए, बच्चे है, थक रहे हैं, तो मैं बोला उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से यहाँ मंडली की तरफ लेके चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अलग एक रौनक जो है वो बनी हुई है। हर कोई जो यहाँ पे है वो इन भजन के साथ जो है आपको लीन नजर आएगा नृत्य करते हुए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर बच्चे जो है वो नजर आने वाले, और हर कोई जो है बेहद ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर मंदिर के अंदर आया है।
1: जी मनीषा, मनीषा बिल्कुल बहुत सुंदर तस्वीरें हैं। लौटती हूँ आपके पास, वक्त थोड़ा सा कम है मनीषा, लौटूंगी आपके पास। शास्त्री जी, आपसे जो हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रही थी ना, उसी बात को आगे बढ़ाती हूँ। उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि आज की पीढ़ी जिसको रास्ता नहीं दिख रहा, श्री कृष्ण कैसे रास्ता दिखाएंगे उनको?
4: भगवान कृष्ण जो रास्ता दिखाए, मैं कुंती के जीवन से जोड़ लेता हूँ। बुआ के जीवन में जब जब जो स्थिति बनी है वहाँ सहयोग प्रदान किए हैं, द्रौपदी के लिए भी एक संकल्पित होके भाई का जो रूप है, भाई का स्वरूप है, भाई का जो कर्तव्य निभा है। आज के युवा पीढ़ी भगवान कृष्ण से परिवार के संबंध को समझे, वो परिवार में बड़ा विघटन हो रहा है, ताऊ का, चाचे का, मित्र का, बहन का, मासी का, ये सब संबंध भगवान कृष्ण के द्वारा जाना जा सकता है। मैं ही कहना चाहता हूँ कि आज की जन्माष्टमी जनमानस के लिए एक संबंध को ऐसा प्रकट कर दे या प्रेम बढ़ा दे कि जो समाज बिखर रहा है, परिवार बिखर रहा है, वो कृष्ण से युति लेकर के उसको आप संभाल लीजिए, सब संपत्ति आपके पास रहेगा, असारे संपदा की दुनिया में आप मालिक बन जाएंगे। यही भगवान कृष्ण से आज सीखते हैं। आज जन्माष्टमी में बाबा नंद के, माँ यशोदा के जो संकल्प है, जो जप तप है, जिसके माध्यम से हम लोग भगवान के उत्सव मना रहे हैं, उसी तरह अपने माता पिता की भी उत्सव के साथ आप एक संबंध बना के रखें। जी
1: बिल्कुल। एक और चीज आई एम श्योर शास्त्री जी आप अग्री करेंगे कि धैर्य सिखाते हैं श्री कृष्ण आपके जीवन में, कि आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। अगर रिश्तों में किसी वजह से खटास आ गई है तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं और इसी पथ पर आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये कवरेज और महा कवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, लौटते हैं।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? क्या आप भगवान कृष्ण की भक्ति को मित्रता में बदलना चाहते हैं? कैसे बने भगवान कृष्ण आपके मित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: देश ने दुनिया भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, मथुरा वृंदावन में लगा भक्तों का तांता, रंग बिरंगी लाइट्स के साथ मंदिरों में मनमोहक फूलों की सजावट। दिल्ली के बिरला मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना, जामनगर में कान्हा की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे लोग, निकाली लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली NCR में झमाझम बारिश, खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित, IMD की ओर से रेड अलर्ट। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश भर में दही हांडी की रौनक, मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां तैयार, कल दिखेंगे उत्सव के रंग।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।

0: भर में उत्सव का माहौल है और उसकी तमाम रौनक आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। हमारी नॉन स्टॉप महा कवरेज लगातार जारी है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो अलग अलग जगह से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे जिनसे हम चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ भजन गायक भी हमारे साथ होंगे। पूरा देश इस वक्त भगवान कृष्ण के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मंदिरों से लेकर घरों तक जन्मोत्सव की धूम नजर आ रही है। मथुरा से लेकर दिल्ली तक और काशी से लेकर मुंबई तक हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। आज ही मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, यानी कि अब से बस कुछ ही घंटों बाद नंद के लाल प्रकट होंगे, यशोदा के लल्ला, राधा के माधव, गोपियों के मुरली मनोहर जन्म लेने वाले हैं और इस पल का लाखों श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार है। जन्मोत्सव के लिए देशभर के मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कहीं भक्त नाचते गाते कान्हा की भक्ति में लीन है तो कहीं मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन हो रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खुशी में मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु अपने लड्डू गोपाल को नए वस्त्र और आभूषण पहनाकर उनका श्रृंगार कर रहे हैं। तो अब से कुछ ही घंटों बाद आधी रात को कान्हा का जन्म होगा और इस दौरान मंदिर में कान्हा जी का भव्य अभिषेक होगा और कान्हा का भव्य दिव्य श्रृंगार भी किया जाएगा। तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन सीधी तस्वीरों के लिए चलेंगे। मेरी सहयोगी मनीषा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनीषा, तस्वीरें दिखाइए, रौनक दिखाइए, कैसी है, किस तरीके से भक्त इस वक्त कृष्ण भक्ति में लीन है और आपकी तो गोद में भी हम एक छोटे से कान्हा को देख रहे हैं।
1: शुरुआत ही वही से करना चाहूंगी कि आज इन्हीं का ही दिन है और यहाँ पर आपको इसी तरीके का खजाना जो है वो मिलने वाला है कि किस तरीके से जो नन्हे बच्चे हैं, चाहे फिर वो लड़कियों की बात हो या लड़कों की बात हो, हर कोई जो है इसी तरीके से सज कर आया है। तो आप एक लड्डू गोपाल मेरे गोदी में देख ही सकते हैं कि वो कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं रुक नहीं पाई खुद को नवजोत हाथ में इसको गोदी में लेने से। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे को जो है वो सजाया गया है, लेकिन मंदिर के अंदर जो है कुछ इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। हर तरफ आपको जो है राधा रानी और जो है नन्हे कृष्ण जो है वो नजर आने वाले। तो आप देख सकते हैं कि आज जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस मंदिर में वो कान्हा जी है और कान्हा जी की ये बाल स्वरूप है जो इसी तरीके से सज कर आए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सादगी के साथ ये रेडी होकर यहाँ पर आई है और ये खूबसूरती है इस पूरे मंदिर परिसर में, इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है। और अच्छा, ये तो मैं बात बच्चों की कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं बात यहाँ पर बड़े महिलाओं की करूँ तो वो भी गोपियों का रूप लेकर जो है यहाँ पर मंदिर में आकर पहुंची है। तो आप देख सकते हैं कि आज का दिन जो है वो वैसे भी कितना ज्यादा खास जो है वो नजर आ रहा है। मंदिर की एक बार तस्वीरें दिखा देती हूँ, रौनक दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मंदिर में रौनक जो है वो आपको नजर आने वाली है। यहाँ पर व्यवस्था बेहद ही खूबसूरती के साथ की गई है, लोगों को किसी तरीके की परेशानी जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही और कुछ इस तरीके का रूप जो है आपको नजर आएगा। अधिकतम ये तस्वीरें जो है आपको मेले से नजर आती है कि जिस तरीके से पिता जो होते हैं वो अपने बच्चे को जो है कंधे पे लेकर जो है वो घुमाते हैं, लेकिन आज एक तस्वीर है ये भी नजर आएगी कि किस तरीके से जो है बच्चे को इस तरीके से दर्शन करवाया जा रहा है। बच्चों का भी इम्पोर्टेंट है दर्शन करना, भीड़ है लेकिन आप फिर भी यहाँ पर पहुंचे उनको लेकर,
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: किस तरीके से बच्चे जो है आज आपको नजर आने वाले हैं और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बच्चे मेरे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो आज इसी तरीके की रौनक जो है वो यहाँ से इस मंदिर से नजर आ रही है।
0: बिल्कुल मनीषा, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए एक बार जल्दी से श्वेता झा का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद है। श्वेता, देखिए बहुत सारे कलर्स भी आप वहां पर देख रही होंगी क्योंकि केवल आसपास से ही नहीं बल्कि देश से लोग यहां पर पहुंचते हैं आज के दिन दर्शन करने के लिए, वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए। तो कैसे रंग वहां पर बिखरे हुए हैं? और दूसरा एक और बहुत अहम सवाल, क्योंकि जहां आप मौजूद हैं वहां पर अब क्या कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी शुरू हो चुका है जो पीछे स्टेज है?
1: बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कृष्ण जन्म स्थली जहाँ पर हम मौजूद हैं, सबसे पहले तो आपको बता दे चुकी यहाँ पर 5,253 भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो पूरे मंदिर परिसर को देखिए किस तरह से भव्य लाइटिंग से सजाया गया है। झालरों से पूरे मंदिर परिसर को सजा दिया गया है। आज सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी आके दर्शन करके गए हैं और तमाम मंदिर परिसर आप देख सकते हैं कि कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर जगमगा रहा है। जाहिर सी बात है आज सिर्फ मथुरा की बात नहीं है, पूरे ब्रजमंडल में ऐसा ही रौनक, ऐसी ही छटा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर जो उनका सबसे प्यारा सबसे दुलारा है यानी कि बाल गोपाल, उनका जन्म होने वाला है। आपने सही कहा कि न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर अब जितने भी लोग आए हैं वो श्रद्धालु अपने मन में श्री कृष्ण के लिए एक ही भाव लेकर के आए हैं। किसी के लिए वो सखा जरूर हो सकते हैं, किसी के लिए वो प्रेरणादायक एक स्रोत हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के वो तमाम रूप पुरुषोत्तम उनको इसलिए कहा गया है कि जितने भी गुण हैं सभी 16 कलाओं के निपुण उनको कहा गया है, इसलिए वो पुरुषोत्तम है, तो तमाम गुण उनके हैं, तो इसलिए लोग कोई उन्हें ठाकुर जी या फिर बालक के रूप में भी दुलार करता है। लेकिन यहाँ पर जब आपको मैं तस्वीरें अब आपको दिखाती हूँ, देखिए लोग जो है दूर दूर से आकर, हर कोई मंदिर ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन आंगन में क्या नजारा है, एक बार राधे राधे।
3: हाँ आइए आइए, राधे राधे, बोलो कृष्ण भगवान की प्रयागराज, प्रयागराज से,
1: प्रयाग से आए हैं। वो तो खुद वहाँ पे संगम नगरी है, वो खुद एक धार्मिक नगरी है और वहाँ से आप लोग आए हैं, खुद वो एक धार्मिक नगरी है, वहाँ से आप लोग आए हैं। यहाँ पर जब पहुँचते हैं कृष्ण की भूमि में, कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में भी श्री कृष्ण है, उनके रज
3: ब्रज में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है कि हम 5000 साल पहले पहुंच चुके हैं। यहाँ की मिट्टी में खुशबू, यहाँ की हवा में वो, और पहले की सरकार से अब की सरकार में जो शुद्धता जो सफाई है बहुत अच्छी है। हम लोग 2014 में भी आए थे, 2026 में भी आए, बहुत अंतर है। एक भी प्लास्टिक नहीं दिखा रोड से लेके यहाँ तक, ट्रैफिक पुलिस सबको मैनेज करके रखे है। 40 लाख जनता को मैनेज करना सबके बस की बात नहीं,
0: बिल्कुल
4: एकदम सजी हुई मथुरा नगरी, इतना मन गदगद हो रहा है कि क्या बताएं।
3: जैसी मथुरा हमारे पूर्वजों ने सोच रखी थी वैसी मथुरा हो गई,
1: जैसी मथुरा जैसे गुड न्यूज टुडे दिखा रहा है ना नवजोत, कि द्वापर युग के जन्मोत्सव को हम दिखा रहे हैं, गुड न्यूज टुडे दिखा रहा है। दरअसल यहाँ पर तमाम लोग वही महसूस कर रहे हैं, उस द्वापर युग के जन्मदिन को, उस महोत्सव को आज सभी मिलकर यहाँ पर मना रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसका कारण भी है ना, क्योंकि देखिए इस बार के जो ग्रह नक्षत्र हैं या फिर दशाएं हैं वो बिल्कुल उसी तरीके की बनी हुई है। तो श्वेता हमारे साथ हैं, हमारे साथ इस वक्त मनीषा लड्डा, दोनों जुड़ी हुई मेरी सहयोगी और दोनों अलग अलग जगह से रौनक दिखा रही है। देखिए जब हम बात श्री कृष्ण की करते हैं ना तो बिना भजनों के बात पूरी नहीं होती। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त पुष्कर जी हैं, और पुष्कर जी आप ही से सुनना चाहेंगे जरा श्री कृष्ण आज, क्योंकि तमाम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो दो लाइनें

0: तो चलिए भजन भी साथ ही साथ रहेगा, लेकिन चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में आचार्य डीपी शास्त्री और संजीव अग्निहोत्री जी भी मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी, क्योंकि आज हम कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये द्वापर युग वाला जन्मोत्सव है, क्योंकि गृह दशाएं बिल्कुल वैसी ही बन रही हैं। कैसी रौनक है वो तो हमारे तमाम सहयोगी हमें दिखाई रहे हैं, लेकिन इस बार का जन्मोत्सव आपको क्या लगता है किन मायनों में बहुत खास हो जाता है?
1: देखिए, नक्षत्र और तिथि दोनों मिले तो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए सबसे खास है कि आज नक्षत्र तिथि का मिलन है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो बरसात हुई है, आज जो आप इंद्र के आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद, ऋषियों को जब तप, जो हम द्वापर से सुनते आ रहे हैं, आज सब आपको देखने को मिल रहा है। और कृष्ण के नाम में ऐसी मिठास है, ऐसा माने मंत्रमुग्ध करने की क्षमता है, जो जन्म उत्सव पे या भगवान के प्रकट उत्सव पे हम लोग गुणगान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। कृष्ण जब जब संसार में, देखिए, राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तू अंछा कल प्रद्युम हारणी सब बाधा। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, बल्कि कृष्ण 16 कला से अवतरित है
0: जी।
1: और कृष्ण के नीति और कृष्ण के गीता आज जनमानस को चाहिए, और आज की युवा पीढ़ी जो है कृष्ण शिक्षा है इस महाअष्टमी पे कि शांति क्या है और शांति कैसे प्राप्त।
0: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार जल्दी से संजीव अग्निहोत्री जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा सर, यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज के युग में कृष्ण की शिक्षाएं बहुत अहम हो जाती हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, देखो, कर्षयति जीवानाम चित्तम वित्तम नवनीतादिकम हरतीति कृष्ण। जो जीव के चित्त को चुरा ले, मन को चुरा ले, धन को चुरा ले, सब कुछ चुरा ले, वो कृष्ण है। इसलिए नाम है कृष्ण, माने कर्षण करना, आकर्षण करना। तो जो कृष्ण को एक बार देखता है, वो गोपी हो चाहे ग्वाल हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो सब खिंचा चलाता भगवान कृष्ण के प्रेम में। आज कृष्ण की ऐसी महिमा बिखरी हुई है संसार में, आज बड़ा दिव्य सुंदर पावन सुअवसर है। और माँ यशोदा ने भगवान को बहुत दुलार किया, बहुत लालन पालन किया, झूले और झूला उत्सव किया, झूला भी डाला, क्योंकि बालक का जब जन्म होता है तो माताएं बहनें गीत गाने को आती हैं, और जब माताएं बहनें गीत गाने आती तो चक्र गीत गाने में लग जाती है, बच्चे को भूल जाती है बच्चे के साथ क्या हो रहा है। तो पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। माँ आज अपने लालन को, अपने गोपाल जी को पालने में झुला रही है, और समस्त सखियां बार बार गोपाल को देखती है और कहती मैया ने हम झूला झुला लें दे, और वह रस्सी को पकड़ के बड़े प्रेम से झूला में ठाकुर जी को झूला। तो भैया ऐसो प्रेम से झूला झुलाओ अपने अपने घर में, सबने गोपाल जी पधराए रखे हैं। और गोपाल जी का देखो, अब आज रात्रि आ रही है नवजोत,
0: बिल्कुल
2: तो आज रात्रि में 12 बजे ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान होगा, और भगवान को स्नान कराने के बाद में वित्र आदि लगाया जाएगा, चंदन लगाया जाएगा।
0: क्या रहेगा, लौटूंगी आपके पास, पूछूंगी। एक बार जल्दी से नितिशा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, क्योंकि देखिए आप सब लोग हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी भी हैं साथ ही साथ, और हमें यहाँ पर पुष्कर जी से भजन भी सुनने, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप छोटा छोटा जल्दी से अपनी बात रखते जाइए। नितिशा जी आपके पास आते हुए, अब देखिए समय बहुत कम रह गया, तैयारियां हो गई हैं, पहले तो आपकी अपनी तैयारी बताइए कि कहाँ व्यस्त थी आपकी तैयारी कैसी, और दूसरा ये कि जब हम शिक्षाओं की बात करते हैं, एक चीज बताइए, आज की तारीख में जेन ज़ी को ये मंत्र ले लेना चाहिए इस जन्माष्टमी। चलो कुछ ऑडियो दिक्कत है, नितिशा जी लौटूंगी आपके पास। एक बार श्वेता जहां अगर हमारे साथ मौजूद हैं, श्वेता आपके पास आते हुए तस्वीरें दिखाइए, रौनक दिखाइए जन्मस्थली की, क्योंकि और बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि अभी आप जिन लोगों से बात कर रही थी वो ये कह रही थी कि मथुरा आज ऐसा लग रहा है कि हम एकदम द्वापर युग में आ गए। आप जब यहाँ पर पहुंची होंगी, आपने भी देखा होगा, क्योंकि केवल जन्मस्थली नहीं बल्कि पूरे शहर को एक तरीके से सजाया गया है, हर जगह पर कहीं भंडारे हैं, कहीं जन्मोत्सव की तैयारियां हो रही, अलग अलग जगहों पर लीलाओं का मंचन भी हो रहा होगा।
3: बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नवजोत कि यहाँ पर न सिर्फ यहाँ पर, आपने सही कहा कि जैसे ही आप मथुरा एंटर करेंगे, अलग अलग जगहों पर यहाँ पर मंचन हो रहा है, भंडारे वहाँ पर लगे हुए थे और लोग भंडारे जब आप वहाँ पर पहुंचेंगे ना तो भंडारों में कोई कृष्ण बनकर वहाँ पर खड़ा है, कोई राधा रानी बनकर खड़ा है और ब्रज के कण कण में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कहते हैं ना कि इसके कण कण में हर रज में श्री कृष्ण की लीलाएं यहाँ पर छुपी हुई है। तो आपको वो तमाम चीजें, मुझे एक बलून वाला दिखा, वो बलून वाला जो था वो भी यहाँ पर हम आपको बता दें कि उसमें भी सिर्फ श्री कृष्ण के जितने चेहरे हो सकते हैं, श्री कृष्ण के उनके बाल रूप के, उनके रणनीतिकार के रूप में तरह तरह के जो बलून थे उसमें सिर्फ श्री कृष्ण आपको दिखाई देंगे। उसी तरह से पूरे ब्रजमंडल में इस तरह की जो लाइटिंग आप देख पा रही हैं, इस तरह की लाइटिंग वहां पर भी की गई थी और अलग अलग तरह के रंगीन कपड़ों से भी वहां पर झांकियां बनाई गई थी और श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अलग अलग जगहों पर हो रही थी। तो श्री कृष्ण आपको बता दें जिन्हें बचपन में अपनी नटखट लीलाओं से वृंदावन को आनंद से भर दिया, वही कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की है, उन्हीं कृष्ण को अधर्म के प्रति कंस का जिन्होंने अंत किया था, आज उनका जन्मोत्सव जब ये पूरा ब्रजमंडल मना रहा है तो आज की यहाँ पर रौनक यहाँ की छटा देखने लायक है। अपने कैमरामैन मैं संजय से कहूँ कि एक बार पूरा ये मंदिर परिसर ये दिखा दे जल्दी से। यहाँ पर अब तमाम लोग जो है, जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है जो मैं कहना चाहूंगी कि कहीं भी अव्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी, हर जगह पुलिस के प्रहरी यहाँ पर मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा काम किया गया है और किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ हो रही है। आप लोगों को किसी
4: मैं हमको किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं आई है क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट्स इतनी अच्छी तरीके से की गई है कि कौन कब कहाँ से आएगा कैसे जाएगा, उस जो जो लोग श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनकी सुविधा का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है।
3: एक आखिरी सवाल जो वहाँ स्टूडियो में बात हो रही थी जेन जी को लेकर, श्री कृष्ण को जेन जी से क्या सीखना चाहिए, श्री कृष्ण से क्या सीखे जेन जी?
4: जेन जी श्री कृष्ण से मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज है जो सीखने लायक नहीं है। श्री कृष्ण मेरे लिए तो एक आइडल है, उनकी हर एक चीज, वो जो टीचिंग समय देते हैं, चाहे हम महाभारत पढ़ें चाहे गीता पढ़ें, कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जो अंदर से हमें फील होता है स्ट्रगल्स और त्याग की भावना जो है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि
3: आपके हर परेशानी का समाधान
4: बिल्कुल
0: बिल्कुल और सबसे बड़ी परेशानियां एंजाइटी और साथ ही साथ आजकल थोड़े लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं उसके लिए। चलिए श्वेता लौटूंगी आपके पास, एक बार जल्दी से मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नोएडा से। मनीष नोएडा के इस्कॉन में है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और तस्वीरें दिखाते चलिए जरा वहां।
5: तस्वीरें आप देखते जाइए, तस्वीरें देखिए प्यारे राधा रानी की, तस्वीरें देखिए कृष्ण की और तस्वीरें देखिए उनके भक्तों की, उनके सखियों की, उनके गोपियों की, कितना बन सवर कर आज वो मंदिर पहुंचे हैं और इंतजार अब सिर्फ उस दिन का कि कब वो पल आएगा जब 12 बजेंगे और लड्डू गोपाल प्रकट होंगे अपने नए अवतार में। लेकिन जो समा इस वक्त यहाँ पर इस्कॉन नोएडा में बनने लगा है वो अपने आप में अद्भुत है, चमत्कारिक है, अलौकिक है। तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पहुंचे हैं वो डांस कर रहे हैं, धुन सिर्फ एक बज रही है, हरे रामा हरे कृष्णा, और उसी धुन पर लगातार इन श्रद्धालुओं के, इन भक्तों के, इन गोपियों के पैर थिरक रहे हैं। इनसे हम बात भी करेंगे लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि इस बार का जो जन्माष्टमी है इस्कॉन नोएडा में उसे बेहद खास बनाया गया है, खास इस तरीके से भी कि इस बार जो भी वस्त्र आप देख रहे हैं राधा कृष्ण ने पहन रखा है उन्हें खास तौर पर ब्रिज के वृंदावन के कारीगरों ने, वहाँ के भक्तों ने काफी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद, आस्था के बाद, श्रद्धा के बाद, महीनों बाद उसे तैयार किया है। इसलिए भी आप फूल देख रहे हैं दरबार में लगे हुए, वो सब के सब आए हैं। 500 से ज्यादा व्यंजन का भोग आज ये लगाया जाएगा और इनमें दुनिया भर के व्यंजन होंगे, सभी शाकाहारी बिना प्याज बिना के सबको यही परिसी प्रांगण में तैयार किया गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल मनीष लौटूंगी आपके पास, एक बार जल्दी से नितिशा जी का रुख करते हुए। नितिशा जी व्यंजनों की बात यहाँ पर हुई है, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है। हालांकि हालांकि इस दिन सभी लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन देखिए श्री कृष्ण के लिए अलग अलग तरह के व्यंजन तैयार हो रहे हैं।
6: जी जी, तो मैंने भी नवजोत जी तैयारी कर ली है, पंजीरी बन चुकी है, खीर बन चुकी है और जितना मैं तैयारी कर सकती थी व्यंजनों की वो कर ली है और आई होप सभी माताओं बहनों ने अपने लल्ला की जन्म दिवस को मनाने की वो त्योहार की जो तैयारी है वो कर चुके होंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरा सबसे फेवरेट दिन है, साल का सबसे ऐसा दिन जिस दिन मेरा मन बड़ा प्रसन्नचित रहता है। और नवजोत जी आपको देख लेती हूँ तो वैसे भी प्रसन्न हो जाती हूँ, और जीएनटी तो वैसे भी हमारे दिलों की धड़कन बन चुका है घर घर की, क्योंकि हर माता हर बहन जीएनटी जरूर देखती है। तो सभी लोगों ने तैयारी अच्छे से करनी है, और हर जो भोग बनाया है जो भी आपने श्रद्धा से बनाया है उसमें ठाकुर जी की सबसे प्रिया तुलसी जी को डाल देना है, और तुलसी जी को कह देना है कुछ अच्छा ना बना हो, ठाकुर जी को अगर कुछ पसंद ना आए तो हे माँ तुलसी उनको आप बहुत प्रिय हो, उनके स्वाद को आप पसंद हो, इसलिए आप अपना स्वाद उसमें दे दीजिएगा, फिर ठाकुर जी को भोग लगाइए, सभी चीजें प्रसन्न करेंगे ठाकुर जी। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और मैं यही कहना चाहूंगी जेंजी को भी आज के दिन ठाकुर जी से यही सीखना चाहिए कि अवस्था चाहे कितनी भी बुरी हो, चाहे जेल में जन्म हो, चाहे अंधकार का समय हो, हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी, हमें अपने परमात्मा से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, और नकारात्मक चीजों को ना देखकर हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए कि ठीक है मैं इस क्षण को चेंज तो नहीं कर सकता जो भी मेरे साथ है इस समय, लेकिन आने वाला समय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन हमारे जीवन में लेके आएगा, क्योंकि ठाकुर जी ने गीता में भी यही कहा कि जो भी है वो क्षण मंगूर है, अगर दुख है तो वो भी 2 मिनट के बाद समाप्त हो जाएगा, और सुख है तो वो भी 2 मिनट के बाद समाप्त हो जाएगा, इसलिए न्यूट्रल रहना चाहिए,
0: न्यूट्रल रहना है। वैसे भी गुड न्यूज टुडे पर है तो खुशी रहे तो अच्छा है, हमारी तो टैगलाइन यही है कि हाफ ग्लास फुल आपको हमेशा देखना चाहिए। और देखिए केवल जन्माष्टमी उत्सव नहीं बल्कि हमारे देश के जितने भी तीज त्योहार हैं, हर त्योहार में यही संदेश छिपा है कि पॉजिटिव रहिए और सकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैला करिए। और आज का दिन तो वैसे ही पॉजिटिविटी का है, बहुत कुछ सीख सकते हैं हम श्री कृष्ण से, और देखिए भक्ति में कैसे लीन है भक्त। एक बार सीधा रुख कर लेते हैं, मनीषा लड्डा मेरे साथ मौजूद है, मनीषा तस्वीरें दिखाइए वहां से कैसे राधा रानी श्री कृष्ण के रूप में पहुंच रहे हैं, नन्हे बच्चे भी और अपने माता पिता के साथ।
3: तस्वीरें में आपको दिखा दूँ कि कितनी बेहद खूबसूरत तस्वीरें नवजोत जो है इस वक्त निकल कर आ रही है इस वक्त मंदिर के प्रांगण से, आप देख सकते हैं कि पीछे तो आपको मंडली दिख जाएगी जो वाकई में लीन हो चुकी है, पूरे भक्ति का जो माहौल है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा, तो हर कोई जो है यहाँ पर जितने भी जो भजन कीर्तन लगातार यहाँ पर सुनाई जा रहे हैं उसमें भक्त जो है वो लीन नजर आ रहे हैं, और पीछे एक छुट होकर जो है आपको नाचते हुए झूमते हुए जो है वो नजर आएंगे। लेकिन बात अगर मैं नन्हे काना की करूँ तो आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखी जाएगा कि किस तरीके से आपको भक्त जो है यहाँ पर हर कोई माता पिता अपने बच्चों को कुछ इसी तरीके से जो है रेडी करके यहाँ पर लेकर आया। अच्छा अभी मेरे को आसपास तो बिल्कुल भी यहाँ पर काना नजर नहीं आ रहे, लेकिन बारी बारी करके अगर मैं बोलूंगी तो इसी तरीके से नजर आएंगे। ये लीजिए कैमरे में तस्वीरें दिखाई रही हूँ आपको, नन्हे गोपाल जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे, और ये जो दृश्य है आपको हर एक बच्चे में ना आपको कान्हा की जो तस्वीर है वो उनकी झलक जो है वो नजर आएगी कि किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ उनका मासूम सा चेहरा दिखेगा, जिस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल हमेशा से रहे भी है बहुत ही ज्यादा नटखट लेकिन दिल के एकदम जो मुलायम होते हैं ना, जो बहुत प्यारे होते हैं उस तरीके से, तो हर एक बच्चे के चेहरे पर आपको वो नटखटपन जो है वो जरूर नजर आएगा। तो तस्वीरें देख सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, मैं लौटूंगी भजन मंडली वहां पर है, आप कोशिश कीजिएगा उनसे भी बात करने की, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में पुष्कर जी मौजूद है, तो एक भजन पुष्कर जी से सुन लेते हैं। पुष्कर जी

0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। शास्त्री जी, अब देखिए चर्चाएं श्री कृष्ण से सीखने की होती हैं। एक पॉइंट आज की तारीख में, क्योंकि हम हमेशा भगवान के पास जाते हैं, हम भगवान से कुछ मांग लेते हैं, लेकिन कहा जाता है कि भगवान से मांगने की बजाय अगर आप भगवान को मांग ले तो शायद आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। कृष्ण जी से तो हम बहुत सारी पॉजिटिव चीजें सीख सकते हैं, सबसे अहम क्या बात है?
1: देखिए, एक मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान का महामंत्र है, इसको जप तप करना चाहिए। किसी ऐसी वस्तु में आसक्ति ना लगाएं कि दुख का कारण जीवन में बने, ये सबसे बड़ा भगवान से सीखने का है। भगवान आसक्ति नहीं लगाए, भगवान त्याग की एक प्रथा, त्याग के नियम, और जीवन में आगे चलते हुए क्या आपको ग्रहण करना और क्या आपको छोड़ना है। आप गृहस्थ में हैं, अपने पत्नी से संतुष्ट रहें, अपने जीवन से संतुष्ट रहें, अपना धन एक भगवान के भक्ति मार्ग पे जितना आपका हो सके वो आप यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं
0: जी।
1: बल्कि घर परिवार को देखना कृष्ण से आप सीखे, क्योंकि द्वारिका में भगवान घर बना करके और पूरा अपने मित्र मंडली को द्वारिका में बसा करके ये सिद्ध कर दिए और ये बता दिए कि परिवार की संयुक्ति और परिवार का एक संकल्प के साथ बहुत बड़ा योग है।
0: बिल्कुल,
1: ये भगवान किससे सीखे?
0: फैमिली फर्स्ट, फैमिली इम्पोर्टेंट का संदेश यहाँ से ले सकते हैं। संजीव जी, आपके पास आना चाहूंगी। कहते हैं कि कृष्ण जी से बड़ा, या हम कहें कि अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड बनाना है तो उस बेस्ट फ्रेंड को किस तरीके से अपने जीवन में लेकर आना है, एक बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन भी हम कृष्ण जी से सीख सकते हैं, क्योंकि दोस्ती कैसी होनी चाहिए वो भी कृष्ण जी बताते हैं।
2: बिल्कुल, देखिए भगवान कृष्ण के जो नित्य सखा हैं वो सदा सर्वदा यहाँ भी रहते हैं, गोलोक धाम में भी रहते हैं, वृंदावन धाम में रहते हैं। तो ठाकुर जी बिना सखाओं के कभी कहीं गए नहीं। अगर उनको माखन चोरी लीला भी करनी पड़ी तो अपने सखाओं को लेकर गए हैं साहब, और सखाओं के बिना उन्होंने चोरी नहीं की, और जो भी आनंद किया जीवन में अपने मित्र मंडली के साथ किया। गिरिराज पर्वत जी को जब धारण किया तो भी सखा मित्र मंडली साथ में थी। तो ऐसी कोई भगवान की कथा नहीं जहाँ ठाकुर जी के नित्य सखा न गए हों, और सखाओं के माध्यम से। तो कृष्ण जैसा मित्र कहाँ संसार में हो सकता है। कृष्ण सुदामा की जो मित्रता है बड़ी अविरल है, बड़ी अनिवर्चनीय, बड़ी दिव्य है, उसको कोई समझ नहीं पाया। लेकिन वो वास्तविक मित्रता वही है जो भगवान ने किस तरह से अपने मित्र सुदामा जी के चरणों को धोया, अपने आंखों के जल से, नेत्र जल से, और उनके पाद संवाहनाद भी उनके चरणों को धोया है।
0: बिल्कुल,
2: तो ऐसा मित्र संसार में नहीं
0: देखने को मिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगे संजीव जी। तो मनीष, मनीषा, श्वेता झा, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, मथुरा जन्मभूमि से लेकर दिल्ली, नोएडा और पूरे देश में किस तरह की रौनक है, और आज के दिन हम श्री कृष्ण से क्या सीख सकते हैं, यही है उत्सव की रौनक, यही है उत्सव का रंग। गुड न्यूज टुडे पर नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है, और हमारे साथ पुष्कर जी लगातार बने भी हुए हैं।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: देश ही नहीं दुनिया भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, मथुरा और वृंदावन में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, रंग बिरंगी लाइट्स के साथ मंदिर में मनमोहक फूलों का श्रृंगार। दिल्ली के बिरला मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना, जामनगर में कान्हा की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे लोग, निकाली लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित, आईएमडी की ओर से रेड अलर्ट। दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र सहित देश भर में दही हांडी की रौनक, मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोली तैयार, कल दिखेंगे उत्सव के रंग।

0: जय कन्हैया लाल की। पूरे देश में बस इंतजार हो रहा है कृष्ण के जन्मोत्सव का और उसकी रौनक आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। हमारी नॉनस्टॉप कवरेज लगातार जारी। मेरे तमाम सहयोगियों को इस वक्त आप देख सकते हैं, श्वेता झा जन्मभूमि से हमारे साथ मौजूद है, मनीष हमारे साथ इस वक्त नोएडा इस्कॉन से है, मनीषा लड्डा हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से मौजूद है। लेकिन सबसे पहले श्वेता आपका रुख करते हैं, दिखाइए तस्वीरें, आपके साथ बहुत से लोग हैं, कौन है ये, कौन सी टोली है, क्या कुछ परफॉर्मेंस करके आए हैं श्वेता?
1: बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इस ग्रुप के बारे में मैं बता दूं, ये ग्रुप लखनऊ से आया है और वहाँ का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है वो
2: डॉक्टर श्रेया संगीत संस्थान लखनऊ, हमारा सुशांत गोल्ड सिटी में हमारी एकेडमी है जहाँ से ये सारे स्टूडेंट्स हैं।
1: और अभी अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस
2: कथक और भरतनाट्यम और फोक शैली में हम लोगों ने कृष्णा अवतारम पूरी नृत्य नाटिका प्रस्तुत की थी
1: और उसमें हमने ये भी देखा कि रास लीला खास
2: महारास हम लोगों ने किया था और उनका बाल काल जन्म और कालिया नर्तन और फिर महारास हम लोगों ने किया था।
1: लगभग कितने लोगों की आप लोगों की ये टोली है, ग्रुप कितना बड़ा है?
2: हमारे इस समय 10 बच्चे हैं और उधर मंदिर दर्शन के लिए सब लोग आए हुए हैं।
1: लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों को इस तरह से देखकर मुझे लगता है जो कोई भी देख रहा है हर कोई रुक के आपके साथ फोटो लेना चाहता है। आपके हाथ में बाल गोपाल है और आप लोग इस तरह से गोपियों के रूप में नजर आ रही हैं।
2: हम लोग एक्चुअली त्योहार को और कान्हा के जन्म को केवल त्योहार की तरह नहीं मनाते, हम लोग उसमें बिल्कुल डूब जाते हैं। अब यहाँ से जाकर के हम लोग पूरा छठी तक हम लोगों का ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहेगा।
1: यहाँ से आप जाएंगे लखनऊ?
2: हाँ, लखनऊ कल हम वापस जाएंगे और यहाँ से हम आज जन्म होगा तो कान्हा को यहाँ से लेकर जाएंगे तो
1: छठी की पूजा भी
2: छठी तक हम लोगों का प्रतिदिन कार्यक्रम प्रसाद वितरण ऐसे चलता रहेगा, उसमें भजन और सभी बच्चों का जो नृत्य का कार्यक्रम वो चलता है।
1: हालांकि यहाँ पर म्यूजिक तो अभी नहीं लग सकता क्योंकि मोबाइल नहीं होगा, लेकिन कुछ हम देख सकते हैं प्रस्तुति?
2: बिल्कुल देख सकते हैं, ये बहुत पारंगत बच्चे हैं।
1: चलिए आ जाइए, आप लोग इस तरफ आ जाइए, हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को थोड़ा सा हम कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कृष्ण जन्मभूमि में आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर रास लीलाओं की जब बात हो रही थी तो खास करके लखनऊ से ये टीम आई है और यहाँ पर ये रास लीला अभी अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि हमने आपको कहा कि मंदिर प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम हुआ था जिसमें इस रास लीला को किया गया था। श्री कृष्ण के जो बाल प्रसंग हैं, अलग अलग जो प्रसंग हैं उनके, वो भी यहाँ पर किए गए थे।
0: हम देख सकते हैं
1: तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये अद्भुत लगता है, अद्भुत है इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदिर प्रांगण में, अद्भुत है। पूरा मंदिर परिसर इस वक्त जो है एक तक लगाए हुए इस दृश्य को देख रहा है। बाल स्वरूप जिसमें श्री कृष्ण जो है उनके सिर पर मोर पंख है, हाथों में मुरली, चेहरे पर ऐसी मुस्कान है जिससे पूरा ब्रह्मांड जो है वो समाया हुआ है।
0: बिल्कुल, लेकिन अलग अलग टोलियां अलग अलग जगह से आती है यहाँ पर और इसको परफॉर्म करती है। जल्दी से मनीष आपके पास आते हुए, अच्छा उससे पहले मनीषा के पास चलते हैं क्योंकि उनके साथ भी एक भजन मंडली मौजूद है। मनीषा,
3: बिल्कुल नवजोत, आपने सही कहा कि यहाँ पर भजन के बिना जो है ये पूरा जो जश्न है, जो पूरा जन्मोत्सव है वो अधूरा है। तो मैं सीधा आपको लोगों की भीड़ों के बीच में लेके चलती हूँ कि किस तरीके से लोगों की भीड़ जो है आपको यहाँ पर भजन मंडली के आसपास जो है वो नजर आ जाएगी और हर कोई जो है झूमते हुए नजर आएगा कि किस तरीके से जो है आपको यहाँ पर जितने भी जो कीर्तन यहाँ पर गाए जा रहे हैं भगवान कन्हैया के लिए, उसी में लोग जो है आपको मंत्रमुग्ध जो है वो नजर आने वाले। तो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको एक तरफ ये भजन मंडली दिखेगी तो दूसरी तरफ ये नन्नी नन्नी आपको जो है आपको ये जो राधा रानी के रूप में जो गोपियां भी यहाँ पर बनकर पहुंची वो नजर आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, अच्छा इनसे बात करती हूँ, ये काफी ज्यादा एक्साइटेड जो है वो नजर आ रहे हैं, कुछ बोल दो।
4: पालकी
3: बच्चों के चेहरे पे मुस्कान मुस्कुराहट जो है नजर आ जाएगी। और ये समा इन्होंने बांधा हुआ है, यहाँ पर हर कोई जो लंबे इंतजार के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है वो इनके सुरुख में पूरी तरह से
0: बिल्कुल बिल्कुल
3: हो चुका है कि किस तरीके से अंदर प्रवेश करते ही हाँ। आपको भजन कीर्तन की जो आवाज है, जो धुन है, वो सुनाई देगी और लोग जो है उसमें पूरी तरीके से खो जाते। तो
0: बिल्कुल मनीषा लौटूंगी, जल्दी से चलते सीधा नोएडा इस्कॉन मंदिर। मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, कार्यक्रम क्या रहने वाला है इसके बाद के?
4: देखिए, श्रद्धालु तो लगातार पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में यहां पर एक आरती होनी है। उस आरती के बाद फिर मेन कार्यक्रम है वो 9:30 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए जो कतार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो भीड़, जो संख्या आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है वो कम शायद लगे आपको, लेकिन वो कम इसलिए क्योंकि वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बाहर आप जाएंगे तो लगभग 2.5 किलोमीटर की लंबी लाइन मंदिर के अंदर आने के लिए लगी हुई है। लेकिन ये सब यहाँ पहुँच रहे हैं, कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और इस बात को भी समझ रहे हैं कि आज सिर्फ जन्माष्टमी नहीं, आज वो दिन भी है जब हम किसी की चीज़ों को, किसी की बातों को याद करें कि वो बचपन में अपने कैसे थे, याद करें कि अपने मित्रों के साथ कैसे थे, याद करें कि वो गोपियों के साथ कैसे थे, सखाओं के साथ कैसे थे। उन्होंने गोपियों को सिर्फ प्रेम करना नहीं सिखाया, प्रेम में खुद को समर्पित करना सिखाया। जब मित्र किया तो मित्र के लिए खुद को भी समर्पित कर देना सिखाया। और जब युद्ध में गए, या फिर यूं कहें कि जब अर्जुन के पास गए तो उन्हें बताया कि गीता का ज्ञान क्या है, उन्हें समझाया कि जीवन कैसे चलाया जाता है, जीवन में अपने कर्तव्य के आगे कुछ भी आपको नहीं देखना है। आपको यहाँ से ये भी याद करना चाहिए कि वो हमेशा कहते हैं, कृष्ण हमेशा कहते हैं कि कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, वो आपके अधिकार में नहीं है। आपके अधिकार में है कि जो काम आपको मिला है उसे आप अच्छे से बेहद शानदार तरीके से करते रहें।
0: बिल्कुल,
4: अपने आप अच्छा होता जाएगा। हर कोई भक्त श्रद्धालु जब यहाँ पहुँच रहा है तो इन सारी बातों को याद करते हुए, दोहराते हुए, दर्शन करते हुए फिर बाहर।
0: लेकिन ये बहुत अहम बातें हैं जो आज की तारीख में यहाँ पहुँच के तो हम याद रखते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जैसे ही निकलते हैं या फिर अगला दिन होता है हम उसको भूल जाते हैं। चलिए, खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, मेरे तीनों सहयोगी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले बेहद खूबसूरत तस्वीरें न्यू जर्सी की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वहां पर भी जैसा लगातार आपको बता रहे हैं कि केवल देश नहीं बल्कि विदेशों में भी कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की रौनक देखी जा सकती है। तो ये न्यू जर्सी की तस्वीरें सीधा वहां से आई हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें जहां पर हर कोई कृष्ण की भक्ति में लीन है, हर कोई झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आ रही है भक्ति।

तो न्यू जर्सी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के भजनों पर भक्त झूम रहे हैं, और इसी तरीके से वहां भी कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सीधा न्यू जर्सी से आई हैं। चलिए, हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुष्कर जी, आप ही से एक भजन सुन लेते हैं।

0: नितिशा जी, देखिए मनीष अभी बहुत अच्छी बात बता रहे थे, राधर हम सभी इसको लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि आज के दिन केवल प्रभु तक पहुंचना नहीं, उनके दर्शन नहीं करने, बल्कि उनकी शिक्षाओं को भी जीवन में ग्रहण करने की बहुत जरूरत होती है। आपने भी उस पॉजिटिविटी का जिक्र किया था, लेकिन सवाल यही है कि देखिए कलयुग का समय है और आज के दिन एक तो भागती दौड़ती जिंदगी, वक्त किसी के पास नहीं है, ये शिक्षाएं सिर्फ आज ही के दिन तक सीमित रह जाती हैं। आज जन्मोत्सव है, जाएंगे दर्शन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, उपवास होगा, और जैसे उसका पारण किया हम इन तमाम शिक्षाओं को भी भूल जाते हैं।
1: जी नवजोत जी, बड़ा ही प्यारा प्रश्न पूछा आपने, लेकिन मैं आप ही को कंटिन्यू करूंगी कि पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। तो ठाकुर जी बहुत छलिए थे, बहुत नटखट थे, बहुत शैतान थे, लेकिन उनकी शैतानी हमें ये सिखाती है कि जितनी भी बुरी स्थिति आए, जितने भी कष्ट आए, हमें उस अपने मन के जो बालक को कभी भी मरने नहीं देना, हमेशा खुश रहना है, हमेशा प्रसन्न चित रहना है, क्योंकि जो हम ठाकुर जी पर जब हम पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि आप बैठे हो, हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो ठाकुर जी आपके सारथी बनकर, आपके गुरु बनकर, जैसे कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर वो अर्जुन के सारथी भी थे और अर्जुन जी के गुरु भी थे, वैसे ही आपके साथ खड़े होते हैं और आपको कभी हारने नहीं देते। तो मैं तो कहूंगी हमें उनसे ये सब बातें सीखनी चाहिए। और नवजोत जी, दो लाइनें मैं भी गाना चाहूंगी।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: बिना वक्त गवाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरा मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।

0: मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, बीच में मेरो श्याम गोपाल। जी नवजोत जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शास्त्री जी आपके पास आती हूँ। बहुत कुछ सीखने वाला है श्री कृष्ण से, क्या बात बताएंगे अभी आप?
2: मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण ने अपने जीवन को एक ऐसा संदेश दिया, आज के युग के बच्चों को देखना चाहिए, कि 6 महीना में महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण ने कामदेव को प्रस्त किया। आपको सीखने की जरूरत है। और एक चीज और भी हमको मिलता है, जो व्यक्ति अहंकार राग द्वेष भय में रहता है उसको भगवान नहीं दिखते, क्योंकि भगवान द्वारका से चल के जब गए हस्तिनापुर में तो वहाँ द्रोणाचार्य जी को और भीष्म पितामह को ही भगवान दिखे और किसी को नहीं देखे। दुर्योधन संसार में कोई बन सकता है, धन संपदा का मालिक हो सकता है, बल्कि जब तक उसके अंदर प्रेम नहीं आएगा, भक्ति नहीं आएगी, तब तक वो कृष्ण के नहीं दर्शन कर सकता है। वो तो कर ही नहीं पाया जीवन में, जीवन ही नष्ट कर दिया। आज हम सब जन्माष्टमी पे पूरे विश्व के लोग, चाहे कहीं लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ईद हो रहा है, प्रकृति के साथ कोई खेल रहा है, आप भगवान के पद को, भगवान को स्थान के आप नहीं ले सकते हैं। आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण 16 कला के परिपूर्ण देव हैं, उनसे कुछ जीवन में शिक्षा लेना है और एक शांति का संदेश देना है,
1: बिल्कुल,
2: जो समाज में एक नई नींव स्थापित करे।
1: इसकी बहुत जरूरत है समाज में और पूरी दुनिया में भी ये संदेश जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से भारत में तमाम जितने पर्व हैं, संजीव जी आपके पास आऊंगी, हर पर्व के पीछे यही संदेश है कि कैसे हमें मिलजुल कर रहना है, कैसे सबको साथ लेकर चलना है।
3: बिल्कुल, देखिए भयं सर्वे एका, हम सभी मिलकर के रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अलग अलग रहेंगे तो एक कहावत है ना जो आजकल बहुत फेमस हो रही, बटोगे तो कटोगे और साथ रहोगे तो मिलके रहोगे, तो भगवान के साथ में दिव्य जो है माखन मिश्री खाए को मिलेगो, जो ब्रजवासी ठाकुर जी के संग लीला करवे को जायो करते, तो ठाकुर जी जब जो है गोपी जन बाकू माखन को ऊपर छुपाए देती छींके पे, तो हमारे ठाकुर जी कहते जो सबसे मोटो बारो ग्वाल है भाई, नीचे लगाते बातें ऊपर काऊ और लगाते बातें ऊपर काऊ और लगाते, और सबके ऊपर नंदन नंदन डेढ़ हाथ के चढ़ जाते और ऊपर से बढ़िया सप्लाई करते, मदर डेयरी की तरह माल सप्लाई हो रहा, नीचे भी दे रहे हैं ऊपर भी दे रहे हैं, और ऊपर से रामावतार में सहायता करने वाले बानर बंदर आ जाते थे, भगवान कहते बानरों तुमने मेरी रामावतार में बड़ी सहायता करी, आओ हम तुमको माखन मिश्री खिलाते, अरे जो कृष्ण खाता वही तुम्हें खिलाएगा, ऐसा दिव्य चरित्र संसार में कृष्ण जैसा कोई दिव्य चरित्र नहीं हो सकता है नवजोत जी।
1: बिल्कुल,
3: मैं कहना चाहूंगा क्योंकि भगवान हृदय बसंतम नवनीत चौरम गोपाना गोपांगनाम चदुकूल चौरम, और भगवान जो है गोपियों के नवनीत माखन को चुराते, उनको मन को चुराते और सब पर भगवान अपनी कृपा करते हैं, ऐसे मेरे भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। और
1: चलिए आप हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ब्रेक पर जाएं, उससे पहले एक भजन पुष्कर जी से सुन लेते हैं।

0: भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? क्या आप भगवान कृष्ण की भक्ति को मित्रता में बदलना चाहते हैं? कैसे बने भगवान कृष्ण आपके मित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या आप भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? क्या आप भगवान कृष्ण की भक्ति को मित्रता में बदलना चाहते हैं? कैसे बने भगवान कृष्ण आपके मित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे।

0: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
0: देश ही नहीं दुनिया भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, मथुरा वृंदावन में लगा भक्तों का तांता, रंग बिरंगी लाइट्स के साथ मंदिरों में मनमोहक फूलों से सजावट,

0: मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह की पूजा अर्चना जामनगर में कान्हा की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं लोग निकल रहे हैं लड्डू भोपाल की भव्य शोभा यात्रा अमेरिका की न्यूजर्सी में धूमधाम से मनाया जा रहा है कान्हा का जन्मोत्सव भजन कीर्तन की धुन पर थिरकते नजर आ रहे भक्त प्रेम और श्रद्धा के साथ नंद गोपाल का जय घोष जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित आईएमडी की ओर से रेड अलर्ट दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र सहित देश भर में दही हांडी की रौनक मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां तैयार कल दिखेंगे उत्सव के रंग
1: गुड़ नीज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस

जय कन्हैया लाल की। देश भर से तस्वीरें आ रही हैं और उत्सव लगातार जारी। नॉनस्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। जन्माष्टमी के त्योहार पर पूरे देश में आस्था की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। मंदिरों में भक्ति के दीप जगमगा रहे हैं। कान्हा के जन्म की प्रतीक्षा की जा रही है। पूजा अर्चना और आरती का दौर लगातार जारी है। सुबह से ही भक्त उत्सव के रंग में पूरी तरह से सराबोर है, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर भाव विभोर हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और भक्तों के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण का रिश्ता है। भक्त अपने मन की बात कह देते हैं और भगवान श्री कृष्ण बिना कहे ही उसके भाव समझ लेते हैं। ऐसे में भक्त उनका दर्शन कर आशीर्वाद पाने के लिए लालायित हैं। कान्हा के आने की खुशी में भक्तों भक्ति के सागर में गोते लगा रहे हैं और स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं।

पानह पधारने वाले हैं। स्वागत में ब्रज से लेकर देश भर के मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। अब प्रतीक्षा है तो बस उस पल की, जब कान्हा आएंगे और नंद के घर आनंद होगा और हर तरफ गूंजेगा जय कन्हैया लाल की। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना और आरती का दौर जारी है। लड्डू गोपाल की भक्ति में श्रद्धालु डूबे हुए हैं, भक्ति भाव से सब झूम रहे हैं। अब इंतजार है तो आधी रात के उस पल का, जब कान्हा का जन्म होगा और मंदिर जयकारों से गूंज उठेंगे। कृष्ण और भक्तों का रिश्ता शब्दों से परे है और इसी के चलते हजारों साल बाद भी कान्हा के जन्मोत्सव पर भक्तों में उत्साह और प्रेम साफ नजर आ रहा है।

0: जाने। जय हो मेरे काना, तेरा लाख लाख शुक्राना, तेरा लाख लाख शुक्राना। राधे श्याम चकाचक करो, जिसमें नदियां तेरे भक्ति में बड़ी शक्ति है। जब से तेरी भक्ति हूँ, भक्ति में हूँ मैं तो बड़ी मस्ती में हूँ। श्री राधे राधे राधे।
1: मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में हो तेरा नाम मुरली वाले।
2: भगवान श्री कृष्ण के प्रति इसी तरह भक्त अपनी अगाध आस्था और श्रद्धा जता रहे हैं। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में सुबह से पूजन अर्चन हो रहा है, आरती का सिलसिला लगातार जारी है और वाद्य यंत्रों की थाप पर सुदबुद्ध खोकर भक्त अपने बाल गोपाल की भक्ति में लीन है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर समेत पूरे ब्रज के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर के इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर दिव्य छटा बिखरी है। आकर्षक सजावटों के बीच भक्त नंदलाल के दर्शन और सेवा में लगे हैं। चाहे वृंदावन हो या फिर दिल्ली या मुंबई या फिर अहमदाबाद, सभी जगहों के इस्कॉन मंदिरों में कान्हा के आने की प्रतीक्षा हो रही है और एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। भक्त अपने बाल गोपाल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, भक्ति भाव में झूम रहे हैं, गा रहे हैं और स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीरें अद्भुत हैं। यहाँ कान्हा के स्वागत में भजन कीर्तन सुबह से ही चल रहा है और भक्त लगातार झूम रहे हैं।
3: दर्शन करके हमारे मन को भी शांति मिलती है और हमें प्रसन्नता भी बहुत होती है।
4: हाँ जी, हम यहाँ पर हर साल कृष्ण जन्माष्टमी मनाने आते हैं इसी तरह से, और हर बार कुछ ना कुछ नया ही होता है और मन को शांति मिलती है, इसलिए हर बार हम आ जाते हैं।
2: इस्कॉन के अलावा देश भर के मंदिरों में कान्हा के आगमन की प्रतीक्षा हो रही है। अब चाहे वो दिल्ली का कालकाजी मंदिर हो या फिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का श्री सावलिया सेठ का दरबार, देश से लेकर विदेशों तक में जन्माष्टमी की रौनक है। नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक में श्रद्धालु सुबह से ही भक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। आस्था और उत्साह से सराबोर ये तस्वीरें बता रही हैं कि जन्माष्टमी सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के लिए ये भक्ति और विश्वास का बड़ा उत्सव है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो देखिए देश भर में किस तरह की रौनक है, वो तस्वीरें लगातार नॉनस्टॉप आप गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं। उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और कृष्ण जन्मोत्सव की तमाम तस्वीरें हमारे रिपोर्टर्स लगातार हमें दिखा रहे हैं। मेरे साथ मथुरा से कृष्ण जन्मभूमि से संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर से मेरे साथ मनीषा लड्डा है, और नोएडा के इस्कॉन मंदिर से मेरे साथ मनीष चौरसिया भी जुड़ चुके हैं। एक बार सीधा जन्मभूमि का रुख करेंगे जहां संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, क्या कार्यक्रम अब के बाद वहां पर रहने वाले हैं, क्या कुछ हो रहा है अभी इस वक्त, क्या चल रहा है वहां पर?
6: इस बार जो अद्भुत आकर्षण है वो ये है कि सैकड़ों ड्रोन इस जन्मभूमि के जो भागवत भवन मंदिर है उसके आसमान पर लहराएंगे, कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करेंगे। वो कृष्ण की बाल लीलाएं ड्रोन के जरिए दिखाई जाएंगी, यानी कहें तो साधारण भाषा में लोग इसे ड्रोन शो समझ सकते हैं। ड्रोन शो होगा 10:30 बजे से यहाँ गर्भगृह में, गर्भ पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन, ये सारे पूजन शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले 1008 कमल के पुष्पों के साथ उनका सहस्रार्चन किया जाएगा, और सहस्रार्चन के बाद फिर जैसे ही 12 बजने वाले होंगे कपाट बंद कर दिए जाएंगे, और 12 बजते ही कपाट खुलते हैं जिसमें चांदी के कमल का पुष्प है, यानी रजत कमल से भगवान श्री कृष्ण का जो बाल उत्सव विग्रह है वो प्रकट होता है, और उस प्रकट के साथ ही फिर जन्म की आरती होती है, और भगवान के जन्म का जो मध्य रात्रि का समय है उस मंगल मुहूर्त में उनकी पहली जन्म आरती होती है, और उस प्राकट्य आरती के बाद उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है जिसमें गाय का दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, ये 5 अमृत हैं जिनसे उनका ये जो 22 तरफ एक चौकी देखी जा रही है फूलों से सुसज्जित, उस पर एक चांदी की कामधेनु गाय है, उनके पयोधरों से जो दूध निकलेगा उससे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होगा, और फिर पंचामृत अभिषेक के बाद उनका श्रृंगार किया जाएगा, और फिर श्रृंगार आरती के साथ ही नंदोत्सव की शुरुआत हो जाती है।
5: बिल्कुल संजय जी, लौटूंगी आपके पास। मनीष, आपका रुख करूंगी, दिखाइए जरा वहां की रौनक।
7: आप देखिए कि अब हलचल और तेज हो गई है। श्रद्धालुओं की संख्या, गोपियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दरबार के आसपास आप भीड़ ज्यादा बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। बाहर लाइन बहुत लंबी है, हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, लेकिन पूरे सब्र के साथ, उसे कोई जल्दबाजी नहीं है। आप देखेंगे तो लगातार अब आपको कुछ जो पंडित हैं वो दिखाई पड़ेंगे। कुछ ही देर में यहाँ पर एक आरती होनी है, उसके बाद तमाम सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ प्रतिमा भी है। प्रतिमा, आप अब वक्त हो चला है, 8:30 के आसपास में टाइम होने वाला है, क्या कुछ होना है यहाँ से आगे?
8: आप देख सकते हैं अभी कीर्तन चल रहा है और बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु गण यहाँ पे उपस्थित है। बाहर जो है कल्चरल इवेंट चल रहा है, जहाँ पे हमारे देश के विभिन्न राज्यों से लोग आए, छोटे छोटे बच्चे आए, आर्टिस्ट हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं।
7: क्या खास तरह के व्यंजन है जिनका भोग लगाया जाएगा?
8: 500 से अधिक प्रकार के व्यंजनों का भोग लगेगा, न केवल देसी बल्कि विदेशी भी। पराठे हो गए, मखाना तो मतलब माखन मिश्री तो मेन है ही है, लहंगा प्रसाद भी है, पिज्जा, लज्जा, ये सारी चीजें
5: होंगी। अलग अलग तरह के भोग लगाए जाएंगे आज भगवान को। एक बार मनीषा आपका रुख कर लेती हूँ, जहाँ पर आप मौजूद है वहाँ कैसी तैयारी है, इसके बाद कार्यक्रम क्या होने वाला है? मनीषा,
9: अगर आपने भोग की बात करी तो 108 व्यंजनों का जो है भोग यहाँ पर लगाया जाएगा, और वो व्यंजन सिर्फ देसी नहीं बल्कि विदेशी भी रहेंगे। आपको इसमें पिज्जा भी मिल जाएगा, लज़ानिया मिलेगा, तो हर एक भोग के रूप में जो है श्री कृष्ण को जो है परोसा जाएगा। अभी की तस्वीरें दिखाऊं तो अभी जो है बार बार आरती यहाँ पर जो है की जा रही है, मंगल आरती जो है वो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में देखी जा रही है, और कुछ ही समय के बाद जो है यहाँ पर अभिषेक की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को जो है अलग अलग फलों के रस से जो है उनका जलाभिषेक जो है वो किया जाएगा। तो कुछ देर के बाद जो है आप अभिषेक देखेंगे कि किस तरीके से भगवान को हर एक फल से जो है उनका अभिषेक जो है वो किया जाएगा। लेकिन अभी की तस्वीरें कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आ रही है। थोड़ी देर पहले ही जो है मंगल आरती हुई और उसके बाद भक्तों का जो सिलसिला है आने का वो लगातार
5: बड़ी संख्या में भक्त पहुंच भी रहे हैं। तस्वीरें दिखाते रहिए, हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है, साथ ही साथ खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए। लेकिन उससे पहले पुष्कर जी, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है, पुष्कर जी एक भजन सुनना चाहेंगे आपसे।

0: क्या बात है। चलिए नितिशा जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। नितिशा जी, तस्वीरें आप देख रहे हैं, रौनक आप देख रहे हैं, उत्सव की रौनक है, हर तरफ खुशियों का ही माहौल है। नितिशा जी, ऑडियो म्यूट है शायद आपका।
1: जी जी जी, मैं कह रही हूँ हर तरफ से नवजोत जी, जो भजन, जो कीर्तन, जो दृश्य हमें मिल रहे हैं और जो भक्तों के चेहरों पे एक खुशी है, वो बहुत हमें आनंदित कर दे रही है। बहुत अच्छा लग रहा है जीएनटी देख के। तभी कहती हूँ जीएनटी देखते रहो तो खुशी अपने आप बनी रहेगी और डिप्रेशन एंजाइटी अपने आप।
0: स्टूडियो होना चाहिए था आज आपको।
1: जी, लेकिन आज मैं मंदिर चली गई, ठाकुर जी ने बुला लिया। ये असीम कृपा हुई मुझ पर कि आज मुझे उनके दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैंने कहा पहले मंदिर हो।
0: बिल्कुल, प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी भी आप ही पे है। चलिए डीपी शास्त्री जी, आपके पास मैं आती हूँ। हम शिक्षाओं की बात करें, हम तमाम चीजों की बात करें, लेकिन एक चीज जो मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि आज के दिन जो लोग उपवास करते हैं, जब श्री कृष्ण का जन्म, क्योंकि रात 12 बजे हो जाएगा, वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, इस उपवास का पारण किस तरीके से किया जाता है?
2: देखिए, प्रसाद जो है भगवान के जन्म के बाद चरणामृत, तुलसी ले लें, पंजीरी ले लें, और अगले दिवस माने सूर्योदय के आसपास स्नान ध्यान करके भगवान का पकवान का भोजन लगाएं, भोग लगाएं, और भगवान को उसकी उसी प्रसाद को थोड़ा सा अंश रूप में ग्रहण करें। सबसे बड़ी बात है जन्माष्टमी में श्रृंगार का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में भगवान को माने बढ़िया से सुलाना, उठाना, बिठाना, खिलाना लगा रहता है। और चार वेद की पूजा आज होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद बजी रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, और अथर्ववेद। तो चार वेद के द्वारा यही एक ऐसा पावन पर्व जन्माष्टमी है जो मंत्र से, जप से, तप से, ध्यान से हम भगवान को मनाते हैं, और मनाना भी चाहिए। आज अपने घरों में बच्चों के साथ आप ऐसा स्नेह रखें, परिवार के साथ अपने पानी से कोई ऐसा वार्तालाप ना करें जो दूसरे को कष्ट पहुंचाए। और आपके घर में जो बहन बेटी है लक्ष्मी रूप में, राधा का आशीर्वाद सदैव उन पे प्राप्त है। जिनके घर में किशोरी नहीं, राधा नहीं, उनके घर का जीवन श्रृंगार रस नहीं हो सकता है। तो श्रृंगार रस की प्राप्ति करने के लिए भगवान कृष्ण को तपस्या करना पड़ता है, और कृष्ण भी उस राधा को पाने के लिए बार बार इस धरा पे, इस पृथ्वी पे आते रहते हैं। चाहे वो सीता बने, चाहे वो राधा बने, चाहे रुक्मिणी है, चाहे लक्ष्मी है। उसी तरह हम सब लोग, जनमानस जो लोग सनातन प्रेमी है, भगवान को मानने वाले हैं, या भगवान के भक्ति के मार्ग पे मार्गदर्शक बनते हैं समाज के लिए, हम सब एक संदेश दें कि पूरे विश्व में आज जो अशांति है, अशांति दोष दूर हो, और शांति के प्रतिनिधित्व के रूप में कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति, भगवान का मार्ग, गीता इत्यादि ग्रंथ को चुना जाए और सब शांति एक दूसरे को दे, यही मैं आज कहना चाहूंगा।
0: बिल्कुल, ये संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार और नितिशा जी आपका रुख करूंगी, आज अष्टमी है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, कल नवमी, और नवमी के दिन दही हांडी का पर्व भी मनाया जाता है। कल का दिन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है?
1: जी नवजोत जी, पहले तो मैं पारण विधि के बारे में एक चीज, एक लाइन और एड ऑन करना चाहूंगी भक्तों के लिए कि सुबह जब पारण होगा जो हमारे व्रत का, उस समय ठाकुर जी को पूरी तरह से भोग लगाए। देखिए, हमारा जो तन शुद्ध होता है वो नहाने से, स्नान से होता है। हमारा मन शुद्ध हमारे मंत्र जाप से, पूजा से होता है। लेकिन हमारा धन की शुद्धता तब होती है जब धन से दान किया जाता है। तो कल पारण के समय वस्त्र है, किसी ब्राह्मण को भोजन है, जरूर दे, नहीं तो 21 केले सभी को किसी ना किसी कृष्ण मंदिर में कहीं ना कहीं जरूर दान करके आने हैं, उनको भेंट करके आने, रख कर आने हैं। इतना पारण समय में जरूर करें, ये बहुत जरूरी है। और दही हांडी का त्योहार, क्योंकि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये 16 दिन का यानी राधा अष्टमी तक ये चलने वाला त्योहार, अभी छठी आएगी फिर राधा अष्टमी आएगी, ये त्योहार कल दही हांडी के रूप में मनाया जाएगा। और ये 16 दिन ब्रिज में ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, और 16 ही दिन क्यों, क्योंकि वो 16 कला पूर्ण थे और राधा अष्टमी तक ये त्योहार चलता रहेगा। दही हांडी का पर्व भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग उस महत्वपूर्ण तत्व से जुड़ते हैं कि दही और हांडी हमारे जीवन में शुद्धता का प्रतीक है, दही हमारे जीवन में लग्जरी सुख को बढ़ाने वाला है, और हांडी तोड़ना यानी हम अपने जीवन में जो हमारे जो प्रोस्पेक्टस है पुराने, जो गलत, उनको तोड़ के एक नई खुशियों की तरफ, नई लग्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल संजीव अग्निहोत्री जी भी मौजूद है, आप तो संजीव जी उसी इलाके से आते हैं, आप यहाँ नितिशा जी समझा ही रही हैं कि 16 दिन तक ये पूरा पर्व चलता है। बहुत से लोगों को, अब मैं अपनी भी बात करूं, हमें सिर्फ अष्टमी और नवमी पता है क्योंकि आज अष्टमी पर जन्मोत्सव हम मनाते हैं, नवमी पर अलग अलग जगह से खासतौर पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो दही हांडी की तस्वीरें आती है। इसके अलावा और 16 दिन तक क्या क्या और रिचुअल्स रहते हैं?
3: देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है नवजोत जी, क्योंकि आज भगवान का जन्मोत्सव है तो प्रातः काल अगले दिन नंदोत्सव हुआ था, बड़े बड़े सब ब्रजवासी आए, खूब माखन मिश्री लुटाया, खूब टॉफी खिलौने आदि खूब लुटाया, देखत ही ब्रज लुटाए दियो न बची चचिया बचिया न पिछौरी, इतना लुटाया नंद बाबा जी ने, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना महामना उदार चित्ता, बहुत कुछ लुटाया, जिसने एक गाय मांगी उसको चार दी, चार जिसने मांगी उसको आठ दी, इस तरह से खूब लुटाया। और आज एक बात और कह देता हूँ जीएनटी न्यूज के माध्यम से, क्योंकि जीएनटी न्यूज एक ऐसा चैनल है जो धार्मिक बड़ी बड़ी खबरों को लोगों को प्रस्तुति प्रदान करता है। आज आद्या काली जयंती भी आज ही है, इसलिए आज का पर्व बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और कल जो है, क्योंकि माँ दुर्गा जी का भी पर्व है नवमी तिथि, तो नवमी तिथि में माँ भगवती का और कुल देवता का पूजन कल होता है, और इसके बाद में फिर भगवान की छठी होगी, और बहुत सारे उत्सव है, गणेश जन्मोत्सव है, बराह भगवान की जयंती है, बामन उत्सव है, राधा जयंती है, बहुत सारे उत्सव है, नित्योत्सव नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगला, इतने इतने उत्सव होंगे। और नंदोत्सव में तो भैया हमारे ब्रजवासी आए और महाराज खूब गाय गाय के महाराष्ट्री नंद बाबा से मांगने लगे,
0: बिल्कुल
3: में है रही जय जय कार नंदगर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जय कार नंदगर लाला जायो है, बहुत ब्रजवासियों ने खूब गाय गाय के मांगा, खूब चक्कर ब्रज में, बहुत सारी सामग्रियां लुटाई गई, जिसको जो चाहिए नंद बाबा उसको खूब बरबर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए यही से, हाँ यही से एक बार जल्दी से जन्मभूमि का रुख कर लेते हैं, कृष्ण जन्मभूमि, वहां से संजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी यही से बात को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो 16 दिन का पर्व है संक्षेप में, बिल्कुल क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, क्या क्या और आगे कार्यक्रम रहते हैं, क्या क्या रिचुअल्स रहते हैं आगे?
4: यह अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा है, जन्मभूमि में, जन्म स्थान में और बाकी जगह जन्माष्टमी की रात जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है, कान्हा के आगमन का उनका स्वागत किया जाता है, अगले दिन नंदोत्सव होता है। अगर आप ब्रज के मंदिरों में जाएं, घरों में जाएं, तो लोग वहां बैठकर लाला के आगे कभी खिलौना चलाते हैं, कभी झुनझुना बजाते हैं, कभी उनको दूध पिलाते हैं और इस तरह से उनका लाड़ किया जाता है, उनको पालने में झुलाते हैं। और इसके बाद छठे दिन कई जगह ऐसी परंपरा है कि भगवान कृष्ण की छठी मनाई जाती है, जिस दिन उनको पहली बार उनका उनके दर्शन और उनका उनको नया भोग लगाया जाता है, उस छठी के साथ ही उनको नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। और इसके बाद फिर आगे अलग अलग महाराष्ट्र में कई जगह परंपरा है जहां कुआ पूजन होता है, माता यशोदा कुआ पूजने जाती हैं, तो इस तरह की बहुत सारी परंपराएं हैं जो लोक परंपराओं के हिसाब से चलती हैं। लेकिन फिलहाल तो सारा देश जन्माष्टमी के उत्सव की मस्ती में है, लाला के आगमन की प्रतीक्षा में है, उन्हें भी लगता है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, यानी कृष्ण वासुदेव हैं और परमात्मा हरि हैं,
0: बिल्कुल,
4: और वो हमारे सारे कष्ट सारे क्लेश, जो छह प्रकार के क्लेश हैं, आध्यात्मिक शारीरिक मानसिक, उन सारे क्लेशों का नाश करने वाले हैं
0: जी।
4: ये एक महामंत्र भी है और सिद्ध मंत्र भी है जिसका लोग जाप करते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि भगवान कृष्ण उनके जीवन से सभी तरह के क्लेशों का नाश करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
4: तो फिलहाल तो अभी जनता
0: कोई करता है और पूरे देश की नजरें संजय जी जहां पर हैं वहीं पर टिकी हुई है, जन्मभूमि में आप मौजूद हैं और वहीं पर सबकी नजरें, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। लेकिन हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हम संजय जी के पास भी जाएंगे क्योंकि असली तस्वीरें जो है कृष्ण जन्मभूमि से ही आएंगी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। ब्रेक पर जाऊं उससे पहले पुष्कर जी से एक भजन सुन लेते हैं।

0: भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? क्या आप भगवान कृष्ण की भक्ति को मित्रता में बदलना चाहते हैं? कैसे बने भगवान कृष्ण आपके मित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जीवन में अच्छा दोस्त मिल जाए, अच्छा मित्र मिल जाए तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। लेकिन सबको जीवन में अच्छे मित्र मिलें, अच्छे दोस्त मिलें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपके कोई अच्छे मित्र नहीं हैं तो भगवान कृष्ण से कैसे मित्रता बनाएं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 सितंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, रात के 9:53 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, रात के 9:30 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:18 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 सितंबर 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं कि जीवन में कोई हो या ना हो, आपके सबसे अच्छे मित्र, आपके सखा भगवान कृष्ण बन सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण की महिमा जान लेते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण को श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने इस अवतार में 16 कला संपन्न थे। ये भगवान विष्णु का संपूर्ण अवतार माना जाता है। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षयते इति कृष्णः, जो आपको आकर्षित करे, जो सृष्टि को आकर्षित करे वो कृष्ण है। और नाम के अनुरूप भगवान कृष्ण ने अपने इस अवतार में सारी सृष्टि को आकर्षित किया था। ये अलग अलग स्वरूपों में भक्तों के निकट गए और उनकी मनोकामनाएं उन्होंने पूर्ण की और अलग अलग संबंध अपने भक्तों के साथ उन्होंने बनाए। इन सब स्वरूपों में उनका मित्र का स्वरूप सबसे ज्यादा निकट माना जाता है, सबसे ज्यादा निकट समझा जाता है। भगवान कृष्ण और मित्रता पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की रुकावट दूर होगी, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। भगवान कृष्ण मित्र के रूप में, प्रेमी के रूप में, पति के रूप में, गुरु के रूप में, हर रूप में विलक्षण हैं। मित्रता के संबंध में भगवान कृष्ण की मित्रता का महत्व क्या रहा है? देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ, उद्धव के साथ और सुदामा के साथ मित्र का संबंध रखा था। उद्धव के साथ जो उनकी मित्रता हुई, उन्होंने उद्धव को जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान दरअसल जीवन का दर्शन है। तो उद्धव के साथ उनकी मित्रता के कारण जीवन का दर्शन मिला। सुदामा को उन्होंने मित्रता में ही संपन्नता दे दी। सुदामा के दरिद्रता के प्रारब्ध को हर लिया। और अर्जुन के साथ मित्रता के वजह से सारी दुनिया को गीता का ज्ञान मिला। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वो ज्ञान आज तक प्रासंगिक है और आज तक वो ज्ञान चला आ रहा है। श्री कृष्ण के साथ मित्रता का संबंध न केवल भक्ति का कारण बना, बल्कि ज्ञान और मुक्ति का कारण भी बना। आप महाभारत के समय को देखिए, भगवान कृष्ण को ज्यादा लोग पहचान नहीं पाए। विदुर, भीष्म पितामह, इन्होंने उनके ईश्वरीय स्वरूप को पहचाना। अर्जुन ने उनको एक अलौकिक मित्र समझा और जब उन्होंने विराट विश्वरूप के दर्शन कराए, तब अर्जुन को पता चला कि ये स्वयं महासंभूति हैं, स्वयं भगवान हैं। तो भगवान कृष्ण का जिससे भी संबंध बना, उसको भगवान कृष्ण ने भक्ति तो दी ही, उसको ज्ञान भी दिया और उसको मुक्ति भी प्रदान की। भगवान कृष्ण से मित्रता स्थापित कैसे करेंगे, इस विषय पर चर्चा होगी। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर के मामले में आपको लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी से विवाद से बचें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आप भगवान कृष्ण के साथ अपनी मित्रता का संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मित्रता के लिए ईमानदारी बड़ी आवश्यक है, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अतः भगवान कृष्ण को मित्र बनाने के लिए जीवन में अपने कार्यों में ईमानदार बनिए। अपनी सारी समस्याएं, अपने दुख, अपने सुख, अपनी गलतियां उनसे मित्र की तरह कहिए। आपको कुछ समय बाद अंतर आत्मा में, आपके मन में उसका समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। और अंतर आत्मा में जो भी समाधान मिले उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर भगवान कृष्ण से आपकी मित्रता हो गई है तो अपनी मित्रता का दुरुपयोग मत करिए। भगवान कृष्ण से उल्टी सीधी चीजों की प्रार्थना मत करिए, मित्रता का दुरुपयोग मत करिए और मित्रता में ईमानदारी और प्रेम बनाए रखिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में लाभ के योग हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सुधार के योग हैं, विवाह तय हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी, परिवार में विवादों से बचें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अपने टूटते हुए रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, आपका टूटता हुआ रिश्ता बच जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 5 सितंबर 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है।

0: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: देश ने दुनिया भर में कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, मथुरा वृंदावन में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, रंग बिरंगी लाइट्स के साथ मंदिरों में मनमोहक फूलों का श्रृंगार। दिल्ली के बिरला मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना, जामनगर में कान्हा की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे लोग, निकाली गई लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा। अमेरिका के न्यूजर्सी में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है कान्हा का जन्मोत्सव।

0: सब भजन कीर्तन की धुन पर थिरके, भक्त प्रेम और श्रद्धा के साथ नंद गोपाल के जय घोष। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित, आईएमडी की ओर से रेड अलर्ट। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश भर में दही हांडी की रौनक, मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां तैयार, कल देखेंगे उत्सव के रंग।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

0: जय नंदलाला, जय गोपाला, जय कन्हैया लाल की हर तरफ बस यही गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि आज पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ रौनक है, हर तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं। बस अब इंतजार उस घड़ी का है जब श्री कृष्ण का जन्म होगा और फिर उसके बाद झूमते नाचते लोग इस उत्सव को मनाएंगे। अलग अलग मंदिरों से, अलग अलग जगह से तमाम तस्वीरें लगातार आपके आपको हम दिखा रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है।
1: बिल्कुल ऐसे ही रौनक लेकर हम आ गए हैं जीएनटी में। सुबह से लगातार ये रौनक हम आपको दिखा ही रहे हैं। अब देखिए, आज हर जगह एक ही इंतजार है, टकटकी लगाए तमाम श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं कि कब नंद के लाला प्रकट होंगे, प्रकट उत्सव उनका मनाया जाएगा। हर तरफ कानहा रहे हैं, मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। गोवर्धन गिरधारी देवकी नंदन मदन मुरारी के प्रकट उत्सव का ये अभी शुरुआत भर है, मध्य रात्रि का इंतजार कीजिए, क्योंकि वो तस्वीरें जब सामने आएंगी ना तो वो रंगत ही अलग होगी, वो रंग अलग होंगे। आज सुबह से ही मथुरा वृंदावन समेत देश भर के मंदिरों में ऐसा ही तस्वीरें हैं, ऐसा ही माहौल है। कृष्णमय सिर्फ स्टूडियो नहीं, कृष्णमय है वो तस्वीरें भी जो लगातार हमने आपको दिखाई है।
0: बिल्कुल, और हम साथ ही साथ आपको बता दें तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। गुड न्यूज टुडे का वादा है आपसे, क्योंकि नॉन स्टॉप कवरेज, घर बैठे आप दर्शन करेंगे सीधा कृष्ण जन्मभूमि से, क्योंकि वहां से मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय शर्मा वहीं मौजूद हैं, श्वेता झा वहीं पर मौजूद हैं हमारे साथ। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से मनीषा लड्डा भी जुड़ेंगी, और साथ ही साथ नोएडा इस्कॉन में कैसी रौनक है ये दिखाने के लिए मनीष पहुंच चुके हैं इस्कॉन मंदिर में भी। तमाम रिपोर्टर्स होंगे, साथ ही साथ खास मेहमान होंगे। आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण से हम क्या सीख सकते हैं? प्रभु को केवल दर्शन नहीं कर रहे, प्रभु को पाना भी है। तो कैसे पाना है वो सब आज हम आपको बताएंगे, हमारे साथ खास मेहमान होंगे। लेकिन आज पूरा दिन किस तरीके से इसकी रौनक बिखरी रही है पूरे देश में, जरा उस पर नजर डालिए।

0: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रंग में पूरा देश रंगा हुआ है। हर जगह जय नंदलाला जय गोपाला की गूंज है, क्योंकि आज कान्हा आ रहे हैं। मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों की रौनक देखने को मिल रही है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खुशी में मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु अपने लड्डू गोपाल को नए वस्त्र और आभूषण पहनाकर उनका श्रृंगार कर रहे हैं। वहीं कान्हा के भक्त उनकी भक्ति में डूबे हुए हैं।
1: कान्हा बंसीवारे की जय। आज हमारे कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। बहुत पूरे ब्रज मंडल में खुशियां ही खुशियां चाह रही हैं। अद्भुत नजारा है और भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और हमको तो उसने पागल कर रखा है। हम तो उसके बिल्कुल पागल हैं। हमें कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। उसकी तो बहुत कुछ बताता है, लेकिन हम इसलिए नहीं बता रहे कि बोलते कि बताना नहीं चाहिए। उसकी कृपा बंद हो गई तो हम कैसे जी पाएंगे। कान्हा से दिल क्यों लगाया है ये मैं जा

0: आज सुबह से ही मथुरा वृंदावन सहित देश भर के मंदिरों में माहौल कृष्णमय हो गया है। खासतौर से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में इसकी रौनक देखते ही बनती है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में शामिल होने पहुँचे हैं। उनकी भक्ति और उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ रहा है।
1: अब देख सकते हैं यहाँ ये बुजुर्ग महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ ढोल बजा रहे हैं, श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं और हर तरफ आनंद और उत्सव का माहौल है। यानी नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। अकोला से यहाँ ईश्वर जी पहुँचे हैं, यहाँ ढोल बजा रहे हैं। देश में जहाँ जहाँ उत्सव होते हैं वहाँ वहाँ ईश्वर जरूर जाते हैं। कुंभ के मेले में भी गए, ईश्वर जी आप कहाँ कहाँ गए हो अब तक और यहाँ पर सिर्फ जन्माष्टमी उत्सव के लिए आए?
2: हाँ, हम हर साल आते हैं कृष्ण जी के दरबार में नंदला के दर्शन करने को। अभी वृंदावन में रहते हैं छोटे महाराज के यहाँ पर सुदामा कुटी में, वहाँ रहता है मुकाम। अभी यहाँ से सफर रहा तो फिर काशी चले जाते हैं, अभी आए तो प्रयागराज चले जाते हैं, अभी आए तो वैष्णो देवी चले जाते हैं माता रानी।
1: जहाँ आनंद है वहाँ ईश्वर है,
2: यहाँ ईश्वर है। मेरा नाम ही ईश्वर है, मैं क्या बोल सकता हूँ।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज सुबह 10 बजे के करीब श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर पूजा अर्चना की। इससे पहले वहां आज तड़के मंगला आरती की गई और अब मध्यरात्रि में होने वाले प्राकट्य उत्सव का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

0: यह जन्मभूमि की ओर जाने वाला भक्ति पथ है और भक्ति पथ पर अलग अलग तरह के रंग दिखाई पड़ते हैं। पूरे भारत के रंग हैं, भारत भूमि के रंग हैं, भाव भूमि के रंग हैं और उत्सव भूमि के रंग हैं। ऐसे में हम यहाँ खड़े हैं जहाँ नाथपंथी कलाकार यहाँ मौजूद हैं, जो बहुत तरह तरह के वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ ये लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। जो भक्त यहाँ आए हैं उन भक्तों के मनोरंजन के लिए अलग अलग जगह, जैसा कि हमने आपको बताया कि वृंदावन मथुरा में देश की संस्कृति के अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। जो हजारों लाखों साल पुरानी हमारी संस्कृति है उसके अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रूप हैं और श्रद्धालु इनका आनंद ले रहे हैं। यहाँ बीन और अलगोजा की धुन पर लोगों को झुमा रहे हैं ये लोग, और इसके साथ ही ये खोल भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आप लोग कहाँ से आए हो महाराज?
1: फरीदाबाद से।
0: ये तो खोल मंदिर,
1: ये बीन बाजा है, बीन बाजा तुम्हा,
0: बीन बाजा तुम्बा है। और इस तुम्बे के साथ साथ ये भले नाग को मोहित करने के लिए ये बीन होती है, लेकिन यहाँ सारे भक्त इस पर ऐसे मोहित और लुप्त हुए जा रहे हैं।
2: आज आधी रात को कान्हा का जन्म होगा और उनके दर्शन के लिए भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस खुशी में कहीं भक्त नाचते गाते कान्हा की भक्ति में लीन है, तो कहीं मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का दौर चल रहा है।
0: ये जो कृष्ण जन्मभूमि जाने का रास्ता है, ये रात से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार लोग, ऐसे तीन दरवाजे हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, और दर्शनों का आनंद यहाँ लगातार चल रहा है। आप मथुरा के किसी भी शहर में जाए, किसी भी गली और सड़क पर जाएं, वहाँ पर देश भर के कलाकार आए हैं, अलग अलग संस्कृति के, संगीत का, नृत्य का, भोजन का।

0: कहते हैं कि बीप की धुन पर नाग मोहित हो जाता है, नाग नाचता है, लेकिन यहाँ ये सारे भक्त इतने मुक्त हैं, लुप्त हैं, और यहाँ पर वो इनके संगीत का आनंद उठा रहे हैं। लोग इन यादों को अपने अपने मोबाइल में समेट कर लेके जाना चाहते हैं, ताकि इस जन्माष्टमी की यादों को आगे भी उसका आनंद उठाया जा सके, उस संगीत का आनंद उठाया जा सके।
1: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में जन्माष्टमी के उत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। कई लोग तो भक्ति में काफी भाव विभोर दिख रहे हैं।
2: आप लोग कहां से आए हो?
3: दर्शन करके।
4: और चलिए ऐसे ही रौनक, ऐसी ही तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, और रौनक दिखाने का जिम्मा हमारे सहयोगियों ने लिया है, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ है मनीष, हमारे साथ है मनीषा, श्वेता झा लगातार आपको मथुरा की रौनक तो दिखा ही रही हैं। हमारे साथ श्रुति हरबंदा जी भी जुड़ गई हैं। ये तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
5: रिदम का नाम लेना भूल रहे हैं।
4: रिदम को मैं देखते देखते टकटकी लगाए पीछे देख रही थी। रिदम हमारे साथ जयपुर से है। चलिए श्वेता का एक बार करना चाहूंगी। श्वेता, कृष्ण भक्ति में देखिए सिर्फ आप नहीं, पूरा देश इस वक्त नजर आ रहा है। हमने स्टूडियो में भी माहौल बना दिया था, आपके पीछे भी तस्वीर है। श्वेता, आवाज आ रही है आपको? चलिए श्वेता के पास जाएंगे, उससे पहले मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो एक बार दिखा दीजिए। मनीषा, आपको आवाज आ रही है?
5: शगुफ्ता, मुझे लग रहा है ना कि
6: साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ऑल्टर पे जो है यहाँ पर आपको तैयारियां जो है वो नजर आ जाएगी कि किस तरीके से अब थोड़ी देर के बाद जो है अभिषेक की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम चीजें यहाँ पर जो है रखी जा रही है, और ये सभी वही चीजें जो 1008 व्यंजनों का जो भोग लग रहा था, अलग अलग प्रसादों का जो है भोग लगना था, तो वो अब मंदिर में रखना शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि कुछ देर के बाद जो है यहाँ पर आरती होगी, भगवान को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे, और उसके बाद जलाभिषेक जो है उनके अभिषेक की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि समय अब धीरे धीरे करके जो है निकट आ रहा है, और हर किसी को बेसब्री से इंतजार भी है। भीड़ हद से ज्यादा भर गई है। मैं एक बार आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर संख्या की बात करूं तो मंदिर के अंदर आपको वो संख्या नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट अच्छे से किए गए हैं, लेकिन वही मंदिर के बाहर की मैं बात करूं तो तकरीबन 1 लाख के करीब व्यक्ति जो है इस वक्त इस्कॉन मंदिर के बाहर जो है वो पहुंच चुका है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से भीड़ आनी शुरू हुई है वो वाकई में दिखा रही है कि किस तरीके से लोग जो है भगवान के इस जन्मोत्सव में जो है शामिल होना चाहते हैं। तो आप तस्वीरें देखते हैं कि किस तरीके से भक्ति में हो चुकी है, लगातार जो पीछे भजन मंडली है वो अलग अलग कीर्तन जो है,
5: बिल्कुल मनीषा,
6: जो है वो भेंट प्रस्तुत कर रही है, और उसके साथ भक्त भी उसमें लीन जो है वो नजर आ रहे हैं।
5: तो बिल्कुल, तो जैसे जैसे अब समय करीब आएगा कृष्ण जन्म का, वैसे वैसे भक्तों की अच्छी खासी तादाद वहां पर नजर आएगी। मनीषा, लौटूंगी आपके पास एक बार जल्दी से, जन्मभूमि आपको लिए चलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि। श्वेता झा वहां से हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्वेता, वहां पर भी वैसी ही रौनक, हालांकि आपके पीछे हम देख भी पा रहे हैं, क्या संख्या बढ़ती जा रही है भक्तों की?
7: बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये जन्मभूमि ही है, और अगर मथुरा को एक शब्द में बताना हो तो कृष्ण है, और कृष्ण को अगर एक शब्द में बताना हो तो ब्रज है। तो ब्रज भूमि पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और ब्रज की हर एक भूमि, हर एक कण में कृष्ण रचे बसे हैं। इसीलिए यहाँ पर जाहिर सी बात है बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी। आइए सीधे आपको दर्शन हम करवा देते हैं उस श्री कृष्ण और राधा रानी के, जिनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर देखिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं और अपने हाथ उठाकर उनको प्रणाम कर रहे हैं कई लोग। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक और बात जो मैंने पहले भी कही थी, एक बार फिर से कहूंगी, यहाँ पुलिस की व्यवस्था देख लीजिए, चाक चौबंद पूरी पुलिस व्यवस्था है। और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के खास करके सबसे ज्यादा इस बार अगर मैं कहूँ तो इस बार किसी को कोई परेशानी ना हो उसके लिए पूरी व्यवस्था हमने देखी है, और बड़े आराम से, बड़े ही सुलभ तरीके से तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं एक पंक्ति से और यहाँ दर्शन करके प्रभु का आगे जा रहे हैं। अगर आज के कार्यक्रम की आपको मैं बात करूँ तो अब 10 बजे, रात के 10 बजे जन्म महाअभिषेक यहाँ होने वाला है। रात जब 12 बजेंगे तब प्राकट्य दर्शन और आरती यहाँ होगी, जो कि स्वर्ण मंडित रजत गाय जो है उनके दुग्ध से दुग्धाभिषेक होगा भगवान का। और फिर रात 12:45 से 12:50 तक श्रृंगार आरती होगी, जो कि बेहद भव्य होगी। साथ ही 1:55 से 2 बजे तक यहाँ शयन आरती होगी। इसीलिए लगभग 1:30 बजे तक आपको बता दें श्रद्धालुओं को इस बार यहाँ पर आने की अनुमति दी गई।
5: बिल्कुल श्वेता, एक चीज बताइए, क्योंकि जहाँ आप खड़ी हैं यहाँ सबसे बड़े जो आकर्षण का केंद्र होता है वो पीछे श्री कृष्ण और राधा रानी की पोशाक होती है। आज पोशाक में क्या खास है, रंग कौन सा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
7: बिल्कुल, तो मैं अगर बताऊं, अभी चूंकि बाहर बहुत वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है रह रहकर, इसीलिए बाहर जाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं आपको वैसे बताऊं कि जो कोई भी यहां पर आए हैं मंदिर में बाहर से ही वो देख पाएंगे कि इस बार की जो थीम है वो रखा गया है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन को थीम इस बार रखा गया है, इसीलिए उसी से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, यानी कि समुद्र मंथन में कई अच्छी चीजें भी निकली थी और कई ऐसे भी चीजें निकली थी, जैसे विष निकला था जिसका पान जो है खुद भोलेनाथ ने किया था, विष पान किया था। लेकिन समुद्र मंथन में बताया जाता है कि 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में जो 5 रत्न है बताए जाते हैं, जिसमें शंख हो गया, वो गाय हो गई और तमाम वो 5 जो रत्न हुए, उन रत्नों को उकेरा गया है श्री कृष्ण के आभूषण में। इस बार जो विशेषता की बात है वो यही है, अभी जो इन्होंने वस्त्र यहाँ पर धारण किया है, पीतांबर वस्त्र इन्होंने धारण किया है, ये बस अब थोड़ी देर आप देख पा रही हैं। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे यहाँ वस्त्र जो है उसमें भी आपको वो चेंजेस देखने को मिलेंगे, और शंख कमल वो तो रहते ही है, साथ ही साथ जो वो 5 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में वो भी यहाँ पर जो है उनके वस्त्रों में उकेरा गया है विशेष करके। और इस बार विशेष करके चूंकि गाय को लेकर के ये पूरा मंदिर प्रशासन जो है गाय गौ रक्षा को लेकर के विशेष करके मुहिम उसने छेड़ी हुई है, और हर कोई जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहा है उनको यही कह रहा है, मंदिर प्रशासन कह रहा है कि आप प्रतिज्ञा लें कि गौ माता की हम रक्षा करें, क्योंकि गौ माता जो है उन्हें माता का हमने दर्जा दिया ही है, और साथ ही श्री कृष्ण से किस तरह से गाय और उनकी बांसुरी।
4: बिल्कुल, ये संकल्प हम सबको आज के दिन लेना चाहिए। और ब्रज के रज में कृष्ण बसे हैं, ये तस्वीरें बहुत सुंदर तस्वीरें जो लगातार आप दिखा रहे हैं। श्वेता, लौटती हूँ आपके पास, एक बार मनीष का भी रुक कर लेते हैं, मनीष नोएडा में मौजूद हैं। मनीष, देखिए जो बात नवजोत ने कही ना कि जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है वैसे वैसे हर जगह की तस्वीरें और भी खिलती जा रही है, रंगत लगातार बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ पर क्या कुछ आप तस्वीरों में तब्दीली देख पाए हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं कि लगातार संख्या और भी बढ़ी है श्रद्धालुओं की?
3: देखिए, हम सब जानते हैं कि उस छोटे से बच्चे का एक्साइटमेंट क्या होता है जिसका जन्मदिन हो और केक कटने का समय धीरे धीरे धीरे धीरे करीब आने वाला होता है। यहाँ पर एक्साइटमेंट उस बच्चे जैसा इन तमाम सारे श्रद्धालुओं में दिखाई पड़ रहा है। कृष्ण की गोपिकाएं जो बनकर आई हैं उनमें वो एक्साइटमेंट दिखाई पड़ रहा है। जो बहुत सारे लोग आप लाइन में देख रहे हैं ना, अब हालात ऐसे हैं कि यहाँ से आप तस से मस नहीं हो सकते, ये पूरी जगह लगभग भर चुकी है। बाहर लंबी कतार है, लोग इंतजार कर रहे हैं पूरे सब्र के साथ, मैंने पहले भी कहा था, और संख्या लगातार यहाँ पर लोगों की बढ़ती जा रही है। अभी जो वक्त है वो लगभग 9:18 हो रहे हैं, 11 बजे से ये उत्सव और अपने चरम पर होगा जब तमाम सारी प्रक्रियाएं क्रियाएं शुरू हो जाएंगी। 11 बजे से भोग लगना शुरू हो जाएगा, 500 से ज्यादा व्यंजन बनाए गए हैं और हर कोई अब उसी वक्त का इंतजार कर रहा है। यहाँ बैठे बैठे हरे राम हरे कृष्ण का जो मंत्र है वो लगातार लोग जप रहे हैं, उसकी नाम धुनी चल रही है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि बैठे बैठे थोड़ा सा कृष्ण बन लिया जाए, थोड़ी सी राधा बन लिया जाए, थोड़ा सा सुदामा बन लिया जाए, थोड़ा सा सखा बन लिया जाए, क्यों ना अपने आप में थोड़ा सा ब्रिज बना लिया जाए, मथुरा बना लिया जाए, वृंदावन बना लिया जाए।
4: बिल्कुल,
3: तमाम सारे भक्त इसी उम्मीद के साथ इसी ख्वाहिश के साथ कुछ यहाँ झूम रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ एक किनारे बैठकर बस उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब केक कटेगा, श्री कृष्ण प्रकट होंगे और भक्तों को जिस दर्शन की अभिलाषा है वो दर्शन पूरे होंगे।
5: बहुत सही कहा मनीष आपने कि उस बच्चे की एक्साइटमेंट क्या होगी क्योंकि केक कटिंग का वक्त बहुत नजदीक आ रहा है। ये एक ऐसा पर्व है ना जो कि हर कोई अपने अंदाज में अपने तरीके से इस पर्व को मनाता है। हमने देखा है कि भक्ति भाव में लीन भक्त भी नजर आते हैं और ऐसे भक्त भी हैं जेन ज़ी टाइप जो केक कटिंग करके मनाते हैं श्री कृष्ण का जन्मदिन। एक बार मैडम आपका रुख कर लेती हूँ, जयपुर में किस तरह की रौनक नजर आ रही है, दिखाइए जरा तस्वीरें आसपास की।
8: जयपुर में नजारा भी बदल चुका है, जैसे हर जगह का नजारा समय के साथ साथ बदलता जा रहा है। जैसे वो समय करीब आ रहा है जब श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो उसी की एक्साइटमेंट यहाँ पे जयपुर के श्री गोविंद देव जी मंदिर में भी नजर आ रही है। अभी शयन का समय चल रहा है, जिसकी झांकी जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। श्री कृष्ण श्री गोविंद देव जी अभी बहुत ही साधारण सी पोशाक में नजर आ रहे हैं। 9:15 बजे से 10:30 बजे तक का ये जो समय है, ये शयन का समय है, जिसमें अभी अभी शयन की जो आरती है वो हुई है, जिसके बाद में 11:15 बजे जो है वो आरती, मंगला आरती जो अगले दिन की तिथि पे होती है, वो इस बार 11:15 बजे ही यहाँ पे हो जाएगी। एक बार रौनक मैं दिखाती हूँ किस तरीके से भक्तों की जो भीड़ है वो बढ़ चुकी है। पीछे की ओर जहाँ सभी भक्त हैं वहाँ कदम रखने की भी अब जगह नहीं बची है। कीर्तन लगातार चल रहा है, पिछले 3 से 4 घंटों से अलग अलग भजन मंडलियां जो है वो यहाँ पे आई हुई है और कीर्तन लगातार चल रहा है। भक्ति भाव हर भक्त के चेहरे पे दिख रहा है। 11:30 बजे के करीब महाअभिषेक शुरू हो जाएगा, जिसमें करीब 425 किलो दूध से, 365 किलो दही से, 85 किलो बूरा, तो 11-11 किलो शहद व घी से भगवान गोविंद देव जी का जो महाअभिषेक है वो किया जाएगा। 12:00 बजते ही यहाँ पर 31 तोपों की जो आतिशबाजी है वो की जाएगी। जैसे हर बच्चे का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही यहाँ पे सभी भक्त अपने गोविंद देव जी का, अपने कृष्ण का जन्मदिन जो है वो मनाने के लिए अभी से यहाँ पहुँच चुके हैं।
4: हर श्रद्धालु, हर भक्त जो कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन है, वो अपने अपने तरीके से अपने आराध्य के आने का इंतजार कर रहा है टकटकी लगाए। चलिए इसी के साथ आप बने रहिए सभी सहयोगी मेरे साथ। श्रुति खरबंदा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रुति जी देखिए कन्हैया आ रहे हैं, तो कन्हैया के स्वागत के लिए तो पूरा देश तैयार है ही। अब मुझे ये बताइए कि हम चूंकि एक मलाल सा है कि मथुरा तो हम जा नहीं पाए, तो हम यहाँ बैठे कृष्ण कन्हैया को कैसे पा सकते हैं?
9: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखें, खुशी की बात है, तो श्री कृष्ण की पूजा तो आप जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठ के आप पालती पालती मार के बैठ जाइए और उनका जाप करना शुरू कर दीजिए, तो वो तो सेलिब्रेट हो ही जाएगा। वैसे विधि विधान से कहा जाता है कि जब जन्म हो जाता है रात को 12 बजे से, बताते हैं कि अभी तो शयन का समय हो गया है कि सब सो जाएंगे और फिर दोबारा जब वो जन्म लेंगे, जैसे प्राकट्य, क्योंकि मंदिर में तो प्रकट होंगे, वो पर्दा खोलेंगे और उनको क्या कहते हैं, उनका पंचामृत से स्नान होगा, उनका श्रृंगार होगा, उनको जो आभूषण पहनाए जाएंगे, तिलक लगाया जाएगा। तो जैसे मथुरा में मुझे लगता है कि मथुरा वृंदावन में जो बचपन वाला जो फन एलिमेंट है, जो विहार का लीला वाला एलिमेंट है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए धूमधाम से बनती है। द्वारका में जो है वहाँ राजा का राज्याभिषेक होता है, क्योंकि वहाँ के तो राजा है द्वारिकाधीश, तो जय द्वारिकाधीश। वो तो रुक्मणी जी का क्षेत्र है, वहाँ राधा का नाम इतना नहीं होता। मुझे लगता है कि रात तक जब तक हम जग रहे हैं, क्योंकि मैंने भी आज व्रत रखा हुआ है, तो जब तक जग रहे हैं आप कहीं भी बैठे हैं आप कान्हा में ही ध्यान लगाइए, उन्हीं का जो है नाम लीजिए। क्योंकि देखिए एक और बात मैं अभी बैठे बैठे सोच रही थी जब ये बात हुई कि पीला रंग देखें कितना प्रमुख है और कितना इम्पोर्टेंट है, मैं देख रही थी वही हमारा दिमाग वैसे ही चलना शुरू हो जाता मैपिंग की तरह से, तो आया कि भाई कृष्ण जी का रंग तो श्याम है, वो सांवले हैं, सारे ब्रह्मांड के रहस्य जो है अपने अंदर छुपाए हुए हैं शून्य वाला, और जो पीला रंग होता है वो ऊर्जा का है, ये शून्य और ऊर्जा का कहीं ना कहीं समन्वय संतुलन है। तो वो जो संतुलन है कृष्ण के आचरण में दिखता है कि पूरी जिंदगी, वो हमेशा यही कहते हैं, गीता का ज्ञान भी यही था ना कि स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि बनाए रखना। तो इस तरह की जब हम उनकी बातें और उन्हीं की जो टीचिंग्स हैं उसी पे ध्यान हम दें, तो मुझे लगता है वो सबसे उत्तम तरीका हो सकता है उनके जन्मदिन को मनाने का, क्योंकि उसका मकसद भी यही है। उनकी पूरी की पूरी जो जिंदगी है वो देखे, अष्टमी तिथि को वो पैदा हुए, वो 8वीं संतान थे देवकी के, और रात को पैदा हो रहे हैं तो 8 नंबर शनि का, इन्फिनिटी का जिसको हम कहते हैं, और शाम तो हम कह ही रहे हैं कि वो सांवला रंग की, अनंत आकाश का जो रंग है वो शाम है, वो अनंत है, अनंत भी उनका एक ये नाम आ जाता है। तो इस तरह जब हम उनको ध्यान करते हैं, उनकी बातें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सी चीजें हमारे जीवन में जो है हमें एक क्लैरिटी मिलने लगती है और एक उम्मीद जागती है कि ईश्वर ने जैसे सबका जो है ना, सबके कष्ट दूर किए, नकारात्मकता सारी दूर करी, सबके विघ्न जो है दूर करे, हमारे जीवन में भी उनके प्रकट होने से, उनके जन्मोत्सव से जो है वो फिर से एक कहते हैं ना कि गाइडेंस आएगी, क्योंकि श्री कृष्ण ने गाइड तो सबको किया लेकिन जीते वही जिन्होंने उनकी बात सुनी और उसका अनुसरण किया। तो अगर हम उनका अनुसरण करेंगे उनके
5: बिल्कुल, और वैसे भी श्रुति जी कहा जाता है ना कि अगर आपको कलयुग में किसी अच्छे काउंसलर की जरूरत है तो शायद श्री कृष्ण से बड़ा काउंसलर कोई हो नहीं सकता है। हर जगह पे उनकी किसी भी लीला को आप देख लीजिए, जीवन की किसी भी पड़ाव को देख लीजिए, हर जगह अलग अलग संदेश ही छिपे हुए हैं जो आज की तारीख में कम से कम लगता है कि लोगों को अपने जीवन में धारण करने चाहिए। भागती दौड़ती जिंदगी है, पेशेंस नहीं है, वक्त नहीं है किसी के पास, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा हो चुका है, रिश्तों में बहुत ज्यादा तकरार आ रही है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर चलते हुए ही हम आगे अपना जीवन पालन कर सकते हैं। एक बार मनीषा के पास चलेंगे, श्रुति जी आपके पास लौटूंगी। मनीषा लड्डा हमारे सहयोगी इस वक्त इस्कॉन टेम्पल से मौजूद है। मनीषा, तस्वीरें दिखाइए जरा वहां की।
6: बिल्कुल बिल्कुल अफजोद, मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं लगभग आपको पूरी होती हुई नजर आ जाएगी। और ये सभी आप जितने भी सामने जो ये प्रसाद देख रहे हैं सभी में जो है रस है अलग अलग फलों का, जो अभी थोड़ी देर के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो है उससे जल अभिषेक जो है उससे किया जाएगा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वहां पर लगातार तैयारियां जो है वो चल रही है, बट लगभग पूरी भी हो चुकी है। लेकिन भक्तों की भीड़ एक बार दिखा देती हूँ कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और बाकी में अब मैनेज करना थोड़ा सा यहाँ के लोगों के लिए भी मुश्किल हो गया है। लेकिन पीछे जो आप मंडली देख रहे हैं जो लगातार भजन कीर्तन कर रही है, उन्होंने बाकी में समा पूरी तरीके से बांधा हुआ है। तो आप पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको लोग पूरी तरीके से झूमते हुए जो है वो नजर आ जाएंगे। और बाकी में अब जो है जैसे जैसे वक्त निकट आ रहा है उतना ही एक्साइटमेंट भक्तों के अंदर जो है वो दिखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हर कोई जो है अब बेहद उत्सुक है कि कब कान्हा जी जो है वो जन्म लेंगे और हर कोई उनके दर्शन करेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो लोग सेवा के लिए है वो भी आपको झूमते हुए नजर आ जाएंगे। तो एक तरफ सेवा तो जरूर हो रही है लेकिन उसके साथ ही आपको भक्त जो है भक्तों के साथ ऐसी सेवा करने भी जो है वो झूमते हुए नजर आ जाएंगे। तो तस्वीरें वाक्य में बहुत अच्छी नजर आ रही है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माहौल अब वाक्य में जो है भक्ति में हो चुका है। हर कोई ये जो है यहाँ पे वो रंग चुका है और वाक्य में अब आनंद आ रहा है। जैसे जैसे घड़ी जो है वो निकट आ रही है, एक बार तस्वीरें फिर दिखाती हूँ। हरी बोल के लगातार आपको तस्वीरें जो है पीछे नजर आ जाएगी। मैं एक बार तस्वीरें वापस दिखाना चाहूंगी किस तरीके से आपको हर कोई जो है कान्हा के रूप में या राधा के रूप में जो है यहाँ पर नजर आ जाएगा। और वाक्य में फिलहाल ये जो माहौल है वो पूरी तरीके से भक्ति में हो चुका है। भजन और जयकारों की आवाज लगातार आपको सुनाई दे रही है कि किस तरीके से मंदिर में रंग बिरंगी रोशनियां जो है वो आपको नजर आ जाएगी और श्रद्धालु की जो भीड़ लगातार इसी तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी। और अब इंतजार सिर्फ उस शुभ घड़ी का है जब मध्य रात्रि में जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा नवजोत और नंद के आनंद में जो कहते हैं नंद के लाला जब जन्म लेंगे तो वाकई में उस वक्त हर कोई वो तस्वीर बस अपने आंखों में कैद रखना चाहता है। तो वो तस्वीरें आपको नजर आएगी,
5: हर कोई उस वक्त का इंतजार कर रहा है, हर कोई आनंदित हो उठेगा जब वो लम्हा जब वो क्षण आएगा। चलिए एक बार फिर से श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता आपके पास आते हुए, श्वेता देखिए ब्रज की धरती पर आप मौजूद हैं। श्वेता आज आप श्वेता नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति में लीन एक भक्त नजर आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी जाता है ना वो कृष्णमय हो जाता है। आपकी अनुभूति क्या है आज?
10: बिल्कुल, अनुभूति ऐसी है कि जैसे मैं जब से यहाँ पर ब्रजभूमि में मैंने कदम रखा है तब से उसे महसूस ही कर रही हूँ। और जितनी बार लाइव नहीं हो रहा होता है उतनी बार मेरी कोशिश होती है कि एक नजर फिर से मैं जी भर के कान्हा को देख लूँ। और ना सिर्फ मैं आपको बता दूं शक गुप्ता, यहाँ पहुंचा हर एक श्रद्धालु, हर एक शख्स, चाहे वो पुलिस वर्दी में क्यों ना हो,
7: चाहे वो अपने किसी काम से क्यों ना आया हो और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, या फिर बाकी जितने श्रद्धालु जो दूर दूर से आए हैं आप उनको देख सकते हैं, हर कोई यहाँ पर आकर इस वक्त यही अनुभूति कर रहा है कि वो कृष्ण जो कहने को तो मथुरा की कृष्ण है, जिन्होंने जन्म लिया मथुरा में, वो सिर्फ मथुरा के नहीं या फिर सिर्फ ब्रज के नहीं है, वो पूरे विश्व के हैं, वो हम सब के हैं, क्योंकि हर कोई अपने आप में कृष्ण का वो अंश देखता है और यहाँ पर जब पहुंचता है तो इसी तरह से अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है श्री कृष्ण में, क्योंकि श्री कृष्ण ही वो पुरुषोत्तम है जिनके अंदर वो सारे रूप वो सारे स्वरूप हैं, जिसकी चर्चा लगातार गुड न्यूज स्टूडेंट में हमार भी है, तो कृष्ण वो भी है जो कि यशोदा जैसी किसी भी माँ की गोद में बैठा एक बालक है, और कृष्ण एक मित्र भी है, एक सखा भी है। मनीष लगातार जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां जितने भी स्कॉन में जितने भी महिलाएं आए हैं वो गोपियों के वेश में आई हैं। दरअसल हर कहीं भी आज जितने भी कृष्ण मंदिर हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे यहाँ मंदिर है, अगर आप वहां जाएंगे, देवालय जितने भी है वहां आप जाएंगी, आप वहां पर यही अनुभूति करेंगी, और ये एहसास खास करके और ज्यादा हो जाता है आपका जब आप कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचती हैं। वही समय, हालांकि आपको बता दें, एक वो पल था इंतजार का और आज भी वो पल है जब घड़ी की सुइयां मध्य रात्रि पर पहुंचेगी और इसी धरती पर जन्मे उस बालक का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसे कोई कान्हा कहता है, कोई नंदलाल, तो कोई गोपाल, और कोई अपना आराध्य। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं
4: जी।
7: और कहानी, हालांकि उस रात की एक काली कहानी थी जो कि काल कोठरी की थी, लेकिन उस काल कोठरी में भी किस तरह से उत्पन्न हुआ एक तेज जिसने पूरे विश्व को, और उस समय खास करके चूंकि कंस का कारागार था और उस समय किस तरह से जो उस समय वो अहंकार था वो सबका उसने नाश किया, वो हमने आपको दिखाया और आज उन्हीं का यहाँ पर जन्म हो रहा है। तो हम यहाँ जब आप पहुँचते हैं ना, तो आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मकताएं हैं वो सारी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है और सिर्फ सकारात्मक होकर आप यहाँ से जाते हैं।
5: बिल्कुल, पॉजिटिविटी का ही ये पूरा उत्सव है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको पॉजिटिविटी ही, चाहे वो हमारी स्क्रीन हो या फिर जहां जहां हमारे तमाम संवाददाता खड़े हैं वहां से नजर आ रही होगी। श्वेता जहां हमारे साथ है, मनीष हमारे साथ है, मनीषा हमारे साथ है, रुद्रम हमारे साथ मौजूद हैं, तो पूरे देश में किस तरीके से रौनक है, कैसी खूबसूरत तस्वीरें, भक्तिमय तस्वीरें आ रही हैं, हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है और देश में किस तरीके से रौनक है उसकी तस्वीरें भी देखिएगा इस ब्रेक के बाद। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटते हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

चलिए देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी आपको रायपुर की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वो भी कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से सराबोर नजर आ रहे हैं। देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही तस्वीरें नजर आएंगी। कृष्ण भक्ति का रंग हर किसी पर चढ़ा है। यहां पर कृष्ण भगवान की किस तरह से आरती की गई, उनका जलाभिषेक किया गया, उसकी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। उनके साथ आम मंत्रीगण भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं। लोगों की उपस्थिति इसीलिए है क्योंकि भगवान कान्हा आज पधार रहे हैं अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए। हर कोई यहां पर आया है।

0: ಸಾಧಕಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ ದಿವಿವ ಚಕ್ಷುರಾಪತಂ ತದನುಪ್ರಾಶೋಭಿ ಮಂದಂ।
1: और जैसा हम देख ही पा रहे हैं कृष्ण जन्मोत्सव है और पूरे देश में रौनक बिखरी हुई है। अब आपको दिखाते हैं मथुरा की तस्वीरें, वहां की रौनक कैसी है। वैसे तो हमारे संवाददाता वहां मौजूद है, लेकिन वहां की रौनक देखिए, असल में कितनी बड़ी संख्या में भक्त वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे घड़ियां नजदीक आएंगी, यहाँ पर भक्तों की संख्या और ज्यादा बढ़ती जाएगी। केवल मथुरा या उत्तर प्रदेश से ही नहीं, बल्कि आज के दिन यहाँ पर जन्मभूमि में पूरे देश से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए। और यही वो तस्वीरें हैं जो लगातार आपको दिखा रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीरें, मथुरा की तस्वीरें, जहां पर हमारे संवाददाता भी लगातार मौजूद हैं। अब देखिए, कृष्ण भक्ति को सेलिब्रेट करने का ना हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। हर जगह पर रंग भी अलग अलग नजर आए हैं। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कृष्ण भक्ति में लीन लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, वो तस्वीरें सीधा आपके सामने रखते हैं।

बेहद खूबसूरत भव्य तस्वीरें अलग अलग जगह से लगातार सामने आ रही है। एक और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हम आपको आगे दिखाते हैं। पूरे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह पर उत्सव की रौनक नजर आ रही है। तमिलनाडु के थुडुकुडी आपको लिए चलते हैं और वहां की तस्वीरें देखिए जरा कैसी रौनक है वहां पर, अलग अलग तरीके से वहां अलग अलग झांकियां निकाली जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर मुझे भी हमारा बचपन याद आया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किस तरीके से झांकियां बनती थी और गली गली मोहल्ले में हम लोग जाया करते थे झांकियां देखने के लिए। ये थुडुकुडी की तस्वीरें हैं तमिलनाडु की, जहां पर शोभा यात्रा भी निकाली गई है और साथ ही साथ अलग अलग झांकियां आतिशबाजी के साथ यहां पर भक्ति में लीन भक्त नजर आ रहे हैं।

0: खूबसूरत तस्वीरें। और शगुफ्ता, एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, श्री कृष्ण के पूरे जीवन काल को अगर आप देखेंगे तो हर किसी का उनको मानने का तरीका अलग अलग है। कोई उनके बाले रूप को प्रभु की तरह मानता है, कोई उनको सखा की तरह देखता है, कोई उनको अपनी प्रेमी की तरह देखता है, कोई उनसे ज्ञान लेता है जहाँ पर वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं। तो हर किसी का श्री कृष्ण को पूजने का, उनको मानने का तरीका अलग अलग है। और आज हर भक्त में वही तस्वीर नजर आ रही है, कहीं बाल रूप की पूजा हो रही है, कहीं सखा के रूप में वो पूजे जा रहे हैं।
1: बिल्कुल। चलिए, दक्षिण की तस्वीरें आपको दिखा दी। अब जरा देश के एक हिस्से से निकलकर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती है हमारी ट्रेन और यहाँ पर जाकर रुकती है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। यहाँ की तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ भी कृष्ण भक्ति में लीन तमाम भक्त आपको नजर आएंगे। सुंदर सी तस्वीर आपके सामने रखते हैं जहां पर किस तरह से जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट किया गया है। बच्चे यहां पर बाल स्वरूप में आपको नजर आ जाएंगे और इनके इर्द गिर्द भी देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, कितनी सुंदर प्रस्तुति है।
0: और यहां की प्रस्तुति की खास रंग देखिए कि रंग वही जो श्री कृष्ण को पसंद है, पीला। लेकिन यहाँ का जो पूरा अटायर है श्री कृष्ण का वो बदल जाता है। जो मणिपुरी वेशभूषा है, वहाँ की जो फोक ड्रेस है, देखिए उसका टच आपको यहाँ पर नजर आएगा। मणिपुर का असली फोक रंग यहाँ पर नजर आएगा, लेकिन वही प्रभु को मानने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन भाव सबका एक ही रहता है।

0: चलिए अब राजधानी दिल्ली की तस्वीरें भी देख लीजिए। दिल्ली के द्वारका में किस तरीके से कृष्ण भक्ति में लीन है भक्त, जरा वहां की रौनक भी देखिए। ये दिल्ली का द्वारका मंदिर जहां पर भक्त पहुंचे हैं और अपनी अपनी तरह से यहां पर श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति में लीन भक्त यहां पर नजर आ रहे हैं।
1: तस्वीरें आई थिंक ये दिखा रही है नवजोत की कुछ गेम खेली जा रही है यहाँ, मटकी फोड़ने की ये गेम जो है वो यहाँ पर चल रही है, क्योंकि दही हांडी का त्यौहार भी मनाया जाएगा तो उसके मद्देनजर भी कई जगह पर आपको वैसी तस्वीरें और वैसी रौनक भी नजर आएगी।
0: तो पूरे देश में, वैसे देश ही नहीं, हम विदेशों की भी बात करें क्योंकि आज न्यूजर्सी की तस्वीरें भी आई थी, वहां पर भी कृष्ण के भक्त हैं और भक्ति में किस तरीके से लीन होकर वो आज इस उत्सव को मना रहे हैं, वो तस्वीरें भी आई थी। तो चाहे पूरब हो, पश्चिम, उत्तर हो, दक्षिण, हर जगह पर कृष्ण भक्त पूरी तरह से भक्ति में लीन है और जैसे जैसे जन्म की घड़ियां नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे भक्तों का जोश उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है।
1: चलिए अपने सहयोगियों के पास चलते हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से मनीष के पास। मनीष, देखिए वही बात कि रंगत तो बढ़ेगी, रंग तो और गाढ़ा होगा, हमारी धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं कि किस वक्त कान्हा पधारेंगे और हमारे कष्टों का हरण कर लेंगे। इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जरा दिखा दीजिए।
2: मुझे पता है कि हम सबकी धड़कनें तेज हो रही हैं क्योंकि वक्त बहुत करीब आ रहा है। याद बस उस समय को करिए जब हम छोटे हुआ करते थे और बचपन में व्रत करते थे, अभी भी हम करते हैं, लेकिन तब एक्साइटमेंट इस बात की होती थी कि 12 बजेंगे तो अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। आप उस खाने को याद करिए तो शायद आपका जो इंतजार है वो शायद थोड़ा छोटा हो जाएगा। और वैसे ही इंतजार में लोग यहाँ पर भी लगातार पहुँच रहे हैं, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, भक्त लगातार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, जो हरे कृष्ण हरे राम का उद्घोष है वो और तेज होता जा रहा है। कतार बहुत लंबी है, पुलिस प्रशासन के लोग अभी तक बाहर थे, अब वो अंदर आ गए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इस लाइन को बढ़ाने की जो स्पीड है उसे थोड़ा और गति देनी पड़ेगी ताकि जो बाहर लोग खड़े हैं उनका जल्दी से भीतर आने का नंबर आ पाए, क्योंकि बाहर भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो इंतजाम अपने हिसाब से सारे किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, मंदिर की तरफ से, लेकिन अब भक्तों का तांता लगना यहाँ पर शुरू हो गया है। हर कोई कोशिश करता है कि लाइन में लगे लगे ही सही। जब हम उन्हें अपनी आंखों से निहारें तो एक बार उनकी तस्वीर भी अपने फोन में कैद कर लें, लेकिन अगर हर कोई तस्वीर कैद करने में लग गया तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर आप कई लोगों को देखते हैं जब उनका हाथ नीचे किया जाता है, उनका फोन बंद किया जाता है। सामने आप दरबार में तस्वीर देख रहे हैं कि कृष्ण और राधा की एक छोटी सी मूर्ति लाकर रखी गई है और अब यहाँ पर उनकी पूजा की जा रही है, भोग लगाया जा रहा है, यहाँ भोग लगाया जाएगा उन्हें थोड़ा सा।
0: बिल्कुल,
2: जो मुख्य पूजा है वो लगभग 11 बजे के आसपास यहाँ पर शुरू हो जाएगी। 11 बजे वो वक्त होगा जब श्रृंगार का वक्त होगा, उन्हें अभिषेक कराया जाएगा, जो व्यंजन बनाए गए हैं वो सब व्यंजन परोसे जाएंगे, वो सब कुछ प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन उसका छोटा सा एग्जाम्पल है वो अभी आप देख रहे हैं कि कैसे जो पूजा पाठ है वो रफ्तार पकड़ने लगी है। तमाम सारे जो पुजारी हैं वो दरबार में अब आ गए हैं।
0: बिल्कुल, 11 बजे विशेष पूजा शुरू होगी और उधर जन्मभूमि में भी 11 बजे ही विशेष पूजा शुरू होनी है। अब तस्वीरों की बात मनीष कर रहे थे, शगुफ्ता मुझे याद आया कि देखिए सेल्फी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो फोन सबके हाथ में होता है, अब त्योहार है, मनाने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी तस्वीर सबको दिखानी होती है, इसलिए पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
1: आपने और मैंने अभी एक पोस्ट डाली है ना, हम भी तो रील के जमाने के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं,
0: हम भले स्टूडियो में इस उत्सव को मना रहे हैं लेकिन पूरी तरह से हम भी भक्ति में लीन।
1: तो देखिए आजकल का वक्त, जनरेशंस देखिए ना, जनरेशंस जो हैं आजकल की वो इन सब तस्वीरों का कैमरा में कैप्चर करना चाहती हैं, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, अपने तरीके से मनाने का उनका। और सेल्फी अगर आप कहीं जाकर नहीं लेते तो उनके लिए वो अधूरा सा,
0: अधूरी रह जाती, यात्राएं भी अधूरी रह जाती। एक बार रिदम का रुख कर लेते हैं जयपुर। रिदम दिखाइए तस्वीरें, रिदम जैन
3: जी जी देखिए यहाँ पे मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अभी वेद पाठ जो है वो गोविंद देव जी को सुनाया जा रहा है और यहाँ शयन की जो पोशाक है उसमें वो नजर आ रहे हैं, भक्ति भाव चारों तरफ नजर आ रहा है, पीछे की ओर कीर्तन भी चल रहा है, जोश भी नजर आ रहा है, झूमते हुए सभी भक्त अभी अपने आराध्य की जो आराधना है वो इस समय पे कर रहे हैं, राधा कृष्ण की रास लीला भी चल रही है, हर एक भक्त के चेहरे पे एक्साइटमेंट है कि कब 12 बजेंगे, कब महाअभिषेक होगा। जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है वैसे ही वो अपने कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि सभी भक्त, काफी सारे भक्त ऐसे हैं जो अपने लड्डू गोपाल भी यहाँ लेके आए हैं जिससे यहीं पर उनका जन्मदिन जो है वो मना सके। छोटे छोटे कान्हा जी जो है, गोपियां जो है वो भी यहाँ पे आई है, राधा बन के बच्चे आई है, तो वो एक्साइटमेंट सभी के चेहरों पर दिख रहा है, भक्ति सभी के चेहरों पर दिख रही है, कीर्तन लगातार चल रहा है, भजन चल रहे हैं और हम पीछे देख पाएंगे लोग कैसे झूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीच में पीछे की ओर जहाँ सभी भक्त हैं तो उनके बीच में राधा कृष्ण की जो रासलीला है वो बहुत ही खूबसूरती से चल रही है, जिसको अभी हर एक भक्त एंजॉय कर रहा है, देख रहा है। कुछ ही देर में वो समय आ जाएगा जब महाअभिषेक होगा, जैसे कि मैंने बताया कि करीब 425 किलो दूध से, 365 किलो दही से और ऐसे ही 85 किलो बूरा, 11-11 किलो शहद और घी से जो महाअभिषेक है वो किया जाएगा। 12 बजे ये जो समय है उसके सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि महाअभिषेक के साथ साथ 31 तोपों से जो आतिशबाजी है वो यहाँ पे बहुत ही ग्रैंड होने वाली है। तब तक के लिए वेद पाठ गोविंद देव जी को सुनाया जा रहा है 10:30 बजे तक, ये शयन का समय है।
0: तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें हैं बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त अलग अलग जगह पर, देश के तमाम मंदिरों से ऐसी ही तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें जब श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों को सजाया जा रहा है, सवारा जा रहा है नई नई अलग अलग रंग बिरंगी पोशाकों के साथ, और इसी को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। ये नोएडा की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
4: देखिए नोएडा में भी ऐसी ही रंगत आपको नजर आएगी, नोएडा के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, किसी भी मंदिर में इस वक्त आपको कृष्ण भक्ति में लीन तमाम श्रद्धालु नजर आएंगे, लेकिन कृष्ण आरती यहाँ पर उतारी जा रही है, कृष्ण भगवान और राधा रानी साथ में मौजूद हैं, इन दोनों का यहाँ पर जलाभिषेक भी किया जाएगा, दुग्धाभिषेक भी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले देखिए आरती की जा रही है क्योंकि जन्मोत्सव का ये मौका है, तो जन्मोत्सव से पहले की प्रक्रियाएं हर जगह पर शुरू कर दी गई हैं। भक्तगण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए और सिर्फ एक ही मनोकामना हर किसी के मन में कि जैसे ही नंदलाला पधारेंगे हम उनके दर्शन अवश्य करेंगे,
0: और ऐसा रहता भी है क्योंकि अभी से ही भक्तों की संख्या, हालांकि सुबह से गुड न्यूज टुडे आपको दिखा ही रहा है, सुबह क्यों, हम कल से ही लगातार आपको दिखा रहे हैं जब भक्त पहुंचते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सुबह आए दर्शन कर लिए फिर उसके बाद शाम के दर्शन बहुत अहम होते हैं, और स्पेशली अगर रात 12 बजे की बात की जाए तो वो दर्शन बहुत जरूरी हो जाते हैं। चलिए एक बार जल्दी से जन्मभूमि का रुख कर लेते हैं मथुरा, जहां से श्वेता झा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। श्वेता इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, तस्वीरें दिखाइए।
5: बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन संजय से कहूंगी, सबसे पहले तो आप लगातार जैसे दर्शन कर ही रहे हैं श्री कृष्ण और राधा रानी के यहाँ पर, और अब धीरे धीरे जो है यहाँ पर देखिए जो श्रद्धालु हैं उनकी कतार जो है अब वो कम होती जा रही है, उन्हें अब आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 10 बजे का समय, 9:50 हो गए हैं, 10 बजे यहाँ पर जन महाआरती की जाएगी, यहाँ पर जन महाभिषेक यहाँ पर किया जाएगा और 12 बजे के आसपास प्राकट्य उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा, और उस बीच आप देख सकते हैं कि यहाँ कामधेनु गाय जो है वो यहाँ पर मौजूद है, पहले काफी देर तक इसे ढका गया था और अभी जस्ट इसे हटाया गया है, यानी कि धीरे धीरे आप समझ लीजिए कि वो समय, वो घड़ी अब नजदीक आ गई है जब श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जिसका इंतजार लंबे समय से न सिर्फ मथुरा और ब्रजवासी कर रहे हैं बल्कि पूरा देश, पूरा विश्व कर रहा है, वो घड़ी अब नजदीक आ रही है, अब उसकी तैयारी धीरे धीरे हो रही है। मंदिर के ठीक सामने जो अब जगह है आप देख सकते हैं पूरी तरह से उसकी साफ सफाई हो चुकी है, अब यहाँ पर आरती की थाल लाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 बजे के आसपास यहाँ पर महाभिषेक होना है और उसके बाद 12 बजे के आसपास प्राकट्य दर्शन और आरती यहाँ पर की जाएगी, तो
6: इसी तरह से यहाँ पर लगातार 12:45 से लेकर 12:50 तक श्रृंगार आरती होगी और फिर शयन आरती 1:55 से लेकर 2 बजे तक। क्योंकि कहते हैं ना कि श्री कृष्ण जो है यहाँ तो बहुत ही सीधा हिसाब है, यहाँ पर ज्यादा बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है भगवान और भक्त में। यहाँ कहते हैं कि भाई अभी अभी लल्ला का जन्म हुआ है तो वो कैसे जाग सकता है, तो इसलिए जैसे ही यहाँ पर आरती होगी, उनका जन्म होगा, उनकी आरती होगी, श्रृंगार किया जाएगा, यानी कि अच्छे वस्त्र पहना देना, तैयार कर देना, और फिर बच्चा जैसे बालक घर में सो जाता है छोटा बच्चा, वैसे ही ये सो जाएंगे। तो 2 बजे के आसपास तक वो शयन आरती खत्म हो जाएगी और इसी के साथ यहाँ का जो उत्सव है, देखिए अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं ये कंठक ध्वनि, जैन से खास करके 52 लोगों की ये टोली आई है। मैं आपको दिखाऊंगी ये तस्वीरें, मिस मत करिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एक बार शानदार यहाँ पर इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन उज्जैन में जो भस्म आरती होती है, वो भस्म आरती उसके जो सदस्य हैं वो सारे यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर भोलेनाथ की नगरी से श्री कृष्ण को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं। करताल यहाँ पर बजेंगे, ढोल यहाँ पर बजेगा और लगातार यहाँ पर
0: बिल्कुल
6: तरह से
0: तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। एक बार श्रीपति आचार्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्रीपति आचार्य जी, तस्वीरें हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत अहम आज का दिन, शिक्षाओं की बात करें, भगवान की लीलाओं की बात करें, भगवान के पूरे जीवन काल की किसी भी पड़ाव की बात करें, हर जगह से हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई संदेश प्रभु से हमें मिलता ही है।
7: जी जी, एक्चुअली भगवान जय श्री कृष्ण सारे देशवासियों को यही मैसेज दूंगा कि आज जो भगवान जी का जन्म हो रहा है, कन्हैया लाल का जो जन्म हो रहा है, ये हम लोग का की सृष्टि में जैसे भगवान जी का आना कहीं ना कहीं हम लोग का सारे भक्तों के लिए यही होता है कि हम लोग का पाप जो होता है, हम लोग का जो कर्म का फल होता है, हम लोग का जो कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाएंगे तो कि हम लोग का सारे ग्रह वही भगवान के पास ही है। इसलिए भगवान ने बोले थे भागवत गीता में कि मैं ही हूँ ग्रह रूपी जनार्दन। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो आज ही उसी वही दिन है कि हम लोग कि आज भगवान जी का ये जो आने का टाइम है, कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ हम लोग को भगवान को समर्पण करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। यही मैसेज मैं दूंगा कि सबका काम है कि आज समर्पण भाव के साथ वही कन्हैयालाल जी का जन्म के मुहूर्त में, जो शुभ मुहूर्त नहीं वो चमत्कार मुहूर्त होता है, ज्योतिष के हिसाब से बोलूंगा कि यह हम लोग का सबसे पावरफुल मुहूर्त होता है एस्ट्रोलॉजिकली। तो इसी मुहूर्त में क्या करना चाहिए ना, सबको ये कन्हैयालाल को समर्पण के भाव के साथ वही भगवान जी का जो होता है ये हरे कृष्ण हरे राम का महामंत्र, जो कलयुग का सबसे महान मंत्र होता है, उसे मुहूर्त ही जाप करना चाहिए। सबको 108 बार हम लोग सबको जाप करना चाहिए उसी मुहूर्त में, जो कि रात 12 बजे जैसे भगवान श्री राम ने दोपहर को लिए थे जन्म, दैट इज अभिजीत मुहूर्त था, ये भी रात 12 बजे भी हम लोग का मुहूर्त, ज्योतिष के हिसाब से बोलूंगा कि ये मुहूर्त गणित वही बोलता है कि जो मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त, उसी मुहूर्त में जो भी काम होता है या सृष्टि में जो भी जन्म लिया है उसी मुहूर्त में वो कहीं ना कहीं स्पेशल ही होता है। उसी हिसाब से देखा जाए तो उसी मुहूर्त में जो कि हर मंदिर में भी, जितना पुराना मंदिर है हम लोग का सनातन हिंदू धर्म में, सब मंदिर में उसी मुहूर्त में स्पेशली भगवान जी का श्रृंगार होता है, सब मंदिर में भगवान जी का लास्ट आरती होता है। तो हम देखेंगे तो उड़ीसा के ज्योतिष के हिसाब से बोलूंगा कि भगवान श्री जगन्नाथ जी का भी लास्ट जो बड़ा बड़ा श्रृंगार बोलते हैं, श्रृंगार सबसे बड़ा श्रृंगार कि रोज भगवान जी का श्रृंगार होता है उसी मुहूर्त में रात को 12 बजे के आसपास। तो वैसे ही सबका काम है कि उसी मुहूर्त में खुद के घर में कन्हैयालाल जी

0: साल भी हम उसमें कहते हैं कि नहीं आप उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए, या ऐसी कोई आपने अगर प्रण माना हो तब बात अलग होती है। माखन मिश्री का भोग अगर आप उनको लगाते हैं, क्योंकि वहाँ शुक्र आ जाते हैं, कोई भी चीज जो लग्जरी बन जाती है वो वहाँ पे शुक्र आ जाती है, तो हम वो प्रभु को अर्पण करते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में भी जो है सुख समृद्धि धन धान्य जो है वो घर में भर जाए। जैसे सुदामा, उसके पास सिर्फ 4 दाने अगर चावल के थे तो वो लेके गए श्री कृष्ण के पास, उन्होंने वही उनको उनको जो है वो अर्पित कर दिए, और उसके बाद श्री कृष्ण ने देखे उनको कितना धन धान्य से समृद्ध कर दिया। अब समृद्धि की बात चलिए तो देखिए एक चीज और बता दो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये क्यों कहते हैं कि श्री कृष्ण का नाम ध्यान करते हैं या उनके बारे में
1: बिल्कुल
0: पूजा अर्चना करने से हमारी जिंदगी जो है बहुत सुलझ जाती है और बहुत सारे कष्ट वैसे ही
1: श्रुति
0: दूर हो
1: जी
0: जाते हैं।
1: बिल्कुल यहीं से आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है, देश भर से लगातार तस्वीरें आ रही है, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कई जगह ऐसी है जहाँ पर अभी से ही भगवान के अभिषेक की तैयारी हो चुकी है। नोएडा इस्कॉन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रभु का अभिषेक हो रहा है, वहीं कृष्ण जन्मभूमि से भी हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, दिल्ली से मौजूद है, जयपुर से मौजूद है, हर जगह की तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे नॉनस्टॉप कवरेज गुड न्यूज़ टुडे पर कृष्ण जन्मोत्सव।

0: क्या भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र विशेष है? क्या भगवान कृष्ण बांसुरी से भी चमत्कार करते थे? क्या भगवान कृष्ण के पास सम्मोहन की शक्ति भी थी? कौन सी हैं भगवान कृष्ण की शक्तियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: देश नहीं दुनिया भर में कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, मथुरा वृंदावन में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, रंग बिरंगी लाइट्स के साथ मंदिरों में मनमोहक फूलों का श्रृंगार।

दिल्ली के बिरला मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। जामनगर में कान्हा की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे लोग, निकाली लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा। अमेरिका के न्यू जर्सी में धूमधाम से मनाया जा रहा कान्हा का जन्मोत्सव, भजन कीर्तन की धुन पर थिरकते नजर आ रहे भक्त, प्रेम और श्रद्धा के साथ नंद गोपाला का जय घोष। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित, आईएमडी की ओर से रेड अलर्ट। दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र समेत देशभर में दही हांडी की रौनक, मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां तैयार, कल दिखेंगे उत्सव के रंग।

0: नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आपको दिखाते हैं तस्वीरें, देखिए कैसे अलग अलग इस्कॉन मंदिरों में, देश के तमाम इस्कॉन मंदिरों में इस वक्त प्रभु के अभिषेक की तैयारी हो रही है या कहें कि अभिषेक चल रहा है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल की, और वहीं पर मौजूद है मनीष और रसिया मेरे से होगी। मनीष, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, यहाँ पर अभिषेक भी शुरू हो चुका है। मनीषा भी इस्कॉन मंदिर में है, वो दिल्ली के इस्कॉन में है। मनीष नोएडा इस्कॉन में मौजूद है, लेकिन मनीष आपके पास पहले आते हुए।
1: तो बिल्कुल देखिए, इन तस्वीरों का इंतजार लंबे अरसे से आज पूरा दिन भक्त करते रहे हैं। अभिषेक शुरू हो चुका है प्रभु का, और राधा रानी को अभी स्नान कराया गया गंगा जल से, फिर पंचामृत से, दूध दही माखन मिश्री सब कुछ यहाँ पर अब उनको भोग लगाया जाएगा। लेकिन उसके पहले आप देखिए किस तरह से जो अलग अलग चीजें हैं वो शुरू हो गई हैं। अभिषेक अब से कुछ देर पहले हुआ है, और अब यहाँ पर देखिए किस तरह से उनके ऊपर जो चीजें हैं वो छिड़की जा रही हैं, कैसे उनका श्रृंगार भी होगा अभी यहाँ पर, उन्हें तैयार किया जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे जन्मदिन के लिए किसी बच्चे को तैयार किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए जो भक्त हैं वो भी अब काफी उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं, और इन भक्तों का उत्साह ही है जो लगातार यहाँ पर हरे कृष्ण हरे रामा का जाप है वो और तेज होता जा रहा है। और इन्हीं सब के बीच में जो श्रृंगार है अब से कुछ देर बाद वो शुरू हो जाएगा। काफी देर तक इससे पहले अभिषेक होता रहा, दूध का इस्तेमाल हुआ, गंगा जल का इस्तेमाल हुआ, दही का इस्तेमाल हुआ, और अब यहाँ पर आप देखिए जो पूजा पाठ की चीजें हैं, जो प्रथाएं होती हैं, जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अशोक गुप्ता, एक और चीज यहाँ दर्शकों को बताते चलें, क्योंकि मुझे याद है इस्कॉन टेम्पल में 10 बजे अभिषेक की शुरुआत हो जाती है, लेकिन वहीं अगर आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे तो वहां पर कार्यक्रमों की शुरुआत 11 बजे होती है।
2: बिल्कुल, चलिए इस पर भी बातचीत करेंगे श्वेता के साथ, लेकिन इस्कॉन मंदिरों की रौनक दिखा रहे हैं आपको, मनीषा के पास चलते हैं। मनीषा, क्या यहाँ भी अभिषेक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? दिखाइए इस वक्त क्या तस्वीरें हैं।
3: बिल्कुल शगुफ्ता, मैं सीधा तस्वीरें ही आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो अभिषेक की प्रक्रिया है भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की जो है वो शुरू हो गई है। और अब यहाँ पर जो है जिस तरीके से मैंने कहा 1008 का जो भोग लगेगा, अलग अलग मालाएं जो है ड्राई फ्रूट्स की बनी हुई जो है वो यहाँ पर जो है उनको चढ़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि आपको किशमिश की एक माला दिखेगी, आपको काजू से बनी माला दिखेगी, तो हर तरीके के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और एक एक करके जो है इसके बाद फलों के रसों से जो है उनका अभिषेक किया जाएगा। तो ये वाकई में बहुत विशेष अभिषेक है, और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को जो है अलग अलग फलों के रसों और दूध के साथ जो है उनको अभिषेक किया जा रहा है। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें जो है वो इस वक्त इस्कॉन मंदिर की निकल कर आ रही है, और साथ ही साथ श्रद्धालु इस वक्त पूरे तरीके से जो है इस धार्मिक अनुष्ठान को बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये एकदम आगे की तरफ जो है भीड़ नजर आ जाएगी, यहीं पर बस वो बैठ गए हैं ताकि वो अपने प्रिय का अभिषेक होते हुए जो है वो देख सके। तो पूरा मंदिर इस वक्त परिसर जो है वो पत्रों से और जयकारों से और मंत्र जाप से जो है वो गूंजता हुआ आपको सुनाई देगा, और एक एक करके जो है उनको अलग अलग फलों की ड्राई फ्रूट की माला जो है वो चढ़ाई जा रही है, और इसके बाद जो है जूस से जो है उनका अभिषेक किया जाएगा। और अभिषेक के इस विशेष प्रक्रिया में के बाद जो है भगवान की आरती की जाएगी, उनको भोग लगा जाएगा, और यानी जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जन्माष्टमी का जो मुख्य उत्सव की जो तैयारियां है वो अपने चरम पर पहुंच जाएगी, और मंदिर में मौजूद हर श्रद्धालु की नजर उस खास घड़ी पर टिकी है जब रात के 12 बजेंगे और भगवान श्री कृष्ण जो है वो जन्म लेंगे। तो अब आधी रात का जो शुभ समय है वो धीरे धीरे करीब आता जा रहा है, श्रद्धालु का भी जो है जितने भी वो बेहद ही उत्साहित जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और लगातार इसी तरीके से जो है प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कुछ देर के बाद जो है जैसे ही 12 बजेंगे तो यहाँ का जो माहौल है वो भक्ति में हो जाएगा, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो वाकई में बहुत खास है। भक्त जो है वो धीरे धीरे कर जो है वो मंदिर के
0: बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें दिखाते रहे। एक बार जरा अमरावती चलते हैं, धनंजय सांबले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, कैसी रौनक वहां पर नजर आ रही है?
4: जी बिल्कुल आयशा, देखिए आप, मैं फिलहाल अकोला में हूँ, और अकोला में जिस तरीके से ये सालासर मंदिर जो है जो वो बहुत आस्था का केंद्र है सभी का, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी भी बसते हैं, भोलेनाथ भी बसते हैं, श्री कृष्ण भी बसते हैं, बसते हैं। और सबसे अहम बात यही है कि आयशा मैं आपको बोल दूं कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो अब जमना शुरू हुए क्योंकि 12 बजे हमने कुछ ही घंटे पके। उससे पहले मैं बता दूं कि राजस्थान के सांवरिया सेठ का यहाँ पर ये झांकी की गई है। जिस तरीके से राजस्थान के सांवरिया में जो है वो सांवरिया की झांकी है उसी तरीके की प्रतिकृति यहाँ पर की गई है और धीरे धीरे लोग जो है वो अब जुटना शुरू हुए हैं और जो सांवरिया नहीं गए वो उन्हें सांवरिया भगवान कैसे वो उनकी जो है फोटो निकालते यहाँ पर जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अंदर हम इसलिए नहीं जा सकते कि थोड़ा वहां पर नेटवर्क इश्यू है। अंदर की भी जो सजावट है कृष्ण और राधा की सुंदर मूर्ति है, लगभग 5 फीट की मूर्ति अंदर है और दोनों ही मूर्ति को साज श्रृंगार किया गया है, उनको गहने चढ़ाए गए हैं और एक छोटे झूलन में एक छोटे से लड्डू गोपाल वहां पर बैठाए गए हैं, झूले में फिलहाल रखे गए हैं और 12 बजे बजते ही जो है यहाँ पर जो है जश्न शुरू हो जाएगा।
2: 12 बजे का ही इंतजार है। बिल्कुल, दिखाइए दिखाइए तस्वीरें।
4: देखिए किस तरह का ये सालासार मंदिर है। पूरी तरीके से सालासार मंदिर को जो है यहाँ पर रोशनाई से ये मंदिर नहा चुका है और इसी के चलते जो है यहाँ पर जो है लोग धीरे धीरे जो है यहाँ पर आते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि लोगों की भीड़ जो है दर्शन करने के बाद सांवरिया सेठ की जिस तरीके से यहाँ पर प्रतिकृति है उसी को जो अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी के लिए कितने लोग।
2: चलिए लौटती हूँ आपके पास एक बार फिर से रिदम जैन का रुख करना चाहेंगे। रिदम, इन तस्वीरों को तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं दर्शकों को, आपके पास जो तस्वीरें हैं क्या तब्दीली आप देख पा रही हैं?
5: बिल्कुल, मैं दिखाती हूँ। जैसे कि हर जगह महाअभिषेक शुरू हो चुका है, यहाँ पर भी प्रक्रिया तो शुरू नहीं हुई है पर उसकी तैयारी इस ओर पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है, जहाँ पर सभी जो पंडित हैं वो आ चुके हैं। वेद पाठ इस समय पर भगवान गोविंद देव जी को सुनाया जा रहा है। शयन का समय ये चल रहा है, इसमें वेद पाठ उनको सुनाया जा रहा है और यहाँ पे सभी जो तैयारियां हैं जो अभिषेक से पहले की होती है, उससे पहले की कीर्तन की होती है, वो भी शुरू की जा चुकी है। हालांकि जो अभिषेक 12 बजे होगा उससे पहले 11:15 बजे मंगला आरती की जाएगी, जिसके बाद में 12 बजे श्रृंगार के बाद में वो महाअभिषेक होगा। जो आतिशबाजी है वो होगी। भक्त अभी से यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि 12 बजे का वो समय है जब वो एक मिनट भी इंतजार नहीं करना चाहेंगे या फिर जो कतारें लंबी लंबी लगी हुई है उसमें नहीं लगना चाहेंगे। तो पहले से ही हर एक भक्त यहाँ पे उमड़ चुका है, भीड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। किस तरीके से यहाँ अब खड़े रहने की भी जगह नहीं बची हुई है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे कुछ भक्त जो है वो अभी यहाँ पे बैठ चुके हैं जिससे वो अपनी आंखें जो है वो गोविंद देव जी से अपनी जो नजरें हैं वो ना हटाएं, वो उनको देखते रहे, निहारते रहे और जो जाप है वो करते रहे। लीलाएं इस समय पे थोड़ी सी रुक गई है क्योंकि थोड़ी ही देर में ये जो शयन का समय है ये खत्म हो जाएगा, श्रृंगार की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएगी, महाअभिषेक की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएगी। हर एक भक्त अभी इस एक्साइटमेंट में भी है कि क्या रूप लेके गोविंद देव जी जन्मोत्सव के दौरान आएंगे, जब उनका जन्म मनाया जाएगा तब किस रूप में नजर आएंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार वो होता है। खास करके वृंदावन से पोशाक जो है वो मंगाई जाती है तो इस समय पे सब देखना चाहेंगे। हालांकि इस समय पे बिल्कुल साधारण वेशभूषा में वो नजर आ रहे हैं पर कुछ ही समय बचा है, 1 घंटे से कुछ मिनट ही ऊपर बचे हैं और उसके बाद में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। वही दूसरी ओर मैं सुन पा रही हूँ कि बैंड बाजे ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुके हैं, तो ये मान लीजिए कि अभी से ही वो तैयारियां अभी शुरू हो चुकी है, अभी से वो सेलिब्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। रासलीला रुकी हुई है पर फिर भी जो जोश है, जो झूमते हुए भक्त हैं वो अभी भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं,
2: क्योंकि जो जहाँ है वो वही बैठा रहे क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है तमाम मंदिरों में और भक्तों की इच्छा होती है कि सबसे पहले 12 बजे वही दर्शन करे, इसलिए जो जहां बैठा होता है वो वही बैठ जाता है। ये दो तस्वीरें दिल्ली और नोएडा इस्कॉन टेम्पल्स की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे पहले भी आपको बताया कि इस्कॉन टेम्पल में जो पूरी प्रक्रिया है ये 10 बजे के करीब शुरू हो जाती है, लेकिन अगर हम बाकी मंदिरों की बात करें, चाहे जहां पर इस वक्त रिदम है वहां भी अभी नहीं है, 11 बजे के करीब पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इनफैक्ट जहां जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि में श्वेता है वहां भी 11 बजे शुरुआत होगी, लेकिन इस्कॉन टेम्पल्स जितने भी हैं वहां 10 बजे से शुरुआत हो जाती है। और ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भगवान के अभिषेक की तस्वीरें पंचामृत से अभिषेक होता है, अलग अलग फूलों के रस से अभिषेक किया जाता है, स्नान कराया जाता है। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है नोएडा के इस्कॉन की और दूसरी है दिल्ली के इस्कॉन की। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक और चीज बिल्कुल क्लियर कीजिए अगर आप बता पाए। इस्कॉन टेम्पल्स में जो अभिषेक की प्रक्रिया है वो 10 बजे शुरू होती है और बाकी मंदिरों की बात की जाए तो 11 बजे होती है। संजय शर्मा
6: जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में हम यहाँ पर उपस्थित हैं और ये वही जगह है जहाँ विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के मुताबिक 5253 साल पहले लाला कन्हैया ने यहाँ अवतार लिया था, लेकिन हम ज्ञान की बात करें तो बात लाखों साल पुरानी है, उस समय जब यहाँ द्वापर युग था और द्वापर के कई हजारों साल, लाखों साल बीत चुके, इसके बाद कई लाख साल कलयुग के बीत चुके, ऐसा भारतीय ज्ञान शास्त्र कहता है। लेकिन विज्ञान जिसे प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए, वो कहता है कि 5253 साल पहले ग्रहों का वही संयोग था जो लाला कन्हैया के जन्म के समय यहाँ पर उपस्थित था। हम जिस जगह खड़े हैं उसका महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है कि वो वैष्णव पीठ और शक्ति पीठ दोनों है, क्योंकि उसी रात लाला कन्हैया का जन्म इसी मथुरा में, इसी कंस के कारागार में, इसी जगह जहाँ हम खड़े वहां से कुछ मीटर दूर हुआ था, और यही योग माया का भी जन्म उसी रात हुआ था। यानी कान्हा और उनकी माया दोनों एक साथ जन्म लेते हैं और जब योग माया को कंस पटकने को होता है कि उनकी हत्या करने को, तो योग माया उनके हाथ से छिटक जाती है, अष्टभुजी देवी के रूप में वो गरजती तरजती हुई और उनकी आकाशवाणी होती है कि कंस तुम मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है, अब पता लगा और देख कि वो कहाँ है और कैसे तेरा वध करता है। तो इस तरह से ये शक्ति और लास्य दोनों का, यानी कहें तो शक्ति और सौंदर्य, सुंदरता, शौर्य, इन सब के अवतार एक साथ यहाँ पर दोनों चीजें मिलती हैं। तो ये एक ऐसा शक्तिपीठ है, वैसे तो देवी के 51 अंग जहां जहां सती के गिरे वहां शक्तिपीठ हुए, लेकिन यहाँ साक्षात शक्ति ने शरीर लिया भी और शरीर छोड़ा भी और विलीन भी हो गए आसमान में। तो ये वो जगह है जहां हम खड़े हैं। यहां अभी 10:30 बजे के करीब यहां गर्भगृह में पूजन शुरू होगा, नवग्रह स्थापना होगी, कलश पूजन होगा, शांति पाठ होंगे, गर्भ पूजन होगा और उसके बाद 1000 कमल के फूलों से भगवान का सहस्रार्चन होगा। सहस्रार्चन में लगभग 11:45 बज जाते हैं और इसके बाद जब रात के 12 बजने में कुछ मिनट रह जाएंगे तो कपाट बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद ठीक 12 बजे घंटे, घड़ियाल और शंख की ध्वनियों के बीच रजत कमल से भगवान की उत्सव मूर्ति प्रकट होती है। ये इस प्रतीक के रूप में कि कन्हैया का जन्म हो चुका है और इसके बाद सबसे पहले यहाँ सुरभि गाय की प्रतिकृति है, रजत की बनी हुई, चांदी की बनी हुई, जो कामधेनु गाय है उसके पयोधरों से जो गाय का दूध आता है उस दूध से भगवान के विग्रह का अभिषेक होगा। इसके बाद उन्हें इस मंच पर सामने लाया जाएगा जो स्टेज दिखाई दे रहा है जहां चांदी का कलश रखा है, उस वहां पर भगवान का पांचजन्य शंख है जो दक्षिणावर्ती शंख है, उस शंख से गाय के दूध से बने दही, गाय के दूध और दही से बने घृत, शहद और शर्करा, इससे पंचामृत अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद पुनः शुद्ध जल से उनका स्नान कराया जाएगा उन्हें और उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाएगा, श्रृंगार आरती होगी और श्रृंगार आरती के साथ ही फिर नंदोत्सव शुरू हो जाएगा जिसमें कि नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, बूढ़न को जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, इनके जयकारे होंगे। और बाहर जो अभी कृष्ण जन्म की लीला हो रही है मध्यरात्रि तक वो लीला भी संपन्न होती है, भगवान का जन्म उस लीला मंच पर दिखाया जाता है और इसके साथ ही अगले दिन ब्रज के मंदिरों में और जहां भी आप जाएंगे वहां नंदोत्सव की धूम दिखाई देगी, यानी लाला पलने में, झूले में झूलते हुए दिखाई पड़ते हैं और उनके लाड़ भी वैसे ही किए जाते हैं जैसे छोटे बच्चे नवजात शिशु के किए जाएं। जी,
2: संजय जी, जैसा ही आप जानकारी देना है, कुछ बताना शुरू करते हैं ना, तो ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं हमारे सारे के सारे, और बड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैं सुनती हूँ आपकी तमाम बातों को, ताकि कुछ ना कुछ तो ग्रहण कर पाऊँ। अच्छा, एक और चीज संजय जी, मेरी क्यूरोसिटी है ये जानने में, जिस तरह कहते हैं कि कृष्ण भगवान की पोशाक हर साल विशिष्ट तरीके से तैयार की जाती है, वैसे ही इनका नामकरण भी विशिष्ट होता है, क्या ये भी सच है?
6: जी हाँ बिल्कुल, श्री कृष्ण जन्म स्थान में यहाँ जो भगवान की पोशाक है, वो पोशाक बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट के तहत, जिसको कहते हैं कस्टमाइज तरीके से तैयार की जाती है। जैन जी की भाषा में कहें तो कस्टमाइज है, क्योंकि इस बार की पोशाक में आप देखिए, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि मंदिर में जो साज सज्जा है वो उन 14 रत्नों का प्रतीक है। सारे प्रतीक दिखाए गए हैं, जो 14 रत्न समुद्र मंथन में निकले थे, जिसमें कामधेनु गाय है, धन्वंतरी है, महालक्ष्मी है, चंद्रमा है, और जिसको कहते हैं, जो शास्त्रों में उल्लेख है उसमें यह है कि लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश चंद्रमा गावक काम दुधा सुरेश्वर गजौ रंभादि देवांगना अश्वसप्त मुखस्तथा हरिधनु शंखो विषम चामृतम रत्नानि चतुर्दशम प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। ये 14 रत्न है, इन 14 रत्नों का यहाँ जिक्र है। इन 14 रत्नों में से जो 5 रत्न है, जो जिनके स्थान बिल्कुल अलग है, जो भगवान को भी बहुत प्रिय है, कामधेनु गाय, दक्षिणावर्ती शंख, इसके अलावा पारिजात वृक्ष, ये सारे पोशाक में उन्हें उकेरा गया है। 5 चिन्हों से ये कामधेनु गाय है, शंख है, पारिजात वृक्ष है, और 5 ऐसे प्रतीक हैं, कौस्तुभ मणि है, उन सबको इस पर उकेरा गया है, और इस पोशाक को पंचरत्न पोशाक कहा गया है, क्योंकि 14 रत्नों में से 5 रत्नों को ये पोशाक भी धारण करती है, और उस पोशाक को ठाकुर जी धारण करते हैं। और ये जो कुंज है, मयूर कुंज है, जिसमें दोनों तरफ मयूर बने हैं और हंसों की पंक्तियां हैं जो वहां पर कोलाहल कर रही हैं, तो बहुत ही सुंदर बंगले में ठाकुर जी को उनके सुख के लिए वो सुंदर बंगला बनाया गया है। तो मयूर कुंज में ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं जन्माष्टमी के अवसर पर, और पंचरत्नी पोशाक धारण करके।
2: आज अभी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं कृष्ण जन्मभूमि से, वहीं से संजय शर्मा भी मौजूद है। श्वेता, आपके पास आते हुए अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कि बारिश वहां पर हो रही है, और कहते हैं कि कृष्ण जन्मोत्सव पर बारिश होना एक बहुत अच्छा शगुन माना जाता है, और उस द्वापर युग की बात करें तो उस दौरान भी बारिश हो ही रही थी, और हर साल ऐसा होता ही है। अभी वहां पर मौसम कैसा, एक तो ये बताएगा, और दूसरा ये बताएगा कि अब कितनी संख्या में भक्त वहां पर मौजूद है, क्योंकि ये वो समय होता है जहां पर एक बार अगर भक्त एंटर कर गए तो फिर उसके बाद भक्त बाहर जाते नहीं है, वो कहते हैं कि 12 बजे के बाद ही वो दर्शन करने के बाद बाहर जाएंगे।
3: बिल्कुल नवजोत, तो मैं आपको बता दूं, जहां तक बारिश की बात है, मौसम की बात है, और हर साल बारिश होती है या नहीं तो उसकी बात है, तो हमारे यहाँ सनातन में तो बोला ही गया है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, यहां तक कि अपने घर में भी अगर आप पूजा पाठ करवाते हैं और अगर वर्षा हो जाए तो कहा जाता है कि ईश्वर की भी स्वीकृति है इसकी, इसीलिए पूजा सम्पन्न हुई है और ठीक से हो इसलिए भी वर्षा होती है, इंद्रदेव की कृपा मिलती है। और आज के दिन, विशेष करके आज के दिन, सही में कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस वक्त भी कुछ ऐसा ही मौसम था जो कि लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं। आपको बता दें, जब से हम आए दिल्ली से, जैसे ही हम आगे बढ़े, धीरे धीरे बादल छाने लगे, और दिल्ली की गर्मी और उमस से जब हम बाहर निकले तो हमें ऐसा लगा कि क्या वाकई मात्र ढाई घंटे की दूरी में इतनी वर्षा हुई होगी क्या। लेकिन जब हम मथुरा पहुंचे तो सड़कें पूरी भीगी हुई थी, गीली थी, और उसके बाद थोड़ी देर में बारिश फिर से एक बार शुरू हो गई। अभी भी आपको बता दें कि रुक रुक कर यहाँ बारिश हो रही है, और लोग जो है लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा आपका प्रश्न था, मैं आपको बता दूं, कई मंदिरों में ईश्वर की कृपा या उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से मैं गई हूं, वहां पर हमने कवरेज किया है गुड न्यूज टुडे के माध्यम से, दर्शकों को हमने दिखाया है। लेकिन इस मंदिर विशेष करके, जब पहली बार यहां पर मैं जन्मभूमि में पहुंची हूं, मैं आपको बता दूं, यहां पर चाहे मीडिया कर्मी हो या फिर जितने भी श्रद्धालु हो, मेरे कैमरामैन संजय को मैं बोलूंगी कि अगर वो एक बार नीचे दिखाए, देखिए किस तरह से कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं, तो चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे श्रद्धालु हो, जो भी आ रहे हैं, सब चरणबद्ध तरीके से कतारबद्ध तरीके से आ रहे हैं और दर्शन करके निकल रहे हैं। यानी कि एक तरफ से आने का प्रवेश द्वार रखा गया है और दूसरा निकासी का द्वार रखा गया है। यहाँ पर किसी को भी रुकने का परमिशन नहीं है और यहाँ पर लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन है आप देखेंगे कि लोगों को, एक तरफ तो लोग हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आपको अंदर कम नहीं दिखाई देंगे। हर जगह चप्पे चप्पे पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ बहुत ही सुगमता से, बहुत ही सरलता से लोग आ रहे हैं, श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि इसको ऐसा समझिए कि अब जब 12 बजे जिसका इंतजार होगा और हम अपने घरों में भी, क्योंकि इससे पहले हम बहुत बात कर चुके हैं कि भाई अपने बचपन की बातें याद आती हैं, तो मुझे भी बातें याद आती हैं कि हम हमेशा जो है ना टकटकी लगाए हुए टेलीविजन खोल देते थे, अपना चैनल हम लगा देते थे, आज तक लगा देते थे और हम वहां पर बस यही देखते रहते थे कि मथुरा में कब जन्मोत्सव हुआ। जैसे ही यहां पर श्री कृष्ण का जन्म होता है लोगों के घरों में टेलीविजन देखकर ही लोग अपने अपने घरों में श्री कृष्ण की जो पूजा है, आरती है, वो शुरू कर देते हैं। तो मैं जो यहां पर जितना समझ पा रही हूं कि जितने लोग अभी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये अभी बस दर्शन करके निकल जाएंगे, किसी को भी रुकने की यहां अनुमति नहीं है। सिर्फ वही लोग यहां पर रहेंगे जो उस वक्त आए होंगे और अंदर जो है व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, व्यवस्था किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बाहर की अगर बात करें तो बाहर मौसम बहुत ही अच्छा है और जिस तरह से संजय जी ने जितनी ज्ञानवर्धक बातें कर दी हैं उसके बाद मुझे लगता है कि अब उस ज्ञान की गंगा में मैं एक बूंद के समान अपने आप को मैं मानती हूँ यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मैं जो देख पा रही हूँ मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ। और जिस तरह से उन्होंने बताया, वाकई आज का जो प्रभु श्री कृष्ण का या राधा रानी का जो श्रृंगार है अपने आप में अलौकिक श्रृंगार है। आज उनका आज पीतांबर वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ है और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि वो पांच रत्न जो कहा भी उन्होंने संजय जी ने कि वो पांच रत्न जो कि निकले थे समुद्र मंथन से, जिसमें कि कामधेनु गाय है, धन्वंतरी है और देवी लक्ष्मी है, पांचजन्य शंख है, तो ये तमाम चीजें श्री कृष्ण के जो वस्त्र आप देख रहे हैं है, उसमें वो उकेरी गई है। और प्रमुखता से आप कमल के पुष्प को जो पिंक कलर में आप देख पा रही होंगी शगुफ्ता नवजोत, वो वहां पर है और उनका जो उनका जो मुकुट है, मुकुट के पीछे का जो वो पूरा आप सर्कल देख पा रही होंगी, वो मुकुट का ही एक हिस्सा है जो हमारे जितने भी आइडल्स होते हैं, हमारे जितने भी देव होते हैं उनके पीछे इस तरह से वो बना होता है, उसमें भी मुख्य तौर पर कमल को आप देख रही होंगी। कमल के पुष्प विराजमान होते हैं श्री कृष्ण राधा रानी, ये हमने जाना है और दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं कि
2: बिल्कुल देखिए ये आपके ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण की ही अपार कृपा है कि आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि इतनी लंबी कवरेज करने के बाद भी आप थकते नहीं हैं और लगातार भगवान श्री कृष्ण का बखान करते हैं। चलिए ये दो तस्वीरें भी आपको नोएडा और दिल्ली की दिखा रहे हैं। नोएडा और दिल्ली के इस्कॉन मंदिरों की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अभिषेक किया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का। जैसे कि आपको जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर अभिषेक की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी देर पहले शुरू हो जाती है लेकिन बाकी मंदिरों में वक्त जो है उसमें थोड़ी सी तब्दीली होती है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहते रहेंगे और रंग भी लगातार दिखाते रहेंगे। जैसे ही जन्मोत्सव की घड़ियां नजदीक आएंगी वो भी रंग आपको दिखाएंगे।
7: हमारे साथ श्रुति खरबंदा भी मौजूद है। श्रुति जी आपके पास लौटेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत आपके पास आते हैं।

0: क्या भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र विशेष है? क्या भगवान कृष्ण बांसुरी से भी चमत्कार करते थे? क्या भगवान कृष्ण के पास सम्मोहन की शक्ति भी थी? कौन सी हैं भगवान कृष्ण की शक्तियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: तो जन की घड़ियां करीब आ रही हैं, वैसे वैसे भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही, बड़ी संख्या में भक्त पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जितने भी इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन मंदिर है, वहां पर अभिषेक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन बाकी मंदिरों में 11 बजे शुरू होगी। अलग अलग जगह की तस्वीरें, दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें जहाँ पर लगातार अभिषेक किया जा रहा है। और एक तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है जयपुर की तस्वीर। हमारे साथ श्रुति खरबंदा मौजूद है। श्रुति जी, जन्मोत्सव की प्रक्रिया इस्कॉन में पहले शुरू होती है, बाकी मंदिरों में बाद में, इसको लेकर अगर आप बता पाए कि क्या परंपरा रहती है।
1: देखिए, ये बात सिर्फ मंदिर प्रशासन के अपने खुद के फैसले की होती है, इसलिए थोड़ा सा वो फर्क आ जाता है, लेकिन मूलतः जो मेन मुख्य जो समय रहता है वो लगभग लगभग वही रहता है कि समय आपका जैसे रात को आज 11:57 से 12:43 का, क्योंकि ये लग्न अनुसार भी होता है, ज्योतिष के जो जानकार है वो जानते हैं कि लग्न निकलते हैं एक दिन में, दोपहर होते हैं तो 12:12 ऐसे 24 घंटे का दिन होता है ना, ऐसे 12 लग्नों का 2.5 घंटे का लगभग एक लग्न होता है, तो उसके अनुसार जो है ये सारा आपका टाइम टेबल बनता है। तो मुझे लगता है ये प्रशासन की ज्यादा बात है कि 10-15 मिनट आगे पीछे मंदिर में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन मोटा मोटा वही रहता है। जैसे मंगला आरती जो होती है वो रात की ही होती है, 3 बजे की ही होगी। हाँ, कोई मंदिर अगर उसको 1:45 पे कर ले तो वो बात अलग है, लेकिन लगभग लगभग वो रात की मानी जाती है। तो इस तरह से जो है सारी जो व्यवस्था होती है वो निर्धारित, उसका निर्धारण किया जाता है।
0: बिल्कुल श्रुति जी, साथ ही साथ एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये हम तमाम मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, गुड न्यूज टुडे पर आप देख भी रहे हैं, तमाम लोग इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरीके से ये उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन वो लोग जो कि घर पे हैं वो किस तरीके से पूजा कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा?
1: शुभ मुहूर्त की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो रात को 11:57 से 12:43 का ही है, क्योंकि मध्य रात्रि को ही कान्हा का जन्म हुआ था। तो जिन्होंने भी व्रत रखा है वो चाहे तो उस समय पूजा करके उसको खोल सकते हैं, अन्यथा ये सूर्योदय के साथ ही करना जो है बेहतर रहता है, ज्योतिष के अनुसार भी और यूं भी। अब वो पूजा कैसे कर सकते हैं? देखें, कान्हा तो भाव, आपका सारा भाव मात्र है क्योंकि आपकी सारी एनर्जी है, लेकिन ज्योतिषीय फिर भी उपाय के तौर पे हम जैसे कहते हैं कि देखें, आप जो भी पूजा कर रहे हैं आप उनको पहले स्नान कराएं, उनका श्रृंगार, उनके आभूषण, उनको वस्त्र जो है पहनाएं, उनको भोग लगाएं, आरती करें और उसके बाद झूला झुलाएं और फिर उनको जो है क्या कहते हैं भोग लगा के और खुद कुछ प्रसाद में अगर आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अब इसमें क्या रख सकते हैं? देखिए, माखन मिश्री की बात आती है, मनोकामना अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं अपनी कोई, उनसे मांगना चाहते हैं तो पीले रंग के फूल या पीले रंग के फल उनको जो है वो आप अर्पित करें। आप सुख समृद्धि या विवाह में, विवाह की इच्छा रखते हैं या अपने रिलेशनशिप में आप चाहते हैं कि उसमें अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी हो तो आप उनको गुलाब के फूल से जो है उनकी पूजा करें, तुलसी दल उनको जरूर जो है वो अर्पित करें। और जब आप उनकी पूजा करें तो पंचामृत से कह रहे हैं ना, महाअभिषेक जैसे हम कह रहे हैं, हम घर में सरल रूप से कुछ भी हरी की आरती करते हुए भी अगर हम पंचामृत या गंगा जल भी अगर हमारे पास है उसमें जो भी आपके पास हो, दूध, घी, शहद, इस तरह की चीजें, दही आदि इत्यादि, वो आप सफेद वस्तु देखिएगा कि वो रखा जाए, शहद डाल, शहद सूर्य का प्रतीक है, धन धान्य लक्ष्मी का प्रतीक है और वो अर्पित करी जाती है, धन समृद्धि के लिए करी जाती है। तो इस प्रकार आप सरल भाव से, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है पूजा करेंगे तो वो भी बहुत लाभकारी।
0: भगवान को तो किसी चीज का देखिए वैसे ही लोभ नहीं होता, तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो कर सके भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। चलिए, श्वेता के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगी। श्वेता, आपको देख के ना ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है और आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर हिलने डुलने की जगह नहीं है, क्या लगातार अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं?
2: देखिए, श्रद्धालु जो है वो तो लगातार ही आ रहे हैं यहाँ पर, जो है लगातार सिलसिला अभी फिलहाल जारी है, हालांकि धीरे धीरे अब कमी आई है क्योंकि जाहिर सी बात है अब जो लोकल्स है ना वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, जो यहीं पर रहने वाले हैं, आसपास रहने वाले हैं, जो दूर दूर से लोग आए हैं और जिनको मालूम है कि वो रात 12 बजे तक यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं तो वो नहीं होंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पर अभी भी आकर के लोग दोनों हाथ उठा के कृष्ण भगवान की जय और इस तरह से जयकारे लगा रहे हैं श्री कृष्ण के, और अंदर ही अभी आपको मैं दिखाऊंगी, पुजारी जी को दिखा सकते हैं अगर संजय हमारे कैमरामैन अंदर देखिए, अभी अंदर जो है वो तैयारी शुरू हो गई है। वहां पर देखिए थाल रखा चुका है, वहां पर आरती की थाल जो है वो रख दी गई है, पुष्प की थाल रख दी गई है और साथ ही साथ अब जो महाअभिषेक होने वाला है यहां पर उसकी पूरी तैयारी अंदर हो रही है। इंतजार बस उसी घड़ी का है जो जबकि पूरा विश्व देखेगा कान्हा का जन्म, लाला का जन्म यहां पर जब मथुरा में होगा। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें इसी के साथ कि इसी तरह से लगातार भक्तों का जो है यहाँ पर आना जारी रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ सिर्फ उस समय वही लोग रहेंगे जो उस समय आए होंगे दर्शन करने के लिए, किसी को भी रुकने की यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। तो इसीलिए सिर्फ वही लोग यहाँ पर रुकेंगे या फिर आएंगे जो कि उस समय वहां पर होंगे। तो आपको बता दें कि पूरे मंदिर परिसर में, और जहां तक शगुफ्ता आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि यहां पर किस तरह की व्यवस्था है या जहां पर मैं खड़ी हूं क्या यहां पर चलने फिरने की जगह नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे भी जब मैं भी टेलीविजन मतलब उस तरफ से जब मैं देखती थी और आप जहां पर आज हैं स्टूडियो से मैं जब देखती थी तो मुझे भी लगता था कि बड़ी मुश्किल से यहां पर जो है लोग एंकरिंग कर पाते होंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं अच्छी खासी जगह है, दोनों ही तरफ जितने भी तमाम मीडिया वाले हैं मीडियाकर्मी हैं वो तमाम मीडियाकर्मी उनके लिए अलग से ये पूरी जगह बनाई गई है और प्रॉपर व्यवस्था है यहाँ पर। ऑल इंडिया रेडियो से भी लोग आए हुए हैं और तमाम लोग हैं यहाँ पर, प्रॉपर व्यवस्था है, कोई किसी तरह की दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और बस हाँ ये एक थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि हमें थोड़ा उसी जगह रहना होता है जहाँ कैमरे के लेंस से कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखा सकें, मंदिर का प्रांगण भी दिखा सकें और साथ ही साथ जहां पर मुख्य तौर पर जहां आरती होनी है जहां महाअभिषेक होना है उसके दर्शन भी करा सके। इसीलिए शायद आपको लग सकता है कि थोड़ा मूवमेंट में हमें दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इस तरह की कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं है और बेहद आराम से और आसानी से यहां पर सरल रूप में लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अब हम लोग तमाम वो लोग कि वो घड़ी कब आएगी, वो समय वो पल कब आएगा, क्योंकि अब 10:43 हो गए हैं। अब धीरे धीरे वो पल जो है नजदीक आ रहा है जब श्री कृष्ण का यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा, महाअभिषेक यहाँ पर होगा, महाआरती होगी। और ये देखिए किस तरह से जो पुजारी हैं वो लगातार आ रहे हैं और धीरे धीरे अब जो है हलचल थोड़ी वहां पर बढ़नी आपको शुरू हो जाएगी और आपको वो दिखती रहेगी। जी
0: बस एक बार रिदम के पास चलते हैं। रिदम आप जहाँ पर हैं इस वक्त वहाँ क्या कार्यक्रम है, अभी इस वक्त क्या चल रहा है और आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है?
3: बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि 11 से 11:15 के बीच में मंगला आरती होगी, तो मंगला आरती के बाद में 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा जिस समय पे महाअभिषेक होगा। और महाअभिषेक के लिए अभी से इस ओर तैयारियां की जा चुकी हैं, जितने भी पुजारी हैं वो यहां पे बैठ चुके हैं। अभी शयन का समय खत्म हुआ है जिसकी वजह से पट इस दौरान बंद किए गए हैं, जो 11 बजे खुलेंगे जब मंगला आरती होगी, तब तक के लिए पट बंद है। 15 ही मिनट बचे हैं मंगला आरती में, जिसके बाद में उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ही महाअभिषेक और जो 31 तोपों से जो आतिशबाजी है यहाँ पे, जो ग्रैंड सेलिब्रेशन है वो शुरू हो जाएगा। इस समय पे मैं दिखाती हूँ क्योंकि सभी भक्त आ चुके हैं, अभी भी आ रहे हैं, तो कुछ जो पीछे की ओर खड़े हैं वो एक टक नजरें टिकाए अभी इंतजार में है, तो वहीं कुछ भक्त जो है वो नीचे अपनी जगह तय करके बैठ गए हैं और इंतजार में है कि कब 12 बजेंगे। हालांकि 15 मिनट के अंदर अंदर ये मंगला आरती जो है वो शुरू हो जाएगी, एक बार फिर जो भक्ति भाव है, जो उत्साह है वो नजर आने लगेगा। तब तक तो बस दिख रहा है तो चेहरे पे इंतजार कि कब वो समय आएगा जब गोविंद देव जी वापस से अपने दर्शन देंगे। इस समय पे क्योंकि पट बंद है तो सभी लोग आशा करते करते बस यहाँ पे खड़े हैं। इस ओर भी हम देख पा रहे हैं कि जितने भी VIPs हैं वो भी इस समय पे इंतजार ही कर रहे हैं, किसी के लिए भी यहाँ पे कोई जो असुविधा है वो नहीं है। VIPs इस ओर बैठे हैं तो पीछे की ओर भी बाकी
0: ऑलमोस्ट हर जगह से रिदम हम देख पा रहे हैं कि बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। मनीष के पास जाना चाहूंगी। मनीष, यहाँ पर तस्वीरें क्या बदली हैं और यहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है वो दिखाइए जरा।
4: जोश, उत्साह और उत्सव तीनों तस्वीरें आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगी। अब देखिए, अब से कुछ देर पहले ही राधा और कृष्ण को फूलों से सराबोर किया गया है, उनको फूलों से उनके स्नान कराया गया है। आरती हुई है और अब उनके आसपास से उन फूलों को हटाया जा रहा है और जैसे जैसे ये तस्वीरें आगे बढ़ रही हैं तो जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, तो गोपियाँ यहाँ पहुँची हैं, कृष्ण के सखा पहुँचे हैं, भक्त पहुँचे हैं, वो सब लगातार अब झूमना शुरू कर दे। ये देखिए, इसके लिए हर कोई इंतजार करता रहता है कि जो फूल चरणों में राधा कृष्ण के चढ़ाए गए थे उनका एक छोटा सा कण भी अगर उन्हें मिल जाए तो कितने सौभाग्यशाली हैं। और देखिए किस तरह से जो पुजारी हैं वो दरबार से अब उन फूलों को जनता की तरफ फेंक रहे हैं, उन लोगों की तरफ फेंक रहे हैं, एक तरह से आशीर्वाद लोगों को मिल रहा है। उनमें से कोई अगर गुलाब का फूल किसी के हाथ में आ जाए तो वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता है। सामने से जब पुजारी जब फूल फेंक रहे हैं तो पीछे जो लोग खड़े हुए हैं वो ठहर से गए हैं एक जगह पर, दोनों हाथ अपने ऊपर करते हैं, उनके हाथ में एकाध कली भी आ जाए तो कितने सौभाग्यशाली होंगे। लगातार ये तस्वीरें अब यहाँ पर और सुंदर और और मनोरम होती जा रही है। एक हिस्सा है जहाँ तक हमारा कैमरा का लेंस नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन मैं अपनी आंखों से वहाँ देख पा रहा हूँ। लगातार जो भक्त हैं वो अब डांस कर रहे हैं, उनके पैर थिरक नहीं रहे हैं, वो लगे हुए हैं और जिस घड़ी का इंतजार वो बहुत आज पूरे दिन से, देखिए किस तरह से दर्शन कराए जा रहे हैं लोगों को राधा कृष्ण के। एक तरफ एक बार जनता को दिखाया और फिर वो उसे लेकर चले गए, लेकर गए हैं मतलब एक प्रक्रिया पूरी हो गई है और प्रक्रिया पूरी हर पूरी होती है प्रक्रिया के साथ उनका जोश उत्साह उनकी भक्ति उनका आस्था बढ़ती जाती है। हम फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हैं लेकिन यहाँ भी जो मेरे आसपास लोग अगर आप देखेंगे तो वो लगातार
0: बिल्कुल बिल्कुल मनीष बहुत ही भव्य दिव्य तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें मनीष आप हमें यहाँ से लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। हमारी बड़ी और महाकवरेज लगातार जारी है, देश भर से जन्माष्टमी की रौनक, जन्माष्टमी की तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: क्या भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र विशेष है? क्या भगवान कृष्ण बांसुरी से भी चमत्कार करते थे? क्या भगवान कृष्ण के पास सम्मोहन की शक्ति भी थी? कौन सी हैं भगवान कृष्ण की शक्तियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
1: देश नहीं दुनिया भर में कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। मथुरा के जन्मभूमि मंदिर में रात 12 बजे होगा कान्हा का अवतरण। रंग बिरंगी लाइट्स के साथ मंदिर का मनमोहक फूलों के साथ श्रृंगार। दिल्ली के बिरला मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। जामनगर में कान्हा की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे लोग, निकाले लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा। अमेरिका के न्यू जर्सी में धूमधाम से मनाया जा रहा कान्हा का जन्मोत्सव। भजन कीर्तन की धुन पर थिरकते नजर आ रहे भक्त, प्रेम और श्रद्धा के साथ नंद गोपाला का जय। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली NCR में झमाझम बारिश। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय है कृष्ण भगवान के अस्त्र। कृष्ण भगवान ने अपने अस्त्रों के साथ बहुत सारी लीलाएं की हैं। इन लीलाओं के बारे में आपको बताएंगे। कृष्ण भगवान के अस्त्र क्यों खास हैं, इसके बारे में भी विस्तार से पंडित जी आपको जानकारी देंगे। आगे जाकर आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी पंडित जी देंगे। महा उपाय के बारे में भी बताएंगे, राशियों का हाल भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: भगवान कृष्ण की उपासना सामान्य जीवन में नियमित रूप से पीले फूलों से करना चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो इससे संतान से संबंधित सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं 5 सितंबर 2026 शनिवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 5 सितंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, रात के 9:53 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, रात के 9:30 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:18 तक। राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया, हम बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान के अस्त्रों के बारे में, लेकिन उससे पहले जो सबसे अहम प्रश्न उठता है वो ये है कि कृष्ण की महिमा क्या है। कई लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो पंडित जी इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे।
1: जी, हम आज आपको बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं में उन्होंने कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग किया है और उन अस्त्रों का रहस्य क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान कृष्ण की महिमा क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के बड़े सारे अवतार हैं, लेकिन श्री हरि के अवतारों में यही संपूर्ण अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण को अलौकिक देव कहते हैं और आप पूरी कृष्ण लीला पढ़िए, श्रीमद् भागवत में, हरिवंश पुराण में, गर्ग संहिता में, महाभारत में, हर समय इन्होंने अपने भगवान होने का परिचय दिया है। हर रूप में श्री कृष्ण अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए उन्हें कृष्ण कहा जाता है। कर्षयते इति कृष्णः, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे वो कृष्ण है। हर रूप में वो भक्तों की समस्याओं को हर लेते हैं और उन्हें मुक्ति मोक्ष का वरदान देते हैं। सर्वधर्म परित्याजम मामेकम

0: शरणं व्रजः अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण का आश्वासन है कि जो भक्त सब कुछ त्याग करके उनकी शरण में जाएगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण की लीलाओं में उनके बड़े सारे अस्त्र हैं जिनसे उन्होंने अपनी लीलाएं की हैं, परंतु उनके तीन अस्त्र विशेष प्रभावशाली हैं, सुदर्शन चक्र, बांसुरी और सम्मोहन। इन तीनों का सही समय पर सटीक प्रयोग करके उन्होंने पापियों को दंड दिया और धर्म की स्थापना की। सुदर्शन चक्र से, बांसुरी से और सम्मोहन से उन्होंने अपनी बड़ी सारी लीलाएं की हैं।
1: चलिए इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न पंडित जी से आगे जाकर पूछेंगे। आते हैं राशिफल पर और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी आपको बताएंगे कैसा रहने वाला है। बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों के, जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
0: मेष राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की रुकावट दूर होगी, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग हैं, नौकरी में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, सवाल आपसे ये है कि जैसे बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट हमें भी ये जानकारी है, बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्या है, इसकी महिमा क्या है, क्यों खास होता है ये सुदर्शन चक्र, ये विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे।
0: सबसे पहले बात करते हैं सुदर्शन चक्र की, क्या है ये चक्र। जो है भगवान कृष्ण का एक विशेष तरह का घातक हथियार है और चक्र बहुत सारे देवी देवताओं के पास है। विष्णु जी के चक्र का नाम है कांता चक्र, शिव जी के चक्र का नाम है भवरेंदु, लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली चक्र है सुदर्शन चक्र, जिसको केवल भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण शिव जी ने किया था और बहुत सारी मान्यताएं कहती हैं कि सूर्य के तेज को कम करके काट करके चक्र बनाया गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक तरह का बूम रैंग है जो प्रहार करने के बाद वापस लौट आता है। भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में भी चक्र की पूजा की जाती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर शंख की और चक्र की आकृति लगाई जाए तो घर में रहने वाले लोग हर तरह की दुर्घटना से बचे रहते हैं। दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि श्री हरि के, नारायण के जितने मंदिर हैं, उन मंदिरों में प्रतीक के रूप में द्वार पर एक तरफ चक्र और एक तरफ शंख की आकृति बनाई जाती है।
1: चलिए इसी के साथ राशिफल पर वापस आते हुए बारी आ गई है कर्क सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है, पंडित जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे।
0: कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

काम पूरे होंगे, करियर के मामले में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ

0: राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए दर्शकों के सवालों का वक्त हो चला है, इससे पहले पहले प्रश्न की तरफ बढ़ें, आपको बताएंगे कौन सा है पहला सवाल। उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि आप भी बहुत सारे प्रश्न जो पूछना चाहते हैं पंडित जी से, अपने तमाम सवाल इस शो में भेजिए। ईमेल के जरिए आप भेज सकते हैं, ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए, और इसी ईमेल आईडी पर आपको अपने सवाल इस शो में भेजने हैं। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है?
0: जी आज का पहला प्रश्न योगेश मिश्रा जी ने कानपुर से लिखा है। 15 जनवरी 1980 का जन्म है, 1:19 AM कानपुर। ये कह रहे हैं कि डिवोर्स का मेरा मुकदमा काफी लंबे समय से चल रहा है, कब तक छुटकारा मिलेगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? योगेश जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतर दशा राहु की चल रही है। देखिए, डिवोर्स का मुकदमा आपके पक्ष में आएगा साल 2027 के अप्रैल के बाद। ये मुकदमा आपके पक्ष में हल होगा और आपको इस मुकदमे से छुटकारा मिलेगा। आने वाला समय आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। फिलहाल एक ओपल बनवा करके पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनिए। रोज सुबह 108 बार ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः बृहस्पति मंत्र का जप करिए, और हर बृहस्पतिवार को अगर आप केले का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पंडित जी ही आपको जानकारी देंगे कि दूसरा प्रश्न कौन से दर्शक का है। पंडित जी,
0: जी अगला प्रश्न सोनू कुमार भगत ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखते हैं। 12 नवंबर 1983 का जन्म है, 3:35 शाम को कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरे करियर में मुश्किलें चल रही हैं, मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है, तो आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा? स्वास्थ्य में भी मुझे दिक्कतें होती हैं और मैं बेंगलोर में सेटल होना चाहता हूं, क्या वहां कोई मकान खरीद कर मैं सेटल हो पाऊंगा? सोनू, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मकर राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा शनि की चल रही है। देखिए, जो आपका समय चल रहा है, इस समय में जहां ट्रांसफर होता है, जहां जाना पड़ता है वहां जाइए। इस समय करियर में रिस्क लेना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। 1 साल तक आपको बेंगलोर से दूर रहना पड़ेगा, उसके बाद आप वापस आ जाएंगे, लेकिन इस समय रिस्क लेना ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिए, नसों की हड्डियों की समस्या आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। जहां तक भविष्य की बात है, बेंगलोर में आप सेटल हो सकते हैं और संभवतः साल 2028 में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। आप ऐसा करिए, एक मूंगा बनवा के पहनिए, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में आपने माणिक्य पहना है तो बाएं हाथ की अनामिका उंगली में एक 12-14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में मंगलवार को सवेरे धारण करिएगा, ओपल निकाल दीजिएगा, दाहिने हाथ में माणिक्य और बाएं हाथ में मूंगा पहनिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: देखिए, कृष्ण भगवान की बांसुरी के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन विस्तार से जानकारी शायद बहुत कम लोगों को होती है। तो पंडित जी, सवाल यही है कि क्या है बांसुरी और इसकी महिमा क्या है?
0: अब जानते हैं कि बांसुरी का क्या महत्व है और भगवान कृष्ण ने बांसुरी का प्रयोग किया कैसे। देखिए, श्री कृष्ण नटवर भी हैं और हर कला के महारथी हैं। भगवान कृष्ण की कुंडली देखिए, तृतीय भाव का स्वामी लग्न में बैठा है चंद्रमा, तो स्वाभाविक बात है कि कला का गुण है उनके अंदर। संगीत के ज्ञाता होने की वजह से उन्होंने बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया है। ये बांस का बना हुआ एक वाद्य होता है जो वायु के सहारे, हवा के सहारे मीठी ध्वनि, मीठी आवाज पैदा करता है। बांसुरी की ध्वनि से श्री कृष्ण अपने चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे और बांसुरी में जो 7 छिद्र होते हैं वो ये बताते हैं कि कृष्ण जी की कृपा से शरीर के सारे चक्र ठीक हो सकते हैं और मुक्ति का संगीत बज सकता है। भगवान कृष्ण मोहन विज्ञान का प्रयोग करते थे तो बांसुरी की ध्वनि से न केवल व्यक्तियों को, लोगों को, पेड़ पौधों को, नदियों को, हवाओं को, पशु पक्षियों को, सबको अपनी तरफ खींचते थे मोहन विज्ञान का प्रयोग करके। तंत्र में बड़े सारे गुण होते हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषन, उसमें एक विज्ञान है मोहन विज्ञान, यानी दूसरे को अपनी शक्ति से, अपनी तरंगों से आकर्षित करना, और ये तरंग वो क्रिएट करते थे बांसुरी से। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित की जाती है, वैसे भी कर सकते हैं लेकिन जन्माष्टमी पर अगर बांसुरी अर्पित करें तो संतान का वरदान मिलता है और घर में जो बीम है छत की, उसके नीचे बैठना, बीम के नीचे काम करना बेवजह का तनाव देता है, तो घर में बीम पर अगर बांसुरी लटका दी जाए तो बीम का जो बुरा प्रभाव उसके नीचे बैठने वालों के ऊपर पड़ता है वो बुरा असर समाप्त हो जाता है।
1: चलिए, राशिफल की वापस बारी आ गई है और अब बारी है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: तुला राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी के साथ विवाद से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी बताइए कि हमने सुना है कि कृष्ण भगवान के पास सम्मोहन की कला थी, तो सम्मोहन की एक कला क्या है और इसकी महिमा क्या है?
0: अब जानते हैं सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म के बारे में। सम्मोहन कैसी विद्या है और भगवान कृष्ण ने इसका कैसे प्रयोग किया? देखिए, सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें विशेष तरीके से व्यक्ति के मन को और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। जो आप जादू का खेल देखते हैं और बहुत सारी बीमारियों के मामले में सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है। विदेश में खास तौर से मानसिक बीमारियों के इलाज में सम्मोहन का बहुत प्रयोग होता है। भगवान कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन था और इसी सम्मोहन के बल पर उन्होंने बहुत सारे काम बड़ी आसानी से कर डाले। जयद्रथ का जो वध किया गया था महाभारत में, अर्जुन ने किया था, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जयद्रथ वध में क्या हुआ? कहा गया कि अगर सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध अर्जुन ने नहीं किया तो अर्जुन समाधि ले लेंगे, अग्नि में चले जाएंगे। तो क्या हुआ, एक समय दिखाई दिया कि सूर्य जो था वो छिप गया। जब जयद्रथ सामने आया तो सूर्य फिर से निकल आया, अर्जुन ने उसका वध कर दिया। अब देखिए, सूर्य को छिपाना और उगाना ये सामान्यतः परम पुरुष नहीं करते, प्रकृति के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि जब मन किया सूर्य को डुबा दिया और जब मन किया सूर्य को उदित कर दिया। नहीं, यहां पर भगवान कृष्ण ने जिस शक्ति का प्रयोग किया था उसको कहते हैं मास हिप्नोटिज्म। एक साथ बहुत सारे लोगों को ऐसा दिखा कि सूर्य अस्त हो गया है, वास्तव में सूर्य जहां था वहीं था, वो अस्त नहीं हुआ था, लेकिन हिप्नोटिज्म से लोगों को ऐसा दिखा। और सम्मोहन का प्रयोग करके भगवान कृष्ण ने जयद्रथ का वध करवा दिया। जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं ना, जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके अंदर सम्मोहन का गुण अपने आप आने लगता है। जो भगवान कृष्ण के जबरदस्त भक्त होते हैं, ईमानदार भक्त होते हैं, उनके अंदर भी भगवान कृष्ण की सम्मोहिनी शक्ति आ जाती है, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर सम्मोहन की शक्ति आ जाए और आप इसका दुरुपयोग करने लगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।
1: और चलिए राशिफल के अंत की तरफ पहुंच गए हैं और बारी है मकर कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है, पंडित जी आपको बताएंगे।
0: मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ

सुधार के योग हैं, विवाद तय हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: का ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी, परिवार में विवादों से बचें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए दर्शकों के सवालों का फिर से वक्त हो चला है और पंडित जी से ही जानते हैं कि अगला प्रश्न इस शो में कौन से दर्शक ने भेजा है। पंडित जी
0: जी, अगला प्रश्न मकसूदन यादव जी ने हमें लिखा है बिहार से। अपने बेटे के लिए जानना चाहते हैं। बेटे की जन्म तारीख है 5 मार्च 2009, 4:50 शाम को, बेतिया बिहार। ये कह रहे हैं कि बार बार मेरे बेटे को चोट लगती रहती है। 2024 में उसके नाक की सर्जरी भी कराई थी, डॉक्टर फिर से सर्जरी कराने को कह रहे हैं, तो क्या आगे सर्जरी होगी दोबारा? और बेटे को बार बार चोट ना लगे, बार बार दुर्घटना ना हो, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? मकसूदन जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। इनकी कुंडली में जो मंगल केतु शनि का संबंध बना हुआ है, वो बार बार की दुर्घटनाएं, चोट चपेट, ऑपरेशन, ये सब दिखा रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि आपके बेटे के नाक की सर्जरी दोबारा होगी, लेकिन कोई बहुत चिंता जैसी बात दिखाई नहीं दे रही है। अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती बनवा करके पहनाएं और इनको बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से जानते हैं, जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 5 सितंबर को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है पंडित जी, आपको बताएंगे।

0: जन्मदिन 5 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, करियर में कोई बड़ा जोखिम मत लीजिए, धन की स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी। इस साल अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणेश जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि अगर गुरु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो श्री कृष्ण की पूजा से गुरु की प्राप्ति कैसे होगी? इसके लिए श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनकी पूजा करिएगा। नियमित रूप से भगवान कृष्ण का ध्यान करके रोज जितना संभव हो भगवत गीता का पाठ करिएगा और भगवान कृष्ण से गुरु मिलने की प्रार्थना करिएगा, आपकी कामना पूरी होगी।
1: चलिए पंडित जी से जानते हैं 5 सितंबर 2026 शनिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 5 सितंबर 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से करियर की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 5 सितंबर शनिवार शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि यानी आपकी राशि कौन सी है, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु सबसे ज्यादा उत्तम है। आज की गुडलक राशि है मिथुन राशि। जीवन में सफलता के लिए आपको कांसा यानी ब्रॉन्ज धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बुद्धि बेहतर होगी, सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे।
1: चलिए तमाम उपायों के बारे में आज के शो से जुड़े हुए तमाम सवाल हमने पंडित जी से पूछ लिए हैं। पंडित जी ने आपको जानकारियां विस्तार से दे दी हैं, आपकी राशियों के बारे में भी बता दिया है। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में जान लेने की। तो आज का महा उपाय इस शो से जुड़ा हुआ कौन सा है, पंडित जी से जानते हैं
0: जी।

0: जीवन में आकर्षण बढ़े, लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, प्रभावित हों, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे स्नान करके पूजा करिए और भगवान कृष्ण को चंदन का तिलक लगाइए और फिर स्वयं को भी वही तिलक अपने माथे या कंठ पर लगाइएगा। हर समय खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते कृष्ण नाम का, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस नाम का जप करते रहिएगा, आपकी आकर्षण की क्षमता में सुधार होगा।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस विशेष एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: को पावर्ड बाय लंबा बैकअप लंबी लाइफ, सुंदर भी स्मार्ट भी एटम वर्क BLDC फैंस।

0: की तो घड़ियां, शुभ घड़ियां, बस नजदीक आती जा रही, 20 मिनट का वक्त और बचा है और देश भर के मंदिरों में रौनक कैसी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक हर जगह से दिख रही है और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ शगुफ्ता भी है, हमारे साथ मनीष है, मनीषा लड्डा है, मनीषा लड्डा दिल्ली से है, मनीष हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं, श्वेता झा कृष्ण जन्मभूमि से हमारे साथ बनी हुई है। सीधा श्वेता जी पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, आप इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में मौजूद हैं, सीधी तस्वीरें दिखाइए अभी वहां पर क्या चल रहा है।
1: देखिए 11:39 हो चुका है, वो घड़ियां जिसका हर किसी को इंतजार था वो घड़ियां बेहद नजदीक आ गई हैं और यहाँ की रौनक और भव्यता और दिव्यता और भी ज्यादा देखने लायक है। तस्वीरें आइए, सीधे अपने कैमरामैन संजय को बोलती हूँ मैं दिखाने के लिए। सबसे पहले तो आप दिखाइए श्री कृष्ण और राधा रानी की तस्वीरें दिखाइए और देखिए किस तरह से उनके चरण कमल पर पुष्प वर्षा हो रही है। बकायदा वहां पर जो पुजारी जो पंडित वहां खड़े हैं मंत्रोच्चार कर रहे हैं और एक एक मंत्र के साथ एक एक जो पुष्प कमल है, कमल के जो पुष्प हैं वो देखिए उनके श्री चरणों में चढ़ाया जा रहा है। राधा रानी और श्री कृष्ण के बेहद खूबसूरत ये तस्वीर, बेहद पावन ये तस्वीर और साथ ही साथ यहाँ पर भजन और कीर्तन जो है वो शुरू हो चुके हैं और इंतजार कहते हैं ना कि समय को काटने के लिए भी आप कैसे काटें क्योंकि अब बेसब्री लोगों की इतनी बढ़ गई है, अब हर कोई बेसब्र हो रहा है अपने लल्ला को देखने के लिए। श्री कृष्ण के जन्म का वो समय आ गया है लेकिन ये जो थोड़ा सा वक्त बचा है 11:40 हो चुके हैं, 12 का वो समय है जब कृष्ण जो है यहाँ पर प्रकट होंगे, उनका प्राकट्य उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। इसीलिए इस बीच जो है भजन कीर्तन का दौर जारी है, लगातार देखिए लोग किस तरह से हाथ उठाकर श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं और लगातार जो बीच में पहले मैं तस्वीरें दिखा रही थी उसमें भक्तों का तादाद थोड़ा जो कम आपको श्रद्धालुओं का दिखना लगा था वो इस वक्त अब और ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है कि कई भक्त ऐसे होंगे, कई श्रद्धालु ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि इसी समय के आसपास आते हैं और अगर रुकने का मौका मिले तो वो जब जन्म होता है यानी कि जब प्राकट्य होता है श्री कृष्ण का तो शायद उस उत्सव को भी इन्हें देखने का मौका मिल जाए। लेकिन जैसा कि लगातार मैं आपको बता रही हूँ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ रुकने की अनुमति किसी को नहीं है, बस अब आज के दिन श्री कृष्ण के दर्शन भर यहाँ पर कर लीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए, यहाँ पर कोई अव्यवस्था ना हो इसकी यहाँ पर पूरी जो है कोशिश की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। साथ ही साथ मंदिर के ठीक सामने वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं वहाँ पर जितने भी भक्त हैं जिनको बैठना है सारे लोग यहाँ बैठ चुके हैं और इस कीर्तन का इस भजन का वो आनंद उठा रहे हैं जो अपने आप में अभूतपूर्व है। पूरा मंदिर देखिए कितने खूबसूरत फूलों से पुष्पों से सुसज्जित है, एक एक मंत्र और एक एक पुष्प के साथ कमल पुष्प के साथ जिस तरह से पुजारी जी जो है श्री कृष्ण के राधा रानी के चरणों में ये पुष्प अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ श्री कृष्ण को स्मरण करता हुआ इस वक्त जो यहाँ पर कीर्तन चल रहा है ये अपने आप एक ऐसी अनुभूति कराता है कि आपको द्वापर युग की याद दिला दे और जिसकी तस्वीरें बार बार हम दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ये जो जन्मोत्सव है वो द्वापर युग वाली ही है। आपको बता दे कि कहने को तो ये मथुरा है लेकिन आज इस मथुरा की हवा कुछ और ही है, इस मथुरा की हवा में उत्सव तो है ही लेकिन साथ ही साथ इंतजार भी है। इंतजार उस पल का है जो घड़ियां बस अब आने ही वाली है, मध्य रात्रि पहुंच चुकी है और इसी धरती पर जन्मे उस बालक का जन्मोत्सव मनाया जाएगा जिसे कोई कान्हा कहता है तो कोई नंदलाल कहता है, कोई गोपाल कहता है तो कोई अपना आराध्य कहता है। तस्वीरें सीधी आपको हम दिखा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि से, मंदिर फूलों से सुसज्जित है, घंटे घड़ियाल यहाँ पर बजने शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ लेकिन इस भव्यता के पीछे एक बहुत पुरानी कथा जो आप सभी को पता है वो कहानी उस रात की जब मथुरा के कारागार में अंधेरा था, कंस का आतंक था और उसी अंधेरे के बीच एक दिव्य प्रकाश ने जन्म लिया था। आज उसी कृष्ण की जन्मभूमि पर हम मौजूद हैं, गुड न्यूज टुडे लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं तस्वीरों के साथ साथ वो अनुभूति भी हम अपने दर्शकों को कराएं कि जब आप जन्मभूमि में होते हैं, आप जब ब्रजभूमि में होते हैं, आप उस जब रज में होते हैं जहां कहते हैं कि कण कण में श्री कृष्ण का वास है क्योंकि यहां पर वो बाल लीलाएं हैं, यहां पर कृष्ण की वो तमाम लीलाएं हैं जो उन्होंने यहां पर की है, तो जाहिर सी बात है ये पल ये समय और दिव्य और अद्भुत हो जाता है। हालांकि इस वक्त हमारे पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जितने भी मंदिर हैं वहां पर भी ऐसी दिव्यता और भव्यता आपको देखने को भले ही मिलेगी, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप जन्मभूमि में होते हैं, जब श्वेता में होते हैं, तो यहाँ जो आप महसूस करते हैं वो आप इस चंदन को लगा करके
0: बिल्कुल
1: कर
0: मैं वही वही सवाल था मेरा
1: महसूस कर सकते हैं आप एकदम जी
0: बिल्कुल जी, ये जी, माथे पर जो चंदन आपने लगाया है ना, ये मैं सच बताऊं ये आपकी खूबसूरती में चार चांद और लगा रहा है। और एक और चीज मुझे ऐसे लगता है जिस सुंदर तरीके से आप व्याख्या करती हैं ना श्री कृष्ण की, जो श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण तरह से लीन है सिर्फ वही ऐसी व्याख्या कर सकता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। लौटती हूँ श्वेता आपके पास, रिदम जैन भी हमारे साथ बनी हुई है। रिदम एक बार आप भी तस्वीरें दिखाइए, कैसी रौनक है वहां पर।
1: तस्वीर दिखाती हूँ और रौनक अभी देखने लायक है क्योंकि भजन मंडली पिछले एक घंटे से यहाँ पे लगातार भजन कीर्तन कर रही है। हर एक भक्त यहाँ पे भक्ति के रस में मग्न नजर आ रहा है। जो सेवागार पूरे दिन से सेवा में लीन थे तो वो ही अब भक्ति के रस में नजर आ रहे हैं, थिरकते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो भजन चल रहे हैं वो बहुत ही भक्ति भाव से नजर आ रहे हैं और कुछ ही समय बचे हैं क्योंकि सिर्फ 15 मिनट का समय बचा है जिसके बाद में श्री गोविंद देव जी अपने बाल स्वरूप में नजर आने वाले हैं। तो भीड़ में आपको एक बार दिखाती हूँ किस तरीके से यहाँ पर अब और किसी की भक्त के आने की जगह भी नहीं बची है। इतनी भीड़ यहाँ पे इस मंदिर प्रांगण में हो चुकी है, पूरा मंदिर सुसज्जित है भक्तों से भी और यहाँ की जो डेकोरेशन हो रखी है, जो सजावटें हो रखी है उससे भी या थिरकते हुए भक्त भी नजर आ रहे हैं। जो एनर्जी है, जो एक्साइटमेंट है वो अभी सभी के चेहरों पे नजर आ रही है। हालांकि दूसरी ओर अभी जाना हमें अलाउ नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस समय पट भी बंद है और कुछ ही देर में गोविंद देव जी अपने बाल स्वरूप में नजर आएंगे। फिर भी हम कोशिश करें कि आपको जितनी भीड़ हो सके उतनी दिखा पाए, जितना भक्तिमय माहौल हम दिखा पाए वो, क्योंकि बहुत खूबसूरत समय का नजारा है। चंद ही मिनट बचे हैं, ये मानो हर भक्त के पहुंच में समय पे टाइमर लग चुका है और हर कोई अभी घड़ी देख रहा है कि वो समय कब आएगा, कब 12 बजेंगे, कब वो बाल स्वरूप नंदलाल को देख पाएंगे, जो महाअभिषेक होगा वो देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे, जिसके बाद में होगी वहाँ पे आतिशबाजी। जिस तरीके से सेलिब्रेशन होता है बिल्कुल वैसे होगा जैसे नए एक छोटे से बच्चे को तैयार किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही उस यहाँ पे भी पूरी तैयारियां की जाएगी। पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा, 15 मिनट का समय बचा है और भक्ति के रस में हर एक भक्त नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे हर किसी के हाथों में भी अभी फोन्स नजर आ रहे हैं क्योंकि सिर्फ आज जन्माष्टमी के अवसर पर नहीं पर इस पल को हर कोई कैद करना चाह रहा है जिससे वापस से बार बार इस पल को जी पाए, भक्ति भाव जो है वो कभी खत्म ना हो पाए, तो इसको यादों में कैद करना चाह रहा है। बहुत ही खूबसूरत नजारा इस समय पे नजर आ रहा है।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपने प्रभु की पहली झलक देखने के लिए काफी आतुर हैं और इसीलिए उस पहली झलक को अपने फोन में रिकॉर्ड भी करना चाहेंगे। तस्वीरें लगातार रिदम दिखा रही हैं कृष्ण जन्मभूमि से। श्वेता जहाँ हमारे साथ हैं लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त है सुमित्रा जी। सुमित्रा जी बहुत स्वागत है आपका और बस इंतजार कि घड़ियां खत्म होने वाली है और 10 मिनट का और वक्त है। इस बीच ये तस्वीरें देखें, इस्कॉन की तस्वीरें हैं जहां पर भक्त इस वक्त झूम रहे हैं, नाच गए रहे हैं। द्वारका इस्कॉन की ये तस्वीरें हैं जहां पर भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और श्री कृष्ण का प्राकट्य मना रहे हैं। सुमित्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। सुमित्रा जी एक परंपरा और है जिसके बारे में चाहूंगी हमारे दर्शकों को बताइए, खीरे के डंठल को काटने की परंपरा भी इससे जुड़ी, वो क्या है।
2: जी, अगर खीरे के डंठल की परंपरा पे शुरुआत करूँ तो पहले सबसे पहले तो सबको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आज की। तो जो व्रज नहीं भी जा पा रहे वो अपने घर में ही इसे मना सकते हैं और दुख ना करें, निराश ना हो। घर पर जैसे भगवान को सबसे पहले हम तो पंचामृत से स्नान कराते हैं, उसके बाद पीले वस्त्र पहनाते हैं, फिर पीला फूल चढ़ाते हैं और मोर पंखी मुकुट पहना के बैठा देते हैं। अब जब ठीक जब 12 बजेगा इस समय हम खीरे की डंठल को तोड़ते हैं। इस परंपरा से जुड़ी हुई ये बात है कि खीरे को पूरा जब वो डंठल से जुड़ा हुआ तो हम इसे देवकी के गर्भ से सामंजस्य मानते हैं। जो डंठल है वो जैसे हमारा प्लेसेंटा काटा जाता है ना डिलीवरी के बाद, तो उसको प्लेसेंटा ही माना जाता है, क्योंकि जब तक आप डंठल को नहीं काट रहे, एक खीरे में जब डंठल लगी हुई है तो ये माना जाता है कि वो उस पेड़ से जुड़ी हुई है, जैसे कि मदर से एक बच्चा जुड़ा हुआ होता है। तो उस डंठल को काटने की प्रक्रिया में कोई भी शार्प चीज़ को नहीं यूज़ किया जाता है, सिक्के को लिया जाता है, कॉइन को, उस कॉइन से धीरे धीरे को प्रेस करके या दबा कर या उसी से घस कर उस डंठल को डिटैच किया जाता है। वो 12 बजे हम उसको जब डिटैच करते हैं तो एक्चुअली हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने घर में भी कृष्ण भगवान का जन्म करवा रहे हैं। एक्चुअली कृष्ण भगवान उस समय जन्म ले रहे हैं, और जैसे ही वो डंठल टूटती है, बस मन हम माने उनके गर्भ से बच्चा सेपरेट होता है मदर के गर्भ से और भगवान का जन्म होता है। तो सब लोग भगवान को जब वो डंठल से सेपरेट करते हैं और अपने घर में कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं, तो सब कुछ ये कि भगवान को माखन मिश्री जरूर चढ़ाएं और एक पेपर लें, उस पर ब्लू इंक से या चंदन से अपनी इच्छा को जरूर लिखें कि आज आपकी क्या इच्छा है भगवान से। बहुत सकारात्मक रूप में उसे लिखें कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये मत लिखिए। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, सिर्फ उसको लिखिए, उस पर एक बांसुरी रखिए और कृष्ण भगवान के पैरों पर उसे रख दीजिए उनके जन्म होने के बाद। और 11 तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि जब आप इस मंत्र को जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो सारी अपार क्षमताएं जो भगवान हमें देना चाहते हैं वो सब हमें मिलता है। पर थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मम्मी से ही एक बार बोलते हैं ना कि मम्मी खाना बना रही है, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, तो वो भी कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाती है। वैसे ही प्रकृति हमें सब कुछ देना चाहती है, बट हमें थोड़ा सा कुकिंग टाइम देना पड़ता है। तो पेशेंस रखेंगे तो भगवान आपको सब कुछ देंगे जो आप पाना चाहते हैं।
3: अभी हम बस भगवान प्रकट होने वाले हैं। आपने भक्तों को,
4: सुमित्रा जी आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया कि किस तरह से आज के दिन की अहमियत है। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी आपके पास आते हुए, संजय जी इस घड़ी में स्पेसिफिकली हमें क्या करना चाहिए जन्मोत्सव से ठीक पहले?
5: जी, कहते हैं कि भगवान का जो जन्म है कारावास में हुआ, और कहा जाता है कि उसी रूप में जो है हम इस जन्म दिवस को मनाते हैं। और भगवान का जो है 5153वां जन्म दिवस जो है हम मनाने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो जन्म हुआ था 5153 साल पहले हुआ था। पिछली बार जो है 5253 साल के बाद का जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि यह जो जन्मदिन है भगवान का, इस पर क्या करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है प्रसाद में माखन मिश्री और पंजीरी। पंजीरी भी जो है धनिया की पंजीरी का जो भोग है आज के दिन लगाया जाता है। और भगवान के माथे पर आप देखेंगे एक मुकुट होता है, और मुकुट क्या है कि छोटा सा जो मोर का पंख है, और उनके हाथों में मुरली है, क्योंकि माँ और मोह से मोहन भी है, क्योंकि जो मोहने वाले हैं वो मोहन है, भगवान कृष्ण है। और उनका बाल रूप कहते हैं कि वो अपने बचपन में, कहते हैं कि जो उनका अवतार हुआ तो कहा जाता है कि 8वें अवतार के रूप में जब वो आए, और आने के पश्चात जो है उन्होंने अपने बचपन से ही बड़ी सारी लीलाएं जो है दिखा दी और पूतना का वध कर दिया तो छोटी सी उम्र में। और उसके बाद में माखन चोरी की लीलाएं हैं उनकी, और उखल बंधन जब उनकी माता जी ने उनको बांध दिया तो कहते हैं कि मैं नहीं माखन खायो। तो क्या है कि भगवान की लीलाएं हैं, और कहा जाता है कृष्ण सदा सहायते, भगवान कृष्ण जो है हमेशा जो है सहायक के रूप में रहे। कहते हैं कि उनके हाथों में जो है आप देखें कि चक्र है, फिर भी क्या है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। तो भगवान की जो लीलाएं हैं अपरंपार है, और आज के दिन जब उनका जन्म होता है, जन्म उत्सव हम मनाते हैं, तो भगवान की जो लीलाएं हैं जितनी भी लीलाएं उनको याद करते हैं। और गीता में भी कहा गया है कि भगवान का जो जन्म है कि जब धर्म की, कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है तो भगवान जो है स्वयं जो है जन्म ले लेते हैं, और कभी मित्र बनकर कभी सखा बनकर के, और हर एक रूप में जो है हमारा साथ देते हैं, और कभी भाई बनकर के कभी बंधु बनकर के। गीता का जो पहला शब्द ही है वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म से जुड़ा है। आखिरी शब्द भी मम है, और कहा जाता है कि आत्मा जो है अमर और पवित्र है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, गीता भी हमें यही संदेश देती है। और भगवान कृष्ण ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि समत्व रहे, मतलब हमेशा जो है समान स्थिति में ही रहे, और भक्ति के मार्ग पर जो है सबसे सरल मार्ग जो है भक्ति का है, उसको जो है धारण करें और ईश्वर की शरण में अपने आप को अर्पित कर दें। और कहा जाता है कि शिशुपाल ने 100 गालियां दे दी तब भी भगवान कृष्ण को जो है क्रोध नहीं आया। तो क्या है कि इस जन्म में या अगले जन्मों में जब भी भगवान का अवतरण होता है, वो किसी ना किसी रूप में जब होता है पृथ्वी पर, मानव रूप में आए, चाहे कृष्ण के रूप में आए, चाहे राम के रूप में आए, तो जो प्रकृति है, नेचर है, मनुष्य जाति है, उनका जो है कहते हैं कि अच्छा करने के लिए, उनके जीवन में सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, और सबको जो है भक्ति के मार्ग पर लगाने के लिए जो भगवान का जन्म होता है। और ये जो है ऐसा समय है, इसमें आपको भगवान कृष्ण का जो है ध्यान करना चाहिए, और हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, इन मंत्रों का जो है जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से ओम यश समृण मात्रेण जन्म संसार बंदनाथ विमुक्ति तस्मै विष्णु प्रभो विष्णवे। तो भगवान का जो ध्यान है, मेडिटेशन है, साधना है, भक्ति का मार्ग है, ईश्वर की प्राप्ति है, और सभी चीजों को त्याग कर ईश्वर की शरण में अपना मन लगा दें और भगवान को जो है अर्पित कर दें। कहा जाता है कि भगवान को शंख से जो है पंचामृत से स्नान कराएं, उससे जो है प्रसन्न हो जाते हैं, और आज के दिन कमल के फूल से जो है उनको उत्पन्न किया जाता है वृंदावन में, आप देखें, और कई जगह पर पुष्प के अंदर रख करके किया जाता है। तो ये ऐसा समय है जब जय कन्हैया लाल की होने वाली है और भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है।
0: वही तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, आपने सही बात की। एक बार सीधा हम वही लिए चलते हैं, श्वेता झा वहां से हमारे साथ मौजूद है। श्वेता, बस 5 मिनट का वक्त और बचा है और हम सीधा ये तस्वीरें देख भी रहे हैं, किस तरीके से 1000 कमल के पुष्प हैं जिनसे अभी फिलहाल पूजा अर्चना भी की जा रही है, और क्या कुछ यहाँ चल रहा है वो भी बताते जाइए साथ साथ।
1: बिल्कुल, सीधे मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। हमारे कैमरामैन संजय से मैं कहूंगी कि वो सीधे तस्वीरें दिखाए। देखिए, अब वहां पर हलचल तेज हो गई है, और ये पीतांबर जो एक तरह से पट्टा है वो वहां पर, जो लोग भी और मौजूद है जिन्होंने पीतांबर वस्त्र अगर नहीं भी धारण किया है तो उनको ये पहनाया जा रहा है। और अब वो वक्त आ गया है लगभग, क्योंकि जो मंदिर के सचिव हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम पुजारी जो हैं वो अब यहाँ पर, देखिए किस तरह से हलचल बढ़ गई है, और जितने भी श्रद्धालु हैं राधे राधे जय श्री राधे के धुन पर यहाँ पर मगन है, हाथ उठाकर झूम रहे हैं। छोटी छोटी बालिकाएं जो हैं उन्हें भी हमने यहाँ नाचते गाते हुए देखा है। तो तमाम लोग अब उस घड़ी का जिसका इंतजार न सिर्फ पूरा ब्रज कर रहा था, पूरा विश्व कर रहा था, वो घड़ी अब एक तरह से कहिए कि वो घड़ी अब आ गई है। सीधी तस्वीरें हम आपको गुड न्यूज टुडे पर दिखा रहे हैं। देखिए, कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थली से जहां पर श्री कृष्ण और राधा रानी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और पीतांबर वस्त्र में जिस तरह से सुसज्जित हो रहे हैं, अपने आप में ये दिव्यता और भव्यता उनकी देखने की ही बन रही है। हालांकि इंतजार, इस समय का इंतजार अब लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया, हालांकि 11:56 हो चुके हैं, और कहते हैं ना कि समय भले ही बदल जाता है लेकिन कुछ ऐसे इंतजार होते हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। बेसब्री लोगों की बढ़ती जा रही है। द्वापर में भी एक ऐसी ही रात आई थी जब मथुरा इंतजार कर रही थी कृष्ण के जन्मोत्सव का, और आज हजारों साल बाद भी मथुरा फिर उसी इंतजार में है। लेकिन बस अब इंतजार की जो ये घड़ियां हैं कुछ ही मिनटों की रह गई है जब कान्हा जो है वो यहाँ जन्म लेंगे, यानी कि श्री कृष्ण का यहाँ पर प्राकट्य होगा। फर्क हालांकि द्वापर में और आज में बस इतना है कि तब इस जगह पर जहाँ आप तस्वीरें देख रहे हैं एक कारागार हुआ करता था, और आज जन्मभूमि का ये दिव्य और भव्य मंदिर है जहाँ पर हमारे ईष्ट देव यानी कि श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर सुसज्जित हो रहे हैं पीतांबर वस्त्र में। और साथ ही साथ आप पूरे मंदिर प्रांगण को देखिए, कितने खूबसूरत फूलों से यहाँ पर सजाया गया है। और सनातन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो सबसे बड़ी खूबसूरती,
0: श्वेता लौटती आपके पास, 11:57 हो गए, 3 मिनट का वक्त बचा है, और अगर आप हर जगह की तस्वीरें देखेंगे, अगर आप इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें देखेंगे, जयपुर के मंदिर की तस्वीरें देखेंगे, हर जगह पर फिलहाल पर्दा लगा दिया गया है, पट बंद कर दिए गए हैं। ठीक 12 बजे प्रभु प्रकट होंगे और फिर उसके बाद सबको दर्शन देंगे, तब ये पट खुलेंगे। सीधा श्वेता के पास चलते हैं। जी श्वेता, श्वेता आवाज आ रही है? चलिए, हर जगह की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं। 11:58 का वक्त हो चला है और महज 2 मिनट के बाद, और देखिए मथुरा में भी पर्दा जो है वो लगा दिया गया है। 2 मिनट का ठीक इंतजार आप भी कीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अब आपको बाल स्वरूप में दर्शन देने के लिए वो भी आतुर हैं।

0: हर जगह के, बेहद खूबसूरत। और ये पल बहुत खास होता है भक्तों के लिए, भक्त इसी पल का, इसी क्षण का इंतजार करते हैं। और देखिए घंटों लाइन में लग के यहाँ इंतजार कर रहे हैं इन्हीं पलों का, और मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही मिनट का वक्त अभी बचा है।
1: 11:58, चलिए श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता आवाज आ रही है, जरा तस्वीरों को बयां कर दीजिए एक बार।
2: बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिस तरह से तस्वीरें भी आप देख रही हैं, मंदिर के कपाट जो है वो बंद हो चुके हैं और अब बस इंतजार है। 11:59 हो चुका है, बस अब कुछ ही क्षणों की देर है और अब ये कपाट खुलेगा। और देखिए तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पर लंबे इंतजार में हैं, अब देखिए जो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कतार में, वो भी चाहेंगे कि थोड़ी देर वो रुक ही जाएं और भगवान को वो देख ही ले, उनके प्राकट्य को देख ही ले। थोड़ी सी लालच जो है ना वो हो जाती है, हर किसी के मन में हो जाती है। और ये देखिए मंदिर के कपाट अब खुल चुके हैं और ये जो पर्दा है वो अब हटने वाला है यहाँ पर, यानी कि वो घड़ी जिसका इंतजार तमाम देशवासी ही नहीं, आपको बता दें पूरा ब्रह्मांड कर रहा होता है, वो घड़ी बस आ गई है। क्योंकि अब देखिए कुछ ही क्षणों का, ये देखिए 12:12 और अब जो है भगवान का प्राकट्य उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। तो जिस घड़ी का इंतजार समूचा विश्व कर रहा था वो घड़ी यहाँ आ गई है, जिस घड़ी का इंतजार पूरी सृष्टि कर रही थी वो घड़ी यहाँ आ गई है। वो क्षण जब आधी रात के सन्नाटे को चीरते हुए, ये देखिए भगवान श्री कृष्ण, आप देख सकते हैं कमल के पुष्प यहाँ पर, चांदी का वो कमल का पुष्प है। और इस बीच जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो अभी यहाँ पर प्रकट होंगे, और साथ ही साथ ये भव्य और दिव्य तस्वीरें, सनातन की सबसे खूबसूरत तस्वीर, जब यहाँ पर तमाम भक्त दोनों हाथ ऊपर करके यहाँ मौजूद हैं और इस प्राकट्य उत्सव को देख रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है जहाँ पे जो लोग हैं, देखिए ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, हजारों क्विंटल फूल यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं, ये घड़ी ही ऐसी है। और नीचे जो आप डमरू वादन सुन रहे हैं, करताल हो रहे हैं, विशेष करके भोलेनाथ की नगरी उज्जैन से ये लोग आए हैं, 52 लोगों की ये टोली है, जो विशेष करके जब उज्जैन में भस्म आरती होती है तो उस समय ये करताल, ये ध्वनि वहां पर बजाए जाते हैं, ये डमरू वहां पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बजाया जाता है। वो पूरी टीम भस्म आरती की आज यहाँ पर मौजूद है, जब श्री कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है, नंदलाल का यहाँ पर जन्म हो रहा है, लल्ला का यहाँ पर जन्म हो रहा है, तो उस खुशी में खुद भगवान भोलेनाथ की नगरी से ये तमाम टोली भस्म आरती की आई है और उसी उत्सव को, उस प्रसन्नता को देखिए किस तरह से वो जाहिर कर रही है। और साथ ही साथ तमाम वो श्रद्धालु जो बस एक झलक वो चाह रहे थे कि जब उनकी बारी यहाँ पर आए प्रभु को देखने की, तो उस समय वो आ चुका हो जब वो अपने नंदलाल को यहाँ पर देख पाए। वाला यहाँ पर जो दीपक है वो प्रज्वलित है और लगातार मंत्रोच्चार कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और यही वो क्षण है जिसका इंतजार हम कर रहे थे, अब वो क्षण आ गया। इस खुशी की बेला को जितने भी शब्दों में हम चाहे व्यक्त करना, वो शब्द शायद आज कम पड़ जाएंगे, लेकिन वो क्षण आ चुका है। वो क्षण जब मंदिरों की घंटियां एक साथ बज उठी हैं, वो क्षण जब लाखों भक्तों की आंखों में आप आंसू देखेंगे, क्योंकि अपने आप को पूरी तरह से यहां पर भक्त समर्पित कर चुके होते हैं। जब आप ब्रज की भूमि में इस रज को आप जब अपने मस्तक पर लगाते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि जितनी भी आपके अंदर नकारात्मकताएं हैं वो सारी चूर चूर हो चुकी हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, आप मिट गए हैं। आपके अंदर अगर कुछ है तो वो श्री हरि का नाम है, वो श्री कृष्ण है और कुछ भी नहीं है। और ऐसे समय में जब गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हम खुद यहाँ पर मौजूद हैं, इस ब्रज की भूमि, इस ब्रज मंडल में हम मौजूद हैं, और अपनी आंखों के सामने जब श्री कृष्ण का हम प्राकट्य देख रहे हैं, उस बाल रूप को जिसको माता यशोदा ने किस तरह से पाला था और किस तरह से वो प्रेम दिया था। और ये देखिए लगातार जो है करतल ध्वनि लोगों की बढ़ती जा रही है, वो हर्षोल्लास लगातार बढ़ता जा रहा है, दोनों हाथ उठा करके यहाँ पर लोग जो है वो भगवान के आगमन का, उनके प्राकट्य का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। उस क्षण का इंतजार जो लंबे समय से कर रहे थे लोग, अब लोगों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू हैं, हाथ जुड़े हुए हैं और हाथों पर सिर्फ

0: ही नाम होटो पर उनका, बस एक ही नाम, हरे कृष्णा हरे राधे। तो राधे कृष्ण, अगर आप इस्कॉन में जाएंगे तो वहाँ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, वहाँ ये भजन आपको सुनाई देगी। लेकिन जब आप ब्रजमंडल में आएंगे तो राधे राधे से ही स्मरण होता है प्रभु श्री कृष्ण का भी, क्योंकि कहते हैं कि अगर ब्रज को भी जानना है तो आपको पहले राधा को जानना होगा, राधा के प्रति प्रभु श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसे जानना होगा। और जब आप उस प्रेम को जान जाएंगे तब आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि कृष्ण को जान पाएंगे, क्योंकि कृष्ण तो अपने आप में पुरुषोत्तम है, क्योंकि कृष्ण के अंदर वो सब कुछ समाहित है, जितने भी रूप जिसकी चर्चा हमने की थी। हमने कहा था कि वो एक मित्र है, वो एक सखा है, वो पालक भी है जो अपने माँ पर दुलार प्यार लुटाते हैं, और वो साथ ही साथ वो प्रेमी भी है जो राधा के साथ, जिनका नाम आजीवन जुड़ जाता है। तो मथुरा की इस पावन धरती पर आज फिर वही दिव्य अनुभूति हो रही है, वही आस्था है, वही उत्साह है, और प्रतीक्षा की घड़ी खत्म हुई, जिसका वर्तमान, जिसका वर्णन सदियों से भक्त अपने भजनों में करते आए हैं। अभी भी भजनों के माध्यम से यहाँ पर इंतजार हो रहा था, लेकिन अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब जो श्रीहरि हैं उनका प्राकट्य हो चुका है, बाल रूप में एक बार फिर से वो हम सभी के सामने पधार चुके हैं, और उनके दर्शन कर हर एक भक्त यहाँ पर धन्य हो रहा है। ये खूबसूरत तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, चारों ओर जो द्वापर में एक समय भय था, अन्याय था, कंस का आतंक, और ये देखिए, इससे पहले कि हम कुछ कहें ये करतल ध्वनि और बढ़ती जा रही है, लोगों का उत्साह और उल्लास बढ़ता जा रहा है, और यही खूबसूरती है मथुरा की, और यही चीज आप और कहीं नहीं देख पाएंगी। भले ही देखिए, श्रद्धा और विश्वास हर जगह एक से होते हैं, प्रभु हर जगह एक है, हर किसी के मन में प्रभु एक से समाहित है, लेकिन जो मथुरा में आपको देखने को मिलेगा, जो जन्मभूमि की तस्वीर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो उल्लास जो उत्साह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो शायद ये तस्वीर आपको कहीं नहीं मिलेगी। अभी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर में, आप देखिए शंख से अब उनकी आरती की जा रही है, ये महाआरती होती है, और जितनी भी शुद्ध चीजें हैं एक एक करके उससे श्री कृष्ण का महाभिषेक किया जाएगा, और फिर उनकी आरती यहाँ पर की जाएगी। तो मथुरा में जिस तरह से इस वक्त नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, क्योंकि नंद के घर अब आनंद की जो है वो बेला आ चुकी है, और ये देखिए महाआरती लेकर के 108 दीपों वाली महाआरती लेकर के जो मंदिर के सचिव हैं वो बाहर अब निकल चुके हैं, और यहाँ पर तमाम भक्तों को हालांकि ये मिल पाए, ये देखिए ये ऊपर इन्होंने कर दिया, और हम यहीं से ऊपर से ये आरती ले रहे हैं। लेकिन अपने आप में ये जो क्षण है, ढोल की धुन करताल बज रहे हैं, और दोनों हाथ उठाए करताल ध्वनि लोगों की, ये अपने आप में बताता है कि चाहे वक्त जितना भी बीत जाए, श्री कृष्ण को लेकर जो हमारा प्यार है, श्री कृष्ण को लेकर जो हमारा विश्वास है वो अडिग है। मथुरा की गलियां आज जिस तरह से जश्न मना रही है वो अपने आप में देखने लायक है। पूरे ब्रजमंडल में इस वक्त हर्षोल्लास, और ये देखिए छोटे से बाल रूप में श्री कृष्ण दर्शन देने के लिए निकल चुके हैं, और बाहर अब वो आ चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में आपको बता दें, हालांकि यहाँ जैसा कि मैंने बोला कि मान्यता ऐसी है कि जैसे हमारे घर में कोई बालक का अगर जन्म होता है तो वो बहुत देर तक जगा हुआ नहीं रह सकता है, तो थोड़ी ही देर में अब यहाँ पर श्रृंगार आरती होगी, क्योंकि जन्म हो चुका है, और अब थोड़ी देर में यहाँ पर श्रृंगार आरती होगी, प्रभु का श्रृंगार किया जाएगा, और उसके बाद शयन आरती की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, क्योंकि छोटा सा बालक है, बहुत देर तक वो रह नहीं सकता है जगह, इसीलिए श्री कृष्ण की अब थोड़ी देर में ये देखिए इसी पुष्प, और विशेष करके ये आप देख पा रही हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये चांदी का पूरा कमल का पुष्प यहाँ पर लगाया गया है, और यहाँ पर इसी के ऊपर श्री कृष्ण जो है उनका प्राकट्य हुआ था इसी पर, और थोड़ी देर में यहाँ पर शायद अभिषेक किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा पाएंगे ताकि तमाम दर्शक भी यहाँ पर देख पाए, ये वहाँ पर कोशिश की जाएगी। विशेष करके आपको बता दें अयोध्या से और काशी से संदेश आए थे, यानी कि प्रभु श्री राम ने संदेश भेजा था श्री कृष्ण को, विशेष करके उनके जो आज पोशाक हैं और लड्डू खास करके आए थे उनके लिए आज वही भोग लगे हैं। तो अपने आप में कृष्ण का जन्म सिर्फ एक बालक का जन्म नहीं है, ये उस विश्वास का जन्म है कि सत्य को चाहे जितना भी दबाया जाए वो एक दिन सामने जरूर आता है। ये उस आशा का जन्म था कि अत्याचार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो उसका अंत निश्चित है। ये उस प्रकाश का जन्म था जो अंधकार को चुनौती देने आया था और यही कारण है कि कृष्ण जन्म की रात को सिर्फ एक धार्मिक पर्व के रूप में नहीं देखा जाता है। ये रात खास करके हमें याद दिलाती है कि जब संसार में अन्याय बढ़ता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार होता है, जब सत्य बोलने वालों को दबाया जाता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आशा बनकर जन्म लेते हैं। आज मथुरा में वही दिव्य क्षण फिर से जीवंत तो हो उठा है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं दोनों हाथ जोड़े हुए पूरी तरह से समर्पित भाव से श्री कृष्ण के सामने खड़े हैं और आंखों में कईयों के अश्रु हैं। कई लोग बस श्री कृष्ण की बस एक मुस्कान को देखने के लिए आए हैं मीलों दूर से, और यहाँ आकर ऐसा मालूम पड़ता है, हर कोई ऐसा महसूस कर रहा है कि बस आज इस समय इस क्षण में ब्रज में होना, इस मिट्टी में होना, इस जगह पर होना अपने आप में सब कुछ पा लेना जैसा होता है। आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया हो ऐसा महसूस होता है। तो आज मथुरा में वही दिव्य क्षण फिर से जीवंत हो उठा है। मंदिरों में ये जो सजावट आप देख रहे हैं, मंदिरों में जिस तरह से घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, विशेष करके उज्जैन से, जैसे कि हमने आपको बताया कि महाकाल के दरबार से भस्म आरती करने वाली जो टीम है वो विशेष करके यहाँ पर आई थी और आज वहाँ वो ढोल बजा रही है, मृदंग बजा रही है। ऐसा लगता है कि शिव के प्रतिनिधि खुद यहाँ पर आए हैं और लगातार यहाँ पर वो शिव की तरफ से एक तरह से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और श्री कृष्ण के जन्म को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये उत्साह वो मना रहे हैं। अपने आप की जो तस्वीर है ये अनोखी है, यह अद्भुत है और ये अपने आप में पहले की सिर्फ आप अनुभूति कर सकते हैं इस समय की, जो हम यहाँ पर होकर मौजूद होकर कर पा रहे हैं। लगातार करतल ध्वनि बढ़ती जा रही है, फूलों की बारिश हो रही है, कृष्ण की बाल प्रतिमा को झूले में सजाया गया है और साथ ही साथ लोग हैं जो बाल रूप में कृष्ण को भी यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये देखिए इनका उमंग, ये झूमते लोग, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ जब किसी से पूछेंगे कि आपने कृष्ण से क्या मांगा, आज जब आप इतने दूर से यहाँ पर आए हैं, आज मंदिर में आए हैं, वो भी कृष्ण जन्मोत्सव, जब हजारों की भीड़ होती है, कई बैरिकेड्स होते हैं, रूट डाइवर्जन होता है, उसके बावजूद आप यहाँ पर आए हैं तो आपने मांगा क्या? मैं निश्चित तौर पर आपसे कहना चाहूंगी, कोई भी श्रद्धालु ये जवाब नहीं दे पाएगा या वो गिना नहीं पाएगा कि मैंने कौन कौन सी चीज श्री कृष्ण से मांगी, क्योंकि आप जैसे ही ब्रजमंडल में कदम रखते हैं और आप इस मंदिर तक पहुंचते हैं जो कि कभी कारागार हुआ करता था, आज ये श्री कृष्ण का भव्य जन्मोत्सव जहां हम मना रहे हैं, ये भव्य और दिव्य मंदिर यहाँ पर है जो कि फूलों से, हजारों क्विंटल फूलों से सुसज्जित है। तो यहाँ जब कोई श्रद्धालु यहाँ तक पहुँच भी पाता है तो वो सोचता है कि मेरे लिए इतना भर ही तो काफी है। प्रभु के नजदीक आ पाना, उन्हें देख पाना, खास करके उनके प्राकट्य उत्सव के दिन वहाँ इतने समीप आ पाना, इससे बड़ी बात और खुशी की बात हो क्या सकती है। तो यहाँ श्री कृष्ण के भक्त जितने भी हैं सब श्रद्धा में लीन और अपने आप को समर्पित किए हुए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार यहाँ पर देखिए किस तरह से मंजीरा बज रहा है, ढोल बज रहे हैं और लगातार श्री कृष्ण की स्तुति यहाँ पर की जा रही है। दोनों हाथ उठाए लगातार श्रद्धालु कृष्ण भक्त जो हैं वो यहाँ पर श्रद्धा से भाव विभोर है। और कहीं आपको बता दें कि पीताम्बर पहनाया गया है श्री कृष्ण को, तो कहीं मोर मुकुट से सजाया गया है, क्योंकि अलग अलग मंदिरों में अलग अलग आपको रूप श्री कृष्ण के दिखाई देंगे, लेकिन ज्यादातर मंदिरों में पीताम्बर में ही आप श्री कृष्ण को आज के दिन देखेंगे। और आज मथुरा में जन्मभूमि से सीधे जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कृष्ण कैसे लग रहे हैं ये कहना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कृष्ण की एक झलक, उनकी जो मुस्कान, उनके हाथों में जो बांसुरी है, वो तो आपको यहाँ पहुंचने ही ब्रज की गलियों में घूमने को ही आपको मिल जाएंगी। जब आप ब्रज की गलियों में घूमेंगे तो आपको कहीं से लगेगा कि किसी बांसुरी की आवाज आई। जब आप यमुना किनारे जाएंगी तो आपको लगेगा कि यहाँ पर शायद गोपियां जो है वो प्रतीक्षा कर रही हैं। कहीं बाल सखाएं खेलते हुए आपको दिखेंगे तो आपको लगेगा कि श्री कृष्ण के बाल सखा जो है वो खेल रहे हैं। तो इस तरह की अनुभूति इस ब्रज मंडल में होती है। और ऐसे में आज जब यहाँ पर आप पहुंचे हैं, कई अपने बच्चे को श्री कृष्ण के रूप में सजाकर लेकर आया है। हमने देखा कि कई लोग राधा रानी और गोपियों के वेश में यहाँ पर आई हैं, उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। कई लोग अपने लड्डू गोपाल हाथ में लेकर के आए हैं, दूर दराज से सिर्फ इस क्षण के साक्षी बनने के लिए लोग आए हैं। तो किसी की आंखों में भक्ति आपको नजर आएगी, तो किसी के चेहरे पर उत्साह नजर आएगा, किसी के हाथ में पूजा की थाली आपको नजर आएगी, तो किसी के होठों पर लगातार एक ही नाम आएगा और वो है राधे राधे, जय श्री राधे, कृष्णा कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो जैसे ही जन्म का ये समय आया, मंदिरों में हमने आपको दिखाया किस तरह से घंटे घड़ियाल बजने लगे और तमाम श्रद्धालु जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ऐसा लगा कि उन्हें हर चीज की प्राप्ति हो चुकी है। जो कुछ भी वो भगवान से मांगना चाहते थे सब कुछ उन्होंने यहाँ पर आकर पा लिया हो। भक्त लगातार भगवान के जयकारे लगा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो मथुरा की धरती स्वयं कह रही हो कि कृष्ण आ गए नंद के घर, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज से हजारों वर्ष पहले कृष्ण का जन्म भले ही एक बंद कारागार में हुआ था, लेकिन उस जन्म का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा था। तब हालांकि वहां देवकी थी, वासुदेव थे, कुछ पहरेदार थे और एक नवजात बालक था। आज उसी जन्म की स्मृति में मथुरा की गलियों में लाखों भक्त एकत्र हैं। तब कारागार के दरवाजे बंद थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा के सामने वो दरवाजे भी खुल गए। आज मंदिरों के कपाट खुलते हैं तो भक्तों को लगता है मानो उनके हृदय के द्वार भी खुल रहे हों। और ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने को काफी है कि किस तरह से जब प्रभु के द्वार खुलते हैं। और बेसब्री मैं आपको बता दूं कि ये जो बीच में बेसब्री लोगों की होती है वो इसलिए होती है कि श्री कृष्ण इतने अपने हैं कि श्री कृष्ण कई लोगों से अगर आप पूछे तो वो कहेंगे वो भगवान तो है ही नहीं, वो तो मेरे हैं, वो अपने हैं, वो या तो मेरे मित्र हैं, या तो मेरे प्रेमी हैं, या तो मेरे सखा हैं, या तो मेरे प्रेरणादायक एक स्रोत है। इस तरह से लोग उन्हें देखते हैं। इसीलिए जब उनके बीच यानी कि श्री कृष्ण के बीच और जब भक्तों के बीच ये पर्दा लग जाता है तो बेचैनी और ज्यादा इनकी बढ़ जाती है। उनको लगता है कि उनके अपने के बीच और श्री कृष्ण के बीच कोई पर्दा कैसे पड़ सकता है। तो भक्त और भगवान की जो ये दूरी है, ये जो थोड़े समय का जो विरह था जो हमने आपको दिखाया, वो विरह भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कृष्ण भक्त। और ये देखिए एक बार फिर से करतल ध्वनि और बढ़ती जा रही है और लगातार न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन से जुड़े जो लोग हैं वो भी लगातार जो सुबह से ही ड्यूटी पर लगे हुए हैं, घंटों एक जगह पर खड़े हैं और व्यवस्था बनाए रखने में लगे हुए हैं, वो भी दोनों हाथ उठा करके लगातार भगवान का आशीर्वाद यहाँ ले रहे हैं और लगातार इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। आज मंदिरों के कपाट जब खुले तो भक्तों को लगा मानो उनके हृदय के द्वार खुल गए। तब कृष्ण ने एक छोटे से कारागार को दिव्यता से भर दिया था। आज वही कृष्ण लाखों हृदय को भक्ति प्रेम और विश्वास से भर रहे हैं। तब जन्म के समय कुछ ही लोग उस चमत्कार के साक्षी थे, आज करोड़ों लोग अपने अपने घरों मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर उस क्षण को महसूस कर रहे हैं। किसी घर में पालना सजाया गया है, कहीं बाल गोपाल को दूध दही और माखन का भोग लगाया गया है और लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कहीं पर महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं और यहाँ पर अब जो है सिर्फ कृष्ण का नाम और राधे का नाम लिया जा रहा है। यहाँ बच्चे और राधा का रूप धारण कर कई झांकियों में लोग शामिल भी हुए हैं। कई भक्त पूरी रात भजन और कीर्तन कर रहे हैं और कहीं कोई अकेला व्यक्ति शांत मन से कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर अपने जीवन की जो भी बाधाएं हैं या परेशानियां हैं उनके चरणों में रख रहा है। तो यही तो कृष्ण है, वो सिर्फ मंदिरों में नहीं विराजते हैं, वो सिर्फ शास्त्रों में नहीं है, वो सिर्फ भजनों में नहीं है, कृष्ण उस माँ की प्रार्थना में है जो अपने बच्चे के लिए सुरक्षा मांगती है, कृष्ण उस पिता की चिंता में है जो अपने परिवार के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है, कृष्ण उस युवा के साहस में है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, कृष्ण उस व्यक्ति के धैर्य में भी है जो अन्याय सहने के बजाय सत्य के साथ खड़ा होने का निर्णय लेता है, और कृष्ण उस उम्मीद में भी है जो टूटे हुए मन को फिर से जीने की ताकत देती है। तो कृष्ण का जन्म हमें ये सिखाता है कि जीवन में अंधकार आ सकता है लेकिन अंधकार स्थायी नहीं होता है, मुश्किलें आ सकती हैं लेकिन रास्ते बंद नहीं होते, अन्याय बढ़ सकता है लेकिन धर्म समाप्त नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हैं और ये किसी के भी जीवन में हो सकता है, लेकिन जैसे हर दरवाजा बंद है, जैसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा महसूस हो जैसे हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन कृष्ण जन्म की जो कथा है वो कहती है कि आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, समय बदलता है, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो सुबह जरूर आती है, और जब कृष्ण का जन्म होता है तो सिर्फ एक बालक जन्म नहीं लेता, जन्म लेता है एक नया विश्वास, एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नई उम्मीद। आज जब भक्त कहते हैं नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो ये सिर्फ एक भजन नहीं है, ये उस क्षण की अनुभूति है जब निराशा के बीच आशा ने जन्म लिया था, जब अत्याचार के बीच धर्म ने जन्म लिया था, जब भय के बीच साहस ने जन्म लिया था, जब बंधनों के बीच मुक्ति ने जन्म लिया था और जब अंधकार के बीच एक प्रकाश ने जन्म लिया था, कृष्ण के रूप। जी हाँ, उसी कृष्ण का जन्मोत्सव आज हम मना रहे हैं, उसी कृष्ण का जन्मोत्सव न सिर्फ ब्रजभूमि बल्कि ये पूरी दुनिया, ये ब्रह्मांड मना रही है, दोनों हाथ ऊपर किए जितने भी श्रद्धालु हैं लगातार यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं, राधा रानी को, श्री कृष्ण को भज रहे हैं, अपने प्रिय को, और मंद मंद मुस्कुराते हुए बस ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण हम धन्य हैं, हम धन्य हैं कि आज के दिन इस ब्रजमंडल में हम आ सके, इस धरा पर हम आ सके और आपके इस मंदिर में पहुंचकर आपकी आराधना कर सके, इससे ज्यादा और इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। और जब अंधकार के बीच एक प्रकाश ने जन्म लिया, यानी कि जब कृष्ण के रूप में खुद आपके सामने आपका साथी, आपका मित्र सब कोई हो, तो फिर आपको और क्या चाहिए। इसलिए आज की रात सिर्फ उत्सव की रात नहीं, मंथन की भी रात है, हमें अपने भीतर देखना होगा।
1: इमोशनल हो गई हैं आप, भावुक हो गई हैं बोलते बोलते, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके लिए श्री कृष्ण क्या है?
0: ये जानना बेहद जरूरी है, क्रोध का कंस, लोभ का कंस, ईर्ष्या का कंस, भय का कंस, क्या हम अपने भीतर के इन अंधकारों को पहचान पा रहे हैं? क्योंकि कृष्ण का जन्म सिर्फ मथुरा के कारागार में नहीं होना चाहिए, कृष्ण का जन्म हमारे भीतर भी होना चाहिए। जब हमारे भीतर प्रेम जन्म ले, ये कृष्ण है, जब हमारे भीतर करुणा जन्म ले, ये कृष्ण है, जब हम किसी कमजोर का साथ दे वो कृष्ण है, जब हम अन्याय के सामने सच बोलने का साहस करें वो कृष्ण है, जब हम निराशा के बीच उम्मीद को बचाए रखें वो कृष्ण है, और जब हम अपने कर्म को ईमानदारी से निभाते हुए परिणाम की चिंता छोड़ दें तब भी हमारे भीतर कृष्ण का ही प्रकाश जागता है। तो आज मथुरा में कृष्ण का जन्म हो चुका है, शंखनाद हो चुके हैं, घंटे घड़ियाल बज चुके हैं, मंदिरों में आरती हो चुकी है, भक्तों ने अपने कान्हा के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन कृष्ण जन्म का उत्सव यहाँ समाप्त नहीं होता है। अब ये संदेश मथुरा से निकलकर हर घर तक जाना चाहिए, हर मन तक जाना चाहिए, हर उस व्यक्ति तक जाना चाहिए जो इस समय किसी कठिनाई से गुजर रहा हो, हर उस परिवार तक जाना चाहिए जो किसी चिंता में डूबा हो, हर उस युवा तक जाना चाहिए जो अपने भविष्य को लेकर परेशान हो, हर उस माँ तक जाना चाहिए जो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है, हर उस इंसान तक जाना चाहिए जो ये सोच रहा है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं होगा। कृष्ण का जन्म संदेश देता है, अभी सब समाप्त नहीं हुआ, अभी उम्मीद बाकी है, अभी रास्ता बाकी है, अभी प्रकाश बाकी है, और शायद इसी विश्वास के साथ आज मथुरा के घर कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण आए हैं अंधकार को मिटाने के लिए, न्याय को, कृष्ण आए हैं प्रेम धर्म और सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, और कृष्ण आज भी आते हैं हर उस हृदय में जहाँ प्रेम बसा है, हर उस घर में जहाँ
1: बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधा श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से, जहां पर आप देख सकते हैं कि जन्म हो चुका है, कितनी बड़ी संख्या में भक्त वहां पर मौजूद हैं, और सीधी तस्वीरें वहां से हम आपको दिखा रहे हैं, और इस वक्त अभिषेक वहां पर प्रभु का हो रहा है, बड़ी संख्या में भक्त लगातार वहां पहुंच रहे हैं। और आज जैसा अशोक गुप्ता हम चर्चा कर ही रहे थे कि यहां पर कपाट 1:30 बजे तक खुले रहेंगे, यही इन्फॉर्मेशन वहां से थी, और भक्तों का आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि मुझे जब 2 साल पहले मैं यहाँ पर मौजूद थी तो बिल्कुल ऐसा ही था, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो ऊपर गैलरी जहाँ पर श्वेता खड़ी है ना, वहाँ वो सिर्फ मीडिया के लिए अलॉट की जाती है, और वहां से जो आप कह रही थी ना, ये तस्वीरें बहुत दूर होती हैं, हमारा कैमरा लेंस तो कैप्चर कर रहा है ये तस्वीरें, लेकिन वहां से एक आम शख्स के लिए देखना और क्लैरिटी के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, तस्वीरें दूर होती हैं, लेकिन बावजूद इसके भक्त लगातार पहुंचते हैं। अभी देखिए जन्म हो चुका है, लेकिन यहां से जब ये लोग बाहर निकलेंगे, पूरा जो कृष्ण जन्मभूमि है इतनी बड़ी संख्या में, वहां पर तिल रखने तक की जगह नहीं होती, इतनी संख्या भक्त वहां पर होते हैं।
2: और आपने एक और चीज नोट की, लास्ट का जो 1 घंटा था उसमें सडनली संख्या और बढ़ गई,
1: इंतजार करते
2: मंदिर परिसर आपको खाली नजर आ रहा है,
1: इंतजार करते हैं बाहर लोग, और वो सही बता रही थी श्वेता कि बाहर लोग इंतजार करते हैं और वो उस हिसाब से कतार में लगेंगे कि बाय द टाइम 12 बजे और हम बिल्कुल इसके ठीक सामने से होके गुजरे, क्योंकि यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाता। सुरक्षा की वो जो बात कर रही थी, जो मंदिर प्रशासन के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर तैनात रहते हैं, और ऑफकोर्स वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग तो रहते ही, और इसीलिए सारी चीजें सुचारू तरीके से कराई जाती है।
0: रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा है। आज मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ और इसी के साथ शायद हमारे भीतर ही एक नए विश्वास का जन्म हुआ है, एक ऐसी उम्मीद का जन्म हुआ है जो हमें टूटने नहीं देगी, एक ऐसे साहस का जन्म हुआ है जो हमें अन्याय के सामने झुकने नहीं देगा, एक ऐसी भक्ति का जन्म हुआ है जो हमें अपने कर्म से जोड़े रखेगी। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब अपने भीतर के अहंकार को भी छोड़ें, ये संकल्प लें और अपने भीतर प्रेम जगाएं, अपने भीतर करुणा जगाएं और अपने भीतर सत्य को जगाएं। इसी के साथ आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से, और लगातार जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कृष्ण जी मथुरा से लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम लगातार चल रहा है, दुग्धाभिषेक अभी भी यहाँ पर किया जा रहा है।
2: और देखिए 4 तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जिस क्षण का इंतजार, जिस पल का इंतजार आप सभी भक्तों को था और हमें भी आपके साथ था, वो क्षण आ गया है। आखिरकार नंद के लाला का प्रकट उत्सव हो गया है और नंद के लाला पधार गए हैं। देखिए हर किसी की आंखों में आपको इस वक्त अश्रु नजर आएंगे, तमाम श्रद्धालु वहां पर भावुक आपको नजर आएंगे, हर कोई अपने आराध्य के एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आ रहा था। द्वारका इस्कॉन की तस्वीरें देख लीजिए। हर जगह अपने अपने आराध्य का इंतजार और हर जगह अपने अपनी आस्था को प्रकट करने का तरीका भी आपको अलग नजर आएगा। कहीं पर नाचते गाते झूमते हुए श्रद्धालु आपको नजर आएंगे, कहीं पर आरती उतारते हुए नजर आएंगे, तो कहीं पर कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए सिर्फ एक झलक पाने के लिए आतुर यहाँ पर श्रद्धालु आपको नजर आएंगे।
1: और कहीं दूर कोने में श्रद्धालु ऐसे भी होंगे जो कृष्ण को मन ही मन में, चाहे वो मेडिटेशन कह लीजिए या फिर मन ही मन में श्री कृष्ण को याद कर रहे होंगे, उनकी उनकी दी गई जो तमाम शिक्षाएं उनका पालन किस तरीके से उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो ये श्री कृष्ण देखिए शगुफ्ता एक ऐसे भगवान है जिनको हर कोई अपनी नजर से अपने तरीके से अपने नजरिए से पूजता है। हम अभी आप तस्वीरें इस्कॉन टेम्पल की दिखा रही थी, वहां देखिए वहां वहां पर श्री कृष्ण को मानने वाले जो भक्त हैं उनका भक्ति का तरीका अलग अलग और है। और यहाँ पर शुद्ध एकदम भक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जिस जगह की ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर वो लोग हैं जो श्रद्धा आस्था के साथ श्री कृष्ण को मांगते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भी आप श्रद्धा कह लीजिए, एक सखा के रूप में कह लीजिए, बाल रूप में कह लीजिए, किसी भी रूप में कह लीजिए, भक्त जो है वो उनको अपनी नजर से देखते हैं और ठीक उसी तरीके से उनको मानते भी, उनका पूजन अर्चन भी करते हैं।
3: कमल पत्र की तरह कैसे जीना चाहिए, ये सारी शिक्षाएं अपने सिर्फ बोल कर नहीं बल्कि, और एक चीज और बताता हूँ, कृष्ण का जीवन इसलिए अद्भुत है कि वो ऐसा अद्भुत बालक जब वो बाल लीला करता है तो सूर सागर बनता है, यानी सूरदास उनकी लीलाओं को गाते हैं, और जब वो बड़ा होकर रास लीला करता है तो जयदेव का गीत गोविंद बनता है। और कृष्ण के समग्र जीवन को लगा लें तो वो सारा जीवन कृष्ण का वो 18,000 श्लोक से ज्यादा के श्रीमद् भागवत पुराण बनता है। तो ये कृष्ण का जीवन अपने आप में अद्भुत है।
1: बिल्कुल, संजय शर्मा भी वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आप देखिए किस तरीके से जो जन्म के बाद की जो तमाम परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, उनको निभाया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है, यहाँ पर दूध से पंचामृत से अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं, यहाँ से सीधी तस्वीरें हम आपको कृष्ण जन्मभूमि की दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभिषेक भगवान का हो रहा है, फिर इसके बाद आरती भी होगी, दूध के साथ ही अभिषेक किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत क्षण होता है, भक्त बड़ी संख्या में। शगुफ्ता यहाँ मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सुबह आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुबह खाली होता है ये पूरा परिसर, दर्शन करके चले जाते हैं, फिर वो पूरा पूरा दिन बाहर बैठते हैं और रात में 12 बजे तक का इंतजार करते हैं, फिर उसी कतार में वापस से दोबारा उस लाइन में लगते हैं। और ये लाइन छोटी नहीं होती, बहुत लंबी लाइन होती, घंटों इंतजार करना होता है, फिर जाके कहीं यहाँ पर आप ठीक यहाँ पर प्रभु के सामने पहुंचते हैं। और लोग इंतजार करते हैं, लोग हिसाब लगाते कि हम कितने बजे लाइन में लगे ताकि ठीक 12 बजे जब कपाट खुले तो हम सबसे पहले दर्शन कर पाएं। ये भावना, ये श्रद्धा, इस भक्ति के साथ लोग यहाँ पर पहुंचते हैं।
2: मुझे लगता है ये कृष्ण भगवान की लीला ही है कि आप में इतना पेशेंस और धैर्य आ जाता है कि आप सुबह से यहाँ पर पहुंचते हैं और शाम तक इंतजार करते हैं अपनी बारी का, और फिर आखिर में जिस क्षण का आप इंतजार करते हैं वो क्षण आप सबके सामने होता है और आप सब उस क्षण के साक्षी हम सब के साथ बन रहे हैं। ये देखिए सुंदर दृश्य, इस वक्त अद्भुत दृश्य आपको इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके पहले कामधेनु गाय के जरिए भगवान का दुग्धाभिषेक हुआ, इस वक्त आप देख सकते हैं इन मटकों के जरिए भगवान का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, ये संपन्न होगा, उसके बाद आरती भी की जाएगी और इसी तरह से प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती जाएगी। भारी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुँचे हुए हैं, असंख्य श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे हैं सिर्फ इसी क्षण के साक्षी बनने के लिए कि हमारे नंद के लाला आखिरकार आ गए हैं और अब हमारे जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, उनको वो हर लेंगे और उनको वो ख़त्म कर देंगे। यही एक भाव है और भाव देखिए सब सर्वोपरि है। भाव अगर आपकी भावना अच्छी है श्री कृष्ण के प्रति, जैसे कि नवजोत ने भी कहा कि श्री कृष्ण को आप अलग अलग स्वरूप में देखते हैं, आप अलग अलग रूप में देखते हैं, जिस तरह से आप उनको मानेंगे श्री कृष्ण आप में बस जाएंगे, श्री कृष्ण आप में रच जाएंगे। आप बाल स्वरूप में उनको पूजना चाहते हैं आप पूज सकते हैं, आप सखा रूप में उनको देखते हैं आप वो सखा आपके बन जाएंगे, अगर आप रणभूमि में जाकर उनसे कोई सीख लेना चाहते हैं तो उसी अवतार में वो आपके सामने आ जाएंगे और आपको जीवन का उपदेश देंगे और जीवन की शिक्षा देंगे। इसी तरह से आप आगे भी बढ़ सकते हैं।
1: एक मानना और समझना दोनों अलग होते हैं। एक है हम भक्ति में लीन है, श्री कृष्ण की भक्ति से ज्यादा उनको समझने की जरूरत है। जब हम कहते हैं ना कि हर श्री कृष्ण की तमाम लीलाएं जब हम दिखाते हैं, हर लीला के पीछे एक संदेश छिपा है, एक तरीके से आपको जीवन कैसे जीना है वो श्री कृष्ण समझाते हैं, बताते हैं।
0: तस्वीरें सनातन की सबसे खूबसूरत तस्वीर, जब यहाँ पर तमाम भक्त दोनों हाथ ऊपर करके यहाँ मौजूद हैं और इस प्राकट्य उत्सव को देख रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है, जहाँ पे जो लोग हैं देखिए ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, हजारों क्विंटल फूल यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं। ये घड़ी ही ऐसी है। और नीचे जो आप डमरू वादन सुन रहे हैं, करताल हो रहे हैं, विशेष करके भोलेनाथ की नगरी उज्जैन से ये लोग आए हैं। 52 लोगों की ये टोली है, जो विशेष करके जब उज्जैन में भस्म आरती होती है तो उस समय ये करताल, ये ध्वनि वहां पर बजाए जाते हैं। ये डमरू वहां पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बजाया जाता है। वो पूरी टीम भस्म आरती की आज यहाँ पर मौजूद है। जब श्री कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है, नंदलाल का यहाँ पर जन्म हो रहा है, लल्ला का यहाँ पर जन्म हो रहा है, तो उस खुशी में खुद भगवान भोलेनाथ की नगरी से ये तमाम टोली भस्म आरती की आई है। और उसी उत्सव को, उस प्रसन्नता को देखिए किस तरह से वो जाहिर कर रही है। और साथ ही साथ तमाम वो श्रद्धालु जो बस एक झलक वो चाह रहे थे कि जब उनकी बारी यहाँ पर आए प्रभु को देखने की, तो उस समय वो आ चुका हो जब वो अपने नंदलाल को यहाँ पर देख पाए। दीपों वाला यहाँ पर जो दीपक है वो प्रज्वलित होता है और मंत्रोच्चार कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और यही वो क्षण है जिसका इंतजार हम कर रहे थे, अब वो क्षण आ गया। इस खुशी की बेला को जितने भी शब्दों में हम चाहे व्यक्त करना, वो शब्द शायद आज कम पड़ जाएंगे, लेकिन वो क्षण आ चुका है। वो क्षण जब मंदिरों की घंटियां एक साथ बज उठी हैं, वो क्षण जब लाखों भक्तों की आंखों में आप आंसू देखेंगे, क्योंकि अपने आप को पूरी तरह से यहां पर भक्त समर्पित कर चुके होते हैं। जब आप ब्रज की भूमि में इस रज को आप जब अपने मस्तक पर लगाते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि जितनी भी आपके अंदर नकारात्मकताएं हैं वो सारी चूर चूर हो चुकी हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, आप मिट गए हैं। आपके अंदर अगर कुछ है तो वो श्री हरि का नाम है, वो श्री कृष्ण है और कुछ भी नहीं है। और ऐसे समय में जब गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हम खुद यहाँ पर मौजूद हैं, इस ब्रज की भूमि, इस ब्रज मंडल में हम मौजूद हैं, और अपनी आंखों के सामने जब श्री कृष्ण का हम प्राकट्य देख रहे हैं, उस बाल रूप को जिसको माता यशोदा ने किस तरह से पाला था और किस तरह से वो प्रेम दिया था, और ये देखिए लगातार जो है करतल ध्वनि लोगों की बढ़ती जा रही है, वो हर्षोल्लास लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों हाथ उठा करके यहाँ पर लोग जो है वो भगवान के आगमन का, उनके प्राकट्य का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। उस क्षण का इंतजार जो लंबे समय से कर रहे थे लोग, अब लोगों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू हैं। हाथ जुड़े हुए हैं और हाथों पर सिर्फ एक ही नाम, होठों पर उनका बस एक ही नाम, हरे कृष्णा, हरे राधे, हरे राधे। तो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अगर आप इस्कॉन में जाएंगे तो वहाँ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, वहाँ ये भजन आपको सुनाई देगी। लेकिन जब आप ब्रजमंडल में आएंगे तो राधे राधे से ही स्मरण होता है प्रभु श्री कृष्ण का भी, क्योंकि कहते हैं कि अगर ब्रज को भी जानना है तो आपको पहले राधा को जानना होगा, राधा के प्रति प्रभु श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसे जानना होगा। और जब आप उस प्रेम को जान जाएंगे तब आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि कृष्ण को जान पाएंगे, क्योंकि कृष्ण तो अपने आप में पुरुषोत्तम है, क्योंकि कृष्ण के अंदर वो सब कुछ समाहित है। जितने भी रूप जिसकी चर्चा हमने की थी, हमने कहा था कि वो एक मित्र है, वो एक सखा है, वो पालक भी है जो अपने माँ पर दुलार प्यार लुटाते हैं, और वो साथ ही साथ वो प्रेमी भी है जो राधा के साथ, जिनका नाम आजीवन जुड़ जाता है। तो मथुरा की इस पावन धरती पर आज फिर वही दिव्य अनुभूति हो रही है, वही आस्था है, वही उत्साह है, और प्रतीक्षा की घड़ी खत्म हुई, जिसका वर्तमान, जिसका वर्णन सदियों से भक्त अपने भजनों में करते आए हैं। अभी भी भजनों के माध्यम से यहाँ पर इंतजार हो रहा था, लेकिन अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब जो श्रीहरि हैं, उनका प्राकट्य हो चुका है, बाल रूप में एक बार फिर से वो हम सभी के सामने पधार चुके हैं, और उनके दर्शन कर हर एक भक्त यहाँ पर धन्य हो रहा है। ये खूबसूरत तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, चारों ओर जो द्वापर में एक समय भय था, अन्याय था, कंस का आतंक, और ये देखिए इससे पहले कि हम कुछ कहें, ये करतल ध्वनि और बढ़ती जा रही है, लोगों का उत्साह और उल्लास बढ़ता जा रहा है और यही खूबसूरती है मथुरा की और यही चीज आप और कहीं नहीं देख पाएंगी। भले ही देखिए, श्रद्धा और विश्वास हर जगह एक से होते हैं, प्रभु हर जगह एक है, हर किसी के मन में प्रभु एक से समाहित है, लेकिन जो मथुरा में आपको देखने को मिलेगा, जो जन्मभूमि की तस्वीर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो उल्लास जो उत्साह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो शायद ये तस्वीर आपको कहीं नहीं मिलेगी। अभी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर में, आप देखिए शंख से अब उनकी आरती की जा रही है, ये महाआरती होती है और जितनी भी शुद्ध चीजें हैं एक एक करके उससे श्री कृष्ण का महाभिषेक किया जाएगा और फिर उनकी आरती यहाँ पर की जाएगी। तो मथुरा में जिस तरह से इस वक्त नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, क्योंकि नंद के घर अब आनंद की जो है वो बेला आ चुकी है। और ये देखिए महाआरती लेकर के 108 दीपों वाली महाआरती लेकर के जो मंदिर के सचिव हैं वो बाहर अब निकल चुके हैं और यहाँ पर तमाम भक्तों को हालांकि ये मिल पाए, ये देखिए ये ऊपर इन्होंने कर दिया और हम यहीं से ऊपर से ये आरती ले रहे हैं। लेकिन अपने आप में ये जो क्षण है, ढोल की धुन करताल बज रहे हैं और दोनों हाथ उठाए करताल ध्वनि लोगों की, ये अपने आप में बताता है कि चाहे वक्त जितना भी बीत जाए, श्री कृष्ण को लेकर जो हमारा प्यार है, श्री कृष्ण को लेकर जो हमारा विश्वास है वो अडिग है। मथुरा की गलियां आज जिस तरह से जश्न मना रही है वो अपने आप में देखने लायक है। पूरे ब्रजमंडल में इस वक्त हर्षोल्लास और ये देखिए छोटे से बाल रूप में श्री कृष्ण दर्शन देने के लिए निकल चुके हैं और बाहर अब वो आ चुके हैं। अब थोड़ी देर में आपको बता दें, हालांकि यहाँ जैसा कि मैंने बोला कि मान्यता ऐसी है कि जैसे हमारे घर में कोई बालक का अगर जन्म होता है तो वो बहुत देर तक जगा हुआ नहीं रह सकता है, तो थोड़ी ही देर में अब यहाँ पर श्रृंगार आरती होगी क्योंकि जन्म हो चुका है और अब थोड़ी देर में यहाँ पर श्रृंगार आरती होगी, प्रभु का श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद शयन आरती की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, क्योंकि छोटा सा बालक है बहुत देर तक वो रह नहीं सकता है जगह, इसीलिए श्री कृष्ण की अब थोड़ी देर में ये देखिए इसी पुष्प और विशेष करके ये आप देख पा रही हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये चांदी का पूरा कमल का पुष्प यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर इसी के ऊपर श्री कृष्ण जो है उनका प्राकट्य हुआ था इसी पर, और थोड़ी देर में यहाँ पर शायद अभिषेक किया जाएगा जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा पाएंगे ताकि तमाम दर्शक भी यहाँ पर देख पाए, ये वहाँ पर कोशिश की जाएगी। विशेष करके आपको बता दें अयोध्या से और काशी से संदेश आए थे, यानी कि प्रभु श्री राम ने संदेश भेजा था श्री कृष्ण को, विशेष करके उनके जो आज पोशाक हैं और लड्डू खास करके आए थे उनके लिए आज वही भोग लगे हैं। तो अपने आप में कृष्ण का जन्म सिर्फ एक बालक का जन्म नहीं है, ये उस विश्वास का जन्म है कि सत्य को चाहे जितना भी दबाया जाए वो एक दिन सामने जरूर आता है। ये उस आशा का जन्म था कि अत्याचार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो उसका अंत निश्चित है। ये उस प्रकाश का जन्म था जो अंधकार को चुनौती देने आया था और यही कारण है कि कृष्ण जन्म की रात को सिर्फ एक धार्मिक पर्व के रूप में नहीं देखा जाता है। ये रात खास करके हमें याद दिलाती है कि जब संसार में अन्याय बढ़ता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार होता है, जब सत्य बोलने वालों को दबाया जाता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आशा बनकर जन्म लेते हैं। आज मथुरा में वही दिव्य क्षण फिर से जीवंत हो उठा है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं दोनों हाथ जोड़े हुए पूरी तरह से समर्पित भाव से श्री कृष्ण के सामने खड़े हैं और आंखों में कईयों के अश्रु हैं, कई लोग बस श्री कृष्ण की बस एक मुस्कान को देखने के लिए आए हैं मीलों दूर से, और यहाँ आकर ऐसा मालूम पड़ता है, हर कोई ऐसा महसूस कर रहा है कि बस आज इस समय इस क्षण में ब्रज में होना, इस मिट्टी में होना, इस जगह पर होना अपने आप में सब कुछ पा लेना जैसा होता है, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया हो ऐसा महसूस होता है। तो आज मथुरा में वही दिव्य क्षण फिर से जीवंत हो उठा है। मंदिरों में ये जो सजावट आप देख रहे हैं, मंदिरों में जिस तरह से घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, विशेष करके उज्जैन से, जैसे कि हमने आपको बताया कि महाकाल के दरबार से भस्म आरती करने वाली जो टीम है वो विशेष करके यहाँ पर आई थी और आज वहाँ वो ढोल बजा रही है, मृदंग बजा रही है। ऐसा लगता है कि शिव के प्रतिनिधि खुद यहाँ पर आए हैं और लगातार यहाँ पर वो शिव की तरफ से एक तरह से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और श्री कृष्ण के जन्म को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये उत्साह वो मना रहे हैं। अपने आप की जो तस्वीर है ये अनोखी है, यह अद्भुत है और ये अपने आप में पहले की सिर्फ आप अनुभूति कर सकते हैं इस समय की, जो हम यहाँ पर होकर मौजूद होकर कर पा रहे हैं। लगातार करतल ध्वनि बढ़ती जा रही है, फूलों की बारिश हो रही है, कृष्ण की बाल प्रतिमा को झूले में सजाया गया है और साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जो बाल रूप में कृष्ण को भी यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये देखिए इनका उमंग, ये झूमते लोग, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ जब किसी से पूछेंगे कि आपने कृष्ण से क्या मांगा, आज जब आप इतने दूर से यहाँ पर आए हैं, आज मंदिर में आए हैं, वो भी कृष्ण जन्मोत्सव, जब हजारों की भीड़ होती है, कई बैरिकेड्स होते हैं, रूट डायवर्जन होता है, उसके बावजूद आप यहाँ पर आए हैं तो आपने मांगा क्या? मैं निश्चित तौर पर आपसे कहना चाहूंगी, कोई भी श्रद्धालु ये जवाब नहीं दे पाएगा या वो गिना नहीं पाएगा कि मैंने कौन कौन सी चीज श्री कृष्ण से मांगी, क्योंकि आप जैसे ही ब्रजमंडल में कदम रखते हैं और आप इस मंदिर तक पहुंचते हैं जो कि कभी कारागार हुआ करता था, आज ये श्री कृष्ण का भव्य जन्मोत्सव जहां हम मना रहे हैं, ये भव्य और दिव्य मंदिर यहां पर है जो कि फूलों से, हजारों क्विंटल फूलों से सुसज्जित है, तो यहाँ जब कोई श्रद्धालु यहाँ तक पहुंच भी पाता है तो वो सोचता है कि मेरे लिए इतना भर ही तो काफी है। प्रभु के नजदीक आ पाना, उन्हें देख पाना, खास करके उनके प्राकट्य उत्सव के दिन वहाँ इतने समीप आ पाना, इससे बड़ी बात और खुशी की बात हो क्या सकती है। तो यहाँ श्री कृष्ण के भक्त जितने भी हैं सब श्रद्धा में लीन और अपने आप को समर्पित किए हुए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार यहाँ पर देखिए किस तरह से मंजीरा बज रहा है, ढोल बज रहे हैं और लगातार श्री कृष्ण की स्तुति यहाँ पर की जा रही है। दोनों हाथ उठाए लगातार श्रद्धालु कृष्ण भक्त जो हैं वो यहाँ पर श्रद्धा से भाव विभोर है। और कहीं आपको बता दें कि पीताम्बर पहनाया गया है श्री कृष्ण को, तो कहीं मोर मुकुट से सजाया गया है, क्योंकि अलग अलग मंदिरों में अलग अलग आपको रूप श्री कृष्ण के दिखाई देंगे, लेकिन ज्यादातर मंदिरों में पीताम्बर में ही आप श्री कृष्ण को आज के दिन देखेंगे। और आज मथुरा में जन्मभूमि से सीधे जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कृष्ण कैसे लग रहे हैं ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कृष्ण की एक झलक, उनकी जो मुस्कान, उनके हाथों में जो बांसुरी है, वो तो आपको यहाँ पहुँचते ही ब्रज की गलियों में घूमने को ही आपको मिल जाएंगी। जब आप ब्रज की गलियों में घूमेंगे तो आपको कहीं से लगेगा कि किसी बांसुरी की आवाज आई, जब आप यमुना किनारे जाएंगी तो आपको लगेगा कि यहाँ पर शायद गोपियां जो है वो प्रतीक्षा कर रही हैं, कहीं बाल सखाए खेलते हुए आपको दिखेंगे तो आपको लगेगा कि श्री कृष्ण के बाल सखा जो है वो खेल रहे हैं। तो इस तरह की अनुभूति इस ब्रज मंडल में होती है और ऐसे में आज जब यहाँ पर आप पहुंचे हैं, कई अपने बच्चे को श्री कृष्ण के रूप में सजाकर लेकर आया है। हमने देखा कि कई लोग राधा रानी और गोपियों के वेश में यहाँ पर आई हैं, उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। कई लोग अपने लड्डू गोपाल हाथ में लेकर के आए हैं, दूर दराज से सिर्फ इस क्षण के साक्षी बनने के लिए लोग आए हैं। तो किसी की आंखों में भक्ति आपको नजर आएगी, तो किसी के चेहरे पर उत्साह नजर आएगा, किसी के हाथ में पूजा की थाली आपको नजर आएगी, तो किसी के होठों पर लगातार एक ही नाम आएगा और वो है राधे राधे, जय श्री राधे, कृष्णा कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो जैसे ही जन्म का ये समय आया, मंदिरों में हमने आपको दिखाया किस तरह से घंटे घड़ियाल बजने लगे और तमाम श्रद्धालु जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ऐसा लगा कि उन्हें हर चीज की प्राप्ति हो चुकी है। जो कुछ भी वो भगवान से मांगना चाहते थे सब कुछ उन्होंने यहाँ पर आकर पा लिया हो। भक्त लगातार भगवान के जयकारे लगा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो मथुरा की धरती स्वयं कह रही हो कि कृष्ण आ गए नंद के घर, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज से हजारों वर्ष पहले कृष्ण का जन्म भले ही एक बंद कारागार में हुआ था, लेकिन उस जन्म का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा था। तब हालांकि कि वहाँ देवकी थी, वासुदेव थे, कुछ पहरेदार थे और एक नवजात बालक था। आज उसी जन्म की स्मृति में मथुरा की गलियों में लाखों भक्त एकत्र हैं। तब कारागार के दरवाजे बंद थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा के सामने वो दरवाजे भी खुल गए। आज मंदिरों के कपाट खुलते हैं तो भक्तों को लगता है मानो उनके हृदय के द्वार भी खुल रहे हों। और ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने को काफी है कि किस तरह से जब प्रभु के द्वार खुलते हैं। और बेसब्री, मैं आपको बता दूं कि ये जो बीच में बेसब्री लोगों की होती है वो इसलिए होती है कि श्री कृष्ण इतने अपने हैं कि श्री कृष्ण कई लोगों से अगर आप पूछे तो वो कहेंगे वो भगवान तो है ही नहीं, वो तो मेरे हैं, वो अपने हैं, वो या तो मेरे मित्र हैं, या तो मेरे प्रेमी हैं, या तो मेरे सखा हैं, या तो मेरे प्रेरणादायक एक स्रोत है। इस तरह से लोग उन्हें देखते हैं। इसीलिए जब उनके बीच यानी कि श्री कृष्ण के बीच और जब भक्तों के बीच ये पर्दा लग जाता है तो बेचैनी और ज्यादा इनकी बढ़ जाती है। उनको लगता है कि उनके अपने के बीच और श्री कृष्ण के बीच कोई पर्दा कैसे पड़ सकता है। तो भक्त और भगवान की जो ये दूरी है, ये जो थोड़े समय का जो विरह था जो हमने आपको दिखाया, वो विरह भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कृष्ण भक्त। और ये देखिए एक बार फिर से करतल ध्वनि और बढ़ती जा रही है और लगातार न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन से जुड़े जो लोग हैं वो भी लगातार जो सुबह से ही ड्यूटी पर लगे हुए हैं, घंटों एक जगह पर खड़े हैं और व्यवस्था बनाए रखने में लगे हुए हैं, वो भी दोनों हाथ उठा करके लगातार भगवान का आशीर्वाद यहाँ ले रहे हैं और लगातार इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। आज मंदिरों के कपाट जब खुले तो भक्तों को लगा मानो उनके हृदय के द्वार खुल गए। तब कृष्ण ने एक छोटे से कारागार को दिव्यता से भर दिया था। आज वही कृष्ण लाखों हृदय को भक्ति प्रेम और विश्वास से भर रहे हैं। तब जन्म के समय कुछ ही लोग उस चमत्कार के साक्षी थे, आज करोड़ों लोग अपने अपने घरों मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर उस क्षण को महसूस कर रहे हैं। किसी घर में पालना सजाया गया है, कहीं बाल गोपाल को दूध दही और माखन का भोग लगाया गया है और लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कहीं पर महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं और यहाँ पर अब जो है सिर्फ कृष्ण का नाम और राधे का नाम लिया जा रहा है। यहाँ बच्चे और राधा का रूप धारण कर कई झांकियों में लोग शामिल भी हुए हैं। कई भक्त पूरी रात भजन और कीर्तन कर रहे हैं और कहीं कोई अकेला व्यक्ति शांत मन से कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर अपने जीवन की जो भी बाधाएं हैं या परेशानियां हैं उनके चरणों में रख रहा है। तो यही तो कृष्ण है, वो सिर्फ मंदिरों में नहीं विराजते हैं, वो सिर्फ शास्त्रों में नहीं है, वो सिर्फ भजनों में नहीं है। कृष्ण उस माँ की प्रार्थना में है जो अपने बच्चे के लिए सुरक्षा मांगती है। कृष्ण उस पिता की चिंता में है जो अपने परिवार के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है। कृष्ण उस युवा के साहस में है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। कृष्ण उस व्यक्ति के धैर्य में भी है जो अन्याय सहने के बजाय सत्य के साथ खड़ा होने का निर्णय लेता है। और कृष्ण उस उम्मीद में भी है जो टूटे हुए मन को फिर से जीने की ताकत देती है। तो कृष्ण का जन्म हमें ये सिखाता है कि जीवन में अंधकार आ सकता है लेकिन अंधकार स्थायी नहीं होता है। मुश्किलें आ सकती हैं लेकिन रास्ते बंद नहीं होते। अन्याय बढ़ सकता है लेकिन धर्म समाप्त नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हैं और ये किसी के भी जीवन में हो सकता है, लेकिन जैसे हर दरवाजा बंद है, जैसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा महसूस हो जैसे हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन कृष्ण जन्म की जो कथा है वो कहती है कि आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। समय बदलता है, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो सुबह जरूर आती है। और जब कृष्ण का जन्म होता है तो सिर्फ एक बालक जन्म नहीं लेता, जन्म लेता है एक नया विश्वास, एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नई उम्मीद। आज जब भक्त कहते हैं नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो ये सिर्फ एक भजन नहीं है, ये उस क्षण की अनुभूति है जब निराशा के बीच आशा ने जन्म लिया था, जब अत्याचार के बीच धर्म ने जन्म लिया था, जब भय के बीच साहस ने जन्म लिया था, जब बंधनों के बीच मुक्ति ने जन्म लिया था और जब अंधकार के बीच एक प्रकाश ने जन्म लिया था, कृष्ण के रूप। जी हाँ, उसी कृष्ण का जन्मोत्सव आज हम मना रहे हैं। उसी कृष्ण का जन्मोत्सव न सिर्फ ब्रजभूमि बल्कि ये पूरी दुनिया, ये ब्रह्मांड बना रही है। दोनों हाथ ऊपर किए जितने भी श्रद्धालु हैं लगातार यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं, राधा रानी को, श्री कृष्ण को भज रहे हैं, अपने प्रिय को, और मंद मंद मुस्कुराते हुए बस ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं कि आज के दिन इस ब्रजमंडल में हम आ सके, इस धरा पर हम आ सके और आपके इस मंदिर में पहुंचकर आपकी आराधना कर सके। इससे ज्यादा और इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। और जब अंधकार के बीच एक प्रकाश ने जन्म लिया, यानी कि जब कृष्ण के रूप में खुद आपके सामने आपका साथी, आपका मित्र सब कोई हो, तो फिर आपको और क्या चाहिए। इसलिए आज की रात से उत्सव की रात नहीं, मंथन की भी रात है। हमें अपने भीतर देखना होगा।
1: इमोशनल हो गई हैं आप, भावुक हो गई हैं बोलते बोलते, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके लिए श्री कृष्ण क्या है?
0: ये जानना बेहद जरूरी है। क्रोध का कर्ज, लोभ का कर्ज, ईर्ष्या का कर्ज, भय का कर्ज, क्या हम अपने भीतर के इन अंधकारों को पहचान पा रहे हैं? क्योंकि कृष्ण का जन्म सिर्फ मथुरा के कारागार में नहीं होना चाहिए, कृष्ण का जन्म हमारे भीतर भी होना चाहिए। जब हमारे भीतर प्रेम जन्म ले, ये कृष्ण है। जब हमारे भीतर करुणा जन्म ले, ये कृष्ण है। जब हम किसी कमजोर का साथ दे, वो कृष्ण है। जब हम अन्याय के सामने सच बोलने का साहस करें, वो कृष्ण है। जब हम निराशा के बीच उम्मीद को बचाए रखें, वो कृष्ण है। और जब हम अपने कर्म को ईमानदारी से निभाते हुए परिणाम की चिंता छोड़ दें, तब भी हमारे भीतर कृष्ण का ही प्रकाश जागता है। तो आज मथुरा में कृष्ण का जन्म हो चुका है, शंखनाद हो चुके हैं, घंटे घड़ियाल बज चुके हैं, मंदिरों में आरती हो चुकी है, भक्तों ने अपने कान्हा के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन कृष्ण जन्म का उत्सव यहाँ समाप्त नहीं होता है। अब ये संदेश मथुरा से निकलकर हर घर तक जाना चाहिए, हर मन तक जाना चाहिए, हर उस व्यक्ति तक जाना चाहिए जो इस समय किसी कठिनाई से गुजर रहा हो, हर उस परिवार तक जाना चाहिए जो किसी चिंता में डूबा हो, हर उस युवा तक जाना चाहिए जो अपने भविष्य को लेकर परेशान हो, हर उस माँ तक जाना चाहिए जो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है, हर उस इंसान तक जाना चाहिए जो ये सोच रहा है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं होगा। कृष्ण का जन्म संदेश देता है, अभी सब समाप्त नहीं हुआ, अभी उम्मीद बाकी है, अभी रास्ता बाकी है, अभी प्रकाश बाकी है। और शायद इसी विश्वास के साथ आज मथुरा के घर कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण आए हैं अंधकार को मिटाने के लिए, न्याय को, कृष्ण आए हैं प्रेम, कर्म, धर्म और सत्य का मार्ग दिखाने के लिए। और कृष्ण आज भी आते हैं हर उस हृदय में जहाँ प्रेम बसा है, हर उस घर में जहाँ
1: बिल्कुल। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधा श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से, जहां पर आप देख सकते हैं कि जन्म हो चुका है, कितनी बड़ी संख्या में भक्त वहां पर मौजूद हैं, और सीधी तस्वीरें वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त अभिषेक वहां पर प्रभु का हो रहा है, बड़ी संख्या में भक्त लगातार वहां पहुंच रहे हैं। और आज जैसा अशोक गुप्ता हम चर्चा कर ही रहे थे कि यहां पर कपाट 1:30 बजे तक खुले रहेंगे, यही इन्फॉर्मेशन वहां से थी, और भक्तों का आना जाना लगा रहेगा। क्योंकि मुझे जब 2 साल पहले मैं यहाँ पर मौजूद थी तो बिल्कुल ऐसा ही था, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ऊपर गैलरी जहां पर श्वेता खड़ी है ना, वहां वो सिर्फ मीडिया के लिए अलॉट की जाती है। और वहां से जो आप कह रही थी ना, ये तस्वीरें बहुत दूर होती हैं, हमारा कैमरा लेंस तो कैप्चर कर रहा है ये तस्वीरें, लेकिन वहां से एक आम शख्स के लिए देखना और क्लैरिटी के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, तस्वीरें दूर होती हैं। लेकिन बावजूद इसके भक्त लगातार पहुंचते हैं। अभी देखिए जन्म हो चुका है, लेकिन यहां से जब ये लोग बाहर निकलेंगे, पूरा जो कृष्ण जन्मभूमि है, इतनी बड़ी संख्या में, वहां पर तिल रखने तक की जगह नहीं होती, इतनी संख्या में भक्त वहां पर होते हैं।
2: और आपने एक और चीज नोट की, लास्ट का जो एक घंटा था उसमें सडनली संख्या और बढ़ गई,
1: इंतजार करते हैं
2: लोग, सर आपको खाली नजर आ रहा है,
1: इंतजार करते हैं बाहर लोग। और वो सही बता रही थी श्वेता कि बाहर लोग इंतजार करते हैं और वो उस हिसाब से कतार में लगेंगे कि बाय द टाइम 12 बजे और हम बिल्कुल इसके ठीक सामने से होके गुजरे, क्योंकि यहाँ पे रुकने नहीं दिया जाता। सुरक्षा की वो जो बात कर रही थी, जो मंदिर प्रशासन के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर तैनात रहते हैं, और ऑफकोर्स वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग तो रहते ही, और इसीलिए सारी चीजें सुचारू तरीके से कराई जाती है।
0: रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा है। आज मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ और इसी के साथ शायद हमारे भीतर ही एक नए विश्वास का जन्म हुआ है, एक ऐसी उम्मीद का जन्म हुआ है जो हमें टूटने नहीं देगी, एक ऐसे साहस का जन्म हुआ है जो हमें अन्याय के सामने झुकने नहीं देगा, एक ऐसी भक्ति का जन्म हुआ है जो हमें अपने कर्म से जोड़े रखेगी। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब अपने भीतर के अहंकार को भी छोड़ें, ये संकल्प लें और अपने भीतर प्रेम जगाएं, अपने भीतर करुणा जगाएं और अपने भीतर सत्य को जगाएं। इसी के साथ आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से, और लगातार जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं।

0: ये चार तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। जिस क्षण का इंतजार, जिस पल का इंतजार आप सभी भक्तों को था और हमें भी आपके साथ था, वो क्षण आ गया है। आखिरकार नंद के लाला का प्रकट उत्सव हो गया है और नंद के लाला पधार गए हैं। देखिए, हर किसी की आंखों में आपको इस वक्त अश्रु नजर आएंगे, तमाम श्रद्धालु वहां पर भावुक आपको नजर आएंगे। हर कोई अपने आराध्य के एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आ रहा था। द्वारका इस्कॉन की तस्वीरें देख लीजिए, हर जगह अपने अपने आराध्य का इंतजार और हर जगह अपने अपने आशा को प्रकट करने का तरीका भी आपको अलग नजर आएगा। कहीं पर नाचते गाते झूमते हुए श्रद्धालु आपको नजर आएंगे, कहीं पर आरती उतारते हुए नजर आएंगे, तो कहीं पर कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए सिर्फ एक झलक पाने के लिए आतुर यहाँ पर श्रद्धालु आपको नजर आएंगे।
1: और कहीं दूर कोने में श्रद्धालु ऐसे भी होंगे जो कृष्ण को मन ही मन में, चाहे वो मेडिटेशन कह लीजिए या फिर मन ही मन में श्री कृष्ण को याद कर रहे होंगे, उनकी दी गई जो तमाम शिक्षाएं उनका पालन किस तरीके से उसके बारे में बात कर रहे होंगे।

0: इसके ऊपर उसके ऊपर। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मथुरा वृंदावन सहित देश भर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। शहर शहर कान्हा की भक्ति में लीन नजर आए श्रद्धालु। भगवान के अवतरण पर नंदलाल की जय जयकार। अमेरिका की न्यूजर्सी में दिखी कान्हा के जन्मोत्सव की धूम। भजन कीर्तन की धुनों पर थिरकते नजर आए भक्त। प्रेम और श्रद्धा के साथ नंद गोपाल का जयघोष। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र सहित देश भर में दही हांडी की रौनक। मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां तैयार। आज दिखेंगे उत्सव के रंग।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। श्री कृष्ण जो योग योगेश्वर कहलाते हैं, भाद्रपद में ना सिर्फ उनका जन्म हुआ बल्कि ये महीना उनकी लीलाओं का भी गवा रहा है। ऐसे में माधव के इस महाकल्याणकारी महीने में उनका ध्यान और पूजन करना आपके लिए परम फलदायी हो सकता है। आज हम आपको भगवान कृष्ण और उनके धारण किए गए आभूषणों की महिमा के बारे में बताएंगे। आपने वासुदेव श्री कृष्ण की लीलाओं और उनकी भक्ति की शक्ति के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप उनके दिव्य अलंकारों की महिमा जानते हैं, जो माधव का श्रृंगार भी हैं और उनके अस्त्र भी। तो चलिए जानते हैं कैसा है श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप।

भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरा पर धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। किसी न किसी स्वरूप में भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर आता हूँ। शास्त्रों में ईश्वर के जितने भी स्वरूपों का वर्णन मिलता है उसमें श्री कृष्ण ही लीलाधारी हैं।

0: तभी तो कुरुक्षेत्र में बिना शस्त्र उठाए ही पांडवों की विजय सुनिश्चित कर देते हैं। अद्भुत है गिरधारी का स्वरूप। जब देवराज इंद्र ने शक्ति और अहंकार दिखाया, तब मुरलीधर ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा की। द्वापर युग में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब श्री कृष्ण ने अधर्म पर धर्म की पट कथा लिखी, चाहे कालिया नाग का मर्दन करना हो। या फिर कंस के भेजे राक्षसों का संहार करना हो। अपने लीलाओं से नटवर ने धरावासियों को कर्मपथ दिखाया है। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको श्री कृष्ण के धारण किए हुए उनके प्रिय अलंकारों की महिमा बताएंगे, जिनमें छिपी है मानव के लिए सीख। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि द्वारकाधीश संकटों का समाधान करने वाले हैं, और माधव की मनमोहिनी सूरत और व्यक्तित्व में ही समस्त दुश्वारियों का उपाय छिपा है। आइए जान लेते हैं श्री कृष्ण क्यों कहे जाते हैं श्री हरि के सबसे दिव्य अवतार।
1: कृष्ण को हमारे यहाँ शास्त्रों में पूर्णावतार बताया गया। तो जो पूर्णावतार होता है ईश्वर के अंश के रूप में, तो उसकी उपासना के लिए हमें हमारे यहाँ जो बताया गया कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, और या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस पूरे महीने जप करके श्री कृष्ण की उपासना को हम सार्थक कर सकते हैं।
0: श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री हरि के सभी अवतारों में यही संपूर्ण अवतार माने जाते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न थे। श्री कृष्ण को अलौकिक देव कहते हैं। श्री कृष्ण ने हर समय अपने भगवान होने का परिचय दिया है। श्री कृष्ण के मुख्य रूप से 3 स्वरूप हैं, ब्रज के कृष्ण, राजा कृष्ण और पार्थ सारथी कृष्ण। हर रूप में श्री कृष्ण अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण कहते हैं। हर रूप में वो भक्तों की कष्ट हर लेते हैं और उन्हें मुक्ति मोक्ष का वरदान देते हैं। माना जाता है कि भाद्रपद का ये महीना कृष्ण भक्ति के लिए सबसे खास है। इस महीने में कान्हा के मंत्रों का सही उच्चारण करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाद्रपद माह से ही श्री कृष्ण का गहरा संबंध है, क्योंकि इसी माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हुआ था योग योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतार।
1: तो हमारे यहाँ कहा गया, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब मनुष्यों का आवश्यकता होती है ईश्वर की, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आता है। और कहा भी गया है, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
0: माना जाता है कि संसार श्री कृष्ण के अधीन है। धर्म ग्रंथ गीता में भगवान कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप से दुनिया को ज्ञान दिया। माना जाता है कि श्री कृष्ण इस जगत की वो शक्ति हैं जो संसार में व्याप्त 16 कलाओं के मालिक हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण के ध्यान और उपासना का फल अमोघ यानी कभी नष्ट न होने वाला होता है। आज हम आपको श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की महिमा बता रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि माधव के श्याम वर्ण स्वरूप पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: श्याम वर्ण का रहस्य है कि समुद्र को हम श्याम वर्ण कहते हैं और गगन को भी श्याम वर्ण कहते हैं, इसलिए मेघ श्यामम जो कहा गया है। मेघ रूपी श्याम है भगवान, देखने में तो बादल का सदृश है लेकिन उनके अंदर जल भरा हुआ है। वह कृपा की दृष्टि का जो जल भरा हुआ है, यह भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण स्वरूप है।
0: भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर धारी भी कहा जाता है, क्योंकि वो पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं। पीताम्बर अर्थात पीले रंग का वस्त्र। माना जाता है कि पीला रंग शुद्धता, ज्ञान और स्पर्शता का प्रतीक है। ये हमें अपने विचारों और कर्मों में सात्विकता बनाए रखने की शिक्षा देता है। चलिए आपको बताते हैं केशव के पीताम्बरी वस्त्रों की महिमा।
1: पीताम्बर इसलिए है कि पीताम्बर सत्यता का प्रतीक है, तो जो भगवान का यह स्वरूप है बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, यह जो बाल मुकुंद का जो यह स्वरूप है, कृष्ण का यह जो स्वरूप है, यह परमार्थ चिंतन के लिए बहुत ही लाभदायक और पीला वस्त्र पहनती है, हमारे अंदर यह भगवान की दिव्य छवि बन जाती है जो पीताम्बरधारी भगवान है।
0: संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसार में प्रेम और धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग किया है? श्री कृष्ण के बहुत से अस्त्र हैं जिनसे उन्होंने लीलाएं की हैं। उनके तीन अस्त्र विशेष प्रभावशाली हैं, सुदर्शन चक्र, बांसुरी और सम्मोहन। इन तीनों का सही समय पर सटीक प्रयोग करके उन्होंने पापियों को दंड दिया और धर्म की स्थापना की। ये तीनों ही अस्त्र हमारे जीवन में भी जाने अनजाने प्रयुक्त होते रहते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण के अलंकारों में मोर पंख सर्वोपरि है, क्योंकि वे इसे अपने मुकुट में धारण करते हैं। मोर पंख को विनम्रता, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि मोर आकर्षक होता है, लेकिन उसमें जरा भी अहंकार नहीं होता। यही भाव इंसानों को याद दिलाता है कि सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, मानव को सदैव सरल बना रहना चाहिए।
1: मयूर पंख धारण करने का मतलब है सांसारिक जिन वस्तुओं को मयूर त्याग देता है। मेरे समान कोई नहीं, एको हम बहुधा नास्ति, मैं एक हूँ दूसरा नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं भक्तों के लिए अपने उसी प्रकार अनुग्रह करने वाला हूँ जैसा मेरा नाम है।
0: तो देखा अपने कान्हा के आभूषण कितने चमत्कारी हैं। कहते हैं कान्हा के भक्तों को न सुख की चिंता सताती है, न दुख परेशान कर पाते हैं, क्योंकि जिस मन में कान्हा का वास होता है वहाँ किसी अन्य सुख की आवश्यकता ही नहीं होती। आगे हम आपको लीलाधारी कृष्ण के और भी आभूषणों से आपको अवगत करवाएंगे। तब तक कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्री हरि के सब अवतारों में केवल कृष्ण को ही संपूर्ण अवतार माना गया है। श्री राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए तो श्री कृष्ण ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया और माना जाता है कि वासुदेव कृष्ण के अस्त्रों का संबंध कहीं ना कहीं आपके जीवन के सत्य से भी जुड़ा है। गौर से देखिए।
1: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
2: जिनकी प्रेम लीलाओं में डूबा है संसार।
1: हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
2: श्री कृष्ण के दिव्य अस्त्र करेंगे चमत्कार।
1: ते सब की राज, सबके स्वामी अंतर्यामी, पूरन कीजे काज।
2: चमत्कारी है गिरधारी का सुदर्शन। मनोहारी है मुरलीधर की मुरली, श्री कृष्ण है श्री हरि के सबसे मनमोहक अवतार। जानकार बताते हैं कि कृष्ण का अर्थ सृष्टि को आकर्षित करने वाला भी होता है और नाम के अनुरूप ही उन्होंने सारे सृष्टि को आकर्षित किया। लेकिन जब जब टूटा स्वयं भगवान कृष्ण के धैर्य का बांध, तब तब उठा सुदर्शन चक्र। माना जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए, पापियों का अंत करने के लिए श्री कृष्ण ने उठाया सुदर्शन चक्र। तो क्या है भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की महिमा और क्यों माना जाता है ये सबसे शक्तिशाली? चक्र एक विशेष तरह का घातक हथियार है जो बहुत सारे देवी देवताओं के पास है। श्री हरि के चक्र का नाम कांता चक्र है और शिव जी के चक्र है भवरेन्दु। सबसे शक्तिशाली चक्र सुदर्शन चक्र है जिसे केवल श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण शिव जी ने किया था। श्री हरि के प्रतीक के रूप में चक्र की पूजा भी की जाती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर शंख और चक्र की आकृति लगाई जाए तो व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से सुरक्षित रहता है।
3: भगवान शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। ये भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। आपने देखा होगा कि 100 गाली देने के बाद शिशु का पालका भगवान ने चक्र से वध किया। जब गज ने पुकारा समुद्र में तो भगवान वहां भी पहुंच गए और उसकी रक्षा किया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र इसीलिए बनाया गया, वहां पर भगवान ने चक्र चलाया है। तो भगवान का मुरली मधुर तान के लिए है और धर्म की रक्षा और संस्थापन के लिए भगवान चक्र का धारण करते हैं।
2: जहाँ एक ओर धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने सुदर्शन रूपी अस्त्र उठाया, वहीं प्रेम की स्थापना के लिए बांसुरी थामी। माना जाता है कि श्री कृष्ण का सबसे दिव्य अस्त्र है बांसुरी। कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी में स्वयं मां सरस्वती का वास था और उनकी वंशी की धुन सबको मतवाला बना देती थी। तो देखिए कान्हा के इस दिव्य अलंकार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। श्री कृष्ण नटवर भी हैं और हर कला के महारथी भी हैं। संगीत के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया। ये बांस का बना हुआ एक वाद्य होता है जो वायु के सहारे मीठी ध्वनि पैदा करता है। बांसुरी की ध्वनि से श्री कृष्ण अपने चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे। बांसुरी के छिद्र ये बताते हैं कि कृष्ण की कृपा से शरीर के सारे चक्र ठीक हो सकते हैं और मुक्ति का संगीत बज सकता है। घर में बीम पर अगर बांसुरी लटका दी जाए तो बीम का बुरा असर समाप्त हो जाता है।
3: हमारे यहाँ कहा गया, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीताम्बरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात, कृष्णात परम किमपि तत्रमहम न जाने। जब भगवान के अधरामृत पर, होठों पर वह जब बांस की बांसुरी लगती है और भगवान श्री कृष्ण जब उसमें हवा देते हैं, तो संसारे संसार को, केवल गोपियों को ही नहीं, सारे संसार को आह्लादित और आनंदित करती है।
2: मान्यता तो यहाँ तक है कि कान्हा को बांसुरी महादेव ने भेंट स्वरूप दी थी। जब वे पहली बार कान्हा को देखने आए थे, बांसुरी से हमेशा मीठी और शांत धुन निकलती है। ये संदेश देती है कि हमें हमेशा ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरे के मन को शांति दे और कड़वाहट को दूर करे। माना जाता है कि मुरली के प्रयोग से आप जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं, लेकिन कान्हा के सुदर्शन चक्र और मुरली से भी कहीं ताकतवर है उनका आकर्षण यानी सम्मोहन शक्ति, जो हर किसी को मोहित कर देती है। सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें विशेष तरीके से व्यक्ति के मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन शक्ति थी और इसी सम्मोहन के बल पर उन्होंने बहुत सारे काम आसानी से कर डाले थे। जयद्रथ का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके अंदर सम्मोहन के गुण अपने आप आने लगते हैं, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
3: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना, यो आकर्षते यदि सह कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। राम के नाम में आराम है, लेकिन कृष्ण के नाम में आकर्षण है, सबको आकर्षित करना।
2: श्री कृष्ण ने जो भी धारण किया वह कारण नहीं था, उनके पीछे प्रेम, शांति, समर्पण, संहार और संकटों का निवारण छिपा है। तो अगर आप भी सच्चे मन से कान्हा की भक्ति करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि कान्हा के भक्तों में कान्हा का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो आप भी श्री कृष्ण के इन अलंकार रूपी अस्त्रों और उनसे जुड़ी सीख को अपने जीवन में शामिल कीजिए। आगे हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के कुछ और चमत्कारी अलंकार, साथ ही जानेंगे श्री कृष्ण के पूजन में किन सावधानियों का रखे ध्यान।
0: हमने आपको श्री कृष्ण के उन दिव्य आभूषणों की महिमा के बारे में बताया है जिनका मानव जीवन से गहरा संबंध है। चलिए अब हम आपको बताते हैं श्री कृष्ण की उपासना के नियम और सावधानियां क्या हैं, क्योंकि भादों का महीना नारायण की उपासना के लिए विशेष होता है।
2: परम फलदायी है श्री कृष्ण का ध्यान, श्री कृष्ण की उपासना से मिलेगा वरदान। भाद्रपद में कीजिए माधव का गुणगान, जीवन में आएगी समृद्धि, मिलेगा सम्मान। आज हम श्री कृष्ण के दिव्यास्त्रों और उनके आभूषणों की महिमा आपको बता रहे हैं। चलिए माधव के कुछ और प्रमुख अस्त्रों की महिमा आपको बताते हैं। कौमुद की गदा धारण करते हैं माधव। मान्यता है कि ये गदा न सिर्फ शारीरिक विकार मिटाती है बल्कि जीवन से अंधकार का भी नाश करती है। मान्यता है कि ये गदा श्री कृष्ण को वरुण देव ने दी थी। ये गदा शक्ति, बुद्धि, नीति, स्थायित्व और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। श्री कृष्ण का धनुष सारंग असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इस धनुष को विश्वकर्मा ने बनाया था। माना जाता है कि इस दिव्य धनुष को भगवान विष्णु, परशुराम, श्री राम और श्री कृष्ण ने धारण किया। ये सिखाता है कि बल का प्रयोग सिर्फ अन्याय और अधर्म को मिटाने के लिए किया जाना चाहिए। ये तो श्री कृष्ण के संहारक अस्त्र थे। चलिए आपको बताते हैं श्री कृष्ण के एक और अलंकार वैजयंती माला की महिमा। मान्यता है कि इस माला को राधा ने कान्हा को भेंट किया था जब माधव ने पहली बार राधा संग रास रचाया था।
3: वैजयंती को हमारे यहाँ जंगल वृक्ष की संज्ञा दी गई है। यह जंगल का वृक्ष उपेक्षित है, तो भगवान कहते हैं जो जो वस्तुएं उपेक्षित हैं वो मुझे दे दो। मैं सर्वग्राही जनार्दन, मैं तो जनार्दन हूँ, सर्वग्राही हूँ कि ये सांसारिक जिन चीजों का तुम त्याग करते हो ईश्वर उपने उसे अपना अलंकार, अपना श्रृंगार बना लेता है।
2: श्री कृष्ण के जीवन से ही जुड़ा है रास, जिसमें कोप और गोपियों संग श्री कृष्ण लीला दिखाते हैं, जिसे भक्ति और प्रेम रस की पराकाष्ठा माना जाता है। माना जाता है कि रास लीला में श्री कृष्ण को परमात्मा और गोपियों को जीवात्मा माना गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब जीव अपने अहंकार और संसारिक बंधनों को त्याग कर पूर्ण समर्पण करता है तब उसका मिलन ईश्वर से हो जाता है।
3: गोपियां कौन है? सभी जितनी गोपियां आई हैं मृत्यु लोक में उस समय भगवान के श्री कृष्ण के समय, वो सब देवता हैं। तो भगवान अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए रास करते हैं। रास का मतलब कोई विकार नहीं है, रास का मतलब सबको साथ लेकर के चलने का जो परिमाप है उसे हमारे यहाँ रास। रास में कृष्ण केंद्र हैं और गोपियां पूर्ण समर्पित उनकी परिधि हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं।
2: तो देखा आपने श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ अस्त्र और अलंकार कैसे आपके जीवन को गति और दिशा दे सकते हैं। मान्यता है कि नारायण की महाकृपा वाला ये महीना वैसे तो हर तरह से कल्याणकारी है, पर हर महीने की तरह इस महीने में भी साधकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो अब आपको बताते हैं भगवान कृष्ण की उपासना में किन बातों का ध्यान रखें। इनकी उपासना प्रातः काल या संध्या काल में करें। पूजा में चंदन, तुलसी दल और शंख का प्रयोग जरूर करें। पंचामृत या अन्य वस्तुएं जब भी अर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर डालें। मंत्रों का जप तुलसी या चंदन की माला से ही करें। पीले वस्त्र और पीले आसन का प्रयोग विशेष लाभकारी होगा। जब जब संसार में पाप ने अपनी चरम सीमा लांघी है, तब तब नारायण ने पाप का अंत करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले कृष्ण का ध्यान पूजन करके आप भी उनके दिव्य स्वरूप से बहुत कुछ सीख सकते हैं, धर्म का मर्म समझ सकते हैं, जीवन जीने की शैली को आत्मसात कर सकते हैं।
0: और इसी के साथ इस खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
0: गुजरात में गणेश उत्सव में रौनक बिखरी हुई है। यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह कई गणेश मंडल है जो अपने अपने गणपति की प्रतिमा स्थापित कर गणेश उत्सव मनाते आए हैं। तो आज गुजरात के दो ऐसे गणेश मंडलों का जिक्र आपके सामने करने वाले हैं जिन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बप्पा की बेहद खूबसूरत और भव्य प्रतिमाएं तैयार की हैं। इन दो इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को तो आपने दिखाएंगे ही आपको, साथ ही सूरत में गणेश उत्सव के लिए ही तैयार की जा रही कुछ और डिजाइनर गणेश मूर्तियों की मनमोहक तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रहे हैं।

0: आ रहे हैं गणपति बाप्पा, जिनके स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन गणेशोत्सव की रौनक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात में भी खूब बिखरी हुई है। सूरत में 17 फीट ऊंचे बप्पा की ये आभा बता रही है कि गणेशोत्सव यहाँ भव्य ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा।
1: ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीर है। यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही है।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा दरअसल टिश्यू से बनाई गई है, जिसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है। शहर के सिटी लाइट इलाके में इस अनोखी गणेश प्रतिमा को बनाने वाला एक ग्रुप है, जिसका नाम है सरकार गणेश उत्सव।
2: तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश महिकर जी करके है, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर के इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके हम।
0: बप्पा की प्रतिमा बनाने के लिए विशेष तौर पर मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम को सूरत बुलाया गया। कुशल कलाकारों ने करीब 2 महीने का वक्त लेते हुए लगातार मेहनत की और गणेश की मूर्ति को आकार दिया। टिश्यू पेपर जैसे हल्के और अलग तरह के माध्यम से इतनी बड़ी प्रतिमा तैयार करना हालांकि काफी चैलेंजिंग काम था, लेकिन मेहनत रंग लाई। बप्पा की 17 फीट ऊंची प्रतिमा ने भव्य स्वरूप लिया। हालांकि इसे रंगने के लिए पीओपी और रासायनिक रंगों के इस्तेमाल से बचने का प्रयास किया गया ताकि गणेशोत्सव के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। फिर जब विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों के साथ जयकारों के बीच उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बप्पा की स्वागत यात्रा में हिस्सा लेकर उनका आशीर्वाद दिया, जिनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
3: बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था। इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: फिलहाल तो गणेश उत्सव के दौरान सूरत के टिश्यू वाले गणेश जी की तरह ही वडोदरा के इको फ्रेंडली बापा की भी खूब चर्चा होती रही है, जिन्हें आकार देने वाला 20 से 25 युवाओं का श्री गणेश युवक मंडल है। युवाओं की ये टीम नाणा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करता रहा है। युवाओं की ये टीम नाड़ा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करती रही है।
4: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग इस अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का श्री गणेश युवक मंडल दरअसल इस साल अपने गणेशोत्सव का 11वां साल बना रहा है। पिछले 10 सालों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार इन युवाओं ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत लगाई और फिर 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर ये बेहद अनोखे इको फ्रेंडली गणेश जी तैयार किए, जिसको बनाने में 16,700 रुपए का खर्च आया। हालांकि सूरत में पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने भी गणेशोत्सव से पहले डिजाइनर गणेश मूर्तियां बनाकर लोगों का खूब ध्यान खींचा हुआ है। पारंपरिक रंगों में घुली और बारीक नक्काशी के लिए बप्पा की ये डिजाइनर प्रतिमाएं एक नजर में ही किसी का भी मन मोह लें। भाई बप्पा की ये खूबसूरत मूर्तियां हैं ही ऐसी कि एक पल में ही दिल को लुभा ले। लेकिन ये भी 100% सच है कि आज का दौर आस्था के साथ पर्यावरण को बचाकर रखना है, इसलिए निश्चित तौर पर इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा नदी, तालाब या समंदर में विसर्जन के वक्त पर्यावरण सुरक्षा की एक सराहनीय पहल है। जिससे भक्ति आस्था के साथ त्योहार का रंग भी बना रहे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
6: मथुरा वृंदावन सहित देश भर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। शहर शहर कान्हा की भक्ति में लीन नजर आए श्रद्धालु। भगवान के अवतरण पर नंदलाल की जय जयकार। अमेरिका की न्यूजर्सी में दिखी कान्हा के जन्मोत्सव की धूम। भजन कीर्तन की धुनों पर थिरकते नजर आए भक्त। प्रेम और श्रद्धा के साथ नंद गोपाल का जय घोष। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र सहित देश भर में दही हांडी की रौनक। मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां तैयार। आज दिखेंगे उत्सव के रंग।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें सिर्फ अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे ने सच मानकर शेयर कर देते, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसे हाल ही में नेपाल में आए बाढ़ से जोड़कर बताया जा रहा है। इस सैलाब में लोग, घर और गाड़ी सब कुछ बह गए, लेकिन वीडियो का सच क्या है आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि पार्सल देने पहुंचे एक डिलीवरी बॉय ने एक महिला को पीटा है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
6: वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक स्थान पर अचानक से बाढ़ आती है, वहां मौजूद लोग, घर और गाड़ी सब कुछ बह जाता है। इस वीडियो को नेपाल बाढ़ से जोड़ते हुए इसे शेयर किया जा रहा है, लेकिन जब वायरल वीडियो की का फैक्ट चेक किया गया, क्या सच और झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
7: नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। इसी से जोड़कर बाढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्थान पर अचानक बाढ़ आती है और वहां मौजूद लोग, घर और गाड़ी सभी बह जाते हैं। इस वीडियो को नेपाल की त्रासदी का बताते हुए वायरल किया जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि नेपाल से एक और भयावह तस्वीर सामने आई है। लोग रोज की तरह अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे, किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अचानक आई भीषण बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। प्रकृति के इस कहर की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस आपदा में फंसे सभी लोगों की सुरक्षित तलाश हो और प्रभावित परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत मिले। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
6: द दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर देखा जा सकता है कि एक स्थान पर अचानक बाढ़ आ जाती है और फिर वहां मौजूद लोग, घर और गाड़ी सभी बह जाते हैं। इस वीडियो को जिसने भी देखा है वो हैरान रह गया। सोशल मीडिया यूजर्स जान की सलामती की दुआ मांगने लगे। वायरल वीडियो सही है या फिर इसके जरिए झूठ फैलाया जा रहा है, जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि जो दिखाई देता है कई बार वो सच नहीं होता है। इसके लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को ध्यान से देखा। इस दौरान हमने वीडियो के कमेंट सेक्शन को भी खंगाला, जहां पर कई यूजर्स ने इस वीडियो को AI वीडियो बताया है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें ये भी लगा कि कुछ इसमें खामियां नजर आ रही हैं, कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल नेचुरल नहीं है। जब बाढ़ का पानी घरों और गाड़ियों के ऊपर से गुजरता है तो फिर कुछ भी सामान्य नजर नहीं आता है। बाढ़ के पानी के गुजर जाने के कुछ सेकंड्स तक तो सब कुछ सामान्य दिखता है और फिर कुछ सेकंड बाद घर और पेड़ अजीब तरीके से गिरने लगते हैं। वीडियो में कुछ पेड़ और ढांचे तो अचानक से उभर आते हैं, कई लोग अपने आप गायब हो जाते हैं, कुछ चीजें अपने आप में बन जा रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ इमारतों की बनावट भी अपने आप बदल जाती है और वीडियो में दिख रही कई बाइक्स का साइज भी सामान्य से बड़ा हो जाता है, जो कहीं ना कहीं वीडियो के असली होने पर संदेह पैदा करता है। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल यही था कि पानी के इस तेज बहाव में कुछ घर बह गए पर कुछ पेड़ और घर एकदम बाढ़ से पहले जैसी स्थिति में ही कैसे रह गए। दूसरा सवाल ये कि जिस ओर से पानी बाढ़ का पानी आ रहा है, लोग उस ओर कैसे भाग सकते हैं। और तीसरा एक और सवाल कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई है। इस रिपोर्ट में जानिए सच्चाई क्या है।
7: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम लगातार इन तस्वीरों और वीडियो की पड़ताल कर रही है। हमारी पड़ताल में ये सभी फेक साबित हुए। अब इस कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से चेक करना शुरू किया। सबसे पहले हमने हाइव मॉडरेशन की मदद से वीडियो को सर्च किया। हाइव के एनालिसिस में वायरल वीडियो के AI से बने होने के करीब 70% संकेत मिले। इस टूल के अनुसार वीडियो को सिडांस 2 की मदद से बनाया गया है। हमने दूसरे टूल ह्यूमन मीटर की मदद से वीडियो को सर्च किया। इसके एनालिसिस में वायरल वीडियो के AI से बने होने के करीब 72% संकेत मिले। इस टूल के अनुसार इमारतें अपने आप अपनी बनावट को बदल रही हैं और कई कारें पानी में बदल जा रही हैं। ये सभी वीडियो के AI से बने होने के संकेत हैं। इसके बाद हमने वीडियो के की फ्रेम निकाले और उन्हें सर्च करने के लिए साइट इंजन का इस्तेमाल किया। इस टूल ने की फ्रेम के AI से बने होने की करीब 98% संभावना जताई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा वीडियो फर्जी साबित हुआ। इस वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पार्सल देने पहुंचे एक डिलीवरी बॉय ने एक महिला को पीटा। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है हमारी रिपोर्ट।
7: डिलीवरी बॉय द्वारा महिला की पिटाई का बताकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति कुछ सामान देने के लिए एक महिला के पास पहुंचता है। इसी बीच महिला और व्यक्ति के बीच बहस होने लगती है। इस दौरान पहले दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और फिर मारपीट शुरू हो जाती है। इसी बीच कथित डिलीवरी बॉय महिला को बुरी तरह से नीचे गिराकर मारना शुरू कर देता है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, एक डिलीवरी बॉय पार्सल लाता है, कस्टमर पार्सल लेने बाहर आती है। जैसे ही डिलीवरी बॉय पार्सल महिला को देता है तो वो उसके हाथ से गिर जाता है, जिससे महिला कस्टमर डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट शुरू कर देती है। गुस्से में डिलीवरी बॉय भी महिला को मारना शुरू करता है। गलती महिला की थी, लेकिन डिलीवरी बॉय को भी इतना नहीं करना चाहिए था। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर कर रहे हैं।
6: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक फ्लैट में एक डिलीवरी बॉय सामान देने को पहुंचा, वो फोन करता है, तभी एक महिला दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। तभी सामान लेने के दौरान डिलीवरी बॉय के हाथ से सामान गिर जाता है। जिसके बाद महिला और डिलीवरी बॉय के बीच पहले कहासुनी होती है, उसके बाद महिला डिलीवरी बॉय को धक्का दे देती है, जिसके बाद डिलीवरी बॉय पलट वार करते हुए एक थप्पड़ जड़ देता है, इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो शेयर किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि डिलीवरी बॉय ने सामान देने के दौरान एक महिला के साथ हाथापाई की। दावा यही है या गलत है यह जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की सच्चाई जानने के लिए पूरे वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे वायरल दावे पर हमें शक हुआ। जिस तरह वीडियो के जरिए कहानी को पेश किया जा रहा है उस पर हमें संदेह हुआ। महिला और डिलीवरी बॉय के बीच में हाथापाई हो रही है तो जाहिर है कि शोर भी मचेगा और इस शोर को सुनकर आसपास रहने वाले लोग भी वहां पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक तयशुदा कहानी के तहत इसको शूट किया गया है। ना वहां पर लोग पहुंचते हैं ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है, यह हमें काफी अटपटा लगा। लिहाजा हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही था कि सोसाइटी के एक फ्लैट के बाहर डिलीवरी बॉय और महिला के बीच मारपीट होने के बावजूद लोग क्यों इकट्ठा नहीं हुए। दूसरा सवाल कि वीडियो किसी सोसाइटी का लग रहा है, जाहिर है कि वहां पर सुरक्षा गार्ड भी होंगे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि महिला पिटती रही और वहां सुरक्षा गार्ड पहुंचा ही नहीं। जिस एंगल से ये पूरा वीडियो शूट हुआ है उसे देखकर नहीं लग रहा है कि ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब ये कि सामने कैमरा लगाया गया। इसके लिए तीसरा सवाल यही कि महिला और लड़के ने जानबूझकर वीडियो बनाने के लिए ये ड्रामा तो नहीं किया है। सच्चाई इस रिपोर्ट में जानिए।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 21 अगस्त को एक फेसबुक यूजर के अकाउंट से पोस्ट किया गया ये वीडियो मिला। 2:33 के इस वीडियो में वायरल क्लिप मौजूद है। वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। पड़ताल के दौरान हमें यही वीडियो इसी यूजर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मिला, जहां इसे स्क्रिप्टेड बताया गया है। इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट को खंगालने पर हमें वहां ऐसे कई और वीडियो भी मिले जिनमें पुरुष और महिला आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इन सभी वीडियो के कैप्शन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो के जरिए झूठा दावा किया जा रहा है, ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: फैक्ट चेक में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर आपको ले चलेंगे। वायरल दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: फैक्ट चेक में अब वक्त हो चला है वायरल वीडियोस को देखने का, आपको लिए चलते हैं सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।
2: खुद तो पढ़ना नहीं है तो भला बड़ी बहन को क्यों पढ़ने दूं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये भाई बहन का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी बहन पढ़ रही है, अभी वहाँ छोटा भाई पहुँच जाता है और बहन को परेशान करने लगता है, तरह तरह के हरकतें करके बहन को पढ़ने से रोकने लगता है। चंद सेकंड का ये वीडियो भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते को बखूबी बयां कर रहा है। लोग इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार उतार रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नन्हे बच्चे का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बच्चा अपनी मैम के लिए गाना गाता नजर आ रहा है। बच्चे की प्यारी आवाज और मासूम अंदाज देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है।
3: जोर से सुनाओ।
2: गाना गाते हुए बच्चे के चेहरे पर खुशी और अपनापन साफ दिखाई देता है। उसकी मासूमियत ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू लिया है। यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग बच्चे की खूब तारीफ कर रहे हैं।
3: अरे गाओ ना यार।
4: ये पकड़ लिया।
5: पी छोटो पापा, पापा पी छोटो।
2: बेटियां पापा की क्यों लाज दुलारी होती हैं? वो इस वीडियो को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। पापा और बेटियों के बीच पकड़ने और छोड़ने का ये प्यारा पल लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
4: ये पकड़ लिया।
5: पी छोटो पापा, पापा पी छोटो।
2: यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
4: ये पोकेमा।
5: पापा पी छोटो। मैं मामा मारूंगा। नहीं मामा मारूंगा।
6: A night ago, I messaged my father that I'm remembering you. And the next morning, I opened my door. And there he was with a backpack.
2: कहा जाता है कि बेटियां पापा की परी होती हैं और इस बात को एक पिता ने सच साबित कर दिया है। सिर्फ एक छोटे से मैसेज पर बिना किसी बड़ी इमरजेंसी के पिता ने मीलों का सफर तय कर अपनी बिटिया के दरवाजे पर दस्तक दे दी।
6: My favorites. And before leaving, he just said, whatever you do, just be happy.
2: एक इंस्टाग्राम यूजर ने इस दिल को छू लेने वाले पल को शेयर किया है। वीडियो में उस चैट का स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया है जिसमें बेटी ने एक रात पहले अपने पिता को मैसेज किया था, आई मिस यू पापा।
6: एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई ओपन्ड माय डोर एंड देयर ही वाज विद अ बैग।
2: बेटी का ये मैसेज देखते ही पिता का दिल बेचैन हो गया। अगले दिन सुबह वह सचमुच बेटी के दरवाजे पर खड़े थे। पापा और बेटी के इस खूबसूरत मिलन के पीछे का समर्पण हर किसी को भावुक कर रहा है।
6: Took me out, fed my favorites, and before leaving, he just said.
2: इस छोटी सी मुलाकात के लिए पिता ने सिर्फ बेटी से मिलने के लिए 14 घंटे का सफर तय किया। करीब 8 घंटे साथ बिताए और फिर वापस 14 घंटे का सफर किया। थकने के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ आराम किया बल्कि बेटी के घर के कामों में हाथ बटाया और उसके साथ शहर घूमने भी निकले। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी भावनाएं नहीं रोक पा रहे हैं। कोई अपने पापा को याद कर रहा है तो कोई इस अनमोल रिश्ते की तुलना किसी और से ना करने की सलाह दे रहा है। इस शख्स ने साइकिल के पैडल से कपड़े धोने का गजब तरीका ढूंढ निकाला है। इस जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने जमीन पर प्लास्टिक का टब रखा है जिसमें पानी और कपड़े भरे हुए हैं। टब के ठीक ऊपर उसने एक साइकिल को उल्टा करके व्यवस्थित किया हुआ है। इसके बाद वह टब में वॉशिंग पाउडर डालता है और साइकिल के पैडल को हाथ से तेजी से घुमाना शुरू करता है। जैसे जैसे पैनल घूमता है, साइकिल की चैन और पहिए से जुड़ी ग्रिप टब के पानी में वॉशिंग मशीन के पल्सेटर की तरह काम करने लगती है। पानी में झाग बनने लगता है और कपड़े ठीक उसी तरह घूमने लगते हैं जैसे किसी वॉशिंग मशीन में घूमते हैं। इस जुगाड़ की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए ना तो बिजली की जरूरत है और ना ही किसी महंगे रखरखाव की। ये पूरी तरह से जीरो कास्ट और पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीका है। वीडियो को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए हैं। वीडियो में एक गांव की सड़क पर लड़का स्टंट करता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत में वह साइकिल को अपने हाथों से उठाता है और फिर उसे सीधे अपने ठुड्डी पर संतुलित कर लेता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि साइकिल पूरी तरह हवा में टिकी होती है और लड़का बिना हाथों का सहारा लिए बड़े आराम से हाथ फैलाकर पोज देता है। वीडियो में लड़के की एकाग्रता और संतुलन का स्तर देखने लायक है। साइकिल का वजन और उसका आकार ऐसा होता है जिसे मुंह या चेहरे के सहारे रोकना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इस लड़के ने इसे इतनी आसानी से किया जैसे ये उसके रोज का काम हो। वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं जबकि हजारों लोगों ने इसे पसंद किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। लोग लड़के की कला और मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

0: मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लाल टी शर्ट पहने युवक भीड़ भाड़ वाले मार्केट एरिया में खड़ा है। इसके पास एक स्प्लेंडर बाइक है, लेकिन वह उस पर सवार होकर चलने के बजाय बाइक को अपने कंधों पर उठाकर चलने लगता है। वह पूरी सहजता से भारी भरकम बाइक को उठाए घूमता है, मानो उसने कोई हल्का बैग उठा रखा हो। सड़क और बाजार में मौजूद लोग इस आधुनिक बाहुबली को देखकर हैरान रह जाते हैं। कई लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं, तो कुछ अपनी हंसी नहीं रोक पाते। दबंग 2 का मशहूर सॉन्ग दगाबाज रे हाय दगाबाज रे आप सब ने सुना ही होगा। अब उसका ये वर्जन सुनिए। वीडियो में एक परिवार जन्मदिन मनाते हुए दिख रहा है। इस दौरान एक शख्स दगाबाज रे सॉन्ग के धुन का इस्तेमाल करके हैप्पी बर्थडे टू यू का ये वर्जन गाने लगता है।
1: ओ

0: लोगों को ये खूब पसंद आ रहा है। इंसानों की तरह जानवर भी अपने मालिक के काम में हाथ बटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक शख्स अपने डॉग को काम पर लेकर पहुंचा, जहां कंस्ट्रक्शन के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। डॉग भी खुद को काम से दूर नहीं रख पाया और गड्ढा खोदने में मदद करने लगा। काम करते हुए डॉग काफी खुश नजर आया। उसकी मासूम हरकत देख कर लोग खूब मुस्कुरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर यूजर्स तंग हैं। वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता घर के हॉल में आराम से सो रहा होता है, तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर घंटी बजती है और बाहर से डिलीवरी की आवाज आती है। जैसे ही डॉगी डिलीवरी बॉय की आवाज सुनता है, वह तुरंत उठ खड़ा होता है और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ता है। मजेदार बात यह है कि घर में उस वक्त कोई इंसान नहीं था, लेकिन डॉगी ने बिना घबराए बहुत ही समझदारी से अपने पंजों से दरवाजा खोला और बाहर खड़े डिलीवरी बॉय से पार्सल रिसीव कर लिया। वीडियो में सबसे मजेदार मोड़ तब आता है जब डॉगी पार्सल तो ले लेता है, लेकिन उसे तुरंत उठाकर अंदर नहीं लाता। वह दरवाजे के पास खड़े होकर बड़े ध्यान से नजर रखता है और डिलीवरी बॉय के वहां से चले जाने का इंतजार करता है। जैसे ही डिलीवरी मैन वहां से रवाना होता है, स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड मुंह में पार्सल दबाता है और बड़े शान से उसे लिविंग रूम में सोफे के पास लाकर रख देता है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: गुजरात में गणेश उत्सव में रौनक बिखरी हुई है। यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह कई गणेश मंडल है जो अपने अपने गणपति की प्रतिमा स्थापित कर गणेश उत्सव मनाते आए हैं। तो आज गुजरात के दो ऐसे गणेश मंडलों का जिक्र आपके सामने करने वाले हैं, जिन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बप्पा की बेहद खूबसूरत और भव्य प्रतिमाएं तैयार की हैं। इन दो इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को तो आपने दिखाएंगे ही आपको, साथ ही सूरत में गणेश उत्सव के लिए ही तैयार की जा रही कुछ और डिजाइनर गणेश मूर्तियों की मनमोहक तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रहे हैं।

0: आ रहे हैं गणपति बाप्पा, जिनके स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन गणेशोत्सव की रौनक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात में भी खूब बिखरी हुई है। सूरत में 17 फीट ऊंचे बप्पा की ये आभा बता रही है कि गणेशोत्सव यहाँ भव्य ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा।
1: ये जो पंडाल आप देख रहे हैं सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही हैं।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा दरअसल टिश्यू से बनाई गई है, जिसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है। शहर के सिटी लाइट इलाके में इस अनोखी गणेश प्रतिमा को बनाने वाला एक ग्रुप है जिसका नाम है सरकार गणेश उत्सव।
2: तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश महिकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर के इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके हम।
0: बप्पा की प्रतिमा बनाने के लिए विशेष तौर पर मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम को सूरत बुलाया गया। कुशल कलाकारों ने करीब 2 महीने का वक्त लेते हुए लगातार मेहनत की और गणेश की मूर्ति को आकार दिया। टिश्यू पेपर जैसे हल्के और अलग तरह के माध्यम से इतनी बड़ी प्रतिमा तैयार करना हालांकि काफी चैलेंजिंग काम था, लेकिन मेहनत रंग लाई। बप्पा की 17 फीट ऊंची प्रतिमा ने भव्य स्वरूप लिया। हालांकि इसे रंगने के लिए पीओपी और रासायनिक रंगों के इस्तेमाल से बचने का प्रयास किया गया ताकि गणेशोत्सव के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। फिर जब विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों के साथ जयकारों के बीच उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बप्पा की स्वागत यात्रा में हिस्सा लेकर उनका आशीर्वाद दिया, जिनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
3: बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: फिलहाल तो गणेश उत्सव के दौरान सूरत के टिश्यू वाले गणेश जी की तरह ही वडोदरा के इको फ्रेंडली बापा की भी खूब चर्चा होती रही है, जिन्हें आकार देने वाला 20 से 25 युवाओं का श्री गणेश युवक मंडल है। युवाओं की ये टीम नाना छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करता रहा है। युवाओं की ये टीम नाड़ा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करती रही है।
4: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का श्री गणेश युवक मंडल दरअसल इस साल अपने गणेशोत्सव का 11वां साल मना रहा है। पिछले 10 सालों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार इन युवाओं ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत लगाई और फिर 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर ये बेहद अनोखे इको फ्रेंडली गणेश जी तैयार किए, जिसको बनाने

0: लोगों का खूब ध्यान खींचा हुआ है। पारंपरिक रंगों में घुली और बारीक नक्काशी के लिए बप्पा की ये डिजाइनर प्रतिमाएं एक नजर में ही किसी का भी मन मोह लें। भाई बप्पा की ये खूबसूरत मूर्तियां हैं ही ऐसी कि एक पल में ही दिल को लुभा ले। लेकिन ये भी 100% सच है कि आज का दौर आस्था के साथ पर्यावरण को बचाकर रखना है, इसलिए निश्चित तौर पर इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा नदी, तालाब या समंदर में विसर्जन के वक्त पर्यावरण सुरक्षा की एक सराहनीय पहल है, जिससे भक्ति आस्था के साथ त्योहार का रंग भी बना रहे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: मथुरा वृंदावन सहित देश भर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। शहर शहर कान्हा की भक्ति में लीन नजर आए श्रद्धालु। भगवान के अवतरण पर नंदलाल की जय जयकार। अमेरिका के न्यूजर्सी में देखी कान्हा के जन्मोत्सव की धूम। भजन कीर्तन की धुनों पर थिरकते नजर आए भक्त। प्रेम और श्रद्धा के साथ नंद गोपाल का जय घोष। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश भर में दही हांडी की रौनक। मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां तैयार। आज दिखेंगे उत्सव के रंग।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। श्री कृष्ण जो योग योगेश्वर कहलाते हैं, भाद्रपद में न सिर्फ उनका जन्म हुआ बल्कि ये महीना उनकी लीलाओं का भी गवा रहा है। ऐसे में माधव के इस महाकल्याणकारी महीने में उनका ध्यान और पूजन करना आपके लिए परम फलदायी हो सकता है। आज हम आपको भगवान कृष्ण और उनके धारण किए गए आभूषणों की महिमा के बारे में बताएंगे। आपने वासुदेव श्री कृष्ण की लीलाओं और उनकी भक्ति की शक्ति के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप उनके दिव्य अलंकारों की महिमा जानते हैं, जो माधव का श्रृंगार भी हैं और उनके अस्त्र भी। तो चलिए जानते हैं कैसा है श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप।

भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरा पर धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। किसी न किसी स्वरूप में भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर आता हूँ। शास्त्रों में ईश्वर के जितने भी स्वरूपों का वर्णन मिलता है उसमें श्री कृष्ण ही लीलाधारी हैं।

तभी तो कुरुक्षेत्र में बिना शस्त्र उठाए ही पांडवों की विजय सुनिश्चित कर देते हैं। अद्भुत है गिरधारी का स्वरूप। जब देवराज इंद्र ने शक्ति और अहंकार दिखाया, तब मुरलीधर ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा की। द्वापर युग में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब श्री कृष्ण ने अधर्म पर धर्म की पटकथा लिखी, चाहे कालिया नाग का मर्दन करना हो। या फिर कंस के भेजे राक्षसों का संहार करना हो। अपने लीलाओं से नटवर ने धरावासियों को कर्मपत्र

0: दिखाया है।
1: आज हम अपनी खास पेशकश में आपको श्री कृष्ण के धारण किए हुए उनके प्रिय अलंकारों की महिमा बताएंगे, जिनमें छिपी है मानव के लिए सीख। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि द्वारकाधीश संकटों का समाधान करने वाले हैं, और माधव की मनमोहिनी सूरत और व्यक्तित्व में ही समस्त दुश्वारियों का उपाय छिपा है। आइए जान लेते हैं श्री कृष्ण क्यों कहे जाते हैं श्री हरि के सबसे दिव्य अवतार।
2: कृष्ण को हमारे यहाँ शास्त्रों में पूर्णावतार बताया गया, तो जो पूर्णावतार होता है ईश्वर के अंश के रूप में, तो उसकी उपासना के लिए हमें हमारे यहाँ जो बताया गया कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, और या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस पूरे महीने जप करके श्री कृष्ण की उपासना को हम सार्थक कर सकते हैं।
1: श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री हरि के सभी अवतारों में यही संपूर्ण अवतार माने जाते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न थे। श्री कृष्ण को अलौकिक देव कहते हैं। श्री कृष्ण ने हर समय अपने भगवान होने का परिचय दिया है। श्री कृष्ण के मुख्य रूप से 3 स्वरूप हैं, ब्रज के कृष्ण, राजा कृष्ण और पार्थ सारथी कृष्ण। हर रूप में श्री कृष्ण अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण कहते हैं। हर रूप में वो भक्तों की कष्ट हर लेते हैं और उन्हें मुक्ति मोक्ष का वरदान देते हैं। माना जाता है कि भाद्रपद का ये महीना कृष्ण भक्ति के लिए सबसे खास है। इस महीने में कान्हा के मंत्रों का सही उच्चारण करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाद्रपद माह से ही श्री कृष्ण का गहरा संबंध है, क्योंकि इसी माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हुआ था योग योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतार।
2: तो हमारे यहाँ कहा गया, जब जब होई धर्म कहानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरी विविध शरीरा, हरहीं कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब मनुष्यों का आवश्यकता होती है ईश्वर की, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आता है। और कहा भी गया है, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
1: माना जाता है कि संसार श्री कृष्ण के अधीन है। धर्म ग्रंथ गीता में भगवान कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप से दुनिया को ज्ञान दिया। माना जाता है कि श्री कृष्ण इस जगत की वो शक्ति हैं जो संसार में व्याप्त 16 कलाओं के मालिक हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण के ध्यान और उपासना का फल अमोघ यानी कभी नष्ट न होने वाला होता है। आज हम आपको श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की महिमा बता रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि माधव के श्याम वर्ण स्वरूप पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
2: श्याम वर्ण का रहस्य है कि समुद्र को हम श्याम वर्ण कहते हैं और गगन को भी श्याम वर्ण कहते हैं, इसलिए मेघ श्यामम जो कहा गया है, मेघ रूपी श्याम है भगवान। देखने में तो बादल का सदृश है, लेकिन उनके अंदर जल भरा हुआ है, वह कृपा की दृष्टि का जो जल भरा हुआ है, यह भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण स्वरूप है।
1: भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर धारी भी कहा जाता है, क्योंकि वो पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं। पीताम्बर अर्थात पीले रंग का वस्त्र। माना जाता है कि पीला रंग शुद्धता, ज्ञान और स्पर्शता का प्रतीक है। यह हमें अपने विचारों और कर्मों में सात्विकता बनाए रखने की शिक्षा देता है। चलिए आपको बताते हैं केशव के पीताम्बरी वस्त्रों की महिमा।
2: पीताम्बर इसलिए है कि पीताम्बर सत्यता का प्रतीक है। तो जो भगवान का यह स्वरूप है, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, यह जो बाल मुकुंद का जो यह स्वरूप है, कृष्ण का यह जो स्वरूप है, यह परमार्थ चिंतन के लिए बहुत ही लाभदायक। और पीला वस्त्र पहनते हमारे अंदर यह भगवान की दिव्य छवि बन जाती है, जो पीताम्बर धारी भगवान है।
1: संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसार में प्रेम और धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग किया है। श्री कृष्ण के बहुत से अस्त्र हैं जिनसे उन्होंने लीलाएं की हैं। उनके तीन अस्त्र विशेष प्रभावशाली हैं, सुदर्शन चक्र, बांसुरी और सम्मोहन। इन तीनों का सही समय पर सटीक प्रयोग करके उन्होंने पापियों को दंड दिया और धर्म की स्थापना की। ये तीनों ही अस्त्र हमारे जीवन में भी जाने अनजाने प्रयुक्त होते रहते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण के अलंकारों में मोर पंख सर्वोपरि है, क्योंकि वे इसे अपने मुकुट में धारण करते हैं। मोर पंख को विनम्रता, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि मोर आकर्षक होता है, लेकिन उसमें जरा भी अहंकार नहीं होता। यही भाव इंसानों को याद दिलाता है कि सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, मानव को सदैव सरल बना रहना चाहिए।
2: मयूर पंख धारण करने का मतलब है सांसारिक जिन वस्तुओं को मयूर त्याग देता है। मेरे समान कोई नहीं, एको हम बहुधा नास्ति, मैं एक हूँ दूसरा नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं भक्तों के लिए अपने उसी प्रकार अनुग्रह करने वाला हूँ जैसा मेरा नाम है।
1: तो देखा अपने कान्हा के आभूषण कितने चमत्कारी हैं। कहते हैं कान्हा के भक्तों को न सुख की चिंता सताती है, न दुख परेशान कर पाते हैं, क्योंकि जिस मन में कान्हा का वास होता है वहाँ किसी अन्य सुख की आवश्यकता ही नहीं होती। आगे हम आपको लीलाधारी कृष्ण के और भी आभूषणों से आपको अवगत करवाएंगे। तब तक कहीं मत जाइए और देखते रहिए, प्रार्थना हो स्वीकार।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्री हरि के सब अवतारों में केवल कृष्ण को ही संपूर्ण अवतार माना गया है। श्री राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए तो श्री कृष्ण ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया और माना जाता है कि वासुदेव कृष्ण के अस्त्रों का संबंध कहीं ना कहीं आपके जीवन के सत्य से भी जुड़ा है। गौर से देखिए।
1: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
2: जिनकी प्रेम लीलाओं में डूबा है संसार।
1: हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
2: श्री कृष्ण के दिव्य अस्त्र करेंगे चमत्कार।
1: ते सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी, पूरन कीजे काज।
2: चमत्कारी है गिरधारी का सुदर्शन। मनोहारी है मुरलीधर की मुरली, श्री कृष्ण है श्री हरि के सबसे मनमोहक अवतार। जानकार बताते हैं कि कृष्ण का अर्थ सृष्टि को आकर्षित करने वाला भी होता है और नाम के अनुरूप ही उन्होंने सारे सृष्टि को आकर्षित किया। लेकिन जब जब टूटा स्वयं भगवान कृष्ण के धैर्य का बांध, तब तब उठा सुदर्शन चक्र। माना जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए, पापियों का अंत करने के लिए श्री कृष्ण ने उठाया सुदर्शन चक्र। तो क्या है भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की महिमा और क्यों माना जाता है ये सबसे शक्तिशाली? चक्र एक विशेष तरह का घातक हथियार है जो बहुत सारे देवी देवताओं के पास है। श्री हरि के चक्र का नाम कांता चक्र है और शिव जी के चक्र है भवरेन्दु। सबसे शक्तिशाली चक्र सुदर्शन चक्र है जिसे केवल श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण शिव जी ने किया था। श्री हरि के प्रतीक के रूप में चक्र की पूजा भी की जाती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर शंख और चक्र की आकृति लगाई जाए तो व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से सुरक्षित रहता है।
3: भगवान शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। ये भगवान विष्णु के अनुसार अवतार हैं। आपने देखा होगा कि 100 गाली देने के बाद शिशु का पालका भगवान ने चक्र से वध किया। जब गज ने पुकारा समुद्र में तो भगवान वहां भी पहुंच गए और उसकी रक्षा किया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र इसीलिए बनाया गया, वहां पर भगवान ने चक्र चलाया है। तो भगवान का मुरली मधुर तान के लिए है और धर्म की रक्षा और संस्थापन के लिए भगवान चक्र का धारण करते हैं।
2: जहाँ एक ओर धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने सुदर्शन रूपी अस्त्र उठाया, वहीं प्रेम की स्थापना के लिए बांसुरी थामी। माना जाता है कि श्री कृष्ण का सबसे दिव्य अस्त्र है बांसुरी। कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी में स्वयं मां सरस्वती का वास था और उनके वंशी की धुन सबको मतवाला बना देती थी। तो देखिए कान्हा के इस दिव्य अलंकार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। श्री कृष्ण नटवर भी हैं और हर कला के महारथी भी हैं। संगीत के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया। ये बांस का बना हुआ एक वाद्य होता है जो वायु के सहारे मीठी ध्वनि पैदा करता है। बांसुरी की ध्वनि से श्री कृष्ण अपने चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे। बांसुरी के छिद्र ये बताते हैं कि कृष्ण के कृपा से शरीर के सारे चक्र ठीक हो सकते हैं और मुक्ति का संगीत बज सकता है। घर में बीम पर अगर बांसुरी लटका दी जाए तो बीम का बुरा असर समाप्त हो जाता है।
3: हमारे यहाँ कहा गया, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीताम्बरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात, कृष्णात परम किमपि तत्रमहम न जाने। जब भगवान के अधरामृत पर, होठों पर वह जब बांस की बांसुरी लगती है और भगवान श्री कृष्ण जब उसमें हवा देते हैं तो संसारे संसार को, केवल गोपियों को ही नहीं, सारे संसार को आह्लादित और आनंदित करती है।
2: मान्यता तो यहाँ तक है कि कान्हा को बांसुरी महादेव ने भेंट स्वरूप दी थी। जब वे पहली बार कान्हा को देखने आए थे, बांसुरी से हमेशा मीठी और शांत धुन निकलती है। ये संदेश देती है कि हमें हमेशा ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरे के मन को शांति दे और कड़वाहट को दूर करे। माना जाता है कि मुरली के प्रयोग से आप जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं, लेकिन कान्हा के सुदर्शन चक्र और मुरली से भी कहीं ताकतवर है उनका आकर्षण यानी सम्मोहन शक्ति, जो हर किसी को मोहित कर देती है। सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें विशेष तरीके से व्यक्ति के मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन शक्ति थी और इसी सम्मोहन के बल पर उन्होंने बहुत सारे काम आसानी से कर डाले थे। जयद्रथ का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके अंदर सम्मोहन के गुण अपने आप आने लगते हैं, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
3: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना। यो आकर्षते यदि सह कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। राम के नाम में आराम है, लेकिन कृष्ण के नाम में आकर्षण है, सबको आकर्षित करना।
2: श्री कृष्ण ने जो भी धारण किया वह कारण नहीं था, उनके पीछे प्रेम, शांति, समर्पण, संहार और संकटों का निवारण छिपा है। तो अगर आप भी सच्चे मन से कान्हा की भक्ति करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि कान्हा के भक्तों में कान्हा का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो आप भी श्री कृष्ण के इन अलंकार रूपी अस्त्रों और उनसे जुड़ी सीख को अपने जीवन में शामिल कीजिए। आगे हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के कुछ और चमत्कारी अलंकार, साथ ही जानेंगे श्री कृष्ण के पूजन में किन सावधानियों का रखे ध्यान।
0: हमने आपको श्री कृष्ण के उन दिव्य आभूषणों की महिमा के बारे में बताया है जिनका मानव जीवन से गहरा संबंध है। चलिए अब हम आपको बताते हैं श्री कृष्ण की उपासना के नियम और सावधानियां क्या हैं, क्योंकि भादों का महीना नारायण की उपासना के लिए विशेष होता है।
2: परम फलदायी है श्री कृष्ण का ध्यान, श्री कृष्ण की उपासना से मिलेगा वरदान। भाद्रपद में कीजिए माधव का गुणगान, जीवन में आएगी समृद्धि, मिलेगा सम्मान। आज हम श्री कृष्ण के दिव्यास्त्रों और उनके आभूषणों की महिमा आपको बता रहे हैं। चलिए माधव के कुछ और प्रमुख अस्त्रों की महिमा आपको बताते हैं। कौमुद की गदा धारण करते हैं माधव। मान्यता है कि ये गदा न सिर्फ शारीरिक विकार मिटाती है बल्कि जीवन से अंधकार का भी नाश करती है। मान्यता है कि ये गदा श्री कृष्ण को वरुण देव ने दी थी। ये गदा शक्ति, बुद्धि, नीति, स्थायित्व और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। श्री कृष्ण का धनुष सारंग असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इस धनुष को विश्वकर्मा ने बनाया था। माना जाता है कि इस दिव्य धनुष को भगवान विष्णु, परशुराम, श्री राम और श्री कृष्ण ने धारण किया। ये सिखाता है कि बल का प्रयोग सिर्फ अन्याय और अधर्म को मिटाने के लिए किया जाना चाहिए। ये तो श्री कृष्ण के संहारक अस्त्र थे। चलिए आपको बताते हैं श्री कृष्ण के एक और अलंकार वैजयंती माला की महिमा। मान्यता है कि इस माला को राधा ने कान्हा को भेंट किया था जब माधव ने पहली बार राधा संग रास रचाया था।
3: वैजयंती को हमारे यहाँ जंगल वृक्ष की संज्ञा दी गई है। यह जंगल का वृक्ष उपेक्षित है, तो भगवान कहते हैं जो जो वस्तुएं उपेक्षित हैं वो मुझे दे दो। मैं सर्वग्राही जनार्दन, मैं तो जनार्दन हूँ, सर्वग्राही हूँ। यह सांसारिक जिन चीजों का तुम त्याग करते हो, ईश्वर उसे अपना अलंकार, अपना श्रृंगार बना लेता है।
2: श्री कृष्ण के जीवन से ही जुड़ा है रास, जिसमें कोप और गोपियों संग श्री कृष्ण लीला दिखाते हैं, जिसे भक्ति और प्रेम रस की पराकाष्ठा माना जाता है। माना जाता है कि रास लीला में श्री कृष्ण को परमात्मा और गोपियों को जीवात्मा माना गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब जीव अपने अहंकार और संसारिक बंधनों को त्याग कर पूर्ण समर्पण करता है, तब उसका मिलन ईश्वर से हो जाता है।
3: गोपियां कौन है? सभी जितनी गोपियां आई हैं मृत्यु लोक में उस समय भगवान के श्री कृष्ण के समय, वह सब देवता हैं। तो भगवान अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए और रास करते हैं। रास का मतलब कोई विकार नहीं है, रास का मतलब सबको साथ लेकर के चलने का जो परिमाप है उसे हमारे यहाँ रास। रास में कृष्ण केंद्र हैं और गोपियां पूर्ण समर्पित उनकी परिधि हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं।
2: तो देखा आपने श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ अस्त्र और अलंकार कैसे आपके जीवन को गति और दिशा दे सकते हैं। मान्यता है कि नारायण की महाकृपा वाला ये महीना वैसे तो हर तरह से कल्याणकारी है, पर हर महीने की तरह इस महीने में भी साधकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो अब आपको बताते हैं भगवान कृष्ण की उपासना में किन बातों का ध्यान रखें। इनकी उपासना प्रातः काल या संध्या काल में करें। पूजा में चंदन, तुलसी दल और शंख का प्रयोग जरूर करें। पंचामृत या अन्य वस्तुएं जब भी अर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर डालें। मंत्रों का जप तुलसी या चंदन की माला से ही करें। पीले वस्त्र और पीले आसन का प्रयोग विशेष लाभकारी होगा। जब जब संसार में पाप ने अपनी चरम सीमा लांघी है, तब तब नारायण ने पाप का अंत करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले कृष्ण का ध्यान पूजन करके आप भी उनके दिव्य स्वरूप से बहुत कुछ सीख सकते हैं, धर्म का मर्म समझ सकते हैं, जीवन जीने की शैली को आत्मसात कर सकते हैं।
0: और इसी के साथ इस खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: गुजरात में गणेश उत्सव में रौनक बिखरी हुई है। यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह कई गणेश मंडल है जो अपने अपने गणपति की प्रतिमा स्थापित कर गणेश उत्सव मनाते आए हैं। तो आज गुजरात के दो ऐसे गणेश मंडलों का जिक्र आपके सामने करने वाले हैं जिन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बप्पा की बेहद खूबसूरत और भव्य प्रतिमाएं तैयार की हैं। इन दो इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को तो आपने दिखाएंगे ही आपको, साथ ही सूरत में गणेश उत्सव के लिए ही तैयार की जा रही कुछ और डिजाइनर गणेश मूर्तियों की मनमोहक तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रहे हैं।

0: आ रहे हैं गणपति बाप्पा, जिनके स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन गणेशोत्सव की रौनक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात में भी खूब बिखरी हुई है। सूरत में 17 फीट ऊंचे बप्पा की ये आभा बता रही है कि गणेशोत्सव यहाँ भव्य ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा।
1: ये जो पंडाल आप देख रहे हैं सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही है।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा दरअसल टिश्यू से बनाई गई है, जिसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है। शहर के सिटी लाइट इलाके में इस अनोखी गणेश प्रतिमा को बनाने वाला एक ग्रुप है जिसका नाम है सरकार गणेश उत्सव।
2: तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश मैकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर के इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके हम।
0: बप्पा की प्रतिमा बनाने के लिए विशेष तौर पर मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम को सूरत बुलाया गया। कुशल कलाकारों ने करीब 2 महीने का वक्त लेते हुए लगातार मेहनत की और गणेश की मूर्ति को आकार दिया। टिश्यू पेपर जैसे हल्के और अलग तरह के माध्यम से इतनी बड़ी प्रतिमा तैयार करना हालांकि काफी चैलेंजिंग काम था, लेकिन मेहनत रंग लाई। बप्पा की 17 फीट ऊंची प्रतिमा ने भव्य स्वरूप लिया। हालांकि इसे रंगने के लिए पीओपी और रासायनिक रंगों के इस्तेमाल से बचने का प्रयास किया गया ताकि गणेशोत्सव के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। फिर जब विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों के साथ जयकारों के बीच उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बप्पा की स्वागत यात्रा में हिस्सा लेकर उनका आशीर्वाद लिया, जिनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
3: बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: फिलहाल तो गणेशोत्सव के दौरान सूरत के टिश्यू वाले गणेश जी की तरह ही वडोदरा के इको फ्रेंडली बापा की भी खूब चर्चा होती रही है, जिन्हें आकार देने वाला 20 से 25 युवाओं का श्री गणेश युवक मंडल है। युवाओं की ये टीम नाना छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करता रहा है। युवाओं की ये टीम नाड़ा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करती रही है।
4: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग इस अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का श्री गणेश युवक मंडल दरअसल इस साल अपने गणेशोत्सव का 11वां साल मना रहा है। पिछले 10 सालों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार इन युवाओं ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत लगाई और फिर 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर ये बेहद अनोखे इको फ्रेंडली गणेश जी तैयार किए, जिसको बनाने में 16,700 रूपए का खर्च आया। हालांकि सूरत में पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने भी गणेशोत्सव से पहले डिजाइनर गणेश मूर्तियां बनाकर लोगों का खूब ध्यान खींचा हुआ है। पारंपरिक रंगों में घुली और बारीक नक्काशी के लिए बप्पा की ये डिजाइनर प्रतिमाएं एक नजर में ही किसी का भी मन मोह ले। भाई बप्पा की ये खूबसूरत मूर्तियां हैं ही ऐसी कि एक पल में ही दिल को लुभा ले। लेकिन ये भी 100% सच है कि आज का दौर आस्था के साथ पर्यावरण को बचाकर रखना है, इसलिए निश्चित तौर पर इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा नदी तालाब या समंदर में विसर्जन के वक्त पर्यावरण सुरक्षा की एक सराहनीय पहल है। जिससे भक्ति आस्था के साथ त्योहार का रंग भी बना रहे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: मथुरा वृंदावन सहित देश भर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। शहर शहर कान्हा की भक्ति में लीन नजर आए श्रद्धालु। भगवान के अवतरण पर नंदलाल की जय जयकार। अमेरिका की न्यूजर्सी में दिखी कान्हा के जन्मोत्सव की धूम। भजन कीर्तन की धुनों पर थिरकते नजर आए भक्त। प्रेम और श्रद्धा के साथ नंद गोपाल का जय घोष। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र सहित देश भर में दही हांडी की रौनक। मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां तैयार। आज दिखेंगे उत्सव के रंग।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें सिर्फ अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसे हाल ही में नेपाल में आए बाढ़ से जोड़कर बताया जा रहा है। इस सैलाब में लोग, घर और गाड़ी सब कुछ बह गए, लेकिन वीडियो का सच क्या है आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि पार्सल देने पहुंचे एक डिलीवरी बॉय ने एक महिला को पीटा है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
6: वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक स्थान पर अचानक से बाढ़ आती है, वहां मौजूद लोग, घर और गाड़ी सब कुछ बह जाता है। इस वीडियो को नेपाल बाढ़ से जोड़ते हुए इसे शेयर किया जा रहा है, लेकिन जब वायरल वीडियो की फैक्ट चेक किया गया, क्या सच और झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
7: नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। इसी से जोड़कर बाढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्थान पर अचानक बाढ़ आती है और वहां मौजूद लोग, घर और गाड़ी सभी बह जाते हैं। इस वीडियो को नेपाल की त्रासदी का बताते हुए वायरल किया जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि नेपाल से एक और भयावह तस्वीर सामने आई है। लोग रोज की तरह अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे, किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अचानक आई भीषण बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। प्रकृति के इस कहर की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस आपदा में फंसे सभी लोगों की सुरक्षित तलाश हो और प्रभावित परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत मिले। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
6: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर देखा जा सकता है कि एक स्थान पर अचानक बाढ़ आ जाती है और फिर वहां मौजूद लोग, घर और गाड़ी सभी बह जाते हैं। इस वीडियो को जिसने भी देखा है वो हैरान रह गया। सोशल मीडिया यूजर्स जान की सलामती की दुआ मांगने लगे। वायरल वीडियो सही है या फिर इसके जरिए झूठ फैलाया जा रहा है, जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि जो दिखाई देता है कई बार वो सच नहीं होता है। इसके लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को ध्यान से देखा। इस दौरान हमने वीडियो के कमेंट सेक्शन को भी खंगाला, जहां पर कई यूजर्स ने इस वीडियो को AI वीडियो बताया है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें ये भी लगा कि कुछ इसमें खामियां नजर आ रही हैं, कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल नेचुरल नहीं है। जब बाढ़ का पानी घरों और गाड़ियों के ऊपर से गुजरता है तो फिर कुछ भी सामान्य नजर नहीं आता है। बाढ़ के पानी के गुजर जाने के कुछ सेकंड्स तक तो सब कुछ सामान्य दिखता है और फिर कुछ सेकंड बाद घर और पेड़ अजीब तरीके से गिरने लगते हैं। वीडियो में कुछ पेड़ और ढांचे तो अचानक से उभर आते हैं, कई लोग अपने आप गायब हो जाते हैं, कुछ चीजें अपने आप में बन जा रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ इमारतों की बनावट भी अपने आप बदल जाती है और वीडियो में दिख रही कई बाइक्स का साइज भी सामान्य से बड़ा हो जाता है, जो कहीं ना कहीं वीडियो के असली होने पर संदेह पैदा करता है। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल यही था कि पानी के इस तेज बहाव में कुछ घर बह गए पर कुछ पेड़ और घर एकदम बाढ़ से पहले जैसी स्थिति में ही कैसे रह गए। दूसरा सवाल ये कि जिस ओर से पानी बाढ़ का पानी आ रहा है, लोग उस ओर कैसे भाग सकते हैं। और तीसरा एक और सवाल कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई है। इस रिपोर्ट में जानिए सच्चाई क्या है।
7: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम लगातार इन तस्वीरों और वीडियो की पड़ताल कर रही है। हमारी पड़ताल में ये सभी फेक साबित हुए। अब इस कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से चेक करना शुरू किया। सबसे पहले हमने हाइव मॉडरेशन की मदद से वीडियो को सर्च किया। हाइव के एनालिसिस में वायरल वीडियो के AI से बने होने के करीब 70% संकेत मिले। इस टूल के अनुसार वीडियो को सिडांस 2 की मदद से बनाया गया है। हमने दूसरे टूल ह्यूमन मीटर की मदद से वीडियो को सर्च किया। इसके एनालिसिस में वायरल वीडियो के AI से बने होने के करीब 72% संकेत मिले। इस टूल के अनुसार इमारतें अपने आप अपनी बनावट को बदल रही हैं और कई कारें पानी में बदल जा रही हैं। ये सभी वीडियो के AI से बने होने के संकेत हैं। इसके बाद हमने वीडियो के की फ्रेम निकाले और उन्हें सर्च करने के लिए साइट इंजन का इस्तेमाल किया। इस टूल ने की फ्रेम के AI से बने होने की करीब 98% संभावना जताई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा वीडियो फर्जी साबित हुआ। इस वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पार्सल देने पहुंचे एक डिलीवरी बॉय ने एक महिला को पीटा। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है हमारी रिपोर्ट।
7: डिलीवरी बॉय द्वारा महिला की पिटाई का बताकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति कुछ सामान देने के लिए एक महिला के पास पहुंचता है। इसी बीच महिला और व्यक्ति के बीच बहस होने लगती है। इस दौरान पहले दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और फिर मारपीट शुरू हो जाती है। इसी बीच कथित डिलीवरी बॉय महिला को बुरी तरह से नीचे गिराकर मारना शुरू कर देता है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, एक डिलीवरी बॉय पार्सल लाता है, कस्टमर पार्सल लेने बाहर आती है। जैसे ही डिलीवरी बॉय पार्सल महिला को देता है तो वो उसके हाथ से गिर जाता है, जिससे महिला कस्टमर डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट शुरू कर देती है। गुस्से में डिलीवरी बॉय भी महिला को मारना शुरू करता है। गलती महिला की थी, लेकिन डिलीवरी बॉय को भी इतना नहीं करना चाहिए था। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर कर रहे हैं।
6: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक फ्लैट में एक डिलीवरी बॉय सामान देने को पहुंचा, वो फोन करता है, तभी एक महिला दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। तभी सामान लेने के दौरान डिलीवरी बॉय के हाथ से सामान गिर जाता है, जिसके बाद महिला और डिलीवरी बॉय के बीच पहले कहासुनी होती है। उसके बाद महिला डिलीवरी बॉय को धक्का दे देती है, जिसके बाद डिलीवरी बॉय पलट वार करते हुए एक थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो शेयर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि डिलीवरी बॉय ने सामान देने के दौरान एक महिला के साथ हाथापाई की। दावा यही है या गलत है ये जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की सच्चाई जानने के लिए पूरे वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे वायरल दावे पर हमें शक हुआ। जिस तरह वीडियो के जरिए कहानी को पेश किया जा रहा है उस पर हमें संदेह हुआ। महिला और डिलीवरी बॉय के बीच में हाथापाई हो रही है तो जाहिर है कि शोर भी मचेगा और इस शोर को सुनकर आसपास रहने वाले लोग भी वहां पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक तयशुदा कहानी के तहत इसको शूट किया गया है। ना वहां पर लोग पहुंचते हैं ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है, यह हमें काफी अटपटा लगा। लिहाजा हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही था कि सोसाइटी के एक फ्लैट के बाहर डिलीवरी बॉय और महिला के बीच मारपीट होने के बावजूद लोग क्यों इकट्ठा नहीं हुए। दूसरा सवाल कि वीडियो किसी सोसाइटी का लग रहा है, जाहिर है कि वहां पर सुरक्षा गार्ड भी होंगे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि महिला पिटती रही और वहां सुरक्षा गार्ड पहुंचा ही नहीं। जिस एंगल से ये पूरा वीडियो शूट हुआ है उसे देखकर नहीं लग रहा है कि ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब ये कि सामने कैमरा लगाया गया। इसके लिए तीसरा सवाल यही कि महिला और लड़के ने जानबूझकर वीडियो बनाने के लिए ये ड्रामा तो नहीं किया है। सच्चाई इस रिपोर्ट में जानिए।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 21 अगस्त को एक फेसबुक यूजर के अकाउंट से पोस्ट किया गया ये वीडियो मिला। 2:33 के इस वीडियो में वायरल क्लिप मौजूद है। वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। पड़ताल के दौरान हमें यही वीडियो इसी यूजर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मिला, जहां इसे स्क्रिप्टेड बताया गया है। इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट को खंगालने पर हमें वहां ऐसे कई और वीडियो भी मिले जिनमें पुरुष और महिला आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इन सभी वीडियो के कैप्शन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो के जरिए झूठा दावा किया जा रहा है, ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: फैक्ट चेक में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर आपको ले चलेंगे। वायरल दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और फैक्ट चेक में अब वक्त हो चला है वायरल वीडियोस को देखने का। आपको लिए चलते हैं सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।
2: खुद तो पढ़ना नहीं है तो भला बड़ी बहन को क्यों पढ़ने दूं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये भाई बहन का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी बहन पढ़ रही है, अभी वह छोटा भाई पहुंच जाता है और बहन को परेशान करने लगता है, तरह तरह के हरकतें करके बहन को पढ़ने से रोकने लगता है। चंद सेकंड का ये वीडियो भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते को बखूबी बयां कर रहा है। लोग इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नन्हे बच्चे का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बच्चा अपनी मैम के लिए गाना गाता नजर आ रहा है। बच्चे की प्यारी आवाज और मासूम अंदाज देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है।
3: जोर से सुनाओ।
2: गाना गाते हुए बच्चे के चेहरे पर खुशी और अपनापन साफ दिखाई देता है। उसकी मासूमियत ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू लिया है। यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग बच्चे की खूब तारीफ कर रहे हैं।
3: अरे गाओ ना यार।
4: ये पकड़ लिया।
5: पी छोटो पापा, पापा पी छोटो।
2: बेटियां पापा की क्यों लाज दुलारी होती हैं? वो इस वीडियो को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। पापा और बेटियों के बीच पकड़ने और छोड़ने का ये प्यारा पल लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
4: ये पकड़ लिया।
5: पी छोटो पापा, पापा पी छोटो।
2: यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
4: ये फकेमा।
5: पापा पी छोटो। मैं मामा मारूंगा। मैं मामा मारूंगा।
6: A night ago, I messaged my father that I'm remembering you. And the next morning, I opened my door. And there he was with a backpack.
2: कहा जाता है कि बेटियां पापा की परी होती हैं और इस बात को एक पिता ने सच साबित कर दिया है। सिर्फ एक छोटे से मैसेज पर बिना किसी बड़ी इमरजेंसी के पिता ने मीलों का सफर तय कर अपनी बिटिया के दरवाजे पर दस्तक दे दी।
6: My favorites and before leaving he just said whatever you do just be happy।
2: एक इंस्टाग्राम यूजर ने इस दिल को छू लेने वाले पल को शेयर किया है। वीडियो में उस चैट का स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया है जिसमें बेटी ने एक रात पहले अपने पिता को मैसेज किया था, आई मिस यू पापा।
6: रिमेम्बरिंग यू एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई ओपेंड माय डोर एंड देयर ही वाज विद अ बैग।
2: बेटी का ये मैसेज देखते ही पिता का दिल बेचैन हो गया। अगले दिन सुबह वह सचमुच बेटी के दरवाजे पर खड़े थे। पापा और बेटी के इस खूबसूरत मिलन के पीछे का समर्पण हर किसी को भावुक कर रहा है।
6: Took me out, fed my favorites, and before leaving, he just said.
2: इस छोटी सी मुलाकात के लिए पिता ने सिर्फ बेटी से मिलने के लिए 14 घंटे का सफर तय किया। करीब 8 घंटे साथ बिताए और फिर वापस 14 घंटे का सफर किया। थकने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ आराम किया बल्कि बेटी के घर के कामों में हाथ बटाया और उसके साथ शहर घूमने भी निकले। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी भावनाएं नहीं रोक पा रहे हैं। कोई अपने पापा को याद कर रहा है तो कोई इस अनमोल रिश्ते की तुलना किसी और से ना करने की सलाह दे रहा है। इस शख्स ने साइकिल के पैडल से कपड़े धोने का गजब तरीका ढूंढ निकाला है। इस जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने जमीन पर प्लास्टिक का टब रखा है जिसमें पानी और कपड़े भरे हुए हैं। टब के ठीक ऊपर उसने एक साइकिल को उल्टा करके व्यवस्थित किया हुआ है। इसके बाद वह टब में वॉशिंग पाउडर डालता है और साइकिल के पैडल को हाथ से तेजी से घुमाना शुरू करता है। जैसे जैसे पैडल घूमता है, साइकिल की चैन और पहिए से जुड़ी ग्रिप टब के पानी में वॉशिंग मशीन के पल्सेटर की तरह काम करने लगती है। पानी में झाग बनने लगता है और कपड़े ठीक उसी तरह घूमने लगते हैं जैसे किसी वॉशिंग मशीन में घूमते हैं। इस जुगाड़ की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए ना तो बिजली की जरूरत है और ना ही किसी महंगे रखरखाव की। ये पूरी तरह से जीरो कास्ट और पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीका है। वीडियो को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए हैं। वीडियो में एक गांव की सड़क पर लड़का स्टंट करता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत में वह साइकिल को अपने हाथों से उठाता है और फिर उसे सीधे अपने ठुड्डी पर संतुलित कर लेता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि साइकिल पूरी तरह हवा में टिकी होती है और लड़का बिना हाथों का सहारा लिए बड़े आराम से हाथ फैलाकर पोज देता है। वीडियो में लड़के की एकाग्रता और संतुलन का स्तर देखने लायक है। साइकिल का वजन और उसका आकार ऐसा होता है जिसे मुंह या चेहरे के सहारे रोकना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इस लड़के ने इसे इतनी आसानी से किया जैसे ये उसके रोज का काम हो। वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं जबकि हजारों लोगों ने इसे पसंद किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। लोग लड़के की कला और मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लाल टी शर्ट पहने युवक भीड़ भाड़ वाले मार्केट एरिया में खड़ा है। इसके पास एक स्प्लेंडर बाइक है, लेकिन वह उस पर सवार होकर चलने के बजाय बाइक को अपने कंधों पर उठाकर चलने लगता है। वह पूरी सहजता से भारी भरकम बाइक को उठाए घूमता है, मानो उसने कोई हल्का बैग उठा रखा हो। सड़क और बाजार में मौजूद लोग इस आधुनिक बाहुबली को देखकर हैरान रह जाते हैं। कई लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं, तो कुछ अपनी हंसी नहीं रोक पाते। दबंग 2 का मशहूर सॉन्ग दगाबाज रे हाय दगाबाज रे आप सब ने सुना ही होगा। अब उसका ये वर्जन सुनिए। वीडियो में एक परिवार जन्मदिन मनाते हुए दिख रहा है। इस दौरान एक शख्स दगाबाज रे सॉन्ग के धुन का इस्तेमाल करके हैप्पी बर्थडे टू यू का ये वर्जन गाने लगता है।
1: Oh,

0: लोगों को ये खूब पसंद आ रहा है। इंसानों की तरह जानवर भी अपने मालिक के काम में हाथ बटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक शख्स अपने डॉग को काम पर लेकर पहुंचा, जहां कंस्ट्रक्शन के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। डॉग भी खुद को काम से दूर नहीं रख पाया और गड्ढा खोदने में मदद करने लगा। काम करते हुए डॉग काफी खुश नजर आया। उसकी मासूम हरकत देख कर लोग खूब मुस्कुरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर यूजर्स तंग हैं। वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता घर के हॉल में आराम से सो रहा होता है, तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर घंटी बजती है और बाहर से डिलीवरी की आवाज आती है। जैसे ही डॉगी डिलीवरी बॉय की आवाज सुनता है, वह तुरंत उठ खड़ा होता है और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ता है। मजेदार बात यह है कि घर में उस वक्त कोई इंसान नहीं था, लेकिन डॉगी ने बिना घबराए बहुत ही समझदारी से अपने पंजों से दरवाजा खोला और बाहर खड़े डिलीवरी बॉय से पार्सल रिसीव कर लिया। वीडियो में सबसे मजेदार मोड़ तब आता है जब डॉगी पार्सल तो ले लेता है, लेकिन उसे तुरंत उठाकर अंदर नहीं लाता। वह दरवाजे के पास खड़े होकर बड़े ध्यान से नजर रखता है और डिलीवरी बॉय के वहां से चले जाने का इंतजार करता है। जैसे ही डिलीवरी मैन वहां से रवाना होता है, स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड मुंह में पार्सल दबाता है और बड़े शान से उसे लिविंग रूम में सोफे के पास लाकर रख देता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कब
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुजरात में गणेश उत्सव में रौनक बिखरी हुई है। यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह कई गणेश मंडल है जो अपने अपने गणपति की प्रतिमा स्थापित कर गणेश उत्सव मनाते आए हैं। तो आज गुजरात के दो ऐसे गणेश मंडलों का जिक्र आपके सामने करने वाले हैं जिन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बप्पा की बेहद खूबसूरत और भव्य प्रतिमाएं तैयार की हैं। इन दो इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को तो आपने दिखाएंगे ही आपको, साथ ही सूरत में गणेश उत्सव के लिए ही तैयार की जा रही कुछ और डिजाइनर गणेश मूर्तियों की मनमोहक तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रहे हैं।

0: आ रहे हैं गणपति बाप्पा, जिनके स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन गणेशोत्सव की रौनक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात में भी खूब बिखरी हुई है। सूरत में 17 फीट ऊंचे बप्पा की ये आभा बता रही है कि गणेशोत्सव यहाँ भव्य ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा।
1: ये जो पंडाल आप देख रहे हैं सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही है।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा दरअसल टिश्यू से बनाई गई है, जिसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है। शहर के सिटी लाइट इलाके में इस अनोखी गणेश प्रतिमा को बनाने वाला एक ग्रुप है जिसका नाम है सरकार गणेश उत्सव।
2: तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश मैकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर के इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके हम।
0: बप्पा की प्रतिमा बनाने के लिए विशेष तौर पर मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम को सूरत बुलाया गया। कुशल कलाकारों ने करीब 2 महीने का वक्त लेते हुए लगातार मेहनत की और गणेश की मूर्ति को आकार दिया। टिश्यू पेपर जैसे हल्के और अलग तरह के माध्यम से इतनी बड़ी प्रतिमा तैयार करना हालांकि काफी चैलेंजिंग काम था, लेकिन मेहनत रंग लाई। बप्पा की 17 फीट ऊंची प्रतिमा ने भव्य स्वरूप लिया। हालांकि इसे रंगने के लिए पीओपी और रासायनिक रंगों के इस्तेमाल से बचने का प्रयास किया गया ताकि गणेशोत्सव के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। फिर जब विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों के साथ जयकारों के बीच उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बप्पा की स्वागत यात्रा में हिस्सा लेकर उनका आशीर्वाद दिया, जिनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
3: बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: फिलहाल तो गणेश उत्सव के दौरान सूरत के टिश्यू वाले गणेश जी की तरह ही वडोदरा के इको फ्रेंडली बापा की भी खूब चर्चा होती रही है, जिन्हें आकार देने वाला 20 से 25 युवाओं का श्री गणेश युवक मंडल है। युवाओं की ये टीम नाणा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करता रहा है। युवाओं की ये टीम नाड़ा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करती रही है।
4: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का श्री गणेश युवक मंडल दरअसल इस साल अपने गणेशोत्सव का 11वां साल बना रहा है। पिछले 10 सालों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार इन युवाओं ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत लगाई और फिर 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर ये बेहद अनोखे इको फ्रेंडली गणेश जी तैयार किए, जिसको बनाने में 16,700 रूपए का खर्च आया। हालांकि सूरत में पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने भी गणेशोत्सव से पहले डिजाइनर गणेश मूर्तियां बनाकर लोगों का खूब ध्यान खींचा हुआ है। पारंपरिक रंगों में घुली और बारीक नक्काशी के लिए बप्पा की ये डिजाइनर प्रतिमाएं एक नजर में ही किसी का भी मन मोह लें। लेकिन ये इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा नदी, तालाब या समंदर में विसर्जन के वक्त पर्यावरण सुरक्षा की एक सराहनीय पहल है, जिससे भक्ति आस्था के साथ त्योहार का रंग भी बना रहे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है,

0: De car. अमेरिका की न्यूजर्सी में दिखी कान्हा के जन्मोत्सव की धूम, भजन कीर्तन की धुनों पर थिरकते नजर आए भक्त, प्रेम और श्रद्धा के साथ नंद गोपाल का जयघोष। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र सहित देश भर में दही हांडी की रौनक, मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां तैयार, आज दिखेंगे उत्सव के रंग।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। श्री कृष्ण जो योग योगेश्वर कहलाते हैं, भाद्रपद में ना सिर्फ उनका जन्म हुआ बल्कि ये महीना उनकी लीलाओं का भी गवाह रहा है। ऐसे में माधव के इस महाकल्याणकारी महीने में उनका ध्यान और पूजन करना आपके लिए परम फलदायी हो सकता है। आज हम आपको भगवान कृष्ण और उनके धारण किए गए आभूषणों की महिमा के बारे में बताएंगे। आपने वासुदेव श्री कृष्ण की लीलाओं और उनकी भक्ति की शक्ति के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप उनके दिव्य अलंकारों की महिमा जानते हैं, जो माधव का श्रृंगार भी है और उनके अस्त्र भी। तो चलिए जानते हैं कैसा है श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप।

भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरा पर धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। किसी न किसी स्वरूप में भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर आता हूँ। शास्त्रों में ईश्वर के जितने भी स्वरूपों का वर्णन मिलता है उसमें श्री कृष्ण ही लीलाधारी हैं।

0: तभी तो कुरुक्षेत्र में बिना शस्त्र उठाए ही पांडवों की विजय सुनिश्चित कर देते हैं। अद्भुत है गिरधारी का स्वरूप। जब देवराज इंद्र ने शक्ति और अहंकार दिखाया, तब मुरलीधर ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा की। द्वापर युग में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब श्री कृष्ण ने अधर्म पर धर्म की पटक कथा लिखी, चाहे कालिया नाग का मर्दन करना हो। या फिर कंस के भेजे राक्षसों का संहार करना हो। अपने लीलाओं से नटवर ने धरावासियों को कर्मपथ दिखाया है। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको श्री कृष्ण के धारण किए हुए उनके प्रिय अलंकारों की महिमा बताएंगे, जिनमें छिपी है मानव के लिए सीख। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि द्वारकाधीश संकटों का समाधान करने वाले हैं, और माधव की मनमोहिनी सूरत और व्यक्तित्व में ही समस्त दुश्वारियों का उपाय छिपा है। आइए जान लेते हैं श्री कृष्ण क्यों कहे जाते हैं श्री हरि के सबसे दिव्य अवतार।
1: कृष्ण को हमारे यहाँ शास्त्रों में पूर्णावतार बताया गया। तो जो पूर्णावतार होता है ईश्वर के अंश के रूप में, तो उसकी उपासना के लिए हमें हमारे यहाँ जो बताया गया कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, और या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस पूरे महीने जप करके श्री कृष्ण की उपासना को हम सार्थक कर सकते।

0: सकते हैं।
1: श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री हरि के सभी अवतारों में यही संपूर्ण अवतार माने जाते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न थे। श्री कृष्ण को अलौकिक देव कहते हैं। श्री कृष्ण ने हर समय अपने भगवान होने का परिचय दिया है। श्री कृष्ण के मुख्य रूप से 3 स्वरूप हैं, ब्रज के कृष्ण, राजा कृष्ण और पार्थ सारथी कृष्ण। हर रूप में श्री कृष्ण अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण कहते हैं। हर रूप में वो भक्तों की कष्ट हर लेते हैं और उन्हें मुक्ति मोक्ष का वरदान देते हैं। माना जाता है कि भाद्रपद का ये महीना कृष्ण भक्ति के लिए सबसे खास है। इस महीने में कान्हा के मंत्रों का सही उच्चारण करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाद्रपद माह से ही श्री कृष्ण का गहरा संबंध है, क्योंकि इसी माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हुआ था योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतार।
2: तो हमारे यहाँ कहा गया, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब मनुष्यों का आवश्यकता होती है ईश्वर की, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आता है। और कहा भी गया है, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
1: माना जाता है कि यह संसार श्री कृष्ण के अधीन है। धर्म ग्रंथ गीता में भगवान कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप से दुनिया को ज्ञान दिया। माना जाता है कि श्री कृष्ण इस जगत की वो शक्ति हैं जो संसार में व्याप्त 16 कलाओं के मालिक हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण के ध्यान और उपासना का फल अमोघ यानी कभी नष्ट न होने वाला होता है। आज हम आपको श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की महिमा बता रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि माधव के श्याम वर्ण स्वरूप पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
2: श्याम वर्ण का रहस्य है कि समुद्र को हम श्याम वर्ण कहते हैं और गगन को भी श्याम वर्ण कहते हैं, इसलिए मेघ श्यामम जो कहा गया, मेघ रूपी श्याम है भगवान। देखने में तो बादल का सदृश है लेकिन उनके अंदर जल भरा हुआ है, वह कृपा की दृष्टि का जो जल भरा हुआ है, यह भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण स्वरूप है।
1: भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर धारी भी कहा जाता है, क्योंकि वो पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं। पीताम्बर अर्थात पीले रंग का वस्त्र। माना जाता है कि पीला रंग शुद्धता, ज्ञान और स्पर्शता का प्रतीक है। ये हमें अपने विचारों और कर्मों में सात्विकता बनाए रखने की शिक्षा देता है। चलिए आपको बताते हैं केशव के पीताम्बरी वस्त्रों की महिमा।
2: पीताम्बर इसलिए है कि पीताम्बर सत्यता का प्रतीक है। तो जो भगवान का यह स्वरूप है, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, यह जो बाल मुकुंद का जो यह स्वरूप है, कृष्ण का यह जो स्वरूप है, यह परमार्थ चिंतन के लिए बहुत ही लाभदायक। और पीला वस्त्र पहनते हमारे अंदर यह भगवान की दिव्य छवि बन जाती है, जो पीताम्बरधारी भगवान है।
1: संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसार में प्रेम और धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग किया है। श्री कृष्ण के बहुत से अस्त्र हैं जिनसे उन्होंने लीलाएं की हैं। उनके 3 अस्त्र विशेष प्रभावशाली हैं, सुदर्शन चक्र, बांसुरी और सम्मोहन। इन 3 का सही समय पर सटीक प्रयोग करके उन्होंने पापियों को दंड दिया और धर्म की स्थापना की। ये 3 ही अस्त्र हमारे जीवन में भी जाने अनजाने प्रयुक्त होते रहते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण के अलंकारों में मोर पंख सर्वोपरि है, क्योंकि वे इसे अपने मुकुट में धारण करते हैं। मोर पंख को विनम्रता, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि मोर आकर्षक होता है लेकिन उसमें जरा भी अहंकार नहीं होता। यही भाव इंसानों को याद दिलाता है कि सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, मानव को सदैव सरल बना रहना चाहिए।
2: मयूर पंख धारण करने का मतलब है सांसारिक जिन वस्तुओं को मयूर त्याग देता है। मेरे समान कोई नहीं, एको हम बहुधा नास्ती, मैं एक हूँ दूसरा नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं भक्तों के लिए अपने उसी प्रकार अनुग्रह करने वाला हूँ जैसा मेरा नाम है।
1: तो देखा अपने कान्हा के आभूषण कितने चमत्कारी हैं। कहते हैं कान्हा के भक्तों को न सुख की चिंता सताती है न दुख परेशान कर पाते हैं, क्योंकि जिस मन में कान्हा का वास होता है वहाँ किसी अन्य सुख की आवश्यकता ही नहीं होती। आगे हम आपको लीलाधारी कृष्ण के और भी आभूषणों से आपको अवगत करवाएंगे। तब तक कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्री हरि के सब अवतारों में केवल कृष्ण को ही संपूर्ण अवतार माना गया है। श्री राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए तो श्री कृष्ण ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया और माना जाता है कि वासुदेव कृष्ण के अस्त्रों का संबंध कहीं ना कहीं आपके जीवन के सत्य से भी जुड़ा है। गौर से देखिए।
1: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
2: जिनकी प्रेम लीलाओं में डूबा है संसार।
1: हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
2: श्री कृष्ण के दिव्य अस्त्र करेंगे चमत्कार।
1: दे सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी, पूरन कीजे काज।
2: चमत्कारी है गिरधारी का सुदर्शन। मनोहारी है मुरलीधर की मुरली, श्री कृष्ण है श्री हरि के सबसे मनमोहक अवतार। जानकार बताते हैं कि कृष्ण का अर्थ सृष्टि को आकर्षित करने वाला भी होता है और नाम के अनुरूप ही उन्होंने सारे सृष्टि को आकर्षित किया। लेकिन जब जब टूटा स्वयं भगवान कृष्ण के धैर्य का बांध, तब तब उठा सुदर्शन चक्र। माना जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए, पापियों का अंत करने के लिए श्री कृष्ण ने उठाया सुदर्शन चक्र। तो क्या है भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की महिमा और क्यों माना जाता है ये सबसे शक्तिशाली? चक्र एक विशेष तरह का घातक हथियार है जो बहुत सारे देवी देवताओं के पास है। श्री हरि के चक्र का नाम कांता चक्र है और शिव जी के चक्र है भवरेन्दु। सबसे शक्तिशाली चक्र सुदर्शन चक्र है जिसे केवल श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण शिव जी ने किया था। श्री हरि के प्रतीक के रूप में चक्र की पूजा भी की जाती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर शंख और चक्र की आकृति लगाई जाए तो व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से सुरक्षित रहता है।
3: भगवान शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। वे भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। आपने देखा होगा कि 100 गाली देने के बाद शिशु का पालका भगवान ने चक्र से वध किया। जब गज ने पुकारा समुद्र में तो भगवान वहां भी पहुंच गए और उसकी रक्षा किया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र इसीलिए बनाया गया, वहां पर भगवान ने चक्र चलाया है। तो भगवान का मुरली मधुर तान के लिए है और धर्म की रक्षा और संस्थापन के लिए भगवान चक्र का धारण करते हैं।
2: जहां एक ओर धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने सुदर्शन रूपी अस्त्र उठाया, वहीं प्रेम की स्थापना के लिए बांसुरी थामी। माना जाता है कि श्री कृष्ण का सबसे दिव्य अस्त्र है बांसुरी। कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी में स्वयं मां सरस्वती का वास था और उनकी वंशी की धुन सबको मतवाला बना देती थी। तो देखिए कान्हा के इस दिव्य अलंकार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। श्री कृष्ण नटवर भी हैं और हर कला के महारथी भी हैं। संगीत के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया। ये बांस का बना हुआ एक वाद्य होता है जो वायु के सहारे मीठी ध्वनि पैदा करता है। बांसुरी की ध्वनि से श्री कृष्ण अपने चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे। बांसुरी के छिद्र ये बताते हैं कि कृष्ण की कृपा से शरीर के सारे चक्र ठीक हो सकते हैं और मुक्ति का संगीत बज सकता है। घर में बीम पर अगर बांसुरी लटका दी जाए तो बीम का बुरा असर समाप्त हो जाता है।
3: हमारे यहाँ कहा गया, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीताम्बरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात, कृष्णात परम किमपि तत्र महम न जाने। जब भगवान के अधरामृत पर, होठों पर वह जब बांस की बांसुरी लगती है और भगवान श्री कृष्ण जब उसमें हवा देते हैं तो वह संसारे संसार को, केवल गोपियों को ही नहीं, सारे संसार को आह्लादित और आनंदित करती है।
2: मान्यता तो यहाँ तक है कि कान्हा को बांसुरी महादेव ने भेंट स्वरूप दी थी। जब वे पहली बार कान्हा को देखने आए थे, बांसुरी से हमेशा मीठी और शांत धुन निकलती है। ये संदेश देती है कि हमें हमेशा ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरे के मन को शांति दे और कड़वाहट को दूर करे। माना जाता है कि मुरली के प्रयोग से आप जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं, लेकिन कान्हा के सुदर्शन चक्र और मुरली से भी कहीं ताकतवर है उनका आकर्षण यानी सम्मोहन शक्ति, जो हर किसी को मोहित कर देती है। सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें विशेष तरीके से व्यक्ति के मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन शक्ति थी और इसी सम्मोहन के बल पर उन्होंने बहुत सारे काम आसानी से कर डाले थे। जयद्रथ का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके अंदर सम्मोहन के गुण अपने आप आने लगते हैं, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
3: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना, यो आकर्षते यदि सह कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। राम के नाम में आराम है, लेकिन कृष्ण के नाम में आकर्षण है, सबको आकर्षित करना।
2: श्री कृष्ण ने जो भी धारण किया वह कारण नहीं था, उनके पीछे प्रेम, शांति, समर्पण, संहार और संकटों का निवारण छिपा है। तो अगर आप भी सच्चे मन से कान्हा की भक्ति करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि कान्हा के भक्तों में कान्हा का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो आप भी श्री कृष्ण के इन अलंकार रूपी अस्त्रों और उनसे जुड़ी सीख को अपने जीवन में शामिल कीजिए। आगे हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के कुछ और चमत्कारी अलंकार, साथ ही जानेंगे श्री कृष्ण के पूजन में किन सावधानियों का रखे ध्यान।
0: हमने आपको श्री कृष्ण के उन दिव्य आभूषणों की महिमा के बारे में बताया है जिनका मानव जीवन से गहरा संबंध है। चलिए अब हम आपको बताते हैं श्री कृष्ण की उपासना के नियम और सावधानियां क्या हैं, क्योंकि भादों का महीना नारायण की उपासना के लिए विशेष होता है।
2: परम फलदायी है श्री कृष्ण का ध्यान, श्री कृष्ण की उपासना से मिलेगा वरदान। भाद्रपद में कीजिए माधव का गुणगान, जीवन में आएगी समृद्धि, मिलेगा सम्मान। आज हम श्री कृष्ण के दिव्यास्त्रों और उनके आभूषणों की महिमा आपको बता रहे हैं। चलिए माधव के कुछ और प्रमुख अस्त्रों की महिमा आपको बताते हैं। कौमुद की गदा धारण करते हैं माधव। मान्यता है कि ये गदा न सिर्फ शारीरिक विकार मिटाती है बल्कि जीवन से अंधकार का भी नाश करती है। मान्यता है कि ये गदा श्री कृष्ण को वरुण देव ने दी थी। ये गदा शक्ति, बुद्धि, नीति, स्थायित्व और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। श्री कृष्ण का धनुष सारंग असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इस धनुष को विश्वकर्मा ने बनाया था। माना जाता है कि इस दिव्य धनुष को भगवान विष्णु, परशुराम, श्री राम और श्री कृष्ण ने धारण किया। ये सिखाता है कि बल का प्रयोग सिर्फ अन्याय और अधर्म को मिटाने के लिए किया जाना चाहिए। ये तो श्री कृष्ण के संहारक अस्त्र थे। चलिए आपको बताते हैं श्री कृष्ण के एक और अलंकार, वैजयंती माला की महिमा। मान्यता है कि इस माला को राधा ने कान्हा को भेंट किया था जब माधव ने पहली बार राधा संग रास रचाया था।
3: वैजयंती को हमारे यहाँ जंगल वृक्ष की संज्ञा दी गई है। यह जंगल का वृक्ष है, उपेक्षित है। तो भगवान कहते हैं जो जो वस्तुएं उपेक्षित हैं वो मुझे दे दो। मैं सर्वग्राही जनार्दन, मैं तो जनार्दन हूँ, सर्वग्राही हूँ। ये सांसारिक जिन चीजों का तुम त्याग करते हो ईश्वर उपने उसे अपना अलंकार, अपना श्रृंगार बना लेता है।
2: श्री कृष्ण के जीवन से ही जुड़ा है रास, जिसमें कोप और गोपियों संग श्री कृष्ण लीला दिखाते हैं, जिसे भक्ति और प्रेम रस की पराकाष्ठा माना जाता है। माना जाता है कि रास लीला में श्री कृष्ण को परमात्मा और गोपियों को जीवात्मा माना गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब जीव अपने अहंकार और संसारिक बंधनों को त्याग कर पूर्ण समर्पण करता है तब उसका मिलन ईश्वर से हो जाता है।
3: गोपियां कौन है? सभी जितनी गोपियां आई हैं मृत्यु लोक में उस समय भगवान के श्री कृष्ण के समय, वह सब देवता हैं। तो भगवान अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए रास करते हैं। रास का मतलब कोई विकार नहीं है, रास का मतलब सबको साथ लेकर के चलने का जो परिमाप है उसे हमारे यहाँ रास। रास में कृष्ण केंद्र हैं और गोपियां पूर्ण समर्पित उनकी परिधि हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं।
2: तो देखा आपने श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ अस्त्र और अलंकार कैसे आपके जीवन को गति और दिशा दे सकते हैं। मान्यता है कि नारायण की महाकृपा वाला ये महीना वैसे तो हर तरह से कल्याणकारी है, पर हर महीने की तरह इस महीने में भी साधकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो अब आपको बताते हैं भगवान कृष्ण की उपासना में किन बातों का ध्यान रखें। इनकी उपासना प्रातः काल या संध्या काल में करें। पूजा में चंदन, तुलसी दल और शंख का प्रयोग जरूर करें। पंचामृत या अन्य वस्तुएं जब भी अर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर डालें। मंत्रों का जप तुलसी या चंदन की माला से ही करें। पीले वस्त्र और पीले आसन का प्रयोग विशेष लाभकारी होगा। जब जब संसार में पाप ने अपनी चरम सीमा लांघी है, तब तब नारायण ने पाप का अंत करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले कृष्ण का ध्यान पूजन करके आप भी उनके दिव्य स्वरूप से बहुत कुछ सीख सकते हैं, धर्म का मर्म समझ सकते हैं, जीवन जीने की शैली को आत्मसात कर सकते हैं।
0: और इसी के साथ इस खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: गुजरात में गणेश उत्सव में रौनक बिखरी हुई है। यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह कई गणेश मंडल है जो अपने अपने गणपति की प्रतिमा स्थापित कर गणेश उत्सव मनाते आए हैं। तो आज गुजरात के दो ऐसे गणेश मंडलों का जिक्र आपके सामने करने वाले हैं जिन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बप्पा की बेहद खूबसूरत और भव्य प्रतिमाएं तैयार की हैं। इन दो इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को तो आपने दिखाएंगे ही आपको, साथ ही सूरत में गणेश उत्सव के लिए ही तैयार की जा रही कुछ और डिजाइनर गणेश मूर्तियों की मनमोहक तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रहे हैं।

0: आ रहे हैं गणपति बाप्पा, जिनके स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन गणेशोत्सव की रौनक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात में भी खूब बिखरी हुई है। सूरत में 17 फीट ऊंचे बप्पा की ये आभा बता रही है कि गणेशोत्सव यहाँ भव्य ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा।
1: ये जो पंडाल आप देख रहे हैं सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही है।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा दरअसल टिश्यू से बनाई गई है, जिसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है। शहर के सिटी लाइट इलाके में इस अनोखी गणेश प्रतिमा को बनाने वाला एक ग्रुप है जिसका नाम है सरकार गणेश उत्सव।
2: तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश महिकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर के इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके हम।
0: बप्पा की प्रतिमा बनाने के लिए विशेष तौर पर मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम को सूरत बुलाया गया। कुशल कलाकारों ने करीब 2 महीने का वक्त लेते हुए लगातार मेहनत की और गणेश की मूर्ति को आकार दिया। टिश्यू पेपर जैसे हल्के और अलग तरह के माध्यम से इतनी बड़ी प्रतिमा तैयार करना हालांकि काफी चैलेंजिंग काम था, लेकिन मेहनत रंग लाई। बप्पा की 17 फीट ऊंची प्रतिमा ने भव्य स्वरूप लिया। हालांकि इसे रंगने के लिए पीओपी और रासायनिक रंगों के इस्तेमाल से बचने का प्रयास किया गया ताकि गणेशोत्सव के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। फिर जब विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों के साथ जयकारों के बीच उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बप्पा की स्वागत यात्रा में हिस्सा लेकर उनका आशीर्वाद दिया, जिनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
3: बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: फिलहाल तो गणेश उत्सव के दौरान सूरत के टिश्यू वाले गणेश जी की तरह ही वडोदरा के इको फ्रेंडली बाप्पा की भी खूब चर्चा होती रही है, जिन्हें आकार देने वाला 20 से 25 युवाओं का श्री गणेश युवक मंडल है। युवाओं की ये टीम नाणा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करता रहा है। युवाओं की ये टीम नाड़ा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करती रही है।
4: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग इस अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का श्री गणेश युवक मंडल दरअसल इस साल अपने गणेशोत्सव का 11वां साल बना रहा है। पिछले 10 सालों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार इन युवाओं ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत लगाई और फिर 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर ये बेहद अनोखे इको फ्रेंडली गणेश जी तैयार किए, जिसको बनाने में 16,700 रूपए का खर्च आया। हालांकि सूरत में पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने भी गणेशोत्सव से पहले डिजाइनर गणेश मूर्तियां बनाकर लोगों का खूब ध्यान खींचा हुआ है। पारंपरिक रंगों में घुली और बारीक नक्काशी के लिए बप्पा की ये डिजाइनर प्रतिमाएं एक नजर में ही किसी का भी मन मोह लें। भाई बप्पा की ये खूबसूरत मूर्तियां हैं ही ऐसी कि एक पल में ही दिल को लुभा ले। लेकिन ये भी 100% सच है कि आज का दौर आस्था के साथ पर्यावरण को बचाकर रखना है, इसलिए निश्चित तौर पर इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा, नदी तालाब या समंदर में विसर्जन के वक्त पर्यावरण सुरक्षा की एक सराहनीय पहल है, जिससे भक्ति आस्था के साथ त्योहार का रंग भी बना रहे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: मथुरा वृंदावन सहित देश भर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। शहर शहर कान्हा की भक्ति में लीन नजर आए श्रद्धालु। भगवान के अवतरण पर नंदलाल की जय जयकार। अमेरिका की न्यूजर्सी में दिखी कान्हा के जन्मोत्सव की धूम। भजन कीर्तन की धुनों पर थिरकते नजर आए भक्त। प्रेम और श्रद्धा के साथ नंद गोपाल का जयघोष। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र सहित देश भर में दही हांडी की रौनक। मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां तैयार। आज दिखेंगे उत्सव के रंग।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें सिर्फ अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी, जिसे हाल ही में नेपाल में आए बाढ़ से जोड़कर बताया जा रहा है। इस सैलाब में लोग, घर और गाड़ी सब कुछ बह गए, लेकिन वीडियो का सच क्या है आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि पार्सल देने पहुंचे एक डिलीवरी बॉय ने एक महिला को पीटा है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
6: वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक स्थान पर अचानक से बाढ़ आती है, वहां मौजूद लोग, घर और गाड़ी सब कुछ बह जाता है। इस वीडियो को नेपाल बाढ़ से जोड़ते हुए इसे शेयर किया जा रहा है, लेकिन जब वायरल वीडियो की फैक्ट चेक किया गया, क्या सच और झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
7: नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। इसी से जोड़कर बाढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्थान पर अचानक बाढ़ आती है और वहां मौजूद लोग, घर और गाड़ी सभी बह जाते हैं। इस वीडियो को नेपाल की त्रासदी का बताते हुए वायरल किया जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि नेपाल से एक और भयावह तस्वीर सामने आई है। लोग रोज की तरह अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे, किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अचानक आई भीषण बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। प्रकृति के इस कहर की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस आपदा में फंसे सभी लोगों की सुरक्षित तलाश हो और प्रभावित परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत मिले। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
6: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर देखा जा सकता है कि एक स्थान पर अचानक बाढ़ आ जाती है और फिर वहां मौजूद लोग, घर और गाड़ी सभी बह जाते हैं। इस वीडियो को जिसने भी देखा है वो हैरान रह गया। सोशल मीडिया यूजर्स जान की सलामती की दुआ मांगने लगे। वायरल वीडियो सही है या फिर इसके जरिए झूठ फैलाया जा रहा है, जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि जो दिखाई देता है कई बार वो सच नहीं होता है। इसके लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को ध्यान से देखा। इस दौरान हमने वीडियो के कमेंट सेक्शन को भी खंगाला, जहां पर कई यूजर्स ने इस वीडियो को एआई वीडियो बताया है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें ये भी लगा कि कुछ इसमें खामियां नजर आ रही हैं, कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल नेचुरल नहीं है। जब बाढ़ का पानी घरों और गाड़ियों के ऊपर से गुजरता है तो फिर कुछ भी सामान्य नजर नहीं आता है। बाढ़ के पानी के गुजर जाने के कुछ सेकंड्स तक तो सब कुछ सामान्य दिखता है और फिर कुछ सेकंड बाद घर और पेड़ अजीब तरीके से गिरने लगते हैं। वीडियो में कुछ पेड़ और ढांचे तो अचानक से उभर आते हैं, कई लोग अपने आप गायब हो जाते हैं, कुछ चीजें अपने आप में बन जा रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ इमारतों की बनावट भी अपने आप बदल जाती है और वीडियो में दिख रही कई बाइक्स का साइज भी सामान्य से बड़ा हो जाता है, जो कहीं ना कहीं वीडियो के असली होने पर संदेह पैदा करता है। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल यही था कि पानी के इस तेज बहाव में कुछ घर बह गए पर कुछ पेड़ और घर एकदम बाढ़ से पहले जैसी स्थिति में ही कैसे रह गए। दूसरा सवाल ये कि जिस ओर से पानी बाढ़ का पानी आ रहा है, लोग उस ओर कैसे भाग सकते हैं। और तीसरा एक और सवाल कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई है। इस रिपोर्ट में जानिए सच्चाई क्या है।
7: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम लगातार इन तस्वीरों और वीडियो की पड़ताल कर रही है। हमारी पड़ताल में ये सभी फेक साबित हुए। अब इस कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल्स की मदद से चेक करना शुरू किया। सबसे पहले हमने हाइव मॉडरेशन की मदद से वीडियो को सर्च किया। हाइव के एनालिसिस में वायरल वीडियो के एआई से बने होने के करीब 70% संकेत मिले। इस टूल के अनुसार वीडियो को सिडांस 2 की मदद से बनाया गया है। हमने दूसरे टूल ह्यूमन मीटर की मदद से वीडियो को सर्च किया। इसके एनालिसिस में वायरल वीडियो के एआई से बने होने के करीब 72% संकेत मिले। इस टूल के अनुसार इमारतें अपने आप अपनी बनावट को बदल रही हैं और कई कारें पानी में बदल जा रही हैं। ये सभी वीडियो के एआई से बने होने के संकेत हैं। इसके बाद हमने वीडियो के की फ्रेम निकाले और उन्हें सर्च करने के लिए साइट इंजन का इस्तेमाल किया। इस टूल ने की फ्रेम के एआई से बने होने की करीब 98% संभावना जताई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा वीडियो फर्जी साबित हुआ। इस वीडियो को एआई की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पार्सल देने पहुंचे एक डिलीवरी बॉय ने एक महिला को पीटा। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है हमारी रिपोर्ट।
7: डिलीवरी बॉय द्वारा महिला की पिटाई का बताकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति कुछ सामान देने के लिए एक महिला के पास पहुंचता है। इसी बीच महिला और व्यक्ति के बीच बहस होने लगती है। इस दौरान पहले दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और फिर मारपीट शुरू हो जाती है। इसी बीच कथित डिलीवरी बॉय महिला को बुरी तरह से नीचे गिराकर मारना शुरू कर देता है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, एक डिलीवरी बॉय पार्सल लाता है, कस्टमर पार्सल लेने बाहर आती है। जैसे ही डिलीवरी बॉय पार्सल महिला को देता है तो वो उसके हाथ से गिर जाता है, जिससे महिला कस्टमर डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट शुरू कर देती है। गुस्से में डिलीवरी बॉय भी महिला को मारना शुरू करता है। गलती महिला की थी, लेकिन डिलीवरी बॉय को भी इतना नहीं करना चाहिए था। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर कर रहे हैं।
6: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक फ्लैट में एक डिलीवरी बॉय सामान देने को पहुंचा, वो फोन करता है, तभी एक महिला दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। तभी सामान लेने के दौरान डिलीवरी बॉय के हाथ से सामान गिर जाता है। जिसके बाद महिला और डिलीवरी बॉय के बीच पहले कहासुनी होती है, उसके बाद महिला डिलीवरी बॉय को धक्का दे देती है, जिसके बाद डिलीवरी बॉय पलट वार करते हुए एक थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो शेयर किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि डिलीवरी बॉय ने सामान देने के दौरान एक महिला के साथ हाथापाई की। दावा यही है या गलत है, यह जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की सच्चाई जानने के लिए पूरे वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे वायरल दावे पर हमें शक हुआ। जिस तरह वीडियो के जरिए कहानी को पेश किया जा रहा है उस पर हमें संदेह हुआ। महिला और डिलीवरी बॉय के बीच में हाथापाई हो रही है तो जाहिर है कि शोर भी मचेगा और इस शोर को सुनकर आसपास रहने वाले लोग भी वहां पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक तयशुदा कहानी के तहत इसको शूट किया गया है। ना वहां पर लोग पहुंचते हैं, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है, यह हमें काफी अटपटा लगा। लिहाजा हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही था कि सोसाइटी के एक फ्लैट के बाहर डिलीवरी बॉय और महिला के बीच मारपीट होने के बावजूद लोग क्यों इकट्ठा नहीं हुए। दूसरा सवाल कि वीडियो किसी सोसाइटी का लग रहा है, जाहिर है कि वहां पर सुरक्षा गार्ड भी होंगे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि महिला पिटती रही और वहां सुरक्षा गार्ड पहुंचा ही नहीं। जिस एंगल से ये पूरा वीडियो शूट हुआ है उसे देखकर नहीं लग रहा है कि ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब ये कि सामने कैमरा लगाया गया। इसके लिए तीसरा सवाल यही कि महिला और लड़के ने जानबूझकर वीडियो बनाने के लिए ये ड्रामा तो नहीं किया है। सच्चाई इस रिपोर्ट में जानिए।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 21 अगस्त को एक फेसबुक यूजर के अकाउंट से पोस्ट किया गया ये वीडियो मिला। 2:33 के इस वीडियो में वायरल क्लिप मौजूद है। वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। पड़ताल के दौरान हमें यही वीडियो इसी यूजर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मिला, जहां इसे स्क्रिप्टेड बताया गया है। इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट को खंगालने पर हमें वहां ऐसे कई और वीडियो भी मिले जिनमें पुरुष और महिला आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इन सभी वीडियो के कैप्शन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो के जरिए झूठा दावा किया जा रहा है, ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: फैक्ट चेक में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर आपको ले चलेंगे। वायरल दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
6: और फैक्ट चेक में अब वक्त हो चला है वायरल वीडियोस को देखने का। आपको लिए चलते हैं सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।
12: खुद तो पढ़ना नहीं है तो भला बड़ी बहन को क्यों पढ़ने दूं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये भाई बहन का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी बहन पढ़ रही है, अभी वह छोटा भाई पहुंच जाता है और बहन को परेशान करने लगता है, तरह तरह के हरकतें करके बहन को पढ़ने से रोकने लगता है। चंद सेकंड का ये वीडियो भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते को बखूबी बयां कर रहा है। लोग इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार उतार रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नन्हे बच्चे का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बच्चा अपनी मैम के लिए गाना गाता नजर आ रहा है। बच्चे की प्यारी आवाज और मासूम अंदाज देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है।
13: जोर से सुनाओ। बुला रही आपकी चटीरी देखी, चढ़ावी ये दिल
12: गाना गाते हुए बच्चे के चेहरे पर खुशी और अपनापन साफ दिखाई देता है। उसकी मासूमियत ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू लिया है। यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग बच्चे की खूब तारीफ कर रहे हैं।
11: अरे गाओ ना यार।
14: ये पकड़ लिया।
13: पी छोटो पापा, पापा पी छोटो।
12: बेटियां पापा की क्यों लाज दुलारी होती हैं? वो इस वीडियो को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। पापा और बेटियों के बीच पकड़ने और छोड़ने का ये प्यारा पल लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
14: ये पकड़ लिया।
13: पी छोटो पापा, पापा पी छोटो।
12: यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
14: ये पकड़ा।
13: पापा पी छोटो। मामा मारूंगा। नहीं मामा मारूंगा।
15: A night ago, I messaged my father that I'm remembering you. And the next morning, I opened my door. And there he was with a backpack.
12: कहा जाता है कि बेटियां पापा की परी होती हैं और इस बात को एक पिता ने सच साबित कर दिया है। सिर्फ एक छोटे से मैसेज पर बिना किसी बड़ी इमरजेंसी के पिता ने मीलों का सफर तय कर अपनी बिटिया के दरवाजे पर दस्तक दे दी।
15: My favorites. And before leaving, he just said, whatever you do, just be happy.
12: एक इंस्टाग्राम यूजर ने इस दिल को छू लेने वाले पल को शेयर किया है। वीडियो में उस चैट का स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया है जिसमें बेटी ने एक रात पहले अपने पिता को मैसेज किया था, आई मिस यू पापा।
15: एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई ओपेंड माय डोर एंड देयर ही वाज विद अ बैग।
12: बेटी का ये मैसेज देखते ही पिता का दिल बेचैन हो गया। अगले दिन सुबह वह सचमुच बेटी के दरवाजे पर खड़े थे। पापा और बेटी के इस खूबसूरत मिलन के पीछे का समर्पण हर किसी को भावुक कर रहा है।
15: Took me out, fed my favorites, and before leaving, he just said.
12: इस छोटी सी मुलाकात के लिए पिता ने सिर्फ बेटी से मिलने के लिए 14 घंटे का सफर तय किया। करीब 8 घंटे साथ बिताए और फिर वापस 14 घंटे का सफर किया। थकने के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ आराम किया बल्कि बेटी के घर के कामों में हाथ बटाया और उसके साथ शहर घूमने भी निकले। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी भावनाएं नहीं रोक पा रहे हैं। कोई अपने पापा को याद कर रहा है तो कोई इस अनमोल रिश्ते की तुलना किसी और से ना करने की सलाह दे रहा है। इस शख्स ने साइकिल के पैडल से कपड़े धोने का गजब तरीका ढूंढ निकाला है। इस जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने जमीन पर प्लास्टिक का टब रखा है जिसमें पानी और कपड़े भरे हुए हैं। टब के ठीक ऊपर उसने एक साइकिल को उल्टा करके व्यवस्थित किया हुआ है। इसके बाद वह टब में वॉशिंग पाउडर डालता है और साइकिल के पैडल को हाथ से तेजी से घुमाना शुरू करता है। जैसे जैसे पैडल घूमता है साइकिल की चैन और पहिए से जुड़ी ग्रिप टब के पानी में वॉशिंग मशीन के पल्सेटर की तरह काम करने लगती है। पानी में झाग बनने लगता है और कपड़े ठीक उसी तरह घूमने लगते हैं जैसे किसी वॉशिंग मशीन में घूमते हैं। इस जुगाड़ की सबसे खास बात ये है कि इसके लिए ना तो बिजली की जरूरत है और ना ही किसी महंगे रखरखाव की। ये पूरी तरह से जीरो कास्ट और पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीका है। वीडियो को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए हैं। वीडियो में एक गांव की सड़क पर लड़का स्टंट करता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत में वह साइकिल को अपने हाथों से उठाता है और फिर उसे सीधे अपने ठुड्डी पर संतुलित कर लेता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि साइकिल पूरी तरह हवा में टिकी होती है और लड़का बिना हाथों का सहारा लिए बड़े आराम से हाथ फैलाकर पोज देता है। वीडियो में लड़के की एकाग्रता और संतुलन का स्तर देखने लायक है। साइकिल का वजन और उसका आकार ऐसा होता है जिसे मुंह या चेहरे के सहारे रोकना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इस लड़के ने इसे इतनी आसानी से किया जैसे ये उसके रोज का काम हो। वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं जबकि हजारों लोगों ने इसे पसंद किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। लोग लड़के की कला और मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लाल टी शर्ट पहने युवक भीड़ भाड़ वाले मार्केट एरिया में खड़ा है। इसके पास एक स्प्लेंडर बाइक है, लेकिन वह उस पर सवार होकर चलने के बजाय बाइक को अपने कंधों पर उठाकर चलने लगता है। वह पूरी सहजता से भारी भरकम बाइक को उठाए घूमता है, मानो उसने कोई हल्का बैग उठा रखा हो। सड़क और बाजार में मौजूद लोग इस आधुनिक बाहुबली को देखकर हैरान रह जाते हैं। कई लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं, तो कुछ अपनी हंसी नहीं रोक पाते। दबंग 2 का मशहूर सॉन्ग दगाबाज रे हाय दगाबाज रे आप सब ने सुना ही होगा। अब उसका ये वर्जन सुनिए। वीडियो में एक परिवार जन्मदिन मनाते हुए दिख रहा है। इस दौरान एक शख्स दगाबाज रे सॉन्ग के धुन का इस्तेमाल करके हैप्पी बर्थडे टू यू का ये वर्जन गाने लगता है।
1: ओ,

0: लोगों को ये खूब पसंद आ रहा है। इंसानों की तरह जानवर भी अपने मालिक के काम में हाथ बटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक शख्स अपने डॉग को काम पर लेकर पहुंचा, जहां कंस्ट्रक्शन के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। डॉग भी खुद को काम से दूर नहीं रख पाया और गड्ढा खोदने में मदद करने लगा। काम करते हुए डॉग काफी खुश नजर आया। उसकी मासूम हरकत देख कर लोग खूब मुस्कुरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर यूजर्स तंग हैं। वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता घर के हॉल में आराम से सो रहा होता है, तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर घंटी बजती है और बाहर से डिलीवरी डिलीवरी की आवाज आती है। जैसे ही डॉगी डिलीवरी बॉय की आवाज सुनता है, वह तुरंत उठ खड़ा होता है और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ता है। मजेदार बात यह है कि घर में उस वक्त कोई इंसान नहीं था, लेकिन डॉगी ने बिना घबराए बहुत ही समझदारी से अपने पंजों से दरवाजा खोला और बाहर खड़े डिलीवरी बॉय से पार्सल रिसीव कर लिया। वीडियो में सबसे मजेदार मोड़ तब आता है जब डॉगी पार्सल तो ले लेता है, लेकिन उसे तुरंत उठाकर अंदर नहीं लाता। वह दरवाजे के पास खड़े होकर बड़े ध्यान से नजर रखता है और डिलीवरी बॉय के वहां से चले जाने का इंतजार करता है। जैसे ही डिलीवरी मैन वहां से रवाना होता है, स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड मुंह में पार्सल दबाता है और बड़े शान से उसे लिविंग रूम में सोफे के पास लाकर रख देता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोग
7: गुजरात में गणेश उत्सव में रौनक बिखरे हुए हैं। यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह कई गणेश मंडल हैं जो अपने अपने गणपति की प्रतिमा स्थापित कर गणेश उत्सव मनाते आए हैं। तो आज गुजरात के दो ऐसे गणेश मंडलों का जिक्र आपके सामने करने वाले हैं, जिन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बप्पा की बेहद खूबसूरत और भव्य प्रतिमाएं तैयार की हैं। इन दो इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को तो आपने दिखाएंगे ही आपको, साथ ही सूरत में गणेश उत्सव के लिए ही तैयार की जा रही कुछ और डिजाइनर गणेश मूर्तियों की मनमोहक तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रहे हैं।

0: आ रहे हैं गणपति बाप्पा, जिनके स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन गणेशोत्सव की रौनक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात में भी खूब बिखरी हुई है। सूरत में 17 फीट ऊंचे बप्पा की ये आभा बता रही है कि गणेशोत्सव यहाँ भव्य ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा।
1: ये जो पंडाल आप देख रहे हैं सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही है।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा दरअसल टिश्यू से बनाई गई है, जिसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है। शहर के सिटी लाइट इलाके में इस अनोखी गणेश प्रतिमा को बनाने वाला एक ग्रुप है जिसका नाम है सरकार गणेश उत्सव।
2: तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश महिकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर के इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके हम।
0: बप्पा की प्रतिमा बनाने के लिए विशेष तौर पर मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम को सूरत बुलाया गया। कुशल कलाकारों ने करीब 2 महीने का वक्त लेते हुए लगातार मेहनत की और गणेश की मूर्ति को आकार दिया। टिश्यू पेपर जैसे हल्के और अलग तरह के माध्यम से इतनी बड़ी प्रतिमा तैयार करना हालांकि काफी चैलेंजिंग काम था, लेकिन मेहनत रंग लाई। बप्पा की 17 फीट ऊंची प्रतिमा ने भव्य स्वरूप लिया। हालांकि इसे रंगने के लिए पीओपी और रासायनिक रंगों के इस्तेमाल से बचने का प्रयास किया गया ताकि गणेशोत्सव के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। फिर जब विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों के साथ जयकारों के बीच उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बप्पा की स्वागत यात्रा में हिस्सा लेकर उनका आशीर्वाद दिया, जिनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
3: बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: फिलहाल तो गणेश उत्सव के दौरान सूरत के टिश्यू वाले गणेश जी की तरह ही वडोदरा के इको फ्रेंडली बापा की भी खूब चर्चा होती रही है, जिन्हें आकार देने वाला 20 से 25 युवाओं का श्री गणेश युवक मंडल है। युवाओं की ये टीम नाड़ा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करता रहा है। युवाओं की ये टीम नाड़ा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करती रही है।
4: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का श्री गणेश युवक मंडल दरअसल इस साल अपने गणेशोत्सव का 11वां साल बना रहा है। पिछले 10 सालों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार इन युवाओं ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत लगाई और फिर 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर ये बेहद अनोखे इको फ्रेंडली गणेश जी तैयार किए, जिसको बनाने में 16,700 रुपए का खर्च आया। हालांकि सूरत में पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने भी गणेशोत्सव से पहले डिजाइनर गणेश मूर्तियां बनाकर लोगों का खूब ध्यान खींचा हुआ है। पारंपरिक रंगों में घुली और बारीक नक्काशी के लिए बप्पा की ये डिजाइनर प्रतिमाएं एक नजर में ही किसी का भी मन मोह लें। भाई बप्पा की ये खूबसूरत मूर्तियां हैं ही ऐसी कि एक पल में ही दिल को लुभा लें। लेकिन ये भी 100% सच है कि आज का दौर आस्था के साथ पर्यावरण को बचाकर रखना है, इसलिए निश्चित तौर पर इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा नदी, तालाब या समंदर में विसर्जन के वक्त पर्यावरण सुरक्षा की एक सराहनीय पहल है। जिससे भक्ति आस्था के साथ त्योहार का रंग भी बना रहे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीज।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। श्री कृष्ण जो योग योगेश्वर कहलाते हैं, भाद्रपद में ना सिर्फ उनका जन्म हुआ बल्कि ये महीना उनकी लीलाओं का भी गवा रहा है। ऐसे में माधव के इस महाकल्याणकारी महीने में उनका ध्यान और पूजन करना आपके लिए परम फलदायी हो सकता है। आज हम आपको भगवान कृष्ण और उनके धारण किए गए आभूषणों की महिमा के बारे में बताएंगे। आपने वासुदेव श्री कृष्ण की लीलाओं और उनकी भक्ति की शक्ति के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप उनके दिव्य अलंकारों की महिमा जानते हैं, जो माधव का श्रृंगार भी हैं और उनके अस्त्र भी। तो चलिए जानते हैं कैसा है श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप।

भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरा पर धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। किसी न किसी स्वरूप में भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर आता हूँ। शास्त्रों में ईश्वर के जितने भी स्वरूपों का वर्णन मिलता है उसमें श्री कृष्ण ही लीलाधारी हैं।

0: तभी तो कुरुक्षेत्र में बिना शस्त्र उठाए ही पांडवों की विजय सुनिश्चित कर देते हैं। अद्भुत है गिरधारी का स्वरूप। जब देवराज इंद्र ने शक्ति और अहंकार दिखाया, तब मुरलीधर ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा की। द्वापर युग में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब श्री कृष्ण ने अधर्म पर धर्म की पट कथा लिखी, चाहे कालिया नाग का मर्दन करना हो। या फिर कंस के भेजे राक्षसों का संहार करना हो। अपने लीलाओं से नटवर ने धरावासियों को कर्मपथ दिखाया है। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको श्री कृष्ण के धारण किए हुए उनके प्रिय अलंकारों की महिमा बताएंगे, जिनमें छिपी है मानव के लिए सीख। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि द्वारकाधीश संकटों का समाधान करने वाले हैं, और माधव की मनमोहिनी सूरत और व्यक्तित्व में ही समस्त दुश्वारियों का उपाय छिपा है। आइए जान लेते हैं श्री कृष्ण क्यों कहे जाते हैं श्री हरि के सबसे दिव्य अवतार।
1: कृष्ण को हमारे यहाँ शास्त्रों में पूर्णावतार बताया गया। तो जो पूर्णावतार होता है ईश्वर के अंश के रूप में, तो उसकी उपासना के लिए हमें हमारे यहाँ जो बताया गया कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, और या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस पूरे महीने जप करके श्री कृष्ण की उपासना को हम सार्थक कर सकते हैं।
0: श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री हरि के सभी अवतारों में यही संपूर्ण अवतार माने जाते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न थे। श्री कृष्ण को अलौकिक देव कहते हैं। श्री कृष्ण ने हर समय अपने भगवान होने का परिचय दिया है। श्री कृष्ण के मुख्य रूप से 3 स्वरूप हैं, ब्रज के कृष्ण, राजा कृष्ण और पार्थ सारथी कृष्ण। हर रूप में श्री कृष्ण अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण कहते हैं। हर रूप में वो भक्तों की कष्ट हर लेते हैं और उन्हें मुक्ति मोक्ष का वरदान देते हैं। माना जाता है कि भाद्रपद का ये महीना कृष्ण भक्ति के लिए सबसे खास है। इस महीने में कान्हा के मंत्रों का सही उच्चारण करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाद्रपद माह से ही श्री कृष्ण का गहरा संबंध है, क्योंकि इसी माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हुआ था योग योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतार।
1: तो हमारे यहाँ कहा गया, जब जब होइ धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा, हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब मनुष्यों का आवश्यकता होती है ईश्वर की, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आता है। और कहा भी गया है, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
0: माना जाता है कि यह संसार श्री कृष्ण के अधीन है। धर्म ग्रंथ गीता में भगवान कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप से दुनिया को ज्ञान दिया। माना जाता है कि श्री कृष्ण इस जगत की वो शक्ति हैं जो संसार में व्याप्त 16 कलाओं के मालिक हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण के ध्यान और उपासना का फल अमोघ यानी कभी नष्ट न होने वाला होता है। आज हम आपको श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की महिमा बता रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि माधव के श्याम वर्ण स्वरूप पर क्या कहते हैं ज्योतिष के।

0: जानकार।
1: श्याम वर्ण का रहस्य है कि समुद्र को हम श्याम वर्ण कहते हैं और गगन को भी श्याम वर्ण कहते हैं, इसलिए मेघ श्यामम जो कहा गया, मेघ रूपी श्याम है भगवान। देखने में तो बादल का सदृश है लेकिन उनके अंदर जल भरा हुआ है, वह कृपा की दृष्टि का जो जल भरा हुआ है यह भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण स्वरूप है।
0: भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर धारी भी कहा जाता है क्योंकि वो पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं, पीताम्बर अर्थात पीले रंग का वस्त्र। माना जाता है कि पीला रंग शुद्धता, ज्ञान और स्पर्शता का प्रतीक है। ये हमें अपने विचारों और कर्मों में सात्विकता बनाए रखने की शिक्षा देता है। चलिए आपको बताते हैं केशव के पीताम्बरी वस्त्रों की महिमा।
1: पीताम्बर इसलिए है कि पीताम्बर सत्यता का प्रतीक है, तो जो भगवान का यह स्वरूप है बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, यह जो बाल मुकुंद का जो यह स्वरूप है, कृष्ण का यह जो स्वरूप है, यह परमार्थ चिंतन के लिए बहुत ही लाभदायक। और पीला वस्त्र पहनते हमारे अंदर यह भगवान की दिव्य छवि बन जाती है जो पीताम्बरधारी भगवान है।
0: संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसार में प्रेम और धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग किया है? श्री कृष्ण के बहुत से अस्त्र हैं जिनसे उन्होंने लीलाएं की हैं। उनके तीन अस्त्र विशेष प्रभावशाली हैं, सुदर्शन चक्र, बांसुरी और सम्मोहन। इन तीनों का सही समय पर सटीक प्रयोग करके उन्होंने पापियों को दंड दिया और धर्म की स्थापना की। ये तीनों ही अस्त्र हमारे जीवन में भी जाने अनजाने प्रयुक्त होते रहते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण के अलंकारों में मोर पंख सर्वोपरि है क्योंकि वे इसे अपने मुकुट में धारण करते हैं। मोर पंख को विनम्रता, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि मोर आकर्षक होता है लेकिन उसमें जरा भी अहंकार नहीं होता। यही भाव इंसानों को याद दिलाता है कि सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, मानव को सदैव सरल बना रहना चाहिए।
1: मयूर पंख धारण करने का मतलब है सांसारिक जिन वस्तुओं को मयूर त्याग देता है। मेरे समान कोई नहीं, एको हम बहुधा नास्ति, मैं एक हूँ दूसरा नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं भक्तों के लिए अपने उसी प्रकार अनुग्रह करने वाला हूँ जैसा मेरा नाम है।
0: तो देखा अपने कान्हा के आभूषण कितने चमत्कारी हैं। कहते हैं कान्हा के भक्तों को न सुख की चिंता सताती है न दुख परेशान कर पाते हैं, क्योंकि जिस मन में कान्हा का वास होता है वहाँ किसी अन्य सुख की आवश्यकता ही नहीं होती। आगे हम आपको लीलाधारी कृष्ण के और भी आभूषणों से आपको अवगत करवाएंगे। तब तक कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्री हरि के सब अवतारों में केवल कृष्ण को ही संपूर्ण अवतार माना गया है। श्री राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए तो श्री कृष्ण ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया और माना जाता है कि वासुदेव कृष्ण के अस्त्रों का संबंध कहीं ना कहीं आपके जीवन के सत्य से भी जुड़ा है। गौर से देखिए।
1: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
2: जिनकी प्रेम लीलाओं में डूबा है संसार।
1: हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
2: श्री कृष्ण के दिव्य अस्त्र करेंगे चमत्कार।
1: ते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी, पूरन कीजे काज।
2: चमत्कारी है गिरधारी का सुदर्शन। मनोहारी है मुरलीधर की मुरली, श्री कृष्ण है श्री हरि के सबसे मनमोहक अवतार। जानकार बताते हैं कि कृष्ण का अर्थ सृष्टि को आकर्षित करने वाला भी होता है और नाम के अनुरूप ही उन्होंने सारे सृष्टि को आकर्षित किया। लेकिन जब जब टूटा स्वयं भगवान कृष्ण के धैर्य का बांध, तब तब उठा सुदर्शन चक्र। माना जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए, पापियों का अंत करने के लिए श्री कृष्ण ने उठाया सुदर्शन चक्र। तो क्या है भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की महिमा और क्यों माना जाता है ये सबसे शक्तिशाली? चक्र एक विशेष तरह का घातक हथियार है जो बहुत सारे देवी देवताओं के पास है। श्री हरि के चक्र का नाम कांता चक्र है और शिव जी के चक्र है भवरेन्दु। सबसे शक्तिशाली चक्र सुदर्शन चक्र है जिसे केवल श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण शिव जी ने किया था। श्री हरि के प्रतीक के रूप में चक्र की पूजा भी की जाती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर शंख और चक्र की आकृति लगाई जाए तो व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से सुरक्षित रहता है।
3: भगवान शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। ये भगवान विष्णु के अनुसार अवतार हैं। आपने देखा होगा कि 100 गाली देने के बाद शिशु का पालका भगवान ने चक्र से वध किया। जब गज ने पुकारा समुद्र में तो भगवान वहां भी पहुंच गए और उसकी रक्षा किया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र इसीलिए बनाया गया, वहां पर भगवान ने चक्र चलाया है। तो भगवान का मुरली मधुर तान के लिए है और धर्म की रक्षा और संस्थापन के लिए भगवान चक्र का धारण करते हैं।
2: जहां एक ओर धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने सुदर्शन रूपी अस्त्र उठाया, वहीं प्रेम की स्थापना के लिए बांसुरी थामी। माना जाता है कि श्री कृष्ण का सबसे दिव्य अस्त्र है बांसुरी। कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी में स्वयं मां सरस्वती का वास था और उनकी वंशी की धुन सबको मतवाला बना देती थी। तो देखिए कान्हा के इस दिव्य अलंकार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। श्री कृष्ण नटवर भी हैं और हर कला के महारथी भी हैं। संगीत के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया। ये बांस का बना हुआ एक वाद्य होता है जो वायु के सहारे मीठी ध्वनि पैदा करता है। बांसुरी की ध्वनि से श्री कृष्ण अपने चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे। बांसुरी के छिद्र ये बताते हैं कि कृष्ण की कृपा से शरीर के सारे चक्र ठीक हो सकते हैं और मुक्ति का संगीत बज सकता है। घर में बीम पर अगर बांसुरी लटका दी जाए तो बीम का बुरा असर समाप्त हो जाता है।
3: हमारे यहाँ कहा गया, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीताम्बरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात, कृष्णात परम किमपि तत्र महम न जाने। जब भगवान के अधरामृत पर, होठों पर वह जब बांस की बांसुरी लगती है और भगवान श्री कृष्ण जब उसमें हवा देते हैं तो वह संसारे संसार को, केवल गोपियों को ही नहीं, सारे संसार को आह्लादित और आनंदित करती है।
2: मान्यता तो यहाँ तक है कि कान्हा को बांसुरी महादेव ने भेंट स्वरूप दी थी। जब वे पहली बार कान्हा को देखने आए थे, बांसुरी से हमेशा मीठी और शांत धुन निकलती है। ये संदेश देती है कि हमें हमेशा ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरे के मन को शांति दे और कड़वाहट को दूर करे। माना जाता है कि मुरली के प्रयोग से आप जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं, लेकिन कान्हा के सुदर्शन चक्र और मुरली से भी कहीं ताकतवर है उनका आकर्षण यानी सम्मोहन शक्ति, जो हर किसी को मोहित कर देती है। सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें विशेष तरीके से व्यक्ति के मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन शक्ति थी और इसी सम्मोहन के बल पर उन्होंने बहुत सारे काम आसानी से कर डाले थे। जयद्रथ का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके अंदर सम्मोहन के गुण अपने आप आने लगते हैं, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
3: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना। यो आकर्षते यदि सह कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। राम के नाम में आराम है, लेकिन कृष्ण के नाम में आकर्षण है, सबको आकर्षित करना।
2: श्री कृष्ण ने जो भी धारण किया वह कारण नहीं था, उनके पीछे प्रेम, शांति, समर्पण, संहार और संकटों का निवारण छिपा है। तो अगर आप भी सच्चे मन से कान्हा की भक्ति करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि कान्हा के भक्तों में कान्हा का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो आप भी श्री कृष्ण के इन अलंकार रूपी अस्त्रों और उनसे जुड़ी सीख को अपने जीवन में शामिल कीजिए। आगे हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के कुछ और चमत्कारी अलंकार, साथ ही जानेंगे श्री कृष्ण के पूजन में किन सावधानियों का रखे ध्यान।
0: हमने आपको श्री कृष्ण के उन दिव्य आभूषणों की महिमा के बारे में बताया है जिनका मानव जीवन से गहरा संबंध है। चलिए अब हम आपको बताते हैं श्री कृष्ण की उपासना के नियम और सावधानियां क्या हैं, क्योंकि भादों का महीना नारायण की उपासना के लिए विशेष होता है।
4: मथुरा वृंदावन सहित देश भर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। शहर शहर कान्हा की भक्ति में लीन नजर आए श्रद्धालु। भगवान के अवतरण पर नंदलाल की जय जयकार। अमेरिका की न्यूजर्सी में दिखी कान्हा के जन्मोत्सव की धूम। भजन कीर्तन की धुनों पर तिरकते नजर आए भक्त। प्रेम और श्रद्धा के साथ नंद गोपाल का जय घोष। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश भर में दही हांडी की रौनक। मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां तैयार। आज दिखेंगे उत्सव के रंग।
2: परम फलदायी है श्री कृष्ण का ध्यान। श्री कृष्ण की उपासना से मिलेगा वरदान। भाद्रपद में कीजिए माधव का गुणगान। जीवन में आएगी समृद्धि, मिलेगा सम्मान। आज हम श्री कृष्ण के दिव्यास्त्रों और उनके आभूषणों की महिमा आपको बता रहे हैं। चलिए माधव के कुछ और प्रमुख अस्त्रों की महिमा आपको बताते हैं। कौमुद की गदा धारण करते हैं माधव। मान्यता है कि ये गदा न सिर्फ शारीरिक विकार मिटाती है बल्कि जीवन से अंधकार का भी नाश करती है। मान्यता है कि ये गदा श्री कृष्ण को वरुण देव ने दी थी। ये गदा शक्ति, बुद्धि, नीति, स्थायित्व और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। श्री कृष्ण का धनुष सारंग असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इस धनुष को विश्वकर्मा ने बनाया था। माना जाता है कि इस दिव्य धनुष को भगवान विष्णु, परशुराम, श्री राम और श्री कृष्ण ने धारण किया। ये सिखाता है कि बल का प्रयोग सिर्फ अन्याय और अधर्म को मिटाने के लिए किया जाना चाहिए। ये तो श्री कृष्ण के संहारक अस्त्र थे। चलिए आपको बताते हैं श्री कृष्ण के एक और अलंकार वैजयंती माला की महिमा। मान्यता है कि इस माला को राधा ने कान्हा को भेंट किया था जब माधव ने पहली बार राधा संग रास रचाया था।
3: वैजयंती को हमारे यहाँ जंगल वृक्ष की संज्ञा दी गई है, यह जंगल का वृक्ष उपेक्षित है। तो भगवान कहते हैं जो जो वस्तुएं उपेक्षित हैं वो मुझे दे दो, मैं सर्वग्राही जनार्दन, मैं तो जनार्दन हूँ, सर्वग्राही हूँ कि ये सांसारिक जिन चीजों का तुम त्याग करते हो ईश्वर उसे अपना अलंकार अपना श्रृंगार बना लेता है।
2: श्री कृष्ण के जीवन से ही जुड़ा है रास, जिसमें कोप और गोपियों संग श्री कृष्ण लीला दिखाते हैं, जिसे भक्ति और प्रेम रस की पराकाष्ठा माना जाता है। माना जाता है कि रास लीला में श्री कृष्ण को परमात्मा और गोपियों को जीवात्मा माना गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब जीव अपने अहंकार और संसारिक बंधनों को त्याग कर पूर्ण समर्पण करता है तब उसका मिलन ईश्वर से हो जाता है।
3: गोपियां कौन है? सभी जितनी गोपियां आई हैं मृत्यु लोक में उस समय भगवान के श्री कृष्ण के समय वह सब देवता हैं। तो भगवान अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए और रास करते हैं। रास का मतलब कोई विकार नहीं है, रास का मतलब सबको साथ लेकर के चलने का जो परिमाप है उसे हमारे यहाँ रास। रास में कृष्ण केंद्र हैं और गोपियां पूर्ण समर्पित उनकी परिधि हैं, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं।
2: तो देखा आपने श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ अस्त्र और अलंकार कैसे आपके जीवन को गति और दिशा दे सकते हैं। मान्यता है कि नारायण की महाकृपा वाला ये महीना वैसे तो हर तरह से कल्याणकारी है, पर हर महीने की तरह इस महीने में भी साधकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो अब आपको बताते हैं भगवान कृष्ण की उपासना में किन बातों का ध्यान रखें। इनकी उपासना प्रातः काल या संध्या काल में करें। पूजा में चंदन, तुलसी दल और शंख का प्रयोग जरूर करें। पंचामृत या अन्य वस्तुएं जब भी अर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर डालें। मंत्रों का जप तुलसी या चंदन की माला से ही करें। पीले वस्त्र और पीले आसन का प्रयोग विशेष लाभकारी होगा। जब जब संसार में पाप ने अपनी चरम सीमा लांघी है तब तब नारायण ने पाप का अंत करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले कृष्ण का ध्यान पूजन करके आप भी उनके दिव्य स्वरूप से बहुत कुछ सीख सकते हैं, धर्म का मर्म समझ सकते हैं, जीवन जीने की शैली को आत्मसात कर सकते हैं।
0: और इसी के साथ इस खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
13: गुजरात में गणेश उत्सव में रौनक बिखरे हुए हैं। यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह कई गणेश मंडल हैं जो अपने अपने गणपति की प्रतिमा स्थापित कर गणेश उत्सव मनाते आए हैं। तो आज गुजरात के दो ऐसे गणेश मंडलों का जिक्र आपके सामने करने वाले हैं जिन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बप्पा की बेहद खूबसूरत और भव्य प्रतिमाएं तैयार की हैं। इन दो इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को तो आपने दिखाएंगे ही आपको, साथ ही सूरत में गणेश उत्सव के लिए ही तैयार की जा रही कुछ और डिजाइनर गणेश मूर्तियों की मनमोहक तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रहे हैं।

0: आ रहे हैं गणपति बाप्पा, जिनके स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन गणेशोत्सव की रौनक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात में भी खूब बिखरी हुई है। सूरत में 17 फीट ऊंचे बप्पा की ये आभा बता रही है कि गणेशोत्सव यहाँ भव्य ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा।
1: ये जो पंडाल आप देख रहे हैं सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही हैं।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा दरअसल टिश्यू से बनाई गई है, जिसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है। शहर के सिटी लाइट इलाके में इस अनोखी गणेश प्रतिमा को बनाने वाला एक ग्रुप है जिसका नाम है सरकार गणेश उत्सव।
2: तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश महिकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर के इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके हम।
0: बप्पा की प्रतिमा बनाने के लिए विशेष तौर पर मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम को सूरत बुलाया गया। कुशल कलाकारों ने करीब 2 महीने का वक्त लेते हुए लगातार मेहनत की और गणेश की मूर्ति को आकार दिया। टिश्यू पेपर जैसे हल्के और अलग तरह के माध्यम से इतनी बड़ी प्रतिमा तैयार करना हालांकि काफी चैलेंजिंग काम था, लेकिन मेहनत रंग लाई। बप्पा की 17 फीट ऊंची प्रतिमा ने भव्य स्वरूप लिया। हालांकि इसे रंगने के लिए पीओपी और रासायनिक रंगों के इस्तेमाल से बचने का प्रयास किया गया ताकि गणेशोत्सव के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। फिर जब विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों के साथ जयकारों के बीच उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बप्पा की स्वागत यात्रा में हिस्सा लेकर उनका आशीर्वाद दिया, जिनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
3: बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: फिलहाल तो गणेशोत्सव के दौरान सूरत के टिश्यू वाले गणेश जी की तरह ही वडोदरा के इको फ्रेंडली बापा की भी खूब चर्चा होती रही है, जिन्हें आकार देने वाला 20 से 25 युवाओं का श्री गणेश युवक मंडल है। युवाओं की ये टीम नाणा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करता रहा है। युवाओं की ये टीम नाड़ा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करती रही है।
4: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग इस अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का श्री गणेश युवक मंडल दरअसल इस साल अपने गणेशोत्सव का 11वां साल बना रहा है। पिछले 10 सालों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार इन युवाओं ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत लगाई और फिर 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर ये बेहद अनोखे इको फ्रेंडली गणेश जी तैयार किए, जिसको बनाने में 16,700 रूपए का खर्च आया। हालांकि सूरत में पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने भी गणेशोत्सव से पहले डिजाइनर गणेश मूर्तियां बनाकर लोगों का खूब ध्यान खींचा हुआ है।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
6: मथुरा वृंदावन सहित देश भर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। शहर शहर कान्हा की भक्ति में लीन नजर आए श्रद्धालु, भगवान के अवतरण पर नंदलाल की जय जयकार। अमेरिका की न्यूजर्सी में दिखी कान्हा के जन्मोत्सव की धूम, भजन कीर्तन की धुनों पर थिरकते नजर आए भक्त, प्रेम और श्रद्धा के साथ नंद गोपाल का जयघोष। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र सहित देश भर में दही हांडी की रौनक, मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां तैयार, आज दिखेंगे उत्सव के रंग।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें सिर्फ अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी, जिसे हाल ही में नेपाल में आए बाढ़ से जोड़कर बताया जा रहा है। इस सैलाब में लोग, घर और गाड़ी सब कुछ बह गए, लेकिन वीडियो का सच क्या है आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि पार्सल देने पहुंचे एक डिलीवरी बॉय ने एक महिला को पीटा है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: तो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक स्थान पर अचानक से बाढ़ आती है, वहां मौजूद लोग, घर और गाड़ी सब कुछ बह जाता है। इस वीडियो को नेपाल बाढ़ से जोड़ते हुए इसे शेयर किया जा रहा है, लेकिन जब वायरल वीडियो की का फैक्ट चेक किया गया, क्या सच और झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
7: नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। इसी से जोड़कर बाढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्थान पर अचानक बाढ़ आती है और वहां मौजूद लोग, घर और गाड़ी सभी बह जाते हैं। इस वीडियो को नेपाल की त्रासदी का बताते हुए वायरल किया जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि नेपाल से एक और भयावह तस्वीर सामने आई है। लोग रोज की तरह अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे, किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अचानक आई भीषण बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। प्रकृति के इस कहर की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस आपदा में फंसे सभी लोगों की सुरक्षित तलाश हो और प्रभावित परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत मिले। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
6: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर देखा जा सकता है कि एक स्थान पर अचानक बाढ़ आ जाती है और फिर वहां मौजूद लोग, घर और गाड़ी सभी बह जाते हैं। इस वीडियो को जिसने भी देखा है वो हैरान रह गया। सोशल मीडिया यूजर्स जान की सलामती की दुआ मांगने लगे। वायरल वीडियो सही है या फिर इसके जरिए झूठ फैलाया जा रहा है, जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि जो दिखाई देता है कई बार वो सच नहीं होता है। इसके लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को ध्यान से देखा। इस दौरान हमने वीडियो के कमेंट सेक्शन को भी खंगाला, जहां पर कई यूजर्स ने इस वीडियो को एआई वीडियो बताया है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें ये भी लगा कि कुछ इसमें खामियां नजर आ रही हैं, कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल नेचुरल नहीं है। जब बाढ़ का पानी घरों और गाड़ियों के ऊपर से गुजरता है तो फिर कुछ भी सामान्य नजर नहीं आता है। बाढ़ के पानी के गुजर जाने के कुछ सेकंड्स तक तो सब कुछ सामान्य दिखता है, और फिर कुछ सेकंड बाद घर और पेड़ अजीब तरीके से गिरने लगते हैं। वीडियो में कुछ पेड़ और ढांचे तो अचानक से उभर आते हैं। कई लोग अपने आप गायब हो जाते हैं, कुछ चीजें अपने आप में बन जा रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ इमारतों की बनावट भी अपने आप बदल जाती है और वीडियो में दिख रही कई बाइक्स का साइज भी सामान्य से बड़ा हो जाता है, जो कहीं ना कहीं वीडियो के असली होने पर संदेह पैदा करता है। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल यही था कि पानी के इस तेज बहाव में कुछ घर बह गए, पर कुछ पेड़ और घर एकदम बाढ़ से पहले जैसी स्थिति में ही कैसे रह गए। दूसरा सवाल ये कि जिस ओर से पानी बाढ़ का पानी आ रहा है, लोग उस ओर कैसे भाग सकते हैं। और तीसरा एक और सवाल कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई है। इस रिपोर्ट में जानिए सच्चाई क्या है।
7: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम लगातार इन तस्वीरों और वीडियो की पड़ताल कर रही है। हमारी पड़ताल में ये सभी फेक साबित हुए। अब इस कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से चेक करना शुरू किया। सबसे पहले हमने हाइव मॉडरेशन की मदद से वीडियो को सर्च किया। हाइव के एनालिसिस में वायरल वीडियो के AI से बने होने के करीब 70% संकेत मिले। इस टूल के अनुसार वीडियो को सिडांस 2 की मदद से बनाया गया है। हमने दूसरे टूल ह्यूमन मीटर की मदद से वीडियो को सर्च किया। इसके एनालिसिस में वायरल वीडियो के AI से बने होने के करीब 72% संकेत मिले। इस टूल के अनुसार इमारतें अपने आप अपनी बनावट को बदल रही हैं और कई कारें पानी में बदल जा रही हैं। ये सभी वीडियो के AI से बने होने के संकेत हैं। इसके बाद हमने वीडियो के की फ्रेम निकाले और उन्हें सर्च करने के लिए साइट इंजन का इस्तेमाल किया। इस टूल ने की फ्रेम के AI से बने होने की करीब 98% संभावना जताई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा वीडियो फर्जी साबित हुआ। इस वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पार्सल देने पहुंचे एक डिलीवरी बॉय ने एक महिला को पीटा। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है हमारी रिपोर्ट।
7: डिलीवरी बॉय द्वारा महिला की पिटाई का बताकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति कुछ सामान देने के लिए एक महिला के पास पहुंचता है। इसी बीच महिला और व्यक्ति के बीच बहस होने लगती है। इस दौरान पहले दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और फिर मारपीट शुरू हो जाती है। इसी बीच कथित डिलीवरी बॉय महिला को बुरी तरह से नीचे गिराकर मारना शुरू कर देता है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, एक डिलीवरी बॉय पार्सल लाता है, कस्टमर पार्सल लेने बाहर आती है। जैसे ही डिलीवरी बॉय पार्सल महिला को देता है तो वो उसके हाथ से गिर जाता है, जिससे महिला कस्टमर डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट शुरू कर देती है। गुस्से में डिलीवरी बॉय भी महिला को मारना शुरू करता है। गलती महिला की थी, लेकिन डिलीवरी बॉय को भी इतना नहीं करना चाहिए था। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर कर रहे हैं।
6: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक फ्लैट में एक डिलीवरी बॉय सामान देने को पहुंचा, वो फोन करता है, तभी एक महिला दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। तभी सामान लेने के दौरान डिलीवरी बॉय के हाथ से सामान गिर जाता है, जिसके बाद महिला और डिलीवरी बॉय के बीच पहले कहासुनी होती है। उसके बाद महिला डिलीवरी बॉय को धक्का दे देती है, जिसके बाद डिलीवरी बॉय पलट वार करते हुए एक थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो शेयर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि डिलीवरी बॉय ने सामान देने के दौरान एक महिला के साथ हाथापाई की। दावा यही है या गलत है, ये जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की सच्चाई जानने के लिए पूरे वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे वायरल दावे पर हमें शक हुआ। जिस तरह वीडियो के जरिए कहानी को पेश किया जा रहा है, उस पर हमें संदेह हुआ। महिला और डिलीवरी बॉय के बीच में हाथापाई हो रही है, तो जाहिर है कि शोर भी मचेगा और इस शोर को सुनकर आसपास रहने वाले लोग भी वहां पहुंचेंगे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक तयशुदा कहानी के तहत इसको शूट किया गया है। ना वहां पर लोग पहुंचते हैं, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है, यह हमें काफी अटपटा लगा। लिहाजा हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही था कि सोसाइटी के एक फ्लैट के बाहर डिलीवरी बॉय और महिला के बीच मारपीट होने के बावजूद लोग क्यों इकट्ठा नहीं हुए। दूसरा सवाल कि वीडियो किसी सोसाइटी का लग रहा है, जाहिर है कि वहां पर सुरक्षा गार्ड भी होंगे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि महिला पिटती रही और वहां सुरक्षा गार्ड पहुंचा ही नहीं। जिस एंगल से ये पूरा वीडियो शूट हुआ है उसे देखकर नहीं लग रहा है कि ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब ये कि सामने कैमरा लगाया गया। इसके लिए तीसरा सवाल यही कि महिला और लड़के ने जानबूझकर वीडियो बनाने के लिए ये ड्रामा तो नहीं किया है। सच्चाई इस रिपोर्ट में जानिए।
7: अवे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 21 अगस्त को एक फेसबुक यूजर के अकाउंट से पोस्ट किया गया ये वीडियो मिला। 2:33 के इस वीडियो में वायरल क्लिप मौजूद है। वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। पड़ताल के दौरान हमें यही वीडियो इसी यूजर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मिला, जहां इसे स्क्रिप्टेड बताया गया है। इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट को खंगालने पर हमें वहां ऐसे कई और वीडियो भी मिले, जिनमें पुरुष और महिला आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इन सभी वीडियो के कैप्शन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो के जरिए झूठा दावा किया जा रहा है, ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: फैक्ट चेक में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको ले चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
6: फैक्ट चेक में वक्त हो चला है वायरल वीडियोस को देखने का। आपको लिए चलते हैं सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।
12: खुद तो पढ़ना नहीं है तो भला बड़ी बहन को क्यों पढ़ने दूं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये भाई बहन का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी बहन पढ़ रही है, अभी वह छोटा भाई पहुंच जाता है और बहन को परेशान करने लगता है, तरह तरह के हरकतें करके बहन को पढ़ने से रोकने लगता है। चंद सेकंड का ये वीडियो भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते को बखूबी बयां कर रहा है। लोग इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार उतार रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नन्हे बच्चे का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बच्चा अपनी मैम के लिए गाना गाता नजर आ रहा है। बच्चे की प्यारी आवाज और मासूम अंदाज देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है।
13: जोर से सुनाओ। गुलाबी आंखें, चटीली देखी, शराबी ये दिल हो गया,
12: गाना गाते हुए बच्चे के चेहरे पर खुशी और अपनापन साफ दिखाई देता है। उसकी मासूमियत ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू लिया है। यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग बच्चे की खूब तारीफ कर रहे हैं।
13: अरे गाओ ना यार।
14: ये पकड़ लिया।
15: पी छोटो पापा, पापा पी छोटो।
12: बेटियां पापा की क्यों लाज दुलारी होती हैं? वो इस वीडियो को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। पापा और बेटियों के बीच पकड़ने और छोड़ने का ये प्यारा पल लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
14: ये पकड़ लिया।
15: पी छोटो पापा, पापा पी छोटो।
12: यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
14: ये फकेमा।
15: पापा पी छोटो। मैं मामा मारूंगा। मैं मामा मारूंगा।
11: A night ago, I messaged my father that I'm remembering you. And the next morning, I opened my door. And there he was with a backpack.
16: कहा जाता है कि बेटियां पापा की परी होती हैं और इस बात को एक पिता ने सच साबित कर दिया है। सिर्फ एक छोटे से मैसेज पर बिना किसी बड़ी इमरजेंसी के पिता ने मीलों का सफर तय कर अपनी बिटिया के दरवाजे पर दस्तक दे दी।
11: My favorites and before leaving he just said whatever you do just be happy.
16: एक इंस्टाग्राम यूजर ने इस दिल को छू लेने वाले पल को शेयर किया है। वीडियो में उस चैट का स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया है जिसमें बेटी ने एक रात पहले अपने पिता को मैसेज किया था, आई मिस यू पापा।
11: एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई ओपन्ड माय डोर एंड देयर ही वाज विद अ बैग।
16: बेटी का ये मैसेज देखते ही पिता का दिल बेचैन हो गया। अगले दिन सुबह वह सचमुच बेटी के दरवाजे पर खड़े थे। पापा और बेटी के इस खूबसूरत मिलन के पीछे का समर्पण हर किसी को भावुक कर रहा है।
11: Took me out, fed my favorites, and before leaving, he just said.
16: इस छोटी सी मुलाकात के लिए पिता ने सिर्फ बेटी से मिलने के लिए 14 घंटे का सफर तय किया। करीब 8 घंटे साथ बिताए और फिर वापस 14 घंटे का सफर किया। थकने के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ आराम किया बल्कि बेटी के घर के कामों में हाथ बटाया और उसके साथ शहर घूमने भी निकले। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी भावनाएं नहीं रोक पा रहे हैं। कोई अपने पापा को याद कर रहा है तो कोई इस अनमोल रिश्ते की तुलना किसी और से ना करने की सलाह दे रहा है। इस शख्स ने साइकिल के पैडल से कपड़े धोने का गजब तरीका ढूंढ निकाला है। इस जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने जमीन पर प्लास्टिक का टब रखा है जिसमें पानी और कपड़े भरे हुए हैं। टब के ठीक ऊपर उसने एक साइकिल को उल्टा करके व्यवस्थित किया हुआ है। इसके बाद वह टब में वॉशिंग पाउडर डालता है और साइकिल के पैडल को हाथ से तेजी से घुमाना शुरू करता है। जैसे जैसे पैडल घूमता है साइकिल की चैन और पहिए से जुड़ी ग्रिप टब के पानी में वॉशिंग मशीन के पल्सेटर की तरह काम करने लगती है। पानी में झाग बनने लगता है और कपड़े ठीक उसी तरह घूमने लगते हैं जैसे किसी वॉशिंग मशीन में घूमते हैं। इस जुगाड़ की सबसे खास बात ये है कि इसके लिए ना तो बिजली की जरूरत है और ना ही किसी महंगे रखरखाव की। ये पूरी तरह से जीरो कास्ट और पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीका है। वीडियो को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए हैं। वीडियो में एक गांव की सड़क पर लड़का स्टंट करता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत में वह साइकिल को अपने हाथों से उठाता है और फिर उसे सीधे अपने ठुड्डी पर संतुलित कर लेता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि साइकिल पूरी तरह हवा में टिकी होती है और लड़का बिना हाथों का सहारा लिए बड़े आराम से हाथ फैलाकर पोज देता है। वीडियो में लड़के की एकाग्रता और संतुलन का स्तर देखने लायक है। साइकिल का वजन और उसका आकार ऐसा होता है जिसे मुंह या चेहरे के सहारे रोकना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इस लड़के ने इसे इतनी आसानी से किया जैसे ये उसके रोज का काम हो। वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं जबकि हजारों लोगों ने इसे पसंद किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। लोग लड़के की कला और मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लाल टी शर्ट पहने युवक भीड़ भाड़ वाले मार्केट एरिया में खड़ा है। इसके पास एक स्प्लेंडर बाइक है, लेकिन वह उस पर सवार होकर चलने के बजाय बाइक को अपने कंधों पर उठाकर चलने लगता है। वह पूरी सहजता से भारी भरकम बाइक को उठाए घूमता है, मानो उसने कोई हल्का बैग उठा रखा हो। सड़क और बाजार में मौजूद लोग इस आधुनिक बाहुबली को देखकर हैरान रह जाते हैं। कई लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं, तो कुछ अपनी हंसी नहीं रोक पाते। दबंग 2 का मशहूर सॉन्ग दगाबाज रे हाय दगाबाज रे आप सब ने सुना ही होगा। अब उसका ये वर्जन सुनिए। वीडियो में एक परिवार जन्मदिन मनाते हुए दिख रहा है। इस दौरान एक शख्स दगाबाज रे सॉन्ग के धुन का इस्तेमाल करके हैप्पी बर्थडे टू यू का ये वर्जन गाने लगता है।

0: लोगों को ये खूब पसंद आ रहा है। इंसानों की तरह जानवर भी अपने मालिक के काम में हाथ बटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक शख्स अपने डॉग को काम पर लेकर पहुंचा, जहां कंस्ट्रक्शन के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। डॉग भी खुद को काम से दूर नहीं रख पाया और गड्ढा खोदने में मदद करने लगा। काम करते हुए डॉग काफी खुश नजर आया। उसकी मासूम हरकत देख कर लोग खूब मुस्कुरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर यूजर्स तंग हैं। वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता घर के हॉल में आराम से सो रहा होता है, तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर घंटी बजती है और बाहर से डिलीवरी की आवाज आती है। जैसे ही डॉगी डिलीवरी बॉय की आवाज सुनता है, वह तुरंत उठ खड़ा होता है और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ता है। मजेदार बात यह है कि घर में उस वक्त कोई इंसान नहीं था, लेकिन डॉगी ने बिना घबराए बहुत ही समझदारी से अपने पंजों से दरवाजा खोला और बाहर खड़े डिलीवरी बॉय से पार्सल रिसीव कर लिया। वीडियो में सबसे मजेदार मोड़ तब आता है जब डॉगी पार्सल तो ले लेता है, लेकिन उसे तुरंत उठाकर अंदर नहीं लाता। वह दरवाजे के पास खड़े होकर बड़े ध्यान से नजर रखता है और डिलीवरी बॉय के वहां से चले जाने का इंतजार करता है। जैसे ही डिलीवरी मैन वहां से रवाना होता है, स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड मुंह में पार्सल दबाता है और बड़े शान से उसे लिविंग रूम में सोफे के पास लाकर रख देता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: गुजरात में गणेश उत्सव में रौनक बिखरी हुई है। यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह कई गणेश मंडल है जो अपने अपने गणपति की प्रतिमा स्थापित कर गणेश उत्सव मनाते आए हैं। तो आज गुजरात के दो ऐसे गणेश मंडलों का जिक्र आपके सामने करने वाले हैं जिन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बप्पा की बेहद खूबसूरत और भव्य प्रतिमाएं तैयार की हैं। इन दो इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को तो आपने दिखाएंगे ही आपको, साथ ही सूरत में गणेश उत्सव के लिए ही तैयार की जा रही कुछ और डिजाइनर गणेश मूर्तियों की मनमोहक तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रहे हैं।

0: आ रहे हैं गणपति बाप्पा, जिनके स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन गणेशोत्सव की रौनक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात में भी खूब बिखरी हुई है। सूरत में 17 फीट ऊंचे बप्पा की ये आभा बता रही है कि गणेशोत्सव यहाँ भव्य ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा।
1: ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही है।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा दरअसल टिश्यू से बनाई गई है, जिसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है। शहर के सिटी लाइट इलाके में इस अनोखी गणेश प्रतिमा को बनाने वाला एक ग्रुप है, जिसका नाम है सरकार गणेश उत्सव।
2: तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीना, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश महिकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर के, इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके हम।
0: बप्पा की प्रतिमा बनाने के लिए विशेष तौर पर मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम को सूरत बुलाया गया। कुशल कलाकारों ने करीब 2 महीने का वक्त लेते हुए लगातार मेहनत की और गणेश की मूर्ति को आकार दिया। टिश्यू पेपर जैसे हल्के और अलग तरह के माध्यम से इतनी बड़ी प्रतिमा तैयार करना हालांकि काफी चैलेंजिंग काम था, लेकिन मेहनत रंग लाई। बप्पा की 17 फीट ऊंची प्रतिमा ने भव्य स्वरूप लिया। हालांकि इसे रंगने के लिए POP और रासायनिक रंगों के इस्तेमाल से बचने का प्रयास किया गया, ताकि गणेशोत्सव के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। फिर जब विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों के साथ जयकारों के बीच उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बप्पा की स्वागत यात्रा में हिस्सा लेकर उनका आशीर्वाद दिया, जिनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
3: बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: फिलहाल तो गणेश उत्सव के दौरान सूरत के टिश्यू वाले गणेश जी की तरह ही वडोदरा के इको फ्रेंडली बापा की भी खूब चर्चा होती रही है, जिन्हें आकार देने वाला 20 से 25 युवाओं का श्री गणेश युवक मंडल है। युवाओं की ये टीम नाना छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करता रहा है। युवाओं की ये टीम नाड़ा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करती रही है।
4: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग इस अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे, और हम सबको बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का श्री गणेश युवक मंडल दरअसल इस साल अपने गणेशोत्सव का 11वां साल बना रहा है। पिछले 10 सालों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार इन युवाओं ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत लगाई और फिर 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर ये बेहद अनोखे इको फ्रेंडली गणेश जी तैयार किए, जिसको बनाने में 16,700 रुपए का खर्च आया। हालांकि सूरत में पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने भी गणेशोत्सव से पहले डिजाइनर गणेश मूर्तियां बनाकर लोगों का खूब ध्यान खींचा हुआ है। पारंपरिक रंगों में घुली और बारीक नक्काशी के लिए बप्पा की ये डिजाइनर प्रतिमाएं एक नजर में ही किसी का भी मन मोह लें। भाई बप्पा की ये खूबसूरत मूर्तियां हैं ही ऐसी कि एक पल में ही दिल को लुभा ले। लेकिन ये भी 100% सच है कि आज का दौर आस्था के साथ पर्यावरण को बचाकर रखना है, इसलिए निश्चित तौर पर इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा नदी, तालाब या समंदर में विसर्जन के वक्त पर्यावरण सुरक्षा की एक सराहनीय पहल है। जिससे भक्ति आस्था के साथ त्योहार का रंग भी बना रहे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की